0: जी जी बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
1: श्रोताओ, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फोमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओ, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आएं, तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुंगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर लें, 8800-4405-59। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
2: साथियों नमस्कार।
3: नमस्कार साथियों,
2: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक

0: मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता।
1: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
0: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
1: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
0: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
2: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
3: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
2: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
1: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
0: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हाँ हूँ कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
1: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
4: सू
2: जी,
4: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
2: जी हाँ
4: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
2: जी डॉक्टर साहब।
4: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
2: मैं पूछती हूँ।
0: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
1: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40
2: क्या?
0: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
5: 13, 12, 11 ओह जॉन्सी, अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
1: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
5: क्या गिन रही हो? 11, 10, थे, लेकिन लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए।
2: क्या कम हो गए हैं?
5: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन लेकिन हाँ अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
0: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
2: जॉनसी उस दिन क्या सौ थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
5: सिक्स, नाउ इट्स सिक्स, फाइव, फोर। ओह
2: जॉनसी, जॉनसी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉनसी।
5: ओनली फोर।
2: मेरी तरफ देखो
5: सू, ओनली फोर। ओह अब सिर्फ तीन बचे हैं।
2: क्या तीन बचे हैं? व्हाट्स थ्री डियर?
5: तीन पत्तियां।
2: पत्तियां?
5: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू।
2: हाँ हाँ,
5: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
2: क्या लगता है?
5: यही कि बस अब तीन पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
2: क्या जॉनसी?
5: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
2: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
5: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
2: हाँ
5: सू, अब सिर्फ तीन पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
2: जॉनसी।
0: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसे दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
1: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
0: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
1: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
6: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
0: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
1: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
5: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
0: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
6: जॉनसी अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
0: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
1: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
5: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें ही बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
0: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
5: सू, मेरी दोस्त।
2: हाँ जॉन्सी।
5: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। पर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
2: सू।
5: हाँ जॉन्सी।
2: सू,
5: ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
2: हाँ बिल्कुल,
5: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
2: बिल्कुल जॉन्सी।
5: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
2: पत्ता?
5: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
2: हाँ, हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
5: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
2: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
5: हाँ, हाँ।
1: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: कुछ, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
1: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
2: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
5: बेहतर।
2: ये लो, कॉफी पियो।
5: थैंक यू
2: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
5: क्या हुआ?
2: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
5: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
2: हाँ।
5: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
2: हाँ वही।
5: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
2: हाँ, वही मिस्टर बेयरमैन।
5: ओ गॉड,
2: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉनसन, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
5: क्या?
2: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
5: क्यों नहीं गिरा?
2: हाँ,
5: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
0: जॉनसी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जॉनसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेयरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
5: पेंटिंग?
2: हाँ।
5: कैसी पेंटिंग?
2: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेयरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
5: ओह, तो वो पेंटिंग है?
2: हाँ।
5: असली पत्ता नहीं है?
2: नहीं।
5: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
2: हाँ जॉनसी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
5: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
2: हाँ जॉनसी,
5: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
2: हाँ, उन्होंने बना दिया।
5: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
2: हाँ,
5: मास्टरपीस।
2: हाँ,
5: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
1: डबडबाई आंखों से जॉनसी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
0: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉनसी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
4: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
6: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
4: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दे। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर लें और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आरजे अनु। आप सभी का स्वागत करती हूं उन्नत कृषि कार्यक्रम में। और आज एक खास विषय और हम लेकर आए हैं। जी हां, सब्जियों की बात करें तो सब्जी जो है, कहा जाता है कि अगर आप शुद्ध और शाकाहारी हैं तो आप सब्जियाँ खाइए, ये आपको स्वस्थ रखती हैं क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, विटामिन मिनरल्स जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। तो आज हम सब्जियों की बात कर रहे हैं, अगर हमारे ये सब्जी रोग विरोधी हो तो जरूरी है कि उसमें कोई कीट और कीड़े ना लगे हों। तो आज हम बात करेंगे, अगर हमारे किसान भाई सब्जियों की खेती कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की सब्जियों की, और सब्जियों में सूत्रकृमि की समस्या आपको दिख रही है तो इसकी पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। और साथ ही आज आप इसके बचाव के बारे में भी जानेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा हमारा आज का एक कार्यक्रम। हम आपको बता दें कि इस खास विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर संजय कुमार शर्मा जी। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एंटेमोलॉजी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार जी। नमस्कार
0: सर। हम बात कर रहे हैं आज सूत्रकृमि की, सब्जियों में ये समस्या अक्सर देखा जाता है। हमारे किसान भाई जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनकी जो मेहनत है सब्जियों के देख रेख में, पौधे लगाने की, और ये सूत्रकृमि उनकी मेहनत पर पानी फेर देता है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों को सब्जियों के महत्व के बारे में थोड़ी जानकारी दें।
2: हाँ, जैसा कि आपने बताया कि सब्जियों में पौष्टिक तत्व अन्य किसी खाद्य आहार की अपेक्षा अधिक होते हैं। हमारे राज्य में मौसम के हिसाब से प्राय हर प्रकार की सब्जी उगाई जाती है। अब चूंकि सब्जियों की खेती सिंचित एवं अधिक उर्वरक भूमि में की जाती है, इसीलिए इन पर विभिन्न कीट एवं रोग कारकों के साथ साथ सूत्रकृमियों का प्रकोप भी बहुत अधिक होता है।
0: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि ये बहुत ही लाभदायक हैं, पौष्टिक गुण हैं इसमें। और सूत्रकृमि की जहाँ तक बात है तो हम सबसे पहले सर जानना चाहेंगे कि सूत्रकृमि क्या है ये?
2: सूत्रकृमि दरअसल बहुत छोटे, पतले और खंड रहित धागे के समान जीव होते हैं। बहुत छोटे प्रकार के कृमि होते हैं जिनको नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते।
0: अच्छा,
2: इसलिए इनको अदृश्य शत्रु भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें अपनी आंखों से देखना संभव नहीं है।
0: मतलब ये बहुत ही छोटे साइज के
2: जी,
0: होते हैं।
2: ये आकार में बहुत ही 2 मिलीमीटर से भी कम आकार के होते हैं। पौधे परजीवी सूत्रकृमि जमीन के अंदर से नुकसान पहुंचाकर पूरी फसल को, जमीन के अंदर जो फसल के पोषक तत्व हैं उनका चूषण करके, उनका शोषण करके उसी पर जीवित रहते हैं।
0: तो ये टहनियों पर नहीं, मतलब जमीन के अंदर ही?
2: अधिकांश सूत्रकृमि जमीन के अंदर ही रहते हैं।
0: अच्छा,
2: कुछ प्रजातियां हैं जो पत्तियों पर भी,
0: टहनियों पर, पत्तियों पर। जी, तो ये सूत्रकृमि बहुत ही सूक्ष्म, यूं कहें कि साइज में है, और इसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए आपको लेंस की भी जरूरत पड़ सकती
2: जी
0: है।
2: जी जी, इनको विशेष प्रकार के जो माइक्रोस्कोप होते हैं जिनको सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है, इनको उन्हीं की सहायता से देखना संभव है।
0: जी, तो डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि एक प्रकार के कीड़े हैं जो हमारी सब्जियों को हानि पहुंचाते हैं, ज़मीन के अंदर ही जड़ से उनकी पोषक तत्वों को चूस लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सब्जी है वो ख़राब हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, इनके प्रजातियों की बात करें तो कौन कौन से सूत्रकृमि जो हैं हमारी सब्जियों को हानि पहुँचाते हैं?
2: दरअसल सूत्रकृमियों की कई प्रजातियाँ हैं जो सब्जियों में लगती हैं, जैसे रूट नोट नेमेटोड, जिसको मूल मिलेडोगाइनिन कोगनेटा मिनोडोगाइनिन जावानिका, इसकी 2 प्रजातियां हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य प्रजातियां हैं, जिस प्रटाइलिंकस, रोटाइलिंकस, टाइलिंकोरियंकस, होप्लोलेमस, हेलिकोटाइलिंकस, ये कुछ प्रजातियां हैं। पर मुख्यतः सब्जियों का पर जो सूत्रकृमि पाया जाता है वो रूट नोट नेमेटोड होता है, जिसे मूल ग्रंथि सूत्रकृमि भी कहते हैं या जड़ गांठ सूत्रकृमि भी कहते हैं। यही सबसे ज़्यादा प्राय सब्जियों में नुकसान पहुंचाता है।
0: जी,
2: ये जो रोग होता है ये मिलोडोगाइन नामक सूत्रकृमि द्वारा होता है। ये रोग प्राय उन सभी क्षेत्रों में व्याप्त है जहाँ सब्जी उगाई जाती है। अगर मिलोडोगाइनी नामक सूत्रकृमि नर्सरी में ही मौजूद हो तो वहीं पर पौधों की जड़ों में घुस जाता है तथा ऐसे पौधों को जब मुख्य खेत में रोपा जाता है तो इससे भारी क्षति होती है।
0: तो यहाँ पर आपने जाना कि कितने प्रकार के और कितने प्रजातियों में ये पाए जाते हैं और कैसे ये हानि पहुँचाते हैं सब्जियों को। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूँ कि लक्षण की, अगर देखा जाए हमारी सब्जियों में ये सूत्रकृमियों ने हानि पहुँचा रहे हैं, तो क्या कुछ लक्षण हमें दिखते हैं कि हमें पता चल जाए कि ये सूत्रकृमि हमारे सब्जियों में लग चुका है, कुछ लक्षण होंगे?
2: जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका ये। दरअसल जो रोग कीटों के द्वारा जो नुकसान होता है फसलों में, या विषाणुओं द्वारा या जीवाणुओं द्वारा जो नुकसान होता है, उनके नुकसान में एक विशेष प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं
0: जी।
2: पर सूत्रकृमि की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ विशेष लक्षण नहीं दिखते हैं। रोग के प्रमुख लक्षणों में अगर हम जड़गांठ रोग की बात करें तो जैसा कि इसका नाम है, इस रोग के मुख्य लक्षण की ओर संकेत देता है कि इसमें रोगग्रस्त पौधों की जड़ों के में विभिन्न प्रकार की मोटी मोटी गांठें बन जाएंगी और इन गांठों के भीतर सूत्रकृमि रहते हैं और जड़ों द्वारा पौधे के लिए अर्जित किए गए जल व भोजन पर अपना निर्वाह करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप रोगग्रस्त पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा रोगीला पौधा स्वस्थ पौधों की तुलना में कमजोर तथा छोटा रह जाता है। रोग का प्रकोप यदि अधिक होने पर पत्तियां गिर जाती हैं तथा फल बहुत छोटे व कम मात्रा में लगते हैं
0: जी।
2: अगर रोगी पौधों को हम उखाड़ने पर ये देखें तो ये बड़े आसानी से उखड़ जाएंगे तथा जड़ों पर गोल आकार की बड़ी बड़ी गांठें आपको नजर आएंगी। ये सूत्रकृमि प्राय सभी प्रकार की सब्जियों पर आक्रामक है। हमारे खेतों में उगने वाले खरपतवारों पर भी ये सूत्रकृमि जिंदा रह सकता है। ये सूत्रकृमि स्वयं तो नुकसान करता ही है, साथ साथ अन्य प्रकार की बीमारियां जो विभिन्न प्रकार की फफूंद या जीवाणुओं से पैदा होती है उनको भी फैलाने में मदद करता है, जैसे कि उकटा रोग, जड़ सड़न रोगों को फैलाने में ये सूत्रकृमि बहुत मदद करता है। इस सूत्रकृमि की मादा जो कि जड़ों में रहती है और औसतन 500 से 600 अंडे देती है और ये अंडे एक मुलायम आवरण में बंद रहते हैं। वे अंड समूह जड़ों के साथ चिपके रहते हैं। खेतों में नमी मिलने पर अंड समूह से आक्रामक कृमि निकलते हैं जो भोजन की तलाश में यत्र तत्र घूमने लगते हैं तथा जड़ मिलते ही अपने सुई के आकार जैसी डंक से जड़ में छिद्र करके उसमें घुस जाते हैं और वहीं जड़ों के अंदर बड़े होकर ये सूत्रकृमि जड़ों में गांठें बनाने लगते हैं और 20 से 25 दिन के अंदर अपने जीवन चक्र में खेत की मिट्टी में हजारों सूत्रकृमि अपनी संख्या में वृद्धि कर प्रवेश पा जाते हैं।
0: तो ये कुछ लक्षण हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे सब्जियों में सूत्रकृमि का हमला हो चुका है। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं तो ये कितना नुकसान पहुंचाते हैं सब्जियों के, वो बताएं।
2: इन सूत्रकृमि से प्राय सब्जियों में 25 से 30% तक नुकसान होता है, पर अगर रोग की अधिकता हो तो कभी कभी तो ये 70 से 80% तक सब्जियों में नुकसान पहुँचा देते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुँचता है इससे। और डॉक्टर साहब, हम इससे बचाव कैसे करें?
2: जी हाँ, इस रोग के या इन सूत्रकृमि से बचाव के लिए, क्योंकि ये दिखते नहीं है तो इनका बचाव इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सूत्रकृमि सभी प्रकार की सब्जियों तथा अन्य पौधों पर भी जीवित रह सकता है। अतः सूत्रकृमि रोगों से बचाव के लिए अनेक उपायों का समन्वय करना अति आवश्यक है, जिसमें खेतों में विषैले रसायनों द्वारा कम से कम प्रदूषण हो, किसानों पर आर्थिक भार भी ना पड़े। तो इस हेतु रोगी खेत में फसलों को बदल बदल कर बोएं। खेतों में एक बार इस सूत्रकृमि के पोषक फसल बोने के बाद इन खेतों में अभोज्य फसलें यानी मक्का, धान, सरसों, प्याज, लहसुन, तिल इत्यादि बोएं, जिससे सूत्रकृमि को पोषक फसल नहीं मिलने से उनकी संख्या में कमी आती है
0: जी।
2: कृषि क्रियाओं की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम मई और जून के माह में जब दिन का तापमान अधिक होता है तो खाली खेतों की 2 से 3 गहरी जुताई करें। इससे सूत्रकृमि के अंडे वे जो द्वितीय अवस्था की जो डिम्बक जिसको बोलते हैं या लार्वा जिसको बोलते हैं वो तेज धूप के संपर्क में आकर मर जाती है। इसके अलावा खेतों में सनई या ढेंचा उगाकर हरी खाद बनाएं अथवा फसल बोने से पूर्व सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट 20 टन प्रति हेक्टर की दर से भूमि में मिला है। इससे भूमि में कई रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन होते हैं, जिससे सूत्रकर्मियों की संख्या में भारी कमी आती है। साथ ही फसल में रोगरोधी क्षमता भी बढ़ती है। कुछ फसलें जिनमें गुलदाउदी, गेंदा, सरसों की जड़ों से कुछ रासायनिक द्रव्य भी निकलते हैं जो सूत्रकर्मियों के लिए जहर का कार्य करते हैं। तो अगर इन फसलों को हम उगाते हैं मुख्य फसल के साथ या मुख्य फसल के बीज में मिश्रित खेती के तौर पर, तो उनसे भी लाभ होता है। अब अगर हम बात करें कि हम प्रारंभिक अवस्था में इस रोग का निदान करने के लिए अगर नर्सरी में ही टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी के स्वस्थ पौध तैयार की जाए, इसके लिए नर्सरी का उपयुक्त स्थान चुना जाए जहाँ सूत्रकर्मियों की समस्या ना हो। पौधशालाओं में रासायनों का प्रयोग एक तो कम खर्च में अधिक लाभकारी होता है। इस रोग से बचाने के लिए नर्सरी क्षेत्र को मई और जून के महीने में हल्की सिंचाई कर एक पतली पारदर्शी पॉलीथीन से 15 दिन के लिए ढक दें। नर्सरी में बुवाई के समय बीजों के साथ कार्बोफ्यूरान नामक दवा 3G 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलाएं। मुख्य खेत में पौध रोपाई से पूर्व 5 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से नीम की खली का प्रयोग करें। साथ ही इस रोग के नियंत्रण के लिए सबसे सरल उपाय है कि रोगरोधी किस्मों को उगाना। तो कुछ सब्जियों की मूल जो जड़गांठ सूत्रकर्मी के रोगरोधी किस्मों में अगर हम बात करें तो टमाटर की किस्म है सिलेक्शन 120, कर्नाटक हाइब्रिड, हिसार ललित, नेमाटेक्स, रोनीता। बैंगन की ब्लैक ब्यूटी, विजया, बनारस जॉइंट या गच्छा बैंगन। मिर्च की किस्मों में है पूसा ज्वाला या K2। भिंडी की IC 9773, IC 18960। तो ये कुछ रोगरोधी किस्में हैं जो जिनका अगर हम उपयोग करते हैं तो इस सूत्रकर्मी से बचाव संभव है
0: जी।
2: अब अगर हम रासायनों की बात करें, रासायनिक उपचार की बात करें, तो सूत्रकर्मी नाशक रासायनों में रोग की अधिकता होने पर कार्बोफ्यूरान 3G नामक जो दवा है उसका 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें तो इस रोग से बचाव संभव है। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, सब्जियों की अधिकतम उपज प्राप्त हो सके इस हेतु एक तो अच्छा बीज, सही समय पर बुवाई, खाद एवं उर्वरक का सही इस्तेमाल, कीट एवं रोग नियंत्रण के साथ साथ सूत्रकर्मियों का नियंत्रण भी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि ये दिखते तो नहीं है पर फसल को इतना नुकसान पहुँचा देते हैं कि किसानों को अपनी मेहनत एवं अब उनकी जो पूंजी का निवेश है उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। अतः सूत्रकर्मियों की उपस्थिति के लक्षणों को देखते ही समाधान के सही प्रयत्न किए जाने चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये दिखते नहीं हैं और हानि बहुत ज़्यादा पहुंचा देते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब ने आपको जो भी यहाँ पर चीज़ें बताई हैं कि आपको इन सारी चीज़ों को करना चाहिए अगर आप इससे बचाव चाहते हैं तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को बहुत ही लाभ मिलेगा इस वार्ता को सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच थे डॉक्टर संजय कुमार शर्मा और हमारा विषय आज का था सब्जियों में सूत्रकृमि की समस्या और बचाव। अगले दिन आपसे एक और अलग विषय के साथ हाजिर रहेंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: दौड़ता है सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
8: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
9: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
10: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
9: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने अपनों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत। आज कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सोचिए, हम जितने भी फल खाते हैं वो सारे फल एक जैसे दिखते, उनका स्वाद एक जैसा होता, या फिर इतने खूबसूरत खूबसूरत जो फूल हम देखते हैं वो सारे के सारे फूल एक रंग के होते, एक जैसे होते, एक साइज के होते, एक शेप के होते, तो कितना नीरस होता, मतलब फूलों का पूरा मजा ही खत्म हो जाता। ठीक उसी तरीके से सोचिए, सारे इंसान एक जैसे दिखते, एक जैसे रंग के होते, एक साइज के होते, एक हाइट के होते, तो अच्छा होता क्या? नहीं ना। जब हम ये बातें जानते हैं कि एक रंग के, एक साइज के, एक हाइट के सारे लोग नहीं हो सकते हैं और उनका एक जैसा होना अच्छा लगेगा भी नहीं, तो फिर हम ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं कि अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो मुझे भी ऐसा दिखना है, अगर कोई बहुत पतला है तो अच्छा नहीं है, अगर कोई बहुत मोटा है तो भी अच्छा नहीं है, ऐसी बातें हम क्यों सोचते हैं? अगर सब एक जैसे होंगे तो सबकी अपनी जो पहचान है, अपनी यूनिक पहचान जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। और आज के समय में जब सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ना जाने कितने तरह के फिल्टर्स लगे हुए हैं, उस पर जब लोग देखते हैं किसी और को, बिल्कुल फिट बॉडी है, निखरा हुआ रंग है, और ऐसे में जब हम खुद को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो बहुत खूबसूरत थी या बहुत खूबसूरत था, लेकिन हम उतने खूबसूरत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी टाइप वैसी नहीं है या फिर हमारा रंग वैसा नहीं है। ऐसी कुछ बातें सोचकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं और इन्हीं बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी, आज बातें होने वाली है बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में। बॉडी पॉजिटिविटी, पता है आपको ये टर्म कब आया था? ये टर्म पहली बार आया था
11: 1990s में बॉडी पॉजिटिविटी ये टर्म पहली बार आया था, लेकिन उससे भी पहले बॉडी पॉजिटिविटी की जड़ें रखी जा चुकी थी, उसकी नींव रखी जा चुकी थी 1960s में। जी हाँ, 1960s में फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट चला था, यानी कि जब मोटे लोगों को उनके मोटे होने के लिए उनका मजाक नहीं बनाया जाता था, तब एक ये मूवमेंट चला था कि मोटे लोगों का उनका मजाक नहीं बनाया जाएगा, उन्हें अपने से अलग नहीं समझा जाएगा। फिर 1990s में एक प्रॉपर टर्म आया बॉडी पॉजिटिविटी, और इसके बाद अब हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को समझने की, बॉडी पॉजिटिविटी को समझने की, और अलग अलग तरह के बॉडी को एडमायर करने की, अलग अलग बॉडी की खूबसूरती को समझने की। आज हर कोई एक जैसी आंखें चाहता है, एक जैसे होंठ चाहता है, एक जैसी हाइट चाहता है, एक जैसा बॉडी साइज चाहता है, यानी कि एक टाइप में फिट होना है। अगर सब एक जैसा हो तो कैसे अच्छा लगेगा? मैंने शुरुआत में कहा था ना, आप सोचिए कि सारे फूल एक जैसे हों, उनके रंग एक जैसे हों, उनकी बनावट एक जैसी हो, तो कितना नीरस हो जाएगा, नहीं? ठीक उसी तरह से। और आज के समय में आपको पता है, बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में पता नहीं होने की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी हाँ, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा तादाद लड़कियों की है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में हमेशा ये बात बैठी होती है कि वो कैसी दिखती हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो कैसा सोचती है, वो क्या काम करती हैं। सिर्फ डिप्रेशन नहीं, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस होता है वो चला जाता है, उनमें खाने की बहुत अजीब सी आदत हो जाती है। इसके बारे में हम बहुत विस्तार से बातें करेंगे। एक स्टडी बताती है कि 50% से भी ज़्यादा लड़कियां अपने शरीर को अच्छा ना समझते हुए डिप्रेशन में चली जाती है, या फिर उन्हें खाने की बुरी आदत लग जाती है। सबसे पहले तो आइए हम मोटापे की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर बॉडी पॉजिटिविटी की शुरुआत हुई थी तो वो मोटापे से ही हुई थी, और आज भी पता नहीं क्यों हम मोटे लोगों का मजाक बनाते हैं। आप बॉलीवुड फिल्मों में देखिए, कभी आपको हीरो या हीरोइन मोटा या मोटी नहीं दिखेगी। अगर कोई मोटा किरदार है तो उसे बहुत फनी दिखाया जाता है। ये बहुत गलत बात है जो फिल्मों ने भी हमारे दिमाग में डाली।

थोड़े मोटे हैं, लेकिन फिर भी आपको मोटापे से जुड़ी कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि आपका ये बॉडी टाइप बिल्कुल ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मोटापे के बाद अब हम आते हैं रंग पे। देखिए, रंग जो हमें दिया है वो भगवान ने दिया है, उसे हम नहीं बदल सकते हैं। और आप जो टीवी पर या फिर अलग अलग जगहों पर जो प्रचार देखते हैं अलग अलग तरह की क्रीमों का या फिर अलग अलग तरह की चीज़ों का, जो ये दावा करती है कि आपके नेचुरल रंग को, आपके प्राकृतिक रंग को वो बदल सकती है, तो वो बिल्कुल गलत है। वो आपको ठग रहे हैं, या फिर आपके शरीर में आपके चेहरे की मदद से बहुत सारे केमिकल्स ठूसे जा रहे हैं जो आपको आगे जाकर बहुत नुकसान पहुँचाने वाले हैं। तो ऐसे नुकसान से बचिए और आपकी जो नेचुरल स्किन है, जो भगवान ने आपको तोहफे में दिया है, उसे क्यों ना प्यार करें। और हमारे आसपास के लोगों को भी ये समझना होगा कि हर किसी का रंग एक जैसा नहीं हो सकता है ना। हर फूल एक रंग का हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और सिर्फ जो सफ़ेद फूल होते हैं वही खूबसूरत थोड़ी होते हैं, अलग अलग रंग के फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। ठीक उसी तरह से अलग अलग रंग का हर इंसान खूबसूरत है, बस उसके अंदर चमक होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो फिर आप चाहे गोरे हो, आप चाहे काले हो, आप सांवले हो, आपका चेहरा बिल्कुल डल हो जाएगा, आपके चेहरे की जो चमक है वो चली जाएगी। कुछ लोग सांवले होते हैं पर बहुत खूबसूरत दिखते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं पर उनके चेहरे पर चमक ही नहीं होती, वो आकर्षण ही नहीं होता है, क्योंकि उनके पेट में गड़बड़ी होती है। जी हाँ, अगर आपके पेट में गड़बड़ी है तो आपके चेहरे की चमक चली जाएगी, फिर आप गोरे हो काले हो मायने नहीं रखता है। तो खूबसूरत गोरा भी हो सकता है, खूबसूरत काला भी हो सकता है, खूबसूरत सांवला भी हो सकता है, बस आप अंदर से स्वस्थ होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में कही जा सकती है। इसके अलावा भी हम अपने चेहरे के अलग अलग फीचर्स को देखकर सोचते हैं कि मेरी नाक थोड़ी छोटी रह गई या फिर मेरी आंखें उतनी खूबसूरत नहीं है। आंखें देखने का काम करती है, आंखें आपको नज़रिया देती है, आंखें आपको समझाती है सच्चाई। तो फिर आंखें कैसी भी हो, काम तो वही है, आंखें स्वस्थ हो, बस इतनी ही बात काफ़ी है। और आपकी आंखें आपकी पहचान होती है, आपकी आंखें आपका जरिया होती है इस दुनिया को देखने की, बस इतना ही काफ़ी है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप अंदर से स्वस्थ हों तो आपकी खूबसूरती बहुत अच्छे से झलकेगी। आपका किरदार बेहतर हो तो लोग अपने आप आपके ओर आकर्षित होंगे, और आपका किरदार बढ़िया होगा तो अच्छे लोग ही आपकी ओर आकर्षित होंगे, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब देखिए, हमने बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात कर ली और ये भी कहा कि अगर आप मोटे हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर भी कह रहा है कि आपका वेट बिल्कुल ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मोटे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको आपका वजन कम करना चाहिए, तो ऐसे टाइम पर आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो बॉडी पॉजिटिविटी को फॉलो करना चाहिए, हम किसी को मोटा कैसे कह सकते हैं। ये गलत है, आपको स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको वेट कम करना चाहिए तो वेट कम कीजिए। और जैसे ही वेट कम करने वाली बात आती है, हम पहुंच जाते हैं फटाक से अपने खाने पर और अपने खाने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। और आजकल बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पूरे दिन नहीं खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, और इसे कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। और ये बहुत बहुत भयानक बीमारी होती है। मतलब इसमें जो बच्चियां हैं, जो युवा बच्चियां हैं या युवा बच्चे हैं, वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं। और आपको ये समझना होगा कि वजन कम करने का एक स्वस्थ तरीका हो सकता है और होता है। आप खाना अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, प्रॉपर मील लीजिए। ये नहीं कि सुबह का नाश्ता हम नहीं करेंगे या फिर रात का खाना हम नहीं खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से खाइए, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए या फिर अपने शरीर की भी बात सुन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ खा लेने पर भी मोटे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें उन्हें सूट नहीं करती है, तो उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। जी हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि आप अगर खाने के साथ कितना भी परहेज कर ले, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप किसी भी तरीके से स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ये सोचेंगे कि मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा और एक हफ्ते में ही हम अपना वेट लॉस कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक हफ्ते में अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो वो बहुत अनहेल्दी होगा और आपको बहुत तरह से नुकसान पहुंचाएगा। जो चीज़ें धीरे होती है वो खूबसूरत होती है, वो ज़्यादा हेल्दी होती है, इस बात का ध्यान रखें। और ध्यान रखें कि खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, लेकिन सारी चीज़ें लिमिट में होनी चाहिए और ख़ुद से बहुत प्यार करें। पता है, इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं। आईना हर सुबह, या फिर सुबह वैसे बहुत अच्छा होता है, बाकी अगर आपको जब भी वक्त मिले उस वक्त पे आप आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइए और ख़ुद की तारीफ़ कीजिए, खुद को पहले निहारिए और ख़ुद से प्यार कीजिए। देखिए, कुछ ही दिनों में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बढ़ जाएगा और आप खुद से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे।

0: और इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और कुछ पेजेस ऐसे हैं जो आपको कह रहे हैं कि आँखें ऐसी नहीं होनी चाहिए, बॉडी टाइप ऐसा नहीं होना चाहिए, और आपको वो बुरा फील करा रहे हैं, लो फील करा रहे हैं, तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि उस सोशल मीडिया पेज को एकदम ब्लॉक कर दीजिए। एक और बात कि ध्यान रखिए, सोशल मीडिया पे जो आजकल लोग फिल्टर्स लगा रहे हैं ना, वो भी रियल नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे नहीं होते हैं। आपके आसपास जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे हैं, तो अपने आसपास के लोगों को देखिए। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहा है, यानी कि अपने बॉडी में वो खुश नहीं है, वो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, बहुत सारे क्रीम्स अपने चेहरे पर लगा रहा है ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा निखर जाए, या फिर बहुत कम खा रहा है ताकि वो पतला हो जाए, तो उसे ये समझाइए कि भाई देखो, तुम्हारे जो चेहरे का रंग है वो नहीं बदल सकता है, बस उसमें चमक जा सकती है बहुत सारा पानी पीकर, हेल्दी खाना खाकर और एक्सरसाइज करके। और तुम अगर मोटे हो और फिर भी तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम अच्छे से दौड़ भाग पा रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो तुम मोटे नहीं हो, तुम्हारे शरीर का टाइप ही यही है। और अगर तुम पतले भी हो तो सेम वही चीज तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो उसे ज़रूर समझाइए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हालांकि ये जो परेशानी है लड़कियों में ज़्यादा देखी जाती है। तो चलिए आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद से ढेर सारा प्यार करेंगे, और एक और बात कि आप जहाँ भी थोड़ा भी वक्त बिताएंगे वहाँ के साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, इस बात का ध्यान रखें, और अपने और अपने अपनों से करें ढेर सारा प्यार और रखें अपना खूब ख्याल। नमस्कार, बने रहे हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु, और हर रोज़ की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं आप सभी के बीच। और जब यहां पर हम खेती की बात करते हैं तो सिंचाई का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और सिंचाई के महत्व को बताने, इसके फ़ायदे और सिंचाई से जुड़ी बहुत सारी बातें बताने के लिए आज हमारे बीच है सनोज कुमार, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि अभियंत्रण विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में। तो आज हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सिंचाई का महत्व क्या है।
2: आदरणीय किसान बंधुओं, जैसा कि पूछा गया है कि सिंचाई का महत्व क्या है, तो सिंचाई मतलब जल का, जब हम एप्लीकेशन करते हैं खेत में, जल को हम खेत में डालते हैं, बेसिकली तो जल एक अमूल्य और सीमित प्राकृतिक संपदा है जो कि प्रत्येक जीव के लिए अति आवश्यक है। जीव मतलब हम लोगों के लिए भी आवश्यक है, पौधों के लिए भी आवश्यक है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, जैसा कि सभी बंधु जानते हैं, 329 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से कृषि योग्य क्षेत्रफल सिर्फ 172 मिलियन हेक्टेयर है। कृषि के लिए जल एक महत्वपूर्ण निवेश है, और फसलों और फल वृक्षों के लिए जल उतना ही आवश्यक है जितना हमारी ज़िंदगी के लिए। और यदि फसलों को सही मात्रा में और सही समय पर पानी न मिले तो सूख जाएंगी, खराब हो जाएंगी, और देश के समग्र जल संसाधनों की 80% से अधिक जल कृषि के लिए खपत होती है, और देश की 1 अरब से अधिक आबादी को भरपेट भोजन और पोषण प्रदान करने के लिए उपयुक्त सिंचाई महत्वपूर्ण है। परंतु भरपूर प्रयासों के बावजूद भी केवल 5 से 6 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की व्यवस्था हो पाई है, जबकि कुल 13 से 14 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न फसलों का हम उगान कर रहे हैं। यानी लगभग 38 से 40% क्षेत्र की सिंचाई की जाती है, और बाकी के खेत को हम सिंचाई का काम सीधे कुदरत के भरोसे रखते हैं। वर्षा से वरानी क्षेत्रों में फसलें पर्याप्त उपज नहीं दे पाती हैं, और यदि सिंचाई के समस्त साधनों का पूरा उपयोग कर लिया जाए तो भी अधिक से अधिक 60% क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सकती है, यानी 40% क्षेत्र फिर भी असिंचित ही रह जाएगा। और पानी के विभिन्न उपयोगों के कारण इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ देश में सिंचाई के लिए पानी का कुशल उपयोग नहीं हो पा रहा है। जल उपयोग की कुशलता केवल 30 से 40% तक ही सीमित है, जितने भी हमारे आज के सिंचाई व्यवस्था जो किसान जनरली यूज कर रहे हैं। खेतों और बाग बगीचों में सीधे पानी लगाने वाली सतही सिंचाई विधि से बहुमूल्य पानी का 60% भाग तक किसी न किसी कारण से बर्बाद हो जाता है। इसलिए पानी की बर्बादी को रोका जाना चाहिए और यदि हम जल प्रबंध के वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाएं तो बहुमूल्य पानी के काफ़ी बचत हम कर सकते हैं।
3: जी, सिंचाई के फ़ायदे आपने कहीं ना कहीं बता ही दिए हैं, और हम सिंचाई सिस्टम को कैसे चुनें उसके बारे में थोड़ा बता दें।
2: देखिए, बेसिकली सिंचाई के फायदे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो उसी में ये भी बात हुई थी कि हम उसी के भरोसे हैं, जिससे कि पास्चर हो या क्रॉप हो, कोई भी घास या पौधा हो उससे ही हम उगाते हैं। इरिगेशन हमारे पास फैसिलिटी अगर रहता है तो हमारे पास पूरा खेत को संचालन करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हम कोई भी काम बड़ी आसानी से, बेसिकली सिंचाई का काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। फिर हम हाई क्वालिटी का, मतलब उच्च क्वालिटी का क्रॉप को उगा सकते हैं या घास वगैरह को उगा सकते हैं जब मर्जी है, सीजन जैसा, मतलब सीजन अगर अलाउ करे तो। फिर हम जो क्रॉप को उगाते हैं उसका सीजन को हम ग्रोइंग सीजन जो कहते हैं उसको हम बहुत बढ़ा सकते हैं। फिर सीजनल में इनवेरिएबिलिटी होती है कि कभी ख़राब मौसम आ गया तो अच्छा है, कभी अच्छा है तो ठीक है, अगर ख़राब आ गया, अगर हमारे पास सिंचाई की कोई फैसिलिटी है तो भी हम अपने खेत को बचा सकते हैं, अपने पौधों को बचा सकते हैं। और इवन कुछ ऐसी भी सिंचाई विधियाँ हैं जिससे कि हम फर्टिलाइज़र भी सीधे सीधे खेत में डाल सकते हैं। कुछ ऐसे एरिया को हम यूज कर सकते हैं जिसमें पहले कभी भी क्रॉप प्रोडक्शन या किसी पौधा को हम उत्पादन नहीं कर सकते थे, लेकिन सिंचाई के बाद हम उसके कर सकते हैं। साथ ही साथ मार्केट का इंसेंटिव भी है, कुछ अगर सिंचाई करेंगे तो ऑब्वियस है कि उसमें हमारा क्रॉप क्वालिटी अच्छा होगा। कैपिटल वैल्यू हमारा जो खेत है उसका बढ़ जाता है, पहले मार्केट में उसका कम दाम रहा होगा लेकिन सिंचाई की व्यवस्था कर देने से उसी खेत का दाम ज़्यादा हो जाएगा। साथ ही साथ लास्ट में हमको ग्रेटर सेविंग, मतलब सेविंग ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब होने के लिए ऑब्वियस है कि हमारे पास बहुत सारी सिंचाई विधियाँ हैं, तो हमको कौन से सिस्टम को चुनना चाहिए, इसको चुनने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ों को जानना पड़ता है हर एक सिंचाई विधि के लिए। पहला तो इक्विपमेंट की कौन से टूल्स या मशीनरी उसमें चाहिए, फिर अगर उस तरीके का सिंचाई बनाना है तो हमारा सिस्टम का डिजाइन कैसे करेंगे, फिर हमको ये भी देखना होगा कि प्लांट स्पीसीज क्या है, हम हर एक जगह पे ड्रिप या माइक्रो या स्प्रिंकलर तो लगा नहीं सकते हैं, है ना। ग्रोथ स्टेज कौन से में है क्रॉप का, फिर रूट का स्ट्रक्चर कैसा है, सोइल का कंपोजिशन कैसा है और लैंड का फॉर्मेशन कैसा है, इन सभी बातों को ध्यान में रख के ही हम किसी इरिगेशन सिस्टम का चुनाव करते हैं। और इरिगेशन सिस्टम बेसिकली करेगा क्या, हमारा ऐसा वो काम करना चाहिए कि साल्ट इम्बैलेंस अगर कुछ है, लीफ अगर पत्ती में बर्निंग हो रही हो या सॉइल का इरोजन हो रहा हो या वो पानी का नुकसान हो रहा हो, तो इन इस टाइप के जो भी चीज़ें हैं वो ना हो, इतना तो हमको इरिगेशन से ध्यान में रख के करना चाहिए।
3: जी, सिंचाई के अलग अलग मुख्य प्रकार के बारे में जानना चाहेंगे।
2: सिंचाई के अलग अलग प्रकार में बोले तो एक फरो सिस्टम होता है, फिर फ्लड और बॉर्डर चेक सिस्टम भी होता है, एक लेवल बेसिन सिस्टम होता है, यानी कि बेसिन बना करके लेकिन लेवल फील्ड पे, उसमें कोई स्लोप नहीं रखेंगे। फिर सेंटर पाइवोट स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, फिर जैसे कि इसमें क्या होगा कि एक सेंटर पाइवोट स्प्रिंकलर है, सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, एक सिंगल पाइपलाइन होता है, ए रो ऑफ मोबाइल टावर लगे रहेंगे और वो 2 से 4 मीटर जमीन से ऊपर टंगे रहते हैं, तो उससे भी ऊपर से जैसे ही वर्षा की तरह पानी गिरेगा तो इस वाले सिस्टम को बोलते हैं सेंटर पाइवोट स्प्रिंकलर सिस्टम। फिर एक होता है हैंड मूव स्प्रिंकलर सिस्टम, मतलब जैसे कि नाम से लग रहा है हाथ से ही हम इसको घुमा सकते हैं, हाथ से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लाइट वेट होगा, पाइपलाइन सेक्शन भी उसके हल्के होंगे और मैनुअली हम इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और सक्सेसिव इरिगेशन छोटा खेत हो तो बड़े आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद एक आएगा सॉलिड सेट एंड फिक्स्ड स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसमें बहुत सारे उसके कंपोनेंट जो होंगे वो सब ज़मीन के अंदर फिक्स रहेंगे और उसको हम बार बार बाहर नहीं निकालना है। फिर एक ट्रेवलिंग गन स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, ये इसमें एक लार्ज स्प्रिंकलर रहेगा जो कि एक ट्रेलर पे माउंटेड रहेगा, रबर होस लगे होंगे उसमें से स्प्रिंकलर अपना काम करेगा। फिर एक हो सकता है साइड रोल व्हील मूव सिस्टम, या दूसरा हो सकता है लीनियर और लैटरल मूव सिस्टम, फिर एक है लो फ्लो इरिगेशन सिस्टम, इस तरीके से बहुत सारे सिंचाई के साधन विधियां हैं आज के डेट में।
3: यहाँ पर अब हम बात करते हैं जब कम सिंचाई होती है या ज़्यादा सिंचाई हो जाती है तो इस में क्या नुकसान होता है?
2: अगर अंडर वाटरिंग हो गया है तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा इल्ड का जो होना था, जो उत्पादन होना था, वो घट जाएगा और हमारा मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई फ्रूट है तो फ्रूट का साइज घट जाएगा, उसका क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। वहीं दूसरी बात, अगर हमने ओवर वाटर कर दिया है, मतलब ज़्यादा पानी डाल दिया है, तो जो ज़रूरत नहीं है वेजिटेशन वो भी ग्रोथ वहाँ किया रहेगा, अनवांटेड वेजिटेटिव ग्रोथ होगा। फिर हमारा जो वाटर टेबल जो लगातार नीचे जाएगा, क्योंकि हमने नीचे से पानी ऊपर लाया है और सिर्फ वाटरिंग करने के लिए ही, तो लॉस होगा हमारा ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल पानी का, और उसकी वजह से हमारा वाटर टेबल लगातार नीचे जाएगा, चूँकि हमने कम पानी की ज़रूरत थी और ज़्यादा पानी डाल दिया। अगर लैंड स्लोपी रहा तो वहाँ पे इरोजन हो सकता है, मिट्टी का कटाव हो सकता है। फिर पेस्टिसाइड हैं, पैथोजेन हैं, एंड जो वीड्स होते हैं वो ज़्यादा पानी डालेंगे तो ज़्यादा एरिया में वो सब फैलेंगे, फिर रन ऑफ होगा जो कि इरोजन के साथ होना है। फिर ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा, चूँकि हमारे को ज़्यादा समय तक पंपिंग करना पड़ा तो हमको ज़्यादा लेबर रखना पड़ेगा, फिर कॉस्ट ऑफ वाटर ऑब्वियसली वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ हमको लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, जो हमने न्यूट्रिएंट खेत में डाल दिया है वो लीच होने में, उसमें भी एक प्रॉब्लम आएगा। फिर डाउनग्रेडेड प्रोडक्ट क्वालिटी होगा, और साथ ही साथ रिड्यूस्ड यील्ड, जो ऐसा नहीं है कि यील्ड हमारा बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा पानी डाल देने से। फिर इसी लास्ट में क्या होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका रहेगा, और इसकी वजह से साथ ही साथ हमारा जो वाटर का रिजर्व है, हमारा वाटर जो रिसोर्स है, उस पर भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि हमने जहाँ कम पानी की ज़रूरत थी उसी वाटर रिसोर्स में से ज़्यादा पानी निकाल लिया है। अब अगले सीजन के समय उस वाटर रिसोर्स में उतना पानी नहीं रहेगा कि हम अपना सिंचाई।
3: बिहार के संबंध में सूक्ष्म सिंचाई योजना के महत्व के बारे में थोड़ा बताएं।
2: बिहार राज्य में सूक्ष्म सिंचाई योजना को वर्ष 2006-07 में लागू किया गया था, परंतु योजना में वर्ष 2009-10 तक अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई थी, और वर्ष 2010-11 और 11-12 में योजना ने कुछ रफ्तार पकड़ी थी शुरुआत में, और लगातार किसानों का योजना के प्रति आकर्षण तब से बढ़ ही रहा है। वर्ष 2010 के मध्य अर्थात जुलाई 2010 से भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई योजना को कुछ परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में लागू किया गया, और ये बिहार राज्य में यह मिशन 1 अप्रैल 2011 से लागू है। जैसा कि आपको पता है, बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, यद्यपि उत्तरी बिहार में जल की प्रचुरता है, और इसके विपरीत गंगा के दक्षिण में अर्थात दक्षिणी बिहार में सिंचाई जल के साथ साथ पीने के पानी की भी कमी है। साथ ही इसी को ध्यान में रखकर और खेती में सिंचाई के महत्व को समझते हुए राज्य सरकार ने सिंचाई हेतु राज्य में एक अलग विद्युत फीडर बनाने का निर्णय किया था। विद्युत आपूर्ति कम होने के कारण सिंचाई की इकाई लागत व्यय अन्य राज्यों की तुलना में प्रति हेक्टेयर अधिक हो जाती है, और किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपनाकर जल के अपव्यय को रोका जा सकता है, साथ ही उत्पादन लागत में भी कमी की जा सकती है। यह मिशन सिंचाई जल की उपयोगिता, दक्षता और उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। उत्पादन में वृद्धि की दिशा में केंद्र प्रायोजित सूक्ष्म सिंचाई योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य में भी वर्ष 2006-07 से किया जा रहा है। जैसा कि पहले मैंने बताया था, सिंचित कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के आने से सिंचाई विकास की समुचित प्रक्रिया एक प्रौद्योगिक जटिलता के दौर से गुजर रही है। अच्छा, जल प्रबंधन से जल आपूर्ति में अवधारणात्मक बदलाव के साथ साथ जन शक्ति का व्यवस्थित नियोजन और विकास भी आवश्यक है, ताकि पानी का ठीक इस्तेमाल हो सके। साथ ही सदियों पुराने नियमों और पद्धतियों को भी बदलना जरूरी है, ताकि वे आज की प्रौद्योगिकी और सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। अतः एक ऐसी प्रभावशाली प्रबंध नीति सिंचाई जल के लिए जरूरी है, जिससे उपरोक्त आधारों पर क्रियान्वयन संबंधी कार्यों में मदद मिल सके, ताकि उपलब्ध जल संसाधनों से खेती की पैदावार बढ़ाई जा सके।
3: एक अच्छी सिंचाई प्रबंध नीति के कौन कौन से परिणाम आने चाहिए?
2: जहाँ तक एक अच्छी सिंचाई प्रबंध नीति की बात है, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम जरूर होने चाहिए। जैसे कि जहाँ जल की सुलभता सीमित हो, वहाँ प्रति जल इकाई से अधिकतम खेतिहर पैदावार हो, उत्पादन बढ़े। दूसरा है कि जहाँ भूमि की सुलभता सीमित हो, वहाँ प्रति भूमि इकाई में हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। यानी कि जहाँ जल की कमी हो तो हम जल कम जल में ज़्यादा उत्पादन करें, जहाँ भूमि कम हो तो वहाँ कम भूमि में ज़्यादा उत्पादन करें। बड़े तीसरा हो सकता है बड़े और छोटे किसानों के बीच, अग्रणी और निम्न स्तरीय उपयोगकर्ताओं के बीच जल का समतापूर्ण बंटवारा हो। चौथा हो सकता है उत्पादकता के नुकसान के बगैर अस्थायी सिंचाई कर सकें एक व्यवस्था। सामान्यतः इसका अर्थ भूजल का जो टेबल है को अस्थायी रूप से बनाए रखने से, यानी कि वाटर टेबल है जो ज़मीन के अंदर, उसको हमको ट्राई करना होगा कि उसको बनाए रखें, वो नीचे ना जाए। सिंचाई करने वालों को लाभ जिनमें सही समय पर उचित मात्रा में और उचित अवधि के लिए पानी की उपलब्ध होना भी शामिल है, और साथ ही साथ आर्थिक रूप से व्यवहारिक तथा पर्यावरण अनुकूल परियोजनाएँ बनाई जानी चाहिए, और सूखा संभावित क्षेत्रों में आपूर्ति क्षेत्र का अधिकतम विस्तार होना चाहिए, इस तरीके के सिंचाई नीतियों का।
3: जी, अगर जल का कुशल उपयोग करना हो तो कैसे करेंगे?
2: जल का कुशल प्रयोग की जहाँ तक बात है तो इन्हें पूरा करने के लिए निम्नलिखित कुछ मुख्य बिंदु हैं या निम्न बिंदु हैं, कुछ उस पर हम बात करना चाहेंगे। इस क्षेत्र में लोगों के बीच प्रशिक्षण ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और जहाँ तक संभव हो अनुसंधान भी होने चाहिए। प्रमुख प्रणाली का फिर बेहतर संचालन कैसे करें, प्रबंध कैसे करें, उसका अनुरक्षण कैसे करें। बुनियादी तौर पर इसके लिए संचालन और अनुरक्षण की पूर्व निर्धारित योजना के जरिए प्रमुख प्रणाली का उचित अनुरक्षण कैसे करें, कुशल संचालन कैसे करें ताकि फसल उगाने के नाजुक चरणों में कम से कम फसल की मांग को हम पूरा कर सकें। फिर हो सकता है स्व प्रबंधित प्रणाली के चरणबद्ध विकास की नीति जो तीसरे स्तर से नीचे होगी। फिर हो सकता है सिंचाई के क्षेत्र में वांछित संगठनात्मक और कार्य पद्धति विषयक परिवर्तन जो अंतर क्षेत्रीय संपर्क व समन्वय, सिंचाई विभागों के पुनर्गठन, वैधानिक सहायता, कार्मिक प्रबंध आदि को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, और साथ ही साथ सरकारी एजेंसियों की प्रमुख प्रणाली और अर्ध तृतीय प्रणाली की जल उपयोगकर्ता संस्था दोनों ही के द्वारा प्रबंध की ऐसी व्यवस्था करना जिसमें वित्त पोषण की व्यवस्था निहित हो। साथ ही साथ फसलों के सिंचाई में जल उपयोग की कुशलता बढ़ाने का एक बेहद महत्वपूर्ण और कारगर तरीका है टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई, जिसे सूक्ष्म सिंचाई या माइक्रो इरीगेशन सिस्टम भी कहते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली में आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधे के जड़ क्षेत्र में छोड़ देते हैं, जिससे कि पानी की बर्बादी नहीं होती है, और इस प्रणाली से पानी की 40-60% तक की बचत हो जाती है। और इस महत्वपूर्ण बचत के कई कारण हैं। दरअसल जब खेतों या बाग बगीचों में परंपरागत ढंग से सीधे पानी लगा दिया जाता है तो भूमि पर खड़े पानी की काफ़ी मात्रा रिस कर धरती में वापस चली जाती है। कच्ची नालियों में बहता पानी भी रिसाव द्वारा धरती में समा जाता है। ड्रिप सिंचाई को लगभग सभी फसलों में लगाया जा सकता है, परंतु बागवानी फसलों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। भांति भांति के फूलों, फलों, मसाले, औषधीय व सुगंधित पौधों व सब्जियों की खेती में ड्रिप प्रणाली अपनी सिद्ध कर चुकी है, इसलिए बागवानी फसलों में इस प्रणाली की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
3: जी, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से क्या कुछ लाभ हो सकता है, इसके बारे में बताएं।
2: इस पद्धति द्वारा पानी को केवल पेड़ों के जड़ों में ही वितरण या अतः पानी के निश्चित बचत होती है, जिसके द्वारा अधिक क्षेत्र में खेती संभव है, क्योंकि हम खेत में पानी सिर्फ जड़ तक ही जाने देते हैं, उससे नीचे पानी नहीं जाने देते हैं, तो हमारा पानी का बचत होता है। उपज समय से जल्दी या एकदम समय पर प्राप्त हो जाता है। पानी देने के लिए नालियाँ बनाने की आवश्यकता हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे बगैर मतलब किसी प्रकार के नाली बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए श्रम से भी बचत होती है। पोषक तत्वों, पानी और हवा का पौधों की जड़ों में समुचित सम्मिश्रण संभव है, अतः पैदावार तथा पैदावार की गुणवत्ता में अति विश्वसनीय वृद्धि हो जाती है। केवल जड़ों को ही पानी देने से खरपतवार नियंत्रण होता है, अतः खरपतवार की समस्या भी इसमें नहीं होती है, क्योंकि पानी हमने कहीं दिया नहीं है, सिंचाई सिर्फ जड़ के पास दिया होता है, इसलिए खरपतवार भी पूरे खेत में कहीं भी नहीं उगता है, सिर्फ जड़ के पास, और उसको हम लोग बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रिप सिस्टम द्वारा पौधों की जड़ों में ही खाद का एक सा वितरण कर सकते हैं, क्योंकि फर्टिगेशन संभव है, अतः इसमें रसायन की बचत भी हो सकती है। लवणीय भूमि में भी खेती को हम संभव कर सकते हैं, सिंचाई के लिए लवणीय जल को हम उपयोगी बना सकते हैं। इस सिंचाई से यदि खेत समतल नहीं है तब भी, अर्थात उबड़ खाबड़ है तब भी, पौधों की सिंचाई भली प्रकार से कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मृदा में सिंचाई, और सिंचाई के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, इसके फ़ायदे, सिंचाई सिस्टम को आप कैसे चुनेंगे, सूक्ष्म सिंचाई क्या होता है, और भी बहुत सारी बातें। तो आशा करते हैं कि आज का ये वार्ता आप सभी के लिए बिल्कुल लाभदायक होगा, और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम। नमस्कार। उन्नत कृषि
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
5: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
5: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
5: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो, आओ।
8: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
9: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
8: हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
9: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
10: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
11: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
10: क्या क्या क्या?
9: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
10: अच्छा,
11: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं स्वान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज और ये है आपका अपना पसंदीदा FM ग्रीन। तो हर रोज़ उन्नत कृषि की बातें होती हैं, उन्नत बातें होती हैं खेती बाड़ी की, और साथ ही हमारे पशुपालक भाइयों के लिए भी हम कुछ अलग सी बातें लेते हैं। और अगर मछली पालन का शौक है और आप उसे आय का जरिया बना रहे हैं तो आपके लिए आज एक खास विषय हम लेकर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपके लिए ही है, समेकित मत्स्य पालन। आज मछली पालन के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और इस खास विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर MZ होदा सर। और मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पशु विज्ञान विभाग में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय से हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे।
2: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं, अभी थोड़ी क्रिएटिविटी उनकी माइंड हो रही है कि चलो मछली पाला जाए, देखते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि मछली पालन हम क्यों करें, क्यों ज़रूरी है ये?
2: देखिए, मछली पालन खास करके कोविड के बाद से हमारे जो पढ़े लिखे युवा छोटे छोटे नौकरियाँ बाहर करते थे और उनकी सारी नौकरियाँ छूट गई हैं, उसमें रोजाना हमको लगता है 3-4-5 इंजीनियर्स कैटेगरी के लोग और बड़े प्रोफेशनल्स अच्छे लोग आ रहे हैं जिनके पास जमीन काफ़ी है लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और वो सीधे हमसे मत्स्य पालन के बारे में जानकारी हासिल करने आ रहे हैं और उसको बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। मत्स्य पालन एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत ही कम समय में और बहुत कम समय में वो तकनीकी जानकारियां प्राप्त करके अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं। मत्स्य पालन खास करके हमारे बहुत सारे किसान हैं, मत्स्य पालन अगर आप करते हैं तो ये ध्यान रखें कि आप भटके नहीं। बहुत हम देखते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं तेलापिया पालना है, पेंगीशियस पालना है और ये बहुत सारी अलग अलग टाइप की बातें करते हैं। मैं उनको ये सलाह दूंगा कि कभी भी आप जो हमारी जो 6 मेजर कार्प हैं, रोहू, कतला, नैनी, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, इन मछलियों का पालन आप सबसे पहले करें और जब इसमें आपको दक्षता मिल जाए उसके बाद आप दूसरा पालन करें। मछली पालन क्यों करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मछली पालन के लिए सबसे बड़ी बात है कि इसके मार्केट की खोज की आवश्यकता नहीं होती है। आप जिस वक्त ताज़ी मछलियाँ मारेंगे वहीं पर मार्केट अवेलेबल है और लोग आपके यहाँ से ही ले जाते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। मार्केट प्रॉब्लम इसमें ज़रा सा भी नहीं है और बहुत ही कम लागत में हम बहुत अच्छी आमदनी, जो साधारणतया 1 एकड़ के फसल में हम लोग पूरे साल फसल चक्र को अपनाते हैं तो इससे 30 से 35 हज़ार रुपए की शुद्ध आमदनी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग 1 एकड़ मत्स्य पालन करते हैं तो कम से कम हम 1,65,000 से 1.25 लाख रुपए तक की शुद्ध आमदनी करते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि यो युवा जिनके पास मछली पालन के साधन उपलब्ध हैं और वो कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर लोग लीज पर भी ज़मीन लेकर के मत्स्य पालन कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, और हम लोग बहुत भागलपुर और एक बांका हमारा क्षेत्र है, बहुत ही अच्छा हम लोग यहाँ पर रिजल्ट दे रहे हैं।
0: तो श्रोताओं, आपने जाना अभी कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि कम लागत में आप अधिक मुनाफा पा सकते हैं, पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए इसके बारे में तो यहाँ पर आप जो है पूछ सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर से में आकर हमारे होदा सर से मिलके। सर, अब बात करते हैं तालाब निर्माण की। ये बहुत ज़रूरी है तालाब निर्माण के हम बारे में जाने, क्योंकि मछलियों को इन्हीं में रखना है हमें, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें तालाब निर्माण के दौरान?
2: किसान भाइयों, मत्स्य पालन आप 2-3 जगहों पर करते हैं साधारणतः, या तो आपके पास पहले से निर्मित तालाब होता है। हमारे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो नए तालाब का निर्माण करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मन या चौड़ में मछली पालन करते हैं। तीनों जगह पर आपको अलग अलग सावधानी बरतनी होगी। देखिए, आपके पास अगर पुराना तालाब है तो आप सबसे पहले, अगर संभव है कि आप उसकी जल निकासी कर सकते हैं तो बिल्कुल जल निकासी को करें। हमारा किसान सबसे बड़े प्रॉब्लम में ये होता है कि वो तो मछली पाल लेता है लेकिन उसको हार्वेस्ट नहीं कर पाता, उसको निकाल नहीं पाता। उसके पीछे बेसिक रीज़न है कि वो अपने कभी अपने तालाब की तलहटी को नहीं देखा है। कहीं ऊंचा होता है किसी की तलहटी, किसी कहीं नीची होती है। जब आप जाल देते हैं तो मछलियां एक साइड से दूसरे साइड निकल जाती हैं, आप हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं मछली रहते हुए भी। तो हमारा ये बिल्कुल सलाह होगा, जब आप पुरानी तालाब में सीधा मछली पालन करना चाहते हैं तो कभी भी आँख बंद करके उसमें जितनी मछलियाँ हैं सबसे पहले आप सारी मछलियों को हटा लें, संभव हो उस पानी को खाली करें और देखें कि तालाब की तलहटी कैसी है। मछली पालन के लिए मात्र हमको 1.5 मीटर पानी की आवश्यकता होती है, इससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता हमें नहीं है। तो आप देख लें कि कितने लेवल पर आप 1.5 मीटर पानी का ये स्थान कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, वो ज़रूरी है। तो उसके अंदर अगल बगल बड़े बड़े पौधे हों तालाब के ऊपर तो उसको आप हटा दें। पूरी सूरज की रोशनी उसमें प्रॉपर जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था आप करें। तीसरा, जब अगर नव निर्माण आप तालाब का कर रहे हैं तो आप ध्यान दें कि तालाब की लंबाई जो है पूर्व और पश्चिम दिशा में, ये अगर होता है ना तो उसमें आप हमेशा देखते होंगे कि हवा या तो पूर्व से चलती है या पश्चिम से चलती है, तो एक लंबा सरफेस एरिया मिल जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए हमारे तालाबों में, और उसमें जो है हवा का घुलन आसानी से होता है। तो हमेशा आप कोशिश करें कि रेक्टेंगल शेप में, किताब के शेप में आप अपने तालाबों का निर्माण करें, और तालाब का निर्माण बिल्कुल गड्ढे नुमा ना करें। देखिए, आप तालाब को बिल्कुल एक कोण को आप जो है बिल्कुल एक कोण के रूप में करें, बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शेप में कर्व के रूप में होना चाहिए तलहटी से ऊपर की तरफ, जिससे कटाव ना हो। मछली मारने में आप एक तरफ से अगर जाल लेके चलते हैं, अगर ढलान ढल साइड जो है उसका ढाल नुमा होता है तो मछली को मारते वक्त आपको बड़ी सावधानी होती है, आसानी होती है। आप बिल्कुल एक तरफ से चलते जाएंगे और सारी मछलियाँ आपकी एक तरफ आ जाएंगी। ये तालाब, अब आपने नया तालाब निर्माण किया तो आप हमको सबसे पहले क्या करना है, हमारे किसान क्या करते हैं तालाब में पानी भरे और सीधे उसमें जो है मछली को ला के डाल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप तालाब का निर्माण कर लेते हैं और उसके बंड को अच्छे से बनाएं, जो भिंडा होता है उसका बहुत उपयोगिता है। दो तरीके से नया तालाब बनता है, अगर आपके यहाँ पर पानी ठहरने का आपके यहाँ पर बहुत अच्छा प्रबंध है और अच्छी ज़मीन है जहाँ पानी ठहरता हो, तो आप ये 5.5 मीटर के जो हम कहे थे आपको कि लगभग 1.5 मीटर 5.5-6 फीट के आसपास का जो पानी होता है, तो इसमें आप बंड में भी आधा साइज आप ले सकते हैं। जब आप 3 फीट गड्ढा करेंगे और 3 फीट जब एम्बैकमेंट को ऊंचा करेंगे तो उससे भी आपका तालाब निर्माण हो सकता है वैसी जगहों पर जहाँ पर पानी ठहरता हो, अच्छा होता हो। तो उसके बाद आप जब तालाब कर लेते हैं तो आप क्या करें कि उसमें 3-4 kg आप DAP को चारों तरफ छींट दें, 20-25 kg चूना आप उसको घोल बनाकर उसमें छींट दें, 3-4 kg यूरिया छींट दें और उसके बाद उसमें पानी को भरें। गोबर हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो पूरा डाल देते हैं तालाब में, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ पर किनारे पर जहाँ पर पानी सटता होगा वहाँ पर 3-4 जगहों पर आप आधा आधा टेलर गोबर गिरा दें, धीरे धीरे वो सीपेज करके फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन बनाता जाएगा और उससे 10-15 दिनों के बाद आप वहाँ आसानी से मछलियों को डालें, आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा।
0: जी, तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है तालाब निर्माण के समय। सर, अब बात करते कि अगर हम 1 एकड़ के तालाब की बात करें और इसमें कितनी संख्या में हमको मछली डालनी चाहिए।
2: देखिए किसान भाई, मछली का बीज हमेशा नहीं मिलता है, ये हमको जो भी हमारे सबसे अच्छे मत्स्य पालक है उसको ये बात समझ लेनी होगी। अप्रैल माह के अंत से आपको अगस्त के मिड तक ही हमारा जो 6 इंडिजिनस और एग्जोटिक कार्प हैं जो वो उनका बच्चा तैयार होता है। जो हमारे अच्छे मत्स्य पालक हैं वो एक छोटा सा अलग से तालाब रखते हैं और वहाँ पर जीरा का संचय करते हैं, जिससे कि 6 महीना में अगर आप अच्छी तरीके से भोजन करते हैं तो मछली आपको 1-1.5 kg के आसपास हो जाती है। उस वक्त आपको बीज मिलता नहीं है, तो पुनः जो आपने बीज संरक्षित किया है उस बीज का इस्तेमाल करके फिर आप 6 महीने को यूटिलाइज कर लेते हैं। देखिए, हम एक आज बहुत ही की पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। जो भी हमारे किसान भाई हैं जो मत्स्य पालक हैं, आप कोशिश ये करें कि बीज की संरक्षण, बीज का बचाव आप करना अगर सीख जाएंगे तो मत्स्य पालन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपके पास अगर छोटा तालाब है तो कृषि विज्ञान केंद्र सबौर भागलपुर में हम लोग जीरा भी देते हैं, अंगुलिका भी देते हैं और हम लोग फ्राई भी देते हैं, जो हमारे आजकल हम लोग इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि जो हमारे मत्स्य पालक है, कम से कम जिनके पास दो तीन की संख्या में तालाब है, एक तालाब में वो जीरा से फ्राई और फिंगरलिंग अंगुलिका बनाने की प्रक्रिया को सीख लें। इससे दोहरा लाभ है। दो समय जीरे का डिमांड बहुत अधिक होता है। पहला, जो आप मार्च के आसपास काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, हमको मछली का बच्चा चाहिए, मछली का बच्चा चाहिए, उस वक्त कहीं बन नहीं रहा होता है। और दूसरा, अगस्त के बाद। ये दो समय बहुत ही बड़ा समय होता है जहां बीज की स्कार्सिटी होती है। तो आपके पास जो बीज संरक्षित रहेगा तो आप मार्च में भी जीरा को बेच सकते हैं। और हम आपको बता दें कि जितना आमदनी आप मछली उत्पादन करके एक एक करके तालाब में नहीं ले सकते हैं, अंगुलिका का संरक्षण करके आप ले सकते हैं। पहला, अब बताइए एक एकड़ की तालाब है, अब डिपेंड करता है कि आप किस अवस्था की मछलियों को डालते हैं। जिसको फ्राई हम लोग कहते हैं वो एक इंच के आसपास का होता है, तो एक एकड़ के तालाब में वो 10,000 की संख्या में हम लोग फ्राई को डालते हैं। जब हमारी मछलियों का साइज एक इंच का मिले हमें तो हम लोग एक एकड़ के तालाब में 10,000, और जब हमको 3 इंच अंगुलिका जब अगर हम डालते हैं तो वो 4,000 डालते हैं। और इसकी भी मात्रा सीमित है। देखिए, जो हमारा जो 6 मेजर कार्प है, जो हमारा रोहू है, सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प है, कतला है, मिरिगल है, ये जो हमारी जो मछलियाँ हैं उसमें जो कतला और सिल्वर कार्प है ऊपरी सतहों पर भोजन करती हैं। दूसरा, जो रोहू और ग्रास कार्प है वो तालाब के मध्य सतह पर भोजन करती है। और तीसरा, जो कॉमन कार्प और मिरिगल है ये तालाब की निचली सतह से भोजन लेती है। तो आप ये जान ले कि अगर 100 मछली आपको अगर डालनी है तो उसका 30% आप कतला और सिल्वर कार्प डालें, 30% आप रोहू ग्रास कार्प डालें, और 40% जो है आप डालें कॉमन कार्प और मिरिका। अगर इस संख्या में आप अगर आप देते हैं मछलियों को, साधारणतः हमारे ग्रामीण परिवेश में किसानों के दिमाग में एक भ्रम है कि जितनी ज़्यादा संख्या में हम मछलियों का बच्चा डालेंगे उत्पादन उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन इसके उल्टा रिजल्ट देखने को मिलता है। 6 महीने बाद 8 महीने बाद किसान आते हैं, सर हमारे तालाब में नहीं बढ़ रहा है मछलियाँ, तो कैसे होगा? एक तो हम लोग आहार प्रबंधन नहीं जानते हैं, संख्या बहुत बढ़ा के रखी है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, खाना नहीं देते हैं, और पूरा साल आपका वेस्ट हो जाता है। तो ये मछलियों की जो मात्रा है इसको सीमित करना नहीं करिएगा तो आप मछली में जो उत्पादकता है नहीं ले सकते हैं।
0: जी सर, अभी आपने कहा कि आहार प्रबंधन हमें मालूम नहीं होता है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दो।
2: देखिए किसान भाइयों, हम लोग ग्रामीण परिवेश में मछली को तालाब में डाल के सिर्फ मछली को निकालने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वहाँ से हमको बड़ी बड़ी मछलियाँ मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। मछलियों के उसके वजन का 2% भोजन प्रत्येक दिन चाहिए होता है। जिस दिन आपने, मैंने 4,000 संख्या आपको बताया कि एक एकड़ के तालाब में अंगुलिका को डालना है, और एक अंगुलिका का दाम 20 ग्राम होता है, और 4,000 से 20 ग्राम को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना कर लीजिए, जो टोटल वजन आएगा उसका 2% ही भोजन देना। और मछलियों का भोजन बहुत आसान है। मछलियों का भोजन सरसों की खल्ली होती है, राइस ब्रान होता है जो हर जगह अवेलेबल होता है। आप कोशिश करें कि इसका बराबर मात्रा में आप एक पैकेट बना लें जूट के बोरे में 10-10 किलो। देखिए मैं एक नटसेल में आपको फार्मूला बता देता हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। 10 किलो आपका अगर एक एकड़ का तालाब है तो 10 किलो खल्ली, 10 किलो राइस ब्रान और 50 से 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर, एग्रीमीन फोर्ट, बहुत सारे खनिज मिश्रण मिलते हैं। इसको आप एक जूट के बोरे में भर दें, इसको हल्का सा भिंगो दें और जूट के बोरे में नीचे से छोटा सा छेद कर दें, और अपने तालाब के एक किनारे पर कमर भर पानी में एक बांस गाड़ के, तालाब में दो जगहों पर ऐसा करके बांस गाड़ के आधा जूट का बोरा को पानी में डुबा दीजिए और नीचे से देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सारी तालाब की मछलियाँ वहीं आकर भोजन करेंगी, और जब कभी वो खाली हो जाए आप जो है उसमें पुनः उसको भर दें। ये एकदम साधारण तरीका है। एक बात हमको ध्यान देनी है यहाँ पर, जब कभी पानी का रंग भूरा हो जाए तो आप ये समझेंगे कि वो उसमें संख्या बहुत खाने की ज़्यादा हो गई है, खाने की अधिकता हो गई है, आप उस समय कुछ समय के लिए भोजन देना बंद कर दीजिए। फिर जब पानी सामान्य कलर का हो जाए तो आप उसमें पुनः जो है ये करें। तो आपको हम समझते हैं कि, और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना है कि कोशिश करिए कि आप 3 महीना पला हुआ, 4 महीना पला हुआ बच्चा कहीं से भी खरीदें, या आपने आप छोटे तालाब में उसको बनाएं, वो खरीद करके जब आप बड़े तालाब में डालते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। देखिए हमारा जो भागलपुर का एरिया है, चानन का एरिया है, और हमारे जो कोसी के एरिया है, हमारा जो किसान है सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि हम एक चीज़ के लिए ताकीद करना चाहेंगे आपको कि जब आप नदी से बीज लेते हैं तो सीधा नदी से बीज लेकर आप सीधे कभी भी अपने तालाबों में नहीं डालें। ऐसा करना आपको अब दुर्भाग्य को निमंत्रण देना होता है, क्योंकि गंगा में जो बीज होती है, नदियों से जो बीज प्राप्त होते हैं, उसमें बहुत सारे बुआरी होती हैं, बहुत सारी मागुर जो हमारी कैटफिश होती हैं, और बहुत सारी ऐसी मछलियां होती हैं जिसका संचय हमें तालाब में बिल्कुल नहीं करनी है। वो एक तरह से कहिए मांसाहारी मछलियाँ होती हैं, अगर उनको तालाब में खाना नहीं मिलेगा तो अपने से छोटे मछलियों को वो खाना शुरू कर देती है। इससे क्या होगा कि जब 5 बुआरी आपके तालाब में आ गया, और एक बुआरी को उसके वजन का लगभग 3 गुना भोजन प्रत्येक दिन चाहिए होता है, अगर 5 बुआरी किसी ने आपको डाल दिया, आपने गलती से उसमें डाल दिया, तो आपने जो मछली पालना है वो सारी मछलियों को खा करके आपको बहुत बड़ी आर्थिक हानि देगा। जीरा संचय नदियों से करें, मैं इसको इसके फेवर में हूँ, लेकिन जब कभी भी आप जीरा या मछली का बच्चा का संचय बाहर से करते हैं तो उसको ला करके एक छोटे से गड्ढे में रखें, और वहाँ से उसको निकाल कर रोहू, कतला, नैनी, ग्रास कार्प जो मैंने संख्या बताई है उसको गिन कर अगर आप डालेंगे तो हम आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और मछली पालन में मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से 6 महीने में आप अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं।
0: तो ये सारी बातें जो है विस्तार में डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं, आशा करते हैं कि आपको ज़रूर कुछ जानने को मिला होगा। क्या आपको नहीं करना है, क्या करना है, वो भी आपको ज़रूर मालूम चल गया होगा। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले दिन अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
1: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
8: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
7: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
9: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a a wise request, protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
10: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
11: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
11: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुँच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करे और ध्यान दे के स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं स्वान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं हूँ आरजे अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, बहुत सारी बातें खेती बाड़ी से जुड़ी हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद होंगी, तो उन सारी बातों को हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए। तो आज जो हम एक खास विषय लेकर आए हैं, जी हाँ, पार्थेनियम के बारे में हम जानेंगे। और उसमें भी सबसे पहले हम आपको विषय बता देते हैं, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में पार्थेनियम का उपयोग, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर AK जाम। मैं आपको बता दूँ, ये मृदा वैज्ञानिक हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बता दें कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है।
2: ऐसा है कि सबसे पहले मैं बताऊं कि वर्मी कंपोस्ट, जैसा कि नाम ही है, वर्म के द्वारा बनाया गया कंपोस्ट, यानी एक खास प्रकार का कंपोस्ट है जो कि केचुआ की सहायता से बनाया जाता है।
0: जी,
2: बहुत सारी चीजें हम से बना सकते हैं, गोबर से बना सकते हैं या गोबर पुआल के मिक्सर से बना सकते हैं, वाटर हाइसिंथ यानी जिसको जलकुंभी कहते हैं, जलकुंभी और गोबर के मिश्रण से भी बना सकते हैं, पार्थेनियम से भी बना सकते हैं, यानी हम जिस चीज से भी बनाएं, लेकिन केचुआ की इसमें सहभागिता होती है। केचुआ इसे खाता है और अपने शरीर से निकालता है एक कास्ट, चाय की पत्ती जैसी संरचना। तो उसी चाय जैसी जो पत्ती जैसी संरचना है, उसी को आप वर्मी कंपोस्ट कहते हैं।
0: जी, तो ये तो बातें हो गई वर्मी कंपोस्ट की, और अब हम बात करते हैं पार्थेनियम की। तो सर, इसका जो पोषक मान्य है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
2: देखिए, पार्थेनियम तो एक खरपतवार है जो बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए भी, सब जगह। यदि वो बीज बन जाता है तो इतनी संख्या में उसका बीज बनता है कि वह फसलों के लिए या दूसरे जगह भी बहुत बड़ी समस्या हो गई हुई है।
0: अच्छा,
2: अब यह है कि यदि हम इसको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो निश्चित रूप में मुझे जानना होगा कि इसमें पोषक मान क्या है।
0: अच्छा,
2: यदि हम पार्थेनियम को देखें तो इसमें लगभग 2.5% नाइट्रोजन पाया जाता है, फॉस्फोरस भी 0.44% यानी 0.5% के आसपास इसमें फॉस्फोरस पाया जाता है, पोटास भी 0.25% के आसपास, 1.2-3% जो यहां जांच किया था तो 1.2-3% इसमें पोटास पाया गया, जस्ता भी 13.9 ppm पाया जाता है, लोहा 528 ppm पाया जाता है, तांबा 8 ppm पाया जाता है, मैग्नीज 161 ppm पाया गया। यह खास तरह का जो हमने जांच किया था उसमें पाया गया, दूसरा कोई जांच करता है तो हो सकता है उसमें कुछ अंतर हो, लेकिन हमने जो इसकी जांच किया था तो उस समय ये पोषक मान पाया गया।
0: जी, तो ये बातें हो गई हैं पार्थेनियम की। और अगर डॉक्टर साहब, यदि हमारे किसान भाई पुआल के स्थान पर पार्थेनियम का उपयोग करना चाहते हैं तो क्या वर्मी कंपोस्ट के पोषक मान पर कोई प्रभाव पड़ता है, और अगर हाँ पड़ता है तो कैसे, वो भी बता दें।
2: बिल्कुल सही बात आपने पूछा। ये किसान, एक चीज निश्चित रूप में इनको स्पष्ट करना जरूरी है कि जो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो कहीं केचुआ बाहर से तो पोषक मान डालता नहीं। जो सब्सट्रेट हम प्रयोग करते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट बनाने में पदार्थ प्रयोग करते हैं, उसी के पोषक मान के ऊपर यह निर्भर करता है कि हमारा वर्मी कंपोस्ट का पोषक मान क्या होगा।
0: जी,
2: अब यदि इसमें मान लीजिए कि आप ऐसा चीज प्रयोग कर रहे हैं जैसे अजोला प्रयोग करें, इसमें 4.5% नाइट्रोजन होगा, तो निश्चित रूप में जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा वह ज्यादा नाइट्रोजन वाला वर्मी कंपोस्ट बनेगा। तो इसी तरह से यदि हम पुआल की बात करते हैं तो पुआल में हम यदि देखते हैं तो पोषक मान समानता कम होता है पार्थेनियम की तुलना में।
0: जी,
2: तो इसी तरह से यदि हम पार्थेनियम प्रयोग करते हैं या जलकुंभी प्रयोग करते हैं, उसका पोषक मान ज्यादा होता है, तो उससे जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा उसका पोषक मान निश्चित रूपेण ज्यादा होगा। जैसे हमने जो वर्मी कंपोस्ट बनाया था, उस वर्मी कंपोस्ट में हमने 40% उसमें हमने लिया था पार्थेनियम, और जो 60% है वो गोबर का प्रयोग किया था। तो अब जो 40% हमने दूसरा वाला जो पुआल वाली बात आपने किया, यदि मान लीजिए 40% आप पुआल प्रयोग करते हैं और 60% गोबर प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इस सब के पोषक मान में अंतर आता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ बताऊं तब जाकर के आपको स्पष्ट होगा। जैसे मान लीजिए पुआल है, 40% पुआल आपने प्रयोग किया, 60% गोबर प्रयोग किया। इसमें यदि आप नाइट्रोजन देखें तो इसमें नाइट्रोजन आपको कम होगा, यानी 1.368% के आसपास इसमें नाइट्रोजन होगा। लेकिन वही पार्थेनियम में यदि प्रयोग हम करते हैं तो पार्थेनियम में 1.76% के आसपास इसमें नाइट्रोजन होगा। इसी तरह से हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस यदि पुआल वाला है तो फास्फोरस उसमें आप देखेंगे कि पुआल यदि आप 40% प्रयोग करें और 60% उसमें गोबर प्रयोग करते हैं तो इसमें 0.757% के आसपास आपको फास्फोरस होगा। जबकि जो उर्वरक नियंत्रण आदेश है वो कहता है कि 0.8% के ऊपर उसमें फास्फोरस होना चाहिए। जबकि यदि हम पार्थेनियम का प्रयोग करते हैं तो उसमें देखते हैं कि 0.808%, यानी 0.8 के यानी थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन यह फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर यानी उर्वरक नियंत्रण आदेश के अनुरूप बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम उसमें ऐसी चीजें डालते हैं तो निश्चित रूपेण उसका पोषक मान बढ़ता है। इसी तरह से पोटास की बात करें तो पोटास में यदि हम देखते हैं कि यदि सिर्फ पुआल और गोबर से बनाते हैं तो इसमें 0.992% इसमें आपको पोटास पाया गया। जबकि यदि हम पार्थेनियम का प्रयोग करते हैं तो पार्थेनियम के प्रयोग से देखा कि 0.966% इसमें हमारा पोटास पाया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि हम पुआल का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि फास्फोरस मेरा थोड़ा कम हो जाता है। उसको बढ़ाने के लिए आपको कोई दूसरी विधा का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे आप इंडिस्ट बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको 0.8% के ऊपर फास्फोरस रखना ही रखना है। यदि आप बर्मी कंपोस्ट बेचना चाहते हैं तो निश्चित रूपेण आपको 0.8% से ऊपर फास्फोरस भी रखना है, 0.8% से ऊपर पोटास भी रखना है, नाइट्रोजन भी 1% के ऊपर रखना है। तो आप इसके लिए उसमें ऐसी चीजों का प्रयोग करेंगे जो कि आपको ऑर्गेनिक खेती में भी प्रयोग कर सकें, हार्म ना हो और साथ ही साथ उसमें पोषक मान भी उतना रहे। तो आपने जो पूछा था कि इसमें कितना प्रतिशत हमको जो है क्या कहते हैं फायदा होगा, यानी कितना फायदा होगा, तो यह निश्चित रूपेण है कि अच्छा जलकुंभी प्रयोग करते हैं तो जलकुंभी में आप देखेंगे कि पार्थेनियम से भी ज्यादा नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास पाया जाता है। तो किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, अभी हमने अजोला की बात किया, अजोला में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास ये और ज्यादा है। तो यदि अजोला वाले आप बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो निश्चित रूप में उसमें पोषक मान ज्यादा होगा। इवन कार्बन की भी बात करते हैं तो कार्बन ज्यादा होगा। तो यदि हम इस ढंग का बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो उससे हमारा मृदा स्वास्थ्य ज्यादा ठीक होगा। और इसी तरह के बर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है, जिससे कम मात्रा में भी बर्मी कंपोस्ट हम बना करके हम ज्यादा से ज्यादा पोषक मान को ठीक कर सकें, हम अपनी मिट्टी की सेहत को ठीक कर सकें और ज़्यादा पोषक मान की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें, ये ज़्यादा जरूरी है।
0: जी डॉक्टर साहब, अब ये बात कर रहे हैं हम पार्थेनियम की, तो अगर हम इसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं तो कैसे करें, हम वो भी बता दें।
2: नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए वर्मी कंपोस्ट बनाने में यदि पार्थेनियम का प्रयोग करते हैं, लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा पार्थेनियम ऐसे ही डाल देते हैं।
0: जी
2: ऐसा नहीं करें, वो करें क्या कि इसको एक एक इंच के टुकड़े में काट लें।
0: अच्छा।
2: पार्थेनियम को एक एक इंच के टुकड़े में काट लिया, अब उसमें 40% पार्थेनियम आप रखिए और 60% गोबर, दोनों को आप मिला दीजिए। अब मिला करके उसको 3-4 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। यदि आपके पास कंपोस्टिंग कल्चर है तो कंपोस्टिंग कल्चर ऊपर से छिड़काव कर दीजिए, या पंचगव्य है तो पंचगव्य का छिड़काव कर दीजिए, वो और कुछ नहीं करेगा। इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या ज्यादा होती है, उसके परिणाम से क्या होगा कि आंशिक अपघटन आपका तेजी से हो जाएगा। बहुत सारी कंपनी बनाती है, नेफेड कंपनी भी बनाती है, आपका गाजियाबाद वाला है वो भी कंपोस्टिंग कल्चर बनाता है, जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां से भी कंपोस्टिंग कल्चर बनता है। तो वह थोड़ा सा आप डाल दें तो वो आपको बहुत बढ़िया से आपको सड़ जाएगा, तो 3-4 हफ्ते में कुछ आंशिक अपघटन हो गया। उसके बाद उसको आप ढेर लगा लें, ढेर लगा देने के बाद उसकी थोड़ी हल्की सिंचाई कीजिए और उसमें हाथ डाल करके देखिए, यदि वो ठंडा हो गया है ढेर तो उसमें आप केचुआ डाल दीजिए। कितना केचुआ डालेंगे, यदि आपके पास 1 टन मटेरियल है तो 1 टन मटेरियल में आपको 1000 से 2000 केचुआ डालना चाहिए। 1000 से 2000 केचुआ डाल दिया, अब उसकी सिंचाई आप प्रॉपरली कर रहे हैं जिससे 60-65% नमी उसका बरकरार रहे कम से कम, तो 65% के आसपास नमी बरकरार है, उसी ढंग का आप सिंचाई करते रहिए ऊपर से। और वो जो सिंचाई आप कर रहे हैं उसके बाद देखेंगे कुछ दिनों के बाद, लगभग दो तीन तीन चार हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि ऊपर में चाय की पत्ती जैसी संरचना बन गई है, यानी कि महीन महीन बन गया हुआ। उसके बाद आप सिंचाई को तीन चार दिन के लिए रोक दीजिए, और सिंचाई रोक करके ऊपर से वो जो चाय की पत्ती जैसी संरचना है उसको हाथ से या किसी लकड़ी से उसको आप हटा देंगे। अच्छा। वहीं तक हटाइएगा जहां तक केचुआ आपको नहीं दिखे। जब केचुआ दिखा इसका मतलब कि अभी इधर प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पर बर्मी कंपोस्ट बन रहा है। हाँ, ऊपर वाला बन चुका हुआ है, तो ऊपर वाला आप हटाते जाएंगे तो आपका बर्मी कंपोस्ट तेजी से बनेगा, नहीं हटाएंगे तो थोड़ा धीमा बनेगा। इसीलिए आप उसको हटा करके साइड में कर लीजिए, और उसके बाद आप 4 mm की जाली से उसे छान करके पैक कर लीजिए, तो बर्मी कंपोस्ट आपका तैयार हो गया। तो ये जो है क्या कहते हैं आप उसकी व्यवस्था करेंगे। हाँ, जहाँ आप ढेर लगाते हैं वो थोड़ा सा यदि ढालू हो तो ज़्यादा बढ़िया है, कि धोखा से यदि ज़्यादा पानी पड़ गया तो ज़्यादा पानी पड़ गया तो वो वहाँ से बह करके निकल जाएगा। तो इस ढंग से आप करेंगे, हाँ वहाँ पर वायु का संचार भी ठीक ठाक रहे। इसीलिए जिस शेड में आप बना रहे हैं वहाँ पर आप देखिएगा कि ऊपर कुछ जगह खाली हो, एक दो हाथ जगह खाली हो जिसमें कि वायु का संचार प्रॉपरली वहाँ पर हो सके। कुल मिलाकर के आप क्या करते हैं, वह व्यवस्था देते हैं जो केचुआ के लिए ठीक ठाक है, जिस पर केचुआ बढ़िया से चल सके वही व्यवस्था आप करते हैं तो आपका बर्मी कंपोस्ट तेजी से बनता है। तो यही चीज आपको करना है इस ढंग से करके। जब आपने हाँ, इसमें एक चीज बताया, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में यह भी है कि 15-25% नमी हो, इसीलिए जब बर्मी कंपोस्ट आप पैक करने लगे तो उसमें निश्चित रूप से आप देख लें कि 15-25% के बीच में हमारी नमी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम हार्मोन इस सब की एक्टिविटी तभी होती है जब उसमें नमी बरकरार हो। तो इसीलिए आप नमी का भी ध्यान देंगे और नमी की व्यवस्था आप देख करके उसके बाद आप इस ढंग से कर दीजिए, बिल्कुल आपका रेडी हो गया प्रयोग करने के लिए। लेकिन किसान भाइयों, एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जब कभी भी पार्थिनियम का प्रयोग कीजिए, जब बीज बना उसके पहले ही आप पार्थिनियम का प्रयोग कीजिए। जब बीज बन जाएगा और उसके बाद बर्मी कंपोस्ट बनाएंगे तो वो बीज आपके खेत में भी पहुंच जाएगा और वहां पर आपको फिर पार्थिनियम पैदा होने लगेगा। इसीलिए यह निश्चित रूप में विशेष ध्यान दीजिएगा कि उस समय आप नहीं प्रयोग करेंगे, बल्कि इसका प्रयोग आप उसी समय कीजिएगा जब बीज नहीं बना है, यानी बीज बनने के पहले का ही पार्थिनियम आपको प्रयोग करना है।
0: डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, और आज एक महत्वपूर्ण विषय आप सभी ने जाना, सभी किसान भाइयों की, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में आप पार्थिनियम का उपयोग कैसे कर सकते हैं, सारी विधि यहाँ पर आपको बताई गई है। आशा करते हैं कि आप जरूर अच्छे से इसका उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और अच्छी खेती करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
3: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
5: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र श्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वहां कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर लें और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन और हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम पिछले ज़माने की, तो लोग काफ़ी ज़्यादा शरीर से बलिष्ठ हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उनके खान पान का एक हिस्सा मड़वा यानी कि रागी भी हुआ करता था, जो हमारे शरीर को पोषण युक्त जो तत्व हैं वो तो देते ही थे और शरीर को बीमारियों से भी दूर रखते थे। तो आज डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं, डॉक्टर आनंद। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से, और आज रागी की वैज्ञानिक खेती के बारे में आज आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। तो चलिए आज डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानते हैं कि रागी की पौष्टिक और आर्थिक उपयोगिता के बारे में।
2: किसान भाई को नमस्कार। आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे मोटे अनाज, जो हमारे पूर्वज पहले बहुत अच्छी तरह से खेती करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा कृषि विकास की ओर दौड़ा, विकास के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग मोटे अनाज को छोड़ते चले गए। लेकिन अब आवश्यकता है कि मोटे अनाज की खेती विशेष रूप से की जाए। तो किसान भाई, इसके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोटे अनाज में रागी का एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि रागी ऐसा फसल है जिसमें कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे 100 ग्राम दाने में 344 मिलीग्राम इसमें कैल्शियम मिलता है, जिसका उपयोग करके हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती ही हैं। रागी बच्चों और बड़ों के लिए सबसे उत्तम आहार है। जैसा कि हम जानते हैं कि मोटे अनाज में प्रोटीन, वसा, रेसा और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उसी तरह रागी में 65-70% कार्बोहाइड्रेट, 8% प्रोटीन और 15-20% जो रेसा है, डायट्री फाइबर इसको बोलते हैं, तथा 2.5-3% खनिज लवण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण विटामिन्स में थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन एवं आवश्यक अमीनो एसिड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो कि विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे रागी युक्त आहार में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो जो आजकल शुगर की बीमारी है उसमें भी यह बहुत अच्छा फायदा करता है। कैल्शियम व अन्य खनिज तत्वों के प्रचुर मात्रा होने के कारण जो हम लोग को आजकल बुढ़ापा में ऑस्टियोफोरोसिस बीमारी से हम लोग ग्रसित रहते हैं, से संबंधित बीमारियों तथा बच्चों में आहार हेतु विशेष रूप से यह बहुत ही लाभदायक है। इसके दानों का इस्तेमाल खाने में कई तरह के से किया जाता है। इसके दानों को पीसकर आटा बनाया जा सकता है, जिससे मोटी डबल रोटी, साधारण रोटी और डोसा बनाया जा सकता है। अनाज भंडारण कीड़े के प्रतिरोधी होने के कारण इसको हम लोग बहुत 50 साल तक अच्छी स्थिति में रख सकते हैं। और जैसा कि आजकल खाद असुरक्षित जो हमारे गरीब किसान हैं, ये उन लोगों के लिए एक वरदान फसल है।
0: डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं इसके उत्पादन की और उन्नत शस्य क्रियाओं की।
2: जैसे रागी की खेती शुष्क और आंध्र शुष्क जलवायु इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। जैसा कि हमारे बिहार में इसकी खेती गर्मियों के मौसम में खरीफ की फसल के साथ की जाती है। इसकी खेती के लिए गर्मी का मौसम सबसे उपयुक्त होता है। खरीफ की फसल होने के कारण सर्दियां शुरू होने के पहले इसे काट लिया जाता है, इस कारण सर्दी का प्रभाव इस पर नहीं देखने को मिलता है। इसकी खेती के लिए सामान्य बारिश की जरूरत होती है, अधिक बारिश होना इसके लिए उपयुक्त नहीं है। रागी के पौधे गर्मियों के मौसम में अधिकतम 35 डिग्री तापमान पर आसानी से विकास कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत में बीजों को अंकुरित होने के लिए 20 से 22 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। उसके बाद पौधों के विकास करने के लिए 30 डिग्री के आसपास तापमान का होना उपयुक्त माना गया है। तो किसान भाई, जैसा कि हम लोग जो रागी का यदि हम लोग खेती करते हैं तो भूमि का चुनाव हम लोग कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम जरा चर्चा करेंगे। रागी की खेती उपजाऊ और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छा उत्पादन बलुई दोमट को सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसकी खेती के लिए भूमि में जल भराव नहीं होना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जल भराव होने की वजह से इसके पौधे खराब हो जाते हैं। इसकी खेती के लिए जो हमारी भूमि है उसका पीएच मान 5.5 से 8 के बीच होनी चाहिए। और भूमि की तैयारी में हम लोग को कुछ बातों पर ध्यान देना है, जैसे पूर्व फसल में कटाई के पश्चात आवश्यकता अनुसार ग्रीष्म ऋतु में 1 या 2 गहरी जुताई कर देना चाहिए किसान भाइयों को, जिससे खेत से फसलों एवं खरपतवार के अवशेष एकत्रित हो उसे नष्ट कर दें। मानसून प्रारंभ होते ही खेत में 1 या 2 जुताई करके पाटा लगा के एकदम खेत को समतल कर दें। और अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाई को चाहिए कि बुआई के पूर्व बीज को अच्छी तरह से साफ कर लें, और उसके बाद जो फफूंदी नाशक दवा होती है कार्मेंडाजिम उससे उपचारित करके वहीं बोएं। रागी की बुआई 2 तरह से की जाती है, एक होती है सीधी बुआई और दूसरा होता है रोपा पद्धति, इसको ट्रांसप्लांटेड हम लोग कहते हैं। सीधी बुआई जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के मध्य तक मानसून वर्षा होने पर की जाती है, और छिटकवा विधि या कतारों में बोई जाती है। पंक्ति में बुआई करने हेतु जो हमारा बीज लगता है वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यदि हम छिटकवा विधि से बुआई करते हैं तो उसमें बीज की मात्रा बढ़ जाती है जो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। कतार से कतार की दूरी हम लोग को हर समय 22.5 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। रोपाई के लिए नर्सरी में बीज के मध्य से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक डाल देनी चाहिए, नर्सरी में लगा देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए बीज की मात्रा 5 किलोग्राम लगती है, एवं 20 से 25 दिनों का पौध जो सीडलिंग है होने पर रोपाई करनी चाहिए। रोपाई के समय कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की 10 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, जिससे कि हमारा अच्छा उत्पादन मिल सके। रागी के बीजों में दोनों विधि से रोपाई के दौरान इसके बीजों को भूमि में 3 से 4 सेंटीमीटर के गहराई पर बीज को बोना चाहिए, ताकि बीज का अंकुरण अच्छा हो सके। दूसरे सबसे बड़ी बात है कि खेत की तैयारी हम लोग कैसे करें। तो रागी की रोपाई के लिए भुरभुरी मिट्टी का होना बहुत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी होने से बीजों का अंकुरण अच्छे से होता है। और रागी की खेती के लिए शुरुआत में खेतों की तैयारी के दौरान खेत में मौजूद पुरानी फसलों को अवशेषों को नष्ट कर खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी तरह जुताई कर दें। उसके बाद कुछ दिन के लिए खेत को खुला छोड़ दें, ताकि सूरज की धूप को मिट्टी में मौजूद हानिकारक जो कीट रहते हैं उससे नष्ट हो जाए। और खेत को खुला छोड़ने के बाद खेत में जैविक खाद हम लोग को, जैसे आजकल सरकार भी बहुत ज़्यादा इस पर जोर दे रही है कि जैविक खाद को हम लोग अपनाना चाहिए, तो जैविक खाद के रूप में पुरानी गोबर की खाद को डालकर उन्हें अच्छी तरह से मिला दें। और खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए खेत को कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 तिरछी जुताई कर दें। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद पानी चलाकर खेत का पलेवा कर दें। पलेवा करने से एक फायदा है कि 3-4 दिन बाद जब जमीन की ऊपरी सतह हल्की सूखी हुई दिखाई देने लगे तो फिर खेत की जुताई कर दें। उसके बाद खेत में रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें, और मिट्टी को भुरभुरा बनाने के बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दें, ताकि बारिश के मौसम में जल भराव जैसी समस्या का सामना न करना पड़े, जो एक बहुत बड़ा रागी के फसल में एक है कि यदि पानी में जल भराव होता है तो हमारा फसल नहीं अच्छा होगा। जैसे उर्वरक की मात्रा के बारे में किसान भाइयों को जरा बता दें, रागी के पौधों में उर्वरक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसकी खेती के लिए शुरुआत में खेत की तैयारी के वक्त लगभग 12 से 15 गाड़ी जो होता है पुरानी गोबर की खाद को खेत में डालकर अच्छे से मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके अलावा यदि हम रासायनिक खाद के रूप में 1.5 से 2 बोरे NPK की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी यदि हम रेनफेड कल्टीवेशन वर्षा आधारित खेती करते हैं तो उसमें 40-20-20 यानी 40 kg नेत्रजन, 20 kg फास्फोरस और 20 kg पोटास। यदि हम इरिगेटेड कंडीशन यानी सिंचित अवस्था में रागी की खेती कर रहे हैं तो आखिरी जुताई तो उसमें जो उर्वरक की मात्रा होती है वो 60-30-30 यानी 60 kg नेत्रजन, 30 kg फास्फोरस PTO5 और 30 kg पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। तो नेत्रजन की जो आधी मात्रा होती है और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत की आखिरी जुताई के वक्त खेत में छिड़क कर मिट्टी में मिला देना चाहिए, और दूसरी जो आधी मात्रा जो शेष आधी मात्रा जो नेत्रजन की होती है वो प्रथम सिंचाई के बाद उसमें दे देना चाहिए। तो एक और सबसे बड़ी चीज़ है वो खरपतवार नियंत्रण, जो रागी के खेत में खरपतवार नियंत्रण

0: जो है 0.5 केजी एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, ये रेनफेड कंडीशन में जो रेनफेड जो वर्षा आश्रित क्षेत्र है उसमें हम लोग यूज करते हैं, और सिंचित क्षेत्र में ऑक्सीफ्लोरपेन 0.1 लीटर एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर की उचित मात्रा का छिड़काव खेत में कर देना चाहिए। यदि हम प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण पौधे को की गुड़ाई कर लिया जाता है तो इसके लिए शुरुआत में पौधे की रोपाई के लगभग 20 से 22 दिन बाद उसकी पहली निकाई गुड़ाई कर दें, और आगे की खेती में प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निकाई गुड़ाई काफ़ी आवश्यक है। इसके पहले निकाई गुड़ाई के लगभग 15 दिन बाद पौधों को एक बार और गुड़ाई कर दें, यानी 45 दिनों तक जो हमारा रागी का खेत हो वो खरपतवार से मुक्त हो।
1: जी, और अब बात करते हैं अधिक उपजशील और अनुशंसित किस्मों के बारे में।
0: तो किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि अनुशंसित किस्में तथा जो अधिक उपजशील हो तथा गुणवत्तापूर्ण बीज का ही चयन करना चाहिए। तो एक जो किस्म है वो है VL मांडू 379, जो हमारे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान से शाला जो अल्मोड़ा में है वहाँ से विकसित की गई है। ये अभी 2018 में CBRC से भी नोटिफाइड वैरायटी है। इसकी परिपक्वता अवधि 103 से 111 दिन में यह मैच्योर कर जाती है, परिपक्व हो जाती है। इसकी औसत उपज बहुत अच्छी है, 31.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और इसका बुआई का समय 2 मई से जून के प्रथम सप्ताह तक इसके बुआई कर सकते हैं। दूसरी जो अच्छी प्रभेद है वो OEB 526। ये OEB 526 ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भुवनेश्वर में अवस्थित है वहाँ की से विकसित की गई है। इसकी परिपक्वता अवधि 110 से 115 दिनों की ये प्रभेद है। इसकी औसत उपज 25 से 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और यह जो झुलसा रोग इसमें लगता है उसके प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। दूसरा जो अधिक उपजशील किस्म है वो OEB 532, ये भी ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से विकसित की गई है, 2012 में रिलीज हुई, जिसकी भी परिपक्वता इसे पकने की अवधि है 110 से 115 दिन। इसकी औसत उपज 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, ये भी झुलसन रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। इसके अलावा दो और प्रभेद जो हमारे बिहार के लिए अनुशंसित है, जोन के लिए अनुशंसित है, वो उसमें है VL 352 जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा से विकसित की गई। इसकी परिपक्वता अवधि ये 100 ड्यूरेशन की वैरायटी है, ये 95 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 33 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर है, ये भी झुलसा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। एक और किस्म है VL 376, इसकी परिपक्वता अवधि 103 से 109 दिनों की है, औसत उपज 29 से 31 क्विंटल की प्रति हेक्टेयर है, और

0: अनुशंसित किस्मों का यदि चयन कर खेती करते हैं तो रागी से उन्हें अच्छी मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, और रागी में लगने वाले कौन कौन से रोग एवं कीट हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं और रोकथाम कैसे करें हम।
0: रागी में जैसे जो फफूंद जनित दो रोग इसमें मुख्यतः लगते हैं, एक है झुलसन और दूसरा है भूरा धब्बा। रागी की प्रमुख रोग व्याधियां हैं जिनका समय पर निदान नहीं होने से उपज में हानि होता है। जो झुलसन रोग लगता है वो रागी की फसल पर पौध अवस्था से लेकर बालियों के दाने बनने तक किसी भी अवस्था में फफूंद जनित झुलसन रोग का प्रकोप देखा गया है। संक्रमित पौधे की पत्तियों में भिन्न भिन्न माप के आँख के समान धब्बे बन जाते हैं जो मध्य के धूसर और किनारों पर पीले पीले रंग के होते हैं। अनुकूल वातावरण में ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं और पत्तिया को झुलसा देते हैं। बालियों की ग्रिया और उंगलियों पर भी फफूंद का संक्रमण होता है और ग्रीवा का पूरा या आंशिक भाग काला पड़ जाता है। इससे बालियां संक्रमित भाग टूट के लटक जाती है या फिर गिर जाती है और किसान भाइयों को इससे घाटा हो जाता है। उंगलियों पर भी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से संक्रमित होने पर सूख जाती है जिसके कारण उपज में गुणवत्ता जो हम लोग को गुणवत्तापूर्ण जो उपज होना चाहिए उसकी मात्रा प्रभावित होती है। इसकी रोकथाम के लिए बुआई के पूर्व बीज को जो जैसा हम जानते हैं फफूंदनाशक दवा जैसे मैनकोजेब कार्बेंडाजिम या कार्बोक्सिन या उनके मिश्रण को 2 ग्राम प्रति किलो की बीज दर से उपचारित करना चाहिए। यदि खरीफ फसल में झुलसन रोग का दिखाई पड़े तो कार्बेंडाजिम कीटाजिन या ईडीफेनफॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर या मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर मिलाकर की दर से छिड़काव करें और 10 से 12 दिन के बाद एक फिर से हमको एक छिड़काव रिपीट कर देना चाहिए, दोबारा कर दें। और जैव रसायन जैसे सीडोमोनास फ्लोरेसेंस का पर्ण छिड़काव 0.2% जो झुलसन के संक्रमण को रोकता है और रोग प्रतिरोधी किस्में भी यदि हम लगाएँ तो इससे हम लोग बचाव हो सकता है। जैसे रोग रोधी किस्म है VL 379, VL 356, VL 352, OEB 536, 532 का चुनाव करें। इससे इस रोग से हम लोग उसमें जो रेसिस्टेंट है उसमें उस वैरायटी में मॉडरेटरी रेसिस्टेंट है तो उससे मध्यम प्रतिरोधी किस्म होने के कारण ये रोग नहीं लगेगा। दूसरा महत्वपूर्ण रोग उसमें लगता है वो भूरा धब्बा रोग। यह भी फफूंद जनित रोग जो संक्रमण पौधों के सभी अवस्थाओं पर हो सकता है चाहे वेजिटेटिव स्टेज हो या रिप्रोडक्टिव। प्रारंभ में पत्तियों पर छोटे छोटे हल्के हल्के भूरे अंडाकार धब्बे बन जाते हैं, बाद में इनका रंग गहरा हो जाता है। अनुकूल अवस्था में ये धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को समय से पूर्व सुखा देते हैं। बालियों एवं दानों पर संक्रमण होने पर दानों का उचित विकास नहीं हो पाता और दाने सिकुड़ जाते हैं जिसकी उपज में भी काफ़ी कमी होती है। इसकी रोकथाम जैसा कि मैंने पहले बताया झुलसा रोग में है वही रोकथाम इसमें भी किया जाता है। और जो कीट में तना छेदक एवं बालियों में सुनी रागी का प्रमुख कीट है तो तना छेदक कीट जो होता है उसका व्यस्क कीट एक पतंगा होता है जबकि लार्वा तने को छेद करके अंदर प्रवेश कर जाता है, फसल को नुकसान पहुंचाता है। कीट के प्रकोप से डेड हट लक्षण पौधे पर दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कीटनाशक दवा डाइमेथोएट या फॉस्मामिडोन या न्यूअक्रोन 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें और कीट प्रतिरोधक किस्म की बुवाई करें जिससे कि रोग से बचाया जा सके। और दूसरा प्रमुख कीट है और बालियों की सुंडी। इस कीट का प्रकोप बालियों में दाना बनने के समय होता है, जैसे ही दाना बनने लगता है तो बाली में ये पकड़ने का इसका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। भूरे रंग में रोएदार इलियां रागी की बालियों को नुकसान पहुँचाती हैं जिसके फलस्वरूप दाने कम एवं छोटे बनते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जो क्यूनोलफॉस दवा आती है 1.5% थायोडाउन डस्ट 4% का प्रयोग 24 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से करें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कीट जो नई प्रभेद के बारे में हम बताए हैं वो कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन कर बुवाई करें तो ये कीट उसमें लगने की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार यदि हम रागी जैसे फसल की कटाई और मड़ाई कैसे करें तो रागी के पौधे रोपाई के लगभग 110 से 115 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं तो जिसके बाद इसके सिरों पर पौधों को काटकर अलग कर लेना चाहिए। सिरों की कटाई करने के बाद उन्हें खेत में एकत्रित कर कुछ दिन के लिए सुखा लेना चाहिए। उसके बाद जब दाना अच्छी तरह से सूख जाए तथा मशीन की सहायता से दानों को अलग कर एकत्रित कर बोरा में भर लेना चाहिए। रागी की विभिन्न किस्मों की प्रति हेक्टेयर औसत उपज 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा इससे 60 से 70 क्विंटल भूसा भी हम

0: किसान भाई को प्राप्त हो जाएगा, जिसका बाजार भाव 2700 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास पाया जाता है। इस हिसाब से किसान भाई एक बार में एक हेक्टेयर में 60 से 70 हज़ार रुपये की कमाई आसानी से कर सकते हैं। इसलिए एक बहुत ही मोटे अनाज में एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और किसान भाई अब आवश्यकता भी है, सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर भी है और इसीलिए 2018 में इंटरनेशनल ईयर मनाया गया कि मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर, और सरकार इसके प्रति किसानों को भी प्रेरित कर रही है।
1: जी, तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले दिन आपसे एक अलग विषय के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
8: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
7: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि। नमस्कार, मैं आरजे अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ 90.8 FM ग्रीन पर। दोस्तों, आज फिर से लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम पर कुछ अच्छी बातें, और आज का हमारा विषय है, बहुत ही खास विषय है हमारा, और वो है मक्के से बनने वाले प्रसंस्कृत पदार्थ। तो आज इसके बारे में जानेंगे हम, और इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। आप सभी को बता दें कि हम इस विषय पर खास चर्चा करेंगे, और सबसे पहले जानेंगे डॉक्टर साहब से कि किस किस राज्य में मक्का को उगाया जा सकता है, और साथ ही बिहार का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है।
10: मक्का विभिन्न जलवायु परिस्थिति में व्यापक अनुकूल क्षमता वाली सबसे बहुमुखी फसलों में से एक है। भारत में मक्का राष्ट्रीय खाद्य कटोरी के रूप में भी जाना जाता है, और विश्व स्तर पर ये 9% का योगदान देता है। मक्के के कुल उत्पादन का 80% मुख्यतः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में उपजाया जाता है। बिहार में मेनली 8.9% का योगदान देता है।
1: तो यहाँ पर हमने जाना कि क्या कंट्रीब्यूशन है बिहार का मक्के के कल्टीवेशन में, और साथ ही यहाँ पर मक्के के पोषक तत्वों के बारे में हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, और उनसे क्या क्या लाभ हैं उनके बारे में बताएं।
10: मक्के में बहुत ज़्यादा बहुत प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो कि 9% होते हैं, प्रोटीन 3.2%, शुगर 3.2%, फाइबर आहार जो कि डाइट्री फाइबर रहते हैं ये मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, ये 2.7% रहते हैं, वसा 1.2% होते हैं, कैल्शियम 9 मिलीग्राम होते हैं, आयरन 0.5 मिलीग्राम होते हैं,
1: मैग्नीशियम
10: 37 मिलीग्राम, नाइसिन 1.7 मिलीग्राम, फास्फोरस 120 मिलीग्राम होते हैं, पोटासियम 270 मिलीग्राम, विटामिन बी 15 मिलीग्राम, विटामिन सी 7 मिलीग्राम। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर के साथ साथ इसमें डिफरेंट तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें मिनरल्स के साथ साथ विटामिन भी रहते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं
1: जी।
10: मक्के में जो बहुत सारे महत्वपूर्ण, मक्के को अगर हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जो है कि फायदे के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर जब तक आपको फायदे के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप इसको खाने में उतने इच्छुक नहीं होंगे। मक्के में मौजूद फाइबर जो है उच्च मात्रा के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को उसको कम करने का काम करता है, और खास करके जो कोलोन कैंसर जो होता है उसके खतरे को भी कम करता है
1: जी।
10: जो मक्का अगर मध्य मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो उससे मधुमेह से पीड़ित लोग होते हैं उसको फायदेमंद होता है। और फोलेन एक इसमें एक कंपाउंड पाए जाते हैं, अगर उसको उसके कारण क्या होता है कि कोशिकाओं की उत्पत्ति में ये मदद करता है। जो कॉर्निया के सेवन, अगर इसमें कॉर्निया जो रहता है, इसमें कॉर्निया के सेवन से क्या होता है, एनीमिया से पीड़ित जो लोग होते हैं उनको भी सकारात्मक प्रभाव जो है रिसर्च में देखा गया है। मक्के में मौजूद जो पाइटोथेनिक एसिड जो होते हैं हमारी शारीरिक कार्य करने की क्षमता में मदद करता है। उसके बाद जो है गुर्दे की समस्याओं के इलाज में भी काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। मध्य मात्रा में अगर मक्का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो हृदय रोग के लिए फायदेमंद होता है। उसमें है कि अगर इसको कंटिन्यूस अगर सेवन करते हैं मक्के को तो फेफड़े के जो बीमारी होते हैं और फेफड़ा को में जो कैंसर का कारण जो बनता है तो उसको भी इसमें सहायक सिद्ध होता है। और इसमें जो अघुलनशील फाइबर जो होते हैं तो कब्ज या बवासीर जैसे बीमारी जो होते हैं उस तरह के बीमारी से भी निजात इसमें पा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे फायदे तो बहुत हैं, और इस तरह से अगर मक्के को खाते हैं तो फायदा बहुत ज़्यादा होता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर हमने जाना कि इसमें पोषक तत्व और उनके लाभ के बारे में जाना, तो मक्का बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और इससे हमें बहुत लाभ भी होता है। तो अब यहाँ पर जो हमारा आज का विषय है मक्के से बनने वाले प्रसंस्कृत पदार्थ, तो सब अब आते हैं उस पर और जानना चाहेंगे कि प्रसंस्कृत पदार्थ इससे क्या क्या बन सकते हैं।
10: मक्के से बहुत सारे प्रसंस्कृत पदार्थ बनते हैं। इसमें मेनली जो है कॉर्नफ्लैक्स जो कि आप लोग किसी भी ब्रेकफास्ट सीरियल्स में आप लेते भी होंगे, तो इसलिए ये काफ़ी फेमस है। और इसके अलावा बहुत सारे जो हैं पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉर्न स्टार्च होते हैं, मक्के का तेल होता है, मक्के का सिरप बनता है, हाई माल्टोज कॉर्न सिरप बनता है, इस तरह जो कि औद्योगिक स्तर पर बनाए जाते हैं। ये छोटे स्तर पर भी कुछ जैसे है कि कॉर्न फ्लोर बना सकते हैं या कॉर्नफ्लैक्स बना सकते हैं छोटे स्तर पे। ऐसे जो होते हैं दूसरे जो होते हैं ये बड़े स्तर के कारखाने में बनाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही फायदे अगर इस तरह के कारखाने लगते हैं तो बिहार के बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। इसके साथ साथ दूसरे कारखाने भी लगने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। जैसे कि अब हम चर्चा करते हैं कॉर्नफ्लैक्स और डिफरेंट जो प्रोडक्ट होते हैं इसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। जो कॉर्नफ्लैक्स होते हैं ये

0: माना है। मीन्स इसका रीजन ये है कि जो आदमी का कंजम्पशन पैटर्न है, खाने का यदि पैटर्न है, वो काफ़ी ही मीन्स करने का मतलब चेंज हो रहा है। वो प्रोसेस प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं जा रहे हैं और वो और क्योंकि ये आसानी से मीन्स बाजार में भी उपलब्ध होता है, आप अपने मीन्स कॉटेज टाइप के इंडस्ट्री लगाकर भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है बनाने में। इसके बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाले जो होता है मकई, उसको ले, ले आप रख मार्केट से खरीदते हैं या आपके पास अगर उपलब्ध है तो उसको प्रोसेस करने के लिए लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको औद्योगिक स्तर पर मीन्स फैक्ट्री में आप इसका सफाई कर लेते हैं अच्छी तरह से, मीन्स करने का मतलब दूसरे पदार्थ जैसे कंकड़ पत्थर ये सब रहते हैं उसको आप निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्टीमिंग कर देंगे, मीन्स उसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे, जो कि 57 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप गर्म कर सकते हैं और ये समय जो है चार घंटा से 20 घंटा तक गर्म करना रहता है। ये तापमान जो है जो निर्भर करेगा वो समय के साथ चेंज होता है। तापमान अगर ज़्यादा है तो आपका समय कम लगेगा, अगर तापमान कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस में जब स्टैंडर्ड करेंगे तब उसमें ज़रूरत होता है। उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्सेस पानी जो स्टीमिंग का है उसको निकाल देंगे और थोड़ा सा सुखा लेंगे उसको, है रूम के तापमान पर, कमरे के तापमान उसको सुखा लेंगे। जब उसका देखिए मॉइस्चर कंटेंट जो है मीन्स उसमें जो नमी है 16 से 24% आ जाए तो उसको फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में डालते हैं। जो प्रोसेस के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण हमें मशीन की आवश्यकता पड़ती है उसको फ्लेकिंग मशीन बोलते हैं और फ्लेकिंग मशीन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है। अगर फ्लेकिंग मशीन नहीं है तो इस तरह के प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो फ्लेकिंग मशीन के सहायता से हम इसमें मकई को क्या करते हैं, फ्लेक्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें दो रोलर लगे रहते हैं और बीच में गैप रहता है जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्स के रूप में या चपटा के रूप में उसमें कन्वर्ट करते हैं। ऊपर के एक हॉपर रहता है जिससे कि हम लोग मेज जो है, जो कि जिसमें कि 16 से 24% मॉइस्चर है, नमी है, उसमें हॉपर में डालते हैं और दूसरे साइड से हमें क्या फ्लेक्स के रूप में प्राप्ति होती है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको सुखावक यंत्र या आपके पास कैबिनेट ड्रायर हो या हॉट एयर ओवन हो, उसकी सहायता से उसका मॉइस्चर कंटेंट 2% से कम कर लेते हैं। 2% से कम करने के बाद उसको या तो पैकेज के रूप में पैकेट में डाल देंगे जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट का रेजिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और आपके प्रोडक्ट को ख़राब कर देगा। तो उसके बाद अगर आपको नमकीन बनाना है या उसको स्पाइसी बनाना है या चॉकलेटी टाइप का बनाना है तो पैकेजिंग करने से पहले क्या करना है कि इस तरह के मटेरियल को से कोट कर लेना है और आफ्टरवर्ड उसको क्या करना है, पैकिंग करना है और उसका फिर बाजारीकरण करते हैं। कॉर्नफ्लेक्स बनाने के लिए दूसरी विधि भी हम अपनाते हैं, मशीन दूसरे लगते हैं इसके लिए। जैसे कि आप एक्सट्रूडर एक मशीन होता है जिसके सहायता से हम लोग मकई के दूसरे प्रोडक्ट एक्सट्रूडेड टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं या कॉर्नफ्लेक्स टाइप के प्रोडक्ट होते हैं बनाते हैं। इसमें है कि एक्सट्रूजन एक मशीन होता है जिसमें कि डिफरेंट जोन होते हैं, हीटिंग जोन होते हैं, इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट जो होता है आपको रखना रहता है 16 से 20% के लगभग में रखना होता है। और इसमें है कि टेम्परेचर जोन को सेट करते हैं और एक नोजल के सहायता से प्रोडक्ट को हम निकालते हैं जिससे कि हम लोग मशीन के अंदर एक्सट्रूजन होता है उसमें जिलेटिनाइजेशन टेम्परेचर पे काम करता है और आफ्टरवर्ड क्या होता है, एक्सट्रूजन होता है। और एक्सट्रूजन से क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट मिलता है, वो मीन्स करने का मतलब कुरकुरे टाइप का भी प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं और फ्लैक्स के रूप में भी निकाल सकते हैं, रिंग के रूप में भी निकाल सकते हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट इसमें आप एक्सट्रूजन डिफरेंट शेप में आप प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं और उसमें फिर मॉइस्चर को रिड्यूस कर लेते हैं, उसमें नमी को कम कर लेते हैं, देन आपका उसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर से कोटिंग कर लेते हैं और फिर पैकेटिंग करके उसको बाजारीकरण कर सकते हैं।
1: जी, तो यहाँ पर किसान भाइयों आपने जाना कि मक्के के लाभ को जाना आपने और साथ ही जाना कि इससे कौन कौन से प्रसंस्कृत पदार्थ बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, उनकी विधि को आपने जाना। तो आशा करूँगी कि आप

0: आपको इन सभी बातों को जानकर काफी लाभ मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो, आओ।
7: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
8: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
7: हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
8: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
9: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
10: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
11: क्या क्या क्या?
8: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
11: अच्छा,
10: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, जैसे जीवन में बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है जीवन को संतुलित रूप से चलाने के लिए, उसी तरीके से हमारे शरीर को भी अलग अलग तरह के विटामिन्स, मिनरल्स की ज़रूरत होती है हमारे शरीर के अलग अलग भागों को संतुलित रूप से चलाने के लिए, और ख़ास तौर से महिलाओं को ज़रूरत होती है कैल्शियम की। एक उम्र तक पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे ही महिला 50 पार की हो जाती है उन्हें कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से उनके अंदर कैल्शियम की कमी बढ़ने लगती है और साथ ही उनकी जो हड्डियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। तो 50 के पार की महिलाओं में या फिर आपकी उम्र 50 से कम भी है तो हो सकता है आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो। और कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानेंगे और इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, किस तरीके से आप सही खान पान सही दिनचर्या के साथ कैल्शियम की कमी को ठीक कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब आप खान पान के साथ एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कैल्शियम की कमी कब होती है। कैल्शियम की कमी का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि हमारे शरीर या फिर खून में कैल्शियम का स्तर काफी कम हो जाता है, और जब महिलाएं 50 के पार की होती हैं तो उनमें ये परेशानी खास तौर से देखी जाती है। और जब उनका मेनोपॉज होता है यानी कि उनका मासिक धर्म रुक जाता है तब भी उनके अंदर ये परेशानी कहीं ज्यादा गति से बढ़ती है। और जो महिला गर्भावस्था में होती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है, और इसी वजह से उस वक्त कहा जाता है कि जो कैल्शियम युक्त खाना है पदार्थ है उनका सेवन ज्यादा करना चाहिए। जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसका सबसे जो सामान्य लक्षण होता है वो होता है हड्डियों में, दांतों में, मांसपेशियों में, नसों में और हृदय के भी कुछ परेशानी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, लगातार दर्द हो रहा है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, आपको थोड़ा सा भी चोट लगता है तो आपको फ्रैक्चर हो जाता है या फिर आपकी हड्डियां ज्यादा दर्द करती है या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का भी लक्षण दिखता है तो फिर आपको कैल्शियम की कमी है। अगर कुछ महिलाओं के दांतों में भी परेशानी दिखती है, जी हाँ, अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आप पाएंगे कि आपके दांतों में कैविटी हो गई है। आपको कभी कभार लगेगा कि आपके दांत के किनारे झड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। हाथ पैर की हड्डियों में काफी ज्यादा दर्द होता है। पीठ या कमर दर्द, जिसे कि महिलाएं बहुत ही आम सी समस्या समझती और इसका उपचार नहीं करती है, ये कैल्शियम की कमी का मुख्य लक्षण हो सकता है और ये आगे चलकर बहुत परेशानी बहुत जोखिम का कारण बनते हैं। और जब आपके मांसपेशियों में ऐंठन होते हैं या फिर मांसपेशियों में खिंचाव होते हैं या फिर झटका महसूस होता है, हाथ पैर में झुनझुनी, जैसे कि हम बहुत ही सामान्य मानते हैं, बहुत ही आम मानते हैं, लेकिन आप बूढ़े बुजुर्ग को ये कहते हुए सुनेंगे कि अगर आपके हाथ पैर में झुनझुनी हो रही है तो आप को ये बहुत बड़ी परेशानी का संकेत दे रही है आपका शरीर। और कभी कभी हमारे हाथ पैर थोड़े सुन्न भी पड़ जाते हैं, और ख़ास तौर से ये जो हमारी उंगलियाँ होती है, पैरों की उंगलियाँ या हाथों की उंगलियाँ, जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी ज़्यादा होती है तो फिर आपके हाथ पैर की उंगलियां कभी कभी सुन्न पड़ सकती है। और ये अगर लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं तो फिर आपके अंदर कैल्शियम का स्तर काफी ज्यादा गिर गया है। और इसके और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि आपने कोई काम नहीं किया है, बहुत ही आराम से आपने अपने दिन की शुरुआत की है और फिर अचानक आपको थकान लगने लगती है, आपको कमजोरी हो जाती है, दांत और मसूड़ों की समस्या भी आपको हो सकती है। दांत तो झड़ते ही हैं, साथ ही आपके मसूड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, और इसे हम मानते हैं कि शायद दिल की कोई बीमारी होगी या फिर किसी और परेशानी से हो रहा होगा। इसका संबंध कैल्शियम की कमी से भी होता है। और कुछ महिलाओं में अगर उनका मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ है तो भी अगर उनके अंदर कैल्शियम की कमी है तो ये सारे लक्षण तो दिखेंगे ही, इसके अलावा उनका जो मासिक धर्म होता है उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिलती है, या तो फिर वो काफ़ी देर से आएंगे या फिर उस दौरान आपको काफ़ी दर्द होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारे छोटे छोटे लक्षण हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं होती है, हाथ पैर में थोड़ा दर्द होना कोई बड़ी बात तो नहीं है, झुनझुनी को जैसे कि हम बहुत ही आम सी परेशानी मान लेते हैं, पीठ और कमर दर्द को तो महिलाओं ने अपना साथी ही समझ लिया है, लेकिन अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी काफ़ी गंभीर हो गई है तो आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। जी हाँ, ये मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है और आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। और अगर समझे कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है तो इसकी वजह सबसे साफ यही होती है कि आप कैल्शियम से भरपूर भोजन नहीं कर रही हैं और आपके अंदर विटामिन डी की भी कमी होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी होती है। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब मेनोपॉज होता है या गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को कैल्शियम की कमी होती है तो उस दौरान क्या होता है कि हार्मोन काफ़ी तेजी से बदल रहे होते हैं, कुछ बढ़ रहे होते हैं, कुछ घट रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी होती है। और उस दौरान मेनोपॉज के बाद या तो फिर जिस वक्त मेनोपॉज शुरू होने वाला हो या तो फिर आपके या फिर आप गर्भावस्था में हैं तो भी आपको कैल्शियम से भरपूर भोजन करना चाहिए। और आप अगर सोच रहे हैं कि शरीर को थोड़ा कम चलाएंगे तो हमारी हड्डियां सुरक्षित रहेगी, आप जितना ज्यादा अपने शरीर को चलाएंगे और खासतौर तौर से एक्सरसाइज, अगर आप पैदल चलती हैं, आप एक्सरसाइज करती हैं तो आपकी हड्डियां और मजबूत होती है। एक शोध में पाया गया था कि जो महिलाएं रोज 5000 कदम चल रही हैं उनकी हड्डियां ज़्यादा मजबूत पाई गई उन महिलाओं के मुकाबले जो कम पैदल चलने का काम करती हैं। और इसके अलावा आप कुछ ऐसे दवाइयों का भी सेवन कर रही होंगी जिसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। कुछ ऐसी पाचन से संबंधित बीमारियां भी होती है जो कि कैल्शियम की कमी का कारण बन सकती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल करती हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। और अधिक कैफीन और अल्कोहल का सेवन, अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं और कैफीन या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो आपको कैल्शियम की कमी होनी ही होनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और भी चीज़ें होती है जो कैल्शियम की कमी का कारण बनती है, लेकिन अब हम बात करते हैं इलाज और बचाव के बारे में। कैल्शियम की कमी के इलाज से बेहतर है कि आप इसका बचाव करें, क्योंकि इलाज बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है तो उस स्तर पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सही आहार लेना शुरू कर दें। कैल्शियम के लिए दूध, डेयरी उत्पाद यानी कि दूध यानी कि दही पनीर या फिर दही या पनीर से बने कुछ जो उत्पाद हैं वो आप खा सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, तिल में तो बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। और फिर आप मखाना का सेवन कर सकते हैं। कहते हैं कि तिल, मखाना और गुड़ से बने जो लड्डू होते हैं वो आपके अंदर कैल्शियम की कमी को बहुत ही अच्छे से पूरा करते हैं। बादाम आप खा सकते हैं, सोया खा सकते हैं। और इसके अलावा आप रोज़ थोड़ी देर धूप में बैठिए और ज़रूरत हो डॉक्टर की सलाह से, अगर ज़रूरत हो तो आप विटामिन डी की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हैं तो पहले आप डॉक्टर से मिल लें, क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हैं और ख़ास तौर से कोई दवाई खा रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ले ही लें। इसके अलावा आप एक्सरसाइज तो करें ही, और चलना, योगा करना और हल्का वर्कआउट करना तो आप करें ही। इसके अलावा वजन उठाने वाले एक्सरसाइज भी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करने में बिल्कुल नई हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, तो शुरुआत बहुत ही हल्के एक्सरसाइज के साथ करें और धीरे धीरे आप एक्सरसाइज सीखें और उसके बाद करें। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है, और जब आप वेट उठाने वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं तब तो बहुत ज़रूरी है कि आप के आसपास कोई ऐसा इंसान हो जिन्हें इस बारे में पता हो कि किस तरह के एक्सरसाइज कैसे करने चाहिए, उनका जो टेक्निक है वो पता हो तो अच्छा रहता है। इसके अलावा जो महिलाएं 50 पार कर चुकी हैं या फिर उनका मेनोपॉज आने वाला है और उनमें लक्षण दिखने शुरू हो गए, उनकी जो महावारी है वो समय पर नहीं आ रही है, तो उन्हें ज़रूरत होती है कि वो जाँच करवा लें। वैसे भी आमतौर पर महिला या पुरुष किसी को भी नियमित जाँच करवाते ही रहना चाहिए। आप समय समय पर ब्लड टेस्ट करवाइए और साथ ही बोन डेंसिटी टेस्ट भी आप करा सकते हैं अगर ज़रूरत आपको लगे तो। दोस्तों, महिलाओं में ना कैल्शियम की कमी आम हम समझते हैं, लेकिन ये आम नहीं है। अगर आप सही खान पान रखेंगे, व्यायाम करेंगे और अगर समय पर इसकी जाँच कर ली जाए और जाँच में पता चल जाए कि आपको कैल्शियम की कमी है और शुरुआती लक्षण दिखने लग जाते हैं, शुरुआत में ही पता लग जाता है, तो फिर इसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। और अगर आपके शरीर में लगातार ऐंठन होता है, आपके हड्डियों में दर्द होता है या फिर आपको बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है, आप खाना भी ठीक खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो एक बार आप अपने कैल्शियम की जांच जरूर करा लें, डॉक्टर से मिल लें और वो जो भी आपको सलाह देते हैं उसे जरूर अपनाइए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट को यहीं देते हैं विराम। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की, अपना रखे एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
4: लेडीज फर्स्ट। Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
1: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
12: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
12: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
13: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
12: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और BPT 5204 यानी कि BPT 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करे और ध्यान दे कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पके आम के बारे में, खास तौर पर इसके उत्पाद और संरक्षण तकनीक के बारे में जानेंगे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं विशेषज्ञ डॉक्टर MA आफ्ताब। मैं आपको बता दूँ, ये अध्यक्ष खाद्य विज्ञान एवं तुड़ाई उपरांत प्रौद्योगिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो पके आम के क्या कुछ उत्पाद बनाए जा सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
2: देखिए, अभी पके आम की जहाँ तक बात है, ये पके आम का सीजन अभी चल रहा है
0: जी,
2: और इसमें जो अर्ली वराइटीज हैं उसमें जरदालू आ चुके हैं, बम्बई आ चुका है, और उसके बाद फिर मालदे जिसको कि लेंगड़ा भी बोलते हैं वो है, फिर फजली है और भी मल्लिका है, ये सब सारे आम का अब सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये आम हम लोग, हमारे किसान भाई जानते हैं कि आम का क्या इम्पोर्टेंस है। इसे फलों का राजा कहा जाता है
0: जी, जी।
2: और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए वो पाए जाते हैं, जो कि विटामिन ए का जो रोल है वो सब लोग जानते हैं कि ये आँख के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है
0: जी, जी।
2: और ऐसे तो और भी सारे विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है इंसान को अपनी ज़िंदगी में, तो विटामिन ए का ये प्रचुर मात्रा आम में पाई जाती है। और आम अभी आ चुका है। अब बात यह है कि आम हाईली सीजनल क्रॉप है, हालांकि ये बहुत सी वैरायटीज़ है जो कि अलग अलग टाइम में अलग अलग होते हवाते ये जुलाई अगस्त तक चला जाता है ये आम का सिलसिला, लेकिन ऐसा लीची के साथ नहीं है। आम के साथ ये हमारा सौभाग्य है कि आम की बहुत सी वैरायटीज़ यहाँ हमारे क्लाइमेट में ग्रो होती है, और आम अभी शुरू हो गया है, अब ये अगस्त तक चलता रहेगा। अब है कि आम जो है तो चूंकि इतने हाईली प्राइज्ड फ्रूट है, इतना उसका महत्वपूर्ण उसका रोल है हमारे बॉडी पर, विटामिन ए है और भी बहुत से फाइटोकेमिकल्स हैं उसमें, विटामिन्स है, मिनरल्स है, तो ये सारा जो है वो सीज़न भर ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर आउट ऑफ सीज़न, और ये खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि बच्चे जवान और बूढ़े सभी इसको लाइक करते हैं, तो आम का जो है तो हम कुछ जो सीज़न भर है तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे। बाद में इसको यूज़ करने के लिए अगर किसी की ख्वाहिश होती है, किसी की इच्छा होती है कि आम का पेय पदार्थ हम पिएं, तो ऐसे तो बाज़ार में बहुत सी सिंथेटिक मिनरल्स, सिंथेटिक बीवरेजेस वगैरह भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो कहाँ तक सही है ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हम आपको आज ये बताएंगे कि आम से प्रसंस्कृत करके कैसे उसके उत्पाद बनाए जा सकते हैं और कम से कम साल भर तो रखा ही जा सकता है। तो ये जो है तो हम आज इसमें बताना चाहेंगे कि आम से क्या क्या बन पाता है। इसमें आम से जो है प्रिजर्व्ड मैंगो पल्प, जैसे कि आम का जो गुठली होता है उसको निकाल के छिलका सा छील करके हम उसका पल्प को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, जो कि बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि स्क्वैश उसी पल्प से, जब पल्प को हमने प्रिजर्व कर लिया है और भंडार में रख के भंडारण कर लिया है, उसके बाद उसका हम स्क्वैश बना सकते हैं। स्क्वैश एक पेय पदार्थ होता है जो कि चीनी के शीरे के साथ मिला के बनाया जाता है, और उसी को जब 3 गुना पानी में मिला दिया जाता है तो ये RTS बन जाता है हमारा, जो कि डायरेक्ट नुक्कड़ पर जो आप पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं, या और भी जैसे कि माजा है, ये सब RTS है, रेडी टू सर्व। तो ये माजा वगैरह को जो है तो हम लोग उसमें कुछ गम मिलाया जाता है इसलिए वो गाढ़ा होता है, लेकिन नॉर्मली इसमें 10% ही जूस रहता है, 10-15% मैंगो जूस रहता है। गाढ़ा पीने में इसलिए लगता है कि उसमें गम्स मिलाए जाते हैं और गम्स मिला के उसको पैकिंग किया जाता है। तो ये स्क्वैश और आरटीएस बन गया मैंगो पल्प से। और अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैंगो जैम। आजकल बच्चे टीवी वगैरह में एड देखते हैं तो अब टिफ़िन में कोई जो है रोटी भुजिया ले जाना नहीं चाहता है, अब चाहता है कि वो जैम हम ले जाएं। तो मैंगो से हमारे उद्यमी भाई भी इसका व्यवसाय कर सकते हैं जैम बना करके, और घर की महिलाएं भी इसको बना करके रख सकती हैं घर में ताकि बच्चों को भी दिया जा सके। और ये बहुत ही स्वादिष्ट रोटी में खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके बारे में भी अब ये बताएंगे। अगला प्रोडक्ट है, जो पाँचवा प्रोडक्ट हमने अभी बताने जा रहे हैं, वो है डिहाइड्रेटेड मैंगो स्लाइसेस। आप देखते होंगे कि गाँव में मैंगो या दूसरी सब्जी वगैरह को भी सुखौता बनाया जाता है धूप में रख के, लेकिन धूप में रखने से इसका बहुत ही पौष्टिक ह्रास होता है, जिसमें जो विटामिन्स मिनरल्स जो होते हैं उसमें बहुत ही कमी आ जाती है। उसका इनहाइजीनिक कंडीशन में वो चूँकि सुखाया जाता है बाहर धूप में, उसमें डस्ट पड़ जाता है, उसमें बहुत सा इन्फेक्शन लगने का डर होता है। तो इस तरह से अभी जो है विकसित की गई है एक कैबिनेट ड्रायर, वो बिल्कुल बंद डब्बा रहता है, उसमें अंदर में हीटर लगा रहता है और फैन रहता है, तो फैन से जल्द जो है उसको मैंगो स्लाइसेस को काट के और उसको डाल दिया जाता है, और डालने के बाद वो ड्राई करके हम लोग ड्राइड मैंगो स्लाइसेस भी पैक करके रख सकते हैं और वो काफ़ी दिनों तक रह सकता है। और वो हम लोग ट्रेवल में जा रहे हैं तो आप एक पैकेट रख लिया उसमें मैंगो स्लाइसेस है, तो इस तरह से मैंगो स्लाइसेस को सुखौता बना करके, लेकिन हाँ कैबिनेट ड्रायर में ही हो, तब उसका रंग और उसका जो पौष्टिक का तत्व है वो सब इंटैक्ट रहता है। और अगला है कि कैंड मैंगो स्लाइसेस। कैंड मैंगो स्लाइसेस क्या है कि जैसे कि आप देखते होंगे कि डब्बा में, टीन के डब्बा में वो जो है तो बहुत सी चीज़ आने लगे हैं, अब तो हर जगह मिलने लगा है, ये टमाटर का प्यूरी मिल रहा है, मटर मिल रहा है, आप हल्दीराम का रसगुल्ला देखते होंगे, इसको कैनिंग बोलते हैं, कैनिंग डब्बा बंदी। तो डब्बा बंदी करके भी हम लोग मैंगो स्लाइसेस को रख सकते हैं, वो साल भर रह जाता है और वो सबसे अच्छा और बिना प्रिजर्वेटिव का ये मेथड है। और इसके लिए लेकिन कुछ उपकरण वगैरह लगते हैं जिसके में लागत आती है, एक बार उपकरण में की लागत में आप पैसा खर्च कर दीजिए फिर अपना काम करते रहिए। तो ये सब उत्पाद हैं, उसके 6 उत्पाद का वर्णन हमने किया है, इसको अब हम बना सकते हैं। और
0: जी तो कैसे बना सकते हैं डॉक्टर साहब, ये भी थोड़ा जानना।
2: उत्पाद बनाने के लिए देखिए एक एक करके मुझे बताना होगा कि प्रिजर्वेशन ऑफ मैंगो पल्प, कैसे हम उसको संरक्षित कर सकते हैं मैंगो के पल्प को। तो मैंगो के पल्प को संरक्षित करने के लिए क्या होता है कि पहले उसको आम को बढ़िया से धो लिया जाता है, वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि एक्स्ट्रा डर्ट है वो है उसमें जो रस निकल जाता है ऊपर से, जो एसिड बोलते हैं उसको, वो निकल जाता है, वो भी धुल जाना चाहिए। और उसके बाद जो है तो उसको बढ़िया से धो करके उसको पीलिंग नाइफ से, स्टेनलेस स्टील का हो, लोहे का बिल्कुल नहीं हो, उससे हम लोग छील लेते हैं। और छीलने के बाद उसको जो है इसमें थोड़ा सा स्लाइसेस काट लीजिए, अगर आपके पास फ्रूट मिल है तो, फ्रूट मिल कुछ नहीं है बल्कि ये मिक्सी जो घर में है ना उसी तरह का होता है फ्रूट मिल, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर किसी को पल्प निकालना है तो वो स्लाइसेस काट करके वो फ्रूट मिल में डाल देते हैं और उसके बाद उसमें वो होमोजेनाइज होकर के बिल्कुल पिसा जाता है। जैसे हम लोग घर में किचन में मिक्सी वगैरह में अगर छोटे पैमाने पर करके देखना चाहते हैं कोई, तो वो जो है तो घर में मिक्सी में उसको स्लाइसेस को काट करके और उसको बिल्कुल होमोजेनाइज करके बना लेते हैं पल्प। अब पल्प निकालने के बाद क्या किया जाता है कि पल्प निकालने के बाद अगर उसमें रेशा है तो थोड़ा मोटे कपड़े से, मोटे जाल वाले कपड़े से उसको छान लेते हैं, इसलिए कि महीन कपड़े वाले जाल से अगर छानेंगे तो वो उसमें आएगा ही नहीं, बहुत कम आएगा। और उसके बाद ताकि उसमें इसलिए छानना ज़रूरी है कि अगर कुछ आम में रेशा वगैरह होता है तो रेशा वाले आम को एक तो लेना ही नहीं है, और जो रेशा वाला आम नहीं है जैसे जरदालू है, उसके बाद मालदा है, जो है ये क्या नाम है, फाजली है, मल्लिका है, ये सब को हम आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। मल्लिका और फजली तो काफ़ी बड़े बड़े आम होते हैं, इसको काटने में भी स्लाइसेस उसमें ज़्यादा स्लाइस निकलता है, पल्प पार्ट ज़्यादा रहता है और गुठली की पार्ट कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा सूटेबल है। वो करके उसको जो है हम लोग मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं, छान लेते हैं, और छानने के बाद उसको जो है उसमें थोड़ा देर उसको चूल्हा पे चढ़ाते हैं, यानी वो फॉर ए फ्यू मिनट्स, ताकि उसमें से अंदर से मतलब 65 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है उसको दो तीन मिनट। जबकि और लेमैन लैंग्वेज में ऐसा बताएंगे कि आम के जो ये है पल्प है, उससे भाप जब निकलने लगे, बिल्कुल हल्का भाप निकलने लगे, मतलब 100 डिग्री तक नहीं टेम्परेचर पहुंचना चाहिए, भाप जब निकलने लगे तो उसको उतार लीजिए। तो इसको पास्तुरीकरण कहते हैं, पास्तुरीकरण हुआ, ये पास्तुराइज कर लिया उसको, उसके बाद उतार लिया, और उतारने के बाद इसमें परिरक्षक डालते हैं, रासायनिक परिरक्षक। इसमें हम लोग नॉर्मली पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइड या सोडियम बेंजोएट डालते हैं। सोडियम बेंजोएट अगर डालना है, क्योंकि पल्पी है इसलिए सोडियम बेंजोएट ज़्यादा सुटेबल होगा, तो सोडियम बेंजोएट में बेंजोइक एसिड जो होता है वही होता है इसमें, तो वो उसमें 0.02% 200 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी एक ग्राम जो है 5 लीटर अगर पल्प है तो आप उसमें सिर्फ 1 ग्राम डालेंगे, आप 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम डाल करके उसको स्वच्छ जल में, यानी पानी है उसको बॉयल कर लीजिए, आप बॉयल करके उसमें डाल दीजिए, और डालने के बाद उसमें उसको पूरे पल्प में उसको मिक्स कर दीजिए। अब मिक्स करने के बाद जो है उसको फिर हम लोग अगर हेड स्पेस छोड़ा है तो थोड़ा सा पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड भी ऊपर में थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद बंद करके उसको सील कर देते हैं, और इस पल्प को हमने प्रिजर्व कर लिया। अब ये पल्प अगले साल तक के लिए प्रिजर्व हो गया, और जब इसकी ज़रूरत पड़ी, मान लिया आपको स्क्वैश बनाना है या आरटीएस बनाना है या जैम बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो ये आप इससे निकाल के व्यवहार कर सकते हैं। जब आम का सीज़न ख़त्म भी हो जाए फिर भी आप इसको निकाल करके आप व्यवहार कर, नॉर्मली तो वही करेंगे लोग कि जब प्रिजर्व करेंगे तो उसको जब तक आम चल रहा है उसी से हम अपना बना सकते हैं जो भी बनाना हो उत्पाद, तो उस तरह से वो हम लोग सील करके रख देते हैं। और अब स्क्वैश देखिए, अब स्क्वैश पर आते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्क्वैश। ये बीवरेजेस में आता है, पेय पदार्थ, नॉन फर्मेंटेड बीवरेजेस।
0: अच्छा।
2: तो अनफर्मेंटेड बीवरेजेस में दो आते हैं, स्क्वैश एंड आरटीएस। तो स्क्वैश बनाने के लिए क्या है कि ये पल्प को हम लोग, मान लिया अगर हम 1 लीटर पल्प को हमने लिया, और लेने के बाद उसको जो है उसका 1.5 गुना चीनी का शीरा बना लेते हैं, 1.5 गुना चीना, दुगना इसलिए नहीं देते हैं कि ऑलरेडी इसमें चीनी है। ये आम मीठा आम है, पका हुआ आम, ये कच्चा आम अगर हम लेंगे तो कच्चे आम में फिर हमको चीनी दुगना मिलाना पड़ेगा। तो 1.5 kg चीनी इसमें हम डालते हैं, और इसमें नहीं डालेंगे, मतलब अलग से शीरा में डालेंगे, शीरा बनाने के लिए उसका हाफ पानी डालेंगे, यानी अगर 1.5 kg चीनी लिया है तो उसमें 750 मिलीलीटर पानी मिला करके उसको गर्म करके शीरा हम लोग तैयार कर लेंगे। अब है कि अगर हम जब शीरा मिला रहे हैं तो हल्का सा उसमें सिट्रिक एसिड मिलाते हैं, 1 किलो चीनी अगर है तो उसमें 4 ग्राम सिट्रिक एसिड, चूँकि हमने 1.5 किलो चीनी दिया है तो इसलिए हमको 6 ग्राम सिट्रिक एसिड को पानी में घोल के उस उबलते हुए नहीं, मैंने गर्म जो हम चढ़ाए हैं गर्म करने के लिए, ताकि चीनी उसका घुल जाए पानी में, तो उसको हम लोग डाल देते हैं सिट्रिक एसिड को। और सिट्रिक एसिड से क्या होता है कि वो चीनी की जो गंदगी है अगर, तो वो भी निकल जाती है, उसमें जो कीड़ा मकोड़ा मान लिया अगर आ गया है तो वो भी निकल जाता है। उसके बाद जब शीरा ये बन जाता है हमारा, चीनी घुल जाता है, सिर्फ चीनी घुलाना है, शीरा को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। और उसके बाद जब इसको जो है हम लोग छान लेते हैं, और छानने के बाद धीरे धीरे उसमें वो जो हमारा पल्प है 1 kg पल्प है, पल्प को किसी बर्तन में डाल देते हैं, बोतल से निकाल के पल्प में डाल देते हैं या डब्बे से, और उसके बाद 1 लीटर उसमें धीरे धीरे हम लोगों को ये शीरा जो है, चीनी का जो सिरप है, उसको धीरे धीरे मिलाते हैं और चलाते जाते हैं ताकि वो उसमें विलीन हो जाए, सारा शीरा जो है धीरे धीरे उसमें घुल जाए। और घुलने के बाद ये जो क्वांटिटी मेरा 1 kg से बढ़ के 2.5 kg हो गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि अब ये शीरा मेरा, ये स्क्वैश तैयार हो गया। चूँकि परिरक्षक हमने पहले से दे रखा है उसमें, इसलिए दोबारा परिरक्षक देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डायरेक्ट बना रहे हैं आम का, तो उसमें हम इस समय परिरक्षक दे सकते हैं, तो उसमें 0.06% डालते हैं पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइड, इसमें लिख लीजिए, चूँकि इसमें पानी मिल गया है, इसमें चीनी मिल गया है, हालांकि चीनी भी प्रिजर्वेटिव है, लेकिन उस क्वांटिटी में हम नहीं दे रहे हैं जितना उसमें प्रिजर्व हो सके, तो उसमें एक थोड़ा बहुत जो है प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं। तो 0.06% यानी 600 मिलीग्राम 600 मिलीग्राम एक लीटर में डालना है। तो अगर ये 2 लीटर हमारा बना है पूरा चीनी का सिरप और ये गूदा मिलाने के बाद, तो उसमें हम लोगों को 1200 मिलीग्राम यानी 1 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा सवा ग्राम के करीब उसको हम लोग पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइड, इस चीज़ को जान लीजिए। उस समय हम लोग पल्प को प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट डाले थे, अभी हमें पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइड डालना है और डाल के उसमें अच्छी तरह से मिक्स करके स्टरलाइज्ड बॉटल में, अगर प्लास्टिक का बॉटल है तो पानी से धो के उसको धूप में अच्छा से सुखा के, और उसको जैसे पानी का जो बॉटल मिलता है हम लोग आरओ वाटर वगैरह पीते हैं उसमें भी प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको करके उसमें जो है बढ़िया से स्वच्छ जल से धो के धूप में सुखाने के बाद हम लोग जो है उसको उसमें भर देते हैं, भरने के बाद कैप को जो है सील कर देते हैं। तो ये हमारा स्क्वैश बन गया। अब स्क्वैश में अगर मुझे व्यवसाय करनी है तो मुझे लाइसेंस लेना होगा, FSSAI का लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस की भी प्रक्रिया अब गवर्नमेंट ने बहुत आसान कर दिया है, वो ऑनलाइन अप्लाई होता है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हर शहर में होता है, तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में ये इसका पता लगाना होगा कि भाई हमने ट्रेनिंग लिया है या सीखा है, हमारे यहाँ किसी विश्वविद्यालय सबौर में ट्रेनिंग भी हम लोग करवाते हैं, तो ट्रेनिंग आप ले लीजिए, सर्टिफिकेट हो जाएगा, तो उससे आपको बैंक का लोन भी मिलने में आसानी होगी और आपको लाइसेंस भी मिलने में आसानी होगा। तो ये आप करके व्यवसाय भी कर सकते हैं और कर सकते हैं। अब अगर मान लिया RTS बनाना है आपको, नुक्कड़ पर छोटे छोटे 100-150 ml में आपको बाहर भेज करके, जैसे लोग फेंटा कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस पीते हैं लोग, तो अब ये लोग जान रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय गैस के और कुछ भी नहीं है। तो उसमें क्या है कि आप लोग बेवरेज बना इसी स्क्वैश को अगर 3 times आप मिला देते हैं पानी इसमें, तो ये बन गया RTS। और RTS बनाने के बाद उसको बॉटलिंग कर दीजिए, क्रॉन कॉर्क सीलिंग कर दीजिए, और उसके बाद एक बड़े से पतीली में डाल करके उसको फिर से स्टरलाइज करना पड़ता है बोतल के समेत, और इसको जो है तो 70-80 degrees centigrade पर कम से कम 15 मिनट तक उसको बॉयल करते हैं। तो उसमें ये सावधानी बरतनी पड़ती है कि इसमें जो बॉटल है वो हीट रेसिस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो इसमें जाने के बाद बॉयलिंग वाटर में जो पानी में जाएगा ये उबलते पानी में, गर्म पानी में, तो वो फट सकता है। तो हीट रेसिस्टेंट बॉटल लेना होगा। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि इसमें जहाँ पर आप मान लिया सेल के लिए डाल रहे हैं किसी नुक्कड़ पर, तो उसको फिर से बॉटल को वापस लेना होगा, ये एक है प्रॉब्लम। और ये बहुत आसान है, लेकिन बहुत आसान है शीशे के बोतल में करना, इसलिए कि उसको आप फिर से स्टरलाइज कर रहे हैं। और इस तरह से हम लोग RTS भी बना सकते हैं घर में। अगर आपके पास स्क्वैश का बोतल रखा हुआ है तो आप कोई आपके यहाँ कोई आया गेस्ट आया है तो आप उसमें 1/4 जो है आप ले लीजिए स्क्वैश ढाल लीजिए ग्लास में, और 3/4 जो है 3 हिस्सा पानी उसमें मिला के आप उसमें पानी से चम्मच से चला के आप सर्व कर सकते हैं। तो ये हाईली न्यूट्रिशस हुआ। ये वही चीज़ फ्रूटी में भी है। फ्रूटी जो पैक करते हैं उसका जो पैकिंग इक्विपमेंट्स है, उसका जो पैकिंग ये है जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत कॉस्टली है। 25-30 lakh रुपए का आता है वो सिर्फ पैकिंग के लिए। चीज़ उसमें वही है जो आपको हमने बताया बनाने के लिए, वैसे ही कर सकते हैं आप। तो ये हो गया है ना। अब एक चीज़ और बताते चले हम कि ग्रीन मैंगो के बारे में हमने नहीं बताया।
0: जी जी।
2: अभी हरा आम का देखिए सीजन है, और हरा आम बहुत टूट रहा है, गिर रहा है, आंधी तूफान आना नेचुरल है, वो आता ही है इस समय में। तो उसको हरा आम के लिए भी इसी तरह से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं पल्प को, लेकिन इसमें क्या है कि आम को छीलने के बाद उसको हम लोग बॉयल कर लेते हैं। अच्छा। और बॉयल करने के बाद उसको जो है फिर उसको निकाल करके हाथ से बिल्कुल उसका पल्प निकाल कर उसको छान लेते हैं, और बॉयल जब हमने कर लिया है तो उसको पास्टोरीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। बॉयलिंग से वो निकला है पल्प, क्योंकि कड़ा पल्प रहता है कच्चे आम में, और बॉयलिंग के बाद उसको निकाल दिया, और निकालने के बाद उसको उसी तरह से प्रिजर्वेटिव हम लोग डाल देते हैं उसमें, जैसे हमने पके आम के लिए बताया, और क्वांटिटी वही रहेगी उसकी भी, सोडियम बेंजोएट और पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइड। स्क्वैश बनाने के लिए भी सीख वही विधि अपनाई जाएगी, लेकिन उसमें ये है कि स्क्वैश बनाने के लिए उसमें हमने 1.5 kilo चीनी लिया था, क्योंकि आम मीठा होता है पका हुआ आम, तो कच्चे आम के लिए मुझे 2 kilo चीनी लेनी होगी, और उसमें भी सैट्रिक एसिड डालना है, क्योंकि चीनी डाल रहे हैं तो सैट्रिक एसिड उस चीनी को खट्टे मीठे में बदलने के लिए उसको सैट्रिक एसिड को डालना पड़ता है, और चीनी की सफाई के लिए भी, और उसमें जो गंदगी है वो भी निकल जाए उसके लिए भी करते हैं, और फिर उसके बाद उसको उसमें तभी है कि ग्रीन मैंगो में हम लोग चूँकि रंग नहीं होता है उसमें, तो उसमें हरा आम का जो है एसेंस भी डालते हैं और कलर भी डालते हैं। तो इसमें कलर और एसेंस का जो परसेंटेज है उसमें 0.001% है, हल्का बिल्कुल। अब वो देखिए, आप लोग ये नहीं समझिएगा कि जो बाज़ार में खाने का रंग मिल रहा है, रंग जो जनरली जो हलवाई लोग यूज़ कर रहे हैं कि वो उठा के ले आते हैं रंग और डाल देते हैं, उसमें लिखा हुआ है आप देखेंगे पैकेट पर कि दिस इज़ नॉट फॉर फूड पर्पस। तो उसके लिए अलग से बुश कंपनी का या और भी बहुत सी कंपनी है, तो उसका जो है तो वो रंग होता है अलग से आता है, वो खाने वाला रंग बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में आप देखिएगा कि वो अलग से आता है, 2 ग्राम 3 ग्राम का ही पैकेट आता है, ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए कि बहुत कम पड़ता है वो। तो घर में किचन में रखने के लिए उतना ही बहुत है। तो ये रंग भी और एसेंस भी, एसेंस भी आपको आप देखिएगा कि एसेंस जो है FFB कंपनी का हम लोग यूज़ करते हैं, वो कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एसेंस भी 0.001%, कलर डालना अगर है तो 0.001%, एप्पल ग्रीन कलर डालना होगा, एप्पल ग्रीन कलर डालना है ग्रीन मैंगो के लिए, और कलर तो राइप मैंगो में तो कलर रहता ही है, इसलिए उसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया RTS स्क्वैश और मैंगो पल्प को कैसे हम पके आम का और कच्चे आम का दोनों का प्रिजर्व कैसे करेंगे, इसके बारे में हमने बता दिया।
0: जी डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छी और विशेष जानकारी के लिए, और आशा करते हैं आम को लेकर बहुत सारे लोग उत्सुक होते हैं, सभी लोगों को ये आम फल का राजा है इसलिए काफ़ी पसंद होता है, स्वादिष्ट भी है और पौष्टिकता भी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसे लेकर, इसके उत्पाद को लेकर क्या कुछ हम बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में उत्सुकता रहती है जो आपने जानकारी दी। तो आशा करते हैं हमारे सभी श्रोताओं को इस वार्ता को सुनकर लाभ मिलेगा।
2: विशेष जानकारी के लिए आप हमारे विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में, हमारा डिपार्टमेंट है फूड साइंस एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, खाद्य विज्ञान एवं तुड़ाई उपरांत प्रौद्योगिकी विभाग, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे आगे भी पर्सनली मिल सकते हैं। हम लोग कंसल्टेंसी भी देते हैं किसानों को, और इन उद्यमी हमारे यहाँ से बहुत से उद्यमी बने हैं, काफी लोग काम भी कर रहे हैं इस पे।
0: तो श्रोताओं, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
1: 1 दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले 1 दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
6: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
5: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: नाटक देखो आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो आओ।
8: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
9: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
8: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
9: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
10: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
8: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
11: क्या क्या क्या?
9: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
11: अच्छा,
8: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
12: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूं स्मार्ट से सुजाता, और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
13: धन्यवाद सुजाता जी।
12: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं?
13: ये तो सुजाता जी, अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है, वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
12: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
13: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटर बॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं, तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस, कुछ पशु जनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी

0: हो सकता है।
1: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
2: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
2: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछूंदर वगैरह जो होते हैं, उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए। उनके माध्यम से भी स्कब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं, तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं, तो उसके बाद हाथ धोएं, बहुत अच्छे तरीके से अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
1: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
2: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टेबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी, और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
1: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
2: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पर इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कंफर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
1: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
2: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है, और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
1: अच्छा, दस्त और डायरिया, उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
2: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास, अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसका जो बेस होता है, उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है।

0: और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें। और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरिनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
1: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
0: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
1: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
0: साफ सफाई एक तरीका है लेकिन इसके साथ कैसे प्रचार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जाँच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
1: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
0: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्ता होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें, कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
1: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
0: सही जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों के विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है तो वो आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
1: सर, आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
0: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये स्वास्थ्य की कुंजी है। और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपके पढ़ाई करने की क्षमता, उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं, आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास हिंदू सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
5: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
4: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
6: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास, जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
8: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
10: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। और मैं आपको बता दूं कि आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लेमन ग्रास के बारे में, और बहुत सारे किसान भाई भी इसकी खेती के बारे में जानना चाहते हैं कि लेमन ग्रास की खेती कैसे होती है, प्रभेद कौन सा है और कौन से क्षेत्र में व्यावसायिक स्तर पर देखें तो इसे उगा सकते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम ये टॉपिक लेकर आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस खास विषय को बताने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर MP मंडल, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि लेमन ग्रास क्या होता है, ये बताएं हमारे श्रोताओं को।
11: किसान भाइयों नमस्कार। लेमन ग्रास एक सुगंधीय पौधा होता है जो खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। यह घास जैसा ही दिखता है, बस इसकी लंबाई आम घास से ज़्यादा होती है। वही इसकी महक नींबू जैसी होती है, और इसका ज़्यादातर उपयोग चाय में अदरक की तरह किया जाता है। लेमन ग्रास के औषधीय गुण जैसे एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी व एंटी फंगल आदि आपको कई तरह की बीमारियों और संक्रमण से बचाते हैं। अक्सर लेमन ग्रास का उपयोग सौंदर्य उत्पाद और पेय पदार्थों में भी किया जाता है। लेमन ग्रास तेल का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। इसमें लगभग 75% सिट्राल पाया जाता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार लेमन ग्रास तेल के सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम किया जा सकता है।
10: तो यहाँ पर आपने जाना कि लेमन ग्रास क्या होता है। डॉक्टर साहब, अगर वानस्पतिक दृष्टि से देखा जाए तो लेमन ग्रास का जो वानस्पतिक परिचय है वो कैसे होगा, उसके बारे में बताएं।
11: लेमन ग्रास की पत्तियों में नींबू जैसी तीक्ष्ण सुगंध आने के कारण ही इस घास का नाम नींबू घास रखा गया है। इसका वनस्पतिक नाम सिम्बोपोगन फ्लेक्सुओसिस है। यह घास कुल पोएसी परिवार का सदस्य है जिनमें फ्लेक्सुओसिस को ही भारत में बहुतायत से उगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसकी दूसरी प्रजातियां हैं सिम्बोपोगन नार्डस, सिम्बोपोगन पेंडुलस एवं सिम्बोपोगन सिट्रेटस। यह सगंधीय पौधा बहुवर्षीय एवं 2 मीटर ऊंचाई वाला होता है। इसकी पत्तियां लंबी कोमल गुच्छेदार होती है। इनके तने पर लाल धारियां होती है।
10: डॉक्टर साहब, अगर लेमन ग्रास की व्यावसायिक खेती के बारे में हम बात करें तो कौन कौन से राज्य में हमारे किसान भाई जो हैं व्यावसायिक तौर पर इसकी खेती कर सकते हैं?
11: लेमन ग्रास भारतवर्ष के दक्षिण पूर्वी राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, पश्चिम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल एवं बिहार में इसकी खेती होती है।
10: और साथ ही अगर खेती की बात करें डॉक्टर साहब, तो मिट्टी बहुत ज़रूरी है कि इसमें मिट्टी का चयन कैसा करें, तो खेती से जुड़ी कुछ बातें और मिट्टी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
11: लेमन ग्रास की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, परंतु इसके लिए सर्वाधिक रेतीली दोमट तथा हल्की कपासीय मिट्टी उपयुक्त होती है। वैसे हल्की लैटेराइट मिट्टियों में भी उगाई जा सकती है, परंतु जीवांश युक्त दोमट मिट्टी जिसका पीएच 6.5 से 7, जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, सर्वोत्तम होती है।
10: इसके साथ ही इसके प्रमुख हम प्रजातियों को जानना चाहिए, कौन कौन से उन्नत प्रभेद हैं जो हमारे किसान भाई जिसका चयन करें खेती के लिए?
11: लेमन ग्रास की अभी जो हाल में रिलीज हुई है वैरायटी, तो सिम शेखर अभी वैरायटी है। इसका जो है उपज क्या है, 280 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। और इसके अलावे कावेरी, प्रगति, प्रमाण, चिरहरित, कृष्णा, नीमा, CKP25, ये सब जो है पुरानी वैरायटी है।
10: और डॉक्टर साहब, अगर आगे बढ़ते हैं तो लेमन ग्रास की कृषि तकनीक के बारे में जानना चाहेंगे, और इसमें सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे खेत की तैयारी कैसे करें अगर लेमन ग्रास लगा रहे हैं तो?
11: लेमन ग्रास की खेती करने से पूर्व खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से आरा तिरछा जुताई की जाती है। उसके बाद लेमन ग्रास का प्रवर्धन बीजों एवं स्लिप द्वारा किया जाता है। लेमन ग्रास की बिजाई इसके बीजों एवं स्लिप्स से किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम लेमन ग्रास के 1 वर्ष पुराने पौधों को उखाड़ करके उसकी स्लिप्स को अलग अलग कर लिया जाता है। स्लिप्स के ऊपर के पत्ते तथा नीचे के लंबी जड़ों को काट करके स्लिप्स तैयार कर ली जाती है। एक अच्छी स्लिप्स की लंबाई प्रायः 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
10: और डॉक्टर साहब, अगर यहाँ पर प्रवर्धन की बात की जाए तो वो कैसे किया जाता है?
11: लेमन ग्रास का प्रवर्धन बीजों एवं स्लिप्स के द्वारा किया जाता है
10: जी। और बुआई और रोपण का समय क्या होना चाहिए?
11: रोपण का कार्य वर्ष में 2 बार, प्रथम फरवरी मार्च में जहाँ सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था हो, तथा द्वितीय वर्षा ऋतु में कभी भी किया जा सकता है। लेमन ग्रास की बिजाई इसके बीजों से की जाती है, स्लिप से भी। बीजों से बिजाई करने की अपेक्षा लेमन ग्रास की बिजाई की सर्वोत्तम विधि है इस स्लिप से लगाना। इसके लिए सर्वप्रथम लेमन ग्रास के 1 वर्ष पुराने पौधों को उखाड़ करके उसकी स्लिप्स को अलग अलग कर लिया जाता है। इन स्लिप्स के ऊपर के पत्ते तथा नीचे की लंबी जड़ों को काट करके स्लिप्स तैयार कर ली जाती है। एक अच्छी स्लिप्स की लंबाई प्रायः 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खेत तैयार हो जाने तथा स्लिप तैयार हो जाने के उपरांत इन स्लिप्स को मुख्य खेत में रोपाई करनी होती है। इसके लिए सर्वप्रथम खाली खेत में एक खुला पानी छोड़ दिया जाता है ताकि भूमि में नमी आ जाए। तैयार की गई स्लिप्स को गौमूत्र, एक भाग गौमूत्र एवं 10 भाग पानी में 2-3 घंटे डुबोकर उनको 5 से 8 सेंटीमीटर गहरे छेद में लगा दिया जाता है। सिंचित एवं उपजाऊ क्षेत्रों में रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए, जबकि असिंचित क्षेत्रों में यह दूरी 45x30 सेंटीमीटर भी रखी जा सकती है। ऐसा पाया गया है कि फरवरी मार्च में लगाई गई लेमन ग्रास से प्रथम वर्ष में अपेक्षाकृत 20% ज़्यादा पैदावार मिलती है। प्रायः स्लिप्स का उगाव 60-80% तक होता है तथा 15-40% स्लिप्स मर जाती है, जिनकी नई स्लिप्स लगाकर गैप फिलिंग कर दी जानी चाहिए। फरवरी मार्च की अपेक्षा वर्षा ऋतु में लगाई गई स्लिप्स की मृत्यु दर कम रहती है।
10: जी, तो यहाँ पर आपने जाना कि रोपण की विधि क्या होनी चाहिए, बुआई किस समय आप कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, जब हम अच्छे उर्वरक देंगे तभी हमारी अच्छी उपज होगी, तो लेमन ग्रास के लिए हम कौन कौन से अच्छे उर्वरक का चयन करें?
11: लेमन ग्रास शाकीय फसल होने के कारण लेमन ग्रास को पोषक तत्वों की काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है। सामान्यतया खेत तैयार करते समय ही 15 टन कंपोस्ट खाद डाले जाने की संतुति की जाती है, परंतु इसके साथ साथ प्रत्येक कटाई के उपरांत भी कम से कम 2-2.5 टन गोबर की खाद पौधों के पास पास डाला जाना उपयोगी रहता है। वैसे रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रति एकड़ प्रति वर्ष 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम पोटाश तथा 16 किलोग्राम फास्फोरस डाले जाने की अनुशंसा की गई है। इसमें से फास्फोरस एवं पोटाश तो वर्ष के प्रारंभ में एक ही बार डाला जाना चाहिए, जबकि नाइट्रोजन का डोज प्रत्येक 2 महीनों में 10-10 किलोग्राम प्रति डोज की दर से दिया जाना उपयोगी बताया गया है।
10: इसके बाद सिंचाई की बात करते हैं, तो सिंचाई कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, वो भी बता दें डॉक्टर साहब।
11: अच्छी फसल तक साग के रूप में उत्तम उत्पाद प्राप्त करने की दृष्टि से लेमन ग्रास के लिए पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए गर्मी के दिनों में प्रत्येक 10 दिन में एक बार फसल की सिंचाई की व्यवस्था हो जाने पर इसका अच्छा विकास हो जाता है। हालांकि असिंचित स्थितियों में भी इसकी खेती की जा सकती है, परंतु इन क्षेत्रों में इसकी केवल एक कटाई ही ली जा सकती है, न कि 3-4 कटाइयों प्रतिवर्ष।
10: डॉक्टर साहब, अगर निकाई गुराई की बात करें हम, तो कब करनी चाहिए, कितने दिन पर करनी चाहिए?
11: लेमन ग्रास की फसल में पहली बार ही ज्यादा खरपतवार होती है। लेमन ग्रास के पौधों की पत्तियों काफ़ी चौड़ाई होने के कारण खरपतवार नहीं पनपती है। लेमन ग्रास की रोपाई के 45-50 दिनों के उपरांत एक बार हाथ से निराई गुड़ाई कर दी जाती है।
10: तो डॉक्टर साहब, इसके साथ ही इसमें लगने वाले कीट और रोगों के बारे में भी बता दें।
11: लेमन ग्रास एक कठोर प्रवृत्ति का पौधा होता है, अतः इस पर अधिकांशतः किसी प्रकार की कीट पतंगों का आक्रमण नहीं होता तथा न ही इस पर कोई ऐसा रोग अथवा बीमारी होती है जो इस फसल के उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित कर सके। वैसे लेमन ग्रास की फसल के प्रमुख रोग हैं लीफ ब्लास्ट, लीफ स्पॉट और पित्त रोग। लीफ ब्लास्ट के उपचार हेतु मैंकोजेब या डाइफोलेटन का 0.3% घोल पत्तियों पर छिड़कना उपयोगी पाया जाता है। लेमन ग्रास का दूसरा प्रमुख रोग है लीफ स्पॉट, जिसके कारण पत्तियों सूख जाती है। डाइथेन M45 के 0.3% घोल के 15 से 20 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करने से यह रोग नियंत्रित हो जाता है। तीसरे प्रमुख रोग है पित्त रोग की स्थितियों में पौधे के तने में काफी वृद्धि हो जाती है।
10: डॉक्टर साहब, इसके साथ ही लेमन ग्रास फसल की कटाई के बारे में थोड़ी जानकारी दें।
11: लेमन ग्रास रोपाई के लगभग 100 दिनों बाद पहली बार कटाई योग्य हो जाती है तथा उसके बाद 60 से 70 दिनों के अंतराल पर इसको काटते रहना चाहिए। फसल की कटाई सदैव फूल निकलने से पहले ही करनी चाहिए तथा फसल को भूमि से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर से काटना चाहिए। इस प्रकार लेमन ग्रास की प्रथम वर्ष लगभग 3 से 4 कटाई तथा अगले वर्ष में प्रत्येक वर्ष 4 से 5 कटाई मिलती रहती है तथा एक बार रोपित फसल लगभग 5 वर्षों तक चलती रहती है।
10: जी, इसके साथ ही सबसे ज़रूरी बात वो है कि लेमन ग्रास से तेल निकाला जाता है, तो डॉक्टर साहब ये कैसे निकाला जाता है, प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में बताएं।
11: लेमन ग्रास की पत्तियों से फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट के द्वारा तेल निकाला जाता है। तो आसवन उस समय करते हैं जबकि पत्तियों थोड़ा मुरझा जाए। इसके लिए उन्हें खेत में या किसी छायादार स्थान पर लगभग 45 से 50 घंटे रखना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो नमी होती है तो नमी मतलब कि समाप्त हो जाती है। उसके बाद फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट से इसको निकालने से क्या होता कि 6 से 7 घंटे में पूरा का पूरा तेल निकल जाता है।
10: जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं 1 हेक्टेयर की, तो 1 हेक्टेयर में कितना तेल प्राप्त हो सकता है?
11: निकाले गए तेल की मात्रा विभिन्न प्रजातियों, भूमि व जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन प्रथम वर्ष में औसतन 250 किलोग्राम तेल 4 कटाइयों से प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है, जो आगामी वर्षों में बढ़ता है तथा 4 वर्षों के बाद घटना शुरू हो जाता है।
10: जी डॉक्टर साहब, प्रति वर्ष अगर लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं तो प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर कितना आमदनी मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को?
11: लेमन ग्रास की खेती प्रति वर्ष जो है 2 लाख रुपया प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है।
10: जी डॉक्टर साहब, इसके फायदों के बारे में भी बता दें हमारे सभी श्रोताओं को।
11: लेमन ग्रास विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीज से भरपूर होती है। रोजाना लेमन ग्रास टी पीने से शरीर डिटॉक्स होता है और विषैले पदार्थ पेशाब द्वारा बाहर निकलते हैं। इससे किडनी, लीवर, गॉल ब्लडर और पेनक्रियाज की भी सफाई होती है। लेमन टी पीने से सर्दी जुकाम दूर होती है, कैंसर की बीमारी दूर होती है, गठिया दर्द से राहत मिलती है, डिप्रेशन से बचाता है, त्वचा में निखार लाता है और निद्रा को दूर करता है, एनीमिया दूर करता है, दिमाग को तेज करता है, बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण से बचाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी सेप्टिक गुणों से भरपूर होता है।
10: जी तो श्रोताओं, आपने जाना कि लेमन ग्रास के कितने फ़ायदे हैं और इसलिए बाज़ार में इसकी मांग भी ज़्यादा है। व्यावसायिक स्तर पर आप खेती कर रहे हैं तो आपको फ़ायदों के बारे में भी बताया गया कि आपको कितना आमदनी मिल सकता है। तो इस प्रकार लेमन ग्रास की खेती आप करेंगे तो आपको ज़रूर मुनाफा होगा और यहाँ पर जितनी भी बातें बताई गई हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप खेती करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।
12: उन्नत कृषि, सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
12: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
12: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
12: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
12: उन्नत कृषि।
14: हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन पर। मैं हूं अनु और स्वागत करती हूं हर रोज की तरह हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तो दोस्तों, हम आज खास विषय आप सभी के लिए लेकर आए हैं, धान में पोषक तत्व प्रबंधन। और इस विषय को आज हमारे बीच लेकर आए हैं डॉक्टर राजीव रक्षित। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम डॉक्टर साहब से जानते हैं सबसे पहले कि बीज स्थली में उर्वरक प्रबंधन हमें कैसे करना चाहिए।
15: नमस्कार किसान बंधु, जहाँ तक धान की बात है, बीज स्थली हमें लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सीधी तरह इसका बुआई नहीं करते धान में, हम लोगों को पता है। तो बीज स्थली में जहाँ तक की बात है, वहाँ हम कोशिश करेंगे कि जो 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है किसी भी बीज स्थली में, उसकी क्यारियों में हम कोशिश करेंगे कि 1 kg नाइट्रोजन, जिसे हिंदी में नेत्रोजन कहा जाता है, 1 kg पोटाश और 1 kg स्फुर या उसे फास्फोरस कहा जाता है।
14: अच्छा।
15: तो हम 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में इसको देने की कोशिश करेंगे, जब हम मिट्टी की प्रिपरेशन या फिर जब शुरुआत करेंगे, जब बीज स्थली बनाने की क्यारियों को तैयार करेंगे। जी। फिर जब बीज गिरने के 15 दिन बाद हम करते हैं कि उसमें 1 kg नाइट्रोजन और देने की कोशिश करेंगे, और नाइट्रोजन जो है बेसिकली आप कोशिश करते हैं कि यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, और सब किसान बंधु इसी विषय की जानकारी अवश्य रखते हैं कि यूरिया जो है जिसमें 46% नाइट्रोजन की मात्रा रहती है या नाइट्रोजन की मात्रा रहती है, तो उसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो हम ये पाएंगे कि बीज स्थली में या बीज गिराने के 15 दिन बाद हम 2.2 kg यूरिया का बीज स्थली में उपनिवेशन करेंगे, मतलब उसका एप्लीकेशन या फिर उस बीज स्थली में डालेंगे।
14: जी, तो यहाँ पर उर्वरक प्रबंधन आपने जाना, और बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर साहब की मात्रा, यानी कि खाद की मात्रा की हम बात करते हैं, अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फसल बर्बाद भी हो जाते हैं, इसलिए मात्रा जानना बहुत ज़रूरी है। तो कितनी मात्रा होनी चाहिए खाद की इसमें?
15: अब ये जो है विषय जो है आपकी, कि ये आप डिपेंड करेगा कि क्या कौन से सारे प्रभेद आप इस्तेमाल कर रहे हैं।
14: अच्छा।
15: जैसे अगर हमने कहा कि अगर ऊपरी जमीन है आपकी, तो वहाँ कुछ अगर जल्द पकने वाली कुछ प्रभेद रहेंगे, तो अवश्य किसान भाई ये करेंगे कि 80, 40 और 20 के हिसाब से, मतलब 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाशियम का इस्तेमाल करेंगे। अगर कुछ संकर किस्म है, जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं, वो उन्नत मान के किस्म है, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी पड़ेगी। जैसे हमने कहा कि जल्द पकने वाली प्रभेदों में 80, 40, 20 के हिसाब से करेंगे, पर जैसे ही संकर किस्मों का अगर इस्तेमाल करने लगे, तो वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा हम 20 kg और बढ़ा देंगे। तो इस अनुसार अगर संकर किस्म है आपके पास, तो 100, 40 और 20 kg के हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का इस्तेमाल आप करेंगे। कई किसान ऐसे हैं जो भागलपुर या इससे जुड़े हुए जिलों में सुगंधित किस्में लगाते हैं।
14: जी।
15: सुगंधित किस्मों में आपके दो तरह के किस्में और आएंगी, एक बौनी किस्म होगी, एक हो सकती है लंबी किस्में। तो बौनी किस्मों में मूलतः हम 80, 40 और 20 kg NPK के हिसाब से ही चलेंगे, पर जो अगर लंबी किस्में हैं, जिनके गिरने का डर रहता है, तो इसलिए हम वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा में थोड़ी कमी कर देंगे, और लंबी किस्मों के लिए 40, 30 और 20 kg NPK का इस्तेमाल हम प्रति हेक्टेयर के मात्रा में करेंगे।
14: और इसके बाद जो अलग खाद हम देते हैं, तो उनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं?
15: जैसे हम ये कह सकते हैं कि अलग खादों में धान के लिए सबसे मूलतः जरूरी है आपका जिंक सल्फेट। जिंक की कमी मूलतः धान में पाई जाती है। भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ जिंक की कमी है, और इस बात को ध्यान रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि धान की फसलों में कहीं जिंक की कमी ना आ जाए। तो 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से मुख्य खेत की अंतिम जुताई के समय एवं कदवा जब करेंगे, जब कादो करेंगे उस फील्ड को, तो उसके पूर्व खेत में हम इसको मिला दें, ताकि किसी भी तरह की जिंक से जुड़ी हुई समस्याएं ना उत्पन्न हो। इसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि हाँ, जब हम फील्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि कंपोस्ट का भी इस्तेमाल किया जाए। अगर किसान भाई कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो अवश्य ये कोशिश करें कि 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से वो रोपाई के 20 से 25 दिन पहले कंपोस्ट का इस्तेमाल कर ले।
16: जी, और किन फसल चरणों में इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए?
15: जहाँ तक फसल चरण की बात है, हर एक किसानों को ये पता है कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम एक बार में नहीं कर देते। हम कोशिश करते हैं कि जो स्पेशलाइज स्टेज है, जहाँ पर फसल को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसी जगह उसका इस्तेमाल की जाए। तो अगर फसल चरण की बात कही जाए धान में, तो नाइट्रोजन की आधी एवं पोटाशियम एवं फॉस्फोरस की पूरी मात्रा जब हम कादो के समय, तथा 1/4 नाइट्रोजन की मात्रा रोपाई के 20 से 30 दिन बाद, तथा शेष जो नाइट्रोजन बचेगी हमारे पास वो बाली निकलने के वक्त ही हम उसका इस्तेमाल करें। ये नॉर्मल कंडीशन में हम ये करें, साधारण मूलतः तो यही किया जाता है। अगर आप किसान भाई के पास ऐसी कोई प्रभेद है जो 150 दिन लेगी या 150 से ज़्यादा दिन लेगी, तो ऐसे क्षेत्र में वो नाइट्रोजन का 1/4 मात्रा रोपाई के पहले इस्तेमाल करें, दूसरा 1/4 मात्रा रोपाई के 3 से 4 सप्ताह बाद इस्तेमाल करें, तीसरा जो है वो 5 से 6 सप्ताह बाद इस्तेमाल करें, और अंतिम जो 1/4 बचेगी वो 7 से 8 सप्ताह में जाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए इस जगह कि खड़ी फसल में नाइट्रोजन का व्यवहार करने के पूर्व खेत से आप अवश्य आपके खरपतवार जो है उसको निकाल दें, या यदि पानी का जमाव बहुत ज़्यादा है तो उसकी भी निकासी कर दी जाए। इन बातों का ध्यान आप फसल के चरणों में रखिए जब आप इन खादों का इस्तेमाल करेंगे।
16: जी, तो आपने सुना किसान भाइयों कि जल जमाव नहीं रहना चाहिए आपके खेतों में, और आप पानी की निकासी का व्यवस्था ज़रूर रखें। अब जैव उर्वरक की बात करते हैं, तो क्या इसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं?
15: अभी भारत सरकार या कई राज्य सरकार भी पारंपरिक खेती की बात कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रही है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अवश्य ये रेकमेंड करते हैं, हम अवश्य ये किसानों को बताते हैं कि समेकित कृषि प्रणाली का उपयोग करें। अच्छा। तो इनके देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि धान में आप अजोला का इस्तेमाल अवश्य कर सकते हैं, या इस्तेमाल किया भी जाता है, या कुछ लोग कर भी रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे मिट्टी में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु भी हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन आपका है उसका इस्तेमाल, उसको खींच कर अपने पास रख लेते हैं, या सिंपल भाषा में कहें तो उसका स्थिरीकरण कर लेते हैं मिट्टी में। कुछ ऐसे हैं हमारे सूक्ष्म जीवाणु। उसके साथ साथ आप धान की उत्पादकता अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो अवश्य ही एजोला के साथ साथ कुछ जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जिनका उदाहरण हम कह सकते हैं जो स्पाइरिलम है, उसके अलावा नील हरित शैवाल है जिसे अंग्रेजी में ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। साथ ही साथ आप कोशिश कर सकते हैं कि फॉस्फोबैक्टीरिया, जो फॉस्फोरस की मात्रा को मिट्टी में बढ़ाएगी, ऐसे बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है आज। और साथ ही साथ माइकोराइजा भी है, किसान इस माइकोराइजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फॉस्फोरस की मात्रा को मिट्टी में बढ़ाया जा सके। तो यही सब है कि आप रासायनिक के साथ साथ जैविक खाद का भी समेकित तरीके से इस्तेमाल करें, इंटीग्रेटेड तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि धान की उत्पादकता भी बनी रहे और भविष्य में हमारी सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट भी बने रहे। जो मतलब सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आज हमारे पास जो खाना है उसको हम इस तरह बचा के रखें ताकि हमारे आगे आने वाले पीढ़ी को भी मिलते रहे। धन्यवाद,
16: बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। और किसान भाइयों, मुझे लगता है कि जितने अच्छे से डॉक्टर साहब ने आपको बताया है उतने अच्छे से आप सुनेंगे और इसे अपने व्यवहार में ज़रूर लाएंगे, तो आप अच्छे से धान में पोषक तत्व प्रबंधन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। इसे फ्रिक्वेंसी याद रखें 90.8 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार। उन्नत कृषि
17: पे
7: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
17: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
17: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
18: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी की बीपीटी 5204 कि नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमीडा क्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें,
5: खरी प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें, 27 से 28 जून 2026।

0: हर समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम के इस एपिसोड में हम बातें करने वाले हैं पीरियड्स के दौरान आने वाले काले खून के बारे में। क्यों आता है काला खून, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो सीधी बात कि हर बार जो काला खून आता है वो बीमारी की पहचान नहीं होती है। ये अक्सर इस वजह से होता है ना कि खून हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा समय तक रुका रहा और वो ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि पुराना हो गया। ठीक वैसे ही जैसे लोहे पर जंग लगती है, वैसे ही खून का रंग गहरा हो जाता है, यानी कि डार्क ब्राउन हो जाता है या तो फिर ब्लैक हो जाता है। और अगर हम पुराने खून की बात करें, यानी कि जो पीरियड्स के दौरान जो पुराने खून आते हैं, जो काला खून आता है उसकी बात करें, उसके कारण की बात करें, तो जब हमारा पीरियड्स धीरे धीरे शुरू होता है या फिर बहुत धीरे खत्म होता है, तो ऐसी स्थिति में भी काला खून आता है। और कई बार खून यूट्रस में बहुत ज्यादा देर तक रहता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो काला या तो फिर डार्क ब्राउन कलर का खून आता है। और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आकर भी खून काला हो जाता है, और ये बहुत ही कॉमन और नॉर्मल रीजन है। और कई बार जो फ्लो बहुत धीमा होता है पीरियड्स का होता है ना, कई बार बहुत धीमा फ्लो होता है, कई बार बहुत हेवी फ्लो होता है, तो जो धीमा फ्लो होता है तो ऐसी स्थिति में भी जो खून आता है वो काला आ सकता है। क्या होता है कि धीमा फ्लो है तो खून जल्दी बाहर नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे में रुक रुक कर अंदर डार्क हो जाता है। और अक्सर ये लास्ट डेज में दिखता है कि पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है। और कई बार हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी होता है। हार्मोन्स यानी कि जो एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोस्टेस्टेरोन होते हैं, वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके जो साइकिल है ना, तो वो भी इरेगुलर हो गए हैं और खून का रंग भी बदल सकता है। और अगर PCOS जैसी कंडीशन है तो भी आपके पीरियड्स के दौरान के जो खून है वो काले हो सकते हैं। और अगर ये सारी परेशानियां हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स के दौरान काला खून इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है, यानी कि संक्रमण की वजह से आ रहा है, तो परेशानी की बात हो सकती है। और अगर इन्फेक्शन की वजह से काला खून आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बहुत ही बुरी बदबू आती है और साथ ही खुजली भी होती है और दर्द भी होता है काले खून के साथ, तो आप समझ जाइए कि ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज से जुड़ा मामला भी हो सकता है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो हो सकता है कि ये अर्ली प्रेगनेंसी लॉस का एक सिम्टम हो या फिर उसका ये एक साइन हो, यानी कि मिसकैरेज का एक साइन हो। ऐसी स्थिति में भी डार्क या तो फिर ब्लैक डिस्चार्ज हो सकता है। इसके साथ ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी डार्क हो सकती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की बात करें तो गर्भावस्था की जो शुरुआती सिम्टम्स दिखते हैं ना, उनमें से एक है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो ये भी हो सकता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो और वो डार्क हो। अगर मैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में बता दूं आपको, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड से काफ़ी अलग होता है। ये उतना लंबा नहीं चलता है और बहुत हैवी फ्लो भी नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में आप डॉक्टर से चेक करा सकते हैं कि कहीं ये प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज से जुड़ा मामला तो नहीं है। इसके अलावा यूट्रस से भी जुड़े कुछ परेशानी हो सकती है, जैसे कि फिब्रॉइड्स हो सकता है या तो फिर एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। फिब्रॉइड्स की बात करें तो गर्भाशय में गांठ बन जाते हैं, तो इसमें आमतौर पर लक्षण दिखते हैं कि पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और लंबे समय तक पीरियड्स चलते हैं। ऐसे में पेल्विक पेन हो सकता है या तो फिर पेल्विक में आपको दबाव महसूस हो सकता है, और साथ ही आपको बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत भी पड़ती है। और इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में सूजन या तो फिर भारीपन भी आपको महसूस होता है, और कभी कभी इसमें खून गहरा यानी कि डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक भी दिख सकता है, और ख़ास तौर से तब जब फ्लो रुक रुक कर आता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, तो ये कंडीशन थोड़ी ज़्यादा पेनफुल होती है। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं कि एक तो काला खून आता ही है, इसके अलावा बहुत ही इरेगुलर ब्लीडिंग होती है और जिसमें कि डार्क ब्लड भी हो सकता है, और कभी कभी आपको कमजोरी लगती है या फिर नौजिया लगता है। इसके अलावा आप पेशाब जाते हैं या स्टूल पास करते हैं तब भी आपको दर्द होता है। इसके अलावा आप पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद में भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ पेट दर्द होता है पीरियड्स के दौरान, तो भी ये हो सकता है कि लक्षण हो एंडोमेट्रियोसिस का। और अगर आपको ऐसे सारे लक्षण दिख रहे हैं और बार बार दिख रहे हैं, हर बार बहुत दर्द हो रहा है, बहुत एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न आपको नोटिस कर रहे हैं, कभी बहुत स्लो है फ्लो और कभी बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो हो रहा है, इसके अलावा डेली लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब हो गई है कि इतनी ज़्यादा परेशानी आपको हो रही है, इतना आपको दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आप सीधे आप डॉक्टर से मिलिए। आपको वेट करने की ऐसी स्थिति में ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि सिंपल आपको मैं समझाऊं तो सिर्फ ब्लैक ब्लड है, गहरा खून है, डार्क ब्राउन खून है, तो इसे नॉर्मल आप ले सकते हैं। लेकिन ब्लैक ब्लड के साथ आपको पेन हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो हो सकता है कि आप किसी और भी परेशानी से जूझ रही हों, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से मिलना ही बहुत समझदारी का काम होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ना यूट्रस से जुड़ी प्रॉब्लम की, तो हमने बात कर ली। कई बार डिलीवरी के बाद भी जो डिस्चार्ज होता है उसका भी जो रंग होता है वो धीरे धीरे लाल से ब्राउन, ब्राउन से ब्लैक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेस लेती हैं, बहुत ज़्यादा आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो तनाव से भरी हुई है, आपकी डाइट ख़राब है, आप भरपूर नींद नहीं ले पा रही हैं, तो भी हो सकता है कि आपके जो लाइफस्टाइल की वजह से आपके हार्मोन्स बिगड़ गए हैं, वो डिस्टर्ब हो गए हैं, और फिर आपके कलर यानी कि पीरियड्स के जो ब्लड है उसका रंग चेंज हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है या ब्लैक हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि चिंता कब करनी चाहिए, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत तब होती है जब आपका जो साइकिल है लगातार हर साइकिल में काला खून आ रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बदबू वाला डिस्चार्ज हो रहा है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा या तो फिर बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स लंबे समय तक नहीं आ रहे हैं, तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये सीरियस कंडीशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए आप अगर ऐसी कोई भी परेशानी, आपको कोई ऐसे सिम्टम्स दिखे काले खून के साथ, तो आप डॉक्टर से मिलिए। और कब ये नॉर्मल होता है, तो पीरियड्स के शुरुआत में या फिर पीरियड्स के अंत में काला खून आना नॉर्मल है। अगर आपका फ्लो कम है तो भी ये नॉर्मल होता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये कभी कभार होता है, लगातार हो रहा है तब टेंशन की बात है। तो आप समझ गए होंगे अब तक कि काला पीरियड ज़्यादातर पुराना खून होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये हेल्थ इश्यूज़ के भी संकेत हो सकते हैं। तो अगर आपको पुराना खून बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, लगातार नहीं आ रहा है, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। आप हेल्दी डाइट लीजिए, कम स्ट्रेस लीजिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, अपने साइकिल को ट्रैक कीजिए, ताकि आप अगर आप अपने साइकिल को ट्रैक करेंगे तो अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ के वजह से आपको पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है या डार्क ब्राउन खून आ रहा है, तो आप उसे ट्रैक कर पाएंगे, उसका आप पता लगा पाएंगे और डॉक्टर से मिल पाएंगे। इसके अलावा अगर आप हाइजीन मेंटेन करेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, स्ट्रेस कम लेंगे तो आपके हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं वो नहीं होंगे, और आप हेल्दी डाइट लेंगे तो भी आपके हार्मोन्स बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं और आपको काला खून आने की परेशानी नहीं होती है। तो आज के कार्यक्रम में, आज के लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही। और जाने से पहले एक खास बात की, अपना और अपने अपनों का रखे बिल्कुल विशेष ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार, और सुनते रहे 90.8 FM ग्रीन, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, अभी गर्मा सब्जियों का मौसम चल रहा है, और अगर गर्मा सब्जियों में या फिर किसी भी तरह के सब्जी में कीट लग जाते हैं तो फिर किसानों की आय बहुत घट जाती है। ऐसे में जरूरी होता है कि उन कीटों की पहचान करें और उनका प्रबंधन करें। आइए इस बारे में हम विस्तार से जानते हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह से, जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
0: सर, आप गर्मा सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई बहनों को विस्तार से बताइए कि कौन कौन से कीट होते हैं जो गर्मा सब्जियों में लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाए।
3: नमस्ते किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा जो कद्दू वर्गीय जो सब्जी है जो इस मौसम में लगते हैं, अब इस कद्दू वर्गीय में कौन कौन है, तो इसमें जो नेनुआ है, उसके बाद करेला है, उसके बाद आपको जो है विभिन्न प्रकार के खीरा है और कद्दू है, ये सारी चीज़ें जो है, परवल है, ये सब जो है कद्दू वर्गीय में आती हैं। उसके बाद किसान भाइयों की भिंडी भी इस सीजन में लगता है, तो ये मुख्यतः जो है इस मौसम में लगने वाले जो है ये विभिन्न प्रकार के फसल है। अब हम इसमें बात करते हैं कि किन किन फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कद्दू वर्गीय में। कद्दू वर्गीय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो हम लोग

का जो पेस्ट है उसके चलते होता है, जैसे जो थ्रिप्ट है या वाइट फ्लाई है इसके चलते होता है। तो इनसे हम लोग, दूसरी बात क्या है कि, और जो दूसरा है जिसमें फ्रूट फ्लाई का प्रकोप होता है, तो फ्रूट फ्लाई इसके चलते क्या होगा, जो करेला का जो फल होता है तो इसके जो शिशु होते हैं वो वहाँ पे जा करके पहले से छोटा सा होल क्रिएट करते हैं, छिद्र क्रिएट करते हैं, और बाद में जो है ये करेले के अंदर उसको खा करके और करेला को नष्ट कर देते हैं। तो इनसे हमको बचाव के लिए, अगर हम जैसे कि इनके फ्रूट फ्लाई के लिए अगर बात करें, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के आजकल जो है कि प्रपंच या ट्रैप बोलते हैं अंग्रेजी में, वो आ गया है। और इसके ट्रैप में जो एक क्यू ल्योर ट्रैप है, उस क्यू ल्योर ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसा लकड़ी का चीज जो है कि उसमें लगा होता है, और उसके अंदर ऐसा सेंट निकलता है कि उसमें लगता है कि इसमें मादा का सेंट निकल रहा है, जिसके चलते जो कीट का, जो फ्रूट फ्लाई का जो कीट का नर होता है उसमें ट्रैप में जाके फंस जाता है। और फंसने के बाद क्या होता है कि जो नर की संख्या है वो बहुत कम हो जाती है, और जिसके चलते पुनः जो है इस कीटों का जो जनसंख्या है उतना नहीं बढ़ पाता है, और हमारा जो करेला का जो फल है वो बच जाता है। दूसरा जो है, जो रस चूसने वाले जो कीट है उसको, उसके बचाव करने के लिए हम जो येलो स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें एक कार्ड का, जैसे कि हम लोग जो एक जो पढ़ने वाला जो पेपर होता है वो, या लिखते जो हम लोग हैं, उसी साइज का एक कार्ड होता है, और वो कार्ड जो होता है पीला रंग के होता है, और इस पीले रंग के कार्ड पे इस पे गोंद लगा होता है, और इस जो गोंद लगे हुए जो कार्ड है, जो पीले कार्ड है, इसको हम लोग किसी लकड़ी के माध्यम से करेले के फील्ड में लगभग 1.5 फीट ऊंचाई पे इसको हम लोग लगाते हैं। इसमें होता क्या है कि जितने भी रस चूसने वाले जो कीट है उनको लगता है कि ये उसका करेला का फूल है, और उस करेले के फूल को समझ करके वो उस पर जाते हैं, और जाने के बाद क्या होता है वो उसी में चिपक जाते हैं, जिसके चलते क्या है कि पुनः जो है कि ये जो कीट है उसकी संख्या कम हो जाती है, और जो हमारे जो करेला के फसल में जो विभिन्न प्रकार के जो ये रोग का भी ये फैलाव करते हैं उससे बचाव हो जाता है। तो ये आपके करेला पे हो गया। और पुनः जब हम लोग बात करें तो जैसे कि खीरा है, तो खीरे में भी लगभग ये फ्रूट फ्लाई का ही प्रकोप जो है सबसे ज़्यादा होता है, और खीरे में भी हम इस प्रकार के ट्रैप को प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जिसको, जो नेनुआ बोलते हैं किसान भाइयों, तो नेनुआ में भी सेम टाइप की बात आती है। इसके बाद क्या है कि ठीक है, आपको अगर ट्रैप नहीं मिलता है तब क्या करें, तो उस कंडीशन में चूंकि ये सब्जियां हैं जिसको हम लोग बहुत जल्दी मतलब पेस्टिसाइड छिड़कने के बाद इसको लंबे टाइम तक नहीं रखते, तुरंत उसको हम लोग सब्जी खा लेते हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत जो विषाक्त जो कीटनाशी है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके इस्तेमाल करने से क्या है कि वो हमारे जो शरीर है उस पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, और विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों का हम लोगों का ये कारण बनता है। तो उससे इसे में है कि नीम का तेल जो होता है, नीम ऑयल जिसको बोलते हैं, उसको 1500 ppm जो है उसकी 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में हम लोग इसको शाम के समय में जो है कि इसको छिड़काव कर सकते हैं। अब इसके बाद भी जो है कि अगर लगता है कि नहीं, सो अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है अगर नीम के वायल से, लेकिन मुख्यतः ये है, देखा गया है कि नीम के वायल को अगर हर एक हफ्ते पे अगर हम रिपीट करते हैं, मतलब दोहराते हैं, तो ये इंसेक्ट की संख्या कम रहती है और आपको रासायनिक कीटनाशी की ओर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसान भाइयों, अगर ये भी उपलब्ध है आपको नहीं है, तो अगर ये फ्रूट फ्लाई से समस्या है, तब उस कंडीशन में जो है इसमें जो इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है उसकी जो है 0.4

0: ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में इस और उसमें कुछ स्टिकर मिला करके इसको छिड़काव करें, तो इससे जो है कि आपको इसे निदान हो जाएगा। अब जो बात करते हैं इस कुकुरबिट्स या लतीदार के अलावे, तो लतीदार में किसान भाइयों एक और कीट है जिसको हम लोग को उस पर चर्चा करना चाहिए, जैसे कि उसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं रेड पम्पकिन बिटिल, जो लौकी में जनरली आप देखते होंगे जहाँ पे भी कद्दू जो लगता है तो उसके झांका पे या नीचे में भी आपको देखते हैं तो लाल लाल टाइप के आपको कीट दिखाई देते हैं जिसको लाल भृंग हम लोग कहते हैं। तो ये लाल भृंग को रोकथाम करने के लिए शुरुआती कंडीशन में क्या होता है कि अगर राख है किसान भाइयों के पास उपलब्ध है राख, तो इसको राख का भुड़काव सवेरे के समय में करने से ये जो कीट है ये भाग जाते हैं, और भागने के कारण आपको कोई रासायनिक कीटनाशी इस्तेमाल किए बिना इसे आप बच सकते हैं। ये कीट जो है मुख्यतः जो है आपके जो ज़मीन में जो सटे पहले तो ये पत्तियों को खाते हैं पत्तियों, उसके बाद क्या है कि अगर आपका फल निकलता है कद्दू का निकलता है जो ज़मीन से सटे हुए रहता है तो उसमें भी ये हल्का सा छिद्र बनाता है और बाद में जो है इसके अंदर खा करके और सब्जी को जो है मतलब वो ख़राब कर देता है, वो उसके मार्केट वैल्यू को जो है कम कर देता है। तो ये है, एक तो राख छिड़काव करना है, दूसरा जो है इसमें एक फेनभल का जो पाउडर आता है उसका 2% मात्रा जो है उसे 10 से 15 केजी जो है प्रति हेक्टेयर की दर से जो है उसको सवेरे के समय में भुड़काव करने से ये जो लाल भृंग है इससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये तो हुई आपको कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए। अब जो एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट जो पेस्ट है वो है भिंडी, तो भिंडी के लिए भी भिंडी में जो है कौन कौन जनरली कीट लगते हैं, तो भिंडी में सबसे ज़्यादा जो है आप देखते होंगे कि जो उसका जो फल है तो फल को आप देखते होंगे कि उसमें छोटा सा पहले छिद्र करता है फिर बाद में क्या होता है कि आपके भिंडी को टेढ़े मेढ़े कर देता है वो, तो ये फल एवं प्ररोह बेधक कीट इसको बोलते हैं। तो ये इसके चलते क्या होता है ये आपका दो तरह से क्षति करता है, एक शुरुआती कंडीशन में ये क्या करता है कि जो भिंडी का जो छोटे पौधे होते हैं जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है तो ये इसके जो शिशु है उसी में उसके बढ़ने वाला पोर्शन में ही उसको काट देता है, और काट देने के बाद क्या होता है कि जो जो उसको बढ़ने वाला जो कली होता है वो चूँकि उसी को काट देता है तो पुनः जो है कि नीचे से या बगल से कली निकलती है जिसके चलते जो है कि उत्पादन पे बहुत मतलब इसका प्रभाव पड़ता है। तो एक तो ये है शुरुआती कंडीशन में, और बाद की कंडीशन में जो है कि आपके फल को ये टेढ़े मेढ़े कर देते हैं, और आपका जो है कि कभी कभी आप देखेंगे क्या कि जो भिंडी का जो बढ़ने वाला जो एरिया है वो जो भाग है ऊपरी वाला भाग वो झुका हुआ नीचे की ओर गिरा हुआ है क्योंकि उसको काट देते हैं इसके शिशु। तो अब इससे हम लोग कैसे इसका बचाव कैसे करें, तो सबसे पहले तो इसमें ये है कि आप अगर ऐसे भिंडी आपके अगर में दिखती है तो उसको आपको तोड़ करके खेत में कभी नहीं फेंके, उसको एक जगह जमा करें और उसको मिट्टी में दबा दें, तो पहला काम तो ये है। उसके बाद क्या है कि नीम आधारित जो है कि कीटनाशी हम लोग जो है कि इसमें छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि नीम की 1500 ppm की मात्रा जो है 4 लीटर पानी में प्रति लीटर पानी में इसको छिड़काव करना है। दूसरा जो दवा कीटनाशी है वो है इमामेक्टिन बेंजोएट, ये इमामेक्टिन बेंजोएट पुनः जो है 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में या यूँ कहें तो 10 लीटर पानी में 4 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट की दवा इसमें देना है। अब इमामेक्टिन बेंजोएट जो है ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं होता है, ये एक झिल्ली के तरह होता है, तो पहले इसको हम लोगों को घुला लेना है और घुलाने के बाद तब इसको जो है हमारा स्प्रेयर है उस स्प्रेयर में डालना है और उसमें कुछ स्टिकर की मात्रा, जैसे कि अगर स्टिकर आपके पास नहीं हो तो 1 रुपये वाला जो शैम्पू का सैसे आता है वो इसमें डालिए और पुनः उसको अच्छी ढंग से मिला लेने के बाद इसको जो है कि शाम के समय 4 बजे बजे के बाद इसको जो है छिड़काव करिए। तो ये हो गया। दूसरा जो कीटनाशी है वो स्पाइनोसेड है, स्पाइनोसेड 45 EC, यह एक लिक्विड के फॉर्म में ये कीटनाशी पाया जाता है और इसका जो है आधा ml मात्रा जो है प्रति लीटर पानी में छिड़काव करने से आप इसे जो है कि रोकथाम कर से इससे हो जाता है। अब दूसरा जो है कि एक है जो लाल बग होता है एक भिंडी में, और ये क्या करता है कि ये इसके जो शिशु और जो वयस्क होते हैं वो रस चूसते हैं आपके जो भिंडी के जो पत्तियां होती है उसके, और जिसके चलते क्या होता है कि ये पत्तियां सूख जाती है। तो चूंकि ये एक बग है, रस चूसने वाली कीट है, इसलिए इसके कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट के लिए थायोमेथोजम का जो है 35 AC का 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको छिड़काव करना है, ठीक है। थायोमेथोजम 75 AC। और दूसरी जो दवा है इसको हम लोग जो इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें है इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL, इसकी जो है 1 ml मात्रा जो है प्रति 3 लीटर पानी में इसका छिड़काव करना है। अगर संख्या ज़्यादा हो तो आधा ml प्रति लीटर पानी में साथ में, हम किसान भाइयों बराबर बोलते हैं कि स्टिकर इसमें मिलाना ही मिलाना है। स्टिकर के मिलाने से, अगर स्टिकर या शैम्पू के मिलाने से ये कीटनाशी की क्षमता को बढ़ा देता है और ये कीटों के रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, इसलिए स्टिकर आप ज़रूर लगाएं। तो ये भिंडी में लगने वाले जो मुख्यतः जो कीट है। दूसरा, अब चूंकि बीच बीच में किसान भाइयों पानी भी हो जा रहा है जो इस साल जो हम लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो क्या होता है कि आप देखेंगे कि आपका जो भिंडी का जो पूरा पत्ती है तो उसमें जो वेन होता है वो पीला दिखता है, और बाद में क्या होता है कि पूरी जो भिंडी का जो पत्ती है वो चितकावर टाइप से हो जाती है, पीली टाइप से हो जाती है, और एडवर्स कंडीशन में जब और ज़्यादा जब इसकी व्यापकता होती है तो कभी कभी आपका भिंडी भी पीला पीला जब निकलने लगता है, तो ये भी जो सफ़ेद मक्खी है उसके चलते होती है, और यही जो मक्खी है सफ़ेद मक्खी ये इसके विषाणु को एक पौधे से दूसरे पौधे पे स्थानांतरित करती है। इसीलिए जब किसान भाइयों आपको अगर आपके खेत में ऐसा दिखता है पत्तियों पे ऐसा अगर ऐसा सिम्टम दिखता है ऐसा, तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे दिखे अगर किसी ब्रांच में है तो उस ब्रांच को मतलब किसी चीज़ से काटिए, और काटने के बाद उसको मिट्टी में दबा देना। अगर पूरे पौधे में ही अगर है तो पूरे पौधे को ही नीचे से जड़ से उखाड़ करके और उसको खेत में नहीं छोड़ना है, उसको जितने भी अगर 5-10 पौधे में है आपके खेत में तो उसको उखाड़ करके और उसको जो है मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। चूंकि अगर आप किसान भाई उखाड़ करके अगर फील्ड में ही छोड़ देंगे, खेत में ही छोड़ देंगे, तो उसमें जो उस कीट का जो जीवन चक्र के जो रहता है तो पुनः आपका जो स्वस्थ पौधा है उसके ऊपर वो जाता है, और जाने के बाद उसको पुनः उसमें जो विषाणु है उस विषाणु को वो अंतरित कर देता है, उसमें डाल देता है, और जिसके चलते हैं कि आपका जो अच्छा पौधा है भिंडी का उसमें भी ये रोग फैल जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको किसान भाई ख्याल रखना है, और मतलब इन चीज़ों के करने से हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो जो गर्मी के गर्मा का जो सब्जी लगा हुआ है इसको आप अच्छे से कीटों से नियंत्रित कर सकेंगे और अपनी उत्पादकता को बढ़ा करके आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है कि किसान भाई बहन आप सर के द्वारा जो भी बताए गए उपाय हैं उन्हें अपनाएंगे और कीटों का बेहतर प्रबंधन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
7: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-80% और दोपहर में 25-30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13-17 जून के दौरान सामान्यतः 14-15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुआन देवकी, शक्तिमान एक, शक्तिमान दो, राजेंद्र शंकर, मक्का तीन और गंगाई ग्यारह। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दे मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दे। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दे, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दे। इसके बाद वहाँ कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि नमस्कार, ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम एक खास विषय लेकर आए हैं हमारे सभी किसान भाइयों के लिए और साथ ही हमारे अन्य श्रोतागण के लिए। तो श्रोताओं, आज हम बता दीजिए, हमारा जो विषय है बहुत ही खास है। आज हम बोरो धान की उन्नत खेती के बारे में जानेंगे और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर आनंद कुमार। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि बोरो धान क्या होता है और साथ ही खरीफ धान से ये कैसे अलग होता है।
2: किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम बताएंगे कि बोरो धान क्या होता है। बोरो धान एक विशेष प्रकार का धान का मौसम है जिसमें बुआई जारा से पहले अक्टूबर नवंबर, जैसे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, रोपनी जारा के बाद जनवरी फरवरी और कटनी अप्रैल मई महीने में होती है। और बोरो धान की उन्नत खेती ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां जल जमाव के कारण गेहूं या मक्का जैसी फसलों की खेती नहीं की जा सकती है। सबसे पहले इसकी खेती नदियों के किनारे होती थी जिसमें लंबी ऊंचाई एवं कम उपज देने वाली प्रजातियों का व्यवहार होता था। अब अधिक उपस्थित धान के बौने प्रभेद होने के आगमन के कारण विभिन्न क्षेत्रों में इसकी खेती का प्रचलन बढ़ा है और बोरो धान की खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई है। अब इसकी खेती निचली भाग में ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के जमीन जहां सिंचाई की सुविधा होने लगी है। बिहार राज्य में बोरो धान की खेती सबसे पहले कोसी प्रमंडल अंतर्गत होती थी, लेकिन अब इसका प्रसार पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, किशनगंज आदि जिलों में भी हो रही है।
0: जी डॉक्टर साहब, बोरो धान की अनुशंसित किस्मों को हम जानना चाहेंगे, कौन कौन सी अनुशंसित किस्म है?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के गहन अनुसंधान के बाद शीत अवरोधी बोरो धान के लिए प्रभेद का अनुशंसित किए गए हैं। बोरो प्रजातियों में अधिक उत्पादन क्षमता उपलब्ध है, साथ ही प्रचुर नमी उपलब्धता, पूरे जीवन काल में तीव्र सूर्य के किरणों की प्रचुरता, रोग कीट एवं मौसमी खरपतवार की न्यून संभावनाओं के कारण समान धान की तुलना में लगभग 30-50% तक अधिक बोरो धान की खेती से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बोरो धान में बोरो संस्तुत अधिक उपस्थित प्रजातियों में गौतम, ब्रह्मचर्य, धनलक्ष्मी, प्रभात, सरोज, IR64 है। जैसे हम लोग जानते हैं कि गौतम एक अनुशंसित बोरो के लिए महत्वपूर्ण प्रभेद है। तो गौतम बोरो मौसम के लिए यह एक बौनी उपस्थित किस्म है। इसमें कल्लों की संख्या अधिक, पत्तियां खड़ी तथा हरी होती है। इसके दाने महीन होते हैं तथा इसकी उपज हम लोग 60-70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ले सकते हैं। इसकी अवधि, परिपक्वता अवधि 170 से 175 दिन की होती है। और दूसरी जो प्रभेद है वह रिचारिया है। यह बौना प्रभेद 155 से 160 दिनों में पककर तैयार होती है। इसके दाने लंबे तथा पतले होते हैं। इसकी उपज क्षमता 55 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तीसरा प्रभेद सरोज है। यह बौना प्रभेद बोरों में 160 से 170 दिनों में पककर तैयार होती है। इसके दाने लंबे तथा पतले होते हैं। इसकी उपज लगभग 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म ठंड प्रतिरोधी है।
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें होंगी अनुशंसित किस्मों की। अब इनके नर्सरी तैयार करने की विधि भी हम जानना चाहेंगे, कैसे नर्सरी तैयार करें बोरो धान के लिए?
2: सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि बीज स्थली का चयन या नर्सरी तैयार करने के लिए हमें जहां पानी का टिकाव होता हो और मिट्टी भारी हो, उसके लिए हम लोग जमीन का चयन करते हैं। और खेत में एक हेक्टेयर के दसवें भाग के लिए 10 से 15 क्विंटल गोबर की खाद, 2.5 किलो यूरिया, 6 किलो SSP, 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग पौध को के खेत को तैयार करते समय डालकर कदवा कर दें। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज शोधन के लिए कार्बेंडाजिम का प्रयोग करना चाहिए। 80 से 100 ग्राम अंकुरित बीज की बुआई प्रति वर्ग मीटर में करनी चाहिए। बीज अंकुरण के लिए बीज को 24 घंटे पानी में भिगोने के पश्चात 24 घंटे छाया में भींगे बोरों से ढकना आवश्यक है। अंकुरित बीज को समान रूप से तैयार बीज स्थली में छींटे या टोप दें। बीज स्थली समतल होनी चाहिए। पौधों को पाला से बचाने के लिए बीज स्थली में हमेशा पानी रखना चाहिए और रात में पॉलीथीन से ढक देना चाहिए। बीज को पहले सतह पर पानी में डुबोकर रखने के बाद नमी वाले बोरे में 1 दिन रखें। बीज के अंकुरित हो जाने के बाद उसे तैयार बीज स्थली में डालना चाहिए। बीजों को उपचारित 2 ग्राम बेवेस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से करके बोना ही श्रेयस्कर होता है। किसान भाई बीजों की बुवाई के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें ताकि नर्सरी में नमी पर्याप्त बनी रहे।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, ये बोरो धान की नर्सरी तैयार करने की विधि आपने बताई, लेकिन अब उन्नत खेती के लिए बहुत सारी जो हैं वो शस्य क्रियाएँ होती हैं, तो उन शस्य क्रियाओं के बारे में बताएं, किसान भाइयों को कौन कौन सी शस्य क्रियाएँ अपनानी चाहिए जिससे कि वो उन्नत खेती कर पाएँ बोरो धान की।
2: बोरों के लिए बुआई का समय, बीज गिराने का समय 15 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक होता है और बीज दर हम लोग को 1 हेक्टेयर के लिए 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। रोपनी का समय अपनी मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद 15 फरवरी तक की जा सकती है। एक स्थान पर 1 या 1 से 2 बीजरे रोपने चाहिए। पौधों से पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। 1 वर्ग मीटर में 35 से 40 मीटर झूर रखें। रोपने के बाद अगर कहीं पौधे मर जाएं तो वहीं पुनः रोपनी कर देना चाहिए। कल्लों की संख्या वृद्धि के लिए छिछली रोपनी आवश्यक है। पानी में हल्की परत रखना चाहिए ताकि घास पात न जम सके। उर्वरक का व्यवहार करते समय किसान भाई ये अनुशंसित जो उर्वरक का डोज है उसके हिसाब से करना चाहिए, जैसे 100 किलो नेत्रजन, 40 किलो सफोर, 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है उसको करना चाहिए। कदवा करते समय आधा नेत्रजन और सफोर एवं पोटास की पूरी मात्रा डाल दें। बचे हुए नेत्रजन का आधा रोपनी के 25-30 दिन बाद उपरिवेशन के रूप में और आधा भाग गाभा जब लगने लगे तो उसके पहले डाल दें। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार में जैसे हम लोग जानते हैं सस्क्रियों द्वारा खरपतवार नियंत्रण हेतु गर्मी में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें और फसल चक्र अपनाएं, चाहे हरी खाद का प्रयोग, चाहे पटलर आदि का प्रयोग करें। रासायनिक विधि के अंतर्गत विभिन्न खरपतवार नाशक फसल को रोपाई के पश्चात संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रेटीला क्लोर, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं प्रेटीला क्लोर 50% इसी 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 5-7 किलोग्राम बालू में अच्छी तरह मिलाकर पर्याप्त नमी की स्थिति में नर्सरी में डालने से 2-3 दिन के अंदर प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह जो रोपाई की स्थिति में सक्रिय एवं चौड़ी पत्री वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु जो रसायन संस्तुत रसायन है उसको प्रयोग करना चाहिए, जैसे प्रेटीला क्लोर, उसको हम लोग 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर को 50 किलो बालू में मिलाकर अच्छी तरह से उसके बाद 3 दिनों के अंदर प्रयोग कर देना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो बोरो धान की खेती होती है, बोरो धान में कीट रोग व्याधि का प्रकोप बहुत कम होता है, लेकिन जो कीट में गंधी कीट का प्रकोप होता है तो साधारणतः बोरो मौसम में रोग व्याधि को प्रकोप कम होता है। गंधी कीट की रोकथाम हेतु फॉलीडॉल कीटनाशक धूल के भुरकाव पौधों की बालियों पर करनी चाहिए। इसका प्रयोग उस समय होता है जब दानों में दूध बढ़ने लगता है। फसल की कटनी जब बाली के निचले दाने करे हो जाएं और पर सिंचाई बंद करके सभी दानों को करे हो जाने पर जैसे फूल की अवस्था होती है उससे 30 से 35 दिनों के बाद कटाई करनी चाहिए। प्रभेद की अवधि के अनुसार पक जाने पर कटनी करनी चाहिए। कटाई के बाद दानों की सफाई करके छाया में 13-14% नमी तक सुखाकर भंडारित कर देनी चाहिए। एक बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि पौधों को हम लोग जैसे बोरो मौसम है तो उसमें हम लोग जैसे बिचड़ा को पौध से ठंडक से बचाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो उसमें पौधों की सिंचाई के समुचित रूप से करते रहना चाहिए। जैसे अधिक जब ठंडा पड़े तो उसे पौधों की सिंचाई समुचित रूप से करते रहना चाहिए। पुआल और गोबर की राख का छिड़काव सप्ताह में दो बार करनी चाहिए और प्रातः पत्तियां पर एकत्र उसको गिरा देना चाहिए और पौधों को साथ प्लास्टिक सीट पर इसे ढक देते हैं और शाम में ढक देते हैं, प्रातः उसे हटा देते हैं। कुछ सीमा तक खेत के धुआं करके ठंडक को बचा, जो बिचड़ा को है उसको बचा सकते हैं। बोरो धान किसानों के बीच, हमारे किसानों के बीच लोकप्रिय होने का मुख्य कारण इसकी अधिक उपज होना है। इस मौसम में अधिक सूरज की किरणें पौधे को मिलती है, रात्रि में कम तापमान रहता है और अच्छा जल प्रबंधन बोरो सीजन में होता है, जिससे के साथ साथ कम रोग व्याधि प्रकोप एवं भरपूर उर्वरक का प्रयोग करने से जो हमारे प्रभेद हैं वह क्षमता से अधिक उपज देती है। लेकिन खरीफ मौसम में ऐसा संभव नहीं है। तो भोरो धान की खेती मुख्य रूप से किसान भाई जहां जल जमाव की समस्या रहती है, जहां हम लोग जो गेहूं और मक्का की फसल नहीं ले सकते हैं, उसकी खेती करके, भोरो धान की खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी, तो किसान भाइयों, बोरो धान की खेती के बारे में आपने जाना, तो जो कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं आप उनको सुने और जब आप इसकी खेती कर रहे हैं तो उस विधि में आप ज़रूर इसे डालें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन अगले विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के।

0: खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
5: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई की विभिन्न तकनीकों के बारे में। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि धान हमारे लिए एक प्रमुख खाद्यान्न है, साथ ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है, इसलिए कई मायनों में धान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि धान की फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसान भाई बहन ये समझे, ये जाने कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह की बुआई करनी चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: जी धन्यवाद उमा, नमस्कार।
6: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि धान की बुआई की कितने प्रकार की तकनीकें होती हैं?
8: विशेषतः धान की बुआई जो हम करते हैं वो कई हद तक डिपेंड करती है कि किस तरह की मिट्टी है या किस तरह का जल वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम तरीकों की बात करें, विभिन्न तकनीकों की बात करें, तो बेसिकली 3-4 तकनीकें होती हैं। एक होती है डायरेक्ट सोइंग, जिसको हम सीधी बुआई बोलते हैं। एक होती है ट्रांसप्लांटिंग, जिसको हम रोपाई विधि बोलते हैं। उसके बाद होती है श्री विधि, जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं। और एक होती है मैकेनिकल सीडिंग, जिसमें हम अगर ड्रम सीडर वगैरह कोई मशीन्स यूज़ करके हम बुआई करते हैं बीज की। तो ये कुछ तकनीकें होती हैं। अब किसानों के पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसा ज़मीन है, उस पर जल जमा हो रहा है या नहीं, या मिट्टी किस तरह का है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बुआई तकनीकें इस्तेमाल करना चाहते हैं।
6: जी मैम, तो मैम आप इन तीनों तकनीकों को विस्तार से समझा दीजिए।
8: पहली जो हमारी डायरेक्ट सोइंग यानी सीधी बुआई हो गई, तो डायरेक्ट सोइंग कहने का मतलब ही है कि हम या जब बुआई कर रहे हैं तो हम सीधे अपने जो मेन लैंड है, अपनी जो ज़मीन है, उस पर हम सीधे बुआई कर रहे हैं। तो दो प्रकार की डायरेक्ट सोइंग होती है, यानी सीधी बुआई दो तरीके की होती है। एक तो हमारी सूखी बुआई होती है और एक गीली बुआई होती है। सूखी को जिसको हम ड्राई DSR बोलते हैं और गीली बुआई जिसको हम वेट DSR बोलते हैं। तो सूखी क्या होती है कि जब किसानों के पास अगर पानी वर्षा नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा या फिर पानी की कमी है, इरिगेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय जल जमाव बहुत कम होता है ज़मीन पे, तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जब हम वर्षा, जैसी पहली वर्षा आती है उसमें हम प्लाविंग करते हैं और उसको सूखने के बाद, मतलब ज़मीन हमारी जो होती है वो हल्की सूखी होती है और उसके बाद हम उसकी बुआई करते हैं, अपने धान की बुआई करते हैं, और दूसरी जो होती है गीली बुआई, गीली DSR जो होती है उसमें जब अगर हमारे पास पहले क्या करते हैं बत्तर DSR जिसको बोलते हैं, उसमें हम थोड़ा इरिगेशन दे देते हैं, वर्षा अगर रहती है तो मिट्टी काफ़ी गीली रहती है तो हम उस समय प्लाविंग करते हैं, उसके बाद हम पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं, और जब हमारी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि जब हल्की बहुत मॉइस्चर रहे मिट्टी में, तो हम सीधी बुआई करना चालू करते हैं धान की। अब सीधी बुआई करना कैसे है, हम सीधी बुआई करने के लिए जैसे धान की कोई भी वैरायटी है अगर आप उसकी स्पेसिंग तो पहले देख लेते हैं, मतलब जनरली 20x10 के स्पेसिंग पे हम बुआई करते हैं, तो क्या करेंगे कि हम लाइन 20 रो, जो हमारी रो के रो की डिस्टेंस होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम जब रो बनाते हैं उस पे लाइन, तो हम लाइन बनाकर और उस पे जो धान होता है उस पे सीधे तरीके से धान हम गिराते जाते हैं, उसको हम लाइन सोइंग बोलते हैं, और उसके बाद हम उसकी थिनिंग करके उसकी डिस्टेंस को मेनटेन करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह की सीधी बुआई से क्या फ़ायदे होते हैं कि हम काफ़ी हद तक पानी की बचत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी को कोड़ना नहीं पड़ा या पडलिंग नहीं करनी पड़ी, मजदूरी कम हो जाती है इसके वजह से, और काफ़ी हद तक समय की भी बचत होती है। जिन किसानों के पास मतलब पानी या जल जमाव नहीं है या पानी का फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम DSR जाते हैं, और DSR से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि हमारे काफ़ी उसकी जो उपज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और पानी जब बचता है, पानी मतलब पानी की बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती है DSR में। दूसरी होती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग विधि। तो ट्रांसप्लांटिंग विधि में क्या होता है कि पहले हमें नर्सरी लगाना होता है, तो नर्सरी हम अलग जगह करते हैं, और फिर जब नर्सरी का पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाता है, तो उस 20 से 25 दिन पुराने पौधे को हम उखाड़ कर एक एक करके हम उसको ज़मीन में लगाते हैं, हमारे मेन लैंड में लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी में जब बुआई कर रहे हैं तो नर्सरी मेन लैंड जब हम अपना प्रिपेयर कर रहे हैं उसके, समझ लीजिए मेन लैंड के सोइंग के 20 से 25 दिन पहले हमें अपना नर्सरी तैयार करके अपना बिछड़ा गिरा देना होता है। तो नर्सरी भी हम कई तरीके से तैयार करते हैं, चाहे वेट नर्सरी हो गया, ड्राई नर्सरी हो गया, डेपॉग नर्सरी हो गया, जो भी। तो अब हम जनरल जब बिछड़ा गिरा देते हैं तो उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद क्या होता है कि जब हमारा धान में दो पत्तियां, दो लीफ जब अंकुरित होकर निकल आती हैं तो उस समय उसको हम निकालते हैं और अपने मेन लैंड की तैयारी जो हमने कर रखी होती है, मेन लैंड की तैयारी कैसे करनी होती है, पडलिंग करना होता है, इरिगेशन करके उसको अच्छे से कोड़ना होता है, ताकि जब हम बीज निकाल रहे हैं, जो सीडलिंग्स हम जो निकाल रहे हैं उसके जड़े काफ़ी अच्छे से पकड़ ले हमारे मिट्टी को, तो इसके लिए हमें पडलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है।
9: पडलिंग यानी कि
8: हम कई बार, एक पडलर होता है तो पडलर से हम कई बार मिट्टी को कोड़ रहे, अच्छी तरह से मिट्टी को मिला रहे, हमने पानी दिया, इरिगेशन दिया हमने मिट्टी में, और उसके बाद हमने कई बार पडलर चला दिया, इससे क्या होता है कि जो मिट्टी, जो बड़े बड़े ढेर थे वो अच्छे अच्छे फाइन, मतलब काफ़ी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, और ये टूट जाने से क्या होता है कि वो काफ़ी स्टिकी, मतलब काफ़ी अच्छे से वो जड़ों को पकड़ लेते हैं। तो जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब जब हम वो सीडलिंग्स को, हम अपने बिछड़े जब हमारे बड़े हो जाते हैं, दो पत्ते जितने बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम जब उखाड़ते हैं और दोबारा मेन लैंड में लाकर लगाते हैं तो वो मेन लैंड में काफ़ी अच्छे से उनकी जड़ें पकड़ लेती हैं, तो इसलिए पडलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे मेन लैंड के लिए इस केस में, जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तब। तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या क्या, हमने पहले नर्सरी तैयार किया, जब हमारा बिछड़ा गिराया हमने, और जब वो 20 से 25 दिन पुराना हो गया तो हमने उस बिछड़े को, हमने उस पौधे को, मतलब हमने उस सीडलिंग को निकाला और निकाल कर उसने मेन लैंड में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। और ट्रांसप्लांट करने के समय हमें ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारी मिट्टी की पडलिंग काफ़ी अच्छे से हो गई हो, अतः क्या होगा कि जड़ें हमारी, जो पौधे रहेंगे उसके जड़ें पकड़ेंगे नहीं मिट्टी पे, तो इसलिए ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पे कुछ विशेष ध्यान रखनी पड़ती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग में, वो ये कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें दूरी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, 20 से 25 या 20 से 10, मतलब 20 बाई 10 या 20 बाई 25, ये हमारा 20 बाई 10 या 20 बाई 15, तो ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग करने का स्पेस होता है, यानी दो रो टू रो के बीच की स्पेसिंग हमारी 20 होती है और पौधे पौधे की स्पेसिंग जो होती है हमारी 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी किस तरह की वैरायटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान देना होता है आपको कि आपकी स्पेसिंग मेंटेन रहे उसमें, और पानी हमेशा रहना चाहिए। सबसे खास बात, जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस केस में हमें ये ध्यान देना, जो कि DSR में नहीं था, हमने जब ट्रांसप्लांट किया तो हमने विशेषता ये ध्यान रखना है कि हम जब पौधे को लगा देते हैं तो उसमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक की पानी हमेशा हम बरकरार रखते हैं ताकि हमारा पौधा अच्छे से रहे। तो यूजुअली कहा जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं हो, जैसे वर्षा हो गई और वर्षा का पानी काफ़ी हद तक उस ज़मीन पर टिका रहा, तो उस केस में हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, काफ़ी आराम से कर सकते हैं। तो जिस जगह पे पानी का जल जमाव नहीं होता उस केस में हम DSR कर सकते हैं। तो ये फ़र्क हो गया। और तीसरी विधि हो गई जो हमारी श्री विधि। तो श्री विधि तो और साइंटिफिक विधि हम जिसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये थोड़ा साइंटिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें किसानों को विशेषतः बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ें तो हो गई हमारी नर्सरी की प्रिपरेशन। तो जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, अभी जैसे मैंने ट्रांसप्लांटिंग के समय बताया हमने कहीं पे भी नर्सरी लगा दिया 20 से 25 दिन पे, तो उस केस में हमारे SRI के केस में क्या होता है कि हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो काफ़ी एरिया में, छोटे एरिया में करते हैं, और या तो हम डिपॉग नर्सरी भी तैयार करते हैं। तो उस डिपॉग नर्सरी में क्या होता है कि जब पौधे जो आपके 12 से 14 दिन के हो जाते हैं तो उस केस में हम 12 से 14 दिन के पुराने पौधों को हम उठाकर उसको अलग अलग कर करके और फिर हम मिट्टी में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसप्लांटिंग ही कर रहे हैं, पर ये ट्रांसप्लांटिंग से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने नर्सरी जो लगाया था पहले तो वो 20 से 25 दिन पुराना था, यहाँ पे जो हमारा नर्सरी है वो हम 10 से 12 14 दिन पुरानी सीडलिंग को ही उठाकर हम मिट्टी में लगाते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो अपनी मिट्टी को तैयार किया है वो और भी ज़्यादा हद तक, कई ज़्यादा हद तक पडलिंग हमने किया है। हमारी जो मिट्टी जो तैयार हुई है वो एकदम स्टिकी होती है, मतलब क्लेई होती है। स्टिकी मतलब कि जैसे आप हाथ से उठाइएगा तो चिपचिपी मिट्टी लगेगी, तो हमने मिट्टी को इस तरह से तोड़ देना है पडलर से। तो हम इरीगेशन देते हैं, पानी की कोई कमी नहीं होती हमारे खेत पर, हमने इरीगेशन दे दिया, मिट्टी पडलिंग कर दिया कई बार, और उसके बाद पडलिंग करके हमने अपने मिट्टी को इतने छोटे छोटे कण में तोड़ दिया कि जो छोटे छोटे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जो हम निकाल रहे हैं अपने डिपॉग नर्सरी से वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाते हैं। इसमें जो एक दूसरी ध्यान हमें ये देनी है कि जो हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं वो 25-25, मतलब 25-25 रो टू रो होता है डिस्टेंस, और 25-25 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं श्री विधि में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि श्री विधि के जो छोटे छोटे जो सीडलिंग्स हैं अगर हम उनको ज़्यादा जगह देंगे तो उससे ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे, मतलब ज़्यादा सेकेंडरी रूट्स, सेकेंडरी स्टेम्स निकलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि हम ये स्पेसिंग मेंटेन ज़रूर करते हैं 25x25 सेंटीमीटर का। दूसरी चीज़ कि जब हमने ट्रांसप्लांटिंग पहले जैसे किया था तो उसमें हमने सीडलिंग्स जो 20 से 25 दिन पुराना निकाला था तो उसमें हमने एक जगह पे, जिसको हिल बोलते हैं, कई बार होता है कि हमने एक जगह पे 1 से 2 सीडलिंग्स डाल दिए, पर हमें श्री विधि में एक तरीका विशेष ध्यान ये देना होता है कि एक जगह पे हमें एक ही सीडलिंग डालना है और उसको बस चिपका देते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर गाड़ते नहीं है उसको, बस वो इतना छोटा पौधा होता है कि वो आराम से आप अंगूठे से प्रेस कीजिएगा तो वो चिपक जाएगा। तो ये होता है, ये कुछ चीज़ें जो हमें विशेषतः ध्यान देनी होती है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि नर्सरी 10 से 14 दिन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसको हटा रहे हैं, जब आप हर सीडलिंग्स को अलग कर रहे हैं तो एक एक सीडलिंग को ही हम एक जगह पे डालते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से, मतलब अंदर घुसाते नहीं, जस्ट मतलब हमको बस थोड़ा सा उसको चिपका देना है, मिट्टी पे सटा देना है, वो अपने आप खड़े हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप बहुत काफ़ी अच्छे से टेलरिंग होती है उसकी और काफ़ी ज़्यादा ईल्ड भी होती है। तो ये साइंटिफिक हमारा रिसर्च कहता है कि जब हम श्री विधि में लगाते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक वे में धान लगाते हैं, तो हमारा ईल्ड जो होता है धान का, जो हमारा उपज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है बाकी दोनों विधियों से। तो ये हो गई हमारी श्री विधि की कुछ और विशेषता। ध्यान इसमें ये देना होता है कि श्री विधि में हम जो जैसे आपने हमने नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग किया था तो उसमें हमने कहा था कि पानी को हमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक मेंटेन रखना है स्टेजेस में उन पौधे में। तो लेकिन श्री विधि में क्या होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर समय 2 से 5 सेंटीमीटर का पानी उसमें जमा करके रखना है। नहीं, हम क्या करते हैं अगर अगर किसानों के पास जैसे अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसमें हम ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी दे रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जब मिट्टी में हल्के हल्के क्रैक्स एकदम पतले सुई धागे जितने पतले क्रैक्स अगर जब नज़र आने लगे तो ही हम दूसरा इरिगेशन देते हैं। तो इसको हम ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड बोलते हैं जो कि हम श्री विधि में विशेषतः इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पानी बचे रहे और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हमने जल को उसी समय डाला जब प्लांट पौधे को उस जल की आवश्यकता है, ना कि हमने हर समय डालकर अपने जल की भी बर्बादी की और मतलब पौधे को जब ज़रूरत है तो ही हम जल डाल रहे हैं इसमें श्री विधि में। तो ये होती है। और इसके अलावा एक चीज़ का मतलब जिसको हम लिमिटेशन बोल सकते हैं श्री विधि की, वो ये होती है कि थोड़े लेबर भले ज़्यादा लगते हैं इसमें पर इसमें उपज जो कहते हैं उपज काफ़ी हद तक बेहतर आती है श्री विधि से अगर हम बुआई करें तो, अगर ट्रांसप्लांटिंग या DSR की अपेक्षा करें तुलना करें तो उससे ज़्यादा श्री विधि में हम पाते हैं अगर आप साइंटिफिकली बुआई उसकी करें तो। तो ये हमारी 3 तकनीकें थी। इसके अलावा एक होती है कि अगर अगर किसानों के पास मैकेनिकल ड्रिलिंग मैकेनिकल सीडिंग की अगर उनके पास सुविधा है तो जैसे ड्रम सीडर मेथड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ड्रम सीडर एक मशीन आता है जिससे सीधे सीधे अंकुरित बीजें जो होती हैं वो ड्रम सीडर में हम डालते हैं और ड्रम सीडर को चलाते हैं, वैसे चलते जाएगा वैसे वैसे वो सीडलिंग की बुआई होते जाएगी कुछ अपनी डिस्टेंस पे। तो वो ड्रम सीडर होता है क्या, वो ऐसा मशीन होता है जिसे चक्के पे कुछ 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर कांटे होते हैं, तो जब जब हम उसको चलाएंगे तो वो कांटे के साथ साथ वो छेद मतलब उसी कांटे से वो जो अपना अंकुरित बीज है वो निकल कर और अपने निर्धारित स्पेस पर अपने आप लगते जाएगा जैसे जैसे हम उस मशीन को चलाएंगे। तो ये तो तब बात हो गई जब अगर किसानों के पास ये मशीन है। अगर किसानों के पास ये मशीन नहीं है तो ऊपर में से जो मैंने 3 बताए आप उन 3 में से किसी भी तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जल आपके पास कितना अवेलेबल है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, उस पे डिपेंडेंट है ये सब।
9: जी मैम, मैम इन तकनीकों को समझाते हुए कई बार आपने नर्सरी के बारे में बात की और एक बार आपने ये भी कहा कि कई प्रकार की नर्सरियाँ होती है।
8: जी,
9: तो मैम कितने प्रकार की नर्सरी होती है?
8: बेसिकली ये तो जब मैंने नर्सरी का बात करना इसमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम तीनों जब हमने विभिन्न तकनीकों की बुआई करने की जब बात की तो उसमें हम नर्सरी एक ही तरीके का नहीं लगाते। जैसे मैंने अभी बताया कि नर्सरी जो हमारी श्री विधि में थी वो डिपॉग नर्सरी होती है। अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो हम वेट नर्सरी भी कर सकते हैं, ड्राई नर्सरी भी कर सकते हैं। और DSR क्या होता है, DSR में तो हम डायरेक्टली बुआई कर रहे हैं तो उसमें हमें नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो नर्सरी बहुत हद तक हमें डिपेंड करता है कि हम कब अपने पौधे की बुआई करना चाहते हैं। जैसे कभी क्या हो गया कि अगर हमारे हम जो धान के पहले हमने जिस पौधों को लगा रखा है अगर उसके काटने के बाद हमारे पास ज़्यादा समय अगर नहीं है धान को लगाने के तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम नर्सरी अपना तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपना पौधा काटेंगे तो तुरंत से उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकेंगे। तो अब नर्सरी बेसिकली 3 तरीके की होती है। एक होती है अपलैंड नर्सरी, एक लोलैंड नर्सरी और तीसरी होती है डिपॉग नर्सरी। तो अपलैंड नर्सरी हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, किसानों के पास इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हैं किसान, उसमें ड्राई मेथड से करना क्या होता है कि हम उसमें जो हमारा अपलैंड ज़मीन होता है, अपलैंड ज़मीन मतलब कि जहाँ पे पानी जल जमाव ना हो, तो उसमें हम उसको छोटे छोटे उस जो मिट्टी है जो हमारी ज़मीन है उसको हम छोटे छोटे बेड में बांट लेते हैं। तो जैसे 1 से 1.5 मीटर के चौड़ाई तक के बेड में बांट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो धान रहता है हम उसको पहले अंकुरित करा देते हैं जिसको हम बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो आपको क्या करना है कि पहले 1 दिन 72 घंटे के लिए आपको जो धान है उसको पानी में भिगो कर रखना है। देखिएगा कि जब उसमें अंकुरण थोड़ी सी हो जाए तो उसको उस उस जौ को हम क्या बोलते हैं, प्री जर्मिनेटेड सीड। तो उस जौ को आपको छिड़क देना है, जो आपने अभी बेड बनाया था उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है और उसको अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप उसके ऊपर गनी बैग, मतलब जो जूट के बैग होते हैं, उसके ऊपर लगा दीजिए, बिछा दीजिए और अपना हल्का हल्का पानी आप हर दो तीन दिन में देते रहिए। तो इससे क्या रहेगा कि अंदर का मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा और उसके बाद कुछ 4-5 दिनों के बाद आप गनी बैग को हटा दीजिए, देखिएगा कि वो आपका जो बीज है वो अंकुरण हो गया है। दूसरा विधि हो गया हमारा लोलैंड नर्सरी। तो लोलैंड नर्सरी तो सिंपल होता है, जहाँ पे पानी है आप पडलिंग कीजिए अपने ज़मीन पे, पडलिंग करके उसमें पानी की कोई कमी नहीं है, पानी ठहर रहा है, उसमें प्री जर्मिनेटेड सीड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका नेचुरल जैसा सीड आता है आप उसको सिंपल ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। प्री जर्मिनेटेड सीड दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर प्री जर्मिनेटेड है तो वो एक जगह पर इकट्ठा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप प्री जर्मिनेटेड सीड ही लें और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दें, और ब्रॉडकास्ट करने के बाद जैसे हम नॉर्मली अपना ब्रॉडकास्ट करने के बाद हम वेट करेंगे 20 से 25 दिन के बाद हम उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने श्री विधि के लिए बताया था डेपोग नर्सरी, तो ये डेपोग नर्सरी के लिए तो हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हम सीधे क्या कर सकते हैं कि अपने सीमेंट एरिया पे भी अपना वो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, प्लास्टिक शीट लेना है, उसके ऊपर कुछ 2 से 5 सेंटीमीटर का बालू हमें परत बना लेनी है उसकी, और उस बालू के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने बीजों को काफ़ी घने मात्रा में ब्रॉडकास्ट करके, वो बीज जो हम छिड़क रहे हैं वो काफ़ी घना होना चाहिए। तो घना इसलिए होना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा, अंकुरण जब होगी उसमें और जब उसकी जड़ें आएंगी तो वो जड़ें आपस में मिल जाएंगी, मतलब वो जड़ें आपस में एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को पकड़ लेंगी। तो इससे क्या होगा कि एक तरह का मैट बन जाता है। तो जब आप उसको निकालिएगा बालू से, तो आप उसको रोल करके निकाल सकते हैं, ऐसे ही रोल मैट बनाकर आप उसको खेत पे लेके जाइए। खेत पे लेके जाने के बाद हर एक सीडलिंग को आप अलग कीजिए और उस सीडलिंग को आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये होता है डेपोग नर्सरी। तो ये डेपोग नर्सरी हम श्री विधि में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मैंने बताया था कि पानी मॉइस्चर जो होता है वहाँ पे काफ़ी स्टिकीनेस होती है, तो जब आप डेपोग नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी आसानी से वो चिपक जाता है, तो इसलिए हम श्री विधि में यूजुअली डेपोग नर्सरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 बेसिक नर्सरी हैं हमारे।
9: मैम, तो मैम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कितने तरीके से धान की बुआई होती है, साथ ही कितने प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है अलग अलग बुआई के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
8: धन्यवाद, धन्यवाद मुझे।
9: तो किसान भाई बहनों, आप अलग अलग तरीके से धान की बुआई कर सकते हैं, जिस तरह की मिट्टी है उस तरीके से, और साथ ही अलग अलग बुआई के लिए अलग अलग तरीके से नर्सरी तैयार करनी होती है, और कभी कभी नर्सरी नहीं भी तैयार करनी होती है, जैसे कि सीधी बुआई में। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से

0: मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
0: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि जो हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम है और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं बेसिलस, एक बहु उपयोगी जैव नियंत्रण कारक के बारे में। जी हाँ, आज हम बेसिलस के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं और इन बातों को हमें अच्छे से समझाने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सावंत। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं पौधा रोग विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद उमा जी। मैं भी, मेरा सभी किसान भाई बहनों को प्रणाम।
5: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बेसिलस क्या है और ये कहाँ पाया जाता है?
6: जी, तो जैसे मैं पहले बताना चाहूँगी कि बैसिलस किसी को पता नहीं है। जैसे हम ट्राइकोडर्मा जानते हैं, बहुत सारे किसान बिहार के हो या पूरे भारत के हो, सबको ट्राइकोडर्मा के बारे में पता है। तो जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक बहुपयोगी माइक्रोब है, जीवाणु है, बट वो एक फफूंद के कैटेगरी में आता है और बैसिलस जो है वो उसी की तरह एक जैविक कारक है जैव नियंत्रक कारक है और वो एक बैक्टीरिया है। तो जैसे जिस तरह से ट्राइकोडर्मा मृदा में पाया जाता है, उसी तरह से बैसिलस जो है वो भी आपको मिट्टी में मिलता है, आपको पौधों के पत्तियों के ऊपर मिल सकता है, तने पे मिल सकता है या जड़ों में भी।

0: मिल जाता है। तो बैसिलस जो है वो आपको सर्वत्र पाया जाता है। और जिस तरह से फफूंद ट्राइकोडर्मा का जो उपयोग है हम फफूंद को मारने के लिए करते हैं, बहुत सारे जो रोग के कारक होते हैं मिट्टी से जो आते हैं उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं, उसी के तरह बैसिलस हो गया या सिडोमोना जो बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं उनका भी इस्तेमाल हम ये रोग का जो नियंत्रण है प्रबंधन है उसको करने के लिए कर सकते हैं।
1: तो मैम जैसे कि आपने बताया कि रोग के प्रबंधन के लिए हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ कि बैसिलस आखिर फसल को कैसे बचाता है और ये काम कैसे करता है।
0: जी यानी हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि बैसिलस किस तरह से प्रबंधन करता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एंड दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जाके सीधा फफूंद का जो माइसेलिया होता है या फफूंद की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, या ये बैक्टीरिया जो है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स या वोलाटाइल्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से भी जो फफूंद की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। तो ये वही डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसी के साथ और एक डायरेक्ट में है कि ये जो बैक्टीरिया फफूंद है रोग के कारक है वो सभी एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, फफूंद के या रोग के जो कारक होते हैं पैथोजन है उनके साथ न्यूट्रिएंट के लिए या जगह के लिए उनके साथ कॉम्पिटिशन करता है। तो कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया में बहुत सारे उपयोगी वोलाटाइल्स होते हैं वो ये फफूंद की वृद्धि या ग्रोथ जो है उसको रोक देता है और उसकी जो जगह है उसको भी कम कर देता है। तो इस तरह से डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है। और इनडायरेक्ट में क्या करता है, बैसिलस बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधे में सिक्रेट करता है या इंड्यूस करता है, यानी हम ऑक्सिन की बात करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन जो है उसकी वजह से पौधों की वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ प्रमोशन होता है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली भी पौधों की वृद्धि में बैसिलस काम करता है। तो एक साइड से वो रोग को भी थामता है, प्रतिबंध करता है, और दूसरे ओर से वो पौधों की वृद्धि भी करता है, ग्रोथ प्रमोशन भी करता है। तो इसीलिए ये बहुपयोगी है।
1: तो मैम अभी तो हमने जान लिया कि किस तरीके से बैसिलस बहुत अलग अलग तरीके से पौधों को फ़ायदा पहुंचाता है,
0: जी
1: बढ़वार में भी मदद करता है और साथ ही रोगों से भी बचाता है,
0: जी।
1: तो मैम किन किन रोगों से और कीटों से बचाता है बैसिलस?
0: तो जैसे मैंने बताया पहले से ही कि बैसिलस जो है वो मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी से मृदा से आने वाले जितने भी रोग के कारक हैं, जैसे हम जानते कि उकठा रोग जो चिकपी में लगता है, चने में लगता है, तो उकठा रोग हो गया, जड़ गलन हो गया, जड़ सड़न हो गया, तो इस तरह से जो मिट्टी से आने वाले रोग है जिसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है, तो वो सभी रोगों के लिए जो मिट्टी से आ रहे हैं उन रोगों के लिए भी आप बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो धान में आते हैं, हमने देखा है कि धान में बहुत सारे रोग आते हैं जैसे ब्लास्ट हो गया या ब्राउन स्पॉट हो गया, शीत ब्लाइट जिसको कहते हैं, उन रोगों के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो मैम अभी रोगों के बारे में भी हमने जान लिया, लेकिन अब बैसिलस के इस्तेमाल पर आते हैं। बैसिलस को खेतों में डालने का क्या प्रोसेस है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई बहन?
0: तो जैसे बैसिलस को हम जिस तरह से ट्राइकोडर्मा का खाद यूज़ करते हैं, या ट्राइकोडर्मा हम जानते हैं कि दो तरीके से उपलब्ध है अभी मार्केट में, एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक आता है लिक्विड फॉर्म में आता है। तो बैसिलस भी उसी तरह से एक पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा जिसको हम टाल्क फॉर्मुलेशन कहते हैं, और एक आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में। तो अगर आपको इसको खेत में डालना है तो बहुत सारी विधि है। पहले तो हम बीजोपचार करना चाहेंगे, तो बीजोपचार के लिए आपको क्या करना है, उसका जो डोज है, तो आपके पास अगर 1 किलो बीज है तो 1 किलो बीज के लिए आपको 10 ग्राम बैसिलस का टाल्क फॉर्मुलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आपको बीज लेना है, उसमें पाउडर आप डाल दीजिए, उसी के साथ आप थोड़ा सा बेसन या गुड़ डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए बीज के ऊपर। फिर उसको 2-3 घंटे तक आप छाव में सुखाओ और उसके बाद आप उसका बुआई करो। इस तरह से बीजोपचार किया जाता है। और बीजोपचार में आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फफूंदनाशी है, कीटनाशी है, और आपके पास ये जैविक वाला कोई खाद है या बैसिलस है, तो आपको पहले जो है फफूंदनाशी का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद आप कीटनाशी डालो, उसके बाद आपको कोई भी आपके पास बैसिलस है, सुडोमोनास है, मतलब बैक्टीरिया का जो है उसको करना है। अगर आपने पहले ही उसको डाल दिया तो ये जो फफूंदनाशी है या जो एंटीबायोटिक है या बाकी के जो है वो इसको मार डालेंगे, आपके जो जैविक का कारक है उसको मार डालेंगे, तो उसका फिर कुछ आगे जाके आपको उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए ये क्रम हमेशा याद रखना है। है। फिर दूसरा तरीका होता है कि जैसे हमारे पास सब्जियां होती है, तो सब्जियों का जब हम रोपाई करते हैं तो हमारे पास छोटे पौधे होते हैं, उनको हम रोपाई करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करना है, जो पौधे होते हैं उनको आप 10 ml 1 लीटर पानी लेना है और 10 ml बैसिलस का जो फॉर्मुलेशन होगा लिक्विड या 10 ग्राम टाल्क का पाउडर होगा उसको आपको उसमें मिलाना है। फिर उसका घोल बना के आपको ये जो पौधे हैं छोटे उसको उसमें डाल दो और आप आधे घंटे तक उसमें रखो और आधे घंटे के बाद आपको उस पौधों को निकाल के सीधा आपको रोपाई करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि जो जड़ का पार्ट होता है वहाँ पे आप सीधा बॉटल का जो ढक्कन होता है उसमें वो फॉर्मुलेशन लेके आप डाल सकते हो, तो उसको हम ड्रेंचिंग कहते हैं। और चौथा होता है कि हम जुताई जब करते हैं तब हम खेत में खाद डालते हैं, FIM डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो उस कंपोस्ट में भी आप ये जो पाउडर का फॉर्मुलेशन है बैक्टीरिया का उसको आप मिला के आप उसको खेत में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बैसिलस का एप्लीकेशन कर सकते हैं।
1: मैम अब एक और सवाल कि बैसिलस के इस्तेमाल से क्या पौधों पर या फिर इंसानों पर भी कोई बुरा असर पड़ता है?
0: जी ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हम बैसिलस या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आया ही क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हम रेसिड्यू से बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि जब फफूंद का कोई भी फफूंदनाशी का पेस्टिसाइड का रेसिड्यू खाने में आता है तो वो इट लीड्स थ्रू मतलब कैंसरियस बीमारियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे वो मतलब वो कॉज करती है। तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा है उनका कोई भी रेसिड्यू प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलेगा। आप अगर खेत में 10 से 20 ml भी हो गया या 20 ग्राम भी हो गया तो भी इसका रेसिड्यू कभी आपके आपके पौधे में भी नहीं आएगा और आपके खाने में भी नहीं आएगा। और कोई भी ये जो प्रोडक्ट है बैसिलस या सुडोमोना जब मार्केट में बेचा जाता है तो उसके पहले बहुत सारे टेस्ट उस पर किए जाते हैं जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्ट कहते हैं, जो CIBRC के अंडर आते हैं। तो टॉक्सिसिटी टेस्ट में देखा जाता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस में मतलब इंसान के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया या कोई कैंसर वगैरह बीमारी कॉज नहीं कर रहा है ना, इसका हमें प्रमाण देना होता है। दूसरा हो गया कि जैसे मधुमक्खी होती है तो बहुत सारे जो फंजीसाइड्स है वो मधुमक्खी को मारते हैं, तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास है उसका उस पर कोई असर नहीं होता। तीसरा ये है कि जैसे लेडीबर्ड बीटल जिसको हम नेचुरल एनिमीज कहते हैं तो उनको उनके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए जो बैसिलस है ये सभी टेस्ट करके ही मार्केट में ये प्रोडक्ट लाए जाते हैं, तो इसलिए ना ये इंसानों के लिए हानिकारक है ना ये अदर जो नेचुरल एनिमीज वगैरह है मधुमक्खी उनके लिए भी ये हानिकारक नहीं है।
1: जी मैम, इसका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है ना पौधों पे ना जानवर पे। तो मैम अगर अब किसान भाई बहन बैसिलस को खरीदना चाहें तो किस तरीके से ये खरीद सकते हैं और कौन कौन से बैसिलस के उत्पाद बाजार में मौजूद हैं?
0: जैसे आप किसी भी मतलब एग्रीकल्चर या मतलब मार्केट में जाओगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कोई भी शॉप होगी वहाँ पे आप जस्ट उनको जाके बोलोगे कि हमें कोई जैविक कारक जैव नियंत्रक कारक दीजिए, तो उनके पास यही सब प्रोडक्ट्स रहते हैं बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा। तो जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी का सबोर ट्राइकोडर्मा तो सबको पता ही है, उसी के साथ साथ बैसिलस का एक डैगर जी करके प्रोडक्ट आता है, सॉरी सुडोमोनास का डैगर जी आता है, बैसिलस का एक्टीगार्ड आता है, बायोगार्ड आता है, बायोसेव आते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम से वो जाने जाते हैं प्रोडक्ट। बट आप अगर आपको नाम याद भी नहीं होंगे तो आप जस्ट जाके आप उनको बोल देंगे कोई बैसिलस का प्रोडक्ट दीजिए तो ज़रूर वो आपको कोई बायो फर्टिलाइज़र दे देंगे या कोई बायो पेस्टिसाइड भी आपको हाथ में दे देंगे। तो इस तरह से जो बैसिलस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टाल्क लिक्विड दोनों भी आप कोई भी दोनों में से यूज़ कर सकते हैं और वो सभी जगह पर अवेलेबल भी है।
1: जी मैम, यानी कि किसान भाई बहनों को शुरू कर देना चाहिए बैसिलस का इस्तेमाल करना और बाज़ार में वो आसानी से मिले।
0: जी बिल्कुल।
1: तो मैम आपने बहुत उपयोगी बात बताई, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन को बैसिलस के बारे में जो बातें हैं वो समझ आई होगी और उनके उपयोग के बारे में भी वो समझेंगे और उनके महत्व के बारे में भी उनको इस वार्ता से समझ आई होगी बातें।
0: मुझे और एक बस जाते जाते बताना था कि बिहार कंडीशन में बैसिलस का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो है, ट्राइकोडर्मा हम कर रहे हैं, सुडोमोनास कर रहे हैं, बैसिलस करने का उपयोग ये है कि जैसे मैंने बताया बैसिलस एक एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एंडोस्पोर एक ऐसी चीज़ है बैसिलस की जिसको हम रेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-50 डिग्री से ऊपर चला गया, तो ऐसे में क्या होता है जो बाकी के जैव नियंत्रक कारक है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मृदा में नहीं टिक पाते। बट बैसिलस ही एक ऐसा जीवाणु है जो कितना भी टेम्परेचर बढ़े कितनी भी बारिश क्यों ना हो वो वहाँ पर थ्राइव कर लेता है। तो जो फॉर्मुलेशन होते हैं वो बैसिलस के फॉर्मुलेशन ज़्यादातर इफेक्टिव रहते हैं खेती में। इसीलिए जो हमारे किसान भाई बहनों हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि आप ज़रूर बैसिलस का इस्तेमाल करें और वो आपको बहुत दिन तक आपको उसका जो प्रभाव है वो आपके खेत में आपके फसल में देखने मिलेगा। और बस मुझे और एक है कि जैसे हम देखते हैं कि हम बस रोग के कारक की बात की, बट ये कीट के लिए भी उपयोगी है। जैसे धान में हमने देखा कि तना भेदक स्टेम बोरर एक आता हुआ है, या पत्ती लपेटने वाला लीफ फोल्डर, तो ऐसे कीट के का जो प्रतिबंध के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैसिलस एक ऐसी बहुपयोगी इसलिए कहा गया है कि आपको रोग के लिए भी आपको एक ही दवा छिड़कनी है, आपको कीट का प्रबंधन के लिए भी एक ही दवा छिड़कनी है, तो इसीलिए आप ये उपयोगी बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते।
1: तो मैम इस हिसाब से तो जो बिहार के परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत उपयोगी है बैसिलस और बहुत ही कारगर भी है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बैसिलस के बारे में इतनी सारी उपयोगी बातें बताई। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: जलवायु बदल रहा है, कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ से किसान परेशान हो जाते हैं, फसल को समय पर पोषण नहीं मिल पाता। ग्लोबल वार्मिंग ने जलवायु को भी बदल दिया है, इसलिए किसानों को चाहिए कि वो जलवायु अनुकूल खेती अपनाए। इसके लिए हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि किसान जलवायु अनुकूल खेती कर सके। अब हम जलवायु अनुकूल खेती क्यों जरूरी है इस पर आधारित एक गीत सुनाने जा रहे हैं।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। हमारे दैनिक कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह के बारे में। जी हां, आजकल जैसे हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, हमारा खान पान बिगड़ता जा रहा है, ऐसे में जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज एक तय आयु वर्ग के लोगों को ही हुआ करती थी, आजकल बच्चों से लेकर बूढ़े तक में डायबिटीज का खतरा मंडराता रहता है। बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है। जब एक गर्भवती महिला को डायबिटीज होता है तो ऐसे में सिर्फ उस महिला को ही खतरा नहीं होता है बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी बहुत खतरा रहता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक आंकड़ा जारी किया और उस आंकड़े के अनुसार हर साल 21 मिलियन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो जाता है, यानी कि हर 6 गर्भधारण में से एक को मधुमेह प्रभावित करता है और इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी जानलेवा स्थितियों का खतरा बना रहता है, जैसे कि प्रीक्लेम्सिया, स्टिल बर्थ या प्रसव आघात जैसे जानलेवा स्थितियों का खतरा काफी बढ़ जाता है और इसके काफी सारे दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं, जैसे कि माँ और बच्चे दोनों को टाइप 2 मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों का आजीवन खतरा बना रहता है। अगर गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया जाता है तो बच्चे के विकास पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का विकास रुक सकता है, बच्चा या तो कमजोर पैदा होगा या फिर बहुत ही मोटा। डायबिटीज के दौरान क्या होता है कि गर्भ में बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत सारी परेशानियां आती है और इसी दौरान बच्चे को भी शुगर हो सकता है। कुछ महिलाओं को डायबिटीज पहले से होता है और कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज क्यों होता है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा होता है वो एक हार्मोन पैदा करता है और ये हार्मोन खून में चीनी को बनाता है और खून में जब चीनी बनता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है, यानी कि पैनक्रिया जो चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है वो आमतौर पर पर्याप्त इंसुलिन बनाता है जिससे डायबिटीज का खतरा नहीं रहता है। और अगर पैनक्रिया जितना जरूरी है उतना इंसुलिन बना पाने में कामयाब नहीं रहता है, सफल नहीं रहता है तो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है जिससे प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाता है। अभी तक तो हमने कारण जान लिया है, आइए अब जानते हैं कि अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उसे पहचाने कैसे। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उनमें कुछ सामान्य से लक्षण दिखते हैं, जैसे कि उन्हें बार बार पेशाब आता है, उनका वजन तेजी से घट जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, इसके साथ ही थकान भी उन्हें बहुत ज्यादा होती है। कुछ महिलाओं में तो आंखों से भी कम दिखने की समस्या हो सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हुई है तो उन्हें समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहना चाहिए और इसके साथ ही कुछ और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को शुगर हो गया है तो उन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उन्हें अपना खान पान, शारीरिक गतिविधि, इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर देना चाहिए, तेल, घी, चावल, आलू, मिठाई और तली हुई चीजों से बचना चाहिए, उन्हें एक्सरसाइज रोज करना चाहिए, उन्हें हर रोज अपना शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए और डॉक्टर ने जो भी बताया है वो तो फॉलो करना ही चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर ये भी सुझाव देते हैं कि समय समय पर अल्ट्रासाउंड करवाते रहना चाहिए। तो हमारे मन में ये सवाल भी आ सकता है कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह से पीड़ित हो गई हैं तो क्या वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो अपना विशेष ध्यान रखे तो माँ भी स्वस्थ रह सकती है और साथ ही उनका आने वाला बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है और जो खतरा होता है उसे भी कम किया जा सकता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पहले से डायबिटीज होता है, तो क्या वो गर्भवती नहीं हो सकती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो गर्भवती हो सकती हैं और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अगर वो ध्यान नहीं रखती हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आज के समय में बात करें तो मधुमेह विश्व भर में 8 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करती है और ये बीमारी हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, अंधापन और अंगों के विच्छेदन का एक प्रमुख कारण है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना, खास तौर से जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो विशेष ध्यान रखें ताकि आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे और आपके बच्चे को आपसे मधुमेह ना मिले। और ऐसे ही ढेरों जानकारी के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़े रहें।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और BPT 5204 यानी कि BPT 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दे कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.5 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं मखाना के बारे में। मखाना के पौष्टिक गुणों के बारे में अब तक देश दुनिया में सबको पता है, इसकी मांग भी देश और दुनिया हर जगह है और बढ़ती मांग यानी कि रोजगार के बढ़ते अवसर। और जब मखाना की बात होती है, मखाना से जुड़े रोजगार की बात होती है, तो हम पाते हैं कि भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन करने वाला देश है और भारत में बिहार, जी हाँ अकेला बिहार 85-90% मखाना का उत्पादन बिहार में ही होता है। और फिर बिहार में लोगों को मखाना से जुड़े रोजगार के अवसर के बारे में पता तो होना ही चाहिए और इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ है मधुमिता मैम। आप हैं प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमा। तो आज हम बात करेंगे कि मखाना से कैसे आप उद्यम स्थापित कर सकते हैं और इसके क्या अवसर हैं। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मैं हूँ मधुमिता और मैं आज मखाना के गुणों के बारे में, उसके उद्यमिता के अवसर के बारे में आप लोगों से बताने जा रही हूँ। हम जानते हैं जैसा कि इसे मखाना को हम सुपर फूड कहते हैं, ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व मौजूद हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद हैं। आइए हम कुछ इनके इसके मुख्य स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जिससे कि हमारे शरीर के मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को ये हम बचाता है और त्वचा को जवां रखता है। दूसरी चीज़ है हृदय स्वास्थ्य। इसमें मौजूद पोटेशियम और कम सोडियम के कारण ब्लड प्रेशर को यह नियंत्रित रखने में मदद करता है और ये दिल के लिए अच्छा है। फिर है वजन प्रबंधन। कम कैलोरी, वसा और उच्च फाइबर के कारण यह हमारा पेट भरा रखता है और वजन घटाने में भी सहायक है। पाचन में सहायक, यह हमारे पाचन में भी काफ़ी सहायता करता है। डायबिटीज़ के लिए, चूँकि इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो कि शुगर लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देता है। यह फाइबर और मैग्नीशियम से युक्त होता है जिससे कि शुगर नियंत्रित रहता है। फिर है हड्डियों को मजबूत बनाता है। मखाना में मौजूद कैल्शियम जो है वो हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाव के लिए यह काफ़ी लाभदायक है। हमारे त्वचा और बालों के लिए भी यह काफ़ी उपयोगी है। मानसिक विकास के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि यह याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। नींद और तनाव, यह तनाव कम करके बेहतर नींद लाने में भी मदद करता है। तो हम देख सकते हैं कि इसके अनेकों स्वास्थ्य लाभ हैं जिसके चलते यह हर एक वर्ग के लोगों द्वारा मांग किया जाता है, पसंद किया जाता है, जिससे कि उद्यमिता के अपार अवसर खुल जाते हैं। खासकर बिहार जैसे राज्य में जहाँ 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहाँ कोई खेती नहीं होती, ऐसी जगहों पर हम मखाना की खेती करके एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर पैदा कर सकते हैं।
0: तो तो मैम जैसे कि आपने अभी बताया कि मखाना एक तो वजन को नियंत्रित करता है, बहुत सारे फायदे आपने बताए, उनमें से जो आजकल युवाओं की चाहत होती है वजन नियंत्रित हो और उनकी त्वचा जवा दिखे, और ये दोनों ही फायदे मखाना में भरपूर रूप से हैं। और अभी आप जैसे बता रही थी कि अपने बिहार में 90 एकड़
2: 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो कि खेती योग्य नहीं है, उसमें जल जमाव वाली जमीन भी शामिल है, तो हम
0: वहाँ मखाना
2: लगा करके जो है रोजगार के अवसर
0: पैदा कर सकते हैं। तो अभी रोजगार के बारे में आप बात कर रही थी, तो मखाना का उद्यम स्थापित करने के लिए क्या क्या संभावनाएं बिहार में हैं और इसके लिए क्या किया जा सकता है, मैम ये बताइए।
2: जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया है, जिसमें कि रोजगार भी एक मुद्दा है, तो खासकर बिहार के लिए जहाँ पर कि 85 से 90% उत्पादन होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे उद्यम लगा सकते हैं और रोजगार के अवसर खड़े कर सकते हैं। सबसे पहली बात है तो कि कच्चे मखाने के बजाय उसे प्रोसेस या प्रसंस्कृत करके बेचना अधिक लाभदायक होता है। रोस्टिंग और फ्लेवरिंग, सादे मखाने के बजाय हम पेरी पेरी, पुदीना, पनीर टिक्का या चॉकलेट फ्लेवर वाले रोस्टेड मखाना स्नैक्स बना करके बेच सकते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है हमारे युवाओं के बीच में, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गए हैं। और है मखाना पाउडर, मखाना को पीसकर पाउडर बनाया जाता है, जिसका उपयोग शिशु आहार, एनर्जी बार, हेल्थ सप्लीमेंट और बेकरी उत्पादों जैसे कि मखाना कुकीज़ और विभिन्न स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पादों में किया जाता है। तो फिर है मखाना बेस्ड बहुत प्रोडक्ट्स, जैसे मखाने का आटा, मखाना फ्लैक्स, पास्ता, मैकरोनी जैसे आधुनिक उत्पाद बना करके भी बेचा जा सकता है, यह भी काफ़ी मांग में है। मखाना खीर मिक्स, यह एक रेडी टू कुक जो कि पकाने के लिए तैयार उत्पाद है, जिसमें मखाना पाउडर या छोटे मखाना के टुकड़ों के साथ चीनी, इलायची, ड्राई फ्रूट्स आदि मिश्रित होते हैं, इसका भी उत्पादन किया जा सकता है। बेकरी उत्पाद, मखाना के आटे के का उपयोग ग्लूटेन मुक्त बिस्किट, ब्रेड और कुकीज़ बनाने में किया जा सकता है। और कुछ अन्य खाद्य उत्पाद हैं जैसे कि मखाने का उपयोग हम अनेक पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों में भी कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीग्रेन पफ्स, मखाना भेल, अचार, कलाकंद एवं अन्य मिठाइयां, पास्ता और सलाद के टॉपिंग के रूप में। बहुत सारे ऐसे हमारे पास विकल्प मौजूद हैं जो कि हम मखाना से प्रोसेस करके, प्रसंस्कृत करके बना सकते हैं, और ये हमारे युवा और वयस्क वर्ग में काफ़ी ज़्यादा
0: पॉपुलर है,
2: मांग में है।
0: मतलब लोगों के बीच मखाना की मांग तो है, और साथ ही जब मखाना इतने फ्लेवर में आ रहा हो, मखाना इतनी अलग अलग वैरायटी में आ रहा हो, तो मांग काफ़ी होती है और रोजगार के अवसर भी होते हैं। लेकिन मैम क्या मखाना उत्पादन में, मखाना के उद्यम में क्या सरकार द्वारा भी कोई सहायता प्रदान की जाती है?
2: बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया कि अगर हमें सरकारी सहायता मिल जाती है तो हमारा मनोबल और बढ़ जाता है, और सरकार भी काफ़ी सारी योजनाओं के साथ युवाओं को मदद कर रही है। जैसे कि हम इसमें बताना चाहेंगे कि इसमें एक है PMFME योजना, जिसको कि हम प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से भी जानते हैं। इसके तहत मखाना प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए 35% तक सब्सिडी और ऋण सहायता दी जाती है, PMFME पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, खास करके बिहार में कई जिलों जैसे कि दरभंगा, मधुबनी में इसमें मखाने की इस योजना के तहत चुना गया है, जिसमें कि सरकारी सहायता मिलती है। अब तीसरा है मखाना विकास योजना, ये जो बिहार के कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई है ये योजना, मखाना विकास योजना, ये बिहार के 10 विशिष्ट जिलों में मखाना की खेती और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। यह किसानों को प्रशिक्षण देने और मखाना की खेती और प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक उपकरणों के लिए अनुदान प्रदान करने पर केंद्रित है। फिर यह योजना जो है एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के तहत संचालित होती है, जिसमें मखाना बीज वितरण, भंडारण, गृह निर्माण और प्रोसेसिंग पर सब्सिडी जैसे लाभ मिलते हैं। इसके कुछ मुख्य हम उद्देश्य बता देते हैं मखाना विकास योजना के। इसके तहत जो है किसानों को प्रशिक्षण और कौशल विकास दिया जाता है, फिर अनुशंसित मखाना किस्मों के बीज पर सब्सिडी मिलता है, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन को भी बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात को भी प्रोत्साहन इसमें दिया जाता है और महिला किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी इसका लक्ष्य है। 30% लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक और है मखाना बोर्ड, जो कि भारत सरकार द्वारा बिहार में स्थापित एक सरकारी संस्था है, यह मखाना बोर्ड, जिसका उद्देश्य मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देना होता है, ताकि किसानों की आय बढ़े और यह सुपर फूड मखाना को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। यह मखाना उद्योग की विभिन्न चुनौतियों को हल करने, नवाचार लाने और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद करता है। हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा मखाना को प्रोत्साहित करने के लिए, मखाना के उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती हैं। तो युवा बढ़ चढ़कर आगे आएं और इसका लाभ उठाएं और उद्यम लगाएं।
0: मैम, मखाना उद्यम के बारे में तो हमने बात कर ली और बार बार आप प्रोसेसिंग की भी बात कर रहे हैं और प्रोसेस्ड मखाना की मांग भी ज़्यादा है। मखाना प्रोसेसिंग बिजनेस का बाज़ार क्या है और किस तरह इस तक पहुँचा जा सकता है?
2: जी हाँ, बिल्कुल, मखाना प्रोसेसिंग का ही बाज़ार है और बहुत ज़्यादा इसकी मांग है। आजकल लोग जो है, चूँकि यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर है और लोग रेडी टू सर्व खाने को पसंद करते हैं, इसीलिए जो है ये हेल्दी स्नैक के रूप में इसकी मांग बढ़ रही है और बाज़ार में इसका पकड़ मजबूत हो रहा है। मखाना के बाज़ार एवं संभावनाएं कुछ इस प्रकार हैं। जैसे अगर हम घरेलू बाज़ार की बात करें तो मखाना जो है भारत में एक हेल्दी स्नैक के रूप में खासकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में इसकी मांग बढ़ रही है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग, खासकर युवा, जिम जाने वाले लोग और डायबिटीज़ और हृदय रोगों से ग्रस्त जो लोग हैं वो अपनी डाइट में इसे शामिल कर रहे हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बात करें तो भारत मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका निर्यात भी तेज़ी से बढ़ रहा है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में इसकी भारी मांग है, जिसे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलती है। अब हम उद्योग रिपोर्ट की बात करें तो फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक भारत में हेल्दी स्नैक्स का बाजार 12% की सालाना वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना है, जिसमें कि मखाना प्रोसेसिंग बिजनेस एक अहम हिस्सा हो सकता है। और विविध उत्पादों की मांग भी है, जैसे कि भुना हुआ मखाना, चॉकलेट कोटेड मखाना, पनीर फ्लेवर मखाना, मसाला मखाना और अन्य फ्लेवर के मखाना की भी काफ़ी मांग बढ़ रही है। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि इसका जो प्रोसेसिंग बिजनेस का जो बाज़ार है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, नहीं सिर्फ हमारे घरेलू बाज़ार में भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी है। तो हम जो है पैकेजिंग करके और ब्रांडिंग करके एक उद्यमी के रूप में आप स्थानीय किसानों से मखाना खरीदकर उसे ब्रांडिंग करके आकर्षक व लुभावने पैकेजिंग करके बेच सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी छोटे उद्यमी वैश्विक व्यापार वैश्विक बाजार में भी अपना सामान बेच सकते हैं। साथ ही साथ आप आधुनिक खेती भी करके जो है अच्छा उद्यम स्थापित कर सकते हैं। पारंपरिक तालाबों के बजाय आप मखाने की खेती को खेत प्रणाली से कर सकते हैं, जिससे कि उद्यमी आधुनिक सिंचाई और कटाई की मशीनों का उपयोग करके ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोसेसिंग बाज़ार का इसका बहुत ज़्यादा अवसर है, तो लोग युवा को इसमें आगे आना चाहिए।
0: बिल्कुल, अब तक हमने बहुत सारी बातें की, इसकी क्या संभावनाएं हैं और इसके स्वास्थ्य लाभ क्या हैं। तो मैम, मखाना के स्वास्थ्य लाभ के बारे में तो हमने बहुत बातें जान ली, लेकिन मखाना की उद्यमियता से क्या लाभ मिल सकता है किसान को, या फिर जो युवा इसमें आना चाहते हैं, इस उद्यम में आना चाहते हैं, उन्हें क्या लाभ मिल सकता है?
2: मखाना उद्यमिता के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसमें प्रसंस्कृत हम अगर इसे कर लेते हैं तो चूंकि इसकी मांग बहुत ज़्यादा है तो ये रोजगार सृजन में मदद करता है, साथ ही साथ किसानों की आय में वृद्धि करता है। हम मखाना जो होता है वो धान और गेहूं जैसी फसलों से दोगुना लाभ देता है, जिससे कि छोटे और सीमांत किसान ज़्यादा आर्थिक लाभ ले सकते हैं। स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स की मांग चूँकि ज़्यादा है तो इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा हम अगर इसमें जाते हैं, अगर इसका उद्यम हम स्थापित करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा

0: प्रभेद है मखाना की, उसके बारे में भी एक संक्षेप में देना चाहेंगे जानकारी। यह एक ऐसी किस्म है सबौर मखाना वन, जो मखाना की एक ऐसी किस्म है, बेहतरीन किस्म है, जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, जिसमें कि पुराने प्रभेदों की तुलना में 50% ज़्यादा उपज मिलता है। साथ ही यह कम समय में ज़्यादा उत्पादन देने में भी सक्षम है। इस प्रकार यह प्रभेद किसानों की आय में वृद्धि और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का एक उत्तम माध्यम है। अंत में हम बताना चाहेंगे कि हम देख सकते हैं कि मखाना जो देवताओं का भोजन माना जाता है, जो कि धार्मिक अनुष्ठानों, उपवास और प्रसाद में इस्तेमाल होता है, उसके बहुमुखी फायदे हैं। यह एक पौष्टिक सुपर फूड है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। मखाना उद्यमिता से हम किसानों की आय बढ़ा सकते हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। इसका उद्यम कृषि मूल्य संवर्धन, नवाचार और निर्यात के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने का प्रबल कारक है। संक्षेप में, मखाना उद्यमिता एक सुपरफूड क्रांति का हिस्सा है जो पोषण, आर्थिक विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। इन कारणों से यह एक टिकाऊ और लाभदायक व्यवसाय का सटीक साधन है। धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई और मखाना से जुड़ी इतनी सारी बातें आपने बताई। आपने स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताया, सरकार से क्या सहायता मिलती है लोगों को मखाना उद्यम के लिए, ये सब कुछ आपने बताया और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आज के कार्यक्रम उन्नत कृषि में इतना ही। दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही ढेर सारी जानकारियों के लिए, ढेर सारी बातों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि,
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितना।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
5: नमस्कार, मैं आरजी अनु एक बार फिर से 90.8 FM ग्रीन पर लेकर आ चुकी हूँ हमारे किसान भाइयों के लिए उन्नत कृषि, और इसमें होंगी कुछ उन्नत बातें, वो भी आपके फायदे के लिए, आपके हित के लिए। जी हाँ, आज का विषय है हमारा जल संचयन पद्धति, क्यों और कैसे। तो आज जानेंगे। वैसे दोस्तों, अभी जो पानी की किल्लत जितनी हो रही है, अभी तो फिलहाल विंटर सीजन है, लेकिन जैसे ही ये विंटर सीजन खत्म होने लगती है हमें चिंता सताती है पानी की, क्योंकि वाटर लेवल कम होता जाता है और हम पानी के लिए इधर उधर भटकते हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा सोचें जिससे कि हमारे पास जब हमें ज़रूरत पड़े वो पानी, वो जल हमें आसानी से मिल पाए। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश कुमार जी, ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कृषि अभियंत्रण विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर, और हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये जल संचयन क्या है।
6: जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग बोलते हैं जल ही जीवन है, और सोचिए कि जब हमारे कृषि के लिए इसको लाएंगे जल, तो और भी ज्यादा उपयोगिता बढ़ जाती है। तो जल संचयन कहने का तात्पर्य ये है कि जल का हम भंडारण कैसे, जैसे अनाज का भंडारण करते हैं उसी तरह जल का भी भंडारण कैसे करें, ये ही कहलाता है हमारा जल संचयन।
5: जी, और यहाँ पर आपने जाना कि जल संचयन जल का भंडारण कहलाता है, इसके साथ ही बहुत जरूरी है ये भी हम जानते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर साहब के तरीकों से जाने कि ये क्यों जरूरी है हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे आम जनता के लिए, तो आइए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं।
6: जी हाँ, देखिए अब आती है हमारा कि जल संचयन क्यों जरूरी है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमें कोई भी फसल हो, चाहे वो खरीफ में लगाएं चाहे रबी में लगाएं, उसके लिए हमें इरिगेशन की जरूरत है, मतलब सिंचाई की जरूरत है, और उसके लिए हमें जल चाहिए। केवल जल हमें कृषि के लिए नहीं चाहिए, हमें अपने घरेलू कार्यों के लिए भी चाहिए। यदि हम मवेशी पालन कर रहे हैं तो उनके लिए भी चाहिए। और यदि आप सोचिए कि यदि हम धान का फसल लगाते हैं तो 1 किलोग्राम धान को पैदा करने में हमें 3000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। यदि हम गेहूं की बात करें तो उसमें बहुत कम 500 लीटर की जरूरत पड़ती है। तो सोचिए दोनों में कितनी भिन्नताएं हैं। और हम जब धान लगाते हैं उस समय हमारे पास पानी नहीं होती है, इसलिए हम वर्षा पर निर्भर रहते हैं। और उस कभी कभी देखिए कहीं कुछ क्षेत्रों में सूखा हो जाता है, वहीं कुछ दूसरे क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। तो जो बाढ़ का पानी है हमें उसे हमें चाहिए कि हम कैसे डाइवर्ट करें, या अपने खेतों में आए जहाँ पर आपका जमीन है वहां पर कैसे हम जो वर्षा हो रही है उसको, वर्षा के जल को हम कैसे संरक्षण करें और उसको हर एक ऐसा हम लोग बनाए पद्धति, और उस पद्धति से हम उसको भंडारण कर सके अगले नेक्स्ट क्रॉप के लिए। यदि खरीफ में कर रहे हैं तो खरीफ जब बारिश हो रही है हमारा जुलाई अगस्त में, तो हम उस पानी को ऐसा बचाएं कि हमारे अगले 1 साल तक हमें जरूरत की जो भी हमारा फसल है उसको वो कर लें, चाहे उसमें हम अपने घरेलू कार्य को कर लें, चाहे मवेशी के लिए जरूरत हो और खेती, तीनों के लिए हम लोग जो भंडारण करते हैं पानी को वही हमारा जल संचयन पद्धति कहलाता है
5: जी। और जब पद्धति की बात आती है तो इसे भी जानना चाहेंगे हम।
6: ठीक है, देखिये जल संचयन की पद्धति बहुत सारी है। जैसे आप लोग जो महानगर में रहते हैं या नगर में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है आजकल जल संचयन पद्धति। उनका एक पद्धति है रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब छत पर हम कैसे जल वर्षा के जल को संरक्षित करें
5: जी।
6: या तो हम उसको संरक्षित करें, या तो जो आप अंडरग्राउंड वाटर होता है भूगर्भ जल जो होता है उसको कैसे हम अपने अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें। रिचार्ज करने का मतलब होता है कि जब आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में हमारा वाटर लेवल घट जाता है, कहीं कहीं पंपिंग करें पानी तो हमें पानी नहीं निकलता है, तो उसको हम एक ही तरीके से उस गहराई को उस भूगर्भ जल को संरक्षित कर सकते हैं। वो वर्षा के दिनों में हम एक अपने जो भी छत पर है, छत पर केवल 2 आउटलेट बनाइए, मतलब वर्षा होगी तो आपका छत पर जल जमा होगा और 2 आउटलेट से आपका पानी जाए, या तो एक बगल में गड्ढा या कुआं बना दें जिससे कुएं में हम जल को संरक्षित कर सके, या हम उसको सेडिमेंट देकर सीधे नीचे जल अपने जमीन में दे दें कि वो जितना भी पानी ऊपर आएगा वो नीचे चला जाए और आपके आस पास के जो एरिया है जो भी आपका जहाँ पर घर बना हुआ उसके अगल बगल में सारा चला जाए। ये तो हो कि नगरों और नगर और महानगर के लिए। और जो गाँव में है, गांव में क्या होता है हमारा कि पानी सरफेस पे जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस रनअप, मतलब जमीन से होते हुए पानी हमारा सारा खत्म हो जाता है। तो हमें चाहिए कि जो गांव है आपका, गांव के बीचों बीच एक ऐसा क्षेत्र मान ले, और बीचों बीच ना हो तो कहीं दूसरी जगह हो जहां पर जो उस जमीन को हम यूज नहीं करते हैं उस जमीन को खुदवाएं हम जो भी अपना रिक्वायरमेंट होगा, और ऐसा एक चैनल दें कि जो सारे जितने भी गांव में पानी वर्षा ऋतु में आ रही है वो सारे पानी कलेक्शन होकर उस टैंक में, वो हमारे तालाब जहाँ खुदवाए हुए वहां पर चले जाए। अच्छा। और ये भी ध्यान रखें कि जब हम टैंक का निर्माण कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्लोप दें, स्लोप देने से होगा, और उस पर लाइनिंग कर दें, लाइनिंग करने से होगा, लाइनिंग करने का मतलब होगा या तो प्लास्टिक से उसको लाइनिंग करें चारों तरफ, या सीमेंट देकर उसको हम लोग प्लास्टर कर दें। उससे होगा क्या कि आपका इवेपोरेशन लॉस नहीं होगा, वो मिट्टी में पानी आपका सोखेगा नहीं, और जैसे ही वर्षा खत्म होती है, जैसे ही वर्षा ऋतु का खत्म होता है और कोई हमें सिंचाई के लिए चाहिए तो वहां से आप या तो उसमें पंप लगा दें, या तो वहां पर एक ऐसा फिर ड्रेनेज का चैनल दे दें कि वो फिर आप अपने जहां पर आपका खेत हो वहां पर वो डायरेक्ट पानी आपका चला जाए। इससे क्या होगा कि आप जब ऑफ सीजन हो गया तो उस पानी का इस्तेमाल आप खेती के लिए कर सकते हैं, यदि मवेशी को आपको पिलाना है पानी तो वो पानी आपको काम आ जाएगी, या आपको डोमेस्टिक यूज के लिए ज्यादा करना चाहते हैं तो वहां पर कपड़ा धो सकते हैं, ये कर सकते हैं। यदि उसमें आप एक फिल्टरिंग यूनिट बैठा देते हैं जो जहां पर डेवलप्ड गांव है तो वो पानी आपको पीने के योग्य भी आ जाते हैं। देखिए भाइयों, जो हमारा वर्षा ऋतु का पानी होता है वो नॉर्मल वाटर होता है और उसका पीएच जो होता है नॉर्मल होता है, जिसको हम आसानी से अपने कंजप्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो हम इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये लवणीय नहीं होता, क्योंकि इसमें सॉल्ट की मात्रा कम होती है, इसलिए वर्षा ऋतु का पानी कृषि और हमें पीने के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छी होती।
5: और वैसे भी जो किसान भाई हमारे मछली पालन करते हैं तो उन्हें पोखर तो बनवाना ही पड़ता है, तो मुझे लगता है कि वो उस तरीके से भी अपनी पोखर की जो वाटर लेवल है वो बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि एक जो है ढलान टाइप का बना देना चाहिए जिससे कि जो सरफेस पे जो वाटर आते हैं जाकर के वहां गिरे, तो इस तरीके से आपका जो वाटर लेवल है वहां का वो भी मेंटेन रहेगा और आपके पोखर में पानी भी ज्यादा आ सकता है। फिलहाल यहाँ पर फायदों की और बात करेंगे हम, जहाँ तक किसान भाई जानना चाहते हैं फायदे ही फायदे हैं इसके, अगर आप वाटर स्टोर करते हैं तो आने वाले फ्यूचर में भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इस पद्धति को जानकर आपने जाना, तो थोड़ी सी और बात करते हैं डॉक्टर साहब फायदे की।
6: जी यहाँ जहाँ तक फायदे के, तो आप ये सोचिए जब हम धान की फसल करते हैं और जब सिंचाई की बात करते हैं तो हम पंपिंग सेट चलाते हैं, उसमें हमारा डीजल एके में पैसा लगता है या इलेक्ट्रिसिटी का रहता है तो हमारा बिजली का बिल भी उठ रहा है, फिर डीजल का आपको पंप सेट खरीदना पड़ रहा है। यदि आप वर्षा ऋतु के जल को संचयन करके रख लिए हैं तो ये कितने आपको फायदा हो गए, इकोनॉमिक लॉस हो गया, इकोनॉमिक आपको ये फायदा हो गया। और दूसरी बात हो गई कि जब आपको पानी की कमी, यदि आपका ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया तो वो क्या आपका ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देगा,
5: जगह पे जमीन भी बंजर थोड़ी होने लगती है।
6: जी और क्या होता है कि इससे एक और फायदा यदि हम करें कि देखिए अभी क्या हो रहा है, बहुत जगह पानी शुद्ध पानी आपको पीने के नहीं मिल रहा है, आपको यहाँ तो मुफ्त में पानी मिल जाएगा, उस पानी को आप संचरित कर लें। मैंने जैसे पहले ही बताया कि इसमें सॉल्ट नहीं होता है, इसलिए पानी ये क्या होता है हमारे पीने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसके केवल हमें रिफाइंड करने की जरूरत होती है, क्योंकि जो पानी जब आता है धरती पर तो इसमें जो धूल कण भी कुछ होते हैं केवल उनको रिफाइन कर लेना होता है, बस वो फिर हमारा पानी पीने योग्य हो जाता है। जैसे आपने बताया कि मछली पालन है, ये मछली पालन के लिए तो पानी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है क्योंकि इसमें सॉल्ट नहीं होता और मछली के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है।
5: और डॉक्टर साहब अभी देखा गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में भी कहा था जल संरक्षण की बात कही थी और अभी जल जीवन हरियाली भी चल रहा है, तो इसमें क्या अगर हमारे किसान भाई इस पद्धति को अपनाते हैं तो कुछ सब्सिडी या कुछ ऐसे स्कीम्स भी अवेलेबल हैं?
6: जी जी जैसे आप तालाब, मैंने पहले बोला कि एक तालाब खुदवाइए, देखिए तालाब खुदवाने का जो भी खर्चा होता है उसका 90% आपको सरकार देती है, 10% आप जो भी स्वयं संरक्षा स्वयं समूह बनाया हो या जो बनवाना चाह रहे हैं उनको देना पड़ता है, 100 रुपया समझ लीजिए 100 रुपया लागत है तो 90 रुपया सरकार देगी, 10 रुपया ही आपको देना है। तो इस तरीके से हम लगाते हैं कि इस पे गवर्नमेंट भी आपको बहुत सब्सिडी दे रही है, यदि कोई तालाब खुदवाना चाहे मछली पालन के लिए हो चाहे तो जल को संरक्षित करने के लिए तालाब बनवाना है तो बहुत ज्यादा है उनके
5: तो
6: लिए।
5: क्या ये ग्रामीण जो हमारे भाई हैं उनके लिए ही है या फिर शहरों में?
6: नहीं, ये शहरों में तो नहीं लेकिन ग्रामीण परिवेश में ज्यादा है और एक पंचायत स्तर पर ये है कि मतलब कुछ लोग समूह के लोग उठ कर आए पंचायत में, एक पंचायत में हमारा तालाब हो जाएगा तो आसपास के गाँव को भलाई होता है, भलाई के लिए है।
5: तो इसके फायदे आपने जाना किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, इसके बाद इस पद्धति को बनाने समय हमारे जो श्रोता है उन्हें क्या कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए?
6: जी देखिए सबसे बहुत जरूरी है, यदि हम तालाब में दिमाग खुदवा रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें पानी की आवश्यकता कितनी है, पानी आवश्यकता ये केवल नहीं कि हमें फसल के लिए, ये भी देखना है कि हमें खरीफ और रबी दोनों फसल, यदि हमारा 10 हेक्टेयर में गाँव में खेती हो रही तो 10 हेक्टेयर में हम जितने भी ये फसल लगाते हैं चाहे तीनों सीजन में तो उन सब सीजन का मिलाकर हमें कितनी पानी की जरूरत है, और जितनी पानी सब मान लीजिए हमें 10 लीटर पानी की जरूरत है तो उसमें 2 लीटर एक्स्ट्रा हम मानेंगे क्योंकि हमारा इवेपोरेशन लॉस हो जाता है तो उससे थोड़ा ज्यादा चलेंगे। यदि आप मवेशी पालन के लिए भी करना चाहते हैं तो 20% पानी 20% और स्टोरेज बढ़ाएंगे, यदि हम ड्रिंकिंग के लिए जाना चाहते हैं तो और आप ज्यादा बढ़ाइए, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यदि बिहार यदि आप सरकार से लेते हैं इसमें अनुदान तो वो लोग वहाँ के इंजीनियर जो होंगे वाकई डिजाइन कर लेंगे कि आपके यहाँ कितनी फसल है, कितना मवेशी पालन के लिए चाहिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, तो सबको मिलाकर वो एक एस्टिमेट देते हैं कि आपको इतने मीटर इतने घनत्व में आपको तालाब खुदवाने की जरूरत है। तो ये हो गया कि पहला आपको ये ध्यान देना है, दूसरा ये भी ध्यान देना है कि हमारा जो सीजन जहाँ पर यह तालाब खुद रहा है वहाँ का एटमोस्फेरिक कंडीशन कैसा है, वहाँ पर हमारा कितना पर डे इवेपोरेशन लॉस, कितना पानी समझ लीजिए गर्मी के दिन में सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो हमारा पानी का नुकसान भी होगा, तो भी आपको देखना है कि हमारा कितना नुकसान हो जाएगा उस टाइम में जो इवेपोरेट हो रहा है, तो ये ध्यान देना है। यदि हम अपने भूगर्भ जल को कर रहे हैं संरक्षित कर रहे हैं मतलब वाटर टेबल को रिचार्ज कर रहे हैं तो वहाँ देखना है हमें कि हमारे कंजम्पशन जो हम पहले स्टोर कर लें उसके बाद वो जो वाटर है उसको हम फिर भूगर्भ जल में दें, ये भी आपको ध्यान देना होता है।
5: तो यहाँ पर आपने जाना ध्यान देने योग्य बातें, तो जहाँ तक इस जल संचयन पद्धति की बात है तो ये फायदे ही फायदे लेकर आता है हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए, तो बस आप ही कदम बढ़ाइए और सरकार आपके फायदे के लिए, आपके हित के लिए है ही, तो आइए और कदम बढ़ाते हैं इस जल संचयन की ओर और आपको यहाँ पर जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं आप उसे अपनाएं और जल संचयन पद्धति को जरूर अपनाएं। तो आज के लिए इतना ही 90.8 FM ग्रीन पर, कल फिल्म से मैं हाजिर रहूंगी आप सभी के बीच एक नए विषय के साथ। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है उमंग उमंग उमंग
1: उमंग। सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
2: और अजीत का भी नमस्कार कि ये स्वीकार करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल नारायणी सिंगरौल नोमेश सिंगरौल नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
1: लिखते हैं सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
2: वाह बहुत सुंदर विचार, आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे नंदा बोडखे हनुमान बोडखे और उत्तम जामधाड़े जी का।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू चित्ररेखा साहू शुभम और सेजल साहू।
2: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
1: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा प्रिंस वर्मा निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए आप जानते हैं कि यह झील है कहाँ। तो श्रोताओं आपको बता दें कि यह झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको यह भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहाँ गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहाँ तक धर्मों की बात है ये झील हिंदू जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापांग युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त। लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। हमारा IBNS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
4: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
4: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
4: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
4: अच्छा।
3: यानी आजादी, आजादी, आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर, गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
4: मंगल पांडे।
3: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

13th.

0: कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
2: उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
4: ये दोनों भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे हीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
5: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
4: भले ही हमें फांसी के तख्त पर झूलना पड़े।
1: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
4: भाइयों, उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूं। आओ, भारत मां की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
1: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
6: हम पांडे को अरेस्ट मांगते हैं।
1: मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
7: ए मंगल पांडे, वॉच आउट!
1: सारी छावनी में खलबली मच गई।
0: उसके बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया। कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग दी।

0: क्रमांक है, तुरंत अस्पताल भेजो।
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांति वीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गोरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
6: आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
7: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
8: काशू बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
9: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
8: देखो बेटी,
9: तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं, तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
10: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
9: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
10: अच्छा माँ।
11: माँ माँ
10: लो देवेंद्र भी आ गया।
11: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
9: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
10: ठीक है माँ।
11: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
10: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
11: ये देखो दीदी, ये मारा।
10: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
11: अरे ये मारा।
10: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
11: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
10: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
11: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
9: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
10: अच्छा माँ, कौन आप लोग? कौन कहिए, किससे मिलना है? अरे
12: हमें अंदर आने दो।
10: अरे क्यों?
13: ए लड़की रास्ते से हट जा।
10: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
13: लड़की हट, ये चाकू देख रही है ना? ज्यादा होशियारी मत दिखा, वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
10: माँ ये क्या है? अरे
13: ए चोर मत बचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
10: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
13: ये चाकू देख रही है ना?
10: छोड़ दो, मेरी माँ को कुछ मत करो।
9: चाबी चाबी मुझे निकालो।
13: जल्दी,
9: याद नहीं कहाँ रखी है, छोड़ दो।
13: बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
9: अरे मेरे पास छोड़ो,
10: मेरी माँ को छोड़ दो।
13: चुप चुप, आवाज से गाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
10: सुनो,
13: इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो।
14: अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
9: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
10: देवेंद्र।
11: हाँ दीदी।
10: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
11: हाँ,
10: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
11: अच्छा।
10: हेलो।
15: हाँ बेटा बोलो।
10: पापा पापा
15: हाँ बोलो बेटा,
10: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसा है।
15: कौन घुसा है?
10: माँ को बहुत मार रहे हैं।
15: नहीं नहीं, अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो पड़ोस को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
10: मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
11: अच्छा।
10: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ बचाओ।
7: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
16: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे।
9: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
16: देखो ना
9: बहादुर है मेरी बच्ची।
7: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे।
2: मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
12: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
17: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
12: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
18: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
17: खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है।

0: विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-80% और दोपहर में 25-30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13-17 जून के दौरान सामान्यतः 14-15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है।

प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे अनु। आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। वैसे किसान भाइयों, अक्सर देखा गया है कि आप खेत पर तो खेती करने जाते हो, लेकिन आपके घर के आसपास थोड़ी सी जमीन रह जाती है तो उसे भी आप अपने हित में, अपने लाभ में आप उपयोग कर सकते हो, और वो है पौष्टिक उद्यान बनाकर या पोषण वाटिका बनाकर। वैसे दोस्तों, पौष्टिक उद्यान या पोषण वाटिका से मतलब है हमारा कि वैसा एक गार्डन जिसमें वो चीजें आप लगा सके जो कि आपके हित के लिए, जो आपको पोषण प्रदान करे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूं कि आज का हमारा विषय है पौष्टिक उद्यान या पोषण वाटिका, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं मैम डॉक्टर संगीता श्री, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में, और इस विषय पर आप विस्तार से जानकारी देंगी हमारे किसान भाइयों को, इसलिए आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले मैम, जब सवाल की ओर बढ़ें, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं, जो भी उनकी चिंताएं हैं, जो भी उनकी परेशानी है, जो भी उनकी उत्सुकता है इस बारे में जानने की, यानी कि पोषण वाटिका के बारे में जानने की, तो आए सबसे पहले बताएं हमारे किसान भाइयों को कि पोषण वाटिका क्या है।
2: नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको पोषण वाटिका का एक परिचय देती हूँ। पोषण वाटिका या रसोई घर बाग या फिर गृह वाटिका, उस वाटिका को कहा जाता है जो घर के अगल बगल में, घर के आंगन में ऐसी खुली जगह पर होती है जहां पारिवारिक श्रम से परिवार के इस्तेमाल हेतु विभिन्न मौसमों में मौसमी फल तथा विभिन्न सब्जियां उगाई जाती हैं। पोषण वाटिका का मकसद रसोई घर के पानी व कूड़ा करकट का इस्तेमाल करके घर की फल व साग सब्जियों की दैनिक जरूरतों को पूरा करना है। आजकल बाजार में बिकने वाली चमकदार फल और सब्जियों को रासायनिक उर्वरक प्रयोग करके उगाया जाता है। इन रासायनिक दवाओं का कुछ अंश फल सब्जी में बाद तक बना रहता है, जिसके कारण उन्हें इस्तेमाल करने वालों में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है,
0: या फिर ये कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो थोड़ी सी कमजोर
2: हो जाती है। इसके अलावा फलों व सब्जियों के स्वाद में भी अंतर आ जाता है, इसलिए हमें अपने घर के आंगन या आसपास की खाली जगह में छोटी छोटी क्यारियां बनाकर जैविक खादों का इस्तेमाल करके रासायन रहित फल सब्जियों को उगाना चाहिए।
0: तो मैं इससे लाभ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
2: हाँ, इनके अनेक लाभ हैं। एक तो आपको रासायनिक रहित सब्जी मिलेगी, पोषण तत्वों से भरपूर। पोषक वाटिका अच्छी खासी बचत का भी स्रोत है। सब्जी उत्पादन बढ़ाने में भी पोषण वाटिका का योगदान है। गृह वाटिका या पोषण वाटिका लगाकर महिलाएं अपनी व अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकते हैं। पोषण वाटिका से प्राप्त मौसमी फल व सब्जियों को परिरक्षित कर साल भर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि जैम, जेली, केचप, ये सब बनाया जा सकता है। और जब मौसम नहीं हो इनका तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मनोरंजन और व्यायाम का भी एक अच्छा साधन है, तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी खुद उगाई गई फल सब्जियों बाजार की फल सब्जियों से अधिक स्वादिष्ट और संतोषप्रद लगता है।
0: अच्छा देखा गया मैम कि अभी शहरों की भी बात कर लेते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि उनके आसपास जो है जैसे नींबू के पौधे हो जाए, मिर्च के पौधे हो जाए, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। अगर ग्रामीण जीवन से उतर कर बाहर आकर हम बात करें शहरों के, तो शहर में भी आजकल लोग देखते हैं कि फूलों से ज़्यादा अपने गमलों में मिर्च के पौधे लगाने लगे हैं, नींबू के पौधे लगाने लगे हैं, वैसे छोटे छोटे जो ज़्यादा वजन वाले जो फल या सब्जी ना हो वैसे पौधे लगाने लगे हैं। अब आप उनकी टेरेस पे छत पे जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। तो इसे भी आप कह सकते हैं कि अगर शहरों में अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप गमलों में छोटे छोटे जो कम वज़न वाले जो फल हैं, जो सब्जी हैं, आप लगा सकते हैं, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और आपके किचन के लिए भी थोड़ा जो है वो मिल जाता है। तो यही लाभ है इसके। और मैम अगर पोषण वाटिका की यहाँ पर बात हो रही है, पौष्टिक उद्यान की बात हो रही है, तो हम इसके बनाव के बारे में जानना चाहेंगे।
2: पोषण वाटिका बनाने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन, उसका बहुत ही अहम भूमिका होता है। ज्यादातर ये स्थान घर के पीछे या आसपास ही होते हैं, जिससे कि थोड़ा कम समय मिलने पर भी काम करने में सुविधा रहती है
0: जी।
2: तथा घर में लगे नलकूप और कुएं का पानी तथा स्नान घर का पानी, रसोई घर में इस्तेमाल किया गया पानी पोषण वाटिका तक पहुंच सके और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। स्थान चयन करते समय यह भी ध्यान देना चाहिए कि स्थान खुला हो ताकि उसमें सूरज की भरपूर रोशनी आसानी से पहुंच सके तथा जानवरों से सुरक्षित हो और उस स्थान की मिट्टी उपजाऊ हो। और जहां तक पोषण वाटिका के आकार का संबंध है तो वह जमीन की उपलब्धता, परिवार के सदस्यों की संख्या और समय की उपलब्धता पर निर्भर होता है। आयताकार आकार का वाटिका बनाना वर्गाकार आकार के वाटिका से हमेशा अच्छा होता है। 5 वयस्क सदस्यों वाले परिवार के लिए प्रतिदिन 250 ग्राम के हिसाब से एक परिवार के लिए सब्जियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए 250 वर्ग मीटर का क्षेत्र पर्याप्त होता है
0: जी।
2: एक आदर्श पोषक वाटिका के लिए उपलब्ध 250 वर्ग मीटर क्षेत्र में बहुवर्षीय पौधों को वाटिका में उस तरफ लगा देना चाहिए जिससे कि अन्य दूसरे पौधों पर छाया ना पड़ सके, ना ही एक वर्षीय सब्जियों के फसल चक्र और उनके पोषक तत्वों की मात्रा में बाधा डाल सके। एक आदर्श पोषक वाटिका बनाने के लिए पूरे 250 वर्ग मीटर क्षेत्र को 8 से 10 वर्ग मीटर की क्यारियां में विभाजित कर इन बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ध्यान रहे कि गृह वाटिका का बनावट ऐसा होना चाहिए कि वो देखने में खूबसूरत लगे, बहुत अट्रैक्टिव सा लगे। वाटिका के चारों तरफ बाड़ का प्रयोग करना चाहिए जिससे 3 तरफ गर्मी व वर्षा के समय कद्दू वर्गीय बेल वाली लत्तर वाली सब्जियां जैसे लौकी, तुराई, छपन कद्दू, परवल, करेला वगैरह को चढ़ाना चाहिए तथा बची हुई 4थी तरफ गेट या प्रवेश द्वार लगाना चाहिए। फसल चक्र व सघन फसल पद्धति को अपनाना चाहिए। क्यारियों के बीच के मेड़ों पर मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, बाकला, धनिया, पुदीना, प्याज व हरे साग वगैरह उगाना चाहिए जो कि जल्दी से उग जाते हैं। वाटिका के 2 कोनों पर गड्ढों होने चाहिए जिनमें से एक तरफ वर्मी कंपोस्ट यूनिट और दूसरी तरफ कंपोस्ट खाद का गड्ढा हो
0: जी।
2: जिसमें घर का कूड़ा करकट व फसल अवशेष डालकर खाद तैयार की जा सके। इन गड्ढों के ऊपर छाया के लिए सेम जैसी बेल चढ़ाकर छाया देना चाहिए ताकि इससे पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होगी तथा गड्ढे भी छिपे रहेंगे। वाटिका में पपीता, अनार, नींबू, करौंदा, केला, अंगूर, अमरूद वगैरह के पौधा को सघन विधि से इस प्रकार किनारे की तरफ लगाना चाहिए जिससे कि सब्जियों पर छाया ना पड़े और पोषक तत्वों के लिए मुकाबले ना हो एक दूसरे से। फसल चक्र में कुछ यूरोपियन सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट, केल, लीक, लेट्यूस आदि लगाना चाहिए जो कि पोषण तत्व से युक्त है और कैंसर जैसी बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। पोषक वाटिका को और अधिक आकर्षण बनाने के लिए उसमें कुछ सजावटी पौधे भी लगाए जा सकते हैं।
0: अच्छा मैम, यहाँ पर मॉडल पोषण वाटिका की हम बात करते हैं और आपने एक चीज कहा था फसल चक्र, तो उसमें हम जानना चाहेंगे कि एक मॉडल पोषण वाटिका बनाने के लिए फसल चक्र क्या है, इसके बारे में बताएं।
2: एक मॉडल पोषण वाटिका बनाने के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र कहने का मतलब है कि सालों भर हम इस तरह सब्जियां लगाएं कि हमको सालों भर हर तरह के विभिन्न प्रकार के सब्जियां मिलता रहे एक परिवार के लिए।
0: अच्छा।
2: मैंने पहले भी बताया कि हम जो हमारा वाटिका है उसको कई प्लॉट्स में बांट लेते हैं, 7-8 प्लॉट में बांट लेते हैं और सभी प्लॉट्स में सालों भर तरह तरह की सब्जियां लगाते हैं। जैसे कि मानिए पहला प्लॉट है तो उसमें जुलाई से अक्टूबर में अगेती फूलगोभी के साथ अंतर फसल के रूप में पालक ले सकते हैं, नवंबर से मार्च में आलू ले सकते हैं और अप्रैल से जून में चौलाई। इसी तरह दूसरे प्लॉट में बढ़े तो दूसरे प्लॉट में अक्टूबर से फरवरी में पत्ता गोभी के साथ अंतर फसल के रूप में सलाद पत्ती, मार्च से जून के बीच में भिंडी और जुलाई से सितंबर के बीच में मूली।
0: तो ये फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है।
2: हाँ, इसी तरह तीसरे प्लॉट में जुलाई से मार्च के बीच में बैंगन और अंतर फसल के रूप में पालक। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, ये फसल चक्र अपनाना काफी जरूरी है। और इस तरह से तीसरे प्लॉट में मैंने बताया कि जुलाई से मार्च के बीच में बैंगन और साथ में अंतर फसल के रूप में पालक, अप्रैल से जून के बीच में चौलाई। चौथे प्लॉट पे आते हैं तो आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में पछेती फूल गोभी के साथ अंतर फसल के रूप में गांठ गोभी और मार्च से सितंबर के बीच में बैगन के साथ अंतर फसल के रूप में लाल साग।
0: अच्छा।
2: नवंबर से मार्च के बीच में पांचवें प्लॉट में आप प्याज लगा दें और जून से अक्टूबर के बीच में आप भिंडी का सब्जी का उपयोग आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और छठे प्लॉट में सितंबर से दिसंबर के बीच में पत्ता गोभी, दिसंबर में आप गांठ गोभी, जनवरी से मई के बीच में करेला और जून से अगस्त के बीच में लोबिया बरसाती वाली। सातवें प्लॉट में अगस्त से दिसंबर में आप टमाटर अगेती टमाटर और जनवरी से जून के बीच में प्याज आप उगा सकते हैं। सितंबर से दिसंबर के बीच में आप आठवें प्लॉट में आलू अगेती वाली लगा दें, जनवरी से मई के बीच में फूट ककड़ी आदि लगा सकते हैं और जून से अगस्त के बीच में हरी खाद के रूप में लोबिया। इसके अलावा अन्य सब्जियों की भी जरूरत के मुताबिक आप लगा सकते हैं, कद्दू वर्गीय या बेल वाली या लत्तर वाली सब्जी जैसे लौकी, तुरई, छपन, कद्दू, परवल, करेला, मैंने पहले भी बताया, को बार पे चढ़ाना चाहिए और दो क्यारियों के बीच में मेड़ों पर आप जल्दी से कम अवधि वाली उगने वाली सब्जी जैसे मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, बाकला, धनिया, पुदीना, प्याज, हरा प्याज, साग वगैरह लगा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर परिवार के सभी सदस्य थोड़ा श्रम कर गृह वाटिका में सफलतापूर्वक फल और सब्जी उपजा लें तो ना सिर्फ सालों भर विभिन्न प्रकार की ताजी सब्जियां प्राप्त होती है बल्कि यह मनोरंजन और व्यायाम का भी एक अच्छा साधन सिद्ध होता है। इससे घरेलू आय में भी वृद्धि होगी, अतः पोषण वाटिका हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि और बुद्धिमता की एक कुंजी है।
0: तो आपने जाना किसान भाइयों, या फिर मैं यूं कहूं कि हमारे जितने भी श्रोता हैं वो भी पौष्टिक उद्यान एक बना सकते हैं, पोषण वाटिका बना सकते हैं, अपने घर के आगे जो बची खुची जमीन होती है उसका इस्तेमाल करके इसके क्या लाभ हैं आपने वो भी जाना, साथ ही एक मॉडल पोषण वाटिका के बारे में आपने जाना, फसल चक्र कितना ज़रूरी है ये भी जाना आपने। तो बस जानना जरूरी नहीं है, आप अगर चाहते हैं करना तो आप आगे बढ़ें, अपने कदम आगे बढ़ाएं और ज़रूर पोषण वाटिका बनाएं। देखिए अगर आप ये कदम उठाते हैं तो जो लोग आपके घर आते हैं, जो लोग आपके इस काम को देखते हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें। तो एक कदम आप बढ़ाइए और फिर जनता तो आपके पीछे आ ही जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी 90.8 FM ग्रीन पर, तो सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम।
1: पहले
3: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
4: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
4: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया, अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
5: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए विषय लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में, फल वर्गीय सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन। इस विषय के साथ हमारे बीच हैं आज डॉक्टर प्रीति सिंह, जो कि वैज्ञानिक हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम स्वागत है आपका।
8: सबसे पहले मैं अपने किसान भाई को बताना चाहूंगी कि नर्सरी की उपयोगिता क्यों, क्या है और हमें ये करना ही क्यों चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि जो फल है, फलों की नर्सरी है, वहाँ ग्राफ्ट, शायन के मात्र पौधे, रूटस्टॉक और पपीता जैसे बीज प्रवर्धित फसल की पौध के उत्पादन के लिए आवश्यक है। युवा पौधों को चाहे बीज से या वनस्पतिक प्रजनन द्वारा प्रवर्धित किया गया हो, विशेष रूप से विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्हें प्रतिकूल तापमान, भारी वर्षा, सूखा हवा, विभिन्न प्रकार के कीट और बीमारियों से बचाना होता है। यदि बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं तो अंकुरण अक्सर खराब होता है और युवा पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं और परिपक्व होने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए फल की फसलों को खेत में रोपने से पहले नर्सरी में प्रचारित और किया जाना चाहिए और उगाया जाना चाहिए। तो जो हमारी नर्सरी है, उस जो ये फलों की नर्सरी है, इसको हम तीन भाग में इस टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो सकता है कि नर्सरी की साइट का चयन कैसे करें, दूसरा नर्सरी की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और तीसरा कि नर्सरी की तैयारी करें कैसे। तो सबसे पहले बिंदु पे आते हैं कि नर्सरी प्रबंधन के लिए साइट सिलेक्शन कैसे करें। तो नर्सरी के लिए साइट का चयन काफ़ी सावधानी और सोच विचार के बाद किया जाना चाहिए, क्योंकि नर्सरी के स्थान का उसकी समग्र सफलता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नर्सरी के लिए स्थान और स्थान के चयन के लिए विचार किए जाने वाले 5 महत्वपूर्ण कारक हैं: जलवायु, स्थान पर मध्यम जलवायु और लंबे समय तक बढ़ने वाला मौसम होना चाहिए, विशेष रूप से तेज जलवायु, उतार चढ़ाव या तेज हवा का वेग या ओलावृष्टि की घटनाओं के साथ अत्यधिक तापमान का अनुभव करने वाले स्थानों से बचना चाहिए। दूसरा है स्थलाकृति, जिसे हम टॉपोग्राफी भी कह सकते हैं। अगर जो सबसे कुशल उपयोग के लिए नर्सरी के लिए भूमि को समतल किया जाना चाहिए, बाढ़ या पाले की आशंका वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए, नर्सरी के लिए निचले इलाकों का चयन नहीं करना चाहिए। तीसरा है मिट्टी जो हो हमारी गहरी बलुई दोमट से चिकनी दोमट बनावट वाली और पर्याप्त जल धारण क्षमता करने वाली होनी चाहिए और ये कंकरीला या पथरीला नहीं होना चाहिए। अधिकांश फल पौधों के लिए इष्टतम जो मिट्टी का पीएच मान है वो 5 से 7.2 के आसपास है। 7.5 से अधिक अगर पीएच मान है तो इस साइट को चुनने से बचना चाहिए। चौथा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पानी, एक आदर्श नर्सरी साइट में रोपण और बढ़ते मौसम के दौरान वर्षा का वितरण अच्छा होना चाहिए। नर्सरी के निकट या भीतर एक स्थायी जल का स्रोत होना चाहिए जिससे हम सिंचाई सफलतापूर्वक कर सकें और नई पौधे के लिए सिंचाई का पानी लवण रहित होना चाहिए। जो पांचवा और इम्पोर्टेंट बात है वो है कि कीट पतंगों और रोग पैदा करने वाले जीवों की व्यापकता, गंभीर कीटों या बीमारियों, निमटोड या खरपतवारों की उपस्थिति को पहले ही जांच लेना चाहिए और अगर किसी मिट्टी में इन सब की बहुत व्यापकता है तो हमें इस साइट को नहीं चुनना चाहिए। अब हम आते हैं कि फल नर्सरी की स्थापना के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी नर्सरी साइट को सेलेक्ट करते हैं या चुनते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके चारों बगल फेंसिंग या बाड़ लगा लेना चाहिए। फेंसिंग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पोल बना बना के उसके ऊपर वायर या तार चढ़ा सकते हैं या फिर आजकल एक नेचुरल फेंसिंग वाला भी पॉइंट है जहाँ पे आप करूंदा जैसे फलों को नेचुरल फेंस की तरह यूज कर सकते हैं। सड़क और रास्ते होने चाहिए आपके नर्सरी में ताकि जो आपके जो भी प्रवर्धित पौधे हैं उनको जल्दी से मार्केट तक लेके जाया जा सके। और तीसरा कार्यालय या फिर सह भंडार जहाँ से आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें। उसके बाद आता है मदर प्लांट ब्लॉक। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो फल का प्रवर्धन होता है वो या तो ग्राफ्ट से होता है या तो लेयरिंग से होता है या बडिंग या कटिंग से होता है। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा मदर प्लांट का ब्लॉक हो या शायन बैंक का ब्लॉक हो। और ये जो मदर प्लांट है हमारा, ये डिपेंड करता है कि हमारे बाज़ार में किस वैरायटी की मांग ज़्यादा है। जिस वैरायटी की भी मांग ज़्यादा हो उसी वैरायटी का मदर ब्लॉक एस्टैब्लिश करना चाहिए हमें नर्सरी में। किसी भी नर्सरी की सफलता काफ़ी हद तक आगे के गुणन के लिए मात्र पौधों के प्रारंभिक चयन पर निर्भर करती है और इसे अनुसंधान संस्थान या प्रतिष्ठित नर्सरी से ही खरीदा जाना चाहिए। फिर बात करते हैं सिंचाई प्रणाली की। फल नर्सरी में पौधों को सिंचाई के लिए पानी की प्रचुर आपूर्ति की आवश्यकता होती है क्योंकि उन्हें सीमित मात्रा में पॉटिंग मिक्सचर के साथ पॉली बैग में उगाया जाता है। अतः ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का होना पानी की बर्बादी को कम करता है और साथ ही साथ पौधे को आवश्यक मात्रा में जल भी प्रदान करता है। छठी जो बात है वो है सीड बेड तैयार करना। जो बीज की क्यारियाँ तैयार करते हैं नर्सरी में, यह घटक पौध और रूट स्टॉक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इन्हें जल स्रोत के पास बिछाया जाना चाहिए क्योंकि इन्हें बार बार पानी देने की आवश्यकता होती है। सुविधाजनक लंबाई के साथ इनकी जो चौड़ाई है वो 1 से 1.5 मीटर के आसपास होनी चाहिए और दो बेड के बीच में जो स्पेस है वो लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। ये जो 60 सेंटीमीटर का जो स्पेस है इसे बीज बोने, निराई करने, पानी देने, छिड़काव करने और पौधे उठाने में आसानी होती है। अगर दूसरा जो तरीका है नर्सरी में पौधे तैयार करने का, एक तो सीड बेड हो गया और दूसरा है पॉली बैग। पॉली बैग में पौध और रूट स्टॉक उगाने के लिए नर्सरी बेड की तुलना में अधिक जगह की आवश्यकता होती है लेकिन पौधों की वृद्धि में एकरूपता के साथ साथ मृत्यु दर भी काफ़ी कम हो जाती है। प्रत्येक बेड 500 के आसपास ग्राफ्ट या गूटी रखा जा सकता है और इसको अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। सेवेंथ पॉइंट जो है वो है पॉटिंग मिश्रण या पॉटिंग यार्ड। तो जो भी हमारा नर्सरी का एरिया है वहाँ पे हमारा एक पॉटिंग यार्ड होना चाहिए जहाँ पे टाइम टू टाइम जो हमारा पॉटिंग मिक्सर है वो तैयार होते रहना चाहिए। पॉटिंग एक अच्छा पॉटिंग मिश्रण में एक भाग मिट्टी, एक भाग नदी के किनारे का रेत और एक भाग FYM होना चाहिए। इसका अनुपात 2:1:1 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि दो भाग मिट्टी, एक भाग रेत और एक भाग FYM, इनको मिला के या इनको जो आपका पॉटिंग यार्ड है वहाँ पे मिला करके आप पॉली बैग में भर सकते हैं और इसमें बाद में आप जो भी बीज डालना चाहें वो आप डाल के तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आठवां पॉइंट है कि जो ये पौधे हैं नर्सरी के, ये कभी कभी हम पॉली हाउस में भी तैयार कर सकते हैं। तो जो पॉली हाउस में तैयार हुए पौधे होते हैं वो थोड़े से नाजुक होते हैं, तो उनको डायरेक्ट फील्ड में ले जाने से पहले अगर आपके पास शेड नेट की फैसिलिटी है तो आप उसको शेड नेट में लेके जाइए, क्योंकि शेड नेट में क्या होता है कि जो आपके पौधे होते हैं उनको थोड़ा सख्त होने का टाइम मिलता है, वरना पॉली हाउस से तुरंत बाहर ले जाने पे, फील्ड में लेके जाने पे उनमें बहुत ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ सकती है। इसीलिए अगर पॉली हाउस में आप पौधे उगा रहे हैं तो उसको पहले आप शेड नेट में लेके जाइए, वहाँ पे 1-1.5 महीना रखिए और फिर 1-1.5 महीने के बाद आप उसको फील्ड कंडीशन में लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब नर्सरी की तैयारी करें कैसे। तो नर्सरी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें करनी है क्यारी की तैयारी। जहाँ पे भी हम क्यारी की तैयारी करेंगे वहाँ पे खरपतवार का उन्मूलन, मिट्टी को समतल करना और खेत को जोतना शामिल है। खेत की 2 बार गहरी जुताई करने से मिट्टी को ढीला करने और खरपतवार तथा अन्य वनस्पतियों को नष्ट करने में मदद मिलती है। जुताई करते समय मिट्टी में पाए जाने वाले पत्थरों और जड़ों को हटा देना चाहिए, क्योंकि वे पौधे के विकास में बाधा डालते हैं। सूखी घास और झाड़ी सामग्री को जलाने से कीड़े और खरपतवार की समस्या को कम करने में मदद मिलती है और बची हुई खनिज समृद्ध राख बीज बिस्तरों की उर्वरता को में सुधार करती है। अब जब हमने खेत की तैयारी कर ली है तो हम जो हमारा बेड है, सीड बेड है, उसको उसका लेआउट करना और समतलीकरण करना हम कर सकते हैं। अन्य आकारों की तुलना में आयताकार बेड्स को प्राथमिकता दी जाती है। बीज शैया की चौड़ाई इतनी रखनी चाहिए कि बीज शैया में प्रवेश करने किए बिना निराई गुराई का कार्य किया जा सके। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो इसकी चौड़ाई होनी चाहिए वो 1-1.5 मीटर ही होनी चाहिए और आप इसकी लंबाई 12.5 मीटर तक कर सकते हैं, लेकिन 12.5 मीटर से ज़्यादा करना उचित नहीं होगा। नर्सरी में उपयोग की जाने वाली बीज क्यारियों के 3 प्रकार होते हैं और ये डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे वर्षा कितनी होती है। अगर बहुत अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पे ऊंचे बिस्तर बनाने चाहिए, मतलब 10-15 सेंटीमीटर ऊंची सीड बेड बनाइए। जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है वहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर नीचे सीड बेड बना सकते हैं, और जहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती है वहाँ पे समतल क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। देन फिर अब क्यारियों में बुआई कैसे करें। तो क्यारियों में बुआई करने के लिए जो आपका सीड बेड तैयार हुआ है, जो जिसके लिए आपका सीड बेड के लिए आपका जो भी फार्मयार्ड मैन्योर या पॉटिंग मिक्सर का जो तैयार मिश्रण था उसको डाल के आपने क्यारियाँ जो तैयार की हैं उसमें आपने बीज को बोना है। बीज को बहुत गहरा नहीं बोना है, जब बहुत छोटे बीज होते हैं तो उनको 1-1.5 सेंटीमीटर की ही गहराई में बोना चाहिए, और अगर थोड़े बड़े सीड्स हैं, बड़े बीज हैं, तो उनको थोड़ा गहरा रोपा जा सकता है। पॉली बैग अगर आप क्यारियों में नहीं कर रहे हैं तो इसको आप पॉली बैग में करेंगे। तो पॉली बैग में करने के फायदा यही है कि जब भी आप इसमें से पौधे को निकाल के फील्ड में लेके जाते हैं या फिर आपसे कोई खरीद के लेके जाता है तो क्या होता है कि जो इसकी जड़ होती है उसको बहुत कम डैमेज होता है, जिसकी वजह से इसका जो हेल्थ रहता है वो बढ़िया बना रहता है, और जब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं फील्ड में तब भी इसका जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। फिर हम करते हैं बुआई का समय। बुआई का समय जनरली जो होता है वो 3 समय हम बुआई कर सकते हैं। एक तो फरवरी मार्च का महीना हो जाता है, एक जुलाई अगस्त का महीना हो जाता है, और एक सितंबर अक्टूबर का महीना हो जाता है। तो सबसे बढ़िया समय जो हमारे हमारे रीजन के लिए है वो जुलाई अगस्त का महीना है, जब वर्षा ऋतु होती है। और अगर हम नर्सरी में बडिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग या लेयरिंग की भी बात करें तो इन सबको वर्षा ऋतु के समय ही करना चाहिए। एक जो प्रैक्टिस है जो नर्सरी में की जाती है वो प्रिकिंग होती है। इससे क्या होता है कि बेहतर जड़ और अंकुर के विकास के लिए पौधे को एक नर्सरी बेड से दूसरे नर्सरी बर्ड या पॉली बैग या गमले में स्थानांतरित किया जाता है। इससे क्या होता है कि प्रिकिंग से जड़ की वृद्धि बढ़ती है और कई प्रजातियों में बेहतर और कुशल जड़ प्रणाली तैयार हो जाती है। अब हम बात करते हैं सिंचाई की, तो बुआई के तुरंत बाद बीज क्यारियों में पानी देना चाहिए। पॉली बैग गमलों को गुलाब के सिर के डिब्बे से सिंचित किया जा सकता है या पॉली बैग या गमलों में लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर गहरे धंसे हुए बिस्तरों में रखा जाना चाहिए ताकि बाढ़ सिंचाई को अपनाया जा सके। और जहाँ पे आपके पास स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी है वहाँ पे आप स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी को यूज़ करके पानी के बर्बादी को बचा सकते हैं। फिर बात आती है निराई गुड़ाई। नियमित रूप से निराई गुड़ाई करनी चाहिए इससे पहले कि वो पानी और मिट्टी के पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू करें और उनके बढ़ने से निराई गुड़ाई करना मुश्किल हो जाए। इससे पहले ही खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए, फूल आने से पहले खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए ताकि उनके पुनर्जनन को नियंत्रित किया जा सके। अब हम बात करते हैं खाद और उर्वरक की। नर्सरी की मिट्टी में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाने से उसकी उर्वरता बनी रहती है। मिट्टी की पोषक तत्व स्थिति और उगाई जा रही प्रजातियों की आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों और सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि नर्सरी से पौधे उठाना कैसे है। नर्सरी से पौधे हटाने के लिए सबसे पहले जो पौधे की मिट्टी है, आसपास की मिट्टी है, उसको ढीला करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसको आप किसी को बेच सकें या फिर आप इसको मार्केट तक भेज सकें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ पे अच्छे से थोड़ा सिंचाई देना होगा, पानी देना होगा। इससे क्या होगा, पौधे के जड़ों, विशेषकर बारीक जड़ों को कोई नुकसान पहुँचाए बिना सावधानी से इन पौधों को उठाया जा सकता है। मिट्टी की गेंद को विभाजित होने से बचाने के लिए जड़ों को मिट्टी की गेंद के साथ घास या अन्य सामग्री में लपेटना चाहिए। पौधों को नर्सरी से उठाने के बाद और खेत में रोपने से पहले छाया में रखना चाहिए और परिवहन के दौरान उन पर पानी छिड़कते रहना चाहिए।
0: उन्नत कृषि।
4: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप, वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते। और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
5: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
11: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
12: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
11: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी
13: भी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
14: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
15: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, महिलाओं को जितनी परेशानी पीरियड्स से होती है ना, उससे कहीं ज्यादा परेशानी तब होती है जब उनके पीरियड्स समय से पहले रुक जाए। जी हाँ, पीरियड्स अपने साथ कितनी सारी परेशानियां लेकर आता है, मूड स्विंग्स और हाथ पैरों में दर्द, न जाने कितनी सारी दिक्कतें होती है पीरियड्स के दौरान। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरह की परेशानियां होती है और ऐसे में हम सोचते हैं कि ये पीरियड्स जैसी बला हमारे जीवन में है ही क्यों, लेकिन ये बला अगर हमारे जीवन से समय से पहले दूर चली जाती है तब हम ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमारे पीरियड्स इतनी जल्दी क्यों चले गए। देखिए, पीरियड्स के रुकने को कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि जब हमारी महावारी बंद हो जाती है। एक निश्चित समय पर हमारी महावारी शुरू होती है और एक निश्चित समय पर बंद हो जाती है और महावारी के बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच में हो जाता है, लेकिन आजकल जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदल रही है और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पीरियड्स बहुत कम उम्र में रुकने लगे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो जब पीरियड्स 40 की उम्र से पहले अगर बंद हो जाए तो उसे कहते हैं अर्ली मेनोपॉज, यानी कि समय से पहले हो गया हुआ मेनोपॉज। तो अर्ली मेनोपॉज के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले तो अनुवांशिक कारण हो सकता है। अनुवांशिक कारण मतलब कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अगर माँ या बहन को जल्दी मेनोपॉज हुआ हो तो ऐसी स्थिति में संभावना बढ़ जाती है कि आपके साथ भी आपके जो पीरियड्स है बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे, जल्दी ही आपका मेनोपॉज हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है, इसमें यह नहीं होता है कि आपको किसी चीज की कमी की वजह से मेनोपॉज हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। दूसरी जो वजह होती है वो कुछ बीमारियां होती है, ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कहते हैं, जैसे कि थायराइड की अगर परेशानी है किसी महिला को या फिर कुछ तरह की अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है महिलाओं को, तो भी अर्ली मेनोपॉज की समस्या देखी जाती है। और अगर हम बात करें ना तो थायराइड की भी परेशानी आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की। कई बार महिलाएं कैंसर का इलाज करा रही होती हैं जिसमें शामिल होता है कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से ना ओवरी यानी कि अंडाशय काफी हद तक प्रभावित होता है, जिसकी वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और आजकल बहुत सारी परेशानियों की वजह से ओवरी की सर्जरी भी कराई जाती है, यानी कि अंडाशय हटा लिए जाते हैं। तो जब अंडाशय ही हटा दिया जाता है तो भी अर्ली मेनोपॉज हो सकता है और कई बार कुछ संक्रमण हो जाता है और इन संक्रमण की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और जो सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करती है, जो सबसे ज्यादा वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की, वो है जीवन शैली। आजकल धूम्रपान बहुत ही आम बना दिया गया है, पता नहीं क्यों, जो कि बहुत गलत है। हर तरीके से धूम्रपान का कोई फायदा नहीं होता है। और इसके अलावा कुछ कामकाजी महिलाओं को या फिर घरेलू महिलाओं को भी बहुत ज्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है तो भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और पोषण की कमी, जिसे कि महिलाएं लगातार आम तौर पर नजरअंदाज कर देती हैं और पोषण का हक सिर्फ अपने परिवार वालों का मानती है, तो ऐसी महिलाओं को भी अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है, यानी कि पोषण की कमी भी एक प्रमुख वजह बनती है। इसके अलावा बात करें तो POI यानी कि प्राइमरी ओवेरियन इन्फिशियंसी, यानी कि जब ओवरी सामान्य से पहले काम करना बंद कर देती है, कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि हमारी ओवरी जो तय वक्त होता है उससे पहले ही काम करना बंद कर देती है और हमें अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है। और अर्ली मेनोपॉज जब किसी में आने वाला होता है, आमतौर पर जब मेनोपॉज भी शुरू होने वाला होता है, तो शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब अर्ली मेनोपॉज भी आता है तब भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ लक्षण हमें समझ में आते हैं,
6: पीरियड्स अनियमित हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और आप 28 के पार की हैं तो आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से मिले अगर ये लगातार हो रहा है तो। वैसे भी पीरियड्स अगर लगातार अनियमित हो रहा है तो आप फिर किसी भी एज में हो आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, ये बहुत सारी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा आपको हॉट फ्लशेस भी महसूस होते हैं। हॉट फ्लशेस यानी कि अचानक शरीर में तेज गर्मी महसूस होना, खास तौर से चेहरे पर, गर्दन पर और छाती में, और ये कुछ सेकंड से लेकर ना कुछ मिनट तक महसूस हो सकता है, और ये अर्ली मेनोपॉज का या फिर कई बार मेनोपॉज का भी आम लक्षण माना जाता है। हॉट फ्लशेस के लक्षण क्या होते हैं? अचानक तेज गर्मी का एहसास होना, चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आना, खास तौर से रात में जब पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाना और फिर बाद में ठंड लगना। तो ये सारी चीजें हो सकती है कि अर्ली मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज के लक्षण हो। और मेनोपॉज के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनमें से एक चेंज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन में। एस्ट्रोजन जो होते हैं ना वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, और जब इसका स्तर गिरता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि शरीर बहुत गर्म है और वो पसीना या फिर गर्मी की प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ लक्षण की अगर हम बात करें तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, नींद आने में परेशानी होने लगती है और योनि में सूखापन भी महसूस होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बढ़ जाता है जब मेनोपॉज होने वाला होता है या फिर अर्ली मेनोपॉज होने वाला होता है। अगर मेनोपॉज होता है तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं होती है, मतलब वो आना ही है और कुछ लक्षण आपको दिखेंगे ही, बस जरूरी होता है कि आप खान पान सही रखें। लेकिन अगर अर्ली मेनोपॉज है तो इसके वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, और कई बार तो महिलाएं मां भी नहीं बनी होती है तभी उनमें मेनोपॉज आ जाता है कि अभी महिला ने अपना परिवार भी शुरू नहीं किया, और ऐसे में मेनोपॉज आना मतलब बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? एक तो होता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, यानी कि HRT दी जाती है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अगर कुछ परेशानी हो रही है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर को कई बार लगता है कि किसी और वजह से भी आपको परेशानी हो रही है, तो किसी और तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन जब देखा जाता है कि किसी वजह से हार्मोन्स में उलटफेर हुआ है तो फिर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। एक और वजह हो सकती है कि कैल्शियम और विटामिन की भी कमी की वजह से आप में मेनोपॉज देखा जाता है। तो ऐसे में आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो भी सप्लीमेंट्स आप खाते हैं वो डॉक्टर के सलाह से ही खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आपने अपनी मर्जी से कैल्शियम या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया, नहीं, आप खान पान के जरिए से ये सारी चीजें लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है, और अगर मानसिक तनाव की वजह से अर्ली मेनोपॉज के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, यानी कि ये दवाइयां आपके तनाव को कम करती हैं, आपको आपके मूड को थोड़ा बेहतर बनाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, और सबसे जरूरी धूम्रपान बंद कीजिए। और धूम्रपान तो आप फिर चाहे लड़का हो या लड़की, आपके शरीर को किसी ना किसी तरीके से ये नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ये आपका जेंडर नहीं देखेगा। तो धूम्रपान किसी को भी नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आप में ऐसे लक्षण भी आने शुरू हो गए हैं और डॉक्टर से आप दिखाएंगे तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये परेशानी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको वो यही सलाह देंगे, आपको कोई ज्यादा दवाइयां नहीं देंगे। वो कहेंगे कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 वगैरह जो भी है जरूरी है वो भरपूर मात्रा में हो। आप इसके साथ ही एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और कोई भी धूम्रपान या फिर अल्कोहल जैसी चीजों का सेवन मत कीजिए। और क्या किन्हीं को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या अर्ली मेनोपॉज को रोका जा सकता है? देखिए, लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या उसे रोका जा सकता है? तो पूरी तरीके से रोकना हमेशा संभव नहीं है, अगर ये खास तौर से अनुवांशिक या फिर मेडिकल किसी रीजन की वजह से हो, जैसे कि आप कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसकी वजह से अगर हो तो अर्ली मेनोपॉज को रोकना आमतौर पर संभव नहीं होता है। हालांकि चांसेस रहते हैं पर बहुत कम रहते हैं, लेकिन जोखिम कम किया जा सकता है अगर आप धूम्रपान से बचे, हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज को रोक सकते हैं। लेकिन रुक गया है तो उसके बाद बहुत परेशानी होती है। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तनाव कम रखें और समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपको दिख रहा है कि आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं और आप 28 के पार की हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े। और डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर आपकी उम्र 40 साल अभी हुई भी नहीं है और 40 से पहले ही आपके पीरियड्स बंद हो जाए या फिर 3-4 महीने तक नहीं आए, तो ऐसे में आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और आपको खान पान का तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खान पान सही रखेंगे, तनाव कम रखेंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे, और साथ ही धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, तो इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको सिर्फ अर्ली मेनोपॉज से ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो फिर क्यों नहीं हम बीमारियों को आने से पहले उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे आने ही नहीं देते हैं, तो कितना अच्छा होगा ना। तो बस इन्हीं सारी बातों का और ध्यान रखें। और आजकल हमारा खान पान बहुत खराब हो गया, हम पैकेट फूड्स खाते हैं और ये पैकेट फूड्स भी हमारे मेनोपॉज अर्ली मेनोपॉज की वजह बन सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें होती है जो हमारे हार्मोन्स को इफेक्ट करती है। जाकर ध्यान रखें कि घर का बना खाना ज्यादा खाएं, बाहर के खाने से बचे। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपकी दोस्त तो मैं को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप खुश रहेंगी तभी आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम है हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
5: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
16: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
5: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
16: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
5: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से

स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करे और ध्यान दे कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं।

लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से यानी FM ग्रीन और ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जहां पर आपके लिए बातें होती है उन्नत कृषि कार्यक्रम में खेती बाड़ी की। तो आज बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं और आज जो विषय है जी हाँ, मिल्की मशरूम की खेत। प्रजातियों की बात करें तो इसमें भी जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं तो उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। और मशरूम की जहाँ तक बात है तो आज महिलाएँ और व्यवसायी जो हैं व्यावसायिक तौर पर मशरूम की खेती कर रहे हैं और आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं इसकी खेती करके। तो आज थोड़ा विस्तार से जानेंगे मिल्की मशरूम के बारे में। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद अनु।
0: मैम बिहार में वैसे कौन कौन सी प्रजातियां हैं मशरूम के जिसका हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं?
2: हमारे बिहार की जो जलवायु है उसके अनुकूलता के अनुसार चार तरह की मशरूम जो है उसकी खेती हम लोग प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और पेडिस्ट्रॉ मशरूम, ये चारों प्रजाति हम लोग करके सालों भर मशरूम की खेती हम लोग बिहार में कर सकते हैं।
0: अच्छा, तो मिल्की मशरूम की आज हम बात कर रहे हैं और मिल्की मशरूम की खेती कब करें, कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं।
2: मिल्की मशरूम को हम लोग श्वेत दुधिया मशरूम भी कहते हैं, इसको दूध छाता भी कहते हैं और ऐसे इसका नाम कैलोसाइबा इंडिका है और यह दूध के जैसा सफ़ेद दिखता है इसलिए इसको हम लोग दूध छाता भी कहते हैं। और इसकी खेती जो है प्राकृतिक रूप से हम लोग मार्च अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर यहाँ तक कि कभी कभी नवंबर तक भी इसकी खेती हम लोग कर सकते हैं और ऐसे अक्टूबर तक, जनरली सितंबर अक्टूबर तक हम लोग इसकी खेती करते हैं क्योंकि उसके बाद हमारा ऑयस्टर और बटन का समय आ जाता है। तो जो हमारा पहले जो मशरूम ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती जनरली होती थी तो जो हमारा पीरियड था कि जिसमें मशरूम का कोई खेती ही नहीं होता था, जिसमें हम लोग कहते थे कि बस मार्च आ गया मशरूम की खेती खत्म हो गया, फिर सितंबर अक्टूबर आएगा तो फिर मशरूम लगाएंगे, तो ये जो पीरियड था इस पीरियड का में हम लोग बड़े ही अच्छे से आराम से मिल्की मशरूम की, श्वेत दुधिया मशरूम की खेती करेंगे और यह विश्व समुदाय को श्वेत दुधिया मशरूम जो है वो हमारे देश का देन है। हमारे एनआरसी सोलन में ही इसका इजाद किया गया था, इसकी खेती का जो तकनीकी है उसका ये किया गया था। और ये जो मिल्की मशरूम है यह ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम दोनों के बीच का है। इसका कुछ करेक्टर या इसका जो तकनीकी है उत्पादन विधि, कुछ स्टेप आपका ऑयस्टर के समान होता है और कुछ स्टेप जो है वो हमारा बटन के समान होता है।
0: तो ये केसिंग के बारे में, इसमें एक शब्द जो है मैम केसिंग आता है तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए।
2: अब इसकी जो तकनीकी है मिल्की मशरूम की खेती में उसमें एक स्टेप आता है केसिंग। हम लोग इसकी तकनीकी की चर्चा पहले कर लें फिर उसके हम लोग केसिंग पर आते हैं। तो जैसे कि हम जो किसान भाई ऑयस्टर मशरूम की खेती करते होंगे तो बस ऑयस्टर मशरूम के लिए जो जो स्टेप आप करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप पोषाधार का चयन करते हैं। तो मिल्की मशरूम के लिए भी आप पोषाधार का चयन करेंगे। इसका पोषाधार आपका गेहूं का भूसा हो सकता है, पुआल की कुट्टी हो सकता है या और भी कोई कृषि अवशेष हो सकता है। तो जो भी पोषाधार का हम चयन करें वो उसका चयन कर लें। उसके बाद उसका हम लोग निर्जीवीकरण करते हैं। तो इसके निर्जीवीकरण के लिए सबसे बेहतर है आप भाप उपचार करें, भूसे को पहले फुला दें, रात भर भूसा फुला दें, सुबह उसको निकाल करके एक बर्तन में उसको छान करके, पानी से छान के उसको डालते हैं, फिर उसको जूट के बोरे से उसके मुँह को बंद कर देते हैं, ऊपर से पानी उसमें डाल देते हैं और उसको आग पे चढ़ा देते हैं। जब पूरे से बहुत अच्छे से भाप निकलने लगे तो उसके बाद करीब 15-20 मिनट तक और रहने देते हैं, फिर उसको हम लोग किसी बर्तन में डलिया वगैरह हो या कोई सतह हो, साफ निर्जीवकृत सतह हो, उस सतह पर उसको हम लोग पलट देते हैं। उसका अतिरिक्त नमी जब निकल जाता है उसको छांव में फैला देते हैं। अतिरिक्त नमी निकलने के बाद फिर फिर उसमें हम लोग भूसा के अनुसार स्पॉन डालते हैं। यदि भीगा भूसा का बात करें तो 4-5% उसमें हम लोग स्पॉन डालेंगे। स्पॉन डाल करके फिर पीपी बैग लेते हैं। पीपी बैग में हम लोग इसकी बिजाई करते हैं। बिजाई करने के लिए हम लोग या तो भूसा और स्पॉन को पूरा एक दूसरे मिला देंगे, एक विधि है, उसको मिलाकर फिर उसको पीपी बैग में पैक करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग परत में करते हैं, जैसे पहले भूसा देंगे 4 इंच के बाद फिर उसमें पूरे सतह पे बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं। इस तरह से बैग का 12 इंच हम लोग ऊंचाई रखते हैं, उसके बाद फिर उसको भूसा से ढक करके फिर बैग को पैक कर देते हैं। एक ही उसके बाद ये दो तरीके में से या तो हम लोग पूरे भूसा और बीज को मिला करके पैक कर देते हैं या फिर परत विधि से करके पैक करके हम लोग तैयार करते हैं। और जैसे ऑस्टर मशरूम के बैग में हम लोग छेद करते हैं तो इसमें पूरे बैग में छेद की ये चूंकि ऊपरी सतह से निकलता है, जैसे बटन जो है ऊपरी सतह से निकलता है वैसे ये निकलता है, तो इसमें अलग से साइड में छेद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ नीचे पैंदा में 2 छेद हम लोग कर देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा नमी वगैरह है वो हमारा निकलता है। और लगभग 12-15 दिन इसको हम लोग छोड़ देते हैं कमरे में, जो स्टरलाइज निर्जीवीकृत किया हुआ कमरा हो, जहाँ जिस कमरे में इसको हम लोग बैग को रखते हैं उसको 24 घंटा पहले हम लोग निर्जीवीकृत कर देते हैं और फिर उसको कमरे को बंद कर देते हैं, उस कमरे में फिर इस बैग को हम लोग रखते हैं। उस कमरे में लगभग 12-15 दिन तक बैग को छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा बैग सफेद हो गया, मतलब उसमें पूरा माइसिलियम बहुत अच्छे से रन कर गया। और जब माइसिलियम अच्छे से रन कर जाता है तब हमारा केसिंग का जो अब केसिंग का आता है कि अब हम केसिंग करेंगे, तो ये तब अब हम ये केसिंग के लिए हम लोग जिस दिन से बिजाई किए हैं उस दिन से हम लोग केसिंग की तैयारी करते हैं। तो केसिंग एक तरह का मृदा आवरण है जो कि मशरूम का जो उत्पादन तकनीक है, जो विधि है, उसका एक चरण है कि ये चरण करने के बाद ही हमारा मशरूम प्राप्त होगा मिल्की में और बटन में। ये ऑस्टर मशरूम में हम लोग केसिंग नहीं करते हैं लेकिन मिल्की और बटन मशरूम में केसिंग करते हैं, तो वह इसका एक चरण है। और इसके लिए हम लोग केसिंग के लिए 2 साल पुराना सड़ा हुआ गोबर लेते हैं या पुराना वर्मी कंपोस्ट लिए या फिर आजकल मार्केट में कोकोपीट आता है, कोकोपीट भी ले सकते हैं लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए आप 2 साल पुराना गोबर का खाद मिल जाए तो बेहतर है। और इसमें हम लोग इसके अलावा जो भी गोबर का खाद है इसके अलावा इसमें हम लोग मिलाते हैं क्या, तो पुराने बाग की मिट्टी मिलाते हैं, जो रेत वाली बालू नदी की पेटी का जो बालू होता है वो रेत जो होता है उसको मिलाते हैं, और जो धान जिसे चावल बनाने के बाद जो भूसा प्राप्त होता है उस भूसा का राख भी हम लोग लाते हैं। तो यदि हम लोग बाग की मिट्टी और रेत का बात करें तो 3 भाग बाग की मिट्टी लेते हैं, 1 भाग रेत लेते हैं। यदि हम लोग बाग की मिट्टी और दोसा सरा हुआ गोबर लेते हैं, दोनों बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं। और यदि हम लोग सारी चीज को थोड़ा थोड़ा मान लीजिए लेते हैं तो हम लोग इसको एक टोकरी बाग की मिट्टी ले लिए, एक टोकरी हम लोग कंपोस्ट ले लिए, एक टोकरी रेत ले लिए, एक टोकरी आपका भूसा का राख ले लीजिए, सारा को मिला करके भी हम लोग इसका कर सकते हैं। यदि बेहतर होगा आपको यदि 2 साल सरा हुआ पुराना गोबर का खाद मिल जाता है तो वो आपका बेहतर ऑप्शन है, नहीं तो फिर इसमें से जो भी आप पास उपलब्ध हो उसको हम लोग लेते हैं। फिर इसको हम लोग निर्जीवीकृत करते हैं। ये जब पहले हम लोग ये इकट्ठा कर लिए, अब इसमें मान लीजिए कोई मेटलिक कुछ चीज हो, पत्थर हो या घास फूस हो तो उसको हम लोग अच्छे से हटा लेते हैं, लेकिन इसको महीन करने की या चालने की आवश्यकता नहीं है। यदि मिट्टी का छोटा छोटा ढेला भी है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, उसको बिल्कुल महीन से चालना नहीं है, लेकिन यदि उसमें पत्थर है, कंकर है, कुछ शीशा का टुकड़ा है, प्लास्टिक का टुकड़ा है या कुछ पत्ता है ये सब है तो वो सबको हम लोग को उसको हटा लेना है, ठीक है। इसके बाद अब इसको हम लोग निर्जीवीकृत करेंगे। निर्जीवीकृत करके इसमें हमारा लगभग नमी सही रहना चाहिए, लगभग 70% नमी रहना चाहिए। और नमी सही है हमारे केसिंग का ये जानने के लिए करते हैं, केसिंग का हम लोग हाथ में गोला बनाते हैं उसको नीचे छोड़ते हैं, यदि वो टूट गया तो इसका मतलब हमारा केसिंग में नमी सही है। और नमी को केसिंग को निर्जीवीकृत करने के लिए हम लोग नुवान लेते हैं 2 ml, फॉर्मलिन लेते हैं 5 ml, कार्बनडाजिम 1 ग्राम और 1 लीटर पानी, इसमें इसका घोल बना करके फिर पूरे केसिंग का जो मटेरियल हम तैयार किए हैं, मिट्टी तैयार किए हैं, उसमें इसको स्प्रे करके उसको निर्जीवीकृत करते हैं। फिर उसको प्लास्टिक की सीट से ढक देते हैं, लगभग 7 से 7 दिन उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और ऐसे यदि आप केसिंग जिस दिन बिजाई किए हैं उस दिन से केसिंग तैयारी करते हैं तो आप कल ऐसे ही 12 से 15 दिन के बाद केसिंग कर देते, इतने दिन तक वो बड़े ही अच्छे से आपका केसिंग निर्जीवकृत हो जाता है। फिर हम लोग जब माइसेलियम पूरा रन कर जाता है बैग में तब उसका केसिंग करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसका ऊपरी सतह को पूरा खरोच देते हैं, जैसे कैसे लहसुन का निगाह को हम लोग थोड़ा चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें एरेशन, उस तरह से ऊपर का परत उसका हम लोग उसको खरोच देते हैं और खरोच करके उसको बराबर करके हल्का सा उसमें हम लोग नमी दे देते हैं। नमी के देने के बाद उस पर हम लोग केसिंग की लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी परत डाल देते हैं और ये हमारा जो बिजाई किए थे उससे 10 से 12 दिन के अंदर हम लोग केसिंग कर देते हैं। और केसिंग करने के बाद उसमें प्रतिदिन हम लोग उनको नमी देना होता है और गर्मी के अनुसार कैसा इन्वायरमेंट उसके अनुसार हो सकता है कभी आपको 2 बार भी नमी देना पड़े या फिर कम से कम 1 बार तो प्रतिदिन देना होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना चाहिए, जब हम लोग इसमें पानी दे रहे हैं, नमी दे रहे हैं, बिल्कुल फुहारे से देना है और जो केसिंग मृदा है उससे नीचे जो कंपोस्ट हमारा वहां पानी नहीं जाना चाहिए। सिर्फ जो केसिंग का जो हम 3 से 4 सेंटीमीटर मोटा परत दिए हैं सिर्फ वो उसमें ही पानी का मात्रा जाना चाहिए, इतनी सावधानी से हमें पानी देना है। इसके बाद केसिंग के लगभग 15 से 20 दिन के बाद हमारा तैयार हो जाता है और 5 से 7 दिन में फसल निकलने के 5 से 7 दिन के बाद इसका यह तुराई योग्य हो जाता है और इन्हें हम लोग घुमा करके तोड़ लेते हैं।
0: मैम केसिंग के रूप में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं?
2: केसिंग के रूप में जैसे मैंने बताया अनु, केसिंग के रूप में हम लोग दोसा सरा हुआ गोबर यूज कर सकते हैं या फिर उसके साथ हम लोग पुराने बाग की मिट्टी, बाग की मिट्टी नहीं पुराने बाग की मिट्टी, किसान भाइयों बहनों इसको ध्यान दीजिए, पुराने बाग की मिट्टी को हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद रेत वाली जो बालू होती है नदी के पेटी में जो बालू पाया जाता है वो रेतीला रहता है उस बालू का उपयोग कर सकते हैं, प्लस जो धान का भूसा है उसको हम जलाकर उसका राख को यूज कर सकते हैं, प्लस कोकोपीट मार्केट में उपलब्ध है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इन सब सामग्रियों को जैसे सिर्फ हम आपको रेशियो भी मैंने बताया कि यदि हमारे पास सिर्फ ना पुराने ये पुराने बाग की मिट्टी है और हम लोग रेत का यूज कर रहे हैं तो 3:1 हम लोग यूज करेंगे, 3 भागिए लेंगे 1 भागिए लेंगे, और यदि हमारे पास 2 साल से पुराना गोबर है और बगीचे की मिट्टी है तो बराबर बराबर ले सकते हैं। और यदि और सारे चीज लेंगे तो हम लोग वॉल्यूम से मिलाते हैं, मतलब केजी से नहीं लेते हैं, टोकरी से, एक टोकरी है तो फिर एक टोकरी है, इस तरह से बराबर बराबर लेकर के हम लोग उसको मिलाते हैं और फिर केसिंग हमारा उसका अगला प्रक्रिया निर्जीवित करना ये हम लोग करते हैं फिर उसका यूज करते हैं।
0: और अंत में मैम मिल्की मशरूम की खेती में क्या कुछ और आवश्यक है, कुछ सुझाव जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे?
2: बिल्कुल, ये आपको बता दें मिल्की मशरूम की जो खेती होती है गर्मी में ये ताप सहिष्णु है, इसके लिए जो आवश्यक टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 25 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक में भी यह इसकी खेती हो जाती है आराम से। तो हम आपका हमारा आपका ये नेचुरल एक्सपीरियंस भी अनुभव भी है कि गर्मी के दिनों में जो माइक्रोब्स का थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, जो जीवाणु होते हैं कीटाणु होते हैं, तो आप ठंडे में आप देखते होंगे एक दिन नहीं भी नहाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गर्मी में नहीं नहाते हैं तो स्किन में जलन खुजली होने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अभी माइक्रोब्स के जो जीवाणु है कीटाणु है उनके लिए भी फेवरेबल सिचुएशन है, तो यह हमारा मशरूम भी एक तरह का फंगस है तो उसके लिए जो हम लोग माहौल दे रहे हैं तो और दूसरा फंगस भी उसको ग्रो कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या है कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई ये सब चीज़ का या फिर जो हम लोग चयन करते हैं इनपुट वो सब पे बहुत सावधानी रखना पड़ता है। जो हम लोग भूसा या पुआल का चयन करें वो ताज़ा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, कभी भी वो पानी खाया नहीं होना चाहिए, बाढ़ में डूबा नहीं होना चाहिए, भींगा नहीं होना चाहिए, सरा गला नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग वीकली जो क्रॉप हाउस है जो हमारा फसल कक्ष है उसमें 2% फॉर्मलिन और 0.1% कार्बन डाइजीम का घोल का वीकली हम लोग छिड़काव करें ताकि हमारा किसी तरह का कोई इन्फेक्शन किसी तरह का कोई संक्रमण होने की संभावना नहीं रहे। फिर जो कमरा है उसमें प्रकाश आने का और हवा का आवागमन का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, आवश्यकता होने पर हम खिड़की दरवाजा खोल दें तो धूप भी आए और हवा का भी आवागमन भी हो। और जब भी हम स्पॉन का प्रयोग करें, स्पॉन का चयन करें, वह भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, वो उसमें किसी तरह का संक्रमण नहीं होना चाहिए। फिर जो चूहा छुछुंदर गिलहरी है ये सबसे हमको जब तक हमारा माइसेलियम पूरा रन नहीं कर जाता है, जो हमारा कोई भी मशरूम का स्पॉन रहता है वह किसी न किसी जो खाद्यान्न को आधार देके बनाया जाता है, चाहे वो मक्का हो सकता है, वो धान हो सकता है, वो गेहूं हो सकता है, और भी कोई खाद्यान्न हो सकता है, तो उसको खाने के लिए ये चूहा वगैरह आते हैं। तो जब माइसिलियम पूरा रन हो जाता है तब फिर चूहा डैमेज नहीं करता, तो इस पीरियड में चूहा से, गिलहरी से, ये सबसे बचाना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हमारे किसान भाई बहन को प्रयास करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग तरीका है कि उसको अपना करके हम चूहे से बचाएं। प्लस एक चीज और है कि को प्राइमस निकलता है उसमें, आप देखेंगे काला ऐसा बिल्कुल धागा ऐसा पतला सा नीचे की, गेहूं को जब हम लोग बोते हैं गेहूं का डिब्बी निकलता है वो उसी टाइप का पतला काला ऐसा निकलेगा, और वो तेजी से लंबा होता है फिर वो गल जाता है। तो जैसे ही वो निकले उसको नोच करके, जहाँ पर निकला है वहाँ का पुआल सहित उसको नोच करके जमीन के अंदर डाल देना है, और उसको थोड़ा फॉर्मलिन से, वेबेंस्टीन के घोल से वहाँ पर ट्रीट भी कर देना है। और यदि ये नहीं करते हैं तो इतना फास्ट उसका स्पोर निकलेगा, पूरा क्रॉप आपको बर्बाद कर देगा। तो को प्राइमस से बहुत सावधान रहिए, यदि यह आपके फसल में आ गया है, निकल रहा है, तो उसको हाथों से चुन चुन के उसको हटाइए, और उसको जहां तहां नहीं फेंकिए बल्कि जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दीजिए, ताकि वह किसी भी तरह से और वो नुकसान नहीं कर पाए और वो फसल में आपको नहीं फैले। ये एक तरह का फसल का वीड है, खरपतवार है, जिससे हम लोग को मशरूम की खेती में बचाना आवश्यक है। इस तरह से इन सुझावों को, इन सावधानियों को जब हम अपनाएंगे तो अब हमारा फसल हमेशा अच्छा होगा।
0: जी, तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, मिल्की मशरूम की खेती आपने समझ ली होगी, और क्या कुछ करना है आपको, इसमें क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है, सारी बातें यहाँ पर मैडम ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं आपको जरूर लाभ मिलेगा आज के इस वार्ता से। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार।
3: उन्नत कृषि आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: CIET NCERT presents ऑडियो बुक गणित प्रकाश, Textbook of Mathematics for Grade 7.
4: Chapter number 2, Arithmetic Expressions. Page number 24. The right side of the page has a QR code. By scanning the same, you can reach out to the additional resources. 2.1, Simple Expressions. You may have seen mathematical phrases like 13 plus 2, 20 minus 4, 12 into 5 and 18 divided by 3. Such phrases are called arithmetic expressions. Every arithmetic expression has a value which is the number it evaluates to. For example, the value of the expression 13 plus 2 is 15. This expression can be read as 13 plus 2 or the sum of 13 and 2. We use the equality sign equal to denote the relationship between an arithmetic expression and its value. For example, 13 plus 2 is equal to 15. Example 1. Mallika spends 25 rupees every day for lunch at school. Write the expression for the total amount she spends on lunch in a week from Monday to Friday. The expression for the total amount is 5 into 25. 5 into 25 is 5 times 25, or the product of 5 and 25. Different expressions can have the same value. Here are multiple ways to express the number 12 using two numbers and any of the four operations: plus, comma, minus, comma, multiply and divide. 10 plus 2, 15 minus 3, 3 into 4, 24 divided by 2. Choose your favorite number and write as many expressions as you can having that value. Comparing expressions. As we compare numbers using equal to sign, comma, less than and greater than signs, we can also compare expressions. We compare expressions based on their values and write the equal to, comma, greater than or less than sign accordingly. For example, 10 plus 2 is greater than 7 plus 1. Page number 25. Because the value of 10 plus 2 is equal to 12 is greater than the value of 7 plus 1 is equal to 8. Similarly, 13 minus 2 is less than 4 into 3. Figure it out. Question number 1. Fill in the blanks to make the expressions equal on both sides of equal to sign. A. 13 plus 4 is equal to dash plus 6. B. 22 plus dash is equal to 6 into 5. C. 8 into dash is equal to 64 divided by 2. D. 34 minus dash is equal to 25. Question number 2. Arrange the following expressions in ascending, that is increasing order, of their values. A. 67 minus 19. B. 67 minus 20. C. 35 plus 25. D. 5 into 11. E. 120 divided by 3. Example 2. Which is greater? 1023 plus 125 or 1022 plus 128? Imagining a situation could help us answer this without finding the values. Raja had 1023 marbles and got 125 more today. Now he has 1023 plus 125 marbles. Joy had 1022 marbles and got 128 more today. Now he has 1022 plus 128 marbles. Who has more? This situation can be represented as given in the picture on the right. To begin with, Raja had one more marble than Joy. But Joy got three more marbles than Raja today. We can observe that Joy has two more marbles than Raja now. That is, 1023 plus 125 is less than 1022 plus 128. Example 3. Which is greater? 113 minus 25 or 112 minus 24? Imagine a situation. Raja had 113 marbles and lost 25 of them. He has 113 minus 25 marbles. Joy had 112 marbles and lost 24 today. He has 112 minus 24 marbles. Who has more marbles left with them? Raja had one marble more than Joy. But he also lost one marble more than Joy did. Therefore, they have an equal number of marbles now. That is, 113 minus 25 is equal to 112 minus 24. The explanation for example 2 can be seen on the right side of the page, which is explained with the help of numbers. Likewise, for example 3, we can find the number of marbles Raja and Joy have. That has been explained here on the right side of the page. Page number 26. Use greater than or less than or equal to in each of the following expressions to compare them. Can you do it without complicated calculations? Explain your thinking in each case. A. 245 plus 289 dash 246 plus 285. B. 273 minus 145 dash 272 minus 144. C. 364 plus 587 dash 363 plus 589. D. 124 plus 245 dash 129 plus 245. E. 213 minus 77 dash 214 minus 76. 2.2 Reading and evaluating complex expressions. Sometimes, when an expression is not accompanied by a context, there can be more than one way of evaluating its value. In such cases, we need some tools and rules to specify how exactly the expression has to be evaluated. To give an example with language, we can observe from the following sentences. A. Sentence: Shalini sat next to a friend with toys. Meaning, the friend has toys and Shalini sat next to her. B. Sentence: Shalini sat next to a friend with toys. Meaning, Shalini has the toys and she sat with them next to her friend. Here, we find two pictures where Shalini is sitting with the toys and her friend. This sentence without the punctuation could have been interpreted in two different ways. The appropriate use of a comma specifies how the sentence has to be understood. Let us observe an expression that can be evaluated in more than one way. Example 4. Malesh bought 30 marbles to the playground. Arun bought 5 bags of marbles with 4 marbles in each bag. How many marbles did Malesh and Arun bring to the playground? Malesh summarized this by writing the mathematical expression 30 plus 5 into 4. Page number 27. Without knowing the context behind this expression, Purna found the value of this expression to be 140. He added 30 and 5 first to get 35 and then multiplied 35 by 4 to get 140. Malesh found the value of this expression to be 50. He multiplied 5 and 4 first to get 20 and then added 20 to 30 to get 50. In this case, Malesh is right. But why did Purna get it wrong? Just observing the expression 30 plus 5 into 4, it is not clear whether we should do the addition first or multiplication. Just as punctuation marks are used to resolve confusion in language, brackets and the notion of terms are used in mathematics to resolve confusions in evaluating expressions. Brackets in expressions. In the expression, to find the number of marbles, 30 plus 5 into 4, we had to first multiply 5 and 4 and then add this product to 30. This order of operations is clarified by the use of brackets as follows. 30 plus within brackets 5 into 4. When evaluating an expression having brackets, we need to first find the values of the expressions inside the brackets before performing other operations. So, in the above expression, we first find the value of 5 into 4 and then do the addition. Thus, this expression describes the number of marbles. 30 plus within brackets 5 into 4, that is equal to 30 plus 20, that is equal to 50. Example 5. Irfan bought a pack of biscuits for 15 rupees and a packet of Tur Dal for 56 rupees. He gave the shopkeeper 100 rupees. Write an expression that can help us calculate the change Irfan will get back from the shopkeeper. Irfan spent 15 rupees on a biscuit packet and 56 rupees on Tur Dal. So, the total cost in rupees is 15 plus 56. He gave 100 rupees to the shopkeeper. So, he should get back 100 minus the total cost. Can we write that expression as 100 minus 15 plus 56? Can we first subtract 15 from 100 and then add 56 to the result? We will get 141. It is absurd that he gets more money than he paid the shopkeeper. We can use brackets in this case. 100 minus within brackets 15 plus 56. Evaluating the expression within the brackets first, we get 100 minus 71, which is 29. So, Irfan will get back 29 rupees. Page number 28. Terms in expressions. Suppose we have the expression 30 plus 5 into 4 without any brackets. Does it have no meaning? When there are expressions having multiple operations and the order of operations is not specified by the brackets, we use the notion of terms to determine the order. Terms are the parts of an expression separated by a plus sign. For example, in 12 plus 7, the terms are 12 and 7 as marked here. 12 plus 7 is equal to 12 is encircled plus 7 is also encircled. We will keep marking each term of an expression as above. Note that this way of marking the terms is not a usual practice. This will be done until you become familiar with this concept. Now, what are the terms in 83 minus 14? We know that subtracting a number is the same as adding the inverse of the number. Recall that the inverse of a given number has the sign opposite to it. For example, the inverse of 14 is minus 14 and the inverse of minus 14 is 14. Thus, subtracting 14 from 83 is the same as adding minus 14 to 83. That is, 83 minus 14 is equal to 83 is encircled plus minus 14 is again encircled. Thus, the terms of the expression 83 minus 14 are 83 and minus 14. Check if replacing subtraction by addition in this way does not change the value of the expression by taking different examples. Can you explain why subtracting a number is the same as adding its inverse using the token model of integers that we saw in the class 6 textbook of mathematics? All subtractions in an expression are converted to addition in this manner to identify the terms. Here are some more examples of expressions and their terms. Minus 18 minus 3 is equal to minus 18 encircled plus minus 3 encircled. 6 into 5 plus 3 is equal to 6 into 5 encircled plus 3 encircled separately. 2 minus 10 plus 4 into 6 is equal to encircled 2 plus encircled minus 10 plus encircled 4 into 6. Note that 6 into 5, comma 4 into 6 are single terms as they do not have any plus sign. In the following table, some expressions are given. Complete the table. Page number 29. Here we find a table having three different columns. First column represents expression. Second column here expresses the expression as the sum of its terms. And the third column represents terms. First one, 13 minus 2 plus 6 can be expressed as encircled 13 plus encircled minus 2 plus encircled 6. What are the terms here? 13 comma minus 2 comma 6. Likewise, we have the next expression, 5 plus 6 into 3. Here, expression can be expressed as sum of its terms as encircled 5 plus encircled 6 into 3. You are supposed to write down the terms in the third column. And similarly, we need to complete the three more expressions given here. 4 plus 15 minus 9 can be expressed as sum of terms as we can encircle the three terms separately with a plus sign in between. Next expression, 23 minus 2 into 4 plus 16 can be expressed as sum of the terms, and the terms are to be written in the third column. 28 plus 19 minus 8 can again be expressed as sum of its terms in three encircles with plus sign in between and terms in the third column. Now we will observe how terms are used to determine the order of operations to find the value of an expression. We will start with expressions having only additions, with all the subtractions suitably converted into additions. Does changing the order in which the terms are added give different values? Swapping and grouping. Let us consider a simple expression having only two terms. Example 6. Madhu is flying a drone from a terrace. The drone goes 6 meters up and then 4 meters down. Write an expression to show how high the final position of the drone is from the terrace. The drone is 6 minus 4 is equal to 2 meters above the terrace, writing it as sum of terms. 6 encircled plus minus 4 is again encircled is equal to encircled 2. Will the sum change if we swap the terms? Encircled minus 4 plus encircled 6 is equal to encircled 2. It doesn't in this case. We already know that swapping the terms does not change the sum when both the terms are positive numbers. Will this also hold when there are terms having negative numbers as well? Take some more expressions and check.
5: Page 30.
4: Can you explain why this is happening using the token model of integers that we observed in the class 6 textbook of mathematics? Thus, in an expression having two terms, swapping them does not change the value. Term 1 plus term 2 is equal to term 2 plus term 1. Now consider an expression having three terms. Minus 7 within brackets plus 10 plus within brackets minus 11. Let us add these terms in the following two different orders. Minus 7 plus 10 are added first and then minus 11 is added to the total. Adding the first two terms and then adding their sum to the third term. Minus 7 plus 10 plus minus 11 encircled. Adding the first two terms and then adding their sum to the first term. What do you see? The sums are the same in both cases. Again, we know that while adding positive numbers, grouping them in any of the above two ways gives the same sum. Will this also hold when there are terms having negative numbers as well? Take some more expressions and check. Can you explain why this is happening using the token model of the integers that we observed in class 6 textbook of mathematics? Thus, grouping the terms of an expression in either of the following ways gives the same value. Term 1 and term 2 added together to term 3 is equal to adding of term 2 and term 3 to term 1. Let us consider the expression minus 7 plus 10 plus minus 11 again. What happens when we change the order and add minus 7 and minus 11 first and then add the sum to 10? Will we get the same sum as before? We observe that adding the terms of the expression minus 7 within brackets plus 10 plus within brackets minus 11 in any order gives the same sum of minus 8. Page number 31. Does adding the terms of an expression in any order give the same value? Take some more expressions and check. Consider expressions with more than three terms also. Can you explain why this is happening using the token model of integers that we observed in the class 6 textbook of mathematics? Thus, the addition of terms in any order gives the same value. Therefore, in an expression having only additions, it does not matter in what order the terms are added. They all give the same value. Now let us consider expressions having multiplication and division also, without the order of operations specified by the brackets. The values of such expressions are found by first evaluating the terms. Once all the terms are evaluated, they are added. For example, the expression 30 plus 5 into 4 is evaluated as follows. 30 plus 5 into 4 is equal to encircle 30 plus encircled 5 into 4 is equal to encircle 30 plus encircle 20 is equal to encircle 50. The expression 5 into within brackets 3 plus 2 plus 78 plus 3 is evaluated as follows. 5 into within brackets 3 plus 2 plus 78 plus 3 is equal to 5 into within brackets 3 plus 2 encircled plus 7 into 8 encircled plus encircled 3, where within brackets 3 plus 2 is first evaluated and this sum is multiplied by 5, that is equal to 25. This expression 7 into 8 is evaluated as 56. This simplifies to 25 plus 56 plus 3 is equal to 84. Manasa is adding a long list of numbers. It took her 5 minutes to add them all and she got the answer as 11,749. Then she realized that she had forgotten to include the fourth number, 9,055. Does she have to start all over again? In mathematics, we use the phrase commutative property of addition instead of saying swapping terms does not change the sum. Similarly, grouping does not change the sum is called the associative property of addition. Swapping the order of things in everyday life. Manasa is going outside to play. Her mother says, "Wear your hat and shoes." Which one should she wear first? She can wear her hat first and then her shoes. Or she can wear her shoes first and then her hat. Manasa will look exactly the same in both cases. Imagine a different situation. Manasa's mother says, "Wear your socks and shoes." On this page, you can see pictures of Manasa wearing shoes and hat. Page number 32. Now the order matters. She should wear socks and then shoes. If she wears shoes and then socks, Manasa will feel very uncomfortable and look very different. More expressions and their terms. Example 7. Amu, Charan, Madhu and John went to a hotel and ordered 4 dosas. Each dosa cost 23 rupees and they wished to thank the waiter by tipping 5 rupees. Write an expression describing the total cost. Cost of 4 dosas is equal to 4 multiplied by 23. Can the total amount with tip be written as 4 into 23 plus 5? Evaluating it, we get 4 into 23 plus 5 is equal to 4 into 23 encircled plus 5 encircled is equal to 92 encircled plus 5 encircled, that is equal to 97 encircled. Thus, 4 into 23 plus 5 is a correct way of writing the expression. If the total number of friends goes up to 7 and the tip remains the same, how much will they have to pay? Write an expression for this situation and identify its terms. Example 8. Children in a class are playing. Fire in the mountain, run, run, run. Whenever the teacher calls out a number, students are supposed to arrange themselves in groups of that number. Whoever is not part of the announced group size is out. Ruby wanted to rest and sat on one side. The other 33 students were playing the game in the class. The teacher called out 5. Once children settled, Ruby wrote 6 into 5 plus 3. Understood as 3 more than 6 into 5. Think and discuss why she wrote this. The expression written as the sum of terms is encircled 6 into 5 plus 3 encircled. On this page, you find a picture of children who have arranged themselves in group of 5 plus 3 children are left out separately. Page number 33. For each of the cases given here, write the expression and identify its terms. If the teacher had called out 4, Ruby would write dash. If the teacher had called out 7, Ruby would write dash. Write expressions like the above for your class size. Example 9. Raghu bought 100 kg of rice from the wholesale market and packed them into 2 kg packets. He already had 4 2 kg packets. Write an expression for the number of 2 kg packets of rice he has now and identify the terms. He had 4 packets. The number of new 2 kg packets of rice is 100 divided by 2, which we also write as 100 upon 2. The number of 2 kg packets he has now is 4 plus 100 upon 2. The terms are encircled 4 plus encircled 100 upon 2. Example 10. Kannan has to pay 432 rupees to a shopkeeper using coins of 1 rupee and 5 rupees and notes of 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees and 100 rupees. How can he do it? There is more than one possibility. For example, 432 is equal to 4 into 100 plus 1 into 20 plus 1 into 10 plus 2 into 1. Meaning, 4 notes of 100 rupees, 1 note of 20 rupees, 1 note of 10 rupees and 2 notes of 1 rupee. 432 is equal to 8 into 50 plus 1 into 10 plus 4 into 5 plus 2 into 1. Meaning, 8 notes of 50 rupees, 1 note of 10 rupees, 4 notes of 5 rupees and 2 notes of 1 rupee. Identify the terms in the two expressions above. Can you think of some more ways of giving 432 rupees to someone? Example 11. Here are two pictures. Which of these two arrangements matches with the expressions 5 into 2 plus 3? Page number 34. Let us write this expression as a sum of terms. Encircled 5 into 2 plus 3 is equal to encircled 10 plus encircled 3, that is equal to encircled 13. This expression 5 into 2 plus 3 can be understood as 3 more than 5 into 2, which describes the arrangement on the left. What is the expression for the arrangement in the right, making use of the number of yellow and blue squares? Do you recall the use of brackets? We need to use brackets for this. 2 into within brackets 5 plus 3. Notice that this arrangement can also be described using 5 plus 3 plus 5 plus 3 or 5 into 2 plus 3 into 2. Figure it out. Question number 1. Find the values of the following expressions by writing the terms in each case. A. 28 minus 7 plus 8.

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: इस उसके कारण क्या होता है कि कोशिकाओं की उत्पत्ति में ये मदद करता है। जो कॉर्निया के सेवन, अगर इसमें कॉर्निया जो रहता है, इसमें कॉर्निया के सेवन से क्या होता है, एनीमिया से पीड़ित जो लोग होते हैं उनको भी सकारात्मक प्रभाव जो है रिसर्च में देखा गया है। मक्के में मौजूद जो पाइटोथिनिक एसिड जो होते हैं हमारे शारीरिक कार्य करने की क्षमता में मदद करता है। उसके बाद जो है गुर्दे की समस्याओं के इलाज में भी काफी सहायक सिद्ध होता है। मध्य मात्रा में अगर मक्का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो हृदय रोग के लिए फायदेमंद होता है। उसमें है कि अगर इसको कंटिन्यूअस अगर सेवन करते हैं मक्के को, तो फेफड़े के जो बीमारी होते हैं और फेफड़ा को में जो कैंसर का कारण जो बनता है, तो उसको भी इसमें सहायक सिद्ध होता है। और इसमें जो अघुलनशील फाइबर जो होते हैं, तो कब्ज या बवासीर जैसे बीमारी जो होते हैं, उस तरह की बीमारी से भी निजात इसमें पा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे फायदे तो बहुत हैं, और इस तरह से अगर मक्के को खाते हैं तो फायदा बहुत ज्यादा होता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमने जाना कि इसमें पोषक तत्व और उनके लाभ के बारे में जाना, तो मक्का बहुत जरूरी है हमारे लिए और इससे हमें बहुत लाभ भी होता है। तो अब यहाँ पर जो हमारा आज का विषय है मक्के से बनने वाले प्रसंस्कृत पदार्थ, तो सब अब आते हैं उस पर और जानना चाहेंगे कि प्रसंस्कृत पदार्थ इससे क्या क्या बन सकते हैं।
0: मक्के से बहुत सारे प्रसंस्कृत पदार्थ बनते हैं। इसमें मेनली जो है कॉर्नफ्लेक्स, जो कि आप लोग किसी भी ब्रेकफास्ट सीरियल्स में आप लेते भी होंगे, तो इसलिए ये काफी फेमस है। और इसके अलावा बहुत सारे जो है पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉर्न स्टार्च होते हैं, मक्के का तेल होता है, मक्के का सिरप बनता है, हाई माल्टोज कॉर्न सिरप बनता है, इस तरह जो कि औद्योगिक स्तर पे बनाए जाते हैं। ये छोटे स्तर पे भी कुछ जैसे है कि कॉर्न फ्लोर बना सकते हैं या कॉर्न फ्लेक्स बना सकते हैं छोटे स्तर पे। ऐसे जो होते हैं दूसरे जो होते हैं ये बड़े स्तर के कारखाने में बनाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही फायदे अगर इस तरह के कारखाने लगते हैं तो बिहार के बहुत ही ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। इसके साथ साथ दूसरे कारखाने भी लगने में काफी सहायक सिद्ध होगा। जैसे कि अब हम चर्चा करते हैं कॉर्न फ्लेक्स और डिफरेंट जो प्रोडक्ट होते हैं इसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। जो कॉर्न फ्लेक्स होते हैं, ये जो होते हैं इसको बनाने में के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके पहले हम जानना बताते हैं कि कॉर्न फ्लेक्स का मार्केट क्या है, जो कि है 2015 के अनुमान जो है कि 6.7 बिलियन रुपया का जो है इसका सेल करने का अनुमान रहा, और जो 2020 तक इसका अनुमान जो है 10.9 बिलियन रुपीज रहने का अनुमान है। मीन्स इसका रीजन ये है कि जो आदमी का कंजम्पशन पैटर्न है, खाने का पैटर्न है, वो काफी ही मींस करने का मतलब चेंज हो रहा है, वो प्रोसेस प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं जा रहे हैं, और वो और क्योंकि ये आसानी से मींस बाजार में भी उपलब्ध होता है, आप अपने मींस कॉटेज टाइप का इंडस्ट्री लगाकर भी बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है बनाने में। इसके बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाले जो होता है मकई उसको मार्केट से खरीदते हैं, या आपके पास अगर उपलब्ध है तो उसको प्रोसेस करने के लिए लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको औद्योगिक स्तर पर मींस फैक्ट्री में आप इसका सफाई कर लेते हैं अच्छी तरह से, मींस करने का मतलब दूसरे पदार्थ जैसे कंकड़ पत्थर ये सब रहते हैं उसको आप निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्टीमिंग कर देंगे, मींस उसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे, जो कि 57 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप गर्म कर सकते हैं, और ये समय जो है 4 घंटा से 20 घंटा तक गर्म करना रहता है। ये तापमान जो है जो निर्भर करेगा वो समय के साथ चेंज होता है। तापमान अगर ज्यादा है तो आपका समय कम लगेगा, अगर तापमान कम है तो समय ज्यादा लगेगा। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस में जब स्टैंडर्ड करेंगे तब उसमें जरूरत होता है। उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्सेस पानी जो स्टीमिंग का है उसको निकाल देंगे और थोड़ा सा सुखा लेंगे उसको, है रूम के तापमान पर, कमरे के तापमान उसको सुखा लेंगे। जब उसका देखिए मॉइस्चर कंटेंट जो है मींस उसमें जो नमी है 16-24% आ जाए तो उसको फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में डालते हैं। जो प्रोसेस के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण हमें

0: मशीन की आवश्यकता पड़ती है, उसको फ्लेकिंग मशीन बोलते हैं। और फ्लेकिंग मशीन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है। अगर फ्लेकिंग मशीन नहीं है तो इस तरह के प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो फ्लेकिंग मशीन के सहायता से हम इसमें मकई को क्या करते हैं, फ्लेक्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें दो रोलर लगे रहते हैं और बीच में गैप रहता है, जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्स के रूप में या चपटा के रूप में उसमें कन्वर्ट करते हैं। ऊपर के एक हॉपर रहता है जिससे कि हम लोग मेज जो है, जो कि जिसमें कि 16-24% मॉइस्चर है, नमी है, उसमें हॉपर में डालते हैं और दूसरे साइड से हमें क्या फ्लेक्स के रूप में प्राप्ति होती है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको सुखावक यंत्र या आपके पास कैबिनेट ड्रायर हो या हॉट एयर ओवन हो, उसकी सहायता से उसका मॉइस्चर कंटेंट 2% से कम कर लेते हैं। 2% से कम करने के बाद उसको या तो पैकेज के रूप में पैकेट में डाल देंगे जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट का रेजिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और आपके प्रोडक्ट को खराब कर देगा। तो उसके बाद अगर आपको नमकीन बनाना है या उसको स्पाइसी बनाना है या चॉकलेटी टाइप का बनाना है, तो पैकेजिंग करने से पहले क्या करना है कि इस तरह के मटेरियल को से कोट कर लेना है और आफ्टरवर्ड उसको क्या करना है, पैकिंग करना है और उसका फिर बाजारीकरण करते हैं। कॉर्नफ्लेक्स बनाने के लिए दूसरी विधि भी हम अपनाते हैं, मशीन दूसरे लगते हैं इसके लिए। जैसे कि आप एक्सट्रूडर एक मशीन होता है जिसके सहायता से हम लोग मकई के दूसरे प्रोडक्ट एक्सट्रूडर टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं या कॉर्नफ्लेक्स टाइप के प्रोडक्ट होते हैं बनाते हैं। इसमें है कि एक्सट्रूजन एक मशीन होता है जिसमें कि डिफरेंट जोन होते हैं, हीटिंग जोन होते हैं। इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट जो होता है आपको रखना रहता है 16-20% के लगभग में रखना होता है। और इसमें है कि टेम्परेचर जोन को सेट करते हैं और एक नोजल के सहायता से प्रोडक्ट को हम निकालते हैं, जिससे कि हम लोग वो मशीन के अंदर एक्सट्रूजन होता है उसमें जिलेटिनाइजेशन टेम्परेचर पे काम करता है और आफ्टरवर्ड क्या होता है, एक्सट्रूजन होता है। और एक्सट्रूजन से क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट मिलता है, वो मीन्स करने का मतलब कुरकुरे टाइप का भी प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं और फ्लैक्स के रूप में भी निकाल सकते हैं, रिंग के रूप में भी निकाल सकते हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट इसमें आप डिफरेंट शेप में आप प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। और उसमें फिर मॉइस्चर को रिड्यूस कर लेते हैं, उसमें नमी को कम कर लेते हैं, देन आपका उसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर से कोटिंग कर लेते हैं और फिर पैकेटिंग करके उसको बाजारीकरण कर सकते हैं
1: जी। तो यहाँ पर किसान भाइयों, आपने जाना कि मक्के के लाभ को जाना आपने, और साथ ही जाना कि इससे कौन कौन से प्रसंस्कृत पदार्थ बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, उनकी विधि को आपने जाना। तो आशा करूंगी कि आपको इन सभी बातों को जानकर काफी लाभ मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाल।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी

मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी की बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करे और ध्यान दे के स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोग ग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट और पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें, 27 से 28 जून

0: आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से।

0: आरजे अनु एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ 90.8 एफएम ग्रीन पर, जो है आपका पसंदीदा फ्रिक्वेंसी। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पर आज बात करते हैं आज के खास कार्यक्रम की, जिसका नाम है उन्नत कृषि। और मैं बातें करती हूँ इसमें आपके हित की बातें किसान भाई, आपके लिए खास बातें और आपकी सहूलियत की बातें। तो सबसे पहले यहाँ पर पशुपालक भाइयों की बात करें तो जरूरी होता है कि वो पशु जो उनके पास है उनका खास ख्याल रखें, साथ ही उनके चारे का भी खास ख्याल रखें। तो आपको बता दें कि आज हमारा विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए, खासकर पशुपालक भाइयों के लिए। जी हाँ, आज का हमारा विषय है बहुवर्षीय चारा घासों द्वारा हरा चारा प्रबंधन हम कैसे करें। तो आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी इस विषय से जुड़ी। तो आइए, और सबसे पहले आपको बताते हैं हमारे साथ कौन है स्टूडियो में फिलहाल इस वक्त इस विषय पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस के गुप्ता जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन एग्रोनॉमी, मैं आपको बता रही हूं, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है, और ये बहुत ही अच्छा विषय लेकर आज आप आए हैं, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को, हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा।
1: जी।
0: तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि कौन सी वजह है जिससे हमारे देश में अभी देखा जा रहा है कि हरे चारे की उपलब्धता कम होती जा रही है, या फिर हरा चारा जितना मिलना चाहिए हमें, हमारे पशुओं को जो हम पालते हैं, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, उतना मिल नहीं पाता है। तो क्या वजह हो सकती है खासकर हमारे प्रदेश के लिए?
1: देखिए, बहुत अहम प्रश्न है। हमारे प्रदेश के सभी जो जागरूक किसान हैं, ये तो हम सभी जानते हैं कि पशुपालन एक हमारी कृषि के बाद दूसरा बड़ा व्यवसाय है, और एक आमदनी का बहुत अच्छा एक इसको रीढ़ माना जाता है। और जहाँ तक पशुपालन की बात है, पशुपालन से अनेक किसानों की आमदनी जुड़ी हुई है, और पशु अगर हमारा स्वस्थ है तो हमारा दुग्ध उत्पादन भी अच्छा होगा। दुग्ध उत्पादन अगर अच्छा होगा तो किसान की आमदनी भी बहुत अच्छी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ ये आवश्यक हो जाता है कि किसान को जो उस पशु को स्वस्थ रखने के लिए पूरी अपनी दिनचर्या में जो उसको 24 घंटे एक पर्याप्त राशन की जरूरत पड़ती है, उसमें एक हरे चारे की उपलब्धता एक अहम रोल रखती है।
0: जी।
1: हरे चारे की जहां तक बात है, उसमें हम ये लोग ये भी जानते हैं कि अकेले अगर बिहार राज्य की अगर हम बात करते हैं, तो वर्तमान समय में लगभग 272 लाख पशुपालन आज भी होता है।
0: जी।
1: और एक तरफ जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होने के कारण कृषि योग्य भूमि में चारा फसलों को उगाना संभव नहीं है। इसकी प्रमुख वजह ये है कि जो सामान्यतः किसान हैं, वो हमारे प्रदेश सहित पूरे देश में आज भी लघु सीमांत हैं। जोत के जो आकार हैं, खेती के जो साइज हैं, वो छोटे छोटे किसानों के पास हैं। उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपनी जितनी भी हमारी कैश क्रॉप हैं, जिनसे वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं, जैसे धान्य फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, इनको ही उगाने पर किसान लोग ध्यान देते हैं। जबकि पशुपालन को जो एक आवश्यक अवयव है, जो हरा चारा है, उसको उगाने की ओर किसान बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसको किसान उसको हल्के में लेते हैं, और ध्यान ना देने की वजह से दुग्ध उत्पादन में पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ ये आवश्यक हो जाता है कि हम जो हमारे पास जगह है, कुछ ऐसी किसानों के पास जगह होती है कि जो अनुपजाऊ होती है, फर्टाइल लैंड नहीं है उनके पास, कुछ ऐसा अलग से कोई सुनिश्चित वो जगह नहीं कर पाते कि इस क्षेत्र पर हम हरे चारे का उत्पादन कर सकते हैं। तो यहाँ जहाँ तक वैज्ञानिक तकनीकी की बात है, वहाँ हमारे पास कुछ ऐसे तकनीकियाँ हैं, ऐसे विधियाँ हो सकती हैं, या ऐसी हमारे पास जीनोटाइप या कुछ अवसर विकल्प हो सकते हैं कि जो हरा चारा हमारे उसी जमीन में किस पद्धति से हम उगा सकते हैं, जिनमें बहुवर्षीय चारा घास है एक अहम रोल रखती है।
0: अच्छा।
1: आज का जो विषय है, हम इसी पे चर्चा करेंगे, जिसे बहुवर्षीय घासें हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि बहुवर्षीय जो घासें हैं और जो मौसमी चारा फसल है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो ये हम आपको अगर विस्तार से बताते हैं, तो जैसे किसान भाई हैं, जो खरीफ मौसम है जो जुलाई महीने से शुरू होता है, बरसात ऋतु के आने पर किसान के पास अनेक विकल्प होते हैं मौसमी चारा फसल के रूप में, जैसे सुड़ान है जिसको ज्वार कहते हैं, इसमें एमपी चरी है, या बहुकाट है, या सिंगल काट वाली है, इसके अलावा कुछ लोबिया है, बोडा हो सकता है, या कुछ बाजरा हो सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ रबी मौसम में है, कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे ओट है, जई, और जई के अलावा बरसिम है, लुसर्न है, तो अधिकांश किसान इन्हीं को ही उगाते हैं। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि हमारा जो राज्य है वो बाढ़ और सुखाड़ दोनों की चपेट में आए दिन रहता है। एक तरफ बाढ़ होती है तो दूसरी तरफ सुखाड़ होती है, तो बाढ़ के चलते भी किसान हरा चारा उगाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और सुखाड़ के चलते भी किसान उसको नहीं उगा पाते हैं। साथ ही अभी हम बात कर रहे थे कि किसान छोटे छोटे जोत के आकार हैं, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किसान अपना अन्य फसलों को उगाते हैं, जिस वजह से उनका हरा चारे में वो पिछड़ जाते हैं। तो जो बहुवर्षीय चारा घासें हैं उनमें मुख्य रूप से जैसे संकर नेपियर, इसके अलावा त्रिसंकर घास है और पाराग्रास है और इसके अलावा स्टाइलोग्रास है। तो ये ऐसी घासें हैं, इनकी प्रकृति दरअसल अनेक वर्षों तक रहती है और एक बार लगाने के पश्चात इनको हम अनेक वर्षों तक काट करके अनुकूल परिस्थिति में साल भर और अनेक सालों तक लगातार काट करके उनको खिला सकते हैं। क्योंकि इनकी प्रकृति बहुवर्षीय होती है और इनको एक बार लगाने के पश्चात हर मौसम में अलग अलग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए इनको हम बहुवर्षीय चारा घासें कहते हैं। अगर हम संकर नेपियर की बात करते हैं तो संकर नेपियर एक विशेष प्रकार की एक घास होती है जिसकी बढ़वार भी अच्छी खासी होती है और जिसकी लगभग 2.5 से 3 मीटर तक हो जाती है। साथ ही जो त्रिसंकर घास है ये भी हमारी मध्यम से उथली जमीन जो होती है वहाँ लगाने के लिए बहुत ही अच्छी बहुवर्षीय चारा घासें हैं। और जो किसानों के पास कुछ ऐसी अनुपयोगी जमीन होती है या जहाँ जल जमाव होता है वहाँ के क्षेत्रों में हम पारा घास है जिसको पानी वाली घास भी कहते हैं, तो इस तरह हम बहुवर्षीय चारा घासों का चयन कर सकते हैं और सीजनली चारा फसलों के साथ उगा करके हम आसानी से हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं।
0: सर, इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी बहुवर्षीय चारा घासें हैं जो पशुओं के लिए हरा चारा सुनिश्चित करती हैं।
1: देखिए, हरे चारे की उपलब्धता का जो मेन कारण जो तो अभी हम आपको बता रहे थे, इसके साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जो स्पेशली क्षेत्र की कमी होती है विशेषकर हरा चारे के लिए
0: जी।
1: दूसरा एक ये भी है कि किसानों को अच्छा बीज भी उपलब्ध नहीं हो पाता है और मौसम में तेजी से उतराव चढ़ाव के चलते हुए तो ये किसान हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं।
0: अच्छा।
1: चूंकि हम बहुवर्षीय चारा घासों की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर हम देखते हैं तो संकर नेपियर और त्रिसंकर घास
0: जी।
1: ये ऐसी किसानों के लिए उपयुक्त घासें हैं जिनका चयन हम अगर इनकी बुवाई की बात करते हैं तो यहाँ यह बताना अति आवश्यक होगा कि मौसमी चारा फसलों की तरह इनका बुवाई बीज के द्वारा नहीं करके बल्कि इनका जो प्लांट मटेरियल है जिसको हम जड़ कतरन कहते हैं या रूटेड स्लिप भी कह सकते हैं, उनको हम जो अनुशंसित समय है इसका और अनुशंसित मात्रा में अगर हम संकर नेपियर और त्रिसंकर इन घासों की बात करते हैं तो ऐसे क्षेत्र किसानों के लिए जहां सिंचाई के सुलभ साधन हैं और मध्यम से उथली जमीन है तो वहां हम बसंत ऋतु जो अभी फरवरी आगे आने वाला है उसमें 15 फरवरी के बाद और अप्रैल माह तक इनका हम पहले एक गड्ढा खोद लेते हैं करीब आधे से 1 फीट गहराई तक का और उसमें 2 से 3 गांठों युक्त जो जड़ कतरन होती है उसको हम मिट्टी में डाल करके और उसके साथ ही किसान के पास जो भी उपलब्ध है वो FYM सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी हो तो एक मुट्ठी खाद को हम गड्ढे में डाल करके और इसकी जो रूट स्लिप है उसको एक कम से कम ये ध्यान रखें कि एक गांठ है गहराई में जा करके और उसको अच्छी तरह दबा दें। और इसका जो बहुवर्षीय घासें हैं इसको अगर हमको लगातार इसी की बुवाई या रोपाई करनी है तो उसका हम 50 से 60 सेंटीमीटर के अंतराल पर और इसकी रोपाई आसानी से कर सकते हैं। साथ ही जब बरसात ऋतु होती है ऐसे किसान भाई जिनके पास पटवन का या सिंचाई करने का कोई साधन नहीं है तो वर्षा ऋतु में जब मानसून के आने के पश्चात जब वर्षा प्रारंभ होती है तो उसी कड़ी में हम इसका अपने नजदीकी संस्थान से या जहां भी आवश्यक ये मिल सकता है उपलब्धता इनकी प्लांट मटेरियल का करके और वर्षा ऋतु के शुरू होने के बाद हम लगातार 1 से 2 महीनों तक इसकी रोपाई आसानी से कर सकते हैं। और रोपाई करने के बाद इसमें ध्यान रहे कि अगर हम सिंचाई का साधन हमारे पास है तो हम फरवरी मार्च में इनकी रोपाई करने के तुरंत बाद इसमें सिंचाई अवश्य करें, और सिंचाई करने के बाद पहली कटाई इसकी 2.5 से 3 महीने पर, और फिर बाद में इसकी लगभग 35 से 40 दिनों के अंतराल पर प्रति माह इसकी कटाई कर सकते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो बहुवर्षीय हरे चारे की घासें हैं इनका हम पूरे साल में लगभग 7 से 8 कटाई कर सकते हैं, और इनके बढ़वार जो वर्षा ऋतु है उसमें अत्यधिक होती है, और जो शरद ऋतु होती है जो फरवरी तक होता है उसमें तापक्रम कम होने की वजह से बढ़वार थोड़ा कम होती है। लेकिन इस प्रकार ये अनुपजाऊ जमीन में या अंडुलेटेड जो हमारी ऊंची नीची उथली कुछ जगह होती हैं उनका भी जगहों का उपयोग करते हुए जो किसानों की बेकार पड़ी हुई भूमि है उसमें भी इन बहुवर्षीय घासों का चयन करके और समय पर इनकी रोपाई करके हम हरे चारे का उत्पादन सुनिश्चित कर सकते हैं।
0: अच्छा, फिर डॉक्टर साहब अभी वापस चलते हैं अपने विषय पर और प्रबंधन की बात करते हैं। तो जैसे कि हमारा विषय है आज बहुवर्षीय चारा घासों द्वारा हरा चारा प्रबंधन कैसे करें, तो सबसे पहले तो हमें इन सारी बातों को हमने जाना, और अब यहाँ पर बात आती है कुल मिलाकर हम बात करें कि बहुवर्षीय चारा घासों द्वारा कि हरा चारा प्रबंधन कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई।
1: देखिए, जो आमतौर पर दो तरह के किसान होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनके पास अपने सिंचाई के पर्याप्त साधन होते हैं, और कुछ ऐसे किसान होते हैं जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जो सिंचाई के साधन जिनके पास होते हैं वो इस जो सिंचित क्षेत्र के लिए चारा प्रबंधन है उसमें हम बहुवर्षीय चारा घासें जैसे शंकर नेपियर या त्रिशंकर घास को हम खरीफ मौसम में लोबिया के साथ या रबी मौसम में बरसीम या अन्य किसी जई इत्यादि के साथ हम अगर पट्टियों में इसकी जैसे अभी हम बता रहे थे कि बहुवर्षीय घासों की रोपाई करके और जो बीच का स्थान बचता है उसमें हम सहायक फसल जो मौसमी आधारित फसल है उसकी बुवाई करके और इसके हम लगा करके हम आसानी से उत्पादन सुनिश्चित करते हैं। और इस तरह से हम अगर लगाते हैं तो जहां सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं वो बहुत ही अच्छा पौष्टिक और गुणवत्ता युक्त हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो ऐसे क्षेत्र हैं जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहां के लिए चारा घास के लिए हम जो बहुवर्षीय घासें हमारे पास उपलब्ध है वो जैसे त्रिशंकर घास है, इसकी 2 पंक्तियां एक दूसरे से लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर इस प्रकार लगा देते हैं कि जो बीच में कम से कम जो स्पेस है वो अत्यधिक रहे। इस तरह जो दोहरी पंक्ति है उसके साथ साथ 2-2 मीटर की दूरी पर और जुलाई से अगस्त के महीने पर जब भी बरसात शुरू होती है वहां हम जो बीच का स्थान है उसमें हम कुछ जैसे विशेष प्रजाति जैसे बाजरा, बाजरे की जायंट बाजरा है या दूसरा एक GFB1 वो हम 30 सेंटीमीटर की अंतराल पर इसकी बुवाई कर सकते हैं। अच्छा। तो चूंकि यह पद्धति छोटे और मझेले किसानों के लिए अत्यधिक उपयोगी है और जिस किसान के पास 4 से 5 दुधारू पशु हैं उनके लिए यह तकनीकी अत्यंत उपयोगी है। साथ ही एक जो सघन चारा उत्पादन तकनीकी है इस पद्धति में दरअसल जो मिश्रित खेती या अंतर्वर्ती खेती भी इसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह हम एक ही भूमि पर और 3-4 तरह की चारा फसलें इस क्रम में बोई जाती हैं जिससे कि समय समय स्थानिक सघनीकरण किया जा सके। मुख्यतः जो ये तकनीक है ये शहर के आसपास या व्यवसायिक स्तर पर जो लोग दुग्ध उत्पादन करना चाहते हैं डेयरी से जुड़े हुए होते हैं तो उनको हम उपयोग करने की इस सघन चारा उत्पादन तकनीकी सलाह दे सकते हैं। और चूंकि इन पद्धतियों का अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सघन चारा उत्पादन के लिए अनेक पद्धतियां हैं जैसे बहुवर्षीय घास को हम खरीफ मौसम में मक्का तथा लोबिया और रबी मौसम में बहुवर्षीय चारा घास के साथ रिजका या जई अथवा सरसों इनका चयन करके और हम फसल से अत्यधिक हरा चारा व पौष्टिक चारा उगा सकते।
0: तो किसान भाइयों, आपने इस प्रकार जाना कि बहुवर्षीय चारा घासों द्वारा हरा चारा प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं। पूरी जानकारी मिली है आपको डॉक्टर एस के गुप्ता जी से। तो मैं आशा करूंगी कि आप उनकी बातों को गौर से सुने होंगे और अब आगे अगर आप भी चाहते हैं इस हरे चारे को उगाना तो बिल्कुल दिशा निर्देशों को अपनाएं और आसानी से इन हरा चारों को उपलब्ध कराएं अपने प्रदेश में अपने पशुओं के लिए। तो आज के लिए इतना ही। 90.8 एफएम ग्रीन पर फिर से मुलाकात होगी आप सभी से। सुनते रहिए 90.8 एफएम ग्रीन और सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीवी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
5: जी
4: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
5: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
4: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर एफएम ग्रीन और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जी हाँ, मैं आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही खास विषय। आज हम बात करेंगे, जी हाँ मैं आप सभी को बता दूँ, फूलों से बने मूल्य संवर्धित गहनों के बारे में। ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है और अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आपको बनाने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आप शौकीन हैं कि आप फूलों फसलों के कुछ नए नए चीज बनाए तो बहुत ही अच्छा आपके लिए एक व्यवसाय भी बन सकता है। और आज फूलों का डिमांड हर जगह है, आज लोग आर्टिफिशियल बलून्स और जो डेकोरेशन के सामान होते हैं उन्हें ना खरीदने की बजाय जो नेचुरल फ्लावर्स होते हैं उन्हें खरीदते हैं। और जब गहनों की बात आती है, हमारे शादी की रस्म की हम बात करें तो उसमें भी फूलों से बने गहनों का ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज कुछ ऐसी ही बातें लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर दीप्ति मैडम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर में और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं। तो आप सभी को बहुत सारी जानकारी देंगे इससे, जो कि आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। मैडम बहुत आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद
0: मैडम। सबसे पहले तो फूल से बने आभूषणों के व्यवसाय के बारे में बता दीजिए।
7: जी हाँ, देखिए फूलों से बने आभूषण कृषि व्यवसाय में एक बहुत ही उभरता हुआ व्यवसाय है और ये व्यवसाय लाभ बहुत अधिक देता है, परंतु इसके साथ साथ हमें कई चुनौतियां भी इसमें, ये चुनौतीपूर्ण भी है क्योंकि इसमें हमें रचनात्मक दृष्टि और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। और इस व्यवसाय में प्रायः उपभोक्ता की प्राथमिकता को भी ध्यान देना होता है, क्योंकि उनकी पसंद नापसंद को अगर हम नहीं ध्यान में रखेंगे तो ये व्यवसाय हमारा फेल हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता युक्त फूलों से हम आभूषणों का निर्माण कर सकते हैं। और वहीं फूलों से बने जो हमारे वैल्यू एडेड या मूल संवर्धित गहने या आभूषण होते हैं तो उनकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में बहुत मांग है। और अगर फूलों से बने आभूषण की बात करें तो ये अत्यंत आकर्षक और एकदम अनूठे डिजाइन के होते हैं, इन्हें जल्दी कॉपी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी होती है। क्या डिजाइन बना रहे हैं, क्या रंगों का मिलान कर रहे हैं, ये सब डिजाइन प्रायः ये कॉपी नहीं हो सकते, तो ये एकदम अनूठे होते हैं। साथ ही अलग अलग फूलों को पोशाक के रंग से भी हम मिलान कर सकते हैं एवं शैली के हिसाब से भी उनको पहन सकते हैं। तो इस तरीके के फूलों को हम किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि ऑनलाइन हमको इनकी खरीदारी करनी चाहिए, अपनी शैली और अपने पहनावे के अनुसार फूलों के आभूषणों का चयन करना चाहिए। और जहाँ जो अगर बात करें कि ये अतिरिक्त आमदनी का भी साधन है, क्योंकि इनकी खरीदारी करते वक्त उपभोक्ता जिस तरीके का जेवर या जिस तरीके का आभूषण गहना वो चयनित कर रहा है उसी हिसाब से उनका लाभ निश्चित होता है। और इनको अपने पसंद के डिजाइन एवं रंग के आभूषणों के हिसाब से हम चयनित कर कम से कम समय में ही घर बैठे ऑनलाइन खरीदारी के थ्रू इसको हम ऑर्डर कर सकते हैं।
0: जी, अब फूलों से बने जो गहने होते हैं, आभूषण होते हैं, उनके क्या फायदे हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे।
7: देखिए आजकल जहां सोने चांदी के आभूषणों की कीमत आसमान छू रही है,
0: जी जी,
7: और वहीं
0: सोने चांदी नहीं, आर्टिफिशियल जो ज्वेलरीज हम लोग खरीदते
7: वो भी बहुत और उसका क्या होता है, उसकी जगह पे हम कृत्रिम या फिर नकली गहने भी जो खरीदते हैं वे भी बहुत महंगे होते हैं, लेकिन वो नकली गहने हमारी त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, एलर्जी इत्यादि करते हैं। और इन सभी के निदान के लिए अगर हम नेचुरल प्राकृतिक फूलों का इस्तेमाल कर उसके गहने बनाए तो उसके साथ साथ हम अपने स्वास्थ्य को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। और फूलों से बने आभूषण का उपयोग अधिकतर हम क्या करते हैं कि जब हमारे यहाँ समारोह होते हैं तो बाहर से बहुत आदमी बहुत मेहमान आते हैं, उस टाइम पे हम इन महंगे जेवरात की निगरानी करना भी एक सिरदर्द बन जाता है। तो हमको क्या करना है कि इस टाइम पे यदि हम फूलों के गहने बनाएं और साथ में आने वालों के लिए छोटे हल्के गहने भी हम भेंट स्वरूप यदि रखते हैं तो ये गहने हमारे बीच में एक उल्लास का कारण भी बनते हैं एवं इनके अंदर से जो फूलों के भीनी भीनी महक आती है वो हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे सिर में स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार होता है उसको भी काफी हद तक कम करने में मदद मिलती है। और यही जैसे हल्दी मेहंदी या फिर अलग अलग संप्रदायों की बात करें कि हल्दी का फंक्शन हो गया या क्रिश्चियंस में जैसे व्हाइट कलर के सफेद रंग के फूलों की आवश्यकता होती है तो उसी फूलों के ऑर्डर उसी रंग के फूलों के ऑर्डर फूलों के गहनों को ऑर्डर करके हम पोशाक से भी मेल खा सकते हैं एवं हमारी जो अलग अलग हमारे समारोह है उनसे भी हम मेल खा के इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और वहीं यदि हम बात करें कि कृत्रिम गहने जो हमारे त्वचा में अक्सर दिक्कत पैदा करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये जो नेचुरल फ्लावर्स हैं, प्राकृतिक फ्लावर्स हैं, इनसे बने हुए आभूषण क्या करते हैं, कोमलता एवं स्त्रीत्व का एहसास कराते हैं और अपनी महक से भी ये माहौल को, उस समारोह को बहुत हल्का एवं सुगंधित करते हैं।
0: जी, तो हम कौन कौन से आभूषण तैयार कर सकते हैं इन फूलों से?
7: देखिए, इससे हम 16 सिंगार जो कहते हैं, स्त्री का 16 सिंगार होता है, उसमें जो उपयोग होने वाले सारे आभूषण तैयार किए जा सकते हैं। छोटे छोटे फूलों से हम महीन डिजाइन के अलग अलग आभूषण तैयार कर सकते हैं, जैसे अंगूठी, पायल, बिछिया इत्यादि। और बड़े फूलों से हम कुछ इस तरीके के आभूषण, जैसे हो गया मांग टीका या गले का हार, ये सब इत्यादि बड़े आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा कंगन, हाथ फूल, कमरबंद, बाजूबंद, इवन जो केस सज्जा के लिए अलग अलग सामान इस्तेमाल होता है, या फिर हार झुमके तो मैंने पहले ही बताया, या फूलों से बने दुपट्टे। अभी हाल ही में हमने देखा अंबानी जी के यहाँ जो शादी हुई थी, उसमें एक स्पेशल फूलों से कई लाख रुपए का दुपट्टा बना था जिसे दुल्हन ने कैरी किया था। तो इस तरीके से डिमांड इसकी बहुत अधिक है। और इसके अलावा जो है, आप अलग अलग सूखे फूलों से भी आप यहाँ तक की आभूषण बना सकते हैं, लेकिन ये हमारा भारत का कल्चर नहीं है, ये थोड़ा वेस्टर्न कल्चर है, जिसमें सूखे फूलों को एक जेल में, एक ट्रांसपेरेंट जेल में भिगा के अंदर सुखा के उससे पेंडेंट या फिर इयर रिंग्स, इस तरीके की भी चीज है जो फैशनेबल वेस्टर्न स्टाइल है, उस तरीके के गहने भी तैयार किए जा सकते हैं। पर क्योंकि यदि अभी हम जो ताजे फूलों से बने गहनों की बात कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा हमको ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि शस्योत्तर प्रबंधन हमको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा, जिससे हमारे जो ताजे फूल हैं वे कम से कम 4 से 5 दिन तक संरक्षित किए जा सकें, एवं आभूषण इसको पहनकर जो व्यक्ति इसे पहने वो खुशहाल और स्वस्थ महसूस कर सके।
0: जी, और अगर जब हम खरीदने जाते हैं ये फूल से बने गहने, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस समय?
7: देखिए, इसका चयन पोशाक के रंग और व्यक्तिगत की पसंद, व्यक्तिगत पसंद जिसे कहते हैं, उसके अनुसार होना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर रंग हल्के शेड में पसंद है, तो उसी तरीके के फूल हमको चयनित करके उसके गहने बनाने चाहिए। दूसरी चीज, क्योंकि ये ताजे फूलों से बने हैं तो इन्हें तुरंत बनाया जाता है, इसलिए इनका ऑर्डर ससमय करना चाहिए, ताकि समारोह के समय से पहले इसको पते पर भेजा जा सके। दूसरा, आभूषण बनाने के लिए हमें तारनुमा मजबूत धागों का प्रयोग करना चाहिए, जो ताजे फूल, क्योंकि ताजे फूलों में नमी होती है, वे भारी थोड़े से होते हैं, तो उनके भार को वो सहन कर सके, इस तरीके से हमें फूलों को इस्तेमाल करना है। वही महीन काम के आभूषण बनाने के लिए, जैसे अगर छोटे छोटे महीन कलर के आभूषण है, तो इसके लिए हमें चिपकाने के लिए ग्लू गन का इस्तेमाल करना चाहिए। और नीचे जो हम बेस इस्तेमाल कर रहे हैं वे हार्ड नहीं होना चाहिए, जो स्किन को हमारे या हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाए। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी की त्वचा बहुत ही सेंसिटिव है, तो जो वैक्स स्ट्रिप होती है उसको बेस बना के उसको आकार में काट के, मान लीजिए हार का जो भी शेप देना है उस शेप में काट के, फिर उस पे ग्लूगन के द्वारा फूलों को अपने रंग के अनुसार या 2-3 रंगों को मिला के गहने तैयार करने चाहिए। वहीं दूसरी ओर यदि किसी की त्वचा बहुत ही ऑयली है, तो उसे ये वैक्स स्ट्रिप नहीं रास आएगी, तो उसको ऑर्डर करते समय अपना ये सारी डिटेल्स भी देनी होगी। और उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉटन के स्ट्रिप्स या बकरम वगैरह होता है, उसे काट के भी उसमें गहने या तो चिपका दिए जाते हैं, या फिर जो सॉफ्ट तार होते हैं उसकी सहायता से पिरो पिरो के उसमें फूलों को टांका जाता है। यही फूल नहीं, गहने को और भारी भरकम करने के लिए इनमें बीच बीच में मोतियां या स्टोन्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कीमत अधिक हो जाती है, लेकिन ये गहने देखने में बहुत भारी और बहुत ही अनूठे लगते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि इनको हमें थोड़ा सा नमी में रखना चाहिए, चाहे जैसी डिलीवरी आ जाए तो इसे उचित तापमान में फ्रिज में या नमी युक्त मलमल के कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, ताकि ये बिल्कुल तरोताजा रहे और इनमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। और ऐसा करने से फूलों को हम 3 से 4 दिन तक संरक्षित कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर समय में उसे बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: अब अगर हमें आभूषण बनाने हैं तो कौन से फूल का उपयोग हम कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें।
7: देखिए, अभी मैंने जैसे बताया, ये व्यवसाय ग्रामीण बेरोजगार और महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है, जिसे महिलाएं घर पे भी ऑर्डर करने की जगह यदि ये सीख लेती हैं तो घर में भी खुद से बना सकती हैं अपनी, लेकिन उनमें थोड़ा सा क्या हो है, सृजनात्मक कला होनी चाहिए। तो इसके लिए जो हम यदि बात करें तो इसके लिए जो फूल इस्तेमाल होते हैं वे प्रायः ऐसे फूल होते हैं जो महकदार होने के साथ त्वचा के लिए भी सेहतमंद हो, जैसे गेंदा, देसी गुलाब, रजनीगंधा, चमेली, मोगरा और ताजा कलियों से भी फूल को बनाया जाता है। प्रायः इन इस रोजगार को स्टार्ट करने के लिए क्या है कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, एक सुई और मजबूत धागे ही चाहिए, फूलों के अतिरिक्त फूल भी चाहिए, मजबूत धागा और सुई, और अगर कुछ सजावटी सामान जैसे मोती स्टोन है तो उसका भी इंतजाम करके रख लेना है। तो इन आभूषणों को जो है हम प्रायः जो इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ही आसानी से, लेकिन थोड़े से ट्रेनिंग के बाद आप अलग अलग डिजाइन, क्योंकि कृषि के अंदर क्रिएटिविटी है, उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यह सीखने में, और हाथ भी जब सेट हो जाएगा, जब दो चार बार आप बना लेंगे तो बहुत महीन का महीन आभूषण भी आप तैयार कर सकते हैं। तो प्रायः इन आभूषणों की में जो हमारी लागत आती है वो 500 रुपए से स्टार्टिंग होती है, लेकिन यदि कोई बहुत महंगाई की तरफ जाए या सोने के तार का इस्तेमाल कराना चाहे, असली मोतियों का, तब इसकी कीमत थोड़ी हजारों में चली जाएगी, लेकिन आम तौर पे यदि हम बात करें तो 500 से 5000 के बीच में सारे गहने आपके हल्के से भारी गहने तैयार हो जाएंगे।
0: तो श्रोताओं, आज आपने जाना कि फूलों से आप गहने कैसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, और आप शौकीन हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो इसे बनाने में और भी मज़ा आएगा आपको, और आप एक व्यवसाय के तौर पर भी इन आभूषणों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले दिन एक नए विषय के साथ। नमस्कार।
5: उन्नत कृषि।

0: ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
5: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
5: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
5: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से

0: घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे, जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
1: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
0: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और आज जी हां, उन्नत कृषि कार्यक्रम में हर रोज की तरह हम लेकर आते हैं बहुत ही अच्छी और खास बातें हमारे किसान भाइयों के लिए। और अभी जो मौसम चल रहा है वो खरीफ मौसम है और ऐसे में तिल की खेती आप कैसे करेंगे, इन सभी जानकारियों के साथ हमारे बीच है आज डॉक्टर सीमा सिन्हा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। सबसे पहले तो मैडम आपका स्वागत है। और खरीफ मौसम की हम बात कर रहे हैं, खरीफ मौसम में तिल की खेती कहाँ लगाना अभी ज़्यादा सही होगा जिससे कि किसान भाइयों को फ़ायदा मिलेगा?
5: मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं तिल के बारे में किसानों को बताना चाहूँगी कि तिल एक तैलीय फसल है, इसमें करीब करीब 50% तेल की मात्रा, साथ साथ इसमें प्रोटीन भी 13-14% मिल जाते हैं, तो ये एक खाद्य के रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो किसान भाई इसको अवश्य लगाएं। और ये एक ऐसा पौधा है जिसको हम सदाबहार कह सकते हैं, ये किसी भी मौसम में होता है, खरीफ में भी हो रहा है, गर्मा में भी हो रहा है। खरीफ मौसम में विशेष ध्यान रखना है कि वैसे जगह पे हम इसको लगाएं जहाँ पे जल जमाव ना हो। खरीफ मौसम में इसमें इरिगेशन देने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। और इसका जो लगाने का सही समय है, एक जब बारिश गिर जाती है जो खरीफ की, हमारे मानसून का आ जाता है, उसके बाद लगाते हैं। जल जमाव हुआ तो पौधा चला जाता है, हमारा बचता नहीं, इसलिए पौधे को हम लोग बहुत बचा के रखते हैं कि वाटर लॉगिंग बिल्कुल ना हो। और जहाँ तक कि इसके महत्वपूर्ण, इसके जो आपको फसल के जो गुणवत्ता हैं, आयुर्वेद में भी इसका काफ़ी वर्णन हुआ है और इसको त्रिदोषा के रूप में भी हम लोग बोलते हैं। फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट और कोलेस्ट्रॉल तथा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए जो है इसमें अपना एक गुण है, और साथ में ये मतलब इसके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता भी है जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि दिन रोजमर्रे में हम लोग इसका तेल को, इसके तिल को अपने खाद्य में शामिल करना चाहिए, जो बहुत ही आवश्यक है। साथ ही हम इसके खेती के बारे में बात करें तो अभी खरीफ के मौसम में हम सबसे पहले जलवायु के बारे में बात करेंगे, साथ साथ इसके ज़मीन की उपलब्धि के बारे में बात करेंगे कि किस ज़मीन में हम लोग इस जो उपलब्ध है और कौन से ज़मीन में हम इसको लगाएं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ज़मीन हम ऐसा चुनेंगे जो दोमट बलवाही मिट्टी हो और उसमें पानी का स्टैग्नेशन नहीं हो, साथ में थोड़ा ऊपर का ज़मीन हो, साथ ही अगर ढलाव की ज़मीन है तो और भी बेहतर है, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है हमारी, लगातार जब 3-4 बारिश हो जाती है तो फिर इसमें जल जमाव होने की समस्या आती है, तो अगर थोड़ा सा भी ढलाव है तो वो पानी नहीं जमेगा। और जहाँ तक हम इसके भूमि की चुनाव जब कर लेते हैं उसके बाद हम इसका सबसे पहले कोशिश करते हैं कि खरपतवार निकलवा दें, क्योंकि जो शुरुआत के दिनों में है तिल की बढ़वार थोड़ी कम होती है तो खरपतवार तुरंत बढ़ जाते हैं और फिर दिक्कत होती है। ऐसे खरपतवार के नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत ही बाद हम लोग पेंडा मेथलिन डाल देते हैं 2 से 3 दिन के अंदर, जिससे कि खरपतवार का नियंत्रण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि बरसात का मौसम है, खरीफ का मौसम है, तो खरपतवार स्वाभाविक रूप से थोड़ा ज़्यादा आता है। और जहाँ तक इसके हम लोग खरीफ में मौसम में हम लोग ये भी कहेंगे कि इसको जिंदली छिटवा विधि से लोग लगा देते हैं, लेकिन कतार में लगाने से इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर हमको इसमें घर पतवार हो गए हैं, उसकी निकौनी करनी है, तो वो बड़े आसानी से होता है। साथ ही साथ इसका जब बीज की रुपाई की बात हम लोग बोलते हैं, तो इसका 5 से 6 kg हम लोग मुख्य रूप से बीज कतार से कतार लगाने में यूज़ करते हैं 1 हेक्टेयर के लिए, लेकिन अगर छिटवा विधि से है तो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो इसके लिए भी हम लोग एक उपाय करते हैं कि इसमें कुछ बालू मिला देते हैं, जिससे कि सीड इसके काफ़ी छोटे होते हैं, जो ज़्यादा ना गिरे। साथ ही साथ इसके भूमि के चुनाव के बाद हम लोग इसमें खाद की मात्रा के बारे में बात करते हैं। ये जनरली ये मुख्य रूप से अभी जो इसको उगाया जाता है, लोग छोटे से प्लॉट में उगाते हैं अपने घर के पास के जमीन में, तो वहाँ खाद तो देते नहीं हैं, लेकिन अगर खाद उपलब्ध है तो देना चाहिए। और इसकी मात्रा हम लोग कहते हैं कि नेत्रजन है जो 40, 20 फॉस्फोरस, 20 पोटास kg पर हेक्टर के हिसाब से डालते हैं। जो नाइट्रोजन की मात्रा डालते हैं उसका विशेष ध्यान रखेंगे कि 2 डोज में डालेंगे, बाकी तो सारा एक साथ में हम लोग डालते हैं फास्फोरस एंड पोटाश। नाइट्रोजन की आधी मात्रा उस शुरुआत में डालते हैं जब हम लोग रुपाई करते हैं, आधी मात्रा हम लोग फ्लावरिंग आने से पहले डालते हैं। साथ में कंपोस्ट की उपलब्धता पर निर्भर करता है, अगर कंपोस्ट उपलब्ध है तो अवश्य हम उसमें डालेंगे। और बीज की मात्रा और दूरी की बात है, तो बीज की मात्रा 5 से 6 kg लगेगा के कतारों में। अगर इसको अंतर्वर्ती खेती करते हैं तो इसके लाइन पे डिपेंड करता है कि आप कितने लाइन लगाए हो, अगर ज़्यादा लाइन है तो ज़्यादा बीज लगेगा, कम लाइन है तो कम लगेगा। और इसकी अगर एकल फसल के रूप में हम लोग इसको लेते हैं तो 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी यूज़ करते हैं और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी करते हैं। और इसके बीज का उपचार करना आवश्यक होता है, 2 ग्राम कार्बंडाजीम है या अथवा टाइकोडर्मा से भी हम लोग उपचार करते हैं। और इस खरीफ मौसम में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि थोड़े बीमारी और बीमारी इसमें ज़्यादा आते हैं खरीफ मौसम में, गर्मा मौसम के ये में, तो थोड़ी लागत अवश्य बढ़ती है। और इस समय हम लोग को बैक्टीरियल ब्लाइट से बचाने के लिए सीड को अवश्य ही स्ट्रेप्टोमाइसिन से ये करना चाहिए, 4 kg बीज में 1 ग्राम हम लोग ये स्ट्रेप्टोमाइसिन से ट्रीटमेंट देते हैं, उसको उपचार करते हैं ताकि बैक्टीरियल ब्लाइट से बचा रहे। क्योंकि ब्लाइट जो है काफ़ी छोटे करीब करीब पौधे के 6 से 8 पत्ते के होते हैं, उस समय से आना शुरू हो जाता है, तो कभी कभी बहुत शुरुआत के दिनों में ही ब्लाइट आ जाते हैं, ज़्यादा बारिश होता है, तो फिर उसके बाद उसको बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और बीमारी है जिसको फाइलोडी बोलते हैं हम लोग, फाइलोडी भी दिखता है बहुत जगह पे, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि पौधा जो फाइलोडी से अफेक्टेड है, इस जो इसमें क्या होता है मुख्य रूप से कि पौधे को पहचानने के लिए सारे पत्ते एक जगह पे हो जाते हैं और बीच की 2 पत्ते के बीच की दूरी जिसको इंटरनोड डिस्टेंस बोलते हैं वो बिल्कुल ही घट जाता है, तो एक जगह बंच की तरह हो जाता है और इसमें फ्लावरिंग और पॉडिंग नहीं के बराबर होती है, तो इसमें पॉड इसमें हमारा यील्ड का काफ़ी लॉस होता है। तो इसको इसके लिए हम लोग सबसे पहले फाइलोडी को मुक्त करने के लिए जो पौधे हमारे पास दिखें उसको हम लोग हटा देते हैं, उसको निकाल के दूर हटा देते हैं। या फिर इसको उपचार करने के लिए हम लोग ये भी करते हैं कि 3 ग्राम ब्लाइटोक्स 50 का पर लीटर पानी में उसको घोल के 15 से 20 दिन के इंटरवल पे 2 छिड़काव कर देते हैं। ये भी एक थोड़ा सा ये है। और इसके लिए दूसरी बात ये है कि हम बीज ही ऐसा लें जो फाइलोडी से मुक्त हो, रेसिस्टेंट हो। कुछ बीज हमारे पास जो अच्छे बीज हैं उसमें आपका काफ़ी बीज है, आप सबौर 1 का उपयोग कर सकते हैं, आप GT10 का उपयोग कर सकते हैं, इन सबों में TKG22 का उपयोग कर सकते हैं, इन सबों में ऐसे बीमारी की कोई फाइलोडी से कोई मतलब फाइलोडी नहीं आता है इन पौधों में, तो इसके लिए भी हम लोग फसल सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा फसल खराब हो जाता है। साथ ही इसमें हम लोग तो इस तरह से इसमें नाइट्रोजन का लॉस नहीं होता है और पौधों को अच्छे से मिल जाता है और पौधा इसका उपयोग करते हैं। और खरपतवार तो इस मौसम में आते हैं, उसके लिए पन्ना मिथिलीन मैंने बताया है, और जो आप ये हाथ से निकाई गुड़ाई कर सकते हैं उसको भी 15 से 20 दिन के अंतराल पे करते रहें, जिससे कि आपका खरपतवार कम से कम 2 महीने तक तो बचा रहे क्रॉप, तो फिर क्रॉप की बढ़वार ज़्यादा हो जाती है तो फिर दिक्कत नहीं होती है। शुरुआत के दिनों में इसकी बढ़वार काफ़ी कम है, तो हम लोग इसका विशेष ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ कटाई करने के लिए इस फसल में एक दिक्कत ये आती है कि ये सिंक्रोनाइज मैच्योरिटी नहीं है, एक साथ में नहीं पकता है, फिर भी हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ऐसे कौन से समय में काटें जो कि कम से कम लॉस हो, मतलब कहने का कि फली फटने के पहले काट लें तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिल सके। तो इसके लिए हम लोग अगर पत्ती को देखते हैं तो नीचे की पत्तियाँ कुछ झड़ने लगती है और पीले हो जाते हैं, तो हम लोग इसको काट के खड़ा करते हैं, रखते हैं और 3-4 दिन धूप में डाल के सुखा के उसके बाद इसको हम लोग थ्रेशिंग कर लेते हैं। और थ्रेशिंग करने के बाद भी हम लोग ये निश्चित करते हैं कि करीब करीब 8% के अराउंड में इसका मॉइस्चर रहे, नहीं तो फिर जहाँ स्टोरेज करेंगे वहाँ फिर उसमें कीट लगने की संभावना होती है। लेकिन अगर हम लोग इसको अच्छे से सुखा के अच्छे से बैग में पैक करेंगे तो फिर वो संभावना घट जाती है। तो किसान भाइयों, आप लोग इस जो उपयोगी फसल है आपके लिए इसको लगाएं, और इसका जहाँ तक बिकने की बात है और इसका जो रेट है वो काफ़ी हाई है, सरकार के तरफ से भी बार बार इसमें इसके जो MSP हैं बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये तिलहनी फसलों में काफ़ी उपयुक्त फसल है, अपने खाने के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी, जिससे आप इससे आय अर्जित ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। धन्यवाद।
3: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खरीफ में तिल की खेती, और इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं आपको, और आशा करते हैं आज का यह वार्ता जरूर आपको पसंद आएगा। अगले दिन मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार।
6: 3 जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
7: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
7: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
10: तीनू, राजू, पिन्नी और।
9: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
10: 11 दोस्त?
9: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
10: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
9: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
10: लेकिन ऐसा क्यों?
9: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
10: टीकी, तो इसका हल क्या है?
9: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
10: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
11: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीवी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
12: जी
11: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
12: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीवी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
11: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
13: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
14: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
13: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-80% और दोपहर में 25-30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13-17 जून के दौरान सामान्यतः 14-15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र श्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर लें और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60-80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट और पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट

भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। हमारे साथ हैं आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में डॉक्टर ऋचा, और आज मैं आप सभी को बता दूं कि आज जो खास विषय लेकर आई हैं मैडम, वो है मूंग के प्रमुख कीट एवं प्रबंधन। आपको बता दें मैडम वैज्ञानिक है एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर में। तो सबसे पहले तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे मैम कि मूंग में लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं वो कौन कौन से हैं।
2: सबसे पहले धन्यवाद हूँ। जब मूंग की बात अगर हम करते हैं तो इसकी जो विभिन्न अवस्था है उसमें अनेक प्रकार के कीट जो है उनके लगने की संभावना बनी रहती है, जिसमें से अगर हम प्रमुखतया हम अगर बात करें तो तना छेदक हो गया, फली बेधक, इल्लियाँ जैसे कि तंबाकू की इल्ली या फिर बिहार रोएदार इल्ली, इन सब का प्रकोप जो है बहुत ज़्यादा इसमें बना रहता है। रस चूसक कीट की अगर मैं बात करूं तो उसमें लाही जिसको माहू या चेपा भी कहते हैं, इसके अलावा सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स आदि इनके प्रमुख कीट माने जाते हैं।
0: जी, इन कीटों की पहचान हम कैसे करेंगे?
2: देखिए, प्रारंभिक अवस्था की अगर मैं बात करूं तो उस समय कुछ इल्ली जैसे कि चने की इल्ली हुई वो भी मूंग पे देखा जा सकता है, और ये जो इल्ली है इसको इस इल्ली को हम पिल्लू भी कहते हैं, साधारणतः इसको हम पिल्लू ही कहते हैं। यहाँ पे ये 3 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है, हरा भूरा रंग की होती है और इसमें रोमयुक्त गहरे पीले रंग की धारीनुमा बनी होती है। इसकी जो वयस्कावस्था है वो मध्यम आकार की हल्के भूरे रंग का उभार लिए हुए होती है, और ये इनकी जो पंख की अगर हम बात करें तो सुनहरी हरी हो सी होगी, पीली तथा गहरा भूरा रंग का जो है इनका पंख होता है। ये आगे की पंख की मैं बात कर रही हूँ। शरीर के जो मध्य में एक गोल धब्बानुमा सा दाग बना रहता है, और अगर पीछे के पंख की बात करें तो ये सफ़ेद रंग के एवं किनारा जो है वो चौड़े काले रंग का होता है। फिर एक और पिल्लू की मैं बात करूंगी, तंबाकू का पिल्लू भी इसको कहते हैं, वो भी मूंग में देखा जा सकता है। ये हरे मटमैले रंग के होते हैं जिनके शरीर पर पीले रंग एवं नारंगी रंग की लंबवत धारियां होती है। उदर के प्रत्येक खंड के दोनों ओर काले धब्बे होते हैं, और अगर हम इनके वयस्क की बात करते हैं तो उनके जो अग्रपंख हैं सुनहरे भूरे रंग के और सफ़ेद धारियां लिए होते हैं। जो पिछले के पंख होते हैं उन पर भूरे रंग की शिराए होती है। इसके अलावा चेपा या माहू जो बहुत ही प्रमुख रूप से रस चूसक कीट में आते हैं, तो वो क्या होते हैं कि उनकी जो पहचान है वो बहुत ही आसान होता है। अगर मैं कहूँ तो इनके जो शिशु एवं वयस्क दोनों ही पत्तियों, तनों, फूलों एवं दानों पे समूह में एकत्रित होकर रहते हैं। इनके जो शिशु हैं उनमें मोमयुक्त परत रहती है जिसके कारण वो धूसर मटमैली दिखाई पड़ती है, और जो वयस्क हैं वो काले रंग की चमकदार 2 मिलीमीटर लंबी होती है। फिर एक सफ़ेद मक्खी की मैं बात करती हूँ, सफ़ेद मक्खी भी एक कीट है जिनके शिशु जो हैं वो गोल या अंडाकार एवं हरे सफ़ेद रंग लिए होती है, और जो वयस्क हैं इनके वो 1 से 2 मिलीमीटर आकार के हल्के पीले रंग के होते हैं। तो इस आधार पर इन सारे कीटों का पहचान करना हम सुनिश्चित करते हैं।
0: जी, इनसे होने वाले क्षति के प्रमुख लक्षण क्या है?
2: देखिए, अगर सबसे पहले मैं पिल्लू की बात करूंगी कि पिल्लू से क्या आपके जो क्षति होती है उसके लक्षण क्या होते हैं, तो पिल्लू जो होते हैं वो प्रायः पत्तियों पर खुरचनुमा संरचना बना करके और दानों की फलियों को छेद करके बीज को खाती है। तो इसका जो सिर है वो अंदर की तरफ एवं शरीर का भाग बाहर की तरफ लटका रहता है। उसी प्रकार अगर तंबाकू की इल्ली की बात करते हैं तो ये मूंग की प्रारंभिक अवस्था में एक समूह में रहती है और पत्तियों के पर्ण हरित पदार्थों को खाती है, मतलब क्लोरोफिल को एक तरह से बोले खाती है, जिससे कि क्या होता है कि पौधे की सभी पत्तियां बिल्कुल जालीनुमा दिखाई पड़ने लगती है। फिर हम करते हैं चेपा की बात, जो उनका जो क्षति का लक्षण है वो इन सब से बिल्कुल अलग होता है। ये क्या करते हैं, ये कोमल तनों और पत्तियों का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां सिकुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। अक्सर सफ़ेद मक्खी की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि ये तीन प्रकार से फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इनके शिशु एवं वयस्क दोनों ही पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं, जिससे कि क्या होता है पौधे की जो वृद्धि है वो रुक जाती है और पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है तथा फूल एवं फलियां झड़ जाती है। जब ये रस चूसते हैं तो होता क्या है कि ये रस चूसने के साथ साथ एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ भी निकालते रहते हैं, जो नीचे की पत्तियों पर बिल्कुल जमा हो जाता है और अंत में क्या होता है इस पे काली फफूंद उगने लगती है। ये जो कीट है वो पीला मोजाइक बीमारी के वाहक का काम भी करते हैं। इसके अलावा ब्लिस्टर बीटल भी है जो फूलों को खाती है। ये सारे क्या है प्रमुख इनके क्षति के लक्षण है इन कीटों के
0: जी। इसके अलावा अगर हम फसलों की बात करते हैं, उनको कैसे बचाया जा सकता है इन कीटों से?
2: देखिए अगर हम नियंत्रण की बात करते हैं तो मैं कहूँगी कि हम किसान बंधु जो हैं उन्हें सबसे पहले समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए। इसके तहत चार विधि आते हैं। चार विधि में पहला है जो है वो है व्यवहारिक, दूसरा है यांत्रिक, तीसरा है जैविक एवं अंत में आता है रासायनिक विधि। तो सबसे पहले व्यवहारिक विधि की बात कर लें। इसमें क्या होता है कि बीजो उपचार बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखनी है कि समय पर बुवाई करना चाहिए। समय पर बुवाई करने से कीटों का जो प्रकोप है वो कम हो जाता है और उपज में बढ़ोतरी होती है। मूंग को अन्य फसलों के साथ बदल कर लगाने से जो कीट हैं उनका जीवन चक्र जो है वो तोड़ा जा सकता है। इसको हम फसल चक्र भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ेगी और फिर जो कीट हैं उनका प्रकोप भी कम होगा। जैसे कि धान, गेहूं या सब्जी, ये सब आप मूंग के अंतर्वर्ती फसल के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा खेत की जो साफ सफाई है उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। सुरक्षा फसल जैसे कि कुछ पंक्ति जो आप ज्वार या मक्का की भी मूंग के चारों तरफ लगा सकते हैं, इनको सुरक्षा फसल के तौर पे माना जाता है। खेत में फार्म यार्ड मैन्योर की अगर हम बात करें तो प्रति चार टन प्रति एकड़ या वर्मी कंपोस्ट 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से बुवाई से पहले डालना चाहिए। अब हम बात करते हैं यांत्रिक विधि की। यांत्रिक विधि के तहत अगर आपको पिल्लू दिख रहे हैं तो उन्हें क्या करें, आप हाथों से पकड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा जल जमाव खेतों में बिल्कुल ना होने दें, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद एक पीला चिपचिपा फंदा और नीला चिपचिपा फंदा भी आता है, जिनको कि खेतों में लगाने से जो रस चूसक कीट है जैसे कि चेपा हुआ, सफ़ेद मक्खी हुआ, ये सारे क्या होते हैं फंदे से चिपक जाते हैं। अब अगर थ्रिप्स के लिए हम नीला चिपचिपा फंदे का प्रयोग करते हैं, ये जो फंदे हैं इनको आप लकड़ी के सहारे खेतों में लगा सकते हैं। अब आप बोलेंगे इनसे होता क्या है, तो ये जो कीट हैं वो इनके रंग से आकर्षित होते हैं और गोंद लगे होने के कारण उससे चिपक जाते हैं। फिर हम यांत्रिक विधि में एक प्रकाश प्रपंच का भी हमें करना चाहिए, क्योंकि इसके उपयोग से क्या होता है किसान बंधु इसका उपयोग आराम से कर सकते हैं। 6 बजे से सायकाल से 10 बजे रात तक खेतों में 1 से 5 प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रकाश प्रपंच लगा सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो पिल्लू की वयस्क अवस्था है वो प्रकाश से आकर्षित होकर उनके नज़दीक आएगी और उसमें फंस जाएगी। फिर गंधपाश एक यंत्र है जिसमें कीटों को आकर्षित करने के लिए ल्यूड या जिसको केमिकल कहते हैं वो लगे रहते हैं, जैसे कि फली बेधक के लिए हम हेलील्यूड का उपयोग करते हैं। इनका प्रयोग भी किसान बंधु कर सकते हैं। इसके अलावा पक्षी आश्रय लगाना भी एक बहुत ही सुरक्षित उपाय है, जिससे कि जो परभक्षी पक्षी हैं वो कीटों को क्या करते हैं खाते हैं, मतलब हमारे शत्रु कीटों को पक्षी खा लेते हैं। अब हम तीसरे में जैविक विधि की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें संरक्षण की बात जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि परजीवी में ट्राइकोग्रामा है तो आप ट्राइकोकार्ड का प्रयोग करें या फिर उन्हें संरक्षित करें। जैसे कि अब अगर परभक्षी कीट, मतलब वो कीट जो हमारे दुश्मन को खाएं, उनका हमें संरक्षण करना चाहिए। ऐसे कीट को हम मित्र कीट कहते हैं, क्योंकि मित्र कीट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कीट फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो हमारे शत्रु कीट हुए। और मित्र कीट क्या करते हैं, मित्र कीट हमारे वही शत्रु कीट को खाते हैं। तो इनके अगर मैं उदाहरण की बात करूं, मित्र कीट का मैं उदाहरण दे रही हूं, जैसे कि टिकुलिया हो गया, जिसको कि लेडी बर्ड बिटल आपने नाम भी सुना होगा। इसके अलावा डाकू मक्खी हुई या फिर मकड़ी हुई, हालांकि मकड़ी को कीट में वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन ये भी हमारे मित्र हैं। सबसे अंत में रासायनिक विधि की बात करनी चाहिए, जिसमें कि मान लीजिए अगर रस चूसक कीट की हम बात करते हैं, तो आर्थिक क्षति स्तर को जब कीट पार कर ले तो उस समय क्या करना चाहिए, नीम का तेल जो है 3000 ppm या नीम बीज अर्क 5% के हिसाब से छिड़काव करें। बुआई से पहले थायामैथोक्जन, उसका आप बीज से उसको भी उपचारित कर सकते हैं, या फिर थायामैथोक्जन 25WG को 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर भी छिड़काव किया जा सकता है। सफ़ेद मक्खी के लिए बीजो उपचार करना चाहिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL से। और इसके अलावा जो पिल्लू हैं उनके लिए क्लोरेन ट्रेनिप्रोड 18.5 SC का 100 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव किया जा सकता है। इन सभी विधियों को अपनाकर हमारे किसान बंधु मूंग में लगने वाले कीटों से निजात पा सकते हैं और इसकी पैदावार भी बढ़ा सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, आज आप ये जान रहे थे खास विषय हमारा मूंग में लगने वाले कीट एवं रोग एवं उनका प्रबंधन। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे कल। नमस्कार। उन्नत कृषि
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम करियर वॉच में। और करियर वॉच में आज हम बातें करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी परेशानी के बारे में, जिसे लगभग हर विद्यार्थी जूझता है कि वो अकेले पढ़ाई करे या ग्रुप स्टडी करे। और ये परेशानी हर बच्चे को अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में होती ही है, क्योंकि कुछ बच्चा अकेले पढ़ाई करके अच्छा कर रहा है और कुछ बच्चा ग्रुप में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ग्रुप में अच्छी पढ़ाई कर पा रहा है। और हमें क्या चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हम किसी और को देख कर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि ये बच्चा ग्रुप में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो शायद मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन हर किसी के लिए ग्रुप स्टडी नहीं होता और उसी तरीके से हर किसी के लिए इंडिविजुअल स्टडी यानी कि अकेले पढ़ाई करना भी बेहतर नहीं होता है। तो क्या है आपके लिए बेहतर, ये जानने के लिए कुछ चीजें समझनी जरूरी है। सबसे पहले तो समझते हैं कि ग्रुप स्टडी के फायदे क्या है। पहला फायदा तो यही होता है कि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं वो जो भी समझते हैं वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, जिससे बहुत टफ सब्जेक्ट भी बहुत आसानी से समझ में हमें आ जाता है। इसके अलावा रिटेंशन बढ़ता है, यानी कि जब आप किसी एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, दूसरों को समझा कर पढ़ाते हैं, तो ऐसे में कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक ज़्यादा याद रहता है। मान लीजिए आपने किसी चीज़ को समझ लिया और आपने उसी टॉपिक को किसी और को समझाया, तो ऐसे में आपकी जो मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। कुछ स्टडीज़ में ऐसा भी पाया गया है कि आपकी जो रिटेंशन पावर है वो 50% तक बढ़ सकती है। और इसके अलावा जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आप थोड़ा लो भी फील करते हैं तो कोई आपका पार्टनर होता है, आपका दोस्त होता है जो आपको मोटिवेट करता है। और ग्रुप में पढ़ना मजेदार होता है, प्रेरणादायक होता है, जिससे पढ़ाई जारी रखने का मन करता है। तो एक तरीके से जो टीम का सपोर्ट होता है आपके पास वो आपको मोटिवेट करता है। और इसके अलावा आपके अंदर संचार और नेतृत्व का कौशल भी बनता है। आप ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, सवाल जवाब आपस में कर रहे हैं, विचार एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक जो कम्युनिकेशन स्किल है और लीडरशिप है ये भी डेवलप होती है। और बहुत सारे एग्जाम्स में ना अब ग्रुप डिस्कशंस को भी शामिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आप ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका फायदा आपको ऐसे एग्जाम्स में, ऐसे प्रोसेस में जाकर मिलता है। और ग्रुप स्टडीज के ऐसे नहीं है कि सिर्फ फायदे होते हैं, इसमें कुछ चुनौतियां भी होती है। जैसे कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, तो उसमें सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चा थोड़ा स्लो होगा पढ़ाई करने में, कुछ लोग ऐसा होगा जो काफी फास्ट चीजें सीख रहा है। तो इससे ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे चीजों को आधी ही सीख पा रहे हैं, क्योंकि वो देखेगा कि ग्रुप के सारे बच्चों ने तो सीख लिया पर मुझे ही परेशानी हो रहा है। तो कई बार हम शर्म की वजह से चीजें नहीं बता पाते हैं कि मुझे ये बात समझ नहीं आई है। और ग्रुप स्टडी की जो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि सारे बच्चे इकट्ठे हुए और बातें करने लग जाते हैं और वो बातें ऑफ टॉपिक हो जाती है, यानी कि आपको जिस टॉपिक पे बातें करनी थी वो टॉपिक उससे निकल कर न जाने कहाँ कहाँ की बातें करने लगते हैं, और फिर ये हमारी पढ़ाई में व्यवधान डालती है। तो ग्रुप स्टडी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि हमारा ध्यान भी बहुत ईजिली भटकता है, हम बातें करने लग जाते हैं। और यहाँ पर एक और परेशानी होती है कि समय और योजना की परेशानी होती है। सारे बच्चे एक वक्त पे फ्री नहीं हो सकते हैं और सारे बच्चों का जो गोल है वो भी एक नहीं हो सकता है। तो अगर आप जब ग्रुप स्टडी की सोच रहे हैं और सभी का टाइम प्लानिंग बिल्कुल सही है और आपका गोल भी एक ही है, तो ये परेशानी नहीं रहती है, ये बात करके सुलझाया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर आप ऐसे बच्चों के साथ ग्रुप बना ले जो कि एक ही एग्जाम को, सेम एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो ये परेशानी तो बहुत ही आसानी से सुलझाई जा सकती है। अगर आप ग्रुप स्टडी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो जरूरी है कि जो आप अपना गोल है वो क्लियर रखें और रोल्स बांट दें बच्चों में, जैसे कि कौन नोट लाएगा, कौन टाइम का ध्यान रखेगा और कौन क्या करेगा, ये चीजें आप बांट दें तो सारे लोगों में जो बातें हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बटी रहेगी। और एक और बात थी ग्रुप स्टडी की जो परेशानी होती है कि कोई बच्चा शायद पीछे रह जाकर वो शर्म से नहीं बता पाता है। तो जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो एक ऐसा माहौल बनाएं जहां पर सारे बच्चे खुलकर अपने जो परेशानी है वो साझा कर पाए, आपके दोस्त ही तो हैं जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल बनाएं जहां पर ओपन हर कोई अपने प्रॉब्लम को बता पाने में बिल्कुल सहज महसूस करे और एक अच्छी तरीके से प्लान करे। और ग्रुप स्टडी में पढ़ाई करने की भी एक समय सीमा रखें कि इतने बजे तक ही पढ़ाई करनी है, इतने बजे के बाद हमें अपने घर जाना। और इसके अलावा आप क्या करें कि बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें प्लान करें, एक टाइम लिमिट भी रखें कि हमें इतने देर तक ही पढ़ाई करनी है, ताकि छोटे छोटे ब्रेक ले और ब्रेक में जितनी बातें करनी है कर ले, जैसे ही ब्रेक खत्म हो आप पढ़ाई करने पे वापस चले जाएं। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान ना पढ़ाई पे बना रहेगा। इसके साथ ही आप एक और चीज कर सकते हैं कि जैसे ही आपकी ग्रुप स्टडी खत्म होती है तब आप ये चीजें देखें कि आपने आज क्या सीखा है, हर बच्चे ने क्या सीखा है, तो इसे ये भी पता लगेगा कि किसने कितना प्रोग्रेस किया और आज की पढ़ाई में ग्रुप स्टडी में आपने सिर्फ बातें ज्यादा की है या पढ़ाई भी की है। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो ग्रुप स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। और अब आगे हम बात करते हैं इंडिविजुअल स्टडी की, यानी कि जब आप अकेले पढ़ाई करते हैं तो क्या परेशानी होती है, इसके क्या फायदे होते हैं और इंडिविजुअल स्टडी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे ग्रुप स्टडी में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो पढ़ने का प्रोसेस होता है वो काफी अलग होता है, वो चीजों को बहुत गहरी तरीके से समझना चाहते हैं और आत्म अध्ययन करना चाहते हैं। इंडिविजुअल स्टडी के भी बहुत फायदे होते हैं जैसे कि ग्रुप स्टडी के भी फायदे होते हैं। इंडिविजुअल स्टडी के फायदे ये होते हैं कि आप अपनी गति पे पढ़ सकते हो, आपका एक पर्सनल पेस चलता रहता है। आपको अगर कोई टॉपिक बहुत टफ लग रहा है तो उसी टॉपिक को आप बार बार बार बार पढ़ सकते हो, लेकिन ग्रुप स्टडी में हर तरीके के बच्चे होते हैं, कोई तेजी से सीख रहा है, कोई स्लो सीख रहा है, तो ऐसे में जो स्लो लर्नर होता है वो थोड़ा पीछे रह जाता है। इंडिविजुअल स्टडी का एक और फायदा ये होता है कि आपके पास ध्यान भटकाने वाले तत्व काफी कम होते हैं, आप लंबे समय तक एक ही विषय पर बहुत ही डीपली बहुत गहराई से काम कर सकते हैं और आपके पास कोई और आपका ध्यान भटकाने वाला नहीं होता है। और यहाँ पर परेशानियां भी बहुत होती है, लेकिन इसके पहले हम फायदों के बारे में और बातें कर लेते हैं। जब आप अकेले पढ़ाई करते हो तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी आती है और एक आत्म अनुशासन आता है, यानी कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको पता है कि आपको खुद ही सारी योजनाएं बनानी है, आपको खुद ही समय सीमा तय करना है, आपको खुद ही अपना लक्ष्य तय करना है ताकि आपके स्किल्स मजबूत हो सके। आप टाइम पे पढ़ने इसलिए नहीं बैठते हो क्योंकि बाकी बच्चे आ गए हैं, बल्कि आप टाइम पे पढ़ने इसलिए बैठते हो क्योंकि आपके अंदर जिम्मेदारी आ जाती है, आपके अंदर आत्म अनुशासन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रुप स्टडी हमें सिखाता है कि आप कैसे एक अच्छे लीडर बन सकते हो, आपको ग्रुप टास्क बेहतर सिखाता है, ग्रुप डिस्कशन की जो एबिलिटी है वो विकसित करता है, वहीं जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आपके अंदर जिम्मेदारी आती है, आपके अंदर आत्म अनुशासन आता है और इसके साथ ही आप अपने स्टाइल में अपने हिसाब से अपनी जो रूटीन है, अपनी रणनीति है, प्लानिंग है, वो कर सकते हैं। आप अपने स्टाइल के नोट्स बना सकते हैं, आपका जो रिविजन का टेक्निक है वो अलग हो सकता है, आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाते हैं। और जब आप अकेले पढ़ते हैं तो इसके फायदे तो हमने जान लिए कि क्या क्या फायदे होते हैं, इसकी चुनौतियां भी बहुत सारी है, जैसे कि आपको तुरंत कोई फीडबैक नहीं मिलता। मान लीजिए कि आपके पास कोई कंफ्यूजन आ गया, आप किसी सवाल से परेशान हो गए तो आपको तुरंत जवाब नहीं मिल पाता है क्योंकि आपके आसपास कोई होता नहीं है। वहीं जब हम ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि जो चीजें हमने नहीं समझी हो सकता है किसी दूसरे बच्चे ने समझ लिया है, और जब हम अकेले पढ़ाई करते हैं तो इसमें ध्यान भटकने का भी खतरा रहता है। जब हम ग्रुप में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ध्यान इसलिए भटकता है कि हम किसी और टॉपिक पे अपने दोस्तों के साथ बात करने लग जाते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, आप खुद पर बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, तब तो आपका ध्यान नहीं भटकता है, बहुत ही अच्छे से गहन फोकस के साथ आप पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो हमारे पास ध्यान भटकाने के हजारों संसाधन आज के टाइम पे मौजूद है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है और बहुत सारी चीजें होती है जो हमारा ध्यान आसानी से भटका सकते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई हमें टोक देता है कि चलो फोन नीचे रखो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अकेले ही पढ़ाई करें या फिर आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है कि आप ग्रुप के साथ पढ़ाई करें, तो कैसे आप बेहतर तरीके से अकेले पढ़ाई कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक शांत और डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस ढूंढना होगा जहां पर कि आपके डिस्ट्रैक्शन की कोई भी चीज ना हो। आप अपने फोन को दूर रख दीजिए, सोशल मीडिया को तय कर लीजिए कि इस जगह पर हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर आपको लग रहा है कि किसी के आने से आपको परेशानी होती है तो आप वहां पर पहले ही बता दीजिए कि मैं भी पढ़ाई कर रही हूं, कोई भी यहां पर ना आए। तो आप ऐसी चीजें कर सकते हैं। और एक टेक्निक तो हमेशा ही इस्तेमाल करना चाहिए, फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, 25 से 40 मिनट से ज्यादा आप किसी भी चीज पर फोकस कर ही नहीं सकते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं पोमोडोरो, यानी कि हर 25 से 40 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए। आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो भी 40 मिनट करेंगे, 45 मिनट करेंगे, उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसमें गाने सुनिए, पानी पीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, उसके बाद वापस आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। इसके साथ ही आप आप एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिपीटेशन जैसी टेक्निक्स भी अपना सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले एक्टिव रिकॉल को समझते हैं। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि आप किताब बंद करके दिमाग से जानकारी याद करने की कोशिश करते हैं। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं और बिना देखे जवाब याद करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा मेहनत करता है और यही मेहनत आपकी याददाश्त को मजबूत करती है। और जब हम स्पेस्ड रिपीटेशन की बात करते हैं तो ये होता है कि एक ही जानकारी को आप थोड़े थोड़े गैप के बाद दोहरा रहे हैं। जैसे कि हमने कोई लाइन पढ़ी या फिर किसी डेट को पढ़ा तो अगले पेज पे जैसे ही हम गए तो एक बार हमने उस डेट के बारे में याद कर लिया कि हाँ इस डेट में ये हुआ था। तो जब आप एक ही चीज को, एक ही टर्म को या एक ही जानकारी को बार बार रिपीट करते हैं तो ये आपको याद रहता है। और इसके लिए एक जरूरी चीज होती है कि पहले दिन पढ़े आप, तीसरे दिन उस चीज को बिल्कुल दोहराना चाहिए, सातवें दिन आप फिर दोहराइए, पंद्रहवें दिन आप फिर से रिविजन कीजिए। अगर आप इस टेक्निक को आजमाते हैं तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से और लंबे समय तक एक किसी चीज को याद रख सकते हैं। आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि पहले दिन आपने पढ़ाई कर ली, तीसरे दिन आप उस चीज को रिवाइज कीजिए, सातवें दिन आपको फिर से रिवाइज करना है, पंद्रहवें दिन फिर से रिवाइज करना, उसके बाद आपको ये चीज लंबे समय तक याद रहेगी, आपको वो टॉपिक लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो ये चीजें भी आप जब आप अकेले पढ़ते हैं या ग्रुप में भी पढ़ते हैं तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं लंबे समय तक किसी भी चीज को याद रखने के लिए। और जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आपके पास कोई भी ये बताने के लिए नहीं होता है, कोई भी ये कहने के लिए नहीं होता है कि वाओ तुमने कितनी अच्छे से इस टॉपिक को समझ लिया है या फिर तुमने कितनी जल्दी इस काम को कर लिया है। तो खुद के लिए रिवॉर्ड्स सेट करें और छोटे छोटे ब्रेक ले और छोटी छोटी सफलताओं के बाद खुशियां खुद ही मना ले कि वाओ कितनी अच्छी बात है, मैंने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया और मैंने आज इस टॉपिक को अपने टाइम से पहले या टाइम पे फिनिश कर दिया। तो खुद ही खुश हो जाइए, तो कहीं ना कहीं आप खुद को मोटिवेट करते हैं तो आगे पढ़ाई करने के लिए आप जब अकेले होते हैं तो ये आपको काफी ज्यादा प्रोत्साहित करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर है, तो इसको जानने का समझने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने सीखने के स्टाइल को समझें। अगर आप देखकर चीजें जल्दी सीखते हैं, पढ़कर जल्दी चीजें सीखते हैं तो आप अकेले पढ़िए, लेकिन आप सुनकर चीजों को जल्दी सीखते हैं, याद रखते हैं तो आप ग्रुप में पढ़िए। जब दूसरे बच्चों को पढ़ते हुए सुनेंगे तो वहां पर आप चीजें सुन रहे होंगे, आपको जल्दी याद हो जाएगी। इसके अलावा पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करता है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तब तो आपको ग्रुप स्टडी में ज्यादा मजा आएगा, लेकिन आप इंट्रोवर्ट है तब आपके लिए ग्रुप स्टडी बहुत बड़ी परेशानी होगी, आप अकेले पढ़ना पसंद करेंगे। वहीं कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको पढ़ने के लिए बहुत गहरी एकाग्रता की जरूरत होती है, एक फोकस की जरूरत होती है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप अकेले ही पढ़ें। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे बच्चे अकेले पढ़ते हैं लेकिन वो बाद में ग्रुप में बैठकर डिस्कस करते हैं, तो इससे बहुत फायदे होते हैं। एक तो आपने किसी टफ टॉपिक को अकेले में समझ लिया, लेकिन अब आप ग्रुप में जाकर अगर कोई चीजें समझ नहीं आई तो कन्फ्यूजन दूर किया या फिर किसी और के कन्फ्यूजन को आपने दूर किया तो फिर आप चीजों को और अच्छी तरीके से समझ गए। तो आप ना जब पढ़ाई करते हैं तो सबसे बेहतर तरीका तो यही होता है कि आप दोनों ही टेक्निक को मिलाकर पढ़ाई करें, ग्रुप स्टडी भी करें, इंडिविजुअल स्टडी भी करें। जब आप इंडिविजुअली पढ़ रहे होते हैं तो आप किसी भी टफ टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस के साथ समझ रहे होते हैं, फिर उसी टॉपिक को आप ग्रुप में जाकर डिस्कस करते हैं तो आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होती है। आप पहले क्या करें कि नोट्स को अकेले पढ़ लें, फिर आप ग्रुप में जाकर जो भी मुश्किल चीजें हैं उस पर चर्चा करें, और जब आप समूह में कोई भी चीजें सीखते हैं तो उसे फिर आप वापस आकर अकेले में दोहराएं और रिव्यू करें कि आपने क्या सीखा है। और अगर कोई टफ प्रॉब्लम है तो उसे अकेले में सॉल्व करें और फिर ग्रुप में जाकर डिस्कस करें कि कैसे आपने सॉल्व किया, या फिर किसी और ने उसे सॉल्व कर लिया है तो उससे पूछें कि कैसे उन्होंने सॉल्व किया। तो किसी एक चीज पर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंडिविजुअली पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं तो भी आपको ग्रुप में डिस्कशन करना बहुत फायदेमंद आपके लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर चीजों को अलग तरीके से सीखने का, समझने का जो मौका होता है वो होता है। इसके साथ ही वहाँ पर आप अपने जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वो भी दूर कर सकते हैं। तो आप दोनों तकनीकों का इस्तेमाल करें, और दोनों ही तकनीकों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, इसलिए बेहतर है कि आप दोनों तरीकों को मिलाकर पढ़ें और ऐसे ग्रुप के साथ पढ़ें जिनका कि लक्ष्य गोल एक जैसा हो, आपके सीखने की शैली भी अगर एक जैसी हो तब तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपने आज के कार्यक्रम यानी कि करियर वॉच को देते हैं विराम। आप मुझे यानी कि अपनी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात कि स्वस्थ रहें, खुश रहें और हर रोज मेहनत करते रहें, हर रोज कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।
6: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
6: 12 साल विश्व

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
5: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीका।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के।

कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज हम बातें करने वाले हैं महिलाओं के बारे में। कहते हैं कि महिलाओं में ममता भरी होती है और कभी कभी यही ममता उनके शरीर को कमजोर बना देती है। महिलाओं को अपना ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है लेकिन उनकी आदत होती है कि वो सबका ध्यान रखेंगी और सबका ध्यान रखते रखते खुद को भूल जाती है और बढ़ती उम्र के साथ तो ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि वो मान चुकी होती हैं, मुझसे पहले मेरा परिवार है, मेरा करियर है और सबसे अंत में हूँ मैं। बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं को खुद की देखभाल की और ज्यादा जरूरत हो जाती है लेकिन तब उन्हें लगता है कि हमने तो उम्र काट ली अपनी, जो देखना था देख लिया, अब क्या जरूरत है। लेकिन तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपना ध्यान रखना क्योंकि एक उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में काफी बदलाव हो रहे होते हैं। इन बदलावों की वजह से उन्हें कई सारी बीमारियों का खतरा होता है, इसलिए जरूरी होता है कि जो महिलाएं 40 पार कर चुकी हैं या 40 की उम्र की दहलीज पर हैं, वो अपना खास ख्याल रखना शुरू कर दें। तो आइए हम जानते हैं कि इस उम्र की महिलाओं में क्या परेशानियां होती हैं। सबसे पहले तो उनके हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, जो अभी तक आपके प्रजनन स्वास्थ्य और बाहरी खूबसूरती के लिए जिम्मेदार थे, वो अचानक बदलने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं और ऐसे में महिलाओं को अनियमित महावारी और त्वचा पर उगाने वाले बाल बताते हैं कि आपके हार्मोन असंतुलित हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां बढ़ती हैं। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन जैसे हार्मोन महिलाओं की प्रजनन क्षमता के साथ साथ उनके लुक को भी प्रभावित करता है। सबसे पहले तो महिलाओं के बाल हल्के और पतले होने लगते हैं और साथ ही उनके त्वचा में लोच और कसाव की कमी दिखाई देने लगती है। बाल सफेद होने लगते हैं और त्वचा पर धीरे धीरे झुर्रियां अपना पांव पसारने लगती है। ये तो बाहरी समस्या हो गई जो एक उम्र के बाद आती ही है और इसे खुले मन से अपनाना चाहिए। बालों का सफेद होना, झुर्रियां, ये कोई अनहोनी जैसी बात नहीं होती लेकिन वक्त से पहले होना ये गलत बात है। इसके साथ ही कुछ अंदरूनी समस्याएं भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है, जैसे कि उनकी पाचन शक्ति खराब होने लगती है। 40 की उम्र की महिलाओं का पाचन तंत्र पहले से धीमा हो जाता है जिससे उन्हें पाचन से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा समस्याएं परेशान करने लगती है। 40 के पार की जो भी महिलाएं हैं या 40 की दहलीज पर जो महिलाएं हैं, उन्होंने ये अनुभव करना शुरू कर दिया होगा कि आप जिन चीजों को पहले बहुत चाव से खाती थी और बड़ी चाव से आपका पेट उसे पचा भी लेता था, अब वही चीजें आपके पेट पर बोझ की तरह पड़ी रहती है और अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो गैस, एसिडिटी और बदहजमी जैसी समस्याएं आपको बहुत परेशान करने लगती है। इसके साथ ही 40 के बाद महिलाओं को वजन के साथ भी तालमेल बिठा पाना बहुत मुश्किल लगता है। इस उम्र में हार्मोन्स तो असंतुलित होते ही हैं, साथ ही मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है जिसकी वजह से महिलाओं के पेट के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है। इस समय वजन बढ़ना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है उसे कंट्रोल करना। वजन तराजू पर अपनी तौल मजबूत करता जाता है लेकिन हड्डियां होती जाती है कमजोर। हालांकि 30 के बाद से ही महिलाओं की बोन डेंसिटी कम होने लगती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि 30 के बाद उन्हें कैल्शियम इंटेक पर, यानी कि वो कितना कैल्शियम ग्रहण कर रही है, इस पर ध्यान देना चाहिए। 40 पार करते ही एस्ट्रोजन की कमी के वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि उनकी हड्डियों में छिद्र हो जाना। इसलिए जरूरी होता है कि इस उम्र की महिलाओं को कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का लेवल भी चेक करते रहना चाहिए। अब इतनी सारी परेशानियां आएंगी, पेट गड़बड़ रहेगा, हड्डियां कमजोर हो रही है, वजन बढ़ रहा है, तो मूड स्विंग्स का तो होना बनता है। हार्मोन्स सिर्फ आपकी प्रजनन क्षमता को नहीं बल्कि आपके मूड को भी प्रभावित करता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाता है तो इस समय आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर, जो पहले आप बहुत हल्के में टाल देते थे, उस पर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत आसानी से। ज्यादातर महिलाओं के परिवार में ये शिकायत आती है कि अब वो बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई है। ऐसा उनके हार्मोन में बदलाव की वजह से होता है। ये चिड़चिड़ापन और गुस्सैल होना प्री मेनोपॉज का भी एक संकेत होता है। प्री मेनोपॉज यानी कि आपका महावारी अब बंद होने के नजदीक है और इसलिए आपको हॉट फ्लैक्स और मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी बातें तो हो गई समस्याओं की, अब इन समस्याओं का निदान क्या है, हल क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अपने मूड को कंट्रोल में करें।
ध्यान दें कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। आपके जीवन में जो भी ऐसी चीजें मौजूद है जो आपको परेशान कर रही है, उसे पहचानें और उसे अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करें। अगर आप अपने तनाव को कंट्रोल कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप प्रोफेशनल सलाह लेने से भी हिचकिचाएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी एक बीमारी है जिसका इलाज जरूरी होता है। और इन्हीं बीमारियों की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां आपके जीवन में, आपके शरीर में जगह बना लेती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मूड स्विंग्स का ध्यान रखें। और जैसे ही आप 40 पार करती हैं या 40 की दहलीज पर है, तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके लिए एक उपाय ये भी है कि आप अपनी नींद को प्राथमिकता दें। आप गहरी अच्छी नींद सोएं और जो पर्याप्त समय होता है वो अपने नींद को जरूर दें, यानी कि 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है। इसके साथ ही आप खूब सारा पानी पिए, यानी कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी की कमी भी बहुत सारी परेशानियों का जड़ होती है। अगर आप एक पर्याप्त मात्रा में सही तरल पदार्थ और जो जरूरी पोषक तत्व है उसे भरपूर संतुलित आहार लेना शुरू करते हैं, तो आपकी बहुत सारी जो परेशानी है वो धीरे धीरे खुद ही खत्म होने लगती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि पानी पिए, नींद लें पर्याप्त। अगर फिर भी आपका मूड थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो अच्छे अच्छे मधुर मधुर संगीत सुनें, किताब पढ़ें या फिर कोई ऐसी रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव चीजों में आप अपने आप को शामिल करें। आपको सिलाई बुनाई का शौक हो सकता है, पेंटिंग का शौक हो सकता है, डांस का शौक हो सकता है, जिसे अब तक आपने साइड कर दिया था क्योंकि आप अपने परिवार में, आप अपने बच्चों में उलझ गई थी। अब जबकि आप 40 की हो चुकी हैं या 40 की दहलीज पर हैं, तब तक आप अपनी ये सारी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हैं और अब आपके पास पूरा वक्त है कि आप अपने शौक को और अपने आप को समय देना शुरू करें। हमने कहा आपसे कि आप तरल पदार्थ पिए, लेकिन साथ में हमने ये भी कहा था कि सही तरल पदार्थ पिए। चाय कॉफी आपको कम कर देनी चाहिए। अगर आपको ये आदत है कि सुबह जगते ही आपको चाय या कॉफी का एक प्याला चाहिए, तो ये बहुत गलत है। आपको भले ही लग सकता है कि ये तो तरल पदार्थ है, इसमें भी पानी की मात्रा होगी, लेकिन ये आपको हाइड्रेटेड नहीं बल्कि डिहाइड्रेटेड करता है, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी पैदा करता है। सबसे पहला जो काम आप सुबह जगने के बाद करें वो गुनगुना पानी पिए, ना कि गरम गरम चाय या कॉफी के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। इसके साथ ही निकोटिन और नशीले पदार्थों से आप अपने आप को दूर कर लें। और इसके बाद सबसे जरूरी जो है वो हर उम्र के लिए जरूरी होता है और हर रोज जरूरी होता है, वो होता है थोड़ा एक्सरसाइज करना। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को एक्टिव रखें। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, ये आपको बोरिंग लगता है, तो आप डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप करें, लेकिन खुद को बिल्कुल एक्टिव रखें। हर दिन कम से कम 45 मिनट और सप्ताह में 5 दिन आपका फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, आपका वजन नियंत्रित रहता है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। और इस तरह से आप अपने आप को वक्त से पहले झुर्रियों के साथ, सफेद बालों के साथ देखने से बच सकते हैं। और ध्यान रखें कि आप खुश रहेंगी तो आपका पूरा परिवार भी खुश रहेगा। आप खुद का भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। और साथ ही अगर आपका मूड थोड़ा भी गड़बड़ लगे तो आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास होता है आपके लिए जानकारी के पिटारे के साथ साथ मनोरंजन। तो जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ।

0: का हंजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। तो आज हम भिंडी की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है डॉक्टर शिरीन अख्तर से, जो है सब्जी विज्ञान विभाग से। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद उमा। भिंडी एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। भिंडी जो है टमाटर, बैंगन, मिर्च आदि के जैसे वर्ष भर हो सकती है। वर्ष में हम लोग इसको 2 बार तो आसानी से उगा सकते हैं, कभी कभार 3 बार भी उगा सकते हैं। और भिंडी हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, इसका भरपूर मात्रा में ये सब पाया जाता है। साथ साथ में जो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये भी बहुत सारा पाया जाता है। और हमारा देश भारतवर्ष जो है भिंडी के जो है इसका फलन के लिए बहुत इस हमारा जो जलवायु है इसके अनुकूल है, और इसीलिए जो है हमारा देश अभी पूरे विश्व में जो है भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। और भिंडी जो है पूरे साल में 2 बार से लेके 3 बार भी हम उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं, तथा जो मुख्य फसल भिंडी का है वो खरीफ मौसम का है, यानी कि बरसाती जो फसल है वही भिंडी का मुख्य फसल है। और इसमें जो है भिंडी को उगाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उन्नत किस्में हैं, जैसे IIVR वाराणसी से डेवलप किया गया जो किस्म है काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, इसके साथ साथ में काशी सहिष्णु, काशी वर्धन, काशी सातधारी, काशी पराक्रम, काशी उत्कर्ष, काशी चमन, काशी लीला, ये जो है ये सारे जो है हरे रंग में, जो हमारा भिंडी है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हरे रंग में मिलता है, तो ये सारे किस्म हरे रंग की है। साथ साथ में एक नई किस्म काशी लालिमा भी जो है वो लाल रंग में उन्नत किस्म तैयार किया गया है IIVR द्वारा। ये इसके अलावा भी जो है काफी सारे संकर किस्म है, जो कि काशी वैरव है, काशी सृष्टि, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, सोनाक्षी, शक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण संकर किस्म है।
5: मैम, बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें?
7: खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जी के फलन के लिए। तो सर्वप्रथम भिंडी के लिए खेत की प्रारंभिक जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और उसके बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से कर लेते हैं। और दूसरी जुताई जिस समय किया जाता है उस समय पे जो है 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो है खेत में अच्छे से मिलाया जाता है, और अंतिम जुताई के बाद में जो है पाटा चलाकर खेत को अच्छे से समतल बनाया जाता है।
5: बुआई का तरीका क्या है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
7: जो गर्मा भिंडी है जिसको कि हम लोग फरवरी के महीने में सामान्यतः लगाते हैं, उसके लिए बीज का दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है। और अभी जो बरसाती मौसम के जो भिंडी है, जो खरीफ भिंडी अभी लगने वाली है, उसके लिए जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। और यहीं पर अगर भिंडी का संकर किस्म हम लोग लगाते हैं तो लगभग लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीज से ही वो काफी होता है एक हेक्टेयर लगाने के लिए। और साथ साथ में जो है खरीफ जो फसल है जो अभी हम लोग लगाने वाले हैं, तो ये मई के लास्ट जो है मई महीने के अंत से लेके जुलाई महीना भर हम लगा सकते हैं। और जो गर्मा भिंडी है उस भिंडी को जो है हम लोग लगभग लगभग फरवरी महीना भर लगाते हैं। और जो हम लोग बीज जब लगाएंगे तो बीज से लगाने के पहले जो है बीज को उपचार कर लेना चाहिए, और 2 से 3 ग्राम का कैप्टान या फिर 1 ग्राम बविस्टिन दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग अगर उसका उपचार कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। साथ साथ में जो भिंडी जो हमारा फसल है ये सीधी बुवाई करते हैं हम खेत में, तो बुवाई के पहले बीज को 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगो कर रखते हैं और बीज जो है फूल जाते हैं, तो उस फूले हुए बीज को हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, तो इसको कतारों में लगाते हैं। जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं, और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं। और अगर यही गर्मा भिंडी का फसल होता है तो उस समय पे हम लोग लगभग 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं, और भिंडी के जो दोनों पौधा है उस पौध के बीच का दूरी उस समय पे गर्मा के समय पे 30 सेंटीमीटर रखते हैं। खास करके गर्मा के समय पे हम देखते हैं अंकुरण थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए एक स्थान पर जो है 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं। परंतु संकर किस्मों का बीज क्योंकि महंगा होता है इसीलिए एक स्थान पर एक ही बीज की बुवाई किया जाता है।
5: मैम, खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए?
7: भिंडी के फसल के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अच्छे से मिट्टी जांच करने के उपरांत ही करना चाहिए। सामान्यतः जो हम देखते हैं अच्छी फसल लेने के लिए 150 से 200 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर 60 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर में हम लोग उसको उपयोग करते हैं। साथ साथ में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फेट एवं 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी आधी मात्रा तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय पे खेत पे मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन है उसका जो आधा शेष रहता है वो पौध जमने के बाद में 25 से 30 दिन पे, और दूसरी बार जो है बाकी आधा शेष जो है 50 से 55 दिनों के बाद में पौध में जो जड़ के पास में टॉप ड्रेसिंग के तहत से हम लोग उसको डालते हैं। इसके अलावा में जो है भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्व का भी महत्व है, और इसमें जो है कैल्शियम और बोरोन का अगर हम लोग पर्णीय छिड़काव करते हैं तो इससे उपज का क्षमता बढ़ता है, और पादप वृद्धि नियामक का भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं, और इसमें जो है जिबरेलिक एसिड और ट्राई कैंटनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे जो है अधिक उपज प्राप्त हो सकता है। और खास करके ट्राई कैंटनॉल का उपयोग गर्मा भिंडी में अगर हम लोग करते हैं तो इसमें उपज काफी बढ़ता है।
5: हम निकाई गुड़ाई और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
7: सामान्यतः तो जो है हम लोग भिंडी को जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत नमी जब रहेगा खेत में एक हल्का सिंचाई देके जिस खेत में नमी रहेगा उसी में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, बुआई करेंगे, और उसके बाद में जो है

0: खरपतवार नष्ट हो जाती है और शुरुआती फेज में जैसे जो फसल जब 40 से 45 दिन तक रहता है उस समय तक अगर हम लोग खरपतवार से अच्छे से फसल को बचा लेते हैं तब जो है उपज इसमें अच्छा मिलता है।
1: मैम अब बात करते हैं फल की तुड़ाई की, तो तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उपज कितनी होती है?
0: जब भिंडी का फल लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फल जो है कोमल रहता है और हल्के हरे रंग से या फिर गहरे हरे रंग जैसे उसका कलर जो रंग है वैरायटी वाइज जैसे रंग है उस रंग का होता है उस समय पे फल की तुड़ाई किया जाता है। और ज़्यादा दिन अगर हम फसल को खेत में छोड़ देते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा हो जाता है तो उसको खाने लायक नहीं रहता है। और ऐसे देखा जाता है जब फूल खिलता है तो उसके 3 से 4 दिन के भीतर ही भिंडी तोड़ने लायक हो जाता है और जब फसल में तुड़ाई शुरू होता है एक बार तो हर दूसरे से तीसरे दिन में भिंडी तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम लोग जो है हर दूसरे से तीसरे दिन हम भिंडी तोड़ते रहेंगे ताकि इसमें जो है ज़्यादा जो है इसमें फाइबर ना डेवलप करे और खाने लायक योग्य रहे और बहुत अच्छा सा रहे। और अगर हम लोग उचित देखभाल करते हैं अच्छा किस्म का उपयोग करते हैं सही से खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो प्रति हेक्टेयर से 120 से 150 क्विंटल हरे फल की उपज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यही अगर संकर किस्म है तो उसमें 170 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी उपज का हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भिंडी की खेती के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप अपना और अपनी फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: इतनी गंभीर बीमारी है, टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
5: जी
4: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
5: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
4: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना

रखना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें, 27 से 28 जून 2026।

0: आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं। उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं। तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ। सर आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं?
2: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से चार कीट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है, जैसे माहू जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीट उसको वो एक लीफ ओवर होते हैं, और एक है फली छेदक जिसको पॉड बोरर कहते हैं। तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं जो हरे या काले रंग के होते हैं। सफेद मक्खी भी छोटे होते हैं लेकिन ये सफेद पंख वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं। और जैसीट जो लीफ हॉपर होते हैं, इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुंचाता है। और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक जो है, इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं।
0: जी, तो सर ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
2: अच्छा, तो माहू और सफेद मक्खी ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में या तो जहां से वो रस चूसते हैं, जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है। और जैसीट जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है और इसके वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है। और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है जिससे उत्पादन घटता है।
0: तो सर फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
2: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीट प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं।
0: और इससे बचने का कोई तरीका जिसे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सके और अपने फसलों को बचा सके?
2: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं। जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफेद मक्खी है या जैसीड है। अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है।
0: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है।
2: बिल्कुल।
0: और सर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें?
2: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए। और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं। तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे, और कुछ जैविक कीटनाशी भी है, लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत जरूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे। तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे, हम लोग प्रमाणित बीज को ले और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज इसके इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें। खेत की स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा।
0: अच्छा।
2: आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30 प्रताप उड़द 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़े होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत जरूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 g प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 g प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नजदीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहां पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे।
0: जी, तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी जरूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत जरूरी होता है ना। और तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
2: यस, तो उड़द मैं एक लास्ट संदेश यही देना चाहता हूँ कि उड़द हमारे लिए बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का जरूरत है और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
0: सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद आपको भी।
0: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं धान के बारे में। धान बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और साथ ही राज्य की खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साल 2024-25 में बिहार में लगभग 99,34,000 टन धान का उत्पादन हुआ, जो राज्य के कुल अनाज उत्पादन में 40% से भी अधिक है। अगर हम इन सारी बातों को समझें तो धान हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में धान की उच्च उपज भी काफी महत्वपूर्ण होती है। उच्च उपज प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि हमारे किसान भाई बहन उन्नत किस्मों का चयन करें, साथ ही स्वस्थ और मजबूत फसलों के लिए पौधशाला प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। तो इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रुति सुमन। मैम, आप हैं सहायक प्राध्यापिका सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद उमा, सबसे पहले मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि धान की खेती में पौधशाला प्रबंधन एक आवश्यक अंग है, और ऐसा कहा जाता है कि अच्छी फसल की शुरुआत ही अच्छी पौधशाला से होती है। यदि पौधशाला में वैज्ञानिक तरीके से बीज का चयन, पोषक तत्वों का प्रबंधन, सिंचाई तथा कीट रोग नियंत्रण किया जाए तो स्वस्थ एवं सशक्त पौध तैयार होते हैं, और ऐसी पौध मुख्य खेत में रोपाई के बाद अच्छी तरह से स्थापित होती है, अधिक कल्ले भी बनाती है तथा अंततः अधिक उपज भी प्रदान करती है। इसलिए किसान भाइयों, हमारे लिए पौधशाला का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है।
0: मैम, अभी तो आपने बताया कि पौधशाला का प्रबंधन जरूरी क्यों है, लेकिन हम बात करते हैं अब पौधशाला के लिए खेत का कैसे चयन करना चाहिए। तो किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन पौधशाला के लिए खेत का चयन कर सकते हैं?
4: पौधशाला के लिए समतल, उपजाऊ और सिंचाई की सुविधा वाले खेत को चुनना चाहिए। अगर जो है हमारे पौधशाला का खेत मुख्य खेत के पास हो तो रोपाई में सुविधा होती है, साथ ही साथ धान में जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। धान की खेती के लिए जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, तो हमें वैसे खेत का चयन करना चाहिए जहाँ पे की वाटर लॉगिंग भी ना हो।
0: अगर मैम एक हेक्टेयर में रोपाई की बात करें तो एक हेक्टेयर में रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्र की जरूरत होती है?
4: एक हेक्टेयर में हमें रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र जो है वो पर्याप्त होती है।
0: और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए?
4: सामान्यतः सामान्य किस्मों के लिए 20 से 30 केजी बीज पर हेक्टेयर बीज दर होना चाहिए, और संकर धान यानी कि जो हमारे हाइब्रिड धान है उनके लिए 15 केजी पर हेक्टेयर का बीज दर पौधशाला के लिए पर्याप्त होता है।
0: जी मैम, और बीज उपचार बहुत जरूरी होता है, तो किस तरीके से बुआई से पहले बीज उपचार करना चाहिए?
4: उमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। बुआई से पूर्व बीजोपचार करना जरूरी है, क्योंकि बीज उपचार से बीज जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है और साथ ही साथ अंकुरण अच्छा होता है। इससे पौध गलन, झुलसा और अन्य रोगों का प्रकोप भी कम होता है। तो बीजोपचार करने के दो तरीके हैं। पहला तो हम नमक के घोल से बीज का उपचार कर सकते हैं, इसे लवणीय जल उपचार भी कहते हैं। लवणीय जल उपचार के लिए हमें 1.65 केजी सादे नमक को 10 लीटर पानी में उसका घोल बना लेना चाहिए, और इस घोल में बीज को डालकर अच्छी तरह से हिला देना चाहिए। इससे क्या होता है कि स्वस्थ एवं भारी बीज जो है वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के खराब और हल्के बीज ऊपर तैरने लगते हैं, और फिर ऊपर तैरने वाले हल्के एवं खराब बीज को हम बर्तन से हटा सकते हैं, और शेष डूबे हुए बीज को हमें फिर से शेष डूबे हुए बीज जो डूब जाते हैं वो स्वस्थ होते हैं, और उन्हें हमें फिर से 2 से 3 बार पानी में धोकर छाया में सुखा लेना चाहिए, ताकि इस बीज में नमक का कोई अंश ना रहे। तो इस तरह से हम लवणीय घोल बनाकर बीज का उपचार करते हैं। इसके अलावा हम रासायनिक बीजोपचार भी कर सकते हैं। रासायनिक बीजोपचार के लिए हमें सबसे पहले फफूंदी नाशी से उपचार करना चाहिए। फफूंदी नाशी यानी कि फंगीसाइड जो है वो हमें बेविस्टीन 1 ग्राम या फिर कैप्टन या थीरम ये 2.5 ग्राम पर केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए।
5: जीवाणुनाशी दवा से उपचार हेतु स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर एग्रीमाइसिन हमें 2.5 ग्राम दवा जो है उसका 10 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 केजी बीज हेतु प्रयोग करना चाहिए और इन उपचारित बीजों को हमें भींगे बोरी में रखकर 36 से 48 घंटों तक अंकुरित कराना चाहिए और इस दौरान ये जो जिस समय हम उपचारित बीज को भींगे बोरी में रखते हैं इस दौरान हमें बीच बीच में बीज पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए।
0: जी मैम, और अगर हम पौधशाला की तैयारी की बात करें तो किसान भाई बहन धान की खेती के लिए पौधशाला की तैयारी कैसे कर सकते हैं?
5: पौधशाला की तैयारी यानी कि जो है हमारा नर्सरी जो है धान के लिए 3 प्रकार से इसकी नर्सरी बनाई जाती है, वेट बेड मेथड, ड्राई बेड मेथड और डेपोग मेथड। वेट बेड मेथड यानी कि जो है वहाँ पे जनरली वहाँ पे प्रेफर किया जाता है जहाँ इरिगेटेड कंडीशन हो यानी कि जहाँ पे जल सिंचाई की सुविधा हो, और ड्राई बेड मेथड जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे ड्राई बेड मेथड, और डेपोग मेथड एक ऐसा मेथड है ऑफ रेजिंग सीडलिंग्स है जो कि हमारे देश में फिलीपींस से ये इंट्रोड्यूस किया गया है और इसकी खासियत यह है कि ये 1 हेक्टेयर के लिए इसमें कम एरिया में ही नर्सरी देना होता है, जैसे कि बस 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया में ही हम 1 हेक्टेयर के लिए इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पर हमारे बिहार राज्य में ज्यादा हमारे गीली नम विधि यानी कि वेट बेड मेथड का प्रचलन ज्यादा है, तो इस विधि से जब हम करेंगे तो इसके लिए हमें पौधशाला को तैयार करने के लिए बिचड़ा तैयार करने की प्रक्रिया जो है हमें इसमें ऐसे करने चाहिए कि हमें पौधशाला की तैयारी अच्छी तरह कदवा करके तथा खेत को समतल करके करना चाहिए। इसके लिए खेत में पानी भरकर 2 से 3 बार जुताई करें यानी कि 2 to 3 प्लॉइंग्स करना चाहिए और ताकि मिट्टी जो है हमारी कादोयुक्त हो जाए और उससे खरपतवार जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। आखिरी जुताई के बाद जब हम 3rd प्लॉइंग करते हैं तो आखिरी जुताई के बाद हमें उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करना चाहिए। जब मिट्टी की सतह पर पानी ना रहे तो फिर हमें जो है 1.5 मीटर चौड़ी लंबी क्यारी बनानी चाहिए ताकि बुआई, निराई और सिंचाई की विभिन्न शस्त्र क्रियाएं आसानी से की जा सके, और इन 2 क्यारियों के बीच में हमें 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनानी चाहिए ताकि उस नाली से हम वहां पर खड़े होकर आसानी से हम खरपतवार नाशी आदि का उपयोग कर सके और सिंचाई की क्रिया भी वहां पे कर सके। इसके बाद पौधशाला में हमें बीजोपचारित एवं अर्ध अंकुरित बीज को कदवा के ऊपर समान रूप से छींट देना चाहिए और शुरू में मिट्टी को केवल गीला रखें। जब हम उसको बीज को छींट देते हैं तो उसके बाद खेत में सिंचाई कर पहले जो है हमें पानी का 1 से 2 सेंटीमीटर तक पानी का लेवल रखना चाहिए और बाद में 4 से 5 सेंटीमीटर तक खेत में पानी को बनाए रखना चाहिए। और इस बात का हमें हमेशा किसान भाइयों आप को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि बिचड़े पानी में डूबे नहीं।
0: और मैम अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
5: 1000 मीटर स्क्वायर की नर्सरी में हमें सबसे पहले पोषक तत्व प्रबंधन के लिए 1.5 टन गोबर खाद या 200 से 300 केजी केचुआ खाद को बुआई के 10 से 15 दिन पहले डालना चाहिए ताकि मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़े तथा बिचड़े उखाड़ते समय दिक्कत ना हो। फिर 1000 मीटर स्क्वायर में बीज की बुआई के पूर्व 5 केजी नाइट्रोजन, 5 केजी फॉस्फोरस और 5 केजी पोटास को समान रूप से छिड़क देना चाहिए, को क्यारी में समान रूप से छिड़क देना चाहिए। और फिर हमें बीजों को बहुत ज्यादा अधिक गहराई में नहीं बोना चाहिए और बीज को अधिक घना भी ना गिराएं। 20 से 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर बीज की मात्रा इसके लिए उपयुक्त होती है, और अगर हम ज्यादा घना बीज गिराते हैं तो इससे बिचड़े जो हैं वो पतले और कमजोर होंगे। और इसके साथ साथ ही पौधशाला को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए ताकि जड़ों का समुचित विकास हो एवं बिचड़े स्वस्थ और मजबूत हो। इसके अलावा जो हमारी नर्सरी है उसमें कीट व्याधि का भी नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ वैसे खेत जिसमें जिंक की कमी हो उसमें हम 3रे सप्ताह में जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। इस हेतु प्रति हेक्टेयर 5 केजी जिंक सल्फेट को घोल को 2.5 केजी चूना के घोल के साथ मिलाकर 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव अगर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे जगह पे जहां पे ये छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे बिचड़ों को उखाड़ने के बाद भी रोपाई के पहले 2% जिंक के घोल में डुबाकर उपचारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम नर्सरी में पोषक तत्व का प्रबंधन कर सकते हैं।
0: मैम, अब अगर रोपने की बात करें तो बिचड़े रोपने के लिए किस समय पर तैयार हो जाते हैं?
5: रोपने के लिए सामान्यतः 3 सप्ताह के बिचड़े, जिसमें कि 4 से 6 पत्तियां आ जाती हैं, वो अच्छे माने जाते हैं। लेकिन जो है अलग प्रभेद के अनुसार बिचड़ों का जो है समय अलग अलग होता है। तो जहां पर हम बात करेंगे जो शीघ्र पकने वाली प्रभेद होती है, जो कि हम ऊपरी जमीन यानी कि अपलैंड में लेते हैं, वो जैसे कि इस प्रभेद में एग्जाम्पल में आप जानते होंगे सौबर, दीप, सहभागी, शुष्क, सम्राट, इन प्रभेदों का बिचड़ा जो है जब वो 20 से 22 दिन का हो जाता है तब तैयार होता है। जबकि मध्यम जमीन हेतु और जो यानी कि मीडियम लैंड और जो मध्यम अवधि में पकने वाले ऐसे प्रभेद होते हैं, वो जैसे कि राजेंद्र, श्वेता, सबौर अर्ध जल, इनका बिचड़ा जो है 25 से 30 दिन का समय लेता है। फिर निचली जमीन हेतु देर से पकने वाली प्रभेद जो होते हैं, उनमें सबौर श्री, राजेंद्र मैसूरी वन, स्वर्णा सब वन, इनके लिए जो है 25 से 30 दिन का बिचड़ा लेना चाहिए।
0: तो किसान भाई बहन, मैम के द्वारा बताई बातों का ध्यान रखें और धान की अच्छी पौधशाला तैयार करें, ताकि आपके धान की फसल भी निरोगी और स्वस्थ हो। तो मैम, आपने जो जानकारी दी, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी उपयोगी साबित होगी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद उमा।
0: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
1: क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
6: जी
1: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
6: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
8: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
10: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
9: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
10: 11 दोस्त?
9: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
10: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
9: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
10: लेकिन ऐसा क्यों?
9: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
10: टीकी तो इसका हल क्या है?
9: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी सिलेंस की जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
10: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
11: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
8: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
11: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
8: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम जो आप सुनते हैं जी हां 90.8 मेगाहर्ट्ज FM ग्रीन पर। तो आज भी उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बहुत सारी बातें लेकर आए हैं और फीचर्स की बात करते हैं। तो आज खेती में अलग अलग प्रकार के फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं जो वैज्ञानिक हैं जिनका आविष्कार करते हैं, और उन्हीं में से एक है ड्रोन। जी हाँ, कृषि के लिए कैसे उपयोग में आता है और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें आज हमें बताएंगे डॉक्टर CK पांडा। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है जी हाँ एक्सटेंशन एडुकेशन ये डिपार्टमेंट है और साथ ही ये बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से है। तो डॉक्टर साहब आज हमें बहुत सारी बातें बताने वाले हैं ड्रोन के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि ड्रोन क्या होता है।
2: नमस्कार किसान बंधु, नमस्कार अनु जी। आज हम एक बात करेंगे आप सभी किसान बंधु के साथ, एक नया जो ड्रोन जो है, ड्रोन इतना पुराना नहीं है, इतना नया नहीं, बहुत पुराने जमाने से इसका काम चल रहा था, लेकिन खेती में इसका जो यूज है तो वो अभी ज्यादा यूज करने के लिए व व्यवहार करने के लिए गवर्नमेंट ज्यादा एम्फेसिस भी दे रहे हैं। लेकिन ये बात बोलने से पहले ये हम लोगों को पता होना चाहिए ड्रोन है क्या। देखिए, ड्रोन इसको हम बोले तो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसका मतलब हुआ एक मानव रहित उड़ान जान है। इसका मतलब ये हवा में उड़ते रहेंगे जिसके अंदर कोई आदमी नहीं रहेगा। जो एक जगह से दूसरे जगह से हवा में उड़ते उड़ते जाएंगे और उसका काम होगा, जो काम के लिए उसको लगाया जाएगा, मतलब जिस काम के लिए उसको यूज किया जाएगा वही काम वो करते रहेगा।
0: अब जैसे लोग कभी कभी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं आजकल, ज्यादातर पर्पस अगर देखा जाए तो ड्रोन का इस्तेमाल वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए ही किया जाता है, या फिर मैप देखने के लिए किसी शहर का, देश का, ऐसे। तो ये ड्रोन का इस्तेमाल अलग अलग पर्पस से किया जाता है, अलग अलग काम है इसके। तो डॉक्टर साहब ये तो बातें हो गई ड्रोन की, ये क्या है, ये उड़ता है, इसमें किसी भी इंसान को इसके साथ उड़ने की जरूरत नहीं है, बस कंट्रोल करना होता है रिमोट के सहायता से। जी, तो अब एग्रीकल्चर ड्रोन के बारे में हम जानना चाहेंगे, एग्रीकल्चर में ड्रोन क्या है?
2: देखिए, जब ड्रोन पर्टिकुलरली हम लोग कृषि के लिए व एग्रीकल्चर के लिए यूज करेंगे तब उसको एग्रीकल्चर ड्रोन हम बताएंगे। मतलब एग्रीकल्चर में बहुत तरह का ऑपरेशन होता है, जैसे इरिगेशन बोलिए, जैसे मतलब सिंचाई बोलिए, जमीन में बहुत तरह कीड़े मकोड़ा का अटैक होता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बात रहता है। जैसे आप बता रहे थे ऊपर से जमीन को देखने के लिए डिफरेंट काम होता है, उस काम के लिए जब ड्रोन को हम यूज करेंगे तब उसको एग्रीकल्चर हम ड्रोन बताएंगे।
0: जी जी जी, तो ये कितने प्रकार का ड्रोन होता है?
2: हाँ देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप होता है उसके आधार पर जो ड्रोन का जो कॉन्फ़िगरेशन बोलिए वो भी चेंज होता है। तो इसके एक्चुअली जो तीन तरह का इशू है जिसके आधार पर ड्रोन को जो टाइप्स बोलिए कैटेगरी बोलिए उसको डिवाइड किया जाता है। वो कितना ऊंचाई तक उड़ सकता है, उसका पेलोड मतलब कितना किलो तक वो बहन कर सकता है, और फ्लाइंग टाइम कितना समय तक उड़ सकता है। तो इसके आधार पर ऑल टुगेदर आपको 7 तरह का ड्रोन मिलता है। जैसे माइक्रो एयर व्हीकल होता है, ये ज्यादा एल्टीट्यूड नहीं जा सकता है, लेस देन 330 मीटर तक, उतना तो ऊंचाई में जा सकता है, और इसका फ्लाइंग टाइम होता है 5 से 30 मिनट का। दूसरा होता है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग तरह का ड्रोन होता है। तीसरा होता है लो एल्टीट्यूड शॉर्ट एंड्यूरेंस ड्रोन बोलते हैं, ये 1 से 2 घंटा तक उड़ान दे सकते हैं। तीसरा होता है लेजर क्लोज, और जो आपका क्या बोलते हैं 1500 मीटर तक एल्टीट्यूड तक उड़ाई कर सकते हैं, और दूसरा है लो एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्यूरेंस जो एक होता है, ये हाई कैपेसिटी मतलब ज़्यादा पेड लोड इसको ले सकता है, और सिक्स जो होता है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस वाला ड्रोन होता है, ये 9000 मीटर एल्टीट्यूड तक जा सकता है, लास्ट जो फाइनल हम सातवां बोल रहे हैं, ये हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाला ड्रोन होता है। एक आपका जा सकता है 20,000 मीटर तक। तो ये इस तरह से डिफरेंट टाइप का ड्रोन होता है, उसका यूज देखिए ज्यादा से ज्यादा ड्रोन का यूज होता है मिलिट्री में। लेकिन अभी देखिए गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है, तो एग्रीकल्चर में इस ड्रोन का भी जो यूज है ना, धीरे धीरे उसका भी बढ़ता है। और आप देखेंगे हमारा प्राइम मिनिस्टर लास्ट जो पार्लियामेंट में अपना स्पीच दे रहे थे, उस समय उन्होंने भी स्पेशल एम्फेसिस दिए थे जो खेती में ड्रोन को हम लोग कितने ज्यादा यूज कर सकते हैं।
0: जी, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है डॉक्टर साहब, ये बताइए।
2: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी काम करता है। देखिए ड्रोन के अंदर एक नेविगेशन सिस्टम रहते है, जो नेविगेशन मतलब होता है दिशा निर्देशन प्रणाली, जैसे मतलब किस तरह वो जाएगा, और लेता है जीपीएस। अभी तो हम लोग सबको पता है जीपीएस लोकेशन के आधार पर, कोई लोकेशन का एल्टीट्यूड लेटीट्यूड जो भी होता है जीपीएस के आधार पर होता है। और इसमें कुछ मल्टीपल सेंसर रहता है, मतलब मल्टीपर्पज जो सेंसर बोलते हैं। सेंसर मतलब क्या होता है, उसका काम डिफरेंट तरह का होता है। जैसे मान लिया मॉइस्चर को सेंस करना, मिट्टी में जो मॉइस्चर होता है उसको सेंस करना। जैसे आपका मान लीजिए कुछ वेजिटेशन है, उसको उसका कलर क्या होगा उसको सेंस करना। इस तरह का डिफरेंट टाइप रहता है। और हाई क्वालिटी कैमरा रहता है, कैमरा का बहुत बड़ा मायने रखते हैं। जैसे कैमरा में वो डायरेक्टली पिक्चर खींचते हैं, वीडियो डायरेक्टली रिमोट कंट्रोल में जो उसको कंट्रोल किया जाता है, तो ग्राउंड सिस्टम को वीडियो भी सपोर्ट करता है, पिक्चर भी सपोर्ट करता है, वो अपना जरूरत के आधार पर। और टोटल जो काम होता है प्रोग्रामिंग सिस्टम के आधार पर काम होता है इसका। और आप देखेंगे अभी जो प्रेसिशन एग्रीकल्चर चलता है, प्रेसिशन फार्मिंग हम लोग जो बोलते हैं, तो प्रेसिशन फार्मिंग में ड्रोन का यूज सबसे ज्यादा हो रहा है।
0: जी, अगर खेती की बात करें तो खेती में ड्रोन किस काम में उपयोग होता है?
2: हाँ देखिए, खेती में हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज रहता है। एक नंबर जैसे मतलब सिंचाई भी, सिंचाई निगरानी करना है, जैसे हमारा जमीन का मॉइस्चर कितना लेवल तक है। जैसे देखिए कुछ कुछ जगह पर होता है, जैसे बिहार में ताल एरिया है, ताल एरिया में देखिए जब रोबी सीजन होता है मसूर चना हेक्टर सेक्टर हेक्टर लैंड में कल्टीवेशन होता है, आबादी होता है, खेती होता है। लेकिन उतना दूर तक 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर किसान को जाना भी दिक्कत हो जाता है। लेकिन मॉइस्चर लेवल उसका क्या हालत है, उसको देखने के लिए स्पेशल सेंसर के साथ ड्रोन को भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बता सकते हैं यहाँ पर सॉयल का मॉइस्चर लेवल क्या है, उस आधार पर अभी इरीगेशन देने का जरूरत है कि नहीं है वो हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा है, आप देखिए फसल का जो स्वास्थ्य है, जैसे क्रॉप हेल्थ बोलते हैं ना, क्रॉप हेल्थ को मॉनिटरिंग करने के लिए और सर्वेलेंस करने के लिए। देखिए क्रॉप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कीड़ा मकोड़े बीमारी का अटैक जो होता है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए, तो जमीन में कोई कीड़े का मकोड़े का जैसे इंसेक्ट पेस्ट बोलते हैं डिजीज का कुछ अटैक हुआ कि नहीं हुआ, वो देखने के लिए आराम से आप ड्रोन को भेज से देख सकते हैं। क्योंकि प्री प्रोग्राम रहता है ड्रोन में, प्री प्रोग्राम रहता है, वो क्या करता है उसका इमेज लेते हैं, इमेज लेने के बाद वो अपने से अपना जो सिस्टम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बोलते हैं उसके आधार पर आइडेंटिफाई करके देखते हैं, हाँ इसमें कुछ तरह किस तरह का कीड़े मकोड़े का अटैक हो रहा है और उसका कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर देना चाहिए, इस तरह का वो सपोर्ट करता है। और इसके बाद आपका जैसे फील्ड सॉयल का एनालिसिस, मतलब जमीन का जो मिट्टी होता है उसको एनालिसिस करने के लिए भी इसके अंदर मल्टीस्पेक्ट्रल एक सेंसर कुछ रहता है, तो मल्टीस्पेक्ट्रल जो सेंसर रहता है ना वो 3D मैपिंग भी कर सकते हैं, तो उसके आधार पर भी सपोर्ट करते हैं। और आप रहता है जैसे मान लिया अभी एग्रीकल्चर छोड़ के आप बोले तो लाइफ स्टॉक ट्रैकिंग में, जो लाइफ स्टॉक जैसे डिफरेंट जो ग्रेजिंग हो रहा है, कैटल वगैरह जो ग्रेजिंग एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो उसको भी मॉनिटरिंग करने के लिए आपका काम ड्रोन करता है।
0: जी जी, तो अगर इसका उपयोग करते हैं तो लाभ क्या मिलेगा हमें खेती में?
2: हाँ देखिए बहुत तरह का लाभ मिलता है। पहली बात है हम क्रॉप को ठीक से मैनेज कर पाएंगे तो क्या होगा, यील्ड ज्यादा होगा।
0: जी,
2: तब नंबर वन हम बोल सकते हैं उत्पादन जो बोलते हैं यील्ड जो क्रॉप का है वो बढ़ जाएगा। दूसरा है क्या होता है ना, इफेक्टिव एंड एडाप्टिव टेक्निक जो बोलते हैं, प्रभावी और अनुकूल जो टेक्निक होता है, जैसे मतलब हम खेती करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक को यूज करते हैं, वो टेक्निक को कैसे हम जमीन तक लेके जाएंगे उसके लिए ड्रोन का जरूरत पड़ता है। और तीसरी बात हो रहा है फार्मर का सेफ्टी। देखिए आप हम सब लोगों को पता है जो किसान लोग जमीन में जब कीड़े मकोड़ा का अटैक होता है स्प्रे करता है, पेस्टिसाइड स्प्रे करता है, लेकिन पेस्टिसाइड जब स्प्रे करता है उसमें उसका जो शरीर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है, तो जितना भी कोशिश की जितना भी प्रोटेक्शन ले, लेकिन उसको इनहेल करना पड़ता है। तो एयर के साथ जो ड्रॉपलेट होता है ना, पेस्ट के पेस्टिसाइड का जो ड्रॉपलेट होता है ना, शरीर के अंदर आ जाता है। लेकिन अभी के जमाना में आपको मिल जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रोन मिलता है जो स्प्रे करता है, अर्थात कीड़े मकोड़ा को कंट्रोल करने के लिए वो स्प्रे कर सकता है। तो इसमें फायदा क्या हो रहा है? इसमें फायदा आपका यही हो रहा है, बिना कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ आप आराम से जमीन में क्रॉप में इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए स्प्रे कर सकते हैं। और रिसोर्स जो बोलते हैं, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, रिसोर्स कंजर्वेशन में इसका बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। दूसरी है, अभी देखिए इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, हर जमीन का किसान का तो क्रॉप इंश्योरेंस लेना, क्रॉप डैमेज हो गया, लेकिन क्रॉप डैमेज हो गया उसको मान लिया एक 50 हेक्टर एरिया में है, तो 50 हेक्टर एरिया में हर पॉइंट में जाके देखना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप एक ड्रोन को भेजिए, आप जैसे बोल रहे हैं कुछ वीडियो लेना है, इमेज लेना, आराम से वीडियो व इमेज लेके आराम से आपको दे सकता है, हाँ इस लोकेशन में आपका क्रॉप का डैमेज हुआ है। तो क्रॉप इंश्योरेंस के लिए भी आप ड्रोन को यूज कर सकते हैं।
0: और अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के बारे में, तो ड्रोन के उपयोग को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या कुछ पॉलिसी है?
2: हाँ, रिसेंटली आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया जो जनवरी में 22 जनवरी 2022 में एक प्रेस रिलीज किए हैं, तो हमारा जो कृषि मंत्रालय है, तो उस कृषि मंत्रालय से एक सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं SMAM, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी फुल स्विंग पर किसान बंधु को ड्रोन के आधार पर सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है अभी खेती में अर्थात एग्रीकल्चर में ड्रोन व्यवहार करने के लिए यूज करने के लिए पूरा सपोर्ट है, और इसके लिए वित्तीय सपोर्ट देने के लिए भी गवर्नमेंट तैयार है।
0: जी सर, तो कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
2: देखिए, कोई भी ड्रोन परचेज करेंगे तो 100% और मैक्सिमम 10 लाख, मतलब 10 लाख तक आपका सपोर्ट मिल जाएगा ड्रोन परचेज करने के लिए। लेकिन ये छोड़ के मान लिया किसी ने ड्रोन परचेज नहीं किया है, कोई एजेंसी है तो ड्रोन किसान को सपोर्ट करना चाहते हैं, उस आधार पर कोई एजेंसी इसको करने चाहेंगे तो पर हेक्टर में गवर्नमेंट ने 6,000 रुपया सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। तो आप ड्रोन को यूज कीजिए, उसके लिए आप 6,000 रुपया तक पर हेक्टर में गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए तैयार है।
0: जी, और डॉक्टर साहब, अभी आप एजेंसी की बात कर रहे थे जो उपलब्ध कराता है किसानों को खेती के अगर पर्पस से ड्रोन ले रहे हैं, तो ये कौन कौन सी एजेंसियां हैं, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए?
2: हाँ हाँ, बताते हैं। एजेंसी है फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है, ICR का जितना भी इंस्टीट्यूट है वो है, कृषि विज्ञान केंद्र है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट भी इन सब इंस्टीट्यूट को इनकरेज कर रहे हैं, आप ड्रोन परचेज कीजिए, जिसके लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया आप किसान लेवल पर उसको लेके जाए। और एक बात है, आप सबको पता होगा हमारा सिस्टम में कस्टम हायरिंग सेंटर है।
0: अच्छा।
2: कस्टम हायरिंग सेंटर है जो डायरेक्टली गाँव में काम करता है, हाईटेक हाफ है, ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स है, कुछ स्टार्टअप है, वो लोग भी किसान के लिए ड्रोन परचेज करके किसान के लेवल में ड्रोन को सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट भी टोटल आपका सपोर्ट करे। उसके साथ और भी हम एक बताते हैं, लास्ट एक टॉक में हम बता रहे थे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मान लिया कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ड्रोन परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर, 75% तक सब्सिडी गवर्नमेंट वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को देने के लिए तैयार है। तो आप कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं जो ड्रोन खेती में ले जाने के लिए गवर्नमेंट टोटल सपोर्ट करने के लिए तैयार है। नॉट ओनली दैट, ये छोड़ के भी मान लिया कोई गांव का कोई रूरल यूथ है, वो भी चाहते हैं अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए ड्रोन के आधार पर कुछ करना चाहते हैं, उसके आधार पर भी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जैसे 50% तक, जैसे 5 लाख तक तो उसको फाइनेंशियली गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगे और ड्रोन वो परचेज करेंगे, उसके बाद जमीन किसान का जमीन में मान लिया कुछ फील्ड ऑब्जर्वेशन करने के लिए कोई दवा वगैरह छिटकाने के लिए उस पर काम करना चाहे तो उसके लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है।
0: जी,
2: अच्छा, इस आधार पर और एक चीज हम बता देते हैं आप सबको, वो है अभी ड्रोन के लिए जो SOP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है उसके बारे में बता देता हूँ। ड्रोन रूल्स 2021 भाईट GSR नंबर 58 589E डेटेड 25th अगस्त 2021 इसमें डिटेल्स ड्रोन कैसे आप यूज कर सकते हैं, क्यों देखिए ड्रोन ऐसा ही हवा में फ्लाई करता है, वो कोई दूसरे को कुछ इंटरफेरेंस ना करे, उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो रूल्स रेगुलेशन जो हम बोलते हैं एसओपी ऑपरेटिंग जो बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीड्योर है जो मैंने बताया ड्रोन रूल्स 2021, उसके आधार पर उसमें डिटेल्स है। तो वो पढ़ के भी जो भी एजेंसी है वो अपने से आराम से काम कर सकते हैं। तो कंक्लूशन में हम तो यही बताएंगे, जो जब गवर्नमेंट आपको इनिशिएटिव ऑलरेडी ले लिए है और फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए तैयार है
0: जी।
2: तो अभी किसान बंधु और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जैसे ICAR इंस्टीट्यूशन बोलिए, KVK बोलिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोलिए, कस्टम हायरिंग सेंटर जो भी एजेंसी है उन सबको आगे बढ़ना चाहिए, किसान बंधु को भी आगे बढ़ना चाहिए। ड्रोन को हम एग्रीकल्चर में जितना यूज करेंगे उतना ही अच्छा है, इसमें फायदा ही होगा, अल्टीमेटली आपका क्रॉप का यील्ड बढ़ेगा और जो रिसोर्स यूज है वो उतना ही घटेगा।
0: जी जी, तो किसान भाइयों यहाँ पर आपने सुना कि क्या कुछ फायदे हैं ड्रोन के अगर खेती में आप उपयोग करते हैं तो, और वित्तीय सहायता भी आपको मिल ही रही है, तो क्यों ना आप भी इसका लाभ उठाएं। तो जी हाँ, इसी बात के साथ, इसी विचारों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: उन्नत कृषि या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीकों, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको, क्यों इतने जीरो?
4: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ये पिन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो महिलाएं होती है ना, ये जो लेडीज होती है जिनके बारे में कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन कभी आपने सोचा है कि लेडीज फर्स्ट कहने की नौबत क्यों आई? और क्या अभी भी समाज में ये लोग मानते हैं कि लेडीज फर्स्ट यानी कि स्त्रियों को पहले मौका मिलना चाहिए? जी नहीं, आज भी हमारा समाज उसी पुरानी सोच में जकड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि समाज ने अपने सोच के ऊपर एक बदले हुए रवैया का परत चढ़ा लिया है, लेकिन आज भी उसके अंदर सोच वही है। अगर ये सच नहीं है तो ये भी सच नहीं होता कि घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर

आज भी हमारा समाज लेडीज फर्स्ट को समझ पाया है, चलो लेडीज फर्स्ट ना सही पर स्त्रियों को पुरुषों के बराबरी का अधिकार मिल पाया है? जी नहीं। अगर आपको लगता है कि आज स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का हक मिलता है तो आप जमीनी सच्चाई से बहुत दूर है। हाँ, वक्त बदल रहा है, बहुत जगहों पर स्त्रियां अपना परचम लहरा रही हैं, उन्हें बराबरी का मौका मिल रहा है और कुछ जगहों पर तो वो काफी आगे निकल चुकी हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां अभी भी काम करना बाकी है। लोगों को ये समझना बाकी है कि स्त्रियां और पुरुष दोनों एक समान होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के अनुसार 2012 से 2022 के बीच करीब घरेलू हिंसा के 13 लाख मामले सामने आए और लगातार ऐसी घटनाओं के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये तो वो महिलाएं हैं जो थाने तक पहुंची, बहुत सारी महिलाएं तो थाने तक पहुंचती ही नहीं है, उन्हें लगता है कि घर की बात घर में होनी चाहिए। अगर घर पर उनके साथ घरेलू हिंसा होती भी है तो वो सह लेती हैं घर की इज्जत बचाने के लिए, लेकिन घर की इज्जत बचाते बचाते वो अपना स्वाभिमान खो बैठती हैं। और इन महिलाओं के लिए उनका घर भी सुरक्षित नहीं रहता, उन्हें पता नहीं होता है कि अगले दिन उनके साथ क्या होने वाला है। आंकड़े बताते हैं कि मानसिक और शारीरिक हिंसा की दीवारें आज भी उतनी मजबूत है, समाज चाहे जितना भी आगे बढ़ने का दावा करता हो। दोस्तों, घरेलू हिंसा के कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि आज भी लोगों को लगता है कि स्त्रियां पुरुषों से कम है, ज्यादा ना हो पर बराबर की तो है, बराबर का मौका तो उन्हें मिलना चाहिए। और दूसरी बात, दहेज प्रथा। दहेज के बारे में कितने कानून हैं, दहेज से जुड़े हुए बच्चे स्कूल में कितना पढ़ते हैं लेकिन वही बच्चे बड़े होकर दहेज लेते हैं। और विडंबना ये है कि लड़की वाले खुशी खुशी दहेज देते हैं, लड़की के जन्म के साथ ही उनके दिमाग में जो पहली सोच होती है कि इसके लिए मुझे इतने दहेज इकट्ठा करने होंगे। हमने दहेज जैसी समस्या को कितना आम बना दिया है कि ये हमें अब समस्या लगती ही नहीं है। कोई समस्या तभी खत्म होगी जब उसे हम समस्या समझेंगे। दहेज की वजह से बहुत सारी औरतें आज भी घरेलू हिंसा का शिकार होती है और कई औरतें तो अपनी जान से हाथ धो बैठती है। इसके बाद आता है शराब या नशा। शराब या नशे की वजह से भी घरेलू हिंसा का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, क्योंकि नशे की हालत में फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो वो जानवर से भी बदतर हो जाता है और फिर वो हिंसक व्यवहार करता है। और जब घरेलू हिंसा की बात आती है तो ज्यादातर पुरुष नशे की हालत में ही घरेलू हिंसा को अंजाम देते हैं और कई बार पुरुषों पर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता भी घरेलू हिंसा का कारण बन। महिलाएं जब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती हैं तो फिर उनके साथ कुछ भी हो वो सहती रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जाएंगी कहाँ, करेंगी क्या। और कई बार जागरूकता की भी कमी होती है। हम अपने आसपास जैसे लोगों को देखते हैं, जैसे माहौल को देखते हैं, हमें लगता है कि वही सच है। और जब आसपास घरेलू हिंसा आम हो तो ऐसे में महिलाओं को लगता है कि यही जीने का तरीका है, वो इसे मानकर अपने जीवन को जीने लगती है। और अगर कुछ महिलाओं को ये पता है कि ये गलत है, जो हो रहा है उनके साथ वो सही नहीं है, तो भी वो चुप रह जाती हैं, क्योंकि घर की बात घर में होनी चाहिए, घर की इज्जत को बचाना है। ये तो कारण हो गए कि किन किन वजहों से घरेलू हिंसा होते हैं। और घरेलू हिंसा से बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले तो जागरूकता। महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि अगर उनके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो भी उसी चीज में ढल जाएं। उन्हें आवाज उठाना चाहिए और ये बात कि अगर हम बाहर जाएंगे तो घर की इज्जत उछलेगी। कौन से घर की इज्जत? घर तो वो होता है ना जहाँ आप सुरक्षित महसूस करते हैं, घर तो वो होता है ना जहाँ आप थके मांदे आते हैं और कोई आपको पुचकारने वाला मिलता है, कोई आपका ख्याल रखने वाला मिलता है। लेकिन ये कैसा घर है कि जहाँ हर रोज हर पल आप आतंक में जीते हैं कि न जाने अगले क्षण आपके साथ क्या हो जाए, न जाने कौन आपको क्या बोल दे, न जाने कौन आप पर हाथ उठा दे। उस घर को घर कहना उचित है क्या? यकीन मानिए समाज आपका साथ देगा जब आप अपने लिए आवाज उठाएंगी। यकीन मानिए आपके या आपके घर की इज्जत खराब नहीं होगी अगर आप अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, बल्कि आपके आसपास की लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी। ना जाने कितनी सारी लड़कियां, अगर आपकी कोई बेटी है या फिर आपकी बहन है तो उसे भी ये समझ आएगा कि घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अगर आप चुप रहती हैं तो सिर्फ आप अपने आप को नहीं बल्कि अपने आसपास की लड़कियों को भी चुप रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसके अलावा शिक्षा बहुत जरूरी है। जब लड़कियां पढ़ती है और उनमें ये आत्मविश्वास होता है कि वो अपने बल पर अपना जीवन यापन कर सकती हैं तो फिर वो मजबूर नहीं होती है घरेलू हिंसा को सहने के लिए। इसके अलावा परिवार और समाज का सहयोग बहुत जरूरी है।
अगर आपके परिवार में किसी के साथ

0: घरेलू हिंसा हो रही है तो आपको भी आवाज उठाना चाहिए। अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो आप बराबर के जिम्मेदार हैं। समाज के तौर पर भी हमारा फर्ज बनता है कि अगर अपने आसपास ऐसी कोई स्थिति देखे, ऐसी किसी औरत को देखे, तो उसके हक के लिए, उसकी मदद के लिए आगे आए हम, तभी एक बेहतर समाज बनेगा ना। कल को आपके साथ ये हो सकता है, कल के आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ ये हो सकता है। इसे रोकने के लिए आपको एक बेहतर समाज बनाना ही होगा। इसके साथ ही अगर आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके आसपास किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप महिला हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि 181, 112। इसके अलावा अगर हम भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में एक नंबर है 9771468006, यानी कि 9771468006। इस पर आप फोन कर सकते हैं और उनसे मदद मांग सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया 181, 112, इन नंबरों पर भी आप फोन कर सकते हैं। आप एनजीओ से मदद ले सकते हैं, आप महिला संगठन से जुड़ सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। और कई बार ये होता है कि काउंसलिंग से भी चीजें ठीक हो जाती है। जी हाँ, कई बार घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा नहीं होती है और घर के लोगों की और स्त्रियों की काउंसलिंग करके भी घरेलू हिंसा जैसे मामलों को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे जरूरी है समय पर शिकायत दर्ज कराना। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आप किसी अपने परिचित के साथ, जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे मदद मांगिए। इसके अलावा अगर लगे कि आपको शिकायत दर्ज कराना चाहिए तो बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। आपके साथ अभी जो हो रहा है उसके आगे क्या, कितना बुरा, कितना बड़ा हो सकता है आप नहीं जानती है। घरेलू हिंसा में स्त्रियों की मौत तक हो जाती है, इसलिए समय पर शिकायत दर्ज कराना बहुत जरूरी है। अगर हम कानूनों के बारे में बात करें, हालांकि कानून तक पहुंचने से पहले महिलाओं को अपनी सोच से लड़ना होगा, समाज को अपनी सोच से लड़ना होगा, और ये समझना होगा कि घरेलू हिंसा कोई किसी के खिलाफ नहीं कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हालांकि हमारे समाज में स्त्रियों को घरेलू हिंसा का सामना ज्यादा करना पड़ता है, और महिलाओं को ये समझना होगा कि ये उनकी किस्मत नहीं है, ये उन्होंने खुद चुना है। आप अगर अभी कदम बढ़ाएंगे तो आप अपनी किस्मत खुद बदल लेंगी, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। अगर हम कानूनों की बात करें, घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए 2005 में एक कानून आया था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ये कानून महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा से सुरक्षा दिलाता है। इसके अलावा कई बार महिलाओं को ये भी डर रहता है कि अगर वो शिकायत करेंगी तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा, फिर वो जाएंगी कहाँ, वो रहेंगी कहाँ। तो ये कानून महिलाओं को घर में रहने का अधिकार देता है और ये कानून महिलाओं को संरक्षण देता है। इसके अलावा ये कानून महिला को भरण पोषण और मुआवजा से जुड़े भी सुरक्षा मुहैया कराता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कानून हैं, लेकिन कानून तक पहुंचने से पहले जरूरी है कि हम अपने अंदर के जंजीर को तोड़े, हम अपने अंदर के बंधन को तोड़े कि हमें चुप नहीं रहना है, हमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना है। अगर आज आप चुप रह जाएंगी तो आपकी बेटी, आपकी बहन या फिर आपके आसपास की लड़कियां भी कल को चुप रह जाएंगी कि उनके साथ भी तो यही हुआ था, वो चुप रही और उनका जीवन चल तो गया। उस इंसान के साथ, उस घर में रहकर क्या फायदा जिनके साथ आप सुरक्षित ही नहीं है। याद रखिए कि घरेलू हिंसा निजी मामला नहीं है कि घर की बात है, घर में निपटा लेंगे, नहीं है। ध्यान रखिए, घरेलू हिंसा एक कानूनी अपराध है। चुप रहना समाधान नहीं है, बल्कि आवाज उठाना ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। आप शुरुआत में ही आवाज उठाएंगे तो ये बातें आगे नहीं बढ़ेगी। और पुरुषों के लिए सबसे जरूरी सलाह कि स्त्रियों को अपने से कम आंकना बंद करें, और वो जो पिता है, भाई है, वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इस काबिल बनाएं कि कल को उन्हें घरेलू हिंसा चुप होकर ना सहना पड़े। तो आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। सुरक्षित रहे, खुश रहे और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। लेडीज
1: फर्स्ट। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते। और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
4: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
4: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
4: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: खाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर है। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
7: जी
6: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
7: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
6: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम बात करने वाले हैं तिल की फसल में कीट प्रबंधन के बारे में और इस बारे में हमारे साथ आज बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ऋचा कुमारी। मैम आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद उमा जी।
8: तिल की फसल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और तिल के फसल में कौन कौन से प्रमुख कीट लगते हैं इसके बारे में आप पहले बताइए।
9: जी नमस्कार किसान बंधु। तो आज जो तिल की जो बात हो रही है उनके प्रमुख कीट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जो तिल की खेती होती है वो कम लागत में अधिक लाभ देने वाली होती है। तो इसमें क्या होता है कि कई कीट व्याधियां जो है वो गंभीर रूप से इनको प्रभावित भी करते हैं, इसीलिए इनकी जो पहचान है वो बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहले मैं पत्ती मोड़क की बात करूं, जिनको कि पत्तियां एवं फली छेदक भी कहते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम एंटीगैस्ट्रा कैटालोनालिस है। और उसके बाद एक गौल मक्खी आती है जिसको तिलकई मक्खी भी कहेंगे। फिर तिल का लीफ हॉपर या जो जिसे हम पत्ती फुदका कहते हैं, इसके अलावा माहू और लाही, फिर सफेद मक्खी, बिहार हेडी कैटल पीरल जिसको कि हम रोमिल कीट भी कहते हैं, एवं हॉक मॉथ, ये सारी कीटें फसल के अलग अलग अवस्था में आती है।
8: तो मैम अभी आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो इन कीटों की पहचान कैसे करेंगे?
9: देखिए अगर हम पत्ती मोड़क की बात करें तो इसे हम तिल का सबसे घातक कीट कह सकते हैं। तो इसके लिए इसकी पहचान तो बहुत ही आवश्यक हो जाती है। इसका जो सुंडी है जिसको कि हम पिल्लू भी कहते हैं सामान्य बात, जो सामान्य बोलचाल की भाषा है, तो उसमें देखेंगे तो इल्ली का जो रंग होता है वो हरे पीले से लेकर गहरे हरे रंग तक का होता है और इसके शरीर पे छोटे काले धब्बे पाए जाते हैं। अगर हम इसके वयस्क की बात करें तो यह पतंगा जो है बहुत छोटा होता है और के जो आगे के पंख होते हैं वो भूरे रंग के एवं जो पिछले पंख हैं वो हल्के रंग के होते हैं, इससे इनकी पहचान होती है। एक और बात इसमें बहुत प्रमुख है, इसके जो इल्ली हैं वो रेशमी धागे बनाते हैं जिनका उपयोग वो स्वयं को और अपने भोजन स्रोत को ढकने के लिए करते हैं। गौल मक्खी की अगर मैं बात करूं तो इसके कीट बिल्कुल मच्छर जैसे होते हैं, उनके जो शिशु हैं उनकी शिशु अवस्था कलियों के भीतर रहकर भोजन करते हैं जिससे कि क्या होती है गांठ सी बन जाती है। तिल का पत्ती फुदका जो है वो एक कीट होता है जो बहुत ही छोटे एवं हरे पीले रंग का होता है, ये पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये फाइलोडी रोग के वाहक होते हैं जो तिल की सबसे गंभीर रोगों में से एक है। फिर लाही की बात करूं, ये काले या हरे रंग का होता है, बहुत ही छोटा होता है और ये काफी नरम होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो पत्तों पौधों की जो कोमल सतह होती है उसमें झुंड के रूप में पाए जाते हैं। सफेद मक्खी जो है वो बेनेसिया टैबेकी भी हम इसे कहते हैं, इनके जो पंख हैं वो काफी सफेद होते हैं और ये भी पत्तियों के निचली सतह पर पाई जाती है। सफेद मक्खी कई वायरस रोग का वाहक होता है, तो पत्ती फुदका और ये सफेद मक्खी ये क्या है कि रोगों का वाहक हम इसको मान सकते हैं। इसके अलावा इसमें छेदक हैं और फिर एक रेड स्पाइडर माइट के नाम से एक बहुत ही सूक्ष्म कीट जो है वो भी पाए जाते हैं जो लाल रंग के होते हैं। इस तरह से हम इन कीटों की पहचान कर सकते हैं।
10: मैम, कीटों की पहचान तो हो गई, तो अलग अलग तरह के कीट अलग अलग तरीके से क्षति पहुंचाते होंगे फसलों को, तो फसलों में किस तरीके से क्षति पहुंचे हैं उनका लक्षण क्या होता है?
9: जी, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम जब इसके लक्षण को देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसमें क्षति हुई है और फिर उसी के अनुसार हम इसके रोकथाम कर पाएंगे। तो मैं किसान बंधु को बता दूं कि अगर आप सही समय पर रोकथाम करें तो उसके लिए लक्षण बहुत ही आवश्यक हैं पहचानने। सबसे पहले मैं पत्ती मोड़क की बात करूंगी जिसमें जो इसके पिल्लू हैं वो पौधे की कुछ ऊपरी पत्तियों को एक साथ जाल बनाकर जोड़ लेते हैं और फिर अंदर से उन पत्तियों को ये खाते हैं। उससे क्या होता है कि जो पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही उसका बढ़वाड़ बंद हो जाता है। फूल आने के बाद जो पिल्लू हैं वो फूलों को खाती हैं और फिर बाद में ये फलियों में क्या करते हैं छेद कर देते हैं और फिर जो दाना होता है उसको नष्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है बीज की पैदावार में काफी कमी आ जाती है। फिर हम गौल मक्खी की बात करेंगे, इसकी जो लक्षण है नुकसान के, तो इसमें क्या होता है इसमें कलियां जो होती है वो फूल में परिवर्तित ही नहीं हो पाती है और ये सूखकर गिर जाती है। इससे पौधों में फली बनने की जो क्षमता है वो अत्यधिक प्रभावित हो जाती है और इससे क्या होता है वो कम बनती है फलियां, जिसके फलस्वरूप तिल की उपज काफी प्रभावित होती है। तिल के पत्ती फुदका की अगर मैं बात करूं तो इनकी वजह से क्या होता है कि पौधे पीले पड़ जाते हैं और उनकी जो उनका फिर से बढ़ना रुक जाता है। फाइलोडी की स्थिति में फूल हरे पत्तीनुमा संरचना में बदल जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप फली बनना बंद हो जाता है। लाही है और माहू भी हम इसे कहते हैं, तो ये पौधों के रस चूस कर उसे बिल्कुल कमजोर बना देते हैं एवं इसमें क्या होता है सहज जैसा चिपचिपे अस्त्राव से काले रंग की फफूंदी विकसित हो जाती है। जो लाल माइट है उसके आक्रमण के कारण पत्तियां बिल्कुल पीली पड़ जाती है और सिकुड़ जाती है और अंततः वो सूखकर गिर जाती है। बिहार हेरी कैटरपिलर ये बहुत ही प्रमुख है, इसमें क्या होता है पत्तियां पूरी तरह से ये चट कर जाते हैं और इससे क्या होता है कि बिल्कुल कंकाल जैसा संरचना इसमें बन जाता है पौधों में।
10: तो मैम, जो भी कीटों से क्षति होंगे उनके लक्षण को हम पहचान लेंगे, लेकिन उसके बाद कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
9: जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। तिल की जो फसल है उसमें कीट प्रबंधन केवल कीटनाशकों के प्रयोग से ही नहीं होता है बल्कि विभिन्न तकनीकों के संयुक्त प्रयोग से होता है। इसके तहत हम चार विधि अपनाते हैं जिसमें सबसे पहले व्यवहारिक नियंत्रण आता है। इसमें हम क्या करते क्या है कि सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि प्रतिरोधी किस्म का हमें क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए और इसके अलावा जो फसल चक्र है उन्हें किसान बंधु जरूर से जरूर अपनाएं। समय पर बुआई भी बहुत जरूरी है ताकि कीटों का जो चरम प्रकोप है उसे रोका जा सके। लंबे समय तक खेतों में पानी का ठहराव ना होने दें, ये गर्मा तिल के लिए तो बहुत ही नुकसानदेह होता है जो अभी चल रहा है। इसके बाद मैं यांत्रिक विधि की बात करूंगी। इसमें हम करते क्या है कि जो भी संक्रमित पत्तियां हैं, फलियां हैं या फिर कलियां हैं, उन्हें तोड़कर हम नष्ट कर देते हैं। और जो खेतों में, इसके अलावा हमें निराई गुड़ाई ये भी करनी चाहिए। इसके अलावा कि हम एक सबसे जरूरी बात मैं बताऊंगी, पक्षी आश्रय ये खेतों में जरूर से जरूर प्रयोग करें। इससे होता क्या है कि जो भी पक्षी हैं वो पिल्लुओं को खा लेते हैं, तो आपका इससे भी बचाव हो जाएगा। इसके अलावा पीले चिपचिपे फंदे का प्रयोग अगर किसान मित्र करें तो उससे सफ़ेद मक्खी एवं माहू को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद जैविक नियंत्रण आता है। इसमें है क्या, ये परभक्षी कीट की बात करता है। परभक्षी कीट में टिकुलिया है, मकड़ी है, डाकू मक्खी है, ग्रीन लेसविंग है, ये सारी जो भी मैं कीट का नाम बता रही हूँ वो मित्र कीट हैं। इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा नीम तेल का हम प्रयोग कर सकते हैं, 5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से इनका भी छिड़काव किया जा सकता है। और नीम बीज खली अर्क 5% इनका भी छिड़काव अगर हम करें तो वो भी उपयोगी माना जाएगा। सबसे अंत में हम ब्रह्मास्त्र की बात करेंगे, जिसको रासायनिक विधि भी कहेंगे। ये तुरंत नहीं करना चाहिए, इन सब के बाद ही हम प्रयोग करेंगे इनका। तो ये हम दरअसल तब करते हैं जब कीट आर्थिक क्षति स्तर पर पहुंच जाता है, तो उस समय किसान बंधु स्पाइनोसेट 45% SC 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से, दूसरा जो कीटनाशक है वो है फ्लुबेंडामाइट 480% SC 0.3 मिलीलीटर पर लीटर की दर से, एवं इसके अलावा क्लोरिन ट्रेनिली प्रॉल 18.5% SC 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से इन सब का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। और इनसे क्या होता है, इन कीटों का बचाव संभव हो जाता है। इसके अलावा किसान बंधु जो निगरानी की मैं बात करूंगी, तो सर्वेक्षण करते रहें, निगरानी करते रहें अपने खेतों की समय पे समय, ताकि इन सब कीटों से आप रोकथाम आराम से कर सकते हैं और पैदावार भी फिर उससे अच्छी आएगी।
10: जी मैम, अगर निगरानी करेंगे तो कीटों के बारे में वो पहले पता लगा पाएंगे और जी उसका प्रबंधन आसान हो जाएगा। मैम आपने बहुत उपयोगी बातें बताई और उम्मीद है कि हमारी आज की ये वार्ता उन किसान भाई बहनों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी जिनके खेतों में अभी तिल लगे हुए हैं, और अगर वो कीट प्रबंधन करेंगे तो जैसे कि आपने बताया बहुत आय में वृद्धि होगी उनकी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
9: बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी।
10: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें खूब प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
11: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
12: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
11: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
13: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
14: जी
13: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
14: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
6: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
15: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
5: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
15: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
16: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया, अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: किसान भाइयों, लॉकडाउन का समय है, विगत एक साल से हम इससे जूझ रहे हैं। ऐसे में खेती जो है कभी रुकती नहीं है, तो हमने भी जो सलाह है वो न रोकने का फैसला किया, और हर सलाह हम आपको डिजिटल माध्यम से दे रहे हैं। तो ऐसे में अभी जो समय है, समसामयिक समय है, वो है धान की बिजाई के लिए। तो खरीफ मौसम की शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में जो धान की जो बिजाई है, बहुत सारे किसान भाइयों को अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशन के लिए उनको अलग अलग बीजों की ज़रूरत होती है कि कैसे क्या हम लगाएं, हमारी ज़मीन ऊंची है, हमारी ज़मीन नीची है। साथ ही किसी को महीन धान, किसी को मोटा धान, किसी को सुगंधित धान, इस तरह से ज़रूरत होती है। तो ऐसे में कन्फ्यूज़न रहता है कि हम बिजाई के समय कौन सा किस्मों का चयन करें, जिसकी दर हमें अच्छा जाए, जिसका कि हमें आगे चल करके उसकी क्वालिटी अच्छी मिले। तो इसी सब पे बात करने के लिए हम आज हैं हम डॉक्टर सत्येंद्र जी के साथ। रक्षा, आपका स्वागत है हमारा FM ग्रीन के इस प्रोग्राम में, और साथ ही यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए। साथ ही श्रोताओं को बता दें कि अगर आप हमारा FM ग्रीन का जो प्रोग्राम सुनना चाहते हैं रेगुलर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारा जो एप्लीकेशन है उस लिंक से क्लिक करके आप रेडियो का एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि जो जिसमें कॉमर्शियल वैल्यू ज्यादातर किसान करते हैं कि जिसमें दर ज्यादा जाए, तो ऐसे में एक आइडियल कंडीशन के लिए एक बेहतर जो वैरायटी है वो कौन सा आप सजेस्ट करते हैं?
7: किसान भाइयों नमस्कार। जैसे कि आपने सुना, अभी खरीफ का सीजन स्टार्ट हो गया है। खरीफ में जो हमारी फसलें हम लोग लगाते हैं, बिहार में जो फसलें लगाई जाती हैं, किसान भाई जिन फसलों का उत्पादन करते हैं, उनमें धान सबसे प्रमुख है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार के लिए 90% से ज़्यादा जनसंख्या के लिए धान जो है वो किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है। और जहाँ तक बिहार में खेती योग्य किसी भूमि की बात है, तो उसके लगभग 60% क्षेत्रफल पे, लगभग 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पे धान की खेती बिहार में की जाती है। और सभी जिलों में लगभग धान की खेती होती है। तो इसमें जहाँ तक किस्मों के चयन की बात है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। बीज को, अगर आपके पास अच्छा बीज है, तो बीज के केस में बीज के लिए कहा गया है कि बीज कृषि का आधार है। तो कृषि, अगर हमारे पास बीज अच्छा होगा, तो हमारा उत्पादन वहीं से शुरुआती दौर में ही हमारा, हमें डिसाइड हो जाएगा, कुछ ना कुछ हम ये कर सकते, अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी उपज जो हमें मिलेगी वो कैसी होगी। बाकी उसके बाद जो खेती की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, उन पे वो भी उसमें शामिल होती हैं। तो किस्मों की अगर हम बात करें तो बिहार के लिए बहुत सारी किस्में हैं जो संस्कृत हैं और वो अलग अलग परिस्थितियों के लिए हैं। तो हम अलग अलग परिस्थितियों के लिए किस बात करेंगे। अगर हम देखें तो धान के केस में उनकी पकने की अवधि को लेके और जो जमीन है, जो भूमि है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसके आधार पे हम लोग स्पेशली धान की प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ किस्में ऐसी हैं जो अगात किस्में जिनको हम बोलते हैं, जो कि कम दिन में पक जाती हैं, जो लगभग 100 दिन या 110 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, वो अगात किस्में होती हैं। और इनको इन किस्मों को किसान भाइयों को चाहिए कि जो ऊपरी ज़मीन है, जो जहाँ पे पानी नहीं जमता है, पानी कम जमता है, ऐसी ज़मीन पे इन किस्मों को लगाएं। इसके साथ साथ कुछ किस्में मध्यम अवधि की होती हैं, जो जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है और ज़मीन उर्वर है, उस जगह पे मध्यम अवधि की किस्मों को किसान भाई लगाएं। उनमें ये किस्में लगभग 135-40 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और इनकी उपज भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा बहुत सारी कुछ जिले हमारे यहाँ हैं जो जहाँ पे पानी देर तक रहता है, तो वहाँ हम कम अवधि की किस्में वहाँ नहीं लगा सकते। तो वहाँ पे जो लंबी अवधि की किस्में हैं, ज़्यादा देर से पकने वाली, लगभग 150-155 दिन में पकने वाली किस्में हैं, वो लगाई जाती हैं। तो उस जगह पे जहाँ पे आपको देर तक पानी उपलब्ध रहता है, वैसी जगह पे वो लंबी अवधि की किस्में लगानी चाहिए। तो हम अब इनको एक एक करके इनकी बात करेंगे अलग अलग किस्मों की। तो अगात किस्मों में मैं बात करूं तो सबसे पहले एक किस्म है प्रभात। तो प्रभात जो किस्म है वो लगभग 95-100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये अवधि जो फसल की जो अवधि बोली जाती है वो बीज से बीज तक की होती है, यानी जब आप बिजाई करते हैं खेत में, उस दिन से लेके जिस दिन आप काट रहे हैं, काट के घर पकने के बाद फसल को काट रहे हैं, उस टाइम तक की ये अवधि दिनों में ये गिनी जाती है। तो ये 95-100 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी 30-35 कुंटल उपज आराम से किसानों को मिल जाती है। तो इसके अलावा अगात किस्म में ऊपरी ज़मीन के लिए दूसरी किस्म है सहभागी धान। सहभागी धान किस्म में मैं बता दूं, जो प्रभात ये किस्म मैंने बताई, इसका धान थोड़ा मोटा होता है और ये चूड़ा के काम में स्पेशली आता है। इसी तरह से जो सहभागी धान है उसका भी धान थोड़ा मोटा होता है, गहरे सुनहरे रंग का होता है और ये किस्म भी 110 दिन में लगभग पककर तैयार हो जाती है और इसमें इसकी उपज लगभग 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज किसान भाई आसानी से ले सकते हैं। और इसकी एक ख़ास बात है सहभागी धान किस्म की कि इसमें जो सूखा सहन करने की क्षमता के लिए इसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किया गया है, तो वैज्ञानिकों ने इसमें जीन्स डाले हैं जिससे कि वो सूखा सहन करने की क्षमता इसमें ज़्यादा है। तो जहाँ तक सूखे की बात है धान के लिए, तो वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि धान की जो फसल है वो शुरुआती दौर में बाढ़ के लिए और उसके बाद जब पुष्पन का समय आता है, फूल आने का समय आता है, तो उस स्टेज पे सूखे के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम अगर ऐसी हमारी भूमि है जहाँ पे हमें लगता है कि शुरुआत में हमारे यहाँ बाढ़ आ जाएगी या पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें किस्मों का उस हिसाब से चयन करना चाहिए जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा। और अगर ऐसा लगता है कि पुष्पन के समय, फूल आने के समय पे हमारा सूखा पड़ने की संभावना है और हमें पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वैसी जगह पे, वैसी किस्मों का चुनाव करें जो कि सूखा सहन करने वाली हो, क्योंकि जो सूखा सहन करने वाली जो किस्में मैं बता रहा हूँ वो पुष्पन के समय ही स्पेशली उनमें ये ताकत होती है कि वो कम पानी की स्थिति में भी खड़ी रह सके। तो इसमें सहभागी धान जैसे मैंने बताया। इसके बाद एक किस्म है शुष्क सम्राट, ये किस्म भी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 35 से 40 क्विंटल इसकी उपज आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा सबोरदीप एक किस्म है जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। इसका दाना लंबा होता है, लंबा पतला दाना है और बहुत ही अच्छा इसका चावल बनता है। इसका इसकी जो अवधि है ये किस्म 110-15 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसके अलावा राजेंद्र भगवती एक किस्म है जो मुजफ्फरपुर की तरफ के जो किसान हैं वहाँ ये आसानी से मिल जाएगी, राजेंद्र भगवती। तो किसान भाई इसको लगा सकते हैं, ये भी 110-15 दिन की किस्म है और लगभग 40 क्विंटल उपज इसमें आसानी से मिल जाती है। इसका दाना भी लंबा पतला होता है। इसके अलावा मध्यम कुछ किस्में हैं जो मध्यम अगात श्रेणी में आती हैं। तो मध्यम अगात श्रेणी वाली है जो 115 से लेके 125 दिन में जो पक के तैयार हो जाती हैं, ऐसी किस्में हैं। और उसमें एक किस्म बहुत ही अच्छी मैं बताऊं आपको, नई विकसित की है बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, सबोर हर्षित धान। तो मैं किसान भाइयों को विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि सबोर हर्षित धान जो है एक बार आप जरूर लगाएं। ये नई किस्म है, क्योंकि किसान भाइयों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि किसान भाई आप लोग जो नई किस्में हैं उनको जरूर, जो भी आपकी परंपरागत किस्में जो आप लगाते आ रहे हैं उनके अलावा आप नई किस्मों को जरूर अपने यहाँ ट्राई करें। तो ज़्यादा अगर क्षेत्रफल में नहीं लगा रहे हैं तो कम क्षेत्रफल में लगा के देखें, उसी भूमि की जो श्रेणी है, जैसी आपकी प्रकृति है भूमि की खेत की, उस हिसाब से ही यूज करें, लेकिन नई प्रजातियों को जरूर यूज करें। तो इसी क्रम में सबोर हर्षित धान बहुत ही अच्छी एक नई प्रजाति है और ये लगभग 120-125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका दाना मध्यम पतला होता है, जैसे जो कि बहुत ही पसंद किया जाता है और मार्केट में इसकी वैल्यू भी ज़्यादा मिलती है, इसका दाम भी ज़्यादा मिलता है। तो इसके अलावा इसी श्रेणी में, मध्यम अगात श्रेणी में एक किस्म है सबोर अर्धजल, लंबे पतले दाने की ये किस्म है। सबोर अर्धजल भी बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित है और इसका ये भी सूखा सहन करने की भी क्षमता इसमें है। इस किस्म को हम सीधी बुवाई के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसकी उपज 40-45 क्विंटल आसानी से मिल जाती है, 120-125 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है।
8: तो ये थे किसान भाइयों की जो आपने भी जो बताया कि जो 110 से के बराबर जो है दिनों में तैयार हो जाने वाली किस्म है, ये डॉक्टर सत्येंद्र तोमर जी जानकारी दे रहे हैं, ये प्लांट ब्रीडिंग से ही है। तो हम अगले भाग में बात करेंगे कि किसान भाइयों की हम बीजों के चयन में और क्या क्या सतर्कता अपनाएं। इस भाग के लिए हम इतना ही आज के लिए हम रख रहे हैं, अगले भाग में हम फिर से एक बार आपके साथ हाजिर होंगे बीजों के बारे में नई नई जानकारियों के साथ।
2: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: राजू, पिन्नी और
10: तुम्हारे
9: हमारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
10: 11 दोस्त
9: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
10: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
9: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
10: लेकिन ऐसा क्यों?
9: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
10: तो इसका हल क्या है?
9: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
10: याद रखो, आपके बच्चों के टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास, जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: इतनी गंभीर बीमारी है, टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
7: जलवायु बदल रहा है, कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ से किसान परेशान हो जाते हैं। फसल को समय पर पोषण नहीं मिल पाता। ग्लोबल वार्मिंग ने जलवायु को भी बदल दिया है, इसलिए किसानों को चाहिए कि वो जलवायु अनुकूल खेती अपनाएं। इसके लिए हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि किसान जलवायु अनुकूल खेती कर सके। अब हम जलवायु अनुकूल खेती क्यों जरूरी है, इस पर आधारित एक गीत सुनाने जा रहे हैं।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। दोस्तों आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। हमारे दैनिक कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह के बारे में। जी हाँ, आजकल जैसे हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, हमारा खान पान बिगड़ता जा रहा है, ऐसे में जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज एक तय आयु वर्ग के लोगों को ही हुआ करती थी, आजकल बच्चों से लेकर बूढ़े तक में डायबिटीज का खतरा मंडराता रहता है। बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है। जब एक गर्भवती महिला को डायबिटीज होता है तो ऐसे में सिर्फ उस महिला को ही खतरा नहीं होता है बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी बहुत खतरा रहता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक आंकड़ा जारी किया और उस आंकड़े के अनुसार हर साल 21 मिलियन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो जाता है, यानी कि हर 6 गर्भधारण में से एक को मधुमेह प्रभावित करता है और इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी जानलेवा स्थितियों का खतरा बना रहता है, जैसे कि प्रीक्लेम्सिया, स्टिल बर्थ या प्रसव आघात जैसे जानलेवा स्थितियों का खतरा काफी बढ़ जाता है और इसके काफी सारे दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं, जैसे कि माँ और बच्चे दोनों को टाइप 2 मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों का आजीवन खतरा बना रहता है। अगर गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया जाता है तो बच्चे के विकास पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का विकास रुक सकता है, बच्चा या तो कमजोर पैदा होगा या फिर बहुत ही मोटा। डायबिटीज के दौरान क्या होता है कि गर्भ में बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत सारी परेशानियां आती है और इसी दौरान बच्चे को भी शुगर हो सकता है। कुछ महिलाओं को डायबिटीज पहले से होता है और कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज क्यों होता है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा होता है वो एक हार्मोन पैदा करता है और ये हार्मोन खून में चीनी को बनाता है और खून में जब चीनी बनता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है, यानी कि पैनक्रिया जो चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है वो आमतौर पर पर्याप्त इंसुलिन बनाता है जिससे डायबिटीज का खतरा नहीं रहता है। और अगर पैनक्रिया जितना जरूरी है उतना इंसुलिन बना पाने में कामयाब नहीं रहता है, सफल नहीं रहता है, तो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है जिससे प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाता है। अभी तक तो हमने कारण जान लिया है, आइए अब जानते हैं कि अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उसे पहचाने कैसे। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उनमें कुछ सामान्य से लक्षण दिखते हैं, जैसे कि उन्हें बार बार पेशाब आता है, उनका वजन तेजी से घट जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, इसके साथ ही थकान भी उन्हें बहुत ज्यादा होती है। कुछ महिलाओं में तो आँखों से भी कम दिखने की समस्या हो सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हुई है तो उन्हें समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहना चाहिए और इसके साथ ही कुछ और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को शुगर हो गया है तो उन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उन्हें अपना खान पान, शारीरिक गतिविधि, इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर देना चाहिए, तेल, घी, चावल, आलू, मिठाई और तली हुई चीजों से बचना चाहिए, उन्हें एक्सरसाइज रोज करना चाहिए, उन्हें हर रोज अपना शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए और डॉक्टर ने जो भी बताया है वो तो फॉलो करना ही चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर ये भी सुझाव देते हैं कि समय समय पर अल्ट्रासाउंड करवाते रहना चाहिए। तो हमारे मन में ये सवाल भी आ सकता है कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह से पीड़ित हो गई हैं तो क्या वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो अपना विशेष ध्यान रखे तो माँ भी स्वस्थ रह सकती है और साथ ही उनका आने वाला बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है और जो खतरा होता है उसे भी कम किया जा सकता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पहले से डायबिटीज होता है, तो क्या वो गर्भवती नहीं हो सकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो गर्भवती हो सकती है और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। अगर वो ध्यान नहीं रखती है तो बहुत सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आज के समय में बात करें तो मधुमेह विश्व भर में 8 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करती है और ये बीमारी हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, अंधापन और अंगों के विच्छेदन का एक प्रमुख कारण है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना, खास तौर से जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो विशेष ध्यान रखें ताकि आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे और आपके बच्चे को आपसे मधुमेह ना मिले। और ऐसी ही ढेरों जानकारी के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।
1: जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते। और हॉकी

0: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दे लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और BPT 5204 यानी की BPT 5204 कि नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.5 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल

से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दे। इसके बाद वह कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

में थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं मखाना के बारे में। मखाना के पौष्टिक गुणों के बारे में अब तक देश दुनिया में सबको पता है, इसकी मांग भी देश और दुनिया हर जगह है और बढ़ती मांग यानी कि रोजगार के बढ़ते अवसर। और जब मखाना की बात होती है, मखाना से जुड़े रोजगार की बात होती है, तो हम पाते हैं कि भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा मखाना उत्पादन करने वाला देश है और भारत में बिहार, जी हाँ अकेला बिहार 85 से 90% मखाना का उत्पादन बिहार में ही होता है। और फिर बिहार में लोगों को मखाना से जुड़े रोजगार के अवसर के बारे में पता तो होना ही चाहिए और इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ है मधुमिता मैम। आप हैं प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमा। तो आज हम बात करेंगे कि मखाना से कैसे आप उद्यम स्थापित कर सकते हैं और इसके क्या अवसर हैं। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मैं हूँ मधुमिता और मैं आज मखाना के गुणों के बारे में, उसके उद्यमिता के अवसर के बारे में आप लोगों से बताने जा रही हूँ। हम जानते हैं जैसा कि इसे मखाना को हम सुपर फूड कहते हैं, ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व मौजूद हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद है। आइए हम कुछ इनके इसके मुख्य स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जिससे कि हमारे शरीर के मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को यह हम बचाता है और त्वचा को जवां रखता है। दूसरी चीज है हृदय स्वास्थ्य। इसमें मौजूद पोटेशियम और कम सोडियम के कारण ब्लड प्रेशर को यह नियंत्रित रखने में मदद करता है और यह दिल के लिए अच्छा है। फिर है वजन प्रबंधन। कम कैलोरी, वसा और उच्च फाइबर के कारण यह हमारा पेट भरा रखता है और वजन घटाने में भी सहायक है। पाचन में सहायक, यह हमारे पाचन में भी काफी सहायता करता है। डायबिटीज के लिए, क्योंकि इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो कि शुगर लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देता है। यह फाइबर और मैग्नीशियम से युक्त होता है जिससे कि शुगर नियंत्रित रहता है। फिर है हड्डियों को मजबूत बनाता है। मखाना में मौजूद कैल्शियम जो है वो हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस जैसे समस्याओं से बचाव के लिए यह काफी लाभदायक है। हमारे त्वचा और बालों के लिए भी यह काफी उपयोगी है। मानसिक विकास के लिए यह बहुत फायदेमंद है क्योंकि यह याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। नींद और तनाव, यह तनाव कम करके बेहतर नींद लाने में भी मदद करता है। तो हम देख सकते हैं कि इसके अनेकों स्वास्थ्य लाभ हैं जिसके चलते यह हर एक वर्ग के लोगों द्वारा मांग किया जाता है, पसंद किया जाता है जिससे कि उद्यमिता के अपार अवसर खुल जाते हैं। खासकर बिहार जैसे राज्य में जहाँ 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहाँ कोई खेती नहीं होती, ऐसी जगहों पर हम मखाना की खेती करके एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर पैदा कर सकते हैं।
0: तो मैम जैसे कि आपने भी बताया कि मखाना एक तो वजन को नियंत्रित करता है, बहुत सारे फायदे आपने बताए, उनमें से जो आजकल युवाओं की चाहत होती है वजन नियंत्रित हो और उनकी त्वचा जवा दिखे, और ये दोनों ही फायदे मखाना में भरपूर रूप से हैं। और अभी आप जैसे बता रही थी कि अपने बिहार में 90 एकड़
2: 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो कि खेती योग्य नहीं है, उसमें जल जमाव वाली जमीन भी शामिल है, तो हम
0: वहाँ मखाना
2: लगा करके जो है रोजगार के अवसर
0: पैदा कर सकते हैं। तो अभी रोजगार के बारे में आप बात कर रही थी, तो मखाना का उद्यम स्थापित करने के लिए क्या क्या संभावनाएं बिहार में हैं और इसके लिए क्या किया जा सकता है, मैम ये बताइए।
2: जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया है, जिसमें कि रोजगार भी एक मुद्दा है, तो खासकर बिहार के लिए जहाँ पर कि 85 से 90% उत्पादन होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे उद्यम लगा सकते हैं और रोजगार के अवसर खड़े कर सकते हैं। सबसे पहली बात है तो कि कच्चे मखाने के बजाय उसे प्रोसेस या प्रसंस्कृत करके बेचना अधिक लाभदायक होता है। रोस्टिंग और फ्लेवरिंग, सादे मखाने के बजाय हम पेरी पेरी, पुदीना, पनीर टिक्का या चॉकलेट फ्लेवर वाले रोस्टेड मखाना स्नैक्स बना करके बेच सकते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है हमारे युवाओं के बीच में, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गए हैं। और है मखाना पाउडर, मखाना को पीसकर पाउडर बनाया जाता है, जिसका उपयोग शिशु आहार, एनर्जी बार, हेल्थ सप्लीमेंट और बेकरी उत्पादों जैसे कि मखाना कुकीज और विभिन्न स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पादों में किया जाता है। तो फिर है मखाना बेस्ड बहुत प्रोडक्ट्स, जैसे मखाने का आटा, मखाना फ्लैक्स, पास्ता, मैकरोनी जैसे आधुनिक उत्पाद बना करके भी बेचा जा सकता है, यह भी काफी मांग में है। मखाना खीर मिक्स, यह एक रेडी टू कुक जो कि पकाने के लिए तैयार उत्पाद है, जिसमें मखाना पाउडर या छोटे मखाना के टुकड़ों के साथ चीनी, इलायची, ड्राई फ्रूट्स आदि मिश्रित होते हैं, इसका भी उत्पादन किया जा सकता है। बेकरी उत्पाद, मखाना के आटे के का उपयोग ग्लूटेन मुक्त बिस्किट, ब्रेड और कुकीज बनाने में किया जा सकता है। और कुछ अन्य खाद्य उत्पाद हैं जैसे कि मखाने का उपयोग हम अनेक पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों में भी कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीग्रेन पफ्स, मखाना भेल, अचार, कलाकंद एवं अन्य मिठाइयां, पास्ता और सलाद के टॉपिंग के रूप में। बहुत सारे ऐसे हमारे पास विकल्प मौजूद हैं जो कि हम मखाना से प्रोसेस करके, प्रसंस्कृत करके बना सकते हैं, और ये हमारे युवा और वयस्क वर्ग में काफ़ी ज़्यादा
0: पॉपुलर है,
2: मांग में है।
0: मतलब लोगों के बीच मखाना की मांग तो है, और साथ ही जब मखाना इतने फ्लेवर में आ रहा हो, मखाना इतनी अलग अलग वैरायटी में आ रहा हो, तो मांग काफ़ी होती है और रोजगार के अवसर भी होते हैं। लेकिन मैम क्या मखाना उत्पादन में, मखाना के उद्यम में क्या सरकार द्वारा भी कोई सहायता प्रदान की जाती है?
2: बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया कि अगर हमें सरकारी सहायता मिल जाती है तो हमारा मनोबल और बढ़ जाता है, और सरकार भी काफ़ी सारी योजनाओं के साथ युवाओं को मदद कर रही है। जैसे कि हम इसमें बताना चाहेंगे कि इसमें एक है PMFME योजना, जिसको कि हम प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से भी जानते हैं। इसके तहत मखाना प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए 35% तक सब्सिडी और ऋण सहायता दी जाती है, PMFME पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, खास करके बिहार में कई जिलों जैसे कि दरभंगा, मधुबनी में मखाने की इस योजना के तहत चुना गया है, जिसमें कि सरकारी सहायता मिलती है। अब तीसरा है मखाना विकास योजना, ये जो बिहार के कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई है ये योजना, मखाना विकास योजना, ये बिहार के 10 विशिष्ट जिलों में मखाना की खेती और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। यह किसानों को प्रशिक्षण देने और मखाना की खेती और प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक उपकरणों के लिए अनुदान प्रदान करने पर केंद्रित है। फिर यह योजना जो है एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के तहत संचालित होती है, जिसमें मखाना बीज वितरण, भंडारण, गृह निर्माण और प्रोसेसिंग पर सब्सिडी जैसे लाभ मिलते हैं। इसके कुछ मुख्य हम उद्देश्य बता देते हैं मखाना विकास योजना के। इसके तहत जो है किसानों को प्रशिक्षण और कौशल विकास दिया जाता है, फिर अनुशंसित मखाना किस्मों के बीज पर सब्सिडी मिलता है, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन को भी बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात को भी प्रोत्साहन इसमें दिया जाता है और महिला किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी इसका लक्ष्य, 30% लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक और है मखाना बोर्ड, जो कि भारत सरकार द्वारा बिहार में स्थापित एक सरकारी संस्था है, यह मखाना बोर्ड, जिसका उद्देश्य मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देना होता है ताकि किसानों की आय बढ़े और यह सुपर फूड मखाना को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। यह मखाना उद्योग की विभिन्न चुनौतियों को हल करने, नवाचार लाने और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद करता है। हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा मखाना को प्रोत्साहित करने के लिए, मखाना के उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती हैं। तो युवा बढ़ चढ़कर आगे आएं और इसका लाभ उठाएं और उद्यम लगाएं।
0: मैम, मखाना उद्यम के बारे में तो हमने बात कर ली और बार बार आप प्रोसेसिंग की भी बात कर रहे हैं और प्रोसेस्ड मखाना की मांग भी ज़्यादा है। मखाना प्रोसेसिंग बिजनेस का बाजार क्या है और किस तरह इस तक पहुँचा जा सकता है?
2: जी हाँ, बिल्कुल, मखाना प्रोसेसिंग का ही बाजार है और बहुत ज़्यादा इसकी मांग है। आजकल लोग जो है, चूँकि यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर है और लोग रेडी टू सर्व खाने को पसंद करते हैं, इसीलिए जो है ये हेल्दी स्नैक के रूप में इसकी मांग बढ़ रही है और बाजार में इसका पकड़ मजबूत हो रहा है। मखाना के बाजार एवं संभावनाएं कुछ इस प्रकार हैं। जैसे अगर हम घरेलू बाजार की बात करें तो मखाना जो है भारत में एक हेल्दी स्नैक के रूप में खासकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में इसकी मांग बढ़ रही है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग, खासकर युवा, जिम जाने वाले लोग और डायबिटीज और हृदय रोगों से ग्रस्त जो लोग हैं वो अपनी डाइट में इसे शामिल कर रहे हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो भारत मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में इसकी भारी मांग है, जिसे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलती है। अब हम उद्योग रिपोर्ट की बात करें तो फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक भारत में हेल्दी स्नैक्स का बाजार 12% की सालाना वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना है, जिसमें कि मखाना प्रोसेसिंग बिजनेस एक अहम हिस्सा हो सकता है। और विविध उत्पादों की मांग भी है, जैसे कि भुना हुआ मखाना, चॉकलेट कोटेड मखाना, पनीर फ्लेवर मखाना, मसाला मखाना और अन्य फ्लेवर के मखाना की भी काफ़ी मांग बढ़ रही है। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि इसका जो प्रोसेसिंग बिजनेस का जो बाजार है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, नहीं सिर्फ हमारे घरेलू बाजार में भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी है। तो हम जो है पैकेजिंग करके और ब्रांडिंग करके एक उद्यमी के रूप में आप स्थानीय किसानों से मखाना खरीदकर उसे ब्रांडिंग करके आकर्षक व लुभावने पैकेजिंग करके बेच सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी छोटे उद्यमी वैश्विक व्यापार वैश्विक बाजार में भी अपना सामान बेच सकते हैं। साथ ही साथ आप आधुनिक खेती भी करके जो है अच्छा उद्यम स्थापित कर सकते हैं। पारंपरिक तालाबों के बजाय आप मखाने की खेती को खेत प्रणाली से कर सकते हैं, जिससे कि उद्यमी आधुनिक सिंचाई और कटाई की मशीनों का उपयोग करके ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोसेसिंग बाजार का इसका बहुत ज़्यादा अवसर है, तो लोग युवा को इसमें आगे आना चाहिए।
0: बिल्कुल, अब तक हमने बहुत सारी बातें की, इसकी क्या संभावनाएं हैं और इसके स्वास्थ्य लाभ क्या हैं। तो मैम, मखाना के स्वास्थ्य लाभ के बारे में तो हमने बहुत बातें जान ली, लेकिन मखाना की उद्यमियता से क्या लाभ मिल सकता है किसान को, या फिर जो युवा इसमें आना चाहते हैं, इस उद्यम में आना चाहते हैं, उन्हें क्या लाभ मिल सकता है?
2: मखाना उद्यमिता के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसमें प्रसंस्कृत हम अगर इसे कर लेते हैं तो चूंकि इसकी मांग बहुत ज़्यादा है तो ये रोजगार सृजन में मदद करता है, साथ ही साथ किसानों की आय की में वृद्धि करता है। हम मखाना जो होता है वो धान और गेहूं जैसी फसलों से दोगुना लाभ देता है, जिससे कि छोटे और सीमांत किसान ज़्यादा आर्थिक लाभ ले सकते हैं। स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स की मांग चूँकि ज़्यादा है तो इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा हम अगर इसमें जाते हैं, अगर इसका उद्यम हम स्थापित करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। निर्यात के भी अवसर काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसा बताया हमने कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों में काफ़ी इसकी मांग है, तो निर्यात की भी बहुत संभावनाएं हैं। फिर ग्रामीण विकास में काफ़ी ये मदद करता है, क्योंकि पलायन रोकने, युवाओं का पलायन होता है ग्रामीण क्षेत्रों से, वहाँ से भी रोक लगाने में मखाना उद्यम मदद करता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। और चूंकि सरकारी समर्थन भी इसमें है तो ये बहुत हम इसमें उद्यम लगा सकते हैं बहुत आसानी से। हम आपको एक बीएयू हमारे जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक प्रभेद है मखाना की, उसके बारे में भी एक संक्षेप देना चाहेंगे जानकारी। ये एक ऐसी किस्म है सबौर मखाना वन, जो मखाना कि एक ऐसी किस्म है, बेहतरीन किस्म है, जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, जिसमें कि पुराने प्रभेदों की तुलना में 50% ज़्यादा उपज मिलता है, साथ ही यह कम समय में ज़्यादा उत्पादन देने में भी सक्षम है। इस प्रकार यह प्रभेद किसानों की आय में वृद्धि और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का एक उत्तम माध्यम है। अंत में हम बताना चाहेंगे कि हम देख सकते हैं कि मखाना जो देवताओं का भोजन माना जाता है, जो कि धार्मिक अनुष्ठानों, उपवास और प्रसाद में इस्तेमाल होता है, उसके बहुमुखी फायदे हैं। यह एक पौष्टिक सुपर फूड है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। मखाना उद्यमिता से हम किसानों की आय बढ़ा सकते हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। इसका उद्यम कृषि मूल्य संवर्धन, नवाचार और निर्यात के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने का प्रबल कारक है। संक्षेप में, मखाना उद्यमिता एक सुपरफूड क्रांति का हिस्सा है जो पोषण, आर्थिक विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। इन कारणों से यह एक टिकाऊ और लाभदायक व्यवसाय का सटीक साधन है। धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई और मखाना से जुड़ी इतनी सारी बातें आपने बताई। आपने स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताया, सरकार से क्या सहायता मिलती है लोगों को मखाना उद्यम के लिए, ये सब कुछ आपने बताया और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आज के कार्यक्रम उन्नत कृषि में इतना ही। दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही ढेर सारी जानकारियों के लिए, ढेर सारी बातों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
4: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
4: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
4: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
5: नमस्कार, मैं आरजी अनु एक बार फिर से 90.8 FM ग्रीन पर लेकर आ चुकी हूँ हमारे किसान भाइयों के लिए उन्नत कृषि, और इसमें होंगी कुछ उन्नत बातें, वो भी आपके फायदे के लिए, आपके हित के लिए। जी हाँ, आज का विषय है हमारा जल संचयन पद्धति, क्यों और कैसे। तो आज जानेंगे। वैसे दोस्तों, अभी जो पानी की किल्लत जितनी हो रही है, अभी तो फिलहाल विंटर सीजन है, लेकिन जैसे ही ये विंटर सीजन खत्म होने लगती है हमें चिंता सताती है पानी की, क्योंकि वाटर लेवल कम होता जाता है और हम पानी के लिए इधर उधर भटकते हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा सोचें जिससे कि हमारे पास जब हमें ज़रूरत पड़े वो पानी, वो जल हमें आसानी से मिल पाए। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश कुमार जी, ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कृषि अभियंत्रण विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर, और हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये जल संचयन क्या है।
6: जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग बोलते हैं जल ही जीवन है, और सोचिए कि जब हमारे कृषि के लिए इसको लाएंगे जल, तो और भी ज्यादा उपयोगिता बढ़ जाती है। तो जल संचयन कहने का तात्पर्य ये है कि जल का हम भंडारण कैसे, जैसे अनाज का भंडारण करते हैं उसी तरह जल का भी भंडारण कैसे करें, ये ही कहलाता है हमारा जल संचयन।
5: जी, और यहाँ पर आपने जाना कि जल संचयन जल का भंडारण कहलाता है, इसके साथ ही बहुत जरूरी है ये भी हम जानते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर साहब के तरीकों से जाने कि ये क्यों जरूरी है हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे आम जनता के लिए, तो आइए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं।
6: जी हाँ, देखिए अब आती है हमारा कि जल संचयन क्यों जरूरी है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमें कोई भी फसल हो, चाहे वो खरीफ में लगाएं चाहे रबी में लगाएं, उसके लिए हमें इरिगेशन की जरूरत है, मतलब सिंचाई की जरूरत है, और उसके लिए हमें जल चाहिए। केवल जल हमें कृषि के लिए नहीं चाहिए, हमें अपने घरेलू कार्यों के लिए भी चाहिए। यदि हम मवेशी पालन कर रहे हैं तो उनके लिए भी चाहिए। और यदि आप सोचिए कि यदि हम धान का फसल लगाते हैं तो 1 किलोग्राम धान को पैदा करने में हमें 3000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। यदि हम गेहूं की बात करें तो उसमें बहुत कम 500 लीटर की जरूरत पड़ती है। तो सोचिए दोनों में कितनी भिन्नताएं हैं। और हम जब धान लगाते हैं उस समय हमारे पास पानी नहीं होती है, इसलिए हम वर्षा पर निर्भर रहते हैं। और उस कभी कभी देखिए कहीं कुछ क्षेत्रों में सूखा हो जाता है, वहीं कुछ दूसरे क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। तो जो बाढ़ का पानी है हमें उसे हमें चाहिए कि हम कैसे डाइवर्ट करें, या अपने खेतों में आए जहां पर आपका जमीन है वहां पर कैसे हम जो वर्षा हो रही है उसको, वर्षा के जल को हम कैसे संरक्षण करें, और उसको हर एक ऐसा हम लोग बनाएं पद्धति, और उस पद्धति से हम उसको भंडारण कर सके अगले नेक्स्ट क्रॉप के लिए, यदि खरीफ में कर रहे हैं तो खरीफ जब बारिश हो रही है हमारा जुलाई अगस्त में, तो हम उस पानी को ऐसा बचाएं कि हमारे अगले एक साल तक हमें जरूरत की जो भी हमारा फसल है उसको वो कर लें, चाहे उसमें हम अपने घरेलू कार्य को कर लें, चाहे मवेशी के लिए जरूरत हो और खेती, तीनों के लिए हम लोग जो भंडारण करते हैं पानी को, वही हमारा जल संचयन पद्धति कहलाता है
5: जी। और जब पद्धति की बात आती है तो इसे भी जानना चाहेंगे हम।
6: ठीक है, देखिए जल संचयन की पद्धति बहुत सारी है, जैसे आप लोग जो महानगर में रहते हैं या नगर में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है आजकल जल संचयन पद्धति। उनका एक पद्धति है रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब छत पर हम कैसे जल वर्षा के जल को संरक्षित करें
5: जी।
6: या तो हम उसको संरक्षित करें, या तो जो आप अंडरग्राउंड वाटर होता है भूगर्भ जल जो होता है उसको कैसे हम अपने अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें। रिचार्ज करने का मतलब होता है कि जब आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में हमारा वाटर लेवल घट जाता है, कहीं कहीं पंपिंग करें हम पानी तो हमें पानी नहीं निकलता है, तो उसको हम एक ही तरीके से उस गहराई को उस भूगर्भ जल को संरक्षित कर सकते हैं। वो वर्षा के दिनों में हम एक अपने जो भी छत पर है, छत पर केवल दो आउटलेट बनाइए, मतलब वर्षा होगी तो आपका छत पर जल जमा होगा और दो आउटलेट से आपका पानी जाए, या तो एक बगल में गड्ढा या कुआं बना दें जिससे कुएं में हम जल को संरक्षित कर सके, या हम उसको सेडिमेंट देकर सीधे नीचे जल अपने जमीन में दे दें कि वो जितना भी पानी ऊपर आएगा वो नीचे चला जाए और आपके आसपास के जो एरिया है, जो भी आपका जहां पर घर बना हुआ उसके अगल बगल में सारा चला जाए। ये तो हो कि नगरों और नगर और महानगर के लिए, और जो गाँव में है, गांव में क्या होता है हमारा कि पानी सरफेस पे जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस रनऑफ, मतलब जमीन से होते हुए पानी हमारा सारा खत्म हो जाता है। तो हमें चाहिए कि जो गांव है आपका, गांव के बीचों बीच एक ऐसा क्षेत्र मान ले, और बीचों बीच ना हो तो कहीं दूसरी जगह हो जहां पर जो उस जमीन को हम यूज नहीं करते हैं उस जमीन को खुदवाएं हम जो भी अपना रिक्वायरमेंट होगा, और ऐसा एक चैनल दें कि जो सारे जितने भी गांव में पानी वर्षा ऋतु में आ रही है वो सारे पानी कलेक्शन होकर उस टैंक में, वो हमारे तालाब जहां खुदवाए हुए वहां पर चले जाए। अच्छा। और ये भी ध्यान रखें कि जब हम टैंक का निर्माण कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्लोप दें, स्लोप देने से होगा और उस पर लाइनिंग कर दें, लाइनिंग करने से होगा, लाइनिंग करने का मतलब होगा या तो प्लास्टिक से उसको लाइनिंग करें चारों तरफ, या सीमेंट देकर उसको हम लोग प्लास्टर कर दें। उससे होगा क्या कि आपका इवेपोरेशन लॉस नहीं होगा, वो मिट्टी में पानी आपका सोखेगा नहीं, और जैसे ही वर्षा खत्म होती है, जैसे ही वर्षा ऋतु का खत्म होता है और कोई हमें सिंचाई के लिए चाहिए, तो वहां से आप या तो उसमें पंप लगा दें, या तो वहां पर एक ऐसा फिर ड्रेनेज का चैनल दे दें कि वो फिर आप अपने जहां पर आपका खेत हो वहां पर वो डायरेक्ट पानी आपका चला जाए। इससे क्या होगा कि आप जब ऑफ सीजन हो गया तो उस पानी का इस्तेमाल आप खेती के लिए कर सकते हैं, यदि मवेशी को आपको पिलाना है पानी तो वो पानी आपको काम आ जाएगी, या आपको डोमेस्टिक यूज के लिए ज्यादा करना चाहते हैं तो वहां पर कपड़ा धो सकते हैं, ये कर सकते हैं। यदि उसमें आप एक फिल्टरिंग यूनिट बैठा देते हैं जो जहां पर डेवलप्ड गांव है तो वो पानी आपको पीने के योग्य भी आ जाते हैं। देखिए भाइयों, जो हमारा वर्षा ऋतु का पानी होता है वो नॉर्मल वाटर होता है और उसका पीएच जो होता है नॉर्मल होता है, जिसको हम आसानी से अपने कंजप्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो हम इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और ये खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये लवणीय नहीं होता, क्योंकि इसमें सॉल्ट की मात्रा कम होती है, इसलिए वर्षा ऋतु का पानी कृषि और हमें पीने के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छी होती है।
5: और वैसे भी जो किसान भाई हमारे मछली पालन करते हैं तो उन्हें पोखर तो बनवाना ही पड़ता है, तो मुझे लगता है कि वो उस तरीके से भी अपनी पोखर की जो वाटर लेवल है वो बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि एक जो है ढलान टाइप का बना देना चाहिए जिससे कि जो सरफेस पे जो वाटर आते हैं जा करके वहां गिरे, तो इस तरीके से आपका जो वाटर लेवल है वहां का वो भी मेंटेन रहेगा और आपके पोखर में पानी भी ज्यादा आ सकता है। फिलहाल यहाँ पर फायदों की और बात करेंगे हम, जहाँ तक किसान भाई जानना चाहते हैं फायदे ही फायदे हैं इसके, अगर आप वाटर स्टोर करते हैं तो आने वाले फ्यूचर में ही आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इस पद्धति को जानकर आपने जाना, तो थोड़ी सी और बात करते हैं डॉक्टर साहब फायदे की।
6: जी, यहाँ जहाँ तक फायदे के, तो आप ये सोचिए जब हम धान की फसल करते हैं और जब सिंचाई की बात करते हैं तो हम पंपिंग सेट चलाते हैं, उसमें हमारा डीजल एके में पैसा लगता है या इलेक्ट्रिसिटी का रहता है तो हमारा बिजली का बिल भी उठ रहा है, फिर डीजल का आपको पंप सेट खरीदना पड़ रहा है। यदि आप वर्षा ऋतु के जल को संचयन करके रख लिए हैं तो ये कितने आपको फायदा हो गए, इकोनॉमिक लॉस हो गया, इकोनॉमिक आपको ये फायदा हो गया। और दूसरी बात हो गई कि जब आपको पानी की कमी, यदि आपका ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया तो वो क्या आपका ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देगा,
5: जगह पे जमीन भी बंजर थोड़ी होने लगती है
6: जी। और क्या होता है कि इससे एक और फायदा यदि हम करें, कि देखिए अभी क्या हो रहा है, बहुत जगह पानी, शुद्ध पानी आपको पीने के नहीं मिल रहा है, आपको यहाँ तो मुफ्त में पानी मिल जाएगा, उस पानी को आप संचरित कर लें। मैंने जैसे पहले ही बताया कि इसमें सॉल्ट नहीं होता है, इसलिए पानी ये क्या होता है हमारे पीने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसके केवल हमें रिफाइंड करने की जरूरत होती है, क्योंकि जो पानी जब आता है धरती पर तो इसमें जो धूल कण भी कुछ होते हैं, केवल उनको रिफाइन कर लेना होता है, बस वो फिर हमारा पानी पीने योग्य हो जाता है। जैसे आपने बताया कि मछली पालन है, ये मछली पालन के लिए तो पानी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसमें सॉल्ट नहीं होता और मछली के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है।
5: और डॉक्टर साहब, अभी देखा गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में भी कहा था, जल संरक्षण की बात कही थी, और अभी जल जीवन हरियाली भी चल रहा है, तो इसमें क्या अगर हमारे किसान भाई इस पद्धति को अपनाते हैं तो कुछ सब्सिडी या कुछ ऐसे स्कीम्स भी अवेलेबल हैं?
6: जी जी, जैसे आप तालाब, मैंने पहले बोला कि एक तालाब खुदवाइए, देखिए तालाब खुदवाने का जो भी खर्चा होता है उसका 90% आपको सरकार देती है, 10% आप जो भी स्वयं संरक्षा स्वयं समूह बनाया हो या जो बनवाना चाह रहे हैं उनको देना पड़ता है। 100 रुपया समझ लीजिए, 100 रुपया लागत है तो 90 रुपया सरकार देगी, 10 रुपया ही आपको देना है।
5: अच्छा।
6: तो इस तरीके से हम लगाते हैं कि इस पे गवर्नमेंट भी आपको बहुत सब्सिडी दे रही है, यदि कोई तालाब खुदवाना चाहे, मछली पालन के लिए हो, चाहे तो जल को संरक्षित करने के लिए तालाब बनवाना है तो बहुत ज्यादा है उनके
5: तो
6: लिए।
5: क्या ये ग्रामीण जो हमारे भाई हैं उनके लिए ही है या फिर शहरों में?
6: नहीं, ये शहरों में तो नहीं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में ज्यादा है, और एक पंचायत स्तर पर ये है कि मतलब कुछ लोग, समूह के लोग उठ कर आए पंचायत में, और एक पंचायत में हमारा तालाब हो जाएगा तो आस पास के गाँव को भलाई होता है, भलाई के लिए है।
5: तो इसके फायदे आपने जाना किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, इसके बाद इस पद्धति को बनाने समय हमारे जो श्रोता है उन्हें क्या कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए?
6: जी देखिए, सबसे बहुत जरूरी है, यदि हम तालाब में यदि खुदवा रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें पानी की आवश्यकता कितनी है। पानी आवश्यकता ये केवल नहीं कि हमें फसल के लिए, ये भी देखना है कि हमें खरीफ और रबी दोनों फसल, यदि हमारा 10 हेक्टेयर में गाँव में खेती हो रही तो 10 हेक्टेयर में हम जितने भी ये फसल लगाते हैं चाहे तीनों सीजन में, तो उन सब सीजन का मिलाकर हमें कितनी पानी की जरूरत है, और जितनी पानी सब मान लीजिए हमें 10 लीटर पानी की जरूरत है तो उसमें 2 लीटर एक्स्ट्रा हम मानेंगे, क्योंकि हमारा इवेपोरेशन लॉस हो जाता है तो उससे थोड़ा ज्यादा चलेंगे। यदि आप मवेशी पालन के लिए भी करना चाहते हैं तो 20% पानी, 20% और स्टोरेज बढ़ाएंगे। यदि हम ड्रिंकिंग के लिए जाना चाहते हैं तो और आप ज्यादा बढ़ाइए, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यदि बिहार यदि आप सरकार से लेते हैं इसमें अनुदान, तो वो लोग वहाँ के इंजीनियर जो होंगे वाकई डिजाइन कर लेंगे कि आपके यहाँ कितनी फसल है, कितना मवेशी पालन के लिए चाहिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, तो सबको मिलाकर वो एक एस्टिमेट देते हैं कि आपको इतने मीटर इतने घनत्व में आपको तालाब खुदवाने की जरूरत है। तो ये हो गया कि पहला आपको ये ध्यान देना है। दूसरा ये भी ध्यान देना है कि हमारा जो सीजन जहाँ पर यह तालाब खुद रहा है वहाँ का एटमोस्फेरिक कंडीशन कैसा है, वहाँ पर हमारा कितना पर डे इवेपोरेशन लॉस, कितना पानी, समझ लीजिए गर्मी के दिन में सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो हमारा पानी का नुकसान भी होगा, तो भी आपको देखना है कि हमारा कितना नुकसान हो जाएगा उस टाइम में जो इवेपोरेट हो रहा है, तो ये ध्यान देना है। यदि हम अपने भूगर्भ जल को कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, मतलब वाटर टेबल को रिचार्ज कर रहे हैं, तो वहाँ देखना है हमें कि हमारे कंजम्पशन जो हम पहले स्टोर कर लें उसके बाद वो जो वाटर है उसको हम फिर भूगर्भ जल में दें, ये भी आपको ध्यान देना होता है।
5: तो यहाँ पर आपने जाना ध्यान देने योग्य बातें, तो जहाँ तक इस जल संचयन पद्धति की बात है तो ये फायदे ही फायदे लेकर आता है हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए, तो बस आप ही कदम बढ़ाइए और सरकार आपके फायदे के लिए आपके हित के लिए है ही, तो आइए और कदम बढ़ाते हैं इस जल संचयन की ओर, और आपको यहाँ पर जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं आप उसे अपनाएं और जल संचयन पद्धति को जरूर अपनाएं। तो आज के लिए इतना ही 90.8 FM ग्रीन पर, कल फिल्म से मैं हाजिर रहूंगी आप सभी के बीच एक नए विषय के साथ। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाल।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है उमंग उमंग उमंग
1: उमंग। सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
2: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
1: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
2: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदारे जी का।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
2: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
1: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओ, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओ, आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि यह झील है कहाँ। तो श्रोताओ, आपको बता दें कि यह झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको यह भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओ, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओ। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहाँ गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहाँ तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभदेव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओ, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओ, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBNS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
3: अरे आशीष, दीपिका आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
4: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
4: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
4: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
4: अच्छा।
3: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
4: मंगल पांडे।
3: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: अम्मा,
1: दादी जी लड़ाई में कौन कौन थे?
2: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
0: बड़े बहादुर थे ये।
2: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
1: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
0: वो कहाँ के रहने वाले थे?
2: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
0: अच्छा।
2: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
1: अच्छा।
2: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
0: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
2: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
0: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
2: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
1: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
2: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
1: ऐसा क्यों?
2: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
0: दादी, फिर क्या हुआ?
2: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी। सही कहे।
1: फिर क्या हुआ दादी?
2: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
0: फिर क्या हुआ दादी?
2: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
1: अच्छा।
2: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
0: उसके बाद क्या हुआ?
2: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
5: ये दोनों भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा

0: गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
1: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
2: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
0: मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
3: ए मंगल पांडे, वॉच आउट!
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
4: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया। कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग दी।

0: মাংটা হয় তুরন্ত হাসপাতাল ভেজ।
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
1: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता।

0: सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
1: इसके बाद क्या हुआ दादी?
0: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई, लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
1: अच्छा,
0: इस कविता में क्रांति वीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
2: जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भैल बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भई मंगल मस्ती में चूर चलल पहला बागी मशहूर चलल गोरनी का पलटनी का आगे बलिया के बांका सूर चलल गोली के तुरंत निशान भईल जननी के भेंट परान भईल आजादी का बल बेदी पा मंगल पांडे बलिदान भेल जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भैली।
1: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
0: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
1: अच्छा,
0: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
4: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
5: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
6: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
5: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
6: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
5: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
6: अच्छा माँ।
7: माँ, माँ।
6: लो देवेंद्र भी आ गया।
7: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
5: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
6: ठीक है माँ।
7: नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठ कर खाऊंगा।
6: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
7: ये देखो दीदी, ये मारा।
6: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
7: अरे ये मारा।
6: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
7: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
6: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। दीदी की आवाज कम करो।
7: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
5: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
6: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है। अरे
8: हमें अंदर आने दो।
6: अरे क्यों?
9: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
6: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
8: लड़की हट।
6: माँ,
8: ये चाकू देख रही है ना?
9: ज्यादा होशियारी मत दिखा,
6: अरे
9: वरना बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
6: माँ,
9: हट रास्ते से।
10: ए
9: चोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो।
11: तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
10: मेरी माँ को छोड़ दो।
11: ये चाकू देख रही है ना?
10: छोड़ दो। नहीं मेरी माँ को कुछ मत करो। चाबी, चाबी मुझे नहीं मालूम।
11: जल्दी।
10: याद नहीं कहाँ रखी है? छोड़ दो।
9: बहाने बाजी करती है। जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूँगा।
10: अरे मेरे माँ को छोड़ो। मेरी माँ को छोड़ो।
11: चुप, चुप। आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप। आवाज नहीं।
9: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
10: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
6: देवेंद्र।
7: हाँ दीदी।
6: चोर तो इस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
7: हाँ।
6: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
7: अच्छा।
6: हेलो।
11: हाँ बेटा बोलो।
6: पापा। पापा।
11: हाँ बोलो बेटा।
6: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुस आए हैं।
11: कौन घुसा है?
6: माँ को बहुत मार रहे हैं।
11: नहीं नहीं, अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, है? ठीक है?
6: देवेंद्र, मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
7: अच्छा।
4: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
12: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
5: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
12: देखो ना,
5: बहादुर है मेरी बच्ची।
4: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
13: उमंग उमंग उमंग उमंग।
14: जानते हो कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40,00,000 करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
15: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
14: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
16: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1,045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
15: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
16: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
17: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
18: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
16: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
14: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
19: जी
14: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
19: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
14: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
20: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें। वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दे। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे अनु। आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। वैसे किसान भाइयों, अक्सर देखा गया है कि आप खेत पर तो खेती करने जाते हो, लेकिन आपके घर के आसपास थोड़ी सी जमीन रह जाती है तो उसे भी आप अपने हित में, अपने लाभ में आप उपयोग कर सकते हो, और वो है पौष्टिक उद्यान बनाकर या पोषण वाटिका बनाकर। वैसे दोस्तों, पौष्टिक उद्यान या पोषण वाटिका से मतलब है हमारा कि वैसा एक गार्डन जिसमें वो चीजें आप लगा सके जो कि आपके हित के लिए, जो आपको पोषण प्रदान करे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूं कि आज का हमारा विषय है पौष्टिक उद्यान या पोषण वाटिका, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं मैम डॉक्टर संगीता श्री, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में, और इस विषय पर आप विस्तार से जानकारी देंगे हमारे किसान भाइयों को, इसलिए आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले मैम, जब सवाल की ओर बढ़ें, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं, जो भी उनकी चिंताएं हैं, जो भी उनकी परेशानी है, जो भी उनकी उत्सुकता है इस बारे में जानने की, यानी कि पोषण वाटिका के बारे में जानने की, तो आए सबसे पहले बताएं हमारे किसान भाइयों को कि पोषण वाटिका क्या है।
2: नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको पोषण वाटिका का एक परिचय देती हूँ। पोषण वाटिका या रसोई घर बाग या फिर गृह वाटिका, उस वाटिका को कहा जाता है जो घर के अगल बगल में, घर के आंगन में ऐसी खुली जगह पर होती है जहां पारिवारिक श्रम से परिवार के इस्तेमाल हेतु विभिन्न मौसमों में मौसमी फल तथा विभिन्न सब्जियां उगाई जाती हैं। पोषण वाटिका का मकसद रसोई घर के पानी व कूड़ा करकट का इस्तेमाल करके घर की फल व साग सब्जियों की दैनिक जरूरतों को पूरा करना है। आजकल बाजार में बिकने वाली चमकदार फल और सब्जियों को रासायनिक उर्वरक प्रयोग करके उगाया जाता है। इन रासायनिक दवाओं का कुछ अंश फल सब्जी में बाद तक बना रहता है, जिसके कारण उन्हें इस्तेमाल करने वालों में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है,
0: या फिर ये कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो थोड़ी सी कमजोर
2: हो जाती है। इसके अलावा फलों व सब्जियों के स्वाद में भी अंतर आ जाता है, इसलिए हमें अपने घर के आंगन या आसपास की खाली जगह में छोटी छोटी क्यारियां बनाकर जैविक खादों का इस्तेमाल करके रासायन रहित फल सब्जियों को उगाना चाहिए।
0: तो मैं इससे लाभ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
2: हाँ, इनके अनेक लाभ हैं। एक तो आपको रासायनिक रहित सब्जी मिलेगी, पोषण तत्वों से भरपूर। पोषक वाटिका अच्छी खासी बचत का भी स्रोत है। सब्जी उत्पादन बढ़ाने में भी पोषण वाटिका का योगदान है। गृह वाटिका या पोषण वाटिका लगाकर महिलाएं अपनी व अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकते हैं। पोषण वाटिका से प्राप्त मौसमी फल व सब्जियों को परिरक्षित कर साल भर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि जैम, जेली, केचप, ये सब बनाया जा सकता है। और जब मौसम नहीं हो इनका, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मनोरंजन और व्यायाम का भी एक अच्छा साधन है, तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी खुद उगाई गई फल सब्जियों बाजार की फल सब्जियों से अधिक स्वादिष्ट और संतोषप्रद लगता है।
0: अच्छा देखा गया मैम कि अभी शहरों की बात कर लेते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि उनके आसपास जो है जैसे नींबू के पौधे हो जाए, मिर्च के पौधे हो जाए, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। अगर ग्रामीण जीवन से उतर कर बाहर आकर हम बात करें शहरों के, तो शहर में भी आजकल लोग देखते हैं कि फूलों से ज़्यादा अपने गमलों में मिर्च के पौधे लगाने लगे हैं, नींबू के पौधे लगाने लगे हैं। वैसे छोटे छोटे जो ज़्यादा वजन वाले जो फल या सब्जी ना हो वैसे पौधे लगाने लगे हैं। अब आप उनकी टेरेस पर छत पर जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, काफी सुंदर लगता है देखने में। तो इसे भी आप कह सकते हैं कि अगर शहरों में अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप गमलों में छोटे छोटे जो कम वजन वाले जो फल हैं, जो सब्जी हैं, आप लगा सकते हैं। देखने में भी काफी अच्छा लगता है और आपके किचन के लिए भी थोड़ा जो है वो मिल जाता है। तो यही लाभ है इसके। और मैम अगर पोषण वाटिका की यहाँ पर बात हो रही है, पौष्टिक उद्यान की बात हो रही है, तो हम इसके बनाव के बारे में जानना चाहेंगे।
2: पोषण वाटिका बनाने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन, उसका बहुत ही अहम भूमिका होता है। ज्यादातर ये स्थान घर के पीछे या आसपास ही होते हैं, जिससे कि थोड़ा कम समय मिलने पर भी काम करने में सुविधा रहती है
0: जी।
2: तथा घर में लगे नलकूप और कुएं का पानी तथा स्नान घर का पानी, रसोई घर में इस्तेमाल किया गया पानी पोषण वाटिका तक पहुंच सके और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। स्थान चयन करते समय यह भी ध्यान देना चाहिए कि स्थान खुला हो ताकि उसमें सूरज की भरपूर रोशनी आसानी से पहुंच सके तथा जानवरों से सुरक्षित हो और उस स्थान की मिट्टी उपजाऊ हो। और जहां तक पोषण वाटिका के आकार का संबंध है तो वह जमीन की उपलब्धता, परिवार के सदस्यों की संख्या और समय की उपलब्धता पर निर्भर होता है। आयताकार आकार का वाटिका बनाना वर्गाकार आकार के वाटिका से हमेशा अच्छा होता है। 5 वयस्क सदस्यों वाले परिवार के लिए प्रतिदिन 250 ग्राम के हिसाब से एक परिवार के लिए सब्जियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए 250 वर्ग मीटर का क्षेत्र पर्याप्त होता है
0: जी।
2: एक आदर्श पोषक वाटिका के लिए उपलब्ध 250 वर्ग मीटर क्षेत्र में बहुवर्षीय पौधों को वाटिका में उस तरफ लगा देना चाहिए जिससे कि अन्य दूसरे पौधों पर छाया ना पड़ सके, ना ही एक वर्षीय सब्जियों के फसल चक्र और उनके पोषक तत्वों की मात्रा में बाधा डाल सके। एक आदर्श पोषक वाटिका बनाने के लिए पूरे 250 वर्ग मीटर क्षेत्र को 8 से 10 वर्ग मीटर की क्यारियां में विभाजित कर इन बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ध्यान रहे कि गृह वाटिका का बनावट ऐसा होना चाहिए कि वो देखने में खूबसूरत लगे, बहुत अट्रैक्टिव सा लगे। वाटिका के चारों तरफ बाड़ का प्रयोग करना चाहिए जिससे 3 तरफ गर्मी व वर्षा के समय कद्दू वर्गीय बेल वाली लत्तर वाली सब्जियां जैसे लौकी, तुराई, छपन कद्दू, परवल, करेला वगैरह को चढ़ाना चाहिए तथा बची हुई 4थी तरफ गेट या प्रवेश द्वार लगाना चाहिए। फसल चक्र व सघन फसल पद्धति को अपनाना चाहिए। क्यारियों के बीच के मेड़ों पर मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, बाखला, धनिया, पुदीना, प्याज व हरे साग वगैरह उगाना चाहिए जो कि जल्दी से उग जाते हैं। वाटिका के 2 कोनों पर गड्ढों होने चाहिए जिनमें से एक तरफ वर्मी कंपोस्ट यूनिट और दूसरी तरफ कंपोस्ट खाद का गड्ढा हो
0: जी।
2: जिसमें घर का कूड़ा करकट व फसल अवशेष डालकर खाद तैयार की जा सके। इन गड्ढों के ऊपर छाया के लिए सेम जैसी बेल चढ़ाकर छाया देना चाहिए ताकि इससे पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होगी तथा गड्ढे भी छिपे रहेंगे। वाटिका में पपीता, अनार, नींबू, करौंदा, केला, अंगूर, अमरूद वगैरह के पौधा को सघन विधि से इस प्रकार किनारे की तरफ लगाना चाहिए जिससे कि सब्जियों पर छाया ना पड़े और पोषक तत्वों के लिए मुकाबले ना हो एक दूसरे से। फसल चक्र में कुछ यूरोपियन सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, ब्रुसेल स्प्राउट, केल, लीक, लेट्यूस आदि लगाना चाहिए जो कि पोषण तत्व से युक्त है और कैंसर जैसी बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। पोषक वाटिका को और अधिक आकर्षण बनाने के लिए उसमें कुछ सजावटी पौधे भी लगाए जा सकते हैं।
0: अच्छा मैम, यहाँ पर मॉडल पोषण वाटिका की हम बात करते हैं और आपने एक चीज कहा था फसल चक्र, तो उसमें हम जानना चाहेंगे कि एक मॉडल पोषण वाटिका बनाने के लिए फसल चक्र क्या है, इसके बारे में बताएं।
2: एक मॉडल पोषण वाटिका बनाने के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र कहने का मतलब है कि सालों भर हम इस तरह सब्जियां लगाएं कि हमको सालों भर हर तरह के विभिन्न प्रकार के सब्जियां मिलता रहे एक परिवार के लिए।
0: अच्छा।
2: मैंने पहले भी बताया कि हम जो हमारा वाटिका है उसको कई प्लॉट्स में बांट लेते हैं, 7-8 प्लॉट में बांट लेते हैं और सभी प्लॉट्स में सालों भर तरह तरह की सब्जियां लगाते हैं। जैसे कि मानिए पहला प्लॉट है तो उसमें जुलाई से अक्टूबर में अगेती फूलगोभी के साथ अंतर फसल के रूप में पालक ले सकते हैं, नवंबर से मार्च में आलू ले सकते हैं और अप्रैल से जून में चौलाई। इसी तरह दूसरे प्लॉट में बढ़े तो दूसरे प्लॉट में अक्टूबर से फरवरी में पत्ता गोभी के साथ अंतर फसल के रूप में सलाद पत्ती, मार्च से जून के बीच में भिंडी और जुलाई से सितंबर के बीच में मूली।
0: तो ये फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है।
2: हाँ, इसी तरह तीसरे प्लॉट में जुलाई से मार्च के बीच में बैंगन और अंतर फसल के रूप में पालक, अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, ये फसल चक्र अपनाना काफी जरूरी है। और इस तरह से तीसरे प्लॉट में मैंने बताया कि जुलाई से मार्च के बीच में बैंगन और साथ में अंतर फसल के रूप में पालक, अप्रैल से जून के बीच में चौलाई। चौथे प्लॉट पे आते हैं तो आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में पछेती फूल गोभी के साथ अंतर फसल के रूप में गांठ गोभी और मार्च से सितंबर के बीच में बैगन के साथ अंतर फसल के रूप में लाल साग।
0: अच्छा।
2: नवंबर से मार्च के बीच में पांचवें प्लॉट में आप प्याज लगा दें और जून से अक्टूबर के बीच में आप भिंडी का सब्जी का उपयोग आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और छठे प्लॉट में सितंबर से दिसंबर के बीच में पत्ता गोभी है, दिसंबर में आप गांठ गोभी, जनवरी से मई के बीच में करेला और जून से अगस्त के बीच में लोबिया बरसाती वाली। सातवें प्लॉट में अगस्त से दिसंबर में आप टमाटर अगेती टमाटर और जनवरी से जून के बीच में प्याज आप उगा सकते हैं। सितंबर से दिसंबर के बीच में आप आठवें प्लॉट में आलू अगेती वाली लगा दें, जनवरी से मई के बीच में फूट ककड़ी आदि लगा सकते हैं और जून से अगस्त के बीच में हरी खाद के रूप में लोबिया। इसके अलावा अन्य सब्जियों की भी जरूरत के मुताबिक आप लगा सकते हैं, कद्दू वर्गीय या बेल वाली या लत्तर वाली सब्जी जैसे लौकी, तुरई, छपन कद्दू, परवल, करेला, मैंने पहले भी बताया, को बार पे चढ़ाना चाहिए और दो क्यारियों के बीच में मेड़ों पर आप जल्दी से कम अवधि वाली उगने वाली सब्जी जैसे मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, बाकला, धनिया, पुदीना, प्याज, हरा प्याज, साग वगैरह लगा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर परिवार के सभी सदस्य थोड़ा श्रम कर गृह वाटिका में सफलतापूर्वक फल और सब्जी उपजा लें तो ना सिर्फ सालों भर विभिन्न प्रकार की ताजी सब्जियां प्राप्त होती है बल्कि यह मनोरंजन और व्यायाम का भी एक अच्छा साधन सिद्ध होता है। इससे घरेलू आय में भी वृद्धि होगी, अतः पोषण वाटिका हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि और बुद्धिमता की एक कुंजी है।
0: तो आपने जाना किसान भाइयों, या फिर मैं यूं कहूं कि हमारे जितने भी श्रोता हैं वो भी पौष्टिक उद्यान एक बना सकते हैं, पोषण वाटिका बना सकते हैं, अपने घर के आगे जो बची खुची जमीन होती है उसका इस्तेमाल करके इसके क्या लाभ हैं आपने वो भी जाना, साथ ही एक मॉडल पोषण वाटिका के बारे में आपने जाना, फसल चक्र कितना ज़रूरी है ये भी जाना आपने। तो बस जानना जरूरी नहीं है, आप अगर चाहते हैं करना तो आप आगे बढ़ें, अपने कदम आगे बढ़ाएं और ज़रूर पोषण वाटिका बनाएं। देखिए अगर आप ये कदम उठाते हैं तो जो लोग आपके घर आते हैं, जो लोग आपके इस काम को देखते हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें। तो एक कदम आप बढ़ाइए और फिर जनता तो आपके पीछे आ ही जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी 90.8 FM ग्रीन पर, तो सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। कृषि
3: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
4: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
4: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया, अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
5: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए विषय लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में, फल वर्गीय सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन। इस विषय के साथ हमारे बीच हैं आज डॉक्टर प्रीति सिंह, जो कि वैज्ञानिक हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम स्वागत है आपका।
8: सबसे पहले मैं अपने किसान भाई को बताना चाहूंगी कि नर्सरी की उपयोगिता क्यों, क्या है और हमें ये करना ही क्यों चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि जो फल है, फलों की नर्सरी है, वहाँ ग्राफ्ट, शायन के मात्र पौधे, रूटस्टॉक और पपीता जैसे बीज प्रवर्धित फसल की पौध के उत्पादन के लिए आवश्यक है। युवा पौधों को चाहे बीज से या वनस्पतिक प्रजनन द्वारा प्रवर्धित किया गया हो, विशेष रूप से विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्हें प्रतिकूल तापमान, भारी वर्षा, सूखा हवा, विभिन्न प्रकार के कीट और बीमारियों से बचाना होता है। यदि बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं तो अंकुरण अक्सर खराब होता है और युवा पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं और परिपक्व होने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए फल की फसलों को खेत में रोपने से पहले नर्सरी में प्रचारित और किया जाना चाहिए और उगाया जाना चाहिए। तो जो हमारी नर्सरी है, उस जो ये फलों की नर्सरी है, इसको हम तीन भाग में इस टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो सकता है कि नर्सरी की साइट का चयन कैसे करें, दूसरा नर्सरी की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और तीसरा कि नर्सरी की तैयारी करें कैसे। तो सबसे पहले बिंदु पे आते हैं कि नर्सरी प्रबंधन के लिए साइट सिलेक्शन कैसे करें। तो नर्सरी के लिए साइट का चयन काफ़ी सावधानी और सोच विचार के बाद किया जाना चाहिए, क्योंकि नर्सरी के स्थान का उसकी समग्र सफलता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नर्सरी के लिए स्थान और स्थान के चयन के लिए विचार किए जाने वाले 5 महत्वपूर्ण कारक हैं। जलवायु, स्थान पर मध्यम जलवायु और लंबे समय तक बढ़ने वाला मौसम होना चाहिए, विशेष रूप से तेज जलवायु, उतार चढ़ाव या तेज हवा का वेग या ओलावृष्टि की घटनाओं के साथ अत्यधिक तापमान का अनुभव करने वाले स्थानों से बचना चाहिए। दूसरा है स्थलाकृति, जिसे हम टॉपोग्राफी भी कह सकते हैं। अगर जो सबसे कुशल उपयोग के लिए नर्सरी के लिए भूमि को समतल किया जाना चाहिए, बाढ़ या पाले की आशंका वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए, नर्सरी के लिए निचले इलाकों का चयन नहीं करना चाहिए। तीसरा है मिट्टी। मिट्टी जो हो हमारी गहरी बलुई दोमट से चिकनी दोमट बनावट वाली और पर्याप्त जल धारण क्षमता करने वाली होनी चाहिए और ये कंकरीला या पथरीला नहीं होना चाहिए। अधिकांश फल पौधों के लिए इष्टतम जो मिट्टी का पीएच मान है वो 5 से 7.2 के आसपास है। 7.5 से अधिक अगर पीएच मान है तो इस साइट को चुनने से बचना चाहिए। चौथा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पानी। एक आदर्श नर्सरी साइट में रोपण और बढ़ते मौसम के दौरान वर्षा का वितरण अच्छा होना चाहिए। नर्सरी के निकट या भीतर एक स्थायी जल का स्रोत होना चाहिए जिससे हम सिंचाई सफलतापूर्वक कर सकें और नई पौधे के लिए सिंचाई का पानी लवण रहित होना चाहिए। जो पांचवा और इम्पोर्टेंट बात है वो है कि कीट पतंगों और रोग पैदा करने वाले जीवों की व्यापकता। गंभीर कीटों या बीमारियों निमटोड या खरपतवारों की उपस्थिति को पहले ही जांच लेना चाहिए और अगर किसी मिट्टी में इन सब की बहुत व्यापकता है तो हमें इस साइट को नहीं चुनना चाहिए। अब हम आते हैं कि फल नर्सरी की स्थापना के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी नर्सरी साइट को सेलेक्ट करते हैं या चुनते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके चारों बगल फेंसिंग या बाड़ लगा लेना चाहिए। फेंसिंग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पोल बना के उसके ऊपर वायर या तार चढ़ा सकते हैं या फिर आजकल एक नेचुरल फेंसिंग वाला भी पॉइंट है जहाँ पे आप करूंदा जैसे फलों को नेचुरल फेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। सड़क और रास्ते होने चाहिए आपके नर्सरी में ताकि जो आपके जो भी प्रवर्धित पौधे हैं उनको जल्दी से मार्केट तक लेके जाया जा सके। और तीसरा कार्यालय या फिर सह भंडार जहाँ से आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें। उसके बाद आता है मदर प्लांट ब्लॉक। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो फल का प्रवर्धन होता है वो या तो ग्राफ्ट से होता है या तो लेयरिंग से होता है या बडिंग या कटिंग से होता है। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा मदर प्लांट का ब्लॉक हो या शायन बैंक का ब्लॉक हो। और ये जो मदर प्लांट है हमारा ये डिपेंड करता है कि हमारे बाज़ार में किस वैरायटी की मांग ज़्यादा है। जिस वैरायटी की भी मांग ज़्यादा हो उसी वैरायटी का मदर ब्लॉक एस्टैब्लिश करना चाहिए हमें नर्सरी में। किसी भी नर्सरी की सफलता काफ़ी हद तक आगे के गुणन के लिए मात्र पौधों के प्रारंभिक चयन पर निर्भर करती है और इसे अनुसंधान संस्थान या प्रतिष्ठित नर्सरी से ही खरीदा जाना चाहिए। फिर बात करते हैं सिंचाई प्रणाली की। फल नर्सरी में पौधों को सिंचाई के लिए पानी की प्रचुर आपूर्ति की आवश्यकता होती है क्योंकि उन्हें सीमित मात्रा में पॉटिंग मिक्सचर के साथ पॉली बैग में उगाया जाता है। अतः ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का होना पानी की बर्बादी को कम करता है और साथ ही साथ पौधे को आवश्यक मात्रा में जल भी प्रदान करता है। छठी जो बात है वो है सीड बेड तैयार करना। जो बीज की क्यारियाँ तैयार करते हैं नर्सरी में यह घटक पौध और रूटस्टॉक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इन्हें जल स्रोत के पास बिछाया जाना चाहिए क्योंकि इन्हें बार बार पानी देने की आवश्यकता होती है। सुविधाजनक लंबाई के साथ इनकी जो चौड़ाई है वो 1 से 1.5 मीटर के आसपास होनी चाहिए और दो बेड के बीच में जो स्पेस है वो लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। ये जो 60 सेंटीमीटर का जो स्पेस है इसे बीज बोने निराई करने पानी देने छिड़काव करने और पौधे उठाने में आसानी होती है। अगर दूसरा जो तरीका है नर्सरी में पौधे तैयार करने का, एक तो सीड बेड हो गया और दूसरा है पॉली बैग। पॉली बैग में पौध और रूटस्टॉक उगाने के लिए नर्सरी बेड की तुलना में अधिक जगह की आवश्यकता होती है लेकिन पौधों की वृद्धि में एकरूपता के साथ साथ मृत्यु दर भी काफ़ी कम हो जाती है। प्रत्येक बेड 500 के आसपास ग्राफ्ट या गूटी रखा जा सकता है और इसको अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। सेवेंथ पॉइंट जो है वो है पॉटिंग मिश्रण या पॉटिंग यार्ड। तो जो भी हमारा नर्सरी का एरिया है वहाँ पे हमारा एक पॉटिंग यार्ड होना चाहिए जहाँ पे टाइम टू टाइम जो हमारा पॉटिंग मिक्सचर है वो तैयार होते रहना चाहिए। पॉटिंग एक अच्छा पॉटिंग मिश्रण में एक भाग मिट्टी, एक भाग नदी के किनारे का रेत और एक भाग FYM होना चाहिए। इसका अनुपात 2:1:1 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि दो भाग मिट्टी, एक भाग रेत और एक भाग FYM, इनको मिला के या इनको जो आपका पॉटिंग यार्ड है वहाँ पे मिला करके आप पॉली बैग में भर सकते हैं और इसमें बाद में आप जो भी बीज डालना चाहें वो आप डाल के तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आठवां पॉइंट है कि जो ये पौधे हैं नर्सरी के, ये कभी कभी हम पॉली हाउस में भी तैयार कर सकते हैं। तो जो पॉली हाउस में तैयार हुए पौधे होते हैं वो थोड़े से नाजुक होते हैं, तो उनको डायरेक्ट फील्ड में ले जाने से पहले अगर आपके पास शेड नेट की फैसिलिटी है तो आप उसको शेड नेट में लेके जाइए, क्योंकि शेड नेट में क्या होता है कि जो आपके पौधे होते हैं उनको थोड़ा सख्त होने का टाइम मिलता है, वरना पॉली हाउस से तुरंत बाहर ले जाने पे, फील्ड में लेके जाने पे उनमें बहुत ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ सकती है। इसीलिए अगर पॉली हाउस में आप पौधे उगा रहे हैं तो उसको पहले आप शेड नेट में लेके जाइए, वहाँ पे 1-1.5 महीना रखिए और फिर 1-1.5 महीने के बाद आप उसको फील्ड कंडीशन में लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब नर्सरी की तैयारी करें कैसे। तो नर्सरी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें करनी है क्यारी की तैयारी। जहाँ पे भी हम क्यारी की तैयारी करेंगे वहाँ पे खरपतवार का उन्मूलन, मिट्टी को समतल करना और खेत को जोतना शामिल है। खेत की 2 बार गहरी जुताई करने से मिट्टी को ढीला करने और खरपतवार तथा अन्य वनस्पतियों को नष्ट करने में मदद मिलती है। जुताई करते समय मिट्टी में पाए जाने वाले पत्थरों और जड़ों को हटा देना चाहिए, क्योंकि वे पौधे के विकास में बाधा डालते हैं। सूखी घास और झाड़ी सामग्री को जलाने से कीड़े और खरपतवार की समस्या को कम करने में मदद मिलती है और बची हुई खनिज समृद्ध राख बीज बिस्तरों की उर्वरता को की में सुधार करती है। अब जब हमने खेत की तैयारी कर ली है तो हम जो हमारा बेड है, सीड बेड है, उसको उसका लेआउट करना और समतलीकरण करना हम कर सकते हैं। अन्य आकारों की तुलना में आयताकार बेड्स को प्राथमिकता दी जाती है। बीज शैया की चौड़ाई इतनी रखनी चाहिए कि बीज शैया में प्रवेश करने किए बिना निराई गुराई का कार्य किया जा सके। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो इसकी चौड़ाई होनी चाहिए वो 1 से 1.5 मीटर ही होनी चाहिए और आप इसकी लंबाई 12.5 मीटर तक कर सकते हैं, लेकिन 12.5 मीटर से ज़्यादा करना उचित नहीं होगा। नर्सरी में उपयोग की जाने वाली बीज क्यारियों के 3 प्रकार होते हैं और ये डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे वर्षा कितनी होती है। अगर बहुत अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पे ऊंचे बिस्तर बनाने चाहिए, मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची सीड बेड बनाइए। जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है वहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर नीचे सीड बेड बना सकते हैं और जहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती है वहाँ पे समतल क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। देन फिर अब क्यारियों में बुआई कैसे करें। तो क्यारियों में बुआई करने के लिए जो आपका सीड बेड तैयार हुआ है, जो जिसके लिए आपका सीड बेड के लिए आपका जो भी फार्मयार्ड मैन्योर या पॉटिंग मिक्सर का जो तैयार मिश्रण था उसको डाल के आपने क्यारियाँ जो तैयार की हैं उसमें आपने बीज को बोना है। बीज को बहुत गहरा नहीं बोना है। जब बहुत छोटे बीज होते हैं तो उनको 1 या 1.5 सेंटीमीटर की ही गहराई में बोना चाहिए और अगर थोड़े बड़े सीड्स हैं, बड़े बीज हैं, तो उनको थोड़ा गहरा रोपा जा सकता है। पॉली बैग अगर आप क्यारियों में नहीं कर रहे हैं तो इसको आप पॉली बैग में करेंगे। तो पॉली बैग में करने के फायदा यही है कि जब भी आप इसमें से पौधे को निकाल के फील्ड में लेके जाते हैं या फिर आपसे कोई खरीद के लेके जाता है तो क्या होता है कि जो इसकी जड़ होती है उसको बहुत कम डैमेज होता है, जिसकी वजह से इसका जो हेल्थ रहता है वो बढ़िया बना रहता है और जब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं फील्ड में तब भी इसका जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। फिर हम करते हैं बुआई का समय। बुआई का समय जनरली जो होता है वो 3 समय हम बुआई कर सकते हैं। एक तो फरवरी मार्च का महीना हो जाता है, एक जुलाई अगस्त का महीना हो जाता है और एक सितंबर अक्टूबर का महीना हो जाता है। तो सबसे बढ़िया समय जो हमारे हमारे रीजन के लिए है वो अगस्त जुलाई अगस्त का महीना है, जब वर्षा ऋतु होती है। और अगर हम नर्सरी में बडिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग या लेयरिंग की भी बात करें तो इन सबको वर्षा ऋतु के समय ही करना चाहिए। एक जो प्रैक्टिस है जो नर्सरी में की जाती है वो प्रिकिंग होती है। इससे क्या होता है कि बेहतर जड़ और अंकुर के विकास के लिए पौधे को एक नर्सरी बेड से दूसरे नर्सरी बेड या पॉली बैग या गमले में स्थानांतरित किया जाता है। इससे क्या होता है कि प्रिकिंग से जड़ की वृद्धि बढ़ती है और कई प्रजातियों में बेहतर और कुशल जड़ प्रणाली तैयार हो जाती है। अब हम बात करते हैं सिंचाई की, तो बुआई के तुरंत बाद बीज क्यारियों में पानी देना चाहिए। पॉली बैग गमलों को गुलाब के सिर के डिब्बे से सिंचित किया जा सकता है या पॉली बैग या गमलों में लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर गहरे धंसे हुए बिस्तरों में रखा जाना चाहिए ताकि बाढ़ सिंचाई को अपनाया जा सके। और जहाँ पे आपके पास स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी है वहाँ पे आप स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी को यूज़ करके पानी के बर्बादी को बचा सकते हैं। फिर बात आती है निराई गुड़ाई, नियमित रूप से निराई गुड़ाई करनी चाहिए इससे पहले कि वो पानी और मिट्टी के पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू करे और उनके बढ़ने से निराई गुड़ाई करना मुश्किल हो जाए। इससे पहले ही खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए, फूल आने से पहले खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए ताकि उनके पुनर्जनन को नियंत्रित किया जा सके। अब हम बात करते हैं खाद और उर्वरक की। नर्सरी की मिट्टी में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाने से उसकी उर्वरता बनी रहती है। मिट्टी की पोषक तत्व स्थिति और उगाई जा रही प्रजातियों की आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों और सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि नर्सरी से पौधे उठाना कैसे है। नर्सरी से पौधे हटाने के लिए सबसे पहले जो पौधे की मिट्टी है, आसपास की मिट्टी है, उसको ढीला करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसको आप किसी को बेच सकें या फिर आप इसको मार्केट तक भेज सकें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ पे अच्छे से थोड़ा सिंचाई देना होगा, पानी देना होगा। इससे क्या होगा, पौधे के जड़ों, विशेषकर बारीक जड़ों को कोई नुकसान पहुँचाए बिना सावधानी से इन पौधों को उठाया जा सकता है। मिट्टी की गेंद को विभाजित होने से बचाने के लिए जड़ों को मिट्टी की गेंद के साथ घास या अन्य सामग्री में लपेटना चाहिए। पौधों को नर्सरी से उठाने के बाद और खेत में रोपने से पहले छाया में रखना चाहिए और परिवहन के दौरान उन पर पानी छिड़कते रहना चाहिए।
0: उन्नत कृषि।
4: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
5: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, महिलाओं को जितनी परेशानी पीरियड्स से होती है ना, उससे कहीं ज्यादा परेशानी तब होती है जब उनके पीरियड्स समय से पहले रुक जाए। जी हाँ, पीरियड्स अपने साथ कितनी सारी परेशानियां लेकर आता है, मूड स्विंग्स और हाथ पैरों में दर्द, न जाने कितनी सारी दिक्कतें होती है पीरियड्स के दौरान। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरह की परेशानियां होती है और ऐसे में हम सोचते हैं कि ये पीरियड्स जैसी बला हमारे जीवन में है ही क्यों, लेकिन ये बला अगर हमारे जीवन से समय से पहले दूर चली जाती है तब हम ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमारे पीरियड्स इतनी जल्दी क्यों चले गए। देखिए, पीरियड्स के रुकने को कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि जब हमारी महावारी बंद हो जाती है। एक निश्चित समय पर हमारी महावारी शुरू होती है और एक निश्चित समय पर बंद हो जाती है और महावारी के बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच में हो जाता है, लेकिन आजकल जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदल रही है और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पीरियड्स बहुत कम उम्र में रुकने लगे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो जब पीरियड्स 40 की उम्र से पहले अगर बंद हो जाए तो उसे कहते हैं अर्ली मेनोपॉज, यानी कि समय से पहले हो गया हुआ मेनोपॉज। तो अर्ली मेनोपॉज के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले तो अनुवांशिक कारण हो सकता है। अनुवांशिक कारण मतलब कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अगर माँ या बहन को जल्दी मेनोपॉज हुआ हो तो ऐसी स्थिति में संभावना बढ़ जाती है कि आपके साथ भी आपके जो पीरियड्स है बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे, जल्दी ही आपका मेनोपॉज हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। इसमें ये नहीं होता है कि आपको किसी चीज की कमी की वजह से मेनोपॉज हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। दूसरी जो वजह होती है वो कुछ बीमारियां होती है, ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कहते हैं, जैसे कि थायराइड की अगर परेशानी है किसी महिला को या फिर कुछ तरह की अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है महिलाओं को, तो भी अर्ली मेनोपॉज की समस्या देखी जाती है। और अगर हम बात करें ना, तो थायराइड की भी परेशानी आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की। कई बार महिलाएं कैंसर का इलाज करा रही होती हैं जिसमें शामिल होता है कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से ना ओवरी यानी कि अंडाशय काफी हद तक प्रभावित होता है, जिसकी वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और आजकल बहुत सारी परेशानियों की वजह से ओवरी की सर्जरी भी कराई जाती है, यानी कि अंडाशय हटा लिए जाते हैं। तो जब अंडाशय ही हटा दिया जाता है तो भी अर्ली मेनोपॉज हो सकता है और कई बार कुछ संक्रमण हो जाता है और इन संक्रमण की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और जो सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करती है, जो सबसे ज्यादा वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की, वो है जीवन शैली। आजकल धूम्रपान बहुत ही आम बना दिया गया है, पता नहीं क्यों, जो कि बहुत गलत है। हर तरीके से धूम्रपान का कोई फायदा नहीं होता है। और इसके अलावा कुछ कामकाजी महिलाओं को या फिर घरेलू महिलाओं को भी बहुत ज्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है, तो भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और पोषण की कमी, जिसे कि महिलाएं लगातार आम तौर पर नजरअंदाज कर देती हैं और पोषण का हक सिर्फ अपने परिवार वालों का मानती है, तो ऐसी महिलाओं को भी अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है, यानी कि पोषण की कमी भी एक प्रमुख वजह बनती है। इसके अलावा बात करें तो POI यानी कि प्राइमरी ओवेरियन इन्फिशियंसी, यानी कि जब ओवरी सामान्य से पहले काम करना बंद कर देती है, कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि हमारी ओवरी जो तय वक्त होता है उसे पहले ही काम करना बंद कर देती है और हमें अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है। और अर्ली मेनोपॉज जब किसी में आने वाला होता है, आमतौर पे जब मेनोपॉज भी शुरू होने वाला होता है, तो शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब अर्ली मेनोपॉज भी आता है तब भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ लक्षण हमें समझ में आते हैं। पीरियड्स अनियमित हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और आप

0: 28 के पार की हैं तो आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से मिले अगर ये लगातार हो रहा है तो। वैसे भी पीरियड्स अगर लगातार अनियमित हो रहा है तो आप फिर किसी भी एज में हो आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, ये बहुत सारी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा आपको हॉट फ्लशेस भी महसूस होते हैं। हॉट फ्लशेस यानी कि अचानक शरीर में तेज गर्मी महसूस होना, खासतौर से चेहरे पर, गर्दन पर और छाती में, और ये कुछ सेकंड से लेकर ना कुछ मिनट तक महसूस हो सकता है और ये अर्ली मेनोपॉज का या फिर कई बार मेनोपॉज का भी आम लक्षण माना जाता है। हॉट फ्लशेस के लक्षण क्या होते हैं? अचानक तेज गर्मी का एहसास होना, चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आना, खासतौर से रात में जब पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाना और फिर बाद में ठंड लगना। तो ये सारी चीजें हो सकती है कि अर्ली मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज के लक्षण हो। और मेनोपॉज के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनमें से एक चेंज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन में। एस्ट्रोजन जो होते हैं ना, वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, और जब इसका स्तर गिरता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि शरीर बहुत गर्म है और वो पसीना या फिर गर्मी की प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ लक्षण की अगर हम बात करें तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, नींद आने में परेशानी होने लगती है और योनि में सूखापन भी महसूस होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बढ़ जाता है जब मेनोपॉज होने वाला होता है या फिर अर्ली मेनोपॉज होने वाला होता है। अगर मेनोपॉज होता है तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती है, मतलब वो आना ही है और कुछ लक्षण आपको दिखेंगे ही, बस जरूरी होता है कि आप खान पान सही रखें। लेकिन अगर अर्ली मेनोपॉज है तो इसके वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, और कई बार तो महिलाएं मां भी नहीं बनी होती है तभी उनमें मेनोपॉज आ जाता है कि अभी महिला ने अपना परिवार भी शुरू नहीं किया, और ऐसे में मेनोपॉज आना मतलब बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? एक तो होता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, यानी कि HRT दी जाती है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से अगर कुछ परेशानी हो रही है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर को कई बार लगता है कि किसी और वजह से भी आपको परेशानी हो रही है, तो किसी और तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन जब देखा जाता है कि किसी वजह से हार्मोन्स में उलटफेर हुआ है तो फिर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। एक और वजह हो सकती है कि कैल्शियम और विटामिन की भी कमी की वजह से आप में मेनोपॉज देखा जाता है। तो ऐसे में आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो भी सप्लीमेंट्स आप खाते हैं वो डॉक्टर के सलाह से ही खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आपने अपनी मर्जी से कैल्शियम या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया, नहीं, आप खान पान के जरिए से ये सारी चीजें लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है, और अगर मानसिक तनाव की वजह से अर्ली मेनोपॉज के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, यानी कि ये दवाइयां आपके तनाव को कम करती हैं, आपको आपके मूड को थोड़ा बेहतर बनाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाइए, नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए और सबसे जरूरी धूम्रपान बंद कीजिए। और धूम्रपान तो आप फिर चाहे लड़का हो या लड़की, आपके शरीर को किसी ना किसी तरीके से ये नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ये आपका जेंडर नहीं देखेगा, तो धूम्रपान किसी को भी नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आप में ऐसे लक्षण भी आने शुरू हो गए हैं और डॉक्टर से आप दिखाएंगे तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये परेशानी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको वो यही सलाह देंगे, आपको कोई ज्यादा दवाइयां नहीं देंगे, वो कहेंगे कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 वगैरह जो भी है जरूरी है वो भरपूर मात्रा में हो। आप इसके साथ ही एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और कोई भी धूम्रपान या फिर अल्कोहल जैसी चीजों का सेवन मत कीजिए। और क्या किन्हीं को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या अर्ली मेनोपॉज को रोका जा सकता है? देखिए, लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या उसे रोका जा सकता है? तो पूरी तरीके से रोकना हमेशा संभव नहीं है, अगर ये खास तौर से अनुवांशिक या फिर मेडिकल किसी रीजन की वजह से हो, जैसे कि आप कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसकी वजह से अगर हो तो अर्ली मेनोपॉज को रोकना आमतौर पर संभव नहीं होता है। हालांकि चांसेस रहते हैं पर बहुत कम रहते हैं, लेकिन जोखिम कम किया जा सकता है अगर आप धूम्रपान से बचे, हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज को रोक सकते हैं। लेकिन रुक गया है तो उसके बाद बहुत परेशानी होती है। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तनाव कम रखें और समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपको दिख रहा है कि आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं और आप 28 के पार की हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े। और डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर आपकी उम्र 40 साल अभी हुई भी नहीं है और 40 से पहले ही आपके पीरियड्स बंद हो जाए या फिर 3-4 महीने तक नहीं आए, तो ऐसे में आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और आपको खान पान का तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खान पान सही रखेंगे, तनाव कम रखेंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे, और साथ ही धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। तो इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको सिर्फ अर्ली मेनोपॉज से ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो फिर क्यों नहीं हम बीमारियों को आने से पहले उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे आने ही नहीं देते हैं, तो कितना अच्छा होगा ना। तो बस इन्हीं सारी बातों का और ध्यान रखें। और आजकल हमारा खान पान बहुत खराब हो गया, हम पैकेट फूड्स खाते हैं और ये पैकेट फूड्स भी हमारे मेनोपॉज अर्ली मेनोपॉज की वजह बन सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें होती है जो हमारे हॉर्मोन्स को इफेक्ट करती है। जाकर ध्यान रखें कि घर का बना खाना ज्यादा खाएं, बाहर के खाने से बचे। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप खुश रहेंगी तभी आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम है हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितने। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार
5: नमस्कार, कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र श्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दे। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडा क्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज से यानी FM ग्रीन और ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जहां पर आपके लिए बातें होती है उन्नत कृषि कार्यक्रम में खेती बाड़ी की। तो आज बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं और आज जो विषय है जी हाँ, मिल्की मशरूम की खेत। प्रजातियों की बात करें तो इसमें भी जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं तो उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। और मशरूम की जहाँ तक बात है तो आज महिलाएँ और व्यवसायी जो हैं व्यावसायिक तौर पर मशरूम की खेती कर रहे हैं और आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं इसकी खेती करके। तो आज थोड़ा विस्तार से जानेंगे मिल्की मशरूम के बारे में। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद अनु।
0: मैम बिहार में वैसे कौन कौन सी प्रजातियां हैं मशरूम के जिसका हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं?
2: हमारे बिहार की जो जलवायु है उसके अनुकूलता के अनुसार चार तरह की मशरूम जो है उसकी खेती हम लोग प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और पेडिस्ट्रा मशरूम, ये चारों प्रजाति हम लोग करके सालों भर मशरूम की खेती हम लोग बिहार में कर सकते हैं।
0: अच्छा, तो मिल्की मशरूम की आज हम बात कर रहे हैं और मिल्की मशरूम की खेती कब करें, कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं।
2: मिल्की मशरूम को हम लोग श्वेत दुधिया मशरूम भी कहते हैं, इसको दूध छाता भी कहते हैं और ऐसे इसका नाम कैलोसाइबा इंडिका है और यह दूध के जैसा सफ़ेद दिखता है इसलिए इसको हम लोग दूध छाता भी कहते हैं। और इसकी खेती जो है प्राकृतिक रूप से हम लोग मार्च अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर यहाँ तक कि कभी कभी नवंबर तक भी इसकी खेती हम लोग कर सकते हैं और ऐसे अक्टूबर तक, जनरली सितंबर अक्टूबर तक हम लोग इसकी खेती करते हैं क्योंकि उसके बाद हमारा ऑयस्टर और बटन का समय आ जाता है। तो जो हमारा पहले जो मशरूम ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती जनरली होती थी तो जो हमारा पीरियड था कि जिसमें मशरूम का कोई खेती ही नहीं होता था, जिसमें हम लोग कहते थे कि बस मार्च आ गया मशरूम की खेती खत्म हो गया, फिर सितंबर अक्टूबर आएगा तो फिर मशरूम लगाएंगे, तो ये जो पीरियड था इस पीरियड का में हम लोग बड़े ही अच्छे से आराम से मिल्की मशरूम की, श्वेत दुधिया मशरूम की खेती करेंगे और यह विश्व समुदाय को श्वेत दुधिया मशरूम जो है वो हमारे देश का देन है। हमारे एनआरसी सोलन में ही इसका इजाद किया गया था, इसकी खेती का जो तकनीकी है उसका ये किया गया था। और ये जो मिल्की मशरूम है यह ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम दोनों के बीच का है। इसका कुछ करेक्टर या इसका जो तकनीकी है उत्पादन विधि, कुछ स्टेप आपका ऑयस्टर के समान होता है और कुछ स्टेप जो है वो हमारा बटन के समान होता है।
0: तो ये केसिंग के बारे में, इसमें एक शब्द जो है मैम केसिंग आता है तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए।
2: अब इसकी जो तकनीकी है मिल्की मशरूम की खेती में उसमें एक स्टेप आता है केसिंग। हम लोग इसकी तकनीकी की चर्चा पहले कर लें फिर उसके हम लोग केसिंग पर आते हैं। तो जैसे कि हम जो किसान भाई ऑयस्टर मशरूम की खेती करते होंगे तो बस ऑयस्टर मशरूम के लिए जो जो स्टेप आप करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप पोषाधार का चयन करते हैं। तो मिल्की मशरूम के लिए भी आप पोषाधार का चयन करेंगे। इसका पोषाधार आपका गेहूं का भूसा हो सकता है, पुआल की कुट्टी हो सकता है या और भी कोई कृषि अवशेष हो सकता है। तो जो भी पोषाधार का हम चयन करें वो उसका चयन कर लें। उसके बाद उसका हम लोग निर्जीवीकरण करते हैं। तो इसके निर्जीवीकरण के लिए सबसे बेहतर है आप भाप उपचार करें, भूसे को पहले फुला दें, रात भर भूसा फुला दें, सुबह उसको निकाल करके एक बर्तन में उसको छान करके, पानी से छान के उसको डालते हैं, फिर उसको जूट के बोरे से उसके मुँह को बंद कर देते हैं, ऊपर से पानी उसमें डाल देते हैं और उसको आग पे चढ़ा देते हैं। जब पूरे से बहुत अच्छे से भाप निकलने लगे तो उसके बाद करीब 15-20 मिनट तक और रहने देते हैं, फिर उसको हम लोग किसी बर्तन में डलिया वगैरह हो या कोई सतह हो, साफ निर्जीवकृत सतह हो, उस सतह पर उसको हम लोग पलट देते हैं। उसका अतिरिक्त नमी जब निकल जाता है उसको छांव में फैला देते हैं। अतिरिक्त नमी निकलने के बाद फिर उसमें हम लोग भूसा के अनुसार स्पॉन डालते हैं। यदि भीगा भूसा का बात करें तो 4-5% उसमें हम लोग स्पॉन डालेंगे। स्पॉन डाल करके फिर पीपी बैग लेते हैं। पीपी बैग में हम लोग इसकी बिजाई करते हैं। बिजाई करने के लिए हम लोग या तो भूसा और स्पॉन को पूरा एक दूसरे मिला देंगे, एक विधि है, उसको मिलाकर फिर उसको पीपी बैग में पैक करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग परत में करते हैं, जैसे पहले भूसा देंगे 4 इंच के बाद फिर उसमें पूरे सतह पे बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं। इस तरह से बैग का 12 इंच हम लोग ऊंचाई रखते हैं, उसके बाद फिर उसको भूसा से ढक करके फिर बैग को पैक कर देते हैं। एक ही उसके बाद ये दो तरीके में से या तो हम लोग पूरे भूसा और बीज को मिला करके पैक कर देते हैं या फिर परत विधि से करके पैक करके हम लोग तैयार करते हैं। और जैसे ऑस्टन मशरूम के बैग में हम लोग छेद करते हैं तो इसमें पूरे बैग में छेद, ये चूंकि ऊपरी सतह से निकलता है, जैसे बटन जो है ऊपरी सतह से निकलता है वैसे ये निकलता है, तो इसमें अलग से साइड में छेद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ नीचे पैंदा में 2 छेद हम लोग कर देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा नमी वगैरह है वो हमारा निकलता है। और लगभग 12-15 दिन इसको हम लोग छोड़ देते हैं कमरे में, जो स्टरलाइज निर्जीवीकृत किया हुआ कमरा हो, जहाँ जिस कमरे में इसको हम लोग बैग को रखते हैं उसको 24 घंटा पहले हम लोग निर्जीवीकृत कर देते हैं और फिर उसको कमरे को बंद कर देते हैं, उस कमरे में फिर इस बैग को हम लोग रखते हैं। उस कमरे में लगभग 12-15 दिन तक बैग को छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा बैग सफेद हो गया, मतलब उसमें पूरा माइसिलियम बहुत अच्छे से रन कर गया। और जब माइसिलियम अच्छे से रन कर जाता है तब हमारा केसिंग का जो अब केसिंग का आता है कि अब हम केसिंग करेंगे, तो ये तब अब हम ये केसिंग के लिए हम लोग जिस दिन से बिजाई किए हैं उस दिन से हम लोग केसिंग की तैयारी करते हैं। तो केसिंग एक तरह का मृदा आवरण है जो कि मशरूम का जो उत्पादन तकनीक है, जो विधि है, उसका एक चरण है कि ये चरण करने के बाद ही हमारा मशरूम प्राप्त होगा मिल्की में और बटन में। ये ऑस्टर मशरूम में हम लोग केसिंग नहीं करते हैं लेकिन मिल्की और बटन मशरूम में केसिंग करते हैं, तो वह इसका एक चरण है। और इसके लिए हम लोग केसिंग के लिए 2 साल पुराना सड़ा हुआ गोबर लेते हैं या पुराना वर्मी कंपोस्ट लिए या फिर आजकल मार्केट में कोकोपीट आता है, कोकोपीट भी ले सकते हैं लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए आप 2 साल पुराना गोबर का खाद मिल जाए तो बेहतर है। और इसमें हम लोग इसके अलावा जो भी गोबर का खाद है इसके अलावा इसमें हम लोग मिलाते हैं क्या, तो पुराने बाग की मिट्टी मिलाते हैं, जो रेत वाले बालू नदी की पेटी का जो बालू होता है वो रेत जो होता है उसको मिलाते हैं, और जो धान जिसे चावल बनाने के बाद जो भूसा प्राप्त होता है उस भूसा का राख भी हम लोग आते हैं। तो यदि हम लोग बाग की मिट्टी और रेत का बात करें तो 3 भाग बाग की मिट्टी लेते हैं, 1 भाग रेत लेते हैं। यदि हम लोग बाग की मिट्टी और 2 सरा हुआ गोबर लेते हैं, दोनों बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं। और यदि हम लोग सारी चीज को थोड़ा थोड़ा मान लीजिए लेते हैं तो हम लोग इसको एक टोकरी बाग की मिट्टी ले लिए, एक टोकरी हम लोग कंपोस्ट ले लिए, एक टोकरी रेत ले लिए, एक टोकरी आपका भूसा राख ले लीजिए, सारा को मिला करके भी हम लोग इसका कर सकते हैं। यदि बेहतर होगा आपको यदि 2 सरा हुआ पुराना गोबर का खाद मिल जाता है तो वो आपका बेहतर ऑप्शन है, नहीं तो फिर इसमें से जो भी आप पास उपलब्ध हो उसको हम लोग लेते हैं। फिर इसको हम लोग निर्जीवीकृत करते हैं, ये जब पहले हम लोग ये इकट्ठा कर लिए, अब इसमें मान लीजिए कोई मेटलिक कुछ चीज हो, पत्थर हो या घास फूस हो तो उसको हम लोग अच्छे से हटा लेते हैं, लेकिन इसको महीन करने की या चालने की आवश्यकता नहीं है। यदि मिट्टी का छोटा छोटा ढेला भी है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, उसको बिल्कुल महीन से चालना नहीं है, लेकिन यदि उसमें पत्थर है, कंकर है, कुछ शीशा का टुकड़ा है, प्लास्टिक का टुकड़ा है या कुछ पत्ता है ये सब है तो वो सबको हम लोग को उसको हटा लेना है, ठीक है। इसके बाद अब इसको हम लोग निर्जीवीकृत करेंगे, निर्जीवीकृत करके इसमें हमारा लगभग नमी सही रहना चाहिए, लगभग 70% नमी रहना चाहिए। और नमी सही है हमारे केसिंग का ये जानने के लिए करते हैं, केसिंग का हम लोग हाथ में गोला बनाते हैं उसको नीचे छोड़ते हैं, यदि वो टूट गया तो इसका मतलब हमारा केसिंग में नमी सही है। और नमी को केसिंग को निर्जीवीकृत करने के लिए हम लोग नुवान लेते हैं 2 ml, फॉर्मलिन लेते हैं 5 ml, कार्बनडाइजिन 1 ग्राम और 1 लीटर पानी, इसमें इसका घोल बना करके फिर पूरे केसिंग का जो मटेरियल हम तैयार किए हैं, मिट्टी तैयार किए हैं, उसमें इसको स्प्रे करके उसको निर्जीवीकृत करते हैं, फिर उसको प्लास्टिक की सीट से ढक देते हैं, लगभग 7 से 7 दिन उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और ऐसे यदि आप केसिंग जिस दिन बिजाई किए हैं उस दिन से केसिंग तैयारी करते हैं तो आप कल ऐसे ही 12-15 दिन के बाद केसिंग करते हैं, इतने दिन तक वो बड़े ही अच्छे से आपका केसिंग निर्जीवकृत हो जाता है। फिर हम लोग जब मैसेलियम पूरा रन कर जाता है बैग में तब उसका केसिंग करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, कि उसका ऊपरी सतह को पूरा खरोच देते हैं, जैसे कैसे लहसुन का निगाह को हम लोग थोड़ा चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें एरेशन, उस तरह ऊपर का परत उसका हम लोग उसको खरोच देते हैं, और खरोच करके उसको बराबर करके हल्का सा उसमें हम लोग नमी दे देते हैं। नमी के देने के बाद उस पर हम लोग केशिंग की लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी परत डाल देते हैं, और ये हमारा जो बिजाई किए थे उससे 10 से 12 दिन के अंदर हम लोग केसिंग कर देते हैं, और केसिंग करने के बाद उसमें प्रतिदिन पानी हम लोग को नमी देना होता है, और गर्मी के अनुसार कैसा इन्वायरमेंट उसके अनुसार हो सकता है कभी आपको 2 बार भी नमी देना पड़े, या फिर कम से कम 1 बार तो प्रतिदिन देना होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना चाहिए, जब हम लोग इसमें पानी दे रहे हैं, नमी दे रहे हैं, बिल्कुल फुहारे से देना है, और जो केसिंग मृदा है उससे नीचे जो कंपोस्ट हमारा वहां पानी नहीं जाना चाहिए, सिर्फ जो केसिंग का जो हम 3 से 4 सेंटीमीटर मोटा परत दिए हैं सिर्फ वो उसमें ही पानी का मात्रा जाना चाहिए, इतनी सावधानी से हमें पानी देना है। इसके बाद केसिंग के लगभग 15 से 20 दिन के बाद हमारा फसल तैयार हो जाता है, और 5 से 7 दिन में फसल निकलने के 5 से 7 दिन के बाद इसका यह तुराई योग्य हो जाता है, और इन्हें हम लोग घुमा करके तोड़ लेते हैं।
0: मैम केसिंग के रूप में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं?
2: केसिंग के रूप में जैसे मैंने बताया अनु, केसिंग के रूप में हम लोग 2 साल सड़ा हुआ गोबर यूज कर सकते हैं, या फिर उसके साथ हम लोग पुराने बाग की मिट्टी, बाग की मिट्टी नहीं, पुराने बाग की मिट्टी, किसान भाइयों बहनों इसको ध्यान दीजिए, पुराने बाग की मिट्टी को हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद रेत वाली जो बालू होती है नदी की पेटी में जो बालू पाया जाता है वो रेतीला रहता है, उस बालू का उपयोग कर सकते हैं, प्लस जो धान का भूसा है उसको हम जलाकर उसका राख को यूज कर सकते हैं, प्लस कोकोपीट मार्केट में उपलब्ध है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इन सब सामग्रियों को जैसे कि सिर्फ हम आपको रेशियो भी मैंने बताया कि यदि हमारे पास सिर्फ ना पुराने ये पुराने बाग की मिट्टी है और हम लोग रेत का यूज कर रहे हैं तो 3:1 हम लोग यूज करेंगे, 3 भागिए लेंगे 1 भागिए लेंगे, और यदि हमारे पास 2 साल पुराना गोबर है और बगीचे की मिट्टी है तो बराबर बराबर ले सकते हैं, और यदि और सारे चीज लेंगे तो हम लोग वॉल्यूम से मिलाते, मतलब केजी से नहीं लेते हम, टोकरी से, एक टोकरी है तो फिर एक टोकरी है, इस तरह से बराबर बराबर लेकर के हम लोग उसको मिलाते हैं, और फिर केसिंग हमारा उसका अगला प्रक्रिया निर्जीवित करना ये हम लोग करते हैं, फिर उसका यूज करते हैं।
0: और अंत में मिल्की मशरूम की खेती में क्या कुछ और आवश्यक है, कुछ सुझाव जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे?
2: बिल्कुल, ये आपको बता दें मिल्की मशरूम की जो खेती होती है गर्मी में, ये ताप सहिष्णु है, इसके लिए जो आवश्यक टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 25 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक में भी यह इसकी खेती हो जाती है आराम से। तो हम आपका हमारा आपका ये नेचुरल एक्सपीरियंस भी अनुभव भी है कि गर्मी के दिनों में जो माइक्रोब्स का थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, जो जीवाणु होते हैं कीटाणु होते हैं, तो आप ठंडे में आप देखते होंगे एक दिन नहीं भी नहाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गर्मी में नहीं नहाते हैं तो स्किन में जलन खुजली होने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अभी माइक्रोब्स के जो जीवाणु है कीटाणु है उनके लिए भी फेवरेबल सिचुएशन है, तो यह हमारा मशरूम भी एक तरह का फंगस है तो उसके उसके लिए जो हम लोग माहौल दे रहे हैं तो और दूसरा फंगस भी उसको ग्रो कर सकता है, तो इसके लिए हम लोग को क्या है कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई ये सब चीज़ का या फिर जो हम लोग चयन करते हैं इनपुट वो सब पे बहुत सावधानी रखना पड़ता है। जो हम लोग भूसा या पुआल का चयन करें वह ताज़ा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, कभी भी वह पानी खाया नहीं होना चाहिए, बाढ़ में डूबा नहीं होना चाहिए, भींगा नहीं होना चाहिए, सरा गला नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग वीकली जो क्रॉप हाउस है जो हमारा फसल कक्ष है उसमें 2% फॉर्मलिन और 0.1% कार्बन डाइजीम का घोल का वीकली हम लोग छिड़काव करें ताकि हमारा किसी तरह का कोई इन्फेक्शन किसी तरह का कोई संक्रमण होने की संभावना नहीं रहे। फिर जो कमरा है उसमें प्रकाश आने का और हवा का आवागमन का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, आवश्यकता होने पर हम खिड़की दरवाजा खोल दें तो धूप भी आए और हवा का भी आवागमन भी हो। और जब भी हम स्पॉन का प्रयोग करें, स्पॉन का चयन करें, वह भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, वो उसमें किसी तरह का संक्रमण नहीं होना चाहिए। फिर जो चूहा छुछुंदर गिलहरी है ये सबसे हमको जब तक हमारा माइसिलियम पूरा रन नहीं कर जाता है, जो हमारा कोई भी मशरूम का स्पॉन रहता है वह किसी न किसी जो खाद्यान्न को आधार देके बनाया जाता है, चाहे वो मक्का हो सकता है, वो धान हो सकता है, सकता है, वो गेहूं हो सकता है, और भी कोई खाद्यान्न हो सकता है, तो उसको खाने के लिए ये चूहा वगैरह आते हैं। तो जब माइसिलियम पूरा रन हो जाता है तब फिर चूहा डैमेज नहीं करता है, तो इस पीरियड में चूहा से, गिलहरी से, ये सबसे बचाना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हमारे किसान भाई बहन को प्रयास करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग तरीका है कि उनको अपना करके हम चूहे से बचाएं। प्लस एक चीज और है कि को प्राइमस निकलता है उसमें, आप देखेंगे काला ऐसा बिल्कुल धागा ऐसा पतला सा, नीचे की गेहूं को जब हम लोग बोते हैं गेहूं का डिब्बी निकलता है, वो उसी टाइप का पतला काला ऐसा निकलेगा और वो तेजी से लंबा होता है, फिर वो गल जाता है। तो जैसे ही वो निकले उसको नोच करके, जहाँ पर निकला है वहाँ का पुआल सहित तो उसको नोच करके जमीन के अंदर डाल देना है और उसको थोड़ा फॉर्मलिन से, वेवेस्टिन के घोल से वहाँ पर ट्रीट भी कर देना है। और यदि ये नहीं करते हैं तो वो इतना फास्ट उसका स्पोर निकलेगा, पूरा क्रॉप आपको बर्बाद कर देगा। तो कोप्राइमस से बहुत सावधान रहिए, यदि ये आपके फसल में आ गया है, निकल रहा है, तो उसको हाथों से चुन चुन के उसको हटाइए और उसको जहां तहां नहीं फेंकिए, बल्कि जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दीजिए, ताकि वह किसी भी तरह से और वो नुकसान नहीं कर पाए और वो फसल में आपको नहीं फैले। ये एक तरह का फसल का वीड है, खरपतवार है, जिससे कि हम लोग को मशरूम की खेती में बचाना आवश्यक है। इस तरह से इन सुझावों को, इन सावधानियों को जब हम अपनाएंगे तो अब हमारा फसल हमेशा अच्छा होगा।
0: जी, तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, मिल्की मशरूम की खेती आपने समझ ली होगी और क्या कुछ करना है आपको, इसमें क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है, सारी बातें यहाँ पर मैडम ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं आपको ज़रूर लाभ मिलेगा आज के इस वार्ता से। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार।
3: उन्नत कृषि सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
4: CIET NCERT presents ऑडियो बुक गणित प्रकाश, टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 7,
5: चैप्टर नंबर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, पेज नंबर 24। द राइट साइड ऑफ द पेज हैज अ QR कोड। By scanning the same, you can reach out to the additional resources. 2.1 Simple Expressions. You may have seen mathematical phrases like 13 plus 2, comma 20 minus 4, comma 12 into 5 and 18 divided by 3. Such phrases are called arithmetic expressions. Every arithmetic expression has a value which is the number it evaluates to. For example, the value of the expression 13 plus 2 is 15. This expression can be read as 13 plus 2 or the sum of 13 and 2. We use the equality sign equal to denote the relationship between an arithmetic expression and its value. For example, 13 plus 2 is equal to 15. Example 1. Mallika spends 25 rupees every day for lunch at school. Write the expression for the total amount she spends on lunch in a week from Monday to Friday. The expression for the total amount is 5 into 25. 5 into 25 is 5 times 25 or the product of 5 and 25. Different expressions can have the same value. Here are multiple ways to express the number 12 using two numbers and any of the four operations: plus, comma, minus, comma, multiply and divide. 10 plus 2, comma, 15 minus 3, comma, 3 into 4, comma, 24 divided by 2. Choose your favorite number and write as many expressions as you can having that value. Comparing expressions. As we compare numbers using equal to sign, comma, less than, and greater than signs, we can also compare expressions. We compare expressions based on their values and write the equal to, comma, greater than, or less than sign accordingly. For example, 10 plus 2 is greater than 7 plus 1. Page number 25. Because the value of 10 plus 2 is equal to 12 is greater than the value of 7 plus 1 is equal to 8. Similarly, 13 minus 2 is less than 4 into 3. Figure it out. Question number 1. Fill in the blanks to make the expressions equal on both sides of equal to sign. A. 13 plus 4 is equal to dash plus 6. B. 22 plus dash is equal to 6 into 5. C. 8 into dash is equal to 64 divided by 2. D. 34 minus dash is equal to 25. Question number 2. Arrange the following expressions in ascending, that is increasing order, of their values. A. 67 minus 19. B. 67 minus 20. C. 35 plus 25. D. 5 into 11. E. 120 divided by 3. Example 2. Which is greater? 1023 plus 125 or 1022 plus 128? Imagining a situation could help us answer this without finding the values. Raja had 1023 marbles and got 125 more today. Now he has 1023 plus 125 marbles. Joy had 1022 marbles and got 128 more today. Now he has 1022 plus 128 marbles. Who has more? This situation can be represented as given in the picture on the right. To begin with, Raja had one more marble than Joy. But Joy got three more marbles than Raja today. We can observe that Joy has two more marbles than Raja now. That is, 1023 plus 125 is less than 1022 plus 128. Example 3. Which is greater? 113 minus 25 or 112 minus 24? Imagine a situation. Raja had 113 marbles and lost 25 of them. He has 113 minus 25 marbles. Joy had 112 marbles and lost 24 today. He has 112 minus 24 marbles. Who has more marbles left with them? Raja had one marble more than Joy. But he also lost one marble more than Joy did. Therefore, they have an equal number of marbles now. That is, 113 minus 25 is equal to 112 minus 24. The explanation for example 2 can be seen on the right side of the page, which is explained with the help of numbers. Likewise, for example 3, we can find the number of marbles Raja and Joy have. That has been explained here on the right side of the page. Page number 26. Use greater than or less than or equal to in each of the following expressions to compare them. Can you do it without complicated calculations? Explain your thinking in each case. A. 245 plus 289 dash 246 plus 285. B. 273 minus 145 dash 272 minus 144. C. 364 plus 587 dash 363 plus 589. D. 124 plus 245 dash 129 plus 245. E. 213 minus 77 dash 214 minus 76. 2.2 Reading and evaluating complex expressions. Sometimes, when an expression is not accompanied by a context, there can be more than one way of evaluating its value. In such cases, we need some tools and rules to specify how exactly the expression has to be evaluated. To give an example with language, we can observe from the following sentences. A. Sentence: Shalini sat next to a friend with toys. Meaning, the friend has toys and Shalini sat next to her. B. Sentence: Shalini sat next to a friend with toys. Meaning, Shalini has the toys and she sat with them next to her friend. Here we find two pictures where Shalini is sitting with the toys and her friend. This sentence without the punctuation could have been interpreted in two different ways. The appropriate use of a comma specifies how the sentence has to be understood. Let us observe an expression that can be evaluated in more than one way. Example 4. Malesh bought 30 marbles to the playground. Arun bought 5 bags of marbles with 4 marbles in each bag. How many marbles did Malesh and Arun bring to the playground? Malesh summarized this by writing the mathematical expression 30 plus 5 into 4. Page number 27. Without knowing the context behind this expression, Purna found the value of this expression to be 140. He added 30 and 5 first to get 35 and then multiplied 35 by 4 to get 140. Malesh found the value of this expression to be 50. He multiplied 5 and 4 first to get 20 and then added 20 to 30 to get 50. In this case, Malesh is right. But why did Purna get it wrong? Just observing the expression 30 plus 5 into 4, it is not clear whether we should do the addition first or multiplication. Just as punctuation marks are used to resolve confusion in language, brackets and the notion of terms are used in mathematics to resolve confusions in evaluating expressions. Brackets in expressions. In the expression to find the number of marbles 30 plus 5 into 4, we had to first multiply 5 and 4 and then add this product to 30. This order of operations is clarified by the use of brackets as follows. 30 plus within brackets 5 into 4. When evaluating an expression having brackets, we need to first find the values of the expressions inside the brackets before performing other operations. So, in the above expression, we first find the value of 5 into 4 and then do the addition. Thus, this expression describes the number of marbles. 30 plus within brackets 5 into 4, that is equal to 30 plus 20, that is equal to 50. Example 5. Irfan bought a pack of biscuits for 15 rupees and a packet of Toor Dal for 56 rupees. He gave the shopkeeper 100 rupees. Write an expression that can help us calculate the change Irfan will get back from the shopkeeper. Irfan spent 15 rupees on a biscuit packet and 56 rupees on Toor Dal. So, the total cost in rupees is 15 plus 56. He gave 100 rupees to the shopkeeper. So, he should get back 100 minus the total cost. Can we write that expression as 100 minus 15 plus 56? Can we first subtract 15 from 100 and then add 56 to the result? We will get 141. It is absurd that he gets more money than he paid the shopkeeper. We can use brackets in this case. 100 minus within brackets 15 plus 56. Evaluating the expression within the brackets first, we get 100 minus 71, which is 29. So, Irfan will get back 29 rupees. Page number 28. Terms in expressions. Suppose we have the expression 30 plus 5 into 4 without any brackets. Does it have no meaning? When there are expressions having multiple operations and the order of operations is not specified by the brackets, we use the notion of terms to determine the order. Terms are the parts of an expression separated by a plus sign. For example, in 12 plus 7, the terms are 12 and 7 as marked here. 12 plus 7 is equal to 12 is encircled plus 7 is also encircled. We will keep marking each term of an expression as above. Note that this way of marking the terms is not a usual practice. This will be done until you become familiar with this concept. Now, what are the terms in 83 minus 14? We know that subtracting a number is the same as adding the inverse of the number. Recall that the inverse of a given number has the sign opposite to it. For example, the inverse of 14 is minus 14 and the inverse of minus 14 is 14. Thus, subtracting 14 from 83 is the same as adding minus 14 to 83. That is, 83 minus 14 is equal to 83 is encircled plus minus 14 is again encircled. Thus, the terms of the expression 83 minus 14 are 83 and minus 14. Check if replacing subtraction by addition in this way does not change the value of the expression by taking different examples. Can you explain why subtracting a number is the same as adding its inverse using the token model of integers that we saw in the class 6 textbook of mathematics? All subtractions in an expression are converted to addition in this manner to identify the terms. Here are some more examples of expressions and their terms. Minus 18 minus 3 is equal to minus 18 encircled plus minus 3 encircled. 6 into 5 plus 3 is equal to 6 into 5 encircled plus 3 encircled separately. 2 minus 10 plus 4 into 6 is equal to encircled 2 plus encircled minus 10 plus encircled 4 into 6. Note that 6 into 5, comma 4 into 6 are single terms as they do not have any plus sign. In the following table, some expressions are given. Complete the table. Page number 29. Here we find a table having three different columns. First column represents expression. Second column here expresses the expression as the sum of its terms. And the third column represents terms. First one, 13 minus 2 plus 6 can be expressed as encircled 13 plus encircled minus 2 plus encircled 6. What are the terms here? 13, comma, minus 2, comma, 6. Likewise, we have the next expression, 5 plus 6 into 3. Here, expression can be expressed as sum of its terms as encircled 5 plus encircled 6 into 3. You are supposed to write down the terms in the third column. And similarly, we need to complete the three more expressions given here. 4 plus 15 minus 9 can be expressed as sum of terms as we can encircle the three terms separately with a plus sign in between. Next expression, 23 minus 2 into 4 plus 16 can be expressed as sum of the terms, and the terms are to be written in the third column. 28 plus 19 minus 8 can again be expressed as sum of its terms in three encircles with plus sign in between and terms in the third column. Now we will observe how terms are used to determine

0: टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीका

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र।

सुकून भरे कुछ पल बिताए 90.8 FM गेन के साथ, हरियाली से खुशहाली तो

0: आज स्वागत करती हूँ 90.8 FM ग्रीन पर। दोस्तों आज फिर से लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम पर कुछ अच्छी बातें, और आज का हमारा विषय है, बहुत ही खास विषय है हमारा, और वो है मक्के से बनने वाले प्रसंस्कृत पदार्थ। तो आज इसके बारे में जानेंगे हम, और इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। आप सभी को बता दें कि हम इस विषय पर खास चर्चा करेंगे, और सबसे पहले जानेंगे डॉक्टर साहब से कि किस किस राज्य में मक्का को उगाया जा सकता है, और साथ ही बिहार का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है।
1: मक्का विभिन्न जलवायु परिस्थिति में व्यापक अनुकूल क्षमता वाली सबसे बहुमुखी फसलों में से एक है। भारत में मक्का राष्ट्रीय खाद्य कटोरे के रूप में भी जाना जाता है, और विश्व स्तर पर यह 9% का योगदान देता है। मक्के के कुल उत्पादन का 80% मुख्यतः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में उपजाया जाता है। बिहार में मेनली 8.9% का योगदान देता है।
0: तो यहाँ पर हमने जाना कि क्या कंट्रीब्यूशन है बिहार का मक्के के कल्टीवेशन में, और साथ ही यहाँ पर मक्के के पोषक तत्वों के बारे में हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, और उनसे क्या क्या लाभ है उनके बारे में बताएं।
1: मक्के में बहुत सारे बहुत प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो कि 9% होते हैं, प्रोटीन 3.2%, शुगर 3.2%, फाइबर आहार जो कि डाइट्री फाइबर रहते हैं, ये मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, ये 2.7% रहते हैं, वसा 1.2% होते हैं, कैल्शियम 9 मिलीग्राम होते हैं, आयरन 0.5 मिलीग्राम होते हैं,
0: मैग्नीशियम
1: 37 मिलीग्राम, नाइसिन 1.7 मिलीग्राम, फास्फोरस 120 ग्राम मिलीग्राम होते हैं, पोटासियम 270 मिलीग्राम, विटामिन बी 15 ग्राम मिलीग्राम, विटामिन सी 7 मिलीग्राम। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर के साथ साथ इसमें डिफरेंट तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें मिनरल्स के साथ साथ विटामिन भी रहते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। मक्के में जो बहुत सारे महत्वपूर्ण, मक्के को अगर हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जो है कि फायदे के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर जब तक आपको फायदे के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप इसको खाने में उतने इच्छुक नहीं होंगे। मक्के में

0: जो है उच्च मात्रा के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को उसको कम करने का काम करता है और खास करके जो कोलोन कैंसर जो होता है उसके खतरे को भी कम करता है।
1: जी,
0: जो मक्का अगर मध्य मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो उससे मधुमेह से पीड़ित लोग होते हैं उसको फायदेमंद होता है। और फोलेन एक इसमें एक कंपाउंड पाए जाते हैं, अगर उसको उसके कारण क्या होता है कि कोशिकाओं की उत्पत्ति में ये मदद करता है। जो कॉर्निया के सेवन, अगर इसमें कॉर्निया जो रहता है इसमें कॉर्निया के सेवन से क्या होता है, एनीमिया से पीड़ित जो लोग होते हैं उनको भी सकारात्मक प्रभाव जो है रिसर्च में देखा गया है। मक्के में मौजूद जो पाइटोथिनिक एसिड जो होते हैं हमारी शारीरिक कार्य करने की क्षमता में मदद करता है। उसके बाद जो है गुर्दे की समस्याओं के इलाज में भी काफी सहायक सिद्ध होता है। मध्य मात्रा में अगर मक्का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो हृदय रोग के लिए फायदेमंद होता है। उसमें है कि अगर इसको कंटिन्यूअस अगर सेवन करते हैं मक्के को तो फेफड़े के जो बीमारी होते हैं और फेफड़ा को में जो कैंसर का कारण जो बनता है तो उसको भी इसमें सहायक सिद्ध होता है। और इसमें जो अघुलनशील फाइबर जो होते हैं तो कब्ज या बवासीर जैसे बीमारी जो होते हैं उस तरह की बीमारी से भी निजात इसमें पा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे फायदे तो बहुत हैं और इस तरह से अगर मक्के को खाते हैं तो फायदा बहुत ज्यादा होता है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर हमने जाना कि इसमें पोषक तत्व तो और उनके लाभ के बारे में जाना, तो मक्का बहुत जरूरी है हमारे लिए और इससे हमें बहुत लाभ भी होता है। तो अब यहाँ पर जो हमारा आज का विषय है मक्के से बनने वाले प्रसंस्कृत पदार्थ, तो सब अब आते हैं उस पर और जानना चाहेंगे कि प्रसंस्कृत पदार्थ इससे क्या क्या बन सकते हैं।
0: मक्के से बहुत सारे प्रसंस्कृत पदार्थ बनते हैं, इसमें मेनली जो है कॉर्नफ्लेक्स जो कि आप लोग किसी भी ब्रेकफास्ट सीरियल्स में आप लेते भी होंगे तो इसलिए ये काफी फेमस है। और इसके अलावा बहुत सारे जो है पदार्थ बनाए जाते हैं जैसे कि कॉर्न स्टार्च होते हैं, मक्के का तेल होता है, मक्के का सिरप बनता है, हाई माल्टोज कॉर्न सिरप बनता है, इस तरह जो कि औद्योगिक स्तर पे बनाए जाते हैं। ये छोटे स्तर पे भी कुछ जैसे है कि कॉर्न फ्लोर बना सकते हैं या कॉर्न फ्लेक्स बना सकते हैं छोटे स्तर पे। ऐसे जो होते हैं दूसरे जो होते हैं ये बड़े स्तर के कारखाने में बनाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही अगर इस तरह के कारखाने लगते हैं तो बिहार के बहुत ही ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। इसके साथ साथ दूसरे कारखाने भी लगने में काफी सहायक सिद्ध होगा। जैसे कि अब हम चर्चा करते हैं कॉर्न फ्लेक्स और डिफरेंट जो प्रोडक्ट होते हैं इसे बनाए जाते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी। जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ये जो होते हैं इसको बनाने में के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके पहले हम जानना बताते हैं कि कॉर्नफ्लेक्स का मार्केट क्या है, जो कि है 2015 के अनुमान जो है कि 6.7 बिलियन रुपया का जो है इसका सेल करने का अनुमान रहा और जो 2020 तक इसका अनुमान जो है 10.9 बिलियन रुपीज रहने का अनुमान है। मीन्स इसका रीजन ये है कि जो आदमी का कंजम्पशन पैटर्न है खाने का पैटर्न है वो काफी ही मींस करने का मतलब चेंज हो रहा है, वो प्रोसेस प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं जा रहे हैं और वो और क्योंकि ये आसानी से मींस बाजार में भी उपलब्ध होता है, आप अपने मींस कॉटेज टाइप का इंडस्ट्री लगाकर भी बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है बनाने में। इसके बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाले जो होता है मकई उसको आप रख मार्केट से खरीदते हैं या आपके पास अगर उपलब्ध है तो उसको प्रोसेस करने के लिए लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं इसको औद्योगिक स्तर पर मींस फैक्ट्री में आप इसका सफाई कर लेते हैं अच्छी तरह से, मींस करने मतलब दूसरे पदार्थ जैसे कंकड़ पत्थर ये सब रहते हैं उसको आप निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे इसको क्या करेंगे स्टीमिंग कर देंगे, मींस उसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे जो कि 57 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप गर्म कर सकते हैं और ये समय जो है 4 घंटा से 20 घंटा तक गर्म करना रहता है। ये तापमान जो है जो निर्भर करेगा वो समय के साथ चेंज होता है, तापमान अगर ज्यादा है तो आपका समय कम लगेगा, अगर तापमान कम है तो समय ज्यादा लगेगा, ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस में जब स्टैंडर्ड करेंगे तब उसमें जरूरत होता है। उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्सेस पानी जो स्टीमिंग का है उसको निकाल देंगे और थोड़ा सा सुखा लेंगे उसको, है रूम के तापमान पर, कमरे के तापमान उसको सुखा लेंगे। जब उसका देखिए मॉइस्चर कंटेंट जो है, मीन्स उसमें जो नमी है 16-24% आ जाए, तो उसको फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में डालते हैं। जो प्रोसेस के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण हमें मशीन की आवश्यकता पड़ती है उसको फ्लेकिंग मशीन बोलते हैं, और फ्लेकिंग मशीन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है। अगर फ्लेकिंग मशीन नहीं है तो इस तरह के प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो फ्लेकिंग मशीन के सहायता से हम इसमें मकई को क्या करते हैं, फ्लेक्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें दो रोलर लगे रहते हैं और बीच में गैप रहता है, जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, फ्लैक्स के रूप में या चपटा के रूप में उसमें कन्वर्ट करते हैं। ऊपर के एक हॉपर रहता है जिससे कि हम लोग मेज जो है, जो कि जिसमें कि 16-24% मॉइस्चर है, नमी है, उसमें हॉपर में डालते हैं, और दूसरे साइड से हमें क्या फ्लैक्स के रूप में प्राप्ति होती है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको सुखावक यंत्र या आपके पास कैबिनेट ड्रायर हो या हॉट एयर ओवन हो, उसकी सहायता से उसका मॉइस्चर कंटेंट 2% से कम कर लेते हैं। 2% से कम करने के बाद उसको या तो पैकेज के रूप में पैकेट में डाल देंगे, जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट का रेजिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और आपके प्रोडक्ट को खराब कर देगा। तो उसके बाद अगर आपको नमकीन बनाना है या उसको स्पाइसी बनाना है या चॉकलेटी टाइप का बनाना है, तो पैकेजिंग करने से पहले क्या करना है कि इस तरह के मटेरियल को से कोट कर लेना है, और आफ्टरवर्ड उसको क्या करना है, पैकिंग करना है और उसका फिर बाजारीकरण करते हैं। कॉर्नफ्लेक्स बनाने के लिए दूसरी विधि भी हम अपनाते हैं, मशीन दूसरे लगते हैं इसके लिए। जैसे कि आप एक्सट्रूडर एक मशीन होता है जिसके सहायता से हम लोग मकई के दूसरे प्रोडक्ट एक्सट्रूडेड टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं या कॉर्नफ्लेक्स टाइप के प्रोडक्ट होते हैं बनाते हैं। इसमें है कि एक्सट्रूजन एक मशीन होता है जिसमें कि डिफरेंट जोन होते हैं, हीटिंग जोन होते हैं, इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट जो होता है आपको रखना रहता है 16-20% के लगभग में रखना होता है, और इसमें है कि टेम्परेचर जोन को सेट करते हैं और एक नोजल के सहायता से प्रोडक्ट को हम निकालते हैं, जिससे कि हम लोग मशीन के अंदर एक्सट्रूजन होता है उसमें जिलेटिनाइजेशन टेम्परेचर पे काम करता है, और आफ्टरवर्ड क्या होता है, एक्सट्रूजन होता है, और एक्सट्रूजन से क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट मिलता है, वो मीन्स करने का मतलब कुरकुरे टाइप का भी प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं और फ्लैक्स के रूप में भी निकाल सकते हैं, रिंग के रूप में भी निकाल सकते हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट इसमें आप डिफरेंट शेप में आप प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, और उसमें फिर मॉइस्चर को रिड्यूस कर लेते हैं, उसमें नमी को कम कर लेते हैं, देन आपका उसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर से कोटिंग कर लेते हैं और फिर पैकेटिंग करके उसको बाजारीकरण कर सकते हैं
1: जी। तो यहाँ पर किसान भाइयों, आपने जाना कि मक्के के लाभ को जाना आपने, और साथ ही जाना कि इससे कौन कौन से प्रसंस्कृत पदार्थ बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, उनकी विधि को आपने जाना। तो आशा करूंगी कि आपको इन सभी बातों को जानकर काफी लाभ मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र श्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करे और ध्यान दे कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें, 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। जी अनु, एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ 90.8 FM ग्रीन पर, जो है आपका पसंदीदा फ्रिक्वेंसी। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पर आज बात करते हैं आज के खास कार्यक्रम की, जिसका नाम है उन्नत कृषि। और मैं बातें करती हूँ इसमें आपके हित की बातें किसान भाई, आपके लिए खास बातें और आपकी सहूलियत की बातें। तो सबसे पहले यहाँ पर पशुपालक भाइयों की बात करें तो ज़रूरी होता है कि वो पशु जो उनके पास हैं उनका खास ख्याल रखें, साथ ही उनके चारे का भी खास ख्याल रखें। तो आपको बता दें कि आज हमारा विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए, खासकर पशुपालक भाइयों के लिए। जी हाँ, आज का हमारा विषय है बहुवर्षीय चारा घासों द्वारा हरा चारा प्रबंधन हम कैसे करें। तो आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी इस विषय से जुड़ी। तो आइए, और सबसे पहले आपको बताते हैं हमारे साथ कौन है स्टूडियो में फिलहाल इस वक्त इस विषय पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर SK गुप्ता जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन एग्रोनॉमी। मैं आपको बता रही, ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है, और ये बहुत ही अच्छा विषय लेकर आज आप आए हैं, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को, हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा।
2: जी,
0: तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि कौन सी वजह है जिससे हमारे देश में अभी देखा जा रहा है कि हरे चारे की उपलब्धता कम होती जा रही है, या फिर हरा चारा जितना मिलना चाहिए हमें, हमारे पशुओं को जो हम पालते हैं, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, उतना मिल नहीं पाता है, तो क्या वजह हो सकती है खासकर हमारे प्रदेश के लिए?
2: देखिए, बहुत अहम प्रश्न है। हमारे प्रदेश के सभी जो जागरूक किसान हैं, ये तो हम सभी जानते हैं कि पशुपालन एक हमारी कृषि के बाद दूसरा बड़ा व्यवसाय है, और एक आमदनी का बहुत अच्छा एक इसको रीड माना जाता है। और जहाँ तक पशुपालन की बात है, पशुपालन से अनेक किसानों की आमदनी जुड़ी हुई है, और पशु अगर हमारा स्वस्थ है तो हमारा दुग्ध उत्पादन भी अच्छा होगा। दुग्ध उत्पादन अगर अच्छा होगा तो किसान की आमदनी भी बहुत अच्छी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ ये आवश्यक हो जाता है कि किसान को जो उस पशु को स्वस्थ रखने के लिए पूरी अपनी दिनचर्या में जो उसको 24 घंटे एक पर्याप्त राशन की जरूरत पड़ती है, उसमें एक हरे चारे की उपलब्धता एक अहम रोल रखती है।
0: जी,
2: हरे चारे की जहां तक बात है, उसमें हम ये लोग ये भी जानते हैं कि अकेले अगर बिहार राज्य की अगर हम बात करते हैं, तो वर्तमान समय में लगभग 272 लाख पशुपालन आज भी होता है।
0: जी,
2: और एक तरफ जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होने के कारण कृषि योग्य भूमि में चारा फसलों को उगाना संभव नहीं है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि जो सामान्यतः किसान हैं, वो हमारे प्रदेश सहित पूरे देश में आज भी लघु सीमांत हैं। जोत के जो आकार हैं, खेती के जो साइज हैं, वो छोटे छोटे किसानों के पास हैं। उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपनी जितनी भी हमारी कैश क्रॉप हैं, जिनसे वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं, जैसे धान्य फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, इनको भी उगाने पर किसान लोग ध्यान देते हैं। जबकि पशुपालन को जो एक आवश्यक अवयव है, जो हरा चारा है, उसको उगाने की ओर किसान बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसको किसान उसको हल्के में लेते हैं, और ध्यान ना देने की वजह से दुग्ध उत्पादन में पिछड़ जाते हैं।
0: जी,
2: तो यहाँ ये आवश्यक हो जाता है कि हम जो हमारे पास जगह है, कुछ ऐसी किसानों के पास जगह होती है कि जो अनुपजाऊ होती है, फर्टाइल लैंड नहीं है उनके पास, कुछ ऐसा अलग से कोई सुनिश्चित वो जगह नहीं कर पाते कि इस क्षेत्र पर हम हरे चारे का उत्पादन कर सकते हैं।
0: जी,
2: तो यहाँ जहाँ तक वैज्ञानिक तकनीकी की बात है, वहाँ हमारे पास कुछ ऐसे तकनीकियाँ हैं, ऐसे विधियाँ हो सकती हैं, या ऐसी हमारे पास जीनोटाइप या कुछ अवसर विकल्प हो सकते हैं कि जो हरा चारा हमारे उसी जमीन में किस पद्धति से हम उगा सकते हैं। जिनमें बहुवर्षीय चारा घास है एक अहम रोल रखती है।
0: अच्छा।
2: आज का जो विषय है हम इसी पे चर्चा करेंगे, जैसे बहुवर्षीय घासें हैं तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि बहुवर्षीय जो घासें हैं और जो मौसमी चारा फसल है इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो ये हम आपको अगर विस्तार से बताते हैं तो जैसे किसान भाई हैं जो खरीफ मौसम है जो जुलाई महीने से शुरू होता है, बरसात ऋतु के आने पर किसान के पास अनेक विकल्प होते हैं मौसमी चारा फसल के रूप में, जैसे सुड़ान है जिसको ज्वार कहते हैं, इसमें एमपी चरी है या बहुकाट है या सिंगल काट वाली है, इसके अलावा कुछ लोबिया है, बोडा हो सकता है या कुछ बाजरा हो सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ रबी मौसम में है कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे ओट है, जई, और जई के अलावा बरसीम है, लुसर्न है, तो अधिकांश किसान इन्हीं को ही उगाते हैं। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि हमारा जो राज्य है वो बाढ़ और सुखाड़ दोनों की चपेट में आए दिन रहता है। एक तरफ बाढ़ होती है तो दूसरी तरफ सुखाड़ होती है, तो बाढ़ के चलते भी किसान हरा चारा उगाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और सुखाड़ के चलते भी किसान उसको नहीं उगा पाते हैं। साथ ही अभी हम बात कर रहे थे कि किसान छोटे छोटे जोत के आकार हैं, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किसान अपना अन्य फसलों को उगाते हैं, जिस वजह से उनका हरा चारे में वो पिछड़ जाते हैं। तो जो बहुवर्षीय चारा घासें हैं उनमें मुख्य रूप से जैसे संकर नेपियर, इसके अलावा त्रिशंकर घास है और पाराग्रास है और इसके अलावा स्टाइलोग्रास है।
0: अच्छा।
2: तो ये ऐसी घासें हैं, इनकी प्रकृति दरअसल अनेक वर्षों तक रहती है और एक बार लगाने के पश्चात इनको हम अनेक वर्षों तक काट करके अनुकूल परिस्थिति में साल भर और अनेक सालों तक लगातार काट करके उनको खिला सकते हैं। क्योंकि इनकी प्रकृति बहुवर्षीय होती है और इनको एक बार लगाने के पश्चात हर मौसम में अलग अलग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए इनको हम बहुवर्षीय चारा घासें कहते हैं। अगर हम संकर नेपियर की बात करते हैं तो संकर नेपियर एक विशेष प्रकार की एक घास होती है जिसकी बढ़वार भी अच्छी खासी होती है और जिसकी लगभग 2.5 से 3 मीटर तक हो जाती है। साथ ही जो त्रिशंकर घास है ये भी हमारी मध्यम से उथली जमीन जो होती है वहाँ लगाने के लिए बहुत ही अच्छी बहुवर्षीय चारा घासें हैं। और जो किसानों के पास कुछ ऐसी अनुपयोगी जमीन होती है या जहाँ जल जमाव होता है वहाँ के क्षेत्रों में हम पारा घास है जिसको पानी वाली घास भी कहते हैं, तो इस तरह हम बहुवर्षीय चारा घासों का चयन कर सकते हैं और सीजनली चारा फसलों के साथ उगा करके हम आसानी से हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं।
0: ओके सर, इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी बहुवर्षीय चारा घासें हैं जो पशुओं के लिए हरा चारा सुनिश्चित करती है।
2: देखिए, हरे चारे की उपलब्धता का जो मेन कारण जो तो अभी हम आपको बता रहे थे, इसके साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जो स्पेशली क्षेत्र की कमी होती है विशेषकर हरा चारे के लिए
0: जी।
2: दूसरा एक ये भी है कि किसानों को अच्छा बीज भी उपलब्ध नहीं हो पाता है और मौसम में तेजी से उतराव चढ़ाव के चलते हुए तो ये किसान हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं।
0: अच्छा।
2: तो चूंकि हम बहुवर्षीय चारा घासों की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर हम देखते हैं तो संकर नेपियर और त्रिशंकर घास
0: जी।
2: ये ऐसी किसानों के लिए उपयुक्त घासें हैं जिनका चयन हम अगर इनकी बुवाई की बात करते हैं तो यहाँ यह बताना अति आवश्यक होगा कि मौसमी चारा फसलों की तरह इनका बुवाई बीज के द्वारा नहीं करके बल्कि इनका जो प्लांट मटेरियल है जिसको हम जड़ कतरन कहते हैं या रूटेड स्लिप भी कह सकते हैं, उनको हम जो अनुशंसित समय है इसका और अनुशंसित मात्रा में अगर हम संकर नेपियर और त्रिशंकर इन घासों की बात करते हैं तो ऐसे क्षेत्र किसानों के लिए जहाँ सिंचाई के सुलभ साधन हैं और मध्यम से उथली जमीन है तो वहाँ हम बसंत ऋतु जो अभी फरवरी आगे आने वाला है उसमें 15 फरवरी के बाद और अप्रैल माह तक इनका हम पहले एक गड्ढा खोद लेते हैं करीब आधे से 1 फीट गहराई तक का और उसमें 2 से 3 गांठों युक्त जो जड़ कतरन होती है उसको हम मिट्टी में डाल करके और उसके साथ ही किसान के पास जो भी उपलब्ध है वो FYM सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी हो तो एक मुट्ठी खाद को हम गड्ढे में डाल करके और इसकी जो रूट स्लिप है उसको एक कम से कम ये ध्यान रखें कि एक गांठ है गहराई में जा करके और उसको अच्छी तरह दबा दें। और इसका जो बहुवर्षीय घास है इसको अगर हमको लगातार इसी की बुवाई या रोपाई करनी है तो उसका हम 50 से 60 सेंटीमीटर के अंतराल पर और इसकी रोपाई आसानी से कर सकते हैं। साथ ही जब बरसात ऋतु होती है, ऐसे किसान भाई जिनके पास पटवन का या सिंचाई करने का कोई साधन नहीं है, तो वर्षा ऋतु में जब मानसून के आने के पश्चात जब वर्षा प्रारंभ होती है तो उसी कड़ी में हम इसका अपने नज़दीकी संस्थान से ये जहाँ भी आवश्यक ये मिल सकता है उपलब्धता इनकी प्लांट मटेरियल का करके और वर्षा ऋतु के शुरू होने के बाद हम लगातार 1 से 2 महीनों तक इसकी रोपाई आसानी से कर सकते हैं। और रोपाई करने के बाद इसमें ध्यान रहे कि अगर हम सिंचाई का साधन हमारे पास है तो हम फरवरी मार्च में इनकी रोपाई करने के तुरंत बाद इसमें सिंचाई अवश्य करें। और सिंचाई करने के बाद पहली कटाई इसकी 2.5 से 3 महीने पर और फिर बाद में इसकी लगभग 35 से 40 दिनों के अंतराल पर प्रति माह इसकी कटाई कर सकते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो बहुवर्षीय हरे चारे की घासें हैं इनका हम पूरे साल में लगभग 7 से 8 कटाई कर सकते हैं। और इनके बढ़वार जो वर्षा ऋतु है उसमें अत्यधिक होती है और जो शरद ऋतु होती है जो फरवरी तक होता है उसमें तापक्रम कम होने की वजह से बढ़वार थोड़ा कम होती है। अच्छा। लेकिन इस प्रकार ये अनुपजाऊ जमीन में या अंडुलेटेड जो हमारी ऊंची नीची उथली कुछ जगह होती हैं उनका भी जगहों का उपयोग करते हुए जो किसानों की बेकार पड़ी हुई भूमि है उसमें भी इन बहुवर्षीय घासों का चयन करके और समय पर इनकी रोपाई करके हम हरे चारे का उत्पादन सुनिश्चित कर सकते हैं।
0: अच्छा, फिर डॉक्टर साहब अभी वापस चलते हैं अपने विषय पर और प्रबंधन की बात करते हैं। तो जैसे कि हमारा विषय है आज बहुवर्षीय चारा घासों द्वारा हरा चारा प्रबंधन कैसे करें, तो सबसे पहले तो हमें इन सारी बातों को हमने जाना और अब यहाँ पर बात आती है कुल मिलाकर हम बात करें कि बहुवर्षीय चारा घासों द्वारा की हरा चारा प्रबंधन कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई।
2: देखिए, जो आमतौर पर दो तरह के किसान होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनके पास अपने सिंचाई के पर्याप्त साधन होते हैं और कुछ ऐसे किसान होते हैं जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जो सिंचाई के साधन जिनके पास होते हैं वो इस जो सिंचित क्षेत्र के लिए चारा प्रबंधन है उसमें हम बहुवर्षीय चारा घासें जैसे संकर नेपियर या त्रिसंकर घास को हम खरीफ मौसम में लोबिया के साथ या रबी मौसम में बरसीम या अन्य किसी जई इत्यादि के साथ हम अगर पट्टियों में इसकी जैसे अभी हम बता रहे थे कि बहुवर्षीय घासों की रोपाई करके और जो बीच का स्थान बचता है उसमें हम सहायक फसल जो मौसमी आधारित फसल है उसकी बुवाई करके और इसकी हम लगा करके हम आसानी से उत्पादन सुनिश्चित करते हैं। और इस तरह से हम अगर लगाते हैं तो जहां सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं वो बहुत ही अच्छा पौष्टिक और गुणवत्ता युक्त हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो ऐसे क्षेत्र हैं जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहां के लिए चारा घास के लिए हम जो बहुवर्षीय घास हमारे पास उपलब्ध है वो जैसे त्रिशंकर घास है, इसकी दो पंक्तियां एक दूसरे से लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर इस प्रकार लगा देते हैं कि जो बीच में कम से कम जो स्पेस है वो अत्यधिक रहे। इस तरह जो दोहरी पंक्ति है उसके साथ साथ 2-2 मीटर की दूरी पर और जुलाई से अगस्त के महीने पर जब भी बरसात शुरू होती है वहां हम जो बीच का स्थान है उसमें हम कुछ जैसे विशेष प्रजाति जैसे बाजरा, बाजरे की जायंट बाजरा है या दूसरा एक GFB1 वो हम 30 सेंटीमीटर की अंतराल पर इसकी बुवाई कर सकते हैं। अच्छा। तो चूंकि यह पद्धति छोटे और मझेले किसानों के लिए अत्यधिक उपयोगी है और जिस किसान के पास 4 से 5 दुधारू पशु हैं उनके लिए यह तकनीकी अत्यंत उपयोगी है। साथ ही एक जो सघन चारा उत्पादन तकनीकी है, इस पद्धति में दरअसल जो मिश्रित खेती या अंतर्वर्ती खेती भी इसको हम कह सकते हैं, तो इस तरह हम एक ही भूमि पर और तीन चार तरह की चारा फसलें इस क्रम में बोई जाती हैं, जिससे कि समय समय स्थानिक सघनीकरण किया जा सके। मुख्यतः जो ये तकनीक है, ये शहर के आसपास या व्यवसायिक स्तर पर जो लोग दुग्ध उत्पादन करना चाहते हैं, जो डेयरी से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको हम उपयोग करने की इस सघन चारा उत्पादन तकनीक की सलाह दे सकते हैं। और चूंकि इन पद्धतियों का अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सघन चारा उत्पादन के लिए अनेक पद्धतियां हैं, जैसे बहुवर्षीय घास को हम खरीफ मौसम में मक्का तथा लोबिया और रवि मौसम में बहुवर्षीय चारा घास के साथ रिजका या जई अथवा सरसों, इनका चयन करके और हम फसल से अत्यधिक हरा चारा व पौष्टिक चारा उगा सकते।
0: तो किसान भाइयों, आपने इस प्रकार जाना कि बहुवर्षीय चारा घासों द्वारा हरा चारा प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं। पूरी जानकारी मिली आपको डॉक्टर एस के गुप्ता जी से। तो मैं आशा करूंगी कि आप उनकी बातों को गौर से सुने होंगे और अब आगे अगर आप भी चाहते हैं इस हरे चारे को उगाना, तो बिल्कुल दिशा निर्देशों को अपनाएं और आसानी से इन हरा चारों को उपलब्ध कराएं अपने प्रदेश में अपने पशुओं के लिए। तो आज के लिए इतना ही। 90.8 FM ग्रीन पर फिर से मुलाकात होगी आप सभी से। सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
6: जी
5: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
6: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
5: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर एफएम ग्रीन और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जी हाँ, मैं आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही खास विषय। आज हम बात करेंगे, जी हाँ मैं आप सभी को बता दूँ, फूलों से बने मूल्य संवर्धित गहनों के बारे में। ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है और अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आपको बनाने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आप शौकीन हैं कि आप फूलों के कुछ नए नए चीज़ बनाएं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए एक व्यवसाय भी बन सकता है। और आज फूलों का डिमांड हर जगह है। आज लोग आर्टिफिशियल बलून्स और जो डेकोरेशन के सामान होते हैं उन्हें ना खरीदने की बजाय जो नेचुरल फ्लावर्स होते हैं उन्हें खरीदते हैं। और जब गहनों की बात आती है, हमारे शादी की रस्म की हम बात करें तो उसमें भी फूलों से बने गहनों का ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज कुछ ऐसी ही बातें लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर दीप्ति मैडम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर में और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं। तो आप सभी को बहुत सारी जानकारी देंगे इससे, जो कि आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। मैडम, बहुत आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम।
7: धन्यवाद
0: मैडम। सबसे पहले तो फूल से बने आभूषणों के व्यवसाय के बारे में बता दीजिए।
7: जी हाँ, देखिए, फूलों से बने आभूषण कृषि व्यवसाय में एक बहुत ही उभरता हुआ व्यवसाय है और ये व्यवसाय लाभ बहुत अधिक देता है, परंतु इसके साथ साथ हमें कई चुनौतियां भी इसमें, ये चुनौतीपूर्ण भी है क्योंकि इसमें हमें रचनात्मक दृष्टि और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। और इस व्यवसाय में प्रायः उपभोक्ता की प्राथमिकता को भी ध्यान देना होता है क्योंकि उनकी पसंद नापसंद को अगर हम नहीं ध्यान में रखेंगे तो ये व्यवसाय हमारा फेल हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता युक्त फूलों से हम आभूषणों का निर्माण कर सकते हैं। और वहीं फूलों से बने जो हमारे वैल्यू एडेड या मूल संवर्धित गहने या आभूषण होते हैं तो उनकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में बहुत मांग है। और अगर फूलों से बने आभूषण की बात करें तो ये अत्यंत आकर्षक और एवं एकदम अनूठे डिजाइन के होते हैं। इन्हें जल्दी कॉपी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी होती है। क्या डिजाइन बना रहे हैं, क्या रंगों का मिलान कर रहे हैं, ये सब डिजाइन प्रायः ये कॉपी नहीं हो सकते, तो ये एकदम अनूठे होते हैं। साथ ही अलग अलग फूलों को पोशाक के रंग से भी हम मिलान कर सकते हैं एवं शैली के हिसाब से भी उनको पहन सकते हैं। तो इस तरीके के फूलों को हम किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि ऑनलाइन हमको इनकी खरीदारी करनी चाहिए, अपनी शैली और अपने पहनावे के अनुसार फूलों के आभूषणों का चयन करना चाहिए। और जहाँ जो अगर बात करें कि ये अतिरिक्त आमदनी का भी साधन है क्योंकि इनकी खरीदारी करते वक्त उपभोक्ता जिस तरीके का जेवर या जिस तरीके का आभूषण गहना वो चयनित कर रहा है उसी हिसाब से उनका लाभ निश्चित होता है। और इनको अपने पसंद के डिजाइन एवं रंग के आभूषणों के हिसाब से हम चयनित कर कम से कम समय में ही घर बैठे ऑनलाइन खरीदारी के थ्रू इसको हम ऑर्डर कर सकते हैं।
0: जी, अब फूलों से बने जो गहने होते हैं, आभूषण होते हैं, उनके क्या फायदे हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे।
7: देखिए, आजकल जहां सोने चांदी के आभूषणों की कीमत आसमान छू रही है,
0: जी जी,
7: और वहीं
0: सोने चांदी नहीं, आर्टिफिशियल जो ज्वेलरीज हम लोग खरीदते
7: हैं वो भी बहुत और उसका क्या होता है, उसकी जगह पे हम कृत्रिम या फिर नकली गहने भी जो खरीदते हैं वे भी बहुत महंगे होते हैं, लेकिन वो नकली गहने हमारी त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, एलर्जी इत्यादि करते हैं। और इन सभी के निदान के लिए अगर हम नेचुरल प्राकृतिक फूलों का इस्तेमाल कर उसके गहने बनाए तो उसके साथ साथ हम अपने स्वास्थ्य को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। और फूलों से बने आभूषण का उपयोग अधिकतर हम क्या करते हैं कि जब हमारे यहाँ समारोह होते हैं तो बाहर से बहुत आदमी बहुत मेहमान आते हैं, उस टाइम पे हम इन महंगे जेवरात की निगरानी करना भी एक सिरदर्द बन जाता है। तो हमको क्या करना है कि इस टाइम पे यदि हम फूलों के गहने बनाएं और साथ में आने वालों के लिए छोटे हल्के गहने भी हम भेंट स्वरूप यदि रखते हैं तो ये गहने हमारे बीच में एक उल्लास का कारण भी बनते हैं एवं इनके अंदर से जो फूलों के भीनी भीनी महक आती है वो हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे सिर में स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार होता है उसको भी काफ़ी हद तक कम करने में मदद मिलती है। और यहीं जैसे हल्दी मेहंदी या फिर अलग अलग संप्रदायों की बात करें कि हल्दी का फंक्शन हो गया या क्रिश्चियंस में जैसे वाइट कलर के सफ़ेद रंग के फूलों की आवश्यकता होती है तो उसी फूलों के ऑर्डर उसी रंग के फूलों के ऑर्डर फूलों के गहनों को ऑर्डर करके हम पोशाक से भी मेल खा सकते हैं एवं हमारी जो अलग अलग हमारे समारोह हैं उनसे भी हम मेल खा के इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और वहीं यदि हम बात करें कि कृत्रिम गहने जो हमारी त्वचा में अक्सर दिक्कत पैदा करते हैं तो वहीं दूसरी ओर ये जो नेचुरल फ्लावर्स हैं प्राकृतिक फ्लावर्स हैं इनसे बने हुए आभूषण क्या करते हैं कोमलता एवं स्त्रीत्व का एहसास कराते हैं और अपनी महक से भी ये माहौल को उस समारोह को बहुत हल्का एवं सुगंधित करते हैं।
0: जी तो हम कौन कौन से आभूषण तैयार कर सकते हैं इन फूलों से?
7: देखिए इससे हम 16 सिंगार जो कहते हैं स्त्री का 16 सिंगार होता है उसमें जो उपयोग होने वाले सारे आभूषण तैयार किए जा सकते हैं। छोटे छोटे फूलों से हम महीन डिजाइन के अलग अलग आभूषण तैयार कर सकते हैं जैसे अंगूठी पायल बिछिया इत्यादि और बड़े फूलों से हम कुछ इस तरीके के आभूषण जैसे हो गया मांग टीका या गले का हार ये सब इत्यादि बड़े आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा कंगन हाथ फूल कमरबंद बाजूबंद इवन जो केस सज्जा के लिए अलग अलग सामान इस्तेमाल होता है या फिर हार झुमके तो मैंने पहले ही बताया या फूलों से बने दुपट्टे अभी हाल ही में हमने देखा अंबानी जी के यहाँ जो शादी हुई थी उसमें एक स्पेशल फूलों से कई लाख रुपए का दुपट्टा बना था जिसे दुल्हन ने कैरी किया था। तो इस तरीके से डिमांड इसकी बहुत अधिक है और इसके अलावा जो है आप अलग अलग सूखे फूलों से भी आप यहाँ तक की आभूषण बना सकते हैं लेकिन ये हमारा भारत का कल्चर नहीं है ये थोड़ा वेस्टर्न कल्चर है जिसमें सूखे फूलों को एक जेल में एक ट्रांसपेरेंट जेल में भिगा के अंदर सुखा के उससे पेंडेंट या फिर इयर रिंग्स इस तरीके की भी चीज़ है जो फैशनेबल वेस्टर्न स्टाइल है उस तरीके के गहने भी तैयार किए जा सकते हैं। पर क्योंकि यदि अभी हम जो ताजे फूलों से बने गहनों की बात कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा हमको ध्यान देने की जरूरत है जैसे कि शस्योत्तर प्रबंधन हमको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा जिससे हमारे जो ताजे फूल हैं वे कम से कम 4 से 5 दिन तक संरक्षित किए जा सकें एवं आभूषण इसको पहनकर जो व्यक्ति इसे पहने वो खुशहाल और स्वस्थ महसूस कर सके।
0: जी और अगर जब हम खरीदने जाते हैं ये फूल से बने गहने तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस समय?
7: देखिए इसका चयन पोशाक के रंग और व्यक्तिगत पसंद जिसे कहते हैं उसके अनुसार होना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर रंग हल्के शेड में पसंद है तो उसी तरीके के फूल हमको चयनित करके उसके गहने बनाने चाहिए। दूसरी चीज क्योंकि ये ताजे फूलों से बने हैं तो इन्हें तुरंत बनाया जाता है इसलिए इनका ऑर्डर ससमय करना चाहिए ताकि समारोह के समय से पहले इसको पते पर भेजा जा सके। दूसरा आभूषण बनाने के लिए हमें तारनुमा मजबूत धागों का प्रयोग करना चाहिए जो ताजे फूल क्योंकि ताजे फूलों में नमी होती है वे भारी थोड़े से होते हैं तो उनके भार को वो सहन कर सके इस तरीके से हमें फूलों को इस्तेमाल करना है। वही महीन काम के आभूषण बनाने के लिए जैसे अगर छोटे छोटे महीन कलर के आभूषण है तो इसके लिए हमें चिपकाने के लिए ग्लू गन का इस्तेमाल करना चाहिए और नीचे जो हम बेस इस्तेमाल कर रहे हैं वह हार्ड नहीं होना चाहिए जो स्किन को हमारे या हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाए। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी की त्वचा बहुत ही सेंसिटिव है तो जो वैक्स स्ट्रिप होती हैं उसको बेस बना के उसको आकार में काट के मान लीजिए हार का जो भी शेप देना है उस शेप में काट के फिर उस पे ग्लू गन के द्वारा फूलों को अपने रंग के अनुसार या 2-3 रंगों को मिला के गहने तैयार करने चाहिए। वहीं दूसरी ओर यदि किसी की त्वचा बहुत ही ऑयली है तो उसे ये वैक्स स्ट्रिप नहीं रास आएगी तो उसको ऑर्डर करते समय अपना ये सारी डिटेल्स भी देनी होगी और उसके लिए हम क्या करते हैं कॉटन के स्ट्रिप्स या बकरम वगैरह होता है उसे काट के भी उसमें गहने या तो चिपका दिए जाते हैं या फिर जो सॉफ्ट तार होते हैं उसकी सहायता से पिरो पिरो के उसमें फूलों को टांका जाता है। यही फूल नहीं, गहने को और भारी भरकम करने के लिए इनमें बीच बीच में मोतियां या स्टोन्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कीमत अधिक हो जाती है, लेकिन ये गहने देखने में बहुत भारी और बहुत ही अनूठे लगते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि इनको हमें थोड़ा सा नमी में रखना चाहिए, चाहे जैसी डिलीवरी आ जाए तो इसे उचित तापमान में फ्रिज में या नमी युक्त मलमल के कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, ताकि ये बिल्कुल तरोताजा रहे और इनमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। और ऐसा करने से फूलों को हम 3 से 4 दिन तक संरक्षित कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर समय में उसे बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: अब अगर हमें आभूषण बनाने हैं तो कौन से फूल का उपयोग हम कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें।
7: देखिए, अभी मैंने जैसे बताया, ये व्यवसाय ग्रामीण बेरोजगार और महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है, जिसे महिलाएं घर पे भी ऑर्डर करने की जगह यदि ये सीख लेती हैं तो घर में भी खुद से बना सकती हैं अपनी, लेकिन उनमें थोड़ा सा क्या हो है, सृजनात्मक कला होनी चाहिए। तो इसके लिए जो हम यदि बात करें तो इसके लिए जो फूल इस्तेमाल होते हैं वे प्रायः ऐसे फूल होते हैं जो महकदार होने के साथ त्वचा के लिए भी सेहतमंद हो, जैसे गेंदा, देसी गुलाब, रजनीगंधा, चमेली, मोगरा और ताजा कलियों से भी फूल को बनाया जाता है। प्रायः इन इस रोजगार को स्टार्ट करने के लिए क्या है कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, एक सुई और मजबूत धागे ही चाहिए। फूलों के अतिरिक्त फूल भी चाहिए, मजबूत धागा और सुई, और अगर कुछ सजावटी सामान जैसे मोती स्टोन है तो उसका भी इंतजाम करके रख लेना है। तो इन आभूषणों को जो है हम प्रायः जो इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ही आसानी से, लेकिन थोड़े से ट्रेनिंग के बाद आप अलग अलग डिजाइन, क्योंकि कृषि के अंदर क्रिएटिविटी है, उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यह सीखने में, और हाथ भी जब सेट हो जाएगा, जब 2-4 बार आप बना लेंगे तो बहुत महीन आभूषण भी आप तैयार कर सकते हैं। तो प्रायः इन आभूषणों की में जो हमारी लागत आती है वो 500 रुपए से स्टार्टिंग होती है, लेकिन यदि कोई बहुत महंगाई की तरफ जाए या सोने के तार का इस्तेमाल कराना चाहे, असली मोतियों का, तब इसकी कीमत थोड़ी हजारों में चली जाएगी। लेकिन आमतौर पर यदि हम बात करें तो 500 से 5000 के बीच में सारे गहने आपके हल्के से भारी गहने तैयार हो जाएंगे।
0: तो श्रोताओं, आज आपने जाना कि फूलों से आप गहने कैसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, और आप शौकीन हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो इसे बनाने में और भी मज़ा आएगा आपको, और आप एक व्यवसाय के तौर पर भी इन आभूषणों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले दिन एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
5: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
5: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
5: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु, और आज जी हां, उन्नत कृषि कार्यक्रम में हर रोज की तरह हम लेकर आते हैं बहुत ही अच्छी और खास बातें हमारे किसान भाइयों के लिए। और अभी जो मौसम चल रहा है वो खरीफ मौसम है, और ऐसे में तिल की खेती आप कैसे करेंगे, इन सभी जानकारियों के साथ हमारे बीच है आज डॉक्टर सीमा सिन्हा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक।

भाई एक अवश्य लगाएं। और ये एक ऐसा पौधा है जिसको हम सदाबहार कह सकते हैं, ये किसी भी मौसम में होता है, खरीफ में भी हो रहा है, गर्मा में भी हो रहा है। खरीफ मौसम में विशेष ध्यान रखना है कि वैसे जगह पे हम इसको लगाएं जहाँ पे जल जमाव ना हो। खरीफ मौसम में इसमें इरिगेशन देने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। और इसका जो लगाने का सही समय है, एक जब बारिश गिर जाती है जो खरीफ की, हमारे मानसून का आ जाता है, उसके बाद लगाते हैं। जल जमाव हुआ तो पौधा चला जाता है, हमारा बचता नहीं, इसलिए पौधे को हम लोग बहुत बचा के रखते हैं कि वाटर लॉगिंग बिल्कुल ना हो। और जहाँ तक कि इसके महत्वपूर्ण, इसके जो आपको फसल के जो गुणवत्ता है, आयुर्वेद में भी इसका काफ़ी वर्णन हुआ है, और इसको त्रिदोषा के रूप में भी हम लोग बोलते हैं। फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट और कोलेस्ट्रॉल तथा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए जो है इसमें अपना एक गुण है, और साथ में ये मतलब इसके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता भी है जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि दिन रोजमर्रे में हम लोग इसका तेल को, इसके तिल को अपने खाद्य में शामिल करना चाहिए, जो बहुत ही आवश्यक है। साथ ही हम इसके खेती के बारे में बात करें तो अभी खरीफ के मौसम में हम सबसे पहले जलवायु के बारे में बात करेंगे, साथ साथ इसके ज़मीन की उपलब्धि के बारे में बात करेंगे कि किस ज़मीन में हम लोग इस जो उपलब्ध है और कौन से ज़मीन में हम इसको लगाएं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ज़मीन हम ऐसा चुनेंगे जो दोमट बलवाही मिट्टी हो और उसमें पानी का स्टैग्नेशन नहीं हो, साथ में थोड़ा ऊपर का ज़मीन हो, साथ ही अगर ढलाव की ज़मीन है तो और भी बेहतर है। क्योंकि जैसे ही बारिश होती है हमारी, लगातार जब 3-4 बारिश हो जाती है तो फिर इसमें जल जमाव होने की समस्या आती है। तो अगर थोड़ा सा भी ढलाव है तो वो पानी नहीं जमेगा। और जहाँ तक हम इसके भूमि की चुनाव जब कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका सबसे पहले कोशिश करते हैं कि खरपतवार निकलवा दें, क्योंकि जो शुरुआत के दिनों में है तिल की बढ़वार थोड़ी कम होती है तो खरपतवार तुरंत बढ़ जाते हैं और फिर दिक्कत होती है। ऐसे खरपतवार के नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत ही बाद हम लोग पेंडामेथिलीन डाल देते हैं 2-3 दिन के अंदर, जिससे कि खरपतवार का नियंत्रण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्योंकि बरसात का मौसम है, खरीफ का मौसम है, तो खरपतवार स्वाभाविक रूप से थोड़ा ज़्यादा आता है। और जहाँ तक इसके हम लोग खरीफ में मौसम में हम लोग ये भी कहेंगे कि इसको जनरली छिटवा विधि से लोग लगा देते हैं, लेकिन कतार में लगाने से इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर हमको इसमें घर पतवार हो गए हैं, उसकी निकौनी करनी है, तो वो बड़े आसानी से होता है। साथ ही साथ इसका जब बीज की रुपाई की बात हम लोग बोलते हैं, तो इसका 5-6 केजी हम लोग मुख्य रूप से बीज कतार से कतार लगाने में यूज़ करते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। लेकिन अगर छिटवा विधि से है तो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो इसके लिए भी हम लोग एक उपाय करते हैं कि इसमें कुछ बालू मिला देते हैं, जिससे कि सीड इसके काफ़ी छोटे होते हैं, जो ज़्यादा ना गिरे। साथ ही साथ इसके भूमि के चुनाव के बाद हम लोग इसमें खाद की मात्रा के बारे में बात करते हैं। ये जनरली ये मुख्य रूप से अभी जो इसको उगाया जाता है, लोग छोटे से प्लॉट में उगाते हैं अपने घर के पास के ज़मीन में, तो वहाँ खाद तो देते नहीं हैं, लेकिन अगर खाद उपलब्ध है तो देना चाहिए। और इसकी मात्रा हम लोग कहते हैं कि नेत्रजन है जो 40, 20 फॉस्फोरस, 20 पोटास केजी पर हेक्टर के हिसाब से डालते हैं। जो नाइट्रोजन की मात्रा डालते हैं उसका विशेष ध्यान रखेंगे कि 2 डोज में डालेंगे, बाकी तो सारा एक साथ में हम लोग डालते हैं, फास्फोरस एंड पोटाश। नाइट्रोजन की आधी मात्रा उस शुरुआत में डालते हैं जब हम लोग रुपाई करते हैं, आधी मात्रा हम लोग फ्लावरिंग आने से पहले डालते हैं। साथ में कंपोस्ट की उपलब्धता पर निर्भर करता है, अगर कंपोस्ट उपलब्ध है तो अवश्य हम उसमें डालेंगे। और बीज की मात्रा और दूरी की बात है तो बीज की मात्रा 5-6 केजी लगेगा के कतारों में। अगर इसको अंतर्वर्ती खेती करते हैं तो इसके लाइन पे डिपेंड करता है कि आप कितने लाइन लगाए हो। अगर ज़्यादा लाइन है तो ज़्यादा बीज लगेगा, कम लाइन है तो कम लगेगा। और इसकी अगर एकल फसल के रूप में हम लोग इसको लेते हैं तो 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी यूज़ करते हैं और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी करते हैं। और इसके बीज का उपचार करना आवश्यक होता है। 2 ग्राम कार्बन डाइजीन है या अथवा

0: टाइकोडर्मा से भी हम लोग उपचार करते हैं। और इस खरीफ मौसम में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि थोड़े बीमारी इसमें ज़्यादा आते हैं खरीफ मौसम में, गर्मा मौसम के ये में, तो थोड़ी लागत अवश्य बढ़ती है। और इस समय हम लोग को बैक्टीरियल ब्लाइट से बचाने के लिए सीड को अवश्य ही स्ट्रेप्टोमाइसिन से ये करना चाहिए। 4 kg बीज में 1 gram हम लोग ये स्ट्रेप्टोमाइसिन से ट्रीटमेंट देते हैं, उसको उपचार करते हैं ताकि बैक्टीरियल ब्लाइट से बचा रहे। क्योंकि ब्लाइट जो है काफ़ी छोटे, करीब करीब पौधे के 6 से 8 पत्ते के होते हैं, उस समय से आना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी बहुत शुरुआत के दिनों में ही ब्लाइट आ जाते हैं, ज़्यादा बारिश होता है, तो फिर उसके बाद उसको बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और बीमारी है जिसको फाइलोडी बोलते हैं हम लोग। फाइलोडी भी दिखता है बहुत जगह पे, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि पौधा जो फाइलोडी से अफेक्टेड है, इस जो इसमें क्या होता है मुख्य रूप से कि पौधे को पहचानने के लिए सारे पत्ते एक जगह पे हो जाते हैं और बीच की, दो पत्ते के बीच की दूरी जिसको इंटरनोड डिस्टेंस बोलते हैं, वो बिल्कुल ही घट जाता है, तो एक जगह बंच की तरह हो जाता है। और इसमें फ्लावरिंग और पॉडिंग नहीं के बराबर होती है, तो इसमें पॉड, इसमें हमारा यील्ड का काफ़ी लॉस होता है। तो इसको, इसके लिए हम लोग सबसे पहले फाइलोडी को मुक्त करने के लिए जो पौधे हमारे पास दिखें उसको हम लोग हटा देते हैं, उसको निकाल के दूर हटा देते हैं। या फिर इसको उपचार करने के लिए हम लोग ये भी करते हैं कि 3 gram ब्लाइटोक्स 50 का पर लीटर पानी में उसको घोल के 15 से 20 दिन के इंटरवल पे 2 छिड़काव कर देते हैं। ये भी एक थोड़ा सा ये है। और इसके लिए दूसरी बात ये है कि हम बीज ही ऐसा लें जो फाइलोडी से मुक्त हो, रेसिस्टेंट हो। कुछ बीज हमारे पास जो अच्छे बीज हैं उसमें आपका काफ़ी बीज है, आप सबौर 1 का उपयोग कर सकते हैं, आप GT10 का उपयोग कर सकते हैं, इन सबों में TKG 22 का उपयोग कर सकते हैं। इन सबों में ऐसे बीमारी की कोई फाइलोडी से कोई मतलब फाइलोडी नहीं आता है इन पौधों में। तो इसके लिए भी हम लोग फसल सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा फसल खराब हो जाता है। साथ ही इसमें हम लोग तो इस तरह से इसमें नाइट्रोजन का लॉस नहीं होता है और पौधों को अच्छे से मिल जाता है और पौधा इसका उपयोग करते हैं। और खरपतवार तो इस मौसम में आते हैं, उसके लिए पन्ना मिथिलिन मैंने बताया है। और जो आप ये हाथ से निकाई गुड़ाई कर सकते हैं उसको भी 15 से 20 दिन के अंतराल पे करते रहें, जिससे कि आपका खरपतवार कम से कम 2 महीने तक तो बचा रहे क्रॉप। तो फिर क्रॉप की बढ़वार ज़्यादा हो जाती है तो फिर दिक्कत नहीं होती है, शुरुआत के दिनों में इसकी बढ़वार काफ़ी कम है, तो हम लोग इसका विशेष ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ कटाई करने के लिए इस फसल में एक दिक्कत ये आती है कि ये सिंक्रोनाइज मैच्योरिटी नहीं है, एक साथ में नहीं पकता है। फिर भी हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ऐसे कौन से समय में काटें जो कि कम से कम लॉस हो, मतलब कहने का कि फली फटने के पहले काट लें तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिल सके। तो इसके लिए हम लोग अगर पत्ती को देखते हैं तो नीचे की पत्तियां कुछ झड़ने लगती है और पीले हो जाते हैं, तो हम लोग इसको काट के खड़ा करते हैं, रखते हैं और 3-4 दिन धूप में डाल के सुखा के उसके बाद इसको हम लोग थ्रेशिंग कर लेते हैं। और थ्रेशिंग करने के बाद भी हम लोग ये निश्चित करते हैं कि करीब करीब 8% के अराउंड में इसका मॉइस्चर रहे, नहीं तो फिर जहाँ स्टोरेज करेंगे वहाँ फिर उसमें कीट लगने की संभावना होती है। लेकिन अगर हम लोग इसको अच्छे से सुखा के अच्छे से बैग में पैक करेंगे तो फिर वो संभावना घट जाती है। तो किसान भाइयों, आप लोग इस जो उपयोगी फसल है आपके लिए इसको लगाएं। और इसका जहाँ तक बिकने की बात है और इसका जो रेट है वो काफ़ी हाई है, सरकार के तरफ से भी बार बार इसमें इसके जो MSP हैं बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये तिलहनी फसलों में काफ़ी उपयुक्त फसल है। अपने खाने के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी, जिससे आप इससे आय अर्जित ज्यादा से ज्यादा कर सकें। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खरीफ में तिल की खेती, और इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं आपको, और आशा करते हैं आज का यह वार्ता जरूर आपको पसंद आएगा। अगले दिन मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास, जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और।
5: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
5: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
5: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों के टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
8: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
9: जी
8: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
9: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
8: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: आप आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र श्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करे और ध्यान दे कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें।
9: सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें, 27 से 28 जून 2026।

0: अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। हमारे साथ हैं आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में डॉक्टर ऋचा। और आज मैं आप सभी को बता दूं कि आज जो खास विषय लेकर आई हैं मैडम, वो है मूंग के प्रमुख कीट एवं प्रबंधन। आपको बता दें मैडम वैज्ञानिक है इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर में। तो सबसे पहले तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे मैम कि मूंग में लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं वो कौन कौन से हैं।
2: सबसे पहले धन्यवाद हम। जब मूंग की बात अगर हम करते हैं तो इसकी जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसमें अनेक प्रकार के कीट जो है उनके लगने की संभावना बनी रहती है, जिसमें से हम प्रमुखतया हम अगर बात करें तो तना छेदक हो गया, फली बेधक, इल्लियाँ जैसे कि तंबाकू की इल्ली या फिर बिहार रोएदार इल्ली, इन सब का प्रकोप जो है बहुत ज़्यादा इसमें बना रहता है। रस चूसक कीट की अगर मैं बात करूं तो उसमें लाही जिसको माहू या चेपा भी कहते हैं, इसके अलावा सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स आदि इनके प्रमुख कीट माने जाते हैं।
0: जी, इन कीटों की पहचान हम कैसे करेंगे?
2: देखिए, प्रारंभिक अवस्था की अगर मैं बात करूं तो उस समय कुछ इल्ली जैसे कि चने की इल्ली हुई वो भी मूंग पे देखा जा सकता है। और ये जो इल्ली है इस इल्ली को हम पिल्लू भी कहते हैं, साधारणतः इसको हम पिल्लू ही कहते हैं। यहाँ पे ये 3 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है, हरा भूरा रंग की होती है और इसमें रोमयुक्त गहरे पीले रंग की धारीनुमा बनी होती है। इसकी जो वयस्क है वो मध्यम आकार की हल्के भूरे रंग का उभार लिए हुए होती है। और ये इनकी जो पंख की अगर हम बात करें तो सुनहरी हरी हो सी होगी, पीली तथा गहरा भूरा रंग का जो है इनका पंख होता है। ये आगे की पंख की मैं बात कर रही हूँ। शरीर के जो मध्य में एक गोल धब्बानुमा सा दाग बना रहता है। और अगर पीछे के पंख की बात करें तो ये सफ़ेद रंग के एवं किनारा जो है वो चौड़े काले रंग का होता है। फिर एक और पिल्लू की मैं बात करूंगी, तंबाकू का पिल्लू भी इसको कहते हैं, वो भी मूंग में देखा जा सकता है। ये हरे मटमैले रंग के होते हैं जिनके शरीर पर पीले रंग एवं नारंगी रंग की लंबवत धारियां होती है। उदर के प्रत्येक खंड के दोनों ओर काले धब्बे होते हैं। और अगर हम इनके वयस्क की बात करते हैं तो उनके जो अग्रपंख हैं सुनहरे भूरे रंग के और सफ़ेद धारियां लिए होते हैं। जो पिछले के पंख होते हैं उन पर भूरे रंग की शिराएं होती हैं। इसके अलावा चेपा या माहू जो बहुत ही प्रमुख रूप से रस चूसक कीट में आते हैं, तो वो क्या होते हैं कि उनकी जो पहचान है वो बहुत ही आसान होता है। अगर मैं कहूँ तो इनके जो शिशु एवं वयस्क दोनों ही पत्तियों, तनों, फूलों एवं दानों पे समूह में एकत्रित होकर रहते हैं। इनके जो शिशु हैं उनमें मोमयुक्त परत रहती है जिसके कारण वो धूसर मटमैली दिखाई पड़ती है। और जो वयस्क हैं वो काले रंग की चमकदार 2 मिलीमीटर लंबी होती है। फिर एक सफ़ेद मक्खी की मैं बात करती हूँ। सफ़ेद मक्खी भी एक कीट है जिनके शिशु जो हैं वो गोल या अंडाकार एवं हरे सफ़ेद रंग लिए होती है। और जो वयस्क हैं इनके वो 1 से 2 मिलीमीटर आकार के हल्के पीले रंग के होते हैं। तो इस आधार पर इन सारे कीटों का पहचान करना हम सुनिश्चित करते हैं।
0: जी, इनसे होने वाले क्षति के प्रमुख लक्षण क्या है?
2: देखिए, अगर सबसे पहले मैं पिल्लू की बात करूंगी कि पिल्लू से क्या आपके जो क्षति होती है उसके लक्षण क्या होते हैं, तो पिल्लू जो होते हैं वो प्रायः पत्तियों पर खुरचनुमा संरचना बना करके और दानों की फलियों को छेद करके बीज को खाती है। तो इसका जो सिर है वो अंदर की तरफ एवं शरीर का भाग बाहर की तरफ लटका रहता है। उसी प्रकार अगर तंबाकू की इल्ली की बात करते हैं तो ये मूंग की प्रारंभिक अवस्था में एक समूह में रहती है और पत्तियों के पर्णहरित पदार्थों को खाती है, मतलब क्लोरोफिल को एक तरह से बोले खाती है, जिससे कि क्या होता है कि पौधे की सभी पत्तियां बिल्कुल जालीनुमा दिखाई पड़ने लगती है। फिर हम करते हैं चेपा की बात, जो उनका जो क्षति का लक्षण है वो इन सब से बिल्कुल अलग होता है। ये क्या करते हैं, ये कोमल तनों और पत्तियों का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां सिकुड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। अक्सर सफ़ेद मक्खी की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि ये तीन प्रकार से फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इनके शिशु एवं वयस्क दोनों ही पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं, जिससे कि क्या होता है पौधे की जो वृद्धि है वो रुक जाती है और पत्तियाँ पीली होकर गिरने लगती है तथा फूल एवं फलियां झड़ जाती है। जब ये रस चूसते हैं तो होता क्या है कि ये रस चूसने के साथ साथ एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ भी निकालते रहते हैं, जो नीचे की पत्तियों पर बिल्कुल जमा हो जाता है और अंत में क्या होता है इस पे काली फफूंद उगने लगती है। ये जो कीट है वो पीला मोजैक बीमारी के वाहक का काम भी करते हैं। इसके अलावा ब्लिस्टर बीटल भी है जो फूलों को खाती है। ये सारे क्या हैं प्रमुख इनके क्षति के लक्षण हैं इन कीटों के।
0: जी, इसके अलावा अगर हम फसलों की बात करते हैं, उनको कैसे बचाया जा सकता है इन कीटों से?
2: देखिए, अगर हम नियंत्रण की बात करते हैं तो मैं कहूँगी कि हम किसान बंधु जो हैं उन्हें सबसे पहले समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए। इसके तहत चार विधि आते हैं। चार विधि में पहला है जो है वो है व्यवहारिक, दूसरा है यांत्रिक, तीसरा है जैविक एवं अंत में आता है रासायनिक विधि। तो सबसे पहले व्यवहारिक विधि की बात कर लें। इसमें क्या होता है कि बीजों उपचार बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखनी है कि समय पर बुवाई करना चाहिए। समय पर बुवाई करने से कीटों का जो प्रकोप है वो कम हो जाता है और उपज में बढ़ोतरी होती है। मूंग को अन्य फसलों के साथ बदल कर लगाने से जो कीट हैं उनका जीवन चक्र जो है वो तोड़ा जा सकता है। इसको हम फसल चक्र भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ेगी और फिर जो कीट हैं उनका प्रकोप भी कम होगा। जैसे कि धान, गेहूं या सब्जी, ये सब आप मूंग के अंतर्वर्ती फसल के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा खेत की जो साफ सफाई है उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। सुरक्षा फसल जैसे कि कुछ पंक्ति जो आप ज्वार या मक्का की भी मूंग के चारों तरफ लगा सकते हैं, इनको सुरक्षा फसल के तौर पे माना जाता है। खेत में फार्म यार्ड मैन्यूर की अगर हम बात करें तो प्रति चार टन प्रति एकड़ या वर्मी कंपोस्ट 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से बुवाई से पहले डालना चाहिए। अब हम बात करते हैं यांत्रिक विधि की। यांत्रिक विधि के तहत अगर आपको पिल्लू दिख रहे हैं तो उन्हें क्या करें, आप हाथों से पकड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा जल जमाव खेतों में बिल्कुल ना होने दें, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद एक पीला चिपचिपा फंदा और नीला चिपचिपा फंदा भी आता है, जिनको कि खेतों में लगाने से जो रस चूसक कीट है जैसे कि चेपा हुआ, सफ़ेद मक्खी हुआ, ये सारे क्या होते हैं फंदे से चिपक जाते हैं। अब अगर थ्रिप्स के लिए हम नीला चिपचिपा फंदे का प्रयोग करते हैं, ये जो फंदे हैं इनको आप लकड़ी के सहारे खेतों में लगा सकते हैं। अब आप बोलेंगे इनसे होता क्या है, तो ये जो कीट हैं वो इनके रंग से आकर्षित होते हैं और गोंद लगे होने के कारण उससे चिपक जाते हैं। फिर हम यांत्रिक विधि में एक प्रकाश प्रपंच का भी हमें करना चाहिए, क्योंकि इसके उपयोग से क्या होता है किसान बंधु इसका उपयोग आराम से कर सकते हैं। 6 बजे से सायकाल से 10 बजे रात तक खेतों में 1 से 5 प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रकाश प्रपंच लगा सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो पिल्लू की वयस्क अवस्था है वो प्रकाश से आकर्षित होकर उनके नज़दीक आएगी और उसमें फंस जाएगी। फिर गंधपाश एक यंत्र है जिसमें कीटों को आकर्षित करने के लिए ल्यूर या जिसको केमिकल कहते हैं वो लगे रहते हैं, जैसे कि फली बेधक के लिए हम हेलील्यूर का उपयोग करते हैं। इनका प्रयोग भी किसान बंधु कर सकते हैं। इसके अलावा पक्षी आश्रय लगाना भी एक बहुत ही सुरक्षित उपाय है, जिससे कि जो परभक्षी पक्षी हैं वो कीटों को क्या करते हैं खाते हैं, मतलब हमारे शत्रु कीटों को पक्षी खा लेते हैं। अब हम तीसरे में जैविक विधि की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें संरक्षण की बात जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि परजीवी में ट्राइकोग्रामा है, तो आप ट्राई को कार्ड का प्रयोग करें या फिर उन्हें संरक्षित करें। जैसे कि आप अगर परभक्षी कीट, मतलब वो कीट जो हमारे दुश्मन को खाएं, उनका हमें संरक्षण करना चाहिए। ऐसे कीट को हम मित्र कीट कहते हैं, क्योंकि मित्र कीट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो कीट फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो हमारे शत्रु कीट हुए। और मित्र कीट क्या करते हैं, मित्र कीट हमारे वही शत्रु कीट को खाते हैं। तो इनके अगर मैं उदाहरण की बात करूं, मित्र कीट का मैं उदाहरण दे रही हूं, जैसे कि टिकुलिया हो गया, जिसको कि लेडी बर्ड बिट्टल आपने नाम भी सुना होगा। इसके अलावा डाकू मक्खी हुई या फिर मकड़ी हुई। हालांकि मकड़ी को कीट में वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन ये भी हमारे मित्र हैं। सबसे अंत में रासायनिक विधि की बात करनी चाहिए, जिसमें कि मान लीजिए अगर रस चूसक कीट की हम बात करते हैं, तो आर्थिक क्षति स्तर को जब कीट पार कर ले तो उस समय क्या करना चाहिए, नीम का तेल जो है 3000 ppm या नीम बीज अर्क 5% के हिसाब से छिड़काव करें। बुआई से पहले थायामेथोक्जन उसका आप बीज से उसको भी उपचारित कर सकते हैं, या फिर थायामेथोक्जन 25WG को 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर भी छिड़काव किया जा सकता है। सफ़ेद मक्खी के लिए बीजों उपचार करना चाहिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL से। और इसके अलावा जो पिल्लू हैं उनके लिए क्लोरेंट्रेनिप्रोड 18.5 SC का 100 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव किया जा सकता है। इन सभी विधियों को अपनाकर हमारे किसान बंधु मूंग में लगने वाले कीटों से निजात पा सकते हैं और इसकी पैदावार भी बढ़ा सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, आज आप ये जान रहे थे खास विषय हमारा मूंग में लगने वाले कीट एवं रोग एवं उनका प्रबंधन। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे कल। नमस्कार। उन्नत कृषि
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया, अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय। सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम करियर वॉच में। और करियर वॉच में आज हम बातें करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी परेशानी के बारे में, जिसे लगभग हर विद्यार्थी जूझता है कि वो अकेले पढ़ाई करे या ग्रुप स्टडी करे। और ये परेशानी हर बच्चे को अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में होती ही है, क्योंकि कुछ बच्चा अकेले पढ़ाई करके अच्छा कर रहा है और कुछ बच्चा ग्रुप में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ग्रुप में अच्छी पढ़ाई कर पा रहा है। और हमें क्या चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हम किसी और को देख कर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि ये बच्चा ग्रुप में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो शायद मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन हर किसी के लिए ग्रुप स्टडी नहीं होता, और उसी तरीके से हर किसी के लिए इंडिविजुअल स्टडी यानी कि अकेले पढ़ाई करना भी बेहतर नहीं होता है। तो क्या है आपके लिए बेहतर, ये जानने के लिए कुछ चीजें समझनी जरूरी है। सबसे पहले तो समझते हैं कि ग्रुप स्टडी के फायदे क्या है। पहला फायदा तो यही होता है कि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं वो जो भी समझते हैं वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, जिससे बहुत टफ सब्जेक्ट भी बहुत आसानी से समझ में हमें आ जाता है। इसके अलावा रिटेंशन बढ़ता है, यानी कि जब आप किसी एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, दूसरों को समझा कर पढ़ाते हैं, तो ऐसे में कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक ज़्यादा याद रहता है। मान लीजिए आपने किसी चीज़ को समझ लिया और आपने उसी टॉपिक को किसी और को समझाया, तो ऐसे में आपकी जो मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। कुछ स्टडीज़ में ऐसा भी पाया गया है कि आपकी जो रिटेंशन पावर है वो 50% तक बढ़ सकती है। और इसके अलावा जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आप थोड़ा लो भी फील करते हैं तो कोई आपका पार्टनर होता है, आपका दोस्त होता है जो आपको मोटिवेट करता है। और ग्रुप में पढ़ना मजेदार होता है, प्रेरणादायक होता है, जिससे पढ़ाई जारी रखने का मन करता है। तो एक तरीके से जो टीम का सपोर्ट होता है आपके पास वो आपको मोटिवेट करता है। और इसके अलावा आपके अंदर संचार और नेतृत्व का कौशल भी बनता है। आप ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, सवाल जवाब आपस में कर रहे हैं, विचार एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक जो कम्युनिकेशन स्किल है और लीडरशिप है ये भी डेवलप होती है। और बहुत सारे एग्जाम्स में ना अब ग्रुप डिस्कशंस को भी शामिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आप ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका फायदा आपको ऐसे एग्जाम्स में, ऐसे प्रोसेस में जाकर मिलता है। और ग्रुप स्टडीज के ऐसे नहीं है कि सिर्फ फायदे होते हैं, इसमें कुछ चुनौतियां भी होती है। जैसे कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, तो उसमें सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चा थोड़ा स्लो होगा पढ़ाई करने में, कुछ लोग ऐसा होगा जो काफी फास्ट चीजें सीख रहा है। तो इससे ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे चीजों को आधी ही सीख पा रहे हैं, क्योंकि वो देखेगा कि ग्रुप के सारे बच्चों ने तो सीख लिया पर मुझे ही परेशानी हो रहा है। तो कई बार हम शर्म की वजह से चीजें नहीं बता पाते हैं कि मुझे ये बात समझ नहीं आई है। और ग्रुप स्टडी की जो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि सारे बच्चे इकट्ठे हुए और बातें करने लग जाते हैं और वो बातें ऑफ टॉपिक हो जाती है, यानी कि आपको जिस टॉपिक पे बातें करनी थी वो टॉपिक उससे निकल कर न जाने कहाँ कहाँ की बातें करने लगते हैं, और फिर ये हमारी पढ़ाई में व्यवधान डालती है। तो ग्रुप स्टडी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि हमारा ध्यान भी बहुत ईजिली भटकता है, हम बातें करने लग जाते हैं। और यहाँ पर एक और परेशानी होती है कि समय और योजना की परेशानी होती है। सारे बच्चे एक वक्त पे फ्री नहीं हो सकते हैं, और सारे बच्चों का जो गोल है वो भी एक नहीं हो सकता है। तो अगर आप जब ग्रुप स्टडी की सोच रहे हैं और सभी का टाइम प्लानिंग बिल्कुल सही है और आपका गोल भी एक ही है, तो ये परेशानी नहीं रहती है, ये बात करके सुलझाया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर आप ऐसे बच्चों के साथ ग्रुप बना ले जो कि एक ही एग्जाम को, सेम एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो ये परेशानी तो बहुत ही आसानी से सुलझाई जा सकती है। अगर आप ग्रुप स्टडी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो जरूरी है कि जो आप अपना गोल है वो क्लियर रखें और रोल्स बांट दें बच्चों में, जैसे कि कौन नोट लाएगा, कौन टाइम का ध्यान रखेगा और कौन क्या करेगा, ये चीजें आप बांट दें तो सारे लोगों में जो बातें हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बटी रहेगी। और एक और बात थी ग्रुप स्टडी की जो परेशानी होती है कि कोई बच्चा शायद पीछे रह जाता है और वो शर्म से नहीं बता पाता है। तो जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो एक ऐसा माहौल बनाएं जहां पर सारे बच्चे खुलकर अपने जो परेशानी है वो साझा कर पाए। आपके दोस्त ही तो हैं जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल बनाएं जहां पर ओपन हर कोई अपने प्रॉब्लम को बता पाने में बिल्कुल सहज महसूस करे, और एक अच्छी तरीके से प्लान करें और ग्रुप स्टडी में पढ़ाई करने की भी एक समय सीमा रखें कि इतने बजे तक ही पढ़ाई करनी है, इतने बजे के बाद हमें अपने घर जाना। और इसके अलावा आप क्या करें कि बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें प्लान करें, एक टाइम लिमिट भी रखें कि हमें इतने देर तक ही पढ़ाई करनी है, ताकि छोटे छोटे ब्रेक लें और ब्रेक में जितनी बातें करनी है कर लें, जैसे ही ब्रेक खत्म हो आप पढ़ाई करने समय पे वापस चले जाए। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान ना पढ़ाई पे बना रहेगा। इसके साथ ही आप एक और चीज कर सकते हैं कि जैसे ही आपकी ग्रुप स्टडी खत्म होती है तब आप ये चीजें देखें कि आपने आज क्या सीखा है, हर बच्चे ने क्या सीखा है, तो इसे ये भी पता लगेगा कि किसने कितना प्रोग्रेस किया और आज की पढ़ाई में ग्रुप स्टडी में आपने सिर्फ बातें ज्यादा की है या पढ़ाई भी की है। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो ग्रुप स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। और अब आगे हम बात करते हैं इंडिविजुअल स्टडी की, यानी कि जब आप अकेले पढ़ाई करते हैं तो क्या परेशानी होती है, इसके क्या फायदे होते हैं और इंडिविजुअल स्टडी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे ग्रुप स्टडी में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो पढ़ने का प्रोसेस होता है वो काफी अलग होता है। वो चीजों को बहुत गहरी तरीके से समझना चाहते हैं और आत्म अध्ययन करना चाहते हैं। इंडिविजुअल स्टडी के भी बहुत फायदे होते हैं जैसे कि ग्रुप स्टडी के भी फायदे होते हैं। इंडिविजुअल स्टडी के फायदे ये होते हैं कि आप अपनी गति पे पढ़ सकते हो, आपका एक पर्सनल पेस चलता रहता है। आपको अगर कोई टॉपिक बहुत टफ लग रहा है तो उसी टॉपिक को आप बार बार बार बार पढ़ सकते हो, लेकिन ग्रुप स्टडी में हर तरीके के बच्चे होते हैं, कोई तेजी से सीख रहा है, कोई स्लो सीख रहा है, तो ऐसे में जो स्लो लर्नर होता है वो थोड़ा पीछे रह जाता है। इंडिविजुअल स्टडी का एक और फायदा ये होता है कि आपके पास ध्यान भटकाने वाले तत्व काफी कम होते हैं। आप लंबे समय तक एक ही विषय पर बहुत ही डीपली, बहुत गहराई से काम कर सकते हैं और आपके पास कोई और आपका ध्यान भटकाने वाला नहीं होता है। और यहाँ पर परेशानियां भी बहुत होती है, लेकिन इसके पहले हम फायदों के बारे में और बातें कर लेते हैं। जब आप अकेले पढ़ाई करते हो तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी आती है और एक आत्म अनुशासन आता है, यानी कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको पता है कि आपको खुद ही सारी योजनाएं बनानी है, आपको खुद ही समय सीमा तय करना है, आपको खुद ही अपना लक्ष्य तय करना है ताकि आपके स्किल्स मजबूत हो सके। आप टाइम पे पढ़ने इसलिए नहीं बैठते हो क्योंकि बाकी बच्चे आ गए हैं, बल्कि आप टाइम पे पढ़ने इसलिए बैठते हो क्योंकि आपके अंदर जिम्मेदारी आ जाती है, आपके अंदर आत्म अनुशासन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रुप स्टडी हमें सिखाता है कि आप कैसे एक अच्छे लीडर बन सकते हो, आपको ग्रुप टास्क बेहतर सिखाता है, ग्रुप डिस्कशन की जो एबिलिटी है वो विकसित करता है, वही जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आपके अंदर जिम्मेदारी आती है, आपके अंदर आत्म अनुशासन आता है और इसके साथ ही आप अपने स्टाइल में, अपने हिसाब से, अपनी जो रूटीन है, अपनी रणनीति है, प्लानिंग है, वो कर सकते हैं। आप अपने स्टाइल के नोट्स बना सकते हैं, आपका जो रिविजन का टेक्निक है वो अलग हो सकता है, आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाते हैं। और जब आप अकेले पढ़ते हैं तो इसके फायदे तो हमने जान लिए कि क्या क्या फायदे होते हैं, इसकी चुनौतियां भी बहुत सारी है। जैसे कि आपको तुरंत कोई फीडबैक नहीं मिलता, मान लीजिए कि आपके पास कोई कंफ्यूजन आ गया, आप किसी सवाल से परेशान हो गए तो आपको तुरंत जवाब नहीं मिल पाता है क्योंकि आपके आसपास कोई होता नहीं है। वही जब हम ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि जो चीजें हमने नहीं समझी हो सकता है किसी दूसरे बच्चे ने समझ लिया है। और जब हम अकेले पढ़ाई करते हैं तो इसमें ध्यान भटकने का भी खतरा रहता है। जब हम ग्रुप में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ध्यान इसलिए भटकता है कि हम किसी और टॉपिक पे अपने दोस्तों के साथ बात करने लग जाते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, आप खुद पर बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, तब तो आपका ध्यान नहीं भटकता है, बहुत ही अच्छे से गहन फोकस के साथ आप पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो हमारे पास ध्यान भटकाने के हजारों संसाधन आज के टाइम पे मौजूद है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है और बहुत सारी चीजें होती है जो हमारा ध्यान आसानी से भटका सकते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई हमें टोक देता है कि चलो फोन नीचे रखो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अकेले ही पढ़ाई करें या फिर आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है कि आप ग्रुप के साथ पढ़ाई करें, तो कैसे आप बेहतर तरीके से अकेले पढ़ाई कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक शांत और डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस ढूंढना होगा जहां पर कि आपके डिस्ट्रैक्शन की कोई भी चीज ना हो। आप अपने फोन को दूर रख दीजिए, सोशल मीडिया को तय कर लीजिए कि इस जगह पर हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर आपको लग रहा है कि किसी के आने से आपको परेशानी होती है तो आप वहां पर पहले ही बता दीजिए कि मैं भी पढ़ाई कर रही हूं, कोई भी यहां पर ना आए। तो आप ऐसी चीजें कर सकते हैं। और एक टेक्निक तो हमेशा ही इस्तेमाल करना चाहिए, फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, 25 से 40 मिनट से ज्यादा आप किसी भी चीज पर फोकस कर ही नहीं सकते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं पोमोडोरो, यानी कि हर 25 से 40 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए। आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो भी 40 मिनट करेंगे, 45 मिनट करेंगे, उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसमें गाने सुनिए, पानी पीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, उसके बाद वापस आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। इसके साथ साथ ही आप एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिपीटेशन जैसी टेक्निक्स भी अपना सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले एक्टिव रिकॉल को समझते हैं। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि आप किताब बंद करके दिमाग से जानकारी याद करने की कोशिश करते हैं। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं और बिना देखे जवाब याद करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा मेहनत करता है और यही मेहनत आपकी याददाश्त को मजबूत करती है। और जब हम स्पेस्ड रिपीटेशन की बात करते हैं तो ये होता है कि एक ही जानकारी को आप थोड़े थोड़े गैप के बाद दोहरा रहे हैं। जैसे कि हमने कोई लाइन पढ़ी या फिर किसी डेट को पढ़ा तो अगले पेज पे जैसे ही हम गए तो एक बार हमने उस डेट के बारे में याद कर लिया कि हाँ इस डेट में ये हुआ था। तो जब आप एक ही चीज को, एक ही टर्म को या एक ही जानकारी को बार बार रिपीट करते हैं तो ये आपको याद रहता है। और इसके लिए एक जरूरी चीज होती है कि पहले दिन पढ़ें आप, तीसरे दिन उस चीज को बिल्कुल दोहराना चाहिए, सातवें दिन आप फिर दोहराइए, पंद्रहवें दिन आप फिर से रिविजन कीजिए। अगर आप इस टेक्निक को आजमाते हैं तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से और लंबे समय तक एक किसी चीज को याद रख सकते हैं। आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि पहले दिन आपने पढ़ाई कर ली, तीसरे दिन आप उस चीज को रिवाइज कीजिए, सातवें दिन आपको फिर से रिवाइज करना है, पंद्रहवें दिन फिर से रिवाइज करना, उसके बाद आपको ये चीज लंबे समय तक याद रहेगी, आपको वो टॉपिक लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो ये चीजें भी आप जब आप अकेले पढ़ते हैं या ग्रुप में भी पढ़ते हैं तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं लंबे समय तक किसी भी चीज को याद रखने के लिए। और जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आपके पास कोई भी बताने के लिए नहीं होता है, कोई भी कहने के लिए नहीं होता है कि वाओ तुमने कितनी अच्छे से इस टॉपिक को समझ लिया है या फिर तुमने कितनी जल्दी इस काम को कर लिया है। तो खुद के लिए रिवॉर्ड्स सेट करें और छोटे छोटे ब्रेक ले और छोटी छोटी सफलताओं के बाद खुशियां खुद ही मना ले कि वाओ कितनी अच्छी बात है, मैंने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया और मैंने आज इस टॉपिक को अपने टाइम से पहले या टाइम पे फिनिश कर दिया। तो खुद ही खुश हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप खुद को मोटिवेट करते हैं तो आगे पढ़ाई करने के लिए आप जब अकेले होते हैं तो ये आपको काफी ज्यादा प्रोत्साहित करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर है। तो इसको जानने का, समझने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने सीखने के स्टाइल को समझें। अगर आप देखकर चीजें जल्दी सीखते हैं, पढ़कर जल्दी चीजें सीखते हैं तो आप अकेले पढ़िए, लेकिन आप सुनकर चीजों को जल्दी सीखते हैं, याद रखते हैं तो आप ग्रुप में पढ़िए। जब दूसरे बच्चों को पढ़ते हुए सुनेंगे तो वहां पर आप चीजें सुन रहे होंगे, आपको जल्दी याद हो जाएगी। इसके अलावा पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करता है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तब तो आपको ग्रुप स्टडी में ज्यादा मजा आएगा, लेकिन आप इंट्रोवर्ट है तब आपके लिए ग्रुप स्टडी बहुत बड़ी परेशानी होगी, आप अकेले पढ़ना पसंद करेंगे। वहीं कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको पढ़ने के लिए बहुत गहरी एकाग्रता की जरूरत होती है, एक फोकस की जरूरत होती है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप अकेले ही पढ़ें। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे बच्चे अकेले पढ़ते हैं लेकिन वो बाद में ग्रुप में बैठकर डिस्कस करते हैं, तो इससे बहुत फायदे होते हैं। एक तो आपने किसी टफ टॉपिक को अकेले में समझ लिया, लेकिन अब आप ग्रुप में जाकर अगर कोई चीजें समझ नहीं आई तो कंफ्यूजन दूर किया या फिर किसी और के कंफ्यूजन को आपने दूर किया तो फिर आप चीजों को और अच्छी तरीके से समझ गए। तो आप ना जब पढ़ाई करते हैं तो सबसे बेहतर तरीका तो यही होता है कि आप दोनों ही टेक्निक को मिलाकर पढ़ाई करें, ग्रुप स्टडी भी करें, इंडिविजुअल स्टडी भी करें। जब आप इंडिविजुअली पढ़ रहे होते हैं तो आप किसी भी टफ टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस के साथ समझ रहे होते हैं, फिर उसी टॉपिक को आप ग्रुप में जाकर डिस्कस करते हैं तो आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होती है। आप पहले क्या करें कि नोट्स को अकेले पढ़ लें, फिर आप ग्रुप में जाकर जो भी मुश्किल चीजें हैं उस पर चर्चा करें, और जब आप समूह में कोई भी चीजें सीखते हैं तो उसे फिर आप वापस आकर अकेले में दोहराएं और रिव्यू करें कि आपने क्या सीखा है। और अगर कोई टफ प्रॉब्लम है तो उसे अकेले में सॉल्व करें और फिर ग्रुप में जाकर डिस्कस करें कि कैसे आपने सॉल्व किया, या फिर किसी और ने उसे सॉल्व कर लिया है तो उससे पूछे कि कैसे उन्होंने सॉल्व किया। तो किसी एक चीज पर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंडिविजुअली पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं तो भी आपको ग्रुप में डिस्कशन करना बहुत फायदेमंद आपके लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर चीजों को अलग तरीके से सीखने का, समझने का जो मौका होता है वो होता है। इसके साथ ही वहाँ पर आप अपने जो कंफ्यूजन्स होते हैं वो भी दूर कर सकते हैं। तो आप दोनों तकनीकों का इस्तेमाल करें, और दोनों ही तकनीकों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, इसलिए बेहतर है कि आप दोनों तरीकों को मिलाकर पढ़ें और ऐसे ग्रुप के साथ पढ़ें जिनका कि लक्ष्य गोल एक जैसा हो, आपके सीखने की शैली भी अगर एक जैसी हो तब तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपने आज के कार्यक्रम यानी कि करियर वॉच को देते हैं विराम। आप मुझे यानी कि अपनी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात कि स्वस्थ रहें, खुश रहें और हर रोज मेहनत करते रहें, हर रोज कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।
1: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्व

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
5: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात, बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज हम बातें करने वाले हैं महिलाओं के बारे में। कहते हैं कि महिलाओं में ममता भरी होती है और कभी कभी यही ममता उनके शरीर को कमजोर बना देती है। महिलाओं को अपना ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन उनकी आदत होती है कि वो सबका ध्यान रखेंगी और सबका ध्यान रखते रखते खुद को भूल जाती है। और बढ़ती उम्र के साथ तो ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि वो मान चुकी होती हैं, मुझसे पहले मेरा परिवार है, मेरा करियर है और सबसे अंत में हूँ मैं। बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं को खुद की देखभाल की और ज्यादा जरूरत हो जाती है, लेकिन तब उन्हें लगता है कि हमने तो उम्र काट ली अपनी, जो देखना था देख लिया, अब क्या जरूरत है। लेकिन तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपना ध्यान रखना, क्योंकि एक उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में काफी बदलाव हो रहे होते हैं। इन बदलावों की वजह से उन्हें कई सारी बीमारियों का खतरा होता है। इसलिए जरूरी होता है कि जो महिलाएं 40 पार कर चुकी हैं या 40 की उम्र की दहलीज पर हैं, वो अपना खास ख्याल रखना शुरू कर दें। तो आइए हम जानते हैं कि इस उम्र की महिलाओं में क्या परेशानियां होती हैं। सबसे पहले तो उनके हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, जो अभी तक आपके प्रजनन स्वास्थ्य और बाहरी खूबसूरती के लिए जिम्मेदार थे, वो अचानक बदलने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं। और ऐसे में महिलाओं को अनियमित महावारी और त्वचा पर उगाने वाले बाल बताते हैं कि आपके हार्मोन असंतुलित हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां बढ़ती हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन महिलाओं की प्रजनन क्षमता के साथ साथ उनके लुक को भी प्रभावित करता है। सबसे पहले तो महिलाओं के बाल हल्के और पतले होने लगते हैं और साथ ही उनके त्वचा में लोच और कसाव की कमी दिखाई देने लगती है। बाल सफेद होने लगते हैं और त्वचा पर धीरे धीरे झुर्रियां अपना पांव पसारने लगती है। ये तो बाहरी समस्या हो गई जो एक उम्र के बाद आती ही है, और इसे खुले मन से अपनाना चाहिए। बालों का सफेद होना, झुर्रियां, ये कोई अनहोनी जैसी बात नहीं होती, लेकिन वक्त से पहले होना ये गलत बात है। इसके साथ ही कुछ अंदरूनी समस्याएं भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है, जैसे कि उनकी पाचन शक्ति खराब होने लगती है। 40 की उम्र की महिलाओं का पाचन तंत्र पहले से धीमा हो जाता है, जिससे उन्हें पाचन से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा समस्याएं परेशान करने लगती है। 40 के पार की जो भी महिलाएं हैं या 40 की दहलीज पर जो महिलाएं हैं, उन्होंने ये अनुभव करना शुरू कर दिया होगा कि आप जिन चीजों को पहले बहुत चाव से खाती थी और बड़ी चाव से आपका पेट उसे पचा भी लेता था, अब वही चीजें आपके पेट पर बोझ की तरह पड़ी रहती है। और अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो गैस, एसिडिटी और बदहजमी जैसी समस्याएं आपको बहुत परेशान करने लगती है। इसके साथ ही 40 के बाद महिलाओं को वजन के साथ भी तालमेल बिठा पाना बहुत मुश्किल लगता है। इस उम्र में हार्मोन्स तो असंतुलित होते ही हैं, साथ ही मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं के पेट के आसपास चर्बी

इसलिए जरूरी होता है कि इस उम्र की महिलाओं को कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का लेवल भी चेक करते रहना चाहिए। अब इतनी सारी परेशानियां आएंगी, पेट गड़बड़ रहेगा, हड्डियां कमजोर हो रही है, वजन बढ़ रहा है, तो मूड स्विंग्स का तो होना बनता है। हार्मोन्स सिर्फ आपकी प्रजनन क्षमता को नहीं बल्कि आपके मूड को भी प्रभावित करता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाता है तो इस समय आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर जो पहले आप बहुत हल्के में टाल देते थे उस पर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत आसानी से। ज्यादातर महिलाओं के परिवार में ये शिकायत आती है कि अब वो बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई है। ऐसा उनके हार्मोन में बदलाव की वजह से होता है। ये चिड़चिड़ापन और गुस्सैल होना प्री मेनोपॉज का भी एक संकेत होता है। प्री मेनोपॉज यानी कि आपका महावारी अब बंद होने के नजदीक है और इसलिए आपको हॉट फ्लैग्स और मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी बातें तो हो गई समस्याओं की, अब इन समस्याओं का निदान क्या है, हल क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अपने मूड को कंट्रोल में करें। ध्यान दें कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। आपके जीवन में जो भी ऐसी चीजें मौजूद है जो आपको परेशान कर रही है, उसे पहचाने और उसे अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करें। अगर आप अपने तनाव को कंट्रोल कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप प्रोफेशनल सलाह लेने से भी हिचकिचाएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी एक बीमारी है जिसका इलाज जरूरी होता है और इन्हीं बीमारियों की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां आपके जीवन में, आपके शरीर में जगह बना लेती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मूड स्विंग्स का ध्यान रखें। और जैसे ही आप 40 पार करती हैं या 40 की दहलीज पर है तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके लिए एक उपाय ये भी है कि आप अपनी नींद को प्राथमिकता दें। आप गहरी अच्छी नींद सोएं और जो पर्याप्त समय होता है वो अपनी नींद को जरूर दें, यानी कि 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है। इसके साथ ही आप खूब सारा पानी पिए, यानी कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी की कमी भी बहुत सारी परेशानियों का जड़ होती है। अगर आप एक पर्याप्त मात्रा में सही तरल पदार्थ और जो जरूरी पोषक तत्व है उसे भरपूर संतुलित आहार लेना शुरू करते हैं तो आपकी बहुत सारी जो परेशानी है वो धीरे धीरे खुद ही खत्म होने लगती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि पानी पिए, नींद लें पर्याप्त। अगर फिर भी आपका मूड थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो अच्छे अच्छे मधुर मधुर संगीत सुने, किताब पढ़ें या फिर कोई ऐसी रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव चीजों में आप अपने आप को शामिल करें। आपको सिलाई बुनाई का शौक हो सकता है, पेंटिंग का शौक हो सकता है, डांस का शौक हो सकता है, जिसे अब तक आपने साइड कर दिया था क्योंकि आप अपने परिवार में, आप अपने बच्चों में उलझ गई थी। अब जबकि आप 40 की हो चुकी हैं या 40 की दहलीज पर हैं, तब तक आप अपनी ये सारी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हैं और अब आपके पास पूरा वक्त है कि आप अपने शौक को और अपने आप को समय देना शुरू करें। हमने कहा आपसे कि आप तरल पदार्थ पिए, लेकिन साथ में हमने ये भी कहा था कि सही तरल पदार्थ पिए। चाय कॉफी आपको कम कर देनी चाहिए। अगर आपको ये आदत है कि सुबह जगते ही आपको चाय या कॉफी का एक प्याला चाहिए तो ये बहुत गलत है। आपको भले ही लग सकता है कि ये तो तरल पदार्थ है, इसमें भी पानी की मात्रा होगी, लेकिन ये आपको हाइड्रेटेड नहीं बल्कि डिहाइड्रेटेड करता है, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी पैदा करता है। सबसे पहला जो काम आप सुबह जगने के बाद करें वो गुनगुना पानी पिए, ना कि गरम गरम चाय या कॉफी के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। इसके साथ ही निकोटीन और नशीले पदार्थों से आप अपने आप को दूर कर लें। और इसके बाद सबसे जरूरी जो है वो हर उम्र के लिए जरूरी होता है और हर रोज जरूरी होता है, वो होता है थोड़ा एक्सरसाइज करना। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को एक्टिव रखें। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, ये आपको बोरिंग लगता है, तो आप डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप करें, लेकिन खुद को बिल्कुल एक्टिव रखें। हर दिन कम से कम 45 मिनट और सप्ताह में 5 दिन आपका फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, आपका वजन नियंत्रित रहता है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। और इस तरह से आप अपने आप को वक्त से पहले झुर्रियों के साथ, सफेद बालों के साथ देखने से बच सकते हैं। और ध्यान रखें कि आप खुश रहेंगी तो आपका पूरा परिवार भी खुश रहेगा। आप खुद का भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। और साथ ही अगर आपका मूड थोड़ा भी गड़बड़ लगे तो आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास होता है आपके लिए जानकारी के पिटारे के साथ साथ मनोरंजन। तो जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ।

0: का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। तो आज हम भिंडी की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है डॉक्टर शिरीन अख्तर से, जो है सब्जी विज्ञान विभाग से। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद उमा। भिंडी एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। भिंडी जो है टमाटर, बैंगन, मिर्च आदि के जैसे वर्ष भर हो सकती है। वर्ष में हम लोग इसको 2 बार तो आसानी से उगा सकते हैं, कभी कभार 3 बार भी उगा सकते हैं। और भिंडी हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, इसका भरपूर मात्रा में ये सब पाया जाता है। साथ साथ में जो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये भी बहुत सारा पाया जाता है। और हमारा देश भारतवर्ष जो है भिंडी के जो है इसका फलन के लिए बहुत इस हमारा जो जलवायु है इसके अनुकूल है, और इसीलिए जो है हमारा देश अभी पूरे विश्व में जो है भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। और भिंडी जो है पूरे साल में 2 बार से लेके 3 बार भी हम उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं, तथा जो मुख्य फसल भिंडी का है वो खरीफ मौसम का है, यानी कि बरसाती जो फसल है वही भिंडी का मुख्य फसल है। और इसमें जो है भिंडी को उगाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उन्नत किस्म हैं, जैसे IIVR वाराणसी से डेवलप किया गया जो किस्म है काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, इसके साथ साथ में काशी सहिष्णु, काशी वर्धन, काशी सातधारी, काशी पराक्रम, काशी उत्कर्ष, काशी चमन, काशी लीला, ये जो है ये सारे जो है हरे रंग में जो हमारा भिंडी है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हरे रंग में मिलता है, तो ये सारे किस्म हरे रंग की है। साथ साथ में एक नई किस्म काशी लालिमा भी जो है वो लाल रंग में उन्नत किस्म तैयार किया गया है IIVR द्वारा। ये इसके अलावा भी जो है काफी सारे संकर किस्म है, जो कि काशी वैरव है, काशी सृष्टि, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, सोनाक्षी, शक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण संकर किस्म है।
5: मैम, बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें?
7: खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जी के फलन के लिए। तो सर्वप्रथम भिंडी के लिए खेत की प्रारंभिक जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और उसके बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से कर लेते हैं, और दूसरी जुताई जिस समय किया जाता है उस समय पे जो है 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो है खेत में अच्छे से मिलाया जाता है, और अंतिम जुताई के बाद में जो है पाटा चलाकर खेत को अच्छे से समतल बनाया जाता है।
5: बुआई का तरीका क्या है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
7: जो गर्मा भिंडी है जिसको कि हम लोग फरवरी के महीने में सामान्यतः लगाते हैं, उसके लिए बीज का दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है। और अभी जो बरसाती मौसम के जो भिंडी है, जो खरीफ भिंडी अभी लगने वाली है, उसके लिए जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। और यहीं पर अगर भिंडी का संकर किस्म हम लोग लगाते हैं तो लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज से ही वो काफी होता है एक हेक्टेयर लगाने के लिए। और साथ साथ में जो है खरीफ जो फसल है जो अभी हम लोग लगाने वाले हैं, तो ये मई के लास्ट जो है मई महीने के अंत से लेके जुलाई महीना भर हम लगा सकते हैं। और जो गर्मा भिंडी है उस भिंडी को जो है हम लोग लगभग फरवरी महीना भर लगाते हैं। और जो हम लोग बीज जब लगाएंगे तो बीज से लगाने के पहले जो है बीज को उपचार कर लेना चाहिए, और 2 से 3 ग्राम का कप्तान या फिर 1 ग्राम बविस्टिन दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग अगर उसका उपचार कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। साथ साथ में जो भिंडी जो हमारा जो फसल है ये सीधी बुवाई करते हैं हम खेत में, तो बुवाई के पहले बीज को 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगो कर रखते हैं और बीज जो है फूल जाते हैं, तो उस फूले हुए बीज को हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, तो इसको कतारों में लगाते हैं। जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं, और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं। और अगर यही गर्मा भिंडी का फसल होता है तो उस समय पे हम लोग लगभग 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं, और भिंडी के जो दोनों पौधा है उस पौध के बीच का दूरी उस समय पे गर्मा के समय पे 30 सेंटीमीटर रखते हैं। खास करके गर्मा के समय पे हम देखते हैं अंकुरण थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए एक स्थान पर जो है 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं, परंतु संकर किस्मों का बीज क्योंकि महंगा होता है इसीलिए एक स्थान पर एक ही बीज की बुवाई किया जाता है।
5: मैम, खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए?
7: भिंडी के फसल के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अच्छे से मिट्टी जांच करने के उपरांत ही करना चाहिए। सामान्यतः जो हम देखते हैं अच्छी फसल लेने के लिए 150 से 200 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर 60 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर में हम लोग उसको उपयोग करते हैं। साथ साथ में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फेट एवं 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी आधी मात्रा तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय पे खेत पे मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन है उसका जो आधा शेष रहता है वो पौध जमने के बाद में 25 से 30 दिन पे, और दूसरी बार जो है बाकी आधा शेष जो है 50 से 55 दिनों के बाद में पौध में जड़ के पास में टॉप ड्रेसिंग के तहत से हम लोग उसको डालते हैं। इसके अलावा में जो है भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्व का भी महत्व है, और इसमें जो है कैल्शियम और बोरोन का अगर हम लोग परनीय छिड़काव करते हैं तो इससे उपज का क्षमता बढ़ता है, और पादप वृद्धि नियामक का भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं, और इसमें जो है जिबरेलिक एसिड और ट्राई कैंटनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे जो है अधिक उपज प्राप्त हो सकता है। और खास करके ट्राई कैंटनॉल का उपयोग गर्मा भिंडी में अगर हम लोग करते हैं तो इसमें उपज काफी बढ़ता है।
5: मैम, निकाई गुड़ाई और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
7: सामान्य तो जो है हम लोग भिंडी को जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत नमी जब रहेगा खेत में, एक हल्का सिंचाई देके जब जिस खेत में नमी रहेगा उसी में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, बुआई करेंगे। और उसके बाद में जो है भिंडी का जो सिंचाई है वो लगभग लगभग हम लोगों को अगर बरसाती मौसम है तो देखना पड़ेगा कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके हिसाब से पानी देना पड़ेगा। लगभग लगभग 10 से 12 दिन में एक बार पानी देना चाहिए, लेकिन बारिश को देखते हुए। और अगर गर्मा भिंडी है तो उसमें जो है हफ्ते में एक बार तो पानी देना बहुत आवश्यक हो जाता है। और सामान्यतः हम देखते हैं सिंचाई करने के 3 से 4 दिनों बाद में जब नमी अच्छा रहता है उस समय पे निराई गुड़ाई करने से सारा खरपतवार नष्ट हो जाती है। और शुरुआती फेज में जैसे जो फसल जब 40 से 45 दिन तक रहता है उस समय तक अगर हम लोग खरपतवार से अच्छे से फसल को बचा लेते हैं तब जो है उपज इसमें अच्छा मिलता है।
5: मैम बात करते हैं फल की तुड़ाई की, तो तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उपज कितनी होती है?
7: जब भिंडी का फल लगभग लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फल जो है कोमल रहता है और हल्के हरे रंग से या फिर गहरे हरे रंग जैसे उसका कलर जो रंग है वैरायटी वाइज जैसे रंग है उस रंग का होता है उस समय पे फल की तुड़ाई किया जाता है। और ज़्यादा दिन अगर हम फसल को खेत में छोड़ देते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा हो जाता है तो उसको खाने लायक नहीं रहता है। और ऐसे देखा जाता है जब फूल खिलता है तो उसके 3 से 4 दिन के भीतर ही भिंडी तोड़ने लायक हो जाता है। और जब फसल में तोड़ाई शुरू होता है एक बार तो हर दूसरे से तीसरे दिन में भिंडी तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम लोग जो है हर दूसरे से तीसरे दिन हम भिंडी तोड़ते रहेंगे ताकि इसमें जो है ज़्यादा जो है इसमें फाइबर ना डेवलप करे और खाने लायक योग्य रहे और बहुत अच्छा सा रहे। और अगर हम लोग उचित देखभाल करते हैं, अच्छा किस्म का उपयोग करते हैं, सही से खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो प्रति हेक्टेयर से 120 से 150 क्विंटल हरे फल की उपज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यही अगर संकर किस्म है तो उसमें 170 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी उपज का हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
5: मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भिंडी की खेती के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
7: धन्यवाद उमा।
5: दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप अपना और अपनी फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
8: उन्नत कृषि।

0: क्या कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
5: जी
4: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
5: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
4: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दे लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र श्वेता स्वर्णा और BPT 5204 यानी की BPT 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.5 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टिन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें। वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दे। इसके बाद वह कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें, 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं। उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं। तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ। सर आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं?
2: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से चार कीट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है, जैसे माहू जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड उसको वो एक लीफ ओवर होते हैं, और एक है फली छेदक जिसको पॉड बोरर कहते हैं। तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं जो हरे या काले रंग के होते हैं। सफेद मक्खी भी छोटे होते हैं लेकिन ये सफेद पंख वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं। और जैसीड जो लीफ हॉपर होते हैं इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुंचाता है। और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक जो है इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं।
0: जी, तो सर ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
2: अच्छा, तो माहू और सफेद मक्खी ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में या तो जहां से वो रस चूसते हैं जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है। और जैसीड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है और इसके वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है। और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है जिससे उत्पादन घटता है।
0: तो सर फसल की किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
2: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीड प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं।
0: और इससे बचने का कोई तरीका जिससे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सके और अपने फसलों को बचा सके?
2: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं। जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफेद मक्खी है या जैसीड है। अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है।
0: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है।
2: बिल्कुल।
0: और सर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें?
2: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए। और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं। तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे, और कुछ जैविक कीटनाशी भी है, लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत जरूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे। तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे, हम लोग प्रमाणित बीज को ले और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज इसके इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें। खेत की स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा।
0: अच्छा।
2: आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़े होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत जरूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 g प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 g प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नजदीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहां पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह फसल बुआई करने से पहले या बीज में भी आप उसका सलाह आप लेंगे।
0: जी, तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी जरूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत जरूरी होता है ना। और तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
2: यस, तो उड़द मैं एक लास्ट संदेश यही देना चाहता हूँ कि उड़द हमारे लिए बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का जरूरत है और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
0: सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद आपको भी।
0: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं धान के बारे में। धान बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और साथ ही राज्य की खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साल 2024-25 में बिहार में लगभग 99,34,000 टन धान का उत्पादन हुआ, जो राज्य के कुल अनाज उत्पादन में 40% से भी अधिक है। अगर हम इन सारी बातों को समझें तो धान हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में धान की उच्च उपज भी काफी महत्वपूर्ण होती है। उच्च उपज प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि हमारे किसान भाई बहन उन्नत किस्मों का चयन करें। साथ ही स्वस्थ और मजबूत फसलों के लिए पौधशाला प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। तो इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रुति सुमन मैम। आप हैं सहायक प्राध्यापिका सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद उमा, सबसे पहले मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि धान की खेती में पौधशाला प्रबंधन एक आवश्यक अंग है, और ऐसा कहा जाता है कि अच्छी फसल की शुरुआत ही अच्छी पौधशाला से होती है। यदि पौधशाला में वैज्ञानिक तरीके से बीज का चयन, पोषक तत्वों का प्रबंधन, सिंचाई तथा कीट रोग नियंत्रण किया जाए तो स्वस्थ एवं सशक्त पौध तैयार होते हैं, और ऐसी पौध मुख्य खेत में रोपाई के बाद अच्छी तरह से स्थापित होती है, अधिक कल्ले भी बनाती है तथा अंततः अधिक उपज भी प्रदान करती है। इसलिए किसान भाइयों, हमारे लिए पौधशाला का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है।
0: मैम, अभी तो आपने बताया कि पौधशाला का प्रबंधन जरूरी क्यों है, लेकिन हम बात करते हैं अब पौधशाला के लिए खेत का कैसे चयन करना चाहिए। तो किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन पौधशाला के लिए खेत का चयन कर सकते हैं?
4: पौधशाला के लिए समतल, उपजाऊ और सिंचाई की सुविधा वाले खेत को चुनना चाहिए। अगर जो है हमारे पौधशाला का खेत मुख्य खेत के पास हो तो रोपाई में सुविधा होती है। साथ ही साथ धान में जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। धान की खेती के लिए जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, तो हमें वैसे खेत का चयन करना चाहिए जहाँ पे की वाटर लॉगिंग भी ना हो।
0: अगर मैम एक हेक्टेयर में रोपाई की बात करें तो एक हेक्टेयर में रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्र की जरूरत होती है?
4: एक हेक्टेयर में हमें रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र जो है वो पर्याप्त होती है।
0: और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए?
4: सामान्यतः सामान्य किस्मों के लिए 20 से 30 केजी बीज पर हेक्टेयर बीज दर होना चाहिए, और संकर धान यानी कि जो हमारे हाइब्रिड धान है उनके लिए 15 केजी पर हेक्टेयर का बीज दर पौधशाला के लिए पर्याप्त होता है।
0: जी मैम, और बीज उपचार बहुत जरूरी होता है, तो किस तरीके से बुआई से पहले बीज उपचार करना चाहिए?
4: उमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। बुआई से पूर्व बीजोपचार करना जरूरी है, क्योंकि बीज उपचार से बीज जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है और साथ ही साथ अंकुरण अच्छा होता है। इससे पौध गलन, झुलसा और अन्य रोगों का प्रकोप भी कम होता है। तो बीजोपचार करने के दो तरीके हैं। पहला तो हम नमक के घोल से बीज का उपचार कर सकते हैं। इसे लवणीय जल उपचार भी कहते हैं। लवणीय जल उपचार के लिए हमें 1.65 केजी सादे नमक को 10 लीटर पानी में उसका घोल बना लेना चाहिए, और इस घोल में बीज को डालकर अच्छी तरह से हिला देना चाहिए। इससे क्या होता है कि स्वस्थ एवं भारी बीज जो है वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के खराब और हल्के बीज ऊपर तैरने लगते हैं, और फिर ऊपर तैरने वाले हल्के एवं खराब बीज को हम बर्तन से हटा सकते हैं, और शेष डूबे हुए बीज को हमें फिर से शेष डूबे हुए बीज जो वो बीज जो डूब जाते हैं वो स्वस्थ होते हैं, और उन्हें हमें फिर से 2 से 3 बार पानी में धोकर छाया में सुखा लेना चाहिए ताकि इस बीज में नमक का कोई अंश ना रहे। तो इस तरह से हम लवणीय घोल बनाकर बीज का उपचार करते हैं। इसके अलावा हम रासायनिक बीजोपचार भी कर सकते हैं। रासायनिक बीजोपचार के लिए हमें सबसे पहले फफूंदीनाशी से उपचार करना चाहिए। फफूंदीनाशी यानी कि फंगीसाइड जो है वो हमें बेविस्टीन 1 ग्राम या फिर कैप्टन या थीरम ये 2.5 ग्राम पर केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। जीवाणुनाशी दवा से उपचार हेतु स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर एग्रीमाइसिन हमें 2.5 ग्राम दवा जो है उसका 10 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 केजी बीज हेतु प्रयोग करना चाहिए और इन उपचारित बीजों को हमें भींगे बोरी में रखकर 36 से 48 घंटों तक अंकुरित कराना चाहिए और इस दौरान ये जो जिस समय हम उपचारित बीज को भींगे बोरी में रखते हैं इस दौरान हमें बीच बीच में बीज पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए।
0: जी मैम, और अगर हम पौधशाला की तैयारी की बात करें तो किसान भाई बहन धान की खेती के लिए पौधशाला की तैयारी कैसे कर सकते हैं?
4: पौधशाला की तैयारी यानी कि जो है हमारा नर्सरी जो है धान के लिए 3 प्रकार से इसकी नर्सरी बनाई जाती है, वेट बेड मेथड, ड्राई बेड मेथड और डेपोग मेथड। वेट बेड मेथड यानी कि जो है वहाँ पे जनरली वहाँ पे प्रेफर किया जाता है जहाँ इरिगेटेड कंडीशन हो यानी कि जहाँ पे जल सिंचाई की सुविधा हो, और ड्राई बेड मेथड जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे ड्राई बेड मेथड, और डेपोग मेथड एक ऐसा मेथड है ऑफ रेजिंग सीडलिंग्स है जो कि हमारे देश में फिलीपींस से ये इंट्रोड्यूस किया गया है और इसकी खासियत यह है कि ये 1 हेक्टेयर के लिए इसमें कम एरिया में ही नर्सरी देना होता है, जैसे कि बस 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया में ही हम 1 हेक्टेयर के लिए इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पर हमारे बिहार राज्य में ज्यादा हमारे गीली नम विधि यानी कि वेटबेड मेथड का प्रचलन ज्यादा है, तो इस विधि से जब हम करेंगे तो इसके लिए हमें पौधशाला को तैयार करने के लिए बिचड़ा तैयार करने की प्रक्रिया जो है हमें इसमें ऐसे करने चाहिए कि हमें पौधशाला की तैयारी अच्छी तरह कदवा करके तथा खेत को समतल करके करना चाहिए। इसके लिए खेत में पानी भरकर 2 से 3 बार जुताई करें यानी कि 2 to 3 प्लॉइंग्स करना चाहिए और ताकि मिट्टी जो है हमारी कादोयुक्त हो जाए और उससे खरपतवार जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। आखिरी जुताई के बाद जब हम 3rd प्लॉइंग करते हैं तो आखिरी जुताई के बाद हमें उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करना चाहिए। जब मिट्टी की सतह पर पानी ना रहे तो फिर हमें जो है 1.5 मीटर चौड़ी लंबी क्यारी बनानी चाहिए ताकि बुआई, निराई और सिंचाई की विभिन्न शस्त्र क्रियाएं आसानी से की जा सके, और इन 2 क्यारियों के बीच में हमें 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनानी चाहिए ताकि उस नाली से हम वहां पर खड़े होकर आसानी से हम खरपतवार नाशी आदि का उपयोग कर सके और सिंचाई की क्रिया भी वहां पे कर सके। इसके बाद पौधशाला में हमें बीजोपचारित एवं अर्ध अंकुरित बीज को कदवा के ऊपर समान रूप से छींट देना चाहिए और शुरू में मिट्टी को केवल गीला रखें। जब हम उसको बीज को छींट देते हैं तो उसके बाद खेत में सिंचाई कर पहले जो है हमें पानी का 1 से 2 सेंटीमीटर तक पानी का लेवल रखना चाहिए और बाद में 4 से 5 सेंटीमीटर तक खेत में पानी को बनाए रखना चाहिए। और इस बात का हमें हमेशा किसान भाइयों आप को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि बिचड़े पानी में डूबे नहीं।
0: और मैम अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
4: 1000 मीटर स्क्वायर की नर्सरी में हमें सबसे पहले पोषक तत्व प्रबंधन के लिए 1.5 टन गोबर खाद या 200 से 300 केजी केचुआ खाद को बुआई के 10 से 15 दिन पहले डालना चाहिए ताकि मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़े तथा बिचड़े उखाड़ते समय दिक्कत ना हो। फिर 1000 मीटर स्क्वायर में बीज की बुआई के पूर्व 5 केजी नाइट्रोजन, 5 केजी फॉस्फोरस और 5 केजी पोटास को समान रूप से छिड़क देना चाहिए, को क्यारी में समान रूप से छिड़क देना चाहिए। और फिर हमें बीजों को बहुत ज़्यादा अधिक गहराई में नहीं बोना चाहिए और बीज को अधिक घना भी ना गिराएं। 20 से 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर बीज की मात्रा इसके लिए उपयुक्त होती है, और अगर हम ज़्यादा घना बीज गिराते हैं तो इससे बिचड़े जो हैं वो पतले और कमजोर होंगे। और इसके साथ साथ ही पौधशाला को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए ताकि जड़ों का समुचित विकास हो एवं बिचड़े स्वस्थ और मजबूत हों। इसके अलावा जो हमारी नर्सरी है उसमें कीट व्याधि का भी नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ वैसे खेत जिसमें जिंक की कमी हो उसमें हम 3रे सप्ताह में जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। इस हेतु प्रति हेक्टेयर 5 केजी जिंक सल्फेट को घोल को 2.5 केजी चूना के घोल के साथ मिलाकर 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव अगर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे जगह पे जहां पे ये छिड़काव नहीं कर पा रहे, वहां पे बिचड़ों को उखाड़ने के बाद भी रोपाई के पहले 2% जिंक के घोल में डुबाकर उपचारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम नर्सरी में पोषक तत्व का प्रबंधन कर सकते हैं।
0: मैम, अब अगर रोपने की बात करें तो बिचड़े रोपने के लिए किस समय पर तैयार हो जाते हैं?
4: रोपने के लिए सामान्यतः 3 सप्ताह के बिचड़े, जिसमें कि 4 से 6 पत्तियां आ जाती हैं, वो अच्छे माने जाते हैं। लेकिन जो है अलग प्रभेद के अनुसार बिचड़ों का जो है समय अलग अलग होता है। तो जहां पर हम बात करेंगे जो शीघ्र पकने वाली प्रभेद होती है, जो कि हम ऊपरी जमीन यानी कि अपलैंड में लेते हैं, वो जैसे कि इस प्रभेद में एग्जाम्पल में आप जानते होंगे सौबर, दीप, सहभागी, शुष्क, सम्राट, इन प्रभेदों का बिचड़ा जो है जब वो 20 से 22 दिन का हो जाता है तब तैयार होता है। जबकि मध्यम जमीन हेतु और जो यानी कि मीडियम लैंड और जो मध्यम अवधि में पकने वाले ऐसे प्रभेद होते हैं, वो जैसे कि राजेंद्र, श्वेता, सबौर अर्ध जल, इनका बिचड़ा जो है 25 से 30 दिन का समय लेता है। फिर निचली जमीन हेतु देर से पकने वाली प्रभेद जो होते हैं, उनमें सबौर श्री, राजेंद्र मैसूरी वन, स्वर्णा सब वन, इनके लिए जो है 25 से 30 दिन का बिचड़ा लेना चाहिए।
0: तो किसान भाई बहन, मैम के द्वारा बताई बातों का ध्यान रखें और धान की अच्छी पौधशाला तैयार करें, ताकि आपके धान की फसल भी निरोगी और स्वस्थ हो। तो मैम, आपने जो जानकारी दी, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी उपयोगी साबित होगी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद उमा।
0: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
1: क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
5: जी
1: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
5: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
7: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
9: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
8: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
9: 11 दोस्त?
8: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
9: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
8: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
9: लेकिन ऐसा क्यों?
8: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
9: टीकी, तो इसका हल क्या है?
8: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
9: याद रखो, आपके बच्चों के टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
10: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
7: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
10: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
7: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम, जो आप सुनते हैं जी हां 90.8 मेगाहर्ट्ज़ FM ग्रीन पर। तो आज भी उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बहुत सारी बातें लेकर आए हैं और फीचर्स की बात करते हैं। तो आज खेती में अलग अलग प्रकार के फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं जो वैज्ञानिक हैं जिनका आविष्कार करते हैं, और उन्हीं में से एक है ड्रोन। जी हाँ, कृषि के लिए कैसे उपयोग में आता है और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें आज हमें बताएंगे डॉक्टर CK पांडा। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है जी हाँ एक्सटेंशन एडुकेशन ये डिपार्टमेंट है, और साथ ही ये बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से है। तो डॉक्टर साहब आज हमें बहुत सारी बातें बताने वाले हैं ड्रोन के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि ड्रोन क्या होता है।
11: नमस्कार किसान बंधु, नमस्कार अनु जी। आज हम एक बात करेंगे आप सभी के किसान बंधु के साथ, एक नया जो ड्रोन जो है, ड्रोन इतना पुराना नहीं है, इतना नया नहीं, बहुत पुराने जमाने से इसका काम चल रहा था, लेकिन खेती में इसका जो यूज है तो वो अभी ज्यादा यूज करने के लिए व्यवहार करने के लिए गवर्नमेंट ज्यादा एम्फेसिस भी दे रहे हैं। लेकिन ये बात बोलने से पहले ये हम लोगों को पता होना चाहिए ड्रोन है क्या। देखिए, ड्रोन इसको हम बोले तो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसका मतलब हुआ एक मानव रहित उड़ान जान है। इसका मतलब ये हवा में उड़ते रहेंगे जिसके अंदर कोई आदमी नहीं रहेगा। जो एक जगह से दूसरे जगह से हवा में उड़ते उड़ते जाएंगे और उसका काम होगा, जो काम के लिए उसको लगाया जाएगा, मतलब जिस काम के लिए उसको यूज किया जाएगा वही काम वो करते रहेगा।
0: अब जैसे लोग कभी कभी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं आजकल, ज्यादातर पर्पस अगर देखा जाए तो ड्रोन का इस्तेमाल वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए ही किया जाता है, या फिर मैप देखने के लिए किसी शहर का, देश का, ऐसे। तो ये ड्रोन का इस्तेमाल अलग अलग पर्पस से किया जाता है, अलग अलग काम है इसके। तो डॉक्टर साहब ये तो बातें हो गई ड्रोन की, ये क्या है, ये उड़ता है, इसमें किसी भी इंसान को इसके साथ उड़ने की जरूरत नहीं है, बस कंट्रोल करना होता है रिमोट के सहायता से। जी, तो अब एग्रीकल्चर ड्रोन के बारे में हम जानना चाहेंगे, एग्रीकल्चर में ड्रोन क्या है?
11: देखिए, जब ड्रोन पर्टिकुलरली हम लोग कृषि के लिए व एग्रीकल्चर के लिए यूज करेंगे तब उसको एग्रीकल्चर ड्रोन हम बताएंगे। मतलब एग्रीकल्चर में बहुत तरह का ऑपरेशन होता है, जैसे इरिगेशन बोलिए, जैसे मतलब सिंचाई बोलिए, जमीन में बहुत तरह कीड़े मकोड़ा का अटैक होता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बात रहता है। जैसे आप बता रहे थे ऊपर से जमीन को देखने के लिए डिफरेंट काम होता है, उस काम के लिए जब ड्रोन को हम यूज करेंगे तब उसको एग्रीकल्चर हम ड्रोन बताएंगे।
0: जी जी जी, तो ये कितने प्रकार का ड्रोन होता है?
11: हाँ देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप होता है उसके आधार पर जो ड्रोन का जो कॉन्फ़िगरेशन बोलिए वो भी चेंज होता है। तो इसके एक्चुअली जो तीन तरह का इशू है जिसके आधार पर ड्रोन को जो टाइप्स बोलिए कैटेगरी बोलिए उसको डिवाइड किया जाता है। वो कितना ऊंचाई तक उड़ सकता है, उसका पेलोड मतलब कितना किलो तक वो बहन कर सकता है, और फ्लाइंग टाइम कितना समय तक उड़ सकता है। तो इसके आधार पर ऑल टुगेदर आपको सात तरह का ड्रोन मिलता है। जैसे माइक्रो एयर व्हीकल होता है, ये ज़्यादा एल्टीट्यूड नहीं जा सकता है, लेस देन 330 मीटर तक उतना तो ऊंचाई में जा सकता है, और इसका फ्लाइंग टाइम होता है 5 से 30 मिनट का। दूसरा होता है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग तरह का ड्रोन होता है। तीसरा होता है लो एल्टीट्यूड शॉर्ट एंड्यूरेंस ड्रोन बोलते हैं, ये 1 से 2 घंटा तक उड़ान दे सकते हैं। तीसरा होता है लेजर क्लोज, और जो आपका क्या बोलते हैं 1500 मीटर तक एल्टीट्यूड तक उड़ाई कर सकते हैं, और दूसरा है लो एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्यूरेंस जो एक होता है, ये हाई कैपेसिटी मतलब ज़्यादा पेड लोड इसको ले सकता है, और सिक्स जो होता है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस वाला ड्रोन होता है, ये 9000 मीटर एल्टीट्यूड तक जा सकता है। लास्ट जो फाइनल हम सातवां बोल रहे हैं, ये हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस वाला ड्रोन होता है, एक आपका जा सकता है 20,000 मीटर तक। तो ये इस तरह से डिफरेंट टाइप का ड्रोन होता है, उसका यूज देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन का यूज होता है मिलिट्री में, लेकिन अभी देखिए गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है तो एग्रीकल्चर में इस ड्रोन का भी जो यूज है ना धीरे धीरे उसका भी बढ़ता है। और आप देखेंगे हमारा प्राइम मिनिस्टर लास्ट जो पार्लियामेंट में अपना स्पीच दे रहे थे उस समय उन्होंने भी पैसा एम्फेसिस दिए थे जो खेती में ड्रोन को हम लोग कितने ज्यादा यूज कर सकते हैं।
0: जी, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है डॉक्टर साहब, ये बता।
11: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी काम करता है। देखिए ड्रोन के अंदर एक नेविगेशन सिस्टम रहता है, जो नेविगेशन मतलब होता है दिशा निर्देशन प्रणाली, जैसे मतलब किस तरह वो जाएगा, और लगता है जीपीएस। अभी तो हम लोग सबको पता है जीपीएस लोकेशन के आधार पर कोई लोकेशन का एल्टीट्यूड लेटीट्यूड जो भी होता है जीपीएस के आधार पर होता है, और इसमें कुछ मल्टीपल सेंसर रहता है मतलब मल्टीपर्पज जो सेंसर बोलते हैं। सेंसर मतलब क्या होता है, उसका काम डिफरेंट तरह का होता है। जैसे मान लिया

0: चलता है। प्रिसीजन फार्मिंग हम लोग जो बोलते हैं, तो प्रिसीजन फार्मिंग में ड्रोन का यूज सबसे ज्यादा हो रहा है।
1: जी, अगर खेती की बात करें तो खेती में ड्रोन किस काम में उपयोग होता है?
0: हाँ देखिए, खेती में हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज रहता है। एक नंबर जैसे मान लो सिंचाई भी, सिंचाई निगरानी करना है, जैसे हमारा जमीन का मॉइस्चर कितना लेवल तक है। जैसे देखिए कुछ कुछ जगह पर होता है, जैसे बिहार में ताल एरिया है, ताल एरिया में देखिए जब रोबी सीजन होता है, मसूर चना हेक्टर सेक्टर हेक्टर लैंड में कल्टीवेशन होता है, आबादी होता है, खेती होता है, लेकिन उतना दूर तक 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर किसान को जाना भी दिक्कत हो जाता है। लेकिन मॉइस्चर लेवल उसका क्या हालत है, उसको देखने के लिए स्पेशल सेंसर के साथ ड्रोन को भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बता सकते हैं यहाँ पर सॉयल का मॉइस्चर लेवल क्या है, उस आधार पर अभी इरीगेशन देने का जरूरत है कि नहीं है वो हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा है, आप देखिए फसल का जो स्वास्थ्य है, जैसे क्रॉप हेल्थ बोलते हैं ना, क्रॉप हेल्थ को मॉनिटरिंग करने के लिए और सर्वेलेंस करने के लिए, देखिए क्रॉप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कीड़ा मकोड़े बीमारी का अटैक जो होता है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए, तो जमीन में कोई कीड़े का मकोड़े का जैसे इंसेक्ट पेस्ट बोलते हैं, डिजीज का कुछ अटैक हुआ कि नहीं हुआ, वो देखने के लिए आराम से आप ड्रोन को भेज से देख सकते हैं। क्योंकि ये प्री प्रोग्राम रहता है, ड्रोन में प्री प्रोग्राम रहता है, वो क्या करता है उसका इमेज लेते हैं, इमेज लेने के बाद वो अपने से अपना जो सिस्टम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बोलते हैं उसके आधार पर आइडेंटिफाई करके देखते हैं, हाँ इसमें कुछ तरह किस तरह का कीड़े मकोड़े का अटैक हो रहा है और उसका कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर देना चाहिए, इस तरह को सपोर्ट करता है। और इसके बाद आपका जैसे फील्ड सॉयल का एनालिसिस, मतलब जमीन का जो मिट्टी होता है उसको एनालिसिस करने के लिए भी इसके अंदर मल्टीस्पेक्ट्रल एक सेंसर कुछ रहता है, तो मल्टीस्पेक्ट्रल जो सेंसर रहता है ना वो 3D मैपिंग भी कर सकते हैं, तो उसके आधार पर भी सपोर्ट करते हैं। और आप रहता है जैसे मान लिया अभी एग्रीकल्चर छोड़ के आप बोले तो लाइफ स्टॉक ट्रैकिंग में, जो लाइफ स्टॉक जैसे डिफरेंट जो ग्रेजिंग हो रहा है, कैटल वगैरह जो ग्रेजिंग एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो उसको भी मॉनिटरिंग करने के लिए आपका काम ड्रोन करता है।
1: जी जी, तो अगर इसका उपयोग करते हैं तो लाभ क्या मिलेगा हमें खेती में?
0: हाँ देखिए बहुत तरह का लाभ मिलता है। पहली बात है, हम क्रॉप को ठीक से मैनेज कर पाएंगे तो क्या होगा, यील्ड ज्यादा होगा।
1: जी,
0: तब नंबर वन हम बोल सकते हैं उत्पादन जो बोलते हैं यील्ड जो क्रॉप का है वो बढ़ जाएगा। दूसरा है क्या होता है ना, इफेक्टिव एंड एडाप्टिव टेक्निक जो बोलते हैं, प्रभावी और अनुकूल जो टेक्निक होता है, जैसे मतलब हम खेती करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक को यूज करते हैं, वो टेक्निक को कैसे हम जमीन तक लेके जाएंगे उसके लिए ड्रोन का जरूरत पड़ता है। और तीसरी बात हो रहा है फार्मर का सेफ्टी। देखिए आप हम सब लोगों को पता है जो किसान लोग जमीन में जब कीड़े मकोड़ा का अटैक होता है स्प्रे करता है, पेस्टिसाइड स्प्रे करता है, लेकिन पेस्टिसाइड जब स्प्रे करता है उसमें उसका जो शरीर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है, तो जितना भी कोशिश किए जितना भी प्रोटेक्शन ले लेकिन उसको इनहेल करना पड़ता है, तो एयर के साथ जो ड्रॉपलेट होता है ना पेस्टिसाइड का जो ड्रॉपलेट होता है ना शरीर के अंदर आ जाता है। लेकिन अभी के जमाना में आपको मिल जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रोन मिलता है जो स्प्रे करता है, अर्थात कीड़े मकोड़ा को कंट्रोल करने के लिए वो स्प्रे कर सकता है। तो इसमें फायदा क्या हो रहा है, इसमें फायदा आपका यही हो रहा है बिना कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ आप आराम से जमीन में क्रॉप में इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए स्प्रे कर सकते हैं। और रिसोर्स जो बोलते हैं सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, रिसोर्स कंजर्वेशन में इसका बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। दूसरी है अभी देखिए इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, हर जमीन का किसान का तो क्रॉप इंश्योरेंस लेना, क्रॉप डैमेज हो गया, लेकिन क्रॉप डैमेज हो गया उसको मान लिया एक 50 हेक्टर एरिया में है, तो 50 हेक्टर एरिया में हर पॉइंट में जाके देखना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप एक ड्रोन को भेजिए, आप जैसे बोल रहे हैं कुछ वीडियो लेना है, इमेज लेना, आराम से वीडियो व इमेज लेके आराम से आपको दे सकता, हाँ इस लोकेशन में आपका क्रॉप का डैमेज हुआ है, तो क्रॉप इंश्योरेंस के लिए भी आप ड्रोन को यूज कर सकते हैं।
1: और अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के बारे में, तो ड्रोन के उपयोग को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या कुछ पॉलिसी है?
0: हाँ रिसेंटली आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया जो जनवरी में 22 जनवरी 2022 में एक प्रेस रिलीज किए है, तो हमारा जो कृषि मंत्रालय है तो उस कृषि मंत्रालय से एक सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जिसको हम बोलते SMAM, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, तो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी फुल स्विंग पर किसान बंधु को ड्रोन के आधार पर सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है अभी खेती में अर्थात एग्रीकल्चर

0: में ड्रोन व्यवहार करने के लिए बा यूज करने के लिए पूरा सपोर्ट है, और इसके लिए वित्तीय सपोर्ट देने के लिए भी गवर्नमेंट तैयार है
1: जी सर। तो कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
0: देखिए, कोई भी ड्रोन परचेस करेंगे तो 100% और मैक्सिमम 10 लाख, मतलब 10 लाख तक आपका सपोर्ट मिल जाएगा ड्रोन परचेस करने के लिए। लेकिन ये छोड़ के मान लिया किसी ने ड्रोन परचेस नहीं किया है, कोई एजेंसी है तो ड्रोन किसान को सपोर्ट करना चाहते हैं, उस आधार पर कोई एजेंसी इसको करने चाहेंगे तो पर हेक्टर में गवर्नमेंट ने 6,000 रुपया सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। तो आप ड्रोन को यूज कीजिए, उसके लिए आप 6,000 रुपया तक पर हेक्टर में गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए तैयार है
1: जी। और डॉक्टर साहब, अभी आप एजेंसी की बात कर रहे थे जो उपलब्ध कराता है किसानों को खेती के अगर पर्पस से ड्रोन ले रहे हैं, तो ये कौन कौन सी एजेंसियां हैं, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे?
0: हाँ, बताते हैं। एजेंसी है फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है, ICR का जितना भी इंस्टीट्यूट है वो है, कृषि विज्ञान केंद्र है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट भी इन सब इंस्टीट्यूट को इनकरेज कर रहे, आप ड्रोन परचेज कीजिए, जिसके लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे, जैसे मैंने बताया आप किसान लेवल पर उसको लेके जाए। और एक बात है, आप सबको पता होगा हमारा सिस्टम में कस्टम हायरिंग सेंटर है।
1: अच्छा।
0: कस्टम हायरिंग सेंटर है जो डायरेक्टली गाँव में काम करता है, हाईटेक हब है, ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स है, कुछ स्टार्टअप है, वो लोग भी किसान के लिए ड्रोन परचेज करके किसान के लेवल में ड्रोन को सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट भी टोटल आपका सपोर्ट करे। उसके साथ और भी हम एक बताते हैं, लास्ट एक टॉक में हम बता रहे थे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मान लिया कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ड्रोन परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट करे। 75% तक सब्सिडी गवर्नमेंट वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को देने के लिए तैयार है। तो आप कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं जो ड्रोन खेती में ले जाने के लिए गवर्नमेंट टोटल सपोर्ट करने के लिए तैयार है। नॉट ओनली दैट, ये छोड़ के भी मान लिया कोई गांव का कोई रूरल यूथ है, वो भी चाहते हैं अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए ड्रोन के आधार पर कुछ करना चाहते हैं, उसके आधार पर भी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जैसे 50% तक, जैसे 5 लाख तो उसको फाइनेंशियली गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगे और ड्रोन वो परचेज करेंगे, उसके बाद जमीन किसान का जमीन में मान लिया कुछ फील्ड ऑब्जर्वेशन करने के लिए, कोई दवा वगैरह छिटकाने के लिए उस पर काम करना चाहे तो उसके लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है
1: जी।
0: अच्छा, इस आधार पर और एक चीज हम बता देते हैं आप सबको, वो है अभी ड्रोन के लिए जो SOP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है उसके बारे में बता देता हूँ। ड्रोन रूल्स 2021 भाई GSR नंबर 589E डेटेड 25th August 2021, इसमें डिटेल्स ड्रोन कैसे आप यूज कर सकते हैं, क्यों देखिए ड्रोन ऐसा ही हवा में फ्लाई करता है, वो कोई दूसरे को कुछ इंटरफेरेंस ना करे, उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो रूल्स रेगुलेशन जो हम बोलते हैं SOP ऑपरेटिंग जो बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीड्योर है जो मैंने बताया ड्रोन रूल्स 2021, उसके आधार पर उसमें डिटेल्स है, तो वो पढ़ के भी जो भी एजेंसी है वो अपने से आराम से काम कर सकते हैं। तो कंक्लूशन में हम तो यही बताएंगे, जो जब गवर्नमेंट आपको इनिशिएटिव ऑलरेडी ले लिए है और फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए तैयार है
1: जी।
0: तो अभी किसान बंधु और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जैसे ICR इंस्टीट्यूशन बोलिए, KVK बोलिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोलिए, कस्टम हायरिंग सेंटर जो भी एजेंसी है, उन सबको आगे बढ़ना चाहिए, किसान बंधु को भी आगे बढ़ना चाहिए। ड्रोन को हम एग्रीकल्चर में जितना यूज करेंगे उतना ही अच्छा है, इसमें फायदा ही होगा, अल्टीमेटली आपका क्रॉप का यील्ड बढ़ेगा और जो रिसोर्स यूज है वो उतना ही घटेगा
1: जी। जी, तो किसान भाइयों, यहाँ पर आपने सुना कि क्या कुछ फायदे हैं ड्रोन के अगर खेती में आप उपयोग करते हैं तो, और वित्तीय सहायता भी आपको मिल ही रही है, तो क्यों ना आप भी इसका लाभ उठाएं। तो जी हाँ, इसी बात के साथ, इसी विचारों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: उन्नत कृषि टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: हंसी।
2: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
6: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको, क्यों इतने जीरो?
7: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
7: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
7: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
8: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
6: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
6: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो महिलाएं होती है ना, ये जो लेडीज होती है जिनके बारे में कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन कभी आपने सोचा है कि लेडीज फर्स्ट कहने की नौबत क्यों आई? और क्या अभी भी समाज में ये लोग मानते हैं कि लेडीज फर्स्ट यानी कि स्त्रियों को पहले मौका मिलना चाहिए? जी नहीं, आज भी हमारा समाज उसी पुरानी सोच में जकड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि समाज ने अपने सोच के ऊपर एक बदले हुए रवैया का परत चढ़ा लिया है, लेकिन आज भी उसके अंदर सोच वही है। अगर ये सच नहीं है तो ये भी सच नहीं होता कि घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर लेडीज फर्स्ट जैसी बातों को हमने स्वीकार कर लिया होता स्त्रियों को हमने बराबर का सम्मान दिया होता, ज्यादा की बात नहीं हो रही, बराबर की, बराबरी का सम्मान दिया होता, बराबरी का मौका दिया होता, घरेलू हिंसा की वजह से, दहेज की वजह से आज भी बहुत सारी स्त्रियों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। आए दिन हम नए नए केस सुनते हैं, पढ़े लिखे घरों में भी घरेलू हिंसा से तंग आकर स्त्रियां खुद को खत्म कर लेती है, या फिर घरेलू हिंसा इस कदर बढ़ जाती है कि उस स्त्री की मौत हो जाती है। तो इन सारी बातों को सोचकर जरा भी लगता है कि आज भी हमारा समाज लेडीज फर्स्ट को समझ पाया है? चलो लेडीज फर्स्ट ना सही, पर स्त्रियों को पुरुषों के बराबरी का अधिकार मिल पाया है? जी नहीं। अगर आपको लगता है कि आज स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का हक मिलता है तो आप जमीनी सच्चाई से बहुत दूर हैं। हाँ, वक्त बदल रहा है, बहुत जगहों पर स्त्रियां अपना परचम लहरा रही हैं, उन्हें बराबरी का मौका मिल रहा है और कुछ जगहों पर तो वो काफी आगे निकल चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां अभी भी काम करना बाकी है। लोगों को ये समझना बाकी है कि स्त्रियां और पुरुष दोनों एक समान होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के अनुसार 2012 से 2022 के बीच करीब घरेलू हिंसा के 13 लाख मामले सामने आए, और लगातार ऐसी घटनाओं के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये तो वो महिलाएं हैं जो थाने तक पहुंची, बहुत सारी महिलाएं तो थाने तक पहुंचती ही नहीं है, उन्हें लगता है कि घर की बात घर में होनी चाहिए। अगर घर पर उनके साथ घरेलू हिंसा होती भी है तो वो सह लेती हैं घर की इज्जत बचाने के लिए, लेकिन घर की इज्जत बचाते बचाते वो अपना स्वाभिमान खो बैठती हैं, और इन महिलाओं के लिए उनका घर भी सुरक्षित नहीं रहता। उन्हें पता नहीं होता है कि अगले दिन उनके साथ क्या होने वाला है। आंकड़े बताते हैं कि मानसिक और शारीरिक हिंसा की दीवारें आज भी उतनी मजबूत है, समाज चाहे जितना भी आगे बढ़ने का दावा करता हो। दोस्तों, घरेलू हिंसा के कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि आज भी लोगों को लगता है कि स्त्रियां पुरुषों से कम है, ज्यादा ना हो पर बराबर की तो है, बराबर का मौका तो उन्हें मिलना चाहिए। और दूसरी बात, दहेज प्रथा। दहेज के बारे में कितने कानून हैं, दहेज से जुड़े वे बच्चे स्कूल में कितना पढ़ते हैं, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर दहेज लेते हैं। और विडंबना ये है कि लड़की वाले खुशी खुशी दहेज देते हैं, लड़की के जन्म के साथ ही उनके दिमाग में जो पहली सोच होती है कि इसके लिए मुझे इतने दहेज इकट्ठा करने होंगे। हमने दहेज जैसी समस्या को कितना आम बना दिया है कि ये हमें अब समस्या लगती ही नहीं है। कोई समस्या तभी खत्म होगी जब उसे हम समस्या समझेंगे। दहेज की वजह से बहुत सारी औरतें आज भी घरेलू हिंसा का शिकार होती है, और कई औरतें तो अपनी जान से हाथ धो बैठती है। इसके बाद आता है शराब या नशा। शराब या नशे की वजह से भी घरेलू हिंसा का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, क्योंकि नशे की हालत में फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो जानवर से भी बदतर हो जाता है और फिर वो हिंसक व्यवहार करता है। और जब घरेलू हिंसा की बात आती है तो ज्यादातर पुरुष नशे की हालत में ही घरेलू हिंसा को अंजाम देते हैं, और कई बार पुरुषों पर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता भी घरेलू हिंसा का कारण बन। महिलाएं जब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती हैं तो फिर उनके साथ कुछ भी हो वो सहती रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जाएंगी कहाँ, करेंगी क्या, और कई बार जागरूकता की भी कमी होती है। हम अपने आसपास जैसे लोगों को देखते हैं, जैसे माहौल को देखते हैं, हमें लगता है कि वही सच है, और जब आसपास घरेलू हिंसा आम हो तो ऐसे में महिलाओं को लगता है कि यही जीने का तरीका है, वो इसे मानकर अपने जीवन को जीने लगती है। और अगर कुछ महिलाओं को ये पता है कि ये गलत है, जो हो रहा है उनके साथ वो सही नहीं है, तो भी वो चुप रह जाती हैं, क्योंकि घर की बात घर में होनी चाहिए, घर की इज्जत को बचाना है। ये तो कारण हो गए कि किन किन वजहों से घरेलू हिंसा होते हैं, और घरेलू हिंसा से बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले तो जागरूकता, महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि अगर उनके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो भी उसी चीज में ढल जाए, उन्हें आवाज उठाना चाहिए। और ये बात कि अगर हम बाहर जाएंगे तो घर की इज्जत उछलेगी, कौन से घर की इज्जत, घर तो वो होता है ना जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं, घर तो वो होता है ना जहां आप थके मांदे आते हैं और कोई आपको पुचकारने वाला मिलता है, कोई आपका ख्याल रखने वाला मिलता है। लेकिन ये कैसा घर है कि जहां हर रोज हर पल आप आतंक में जीते हैं कि न जाने अगले क्षण आपके साथ क्या हो जाए, न जाने कौन आपको क्या बोल दे, न जाने कौन आप पर हाथ उठा दे। उस घर को घर कहना उचित है क्या? यकीन मानिए समाज आपका साथ देगा जब आप अपने लिए आवाज उठाएंगे। यकीन मानिए आपके या आपके घर की इज्जत खराब नहीं होगी अगर आप अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, बल्कि आपके आसपास की लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी। ना जाने कितनी सारी लड़कियां, अगर आपकी कोई बेटी है या फिर आपकी बहन है तो उसे भी ये समझ आएगा कि घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अगर आप चुप रहती हैं तो सिर्फ आप अपने आप को नहीं बल्कि अपने आसपास की लड़कियों को भी चुप रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसके अलावा शिक्षा बहुत जरूरी है। जब लड़कियां पढ़ती हैं और उनमें ये आत्मविश्वास होता है कि वो अपने बल पर अपना जीवन यापन कर सकती हैं, तो फिर वो मजबूर नहीं होती है घरेलू हिंसा को सहने के लिए। इसके अलावा परिवार और समाज का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर आपके परिवार में किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आपको भी आवाज उठाना चाहिए। अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो आप बराबर के जिम्मेदार हैं। समाज के तौर पर भी हमारा फर्ज बनता है कि अगर अपने आसपास ऐसी कोई स्थिति देखे, ऐसी किसी औरत को देखे, तो उसके हक के लिए, उसकी मदद के लिए आगे आए हैं, तभी एक बेहतर समाज बनेगा ना। कल को आपके साथ ये हो सकता है, कल के आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ ये हो सकता है। इसे रोकने के लिए आपको एक बेहतर समाज बनाना ही होगा। इसके साथ ही अगर आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपके आसपास किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप महिला हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि 181, 112। इसके अलावा अगर हम भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में एक नंबर है 9771468006, यानी कि 9771468006। इस पर आप फोन कर सकते हैं और उनसे मदद मांग सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया 181, 112, इन नंबरों पर भी आप फोन कर सकते हैं। आप एनजीओ से मदद ले सकते हैं, आप महिला संगठन से जुड़ सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। और कई बार ये होता है कि काउंसलिंग से भी चीजें ठीक हो जाती है। जी हाँ, कई बार घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा नहीं होती है और घर के लोगों की और स्त्रियों की काउंसलिंग करके भी घरेलू हिंसा जैसे मामलों को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे जरूरी है समय पर शिकायत दर्ज कराना। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आप किसी अपने परिचित के साथ, जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे मदद मांगिए। इसके अलावा अगर लगे कि आपको शिकायत दर्ज कराना चाहिए तो बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। आपके साथ अभी जो हो रहा है उसके आगे क्या, कितना बुरा, कितना बड़ा हो सकता है आप नहीं जानती है। घरेलू हिंसा में स्त्रियों की मौत तक हो जाती है, इसलिए समय पर शिकायत दर्ज कराना बहुत जरूरी है। अगर हम कानूनों के बारे में बात करें, हालांकि कानून तक पहुंचने से पहले महिलाओं को अपनी सोच से लड़ना होगा, समाज को अपनी सोच से लड़ना होगा और ये समझना होगा कि घरेलू हिंसा कोई किसी के खिलाफ नहीं कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हालांकि हमारे समाज में स्त्रियों को घरेलू हिंसा का सामना ज्यादा करना पड़ता है, और महिलाओं को ये समझना होगा कि ये उनकी किस्मत नहीं है, ये उन्होंने खुद चुना है। आप अगर अभी कदम बढ़ाएंगे तो आप अपनी किस्मत खुद बदल लेंगी, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। अगर हम कानूनों की बात करें, घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए 2005 में एक कानून आया था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ये कानून महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा से सुरक्षा दिलाता है। इसके अलावा कई बार महिलाओं को ये भी डर रहता है कि अगर वो शिकायत करेंगी तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा, फिर वो जाएंगी कहाँ, वो रहेंगी कहाँ। तो ये कानून महिलाओं को घर में रहने का अधिकार देता है और ये कानून महिलाओं को संरक्षण देता है। इसके अलावा ये कानून महिला को भरण पोषण और मुआवजा से जुड़े भी सुरक्षा मुहैया कराता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कानून हैं, लेकिन कानून तक पहुंचने से पहले जरूरी है कि हम अपने अंदर के जंजीर को तोड़े, हम अपने अंदर के बंधन को तोड़े कि हमें चुप नहीं रहना है, हमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना है। अगर आज आप चुप रह जाएंगी तो आपकी बेटी, आपकी बहन या फिर आपके आसपास की लड़कियां भी कल को चुप रह जाएंगी कि उनके साथ भी तो यही हुआ था, वो चुप रही और उनका जीवन चल तो गया। उस इंसान के साथ उस घर में रहकर क्या फायदा जिनके साथ आप सुरक्षित ही नहीं है। याद रखिए कि घरेलू हिंसा निजी मामला नहीं है कि घर की बात है, घर में निपटा लेंगे, नहीं है। ध्यान रखिए, घरेलू हिंसा एक कानूनी अपराध है। चुप रहना समाधान नहीं है, बल्कि आवाज उठाना ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। आप शुरुआत में ही आवाज उठाएंगी तो ये बातें आगे नहीं बढ़ेगी। और पुरुषों के लिए सबसे जरूरी सलाह कि स्त्रियों को अपने से कम आंकना बंद करें, और वो जो पिता है, भाई है, वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इस काबिल बनाएं कि कल को उन्हें घरेलू हिंसा चुप होकर ना सहना पड़े। तो आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। सुरक्षित रहें, खुश रहें और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
5: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
6: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
6: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
3: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और।
2: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
7: जी
6: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
7: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
6: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम बात करने वाले हैं तिल की फसल में कीट प्रबंधन के बारे में और इस बारे में हमारे साथ आज बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ऋचा कुमारी। मैम आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद उमा जी।
8: तिल की फसल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और तिल के फसल में कौन कौन से प्रमुख कीट लगते हैं इसके बारे में आप पहले बताइए।
9: जी नमस्कार किसान बंधु। तो आज जो तिल की जो बात हो रही है उनकी प्रमुख कीट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जो तिल की खेती होती है वो कम लागत में अधिक लाभ देने वाली होती है। तो इसमें क्या होता है कि कई कीट व्याधियां जो है वो गंभीर रूप से इनको प्रभावित भी करते हैं, इसीलिए इनकी जो पहचान है वो बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहले मैं पत्ती मोड़क की बात करूं, जिनको की पत्तिया एवं फली छेदक भी कहते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम एंटीगैस्ट्रा कैटालोनालिस है। और उसके बाद एक गोल मक्खी आती है जिसको तिलकई मक्खी भी कहेंगे। फिर तिल का लीफ ऑपर या जो जिसे हम पत्ती फुदका कहते हैं, इसके अलावा माहू और लाही, फिर सफेद मक्खी, बिहार हेडी कैटल पीरल जिसको कि हम रोमिल कीट भी कहते हैं, एवं हॉक मॉथ, ये सारी कीटें फसल के अलग अलग अवस्था में आती है।
8: तो मैम अभी आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो इन कीटों की पहचान कैसे करेंगे?
9: देखिए अगर हम पत्ती मोड़क की बात करें तो इसे हम तिल का सबसे घातक कीट कह सकते हैं। तो इसके लिए इसकी पहचान तो बहुत ही आवश्यक हो जाती है। इसका जो सुंडी है जिसको कि हम पिल्लू भी कहते हैं, सामान्य बात जो सामान्य बोलचाल की भाषा है, तो उसमें देखेंगे तो इल्ली का जो रंग होता है वो हरे पीले से लेकर गहरे हरे रंग तक का होता है और इसके शरीर पे छोटे काले धब्बे पाए जाते हैं। अगर हम इसके वयस्क की बात करें तो यह पतंगा जो है ये बहुत छोटा होता है और इनके जो आगे के पंख होते हैं वो भूरे रंग के एवं जो पिछले पंख हैं वो हल्के रंग के होते हैं, इससे इनकी पहचान होती है। एक और बात इसमें बहुत प्रमुख है, इसके जो इल्ली हैं वो रेशमी धागे बनाते हैं जिनका उपयोग वो स्वयं को और अपने भोजन स्रोत को ढकने के लिए करते हैं। गौल मक्खी की अगर मैं बात करूं तो इसके कीट बिल्कुल मच्छर जैसे होते हैं, उनके जो शिशु हैं उनकी शिशु अवस्था कलियों के भीतर रहकर भोजन करते हैं जिससे कि क्या होती है गांठ सी बन जाती है। तिल का पत्ती फुदका जो है वो एक कीट होता है जो बहुत ही छोटे एवं हरे पीले रंग का होता है, ये पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये फाइलोडी रोग के वाहक होते हैं जो तिल की सबसे गंभीर रोगों में से एक है। फिर लाही की बात करूं, ये काले या हरे रंग का होता है, बहुत ही छोटा होता है और ये काफी नरम होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो पत्तों पौधों की जो कोमल सतहों है सतह होती है उसमें झुंड के रूप में पाए जाते हैं। सफेद मक्खी जो है वो बेमेसिया टैबेकी भी हम इसे कहते हैं, इनके जो पंख हैं वो काफी सफेद होते हैं और ये भी पत्तियों के निचली सतह पर पाए जाती है। सफेद मक्खी कई वायरस रोग का वाहक होता है, तो पत्ती फुदका और ये सफेद मक्खी ये क्या है कि रोगों का वाहक हम इसको मान सकते हैं। इसके अलावा इसमें छेदक हैं और फिर एक रेड स्पाइडर माइट के नाम से एक बहुत ही सूक्ष्म कीट जो है वो भी पाए जाते हैं जो लाल रंग के होते हैं। इस तरह से हम इन कीटों की पहचान कर सकते हैं।
10: मैम, कीटों की पहचान तो हो गई, तो अलग अलग तरह के कीट अलग अलग तरीके से क्षति पहुंचाते होंगे फसलों को, तो फसलों में किस तरीके से क्षति पहुंचे हैं उनका लक्षण क्या होता है?
9: जी, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम जब इसके लक्षण को देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसमें क्षति हुई है और फिर उसी के अनुसार हम इसके रोकथाम कर पाएंगे। तो मैं किसान बंधु को बता दूं कि अगर आप सही समय पर रोकथाम करें तो उसके लिए लक्षण बहुत ही आवश्यक हैं पहचानने। सबसे पहले मैं पत्ती मोड़क की बात करूंगी, जिसमें जो इसके पिल्लू हैं वो पौधे की कुछ ऊपरी पत्तियों को एक साथ जाल बनाकर जोड़ लेते हैं और फिर अंदर से उन पत्तियों को ये खाते हैं। उससे क्या होता है कि जो पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही उसका बढ़वार बंद हो जाता है। फूल आने के बाद जो पिल्लू हैं वो फूलों को खाती हैं और फिर बाद में ये फलियों में क्या करते हैं, छेद कर देते हैं और फिर जो दाना होता है उसको नष्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, बीज की पैदावार में काफ़ी कमी आ जाती है। फिर हम गौल मक्खी की बात करेंगे, इसकी जो लक्षण है नुकसान के, तो इसमें क्या होता है, इसमें कलियां जो होती है वो फूल में परिवर्तित ही नहीं हो पाती है और ये सूखकर गिर जाती है। इससे पौधों में फली बनने की जो क्षमता है वो अत्यधिक प्रभावित हो जाती है और इससे क्या होता है, वो कम बनती है फलियां, जिसके फलस्वरूप तिल की उपज काफी प्रभावित होती है। तिल के पत्ती फुदका की अगर मैं बात करूं तो इनकी वजह से क्या होता है कि पौधे पीले पड़ जाते हैं और उनकी जो उनका फिर से बढ़ना रुक जाता है। फाइलोडी की स्थिति में फूल हरे पत्तीनुमा संरचना में बदल जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप फली बनना बंद हो जाता है। लाही है और माहू भी हम इसे कहते हैं, तो ये पौधों के रस चूस कर उसे बिल्कुल कमजोर बना देते हैं एवं इसमें क्या होता है, सहज जैसा चिपचिपे अस्त्राव से काले रंग की फफूंदी विकसित हो जाती है। जो लाल माइट है उसके आक्रमण के कारण पत्तियां बिल्कुल पीली पड़ जाती है और सिकुड़ जाती है और अंततः वो सूखकर गिर जाती है। बिहार हेरी कैटरपिलर बहुत ही प्रमुख है, इसमें क्या होता है, पत्तियां पूरी तरह से ये चट कर जाते हैं और इससे क्या होता है कि बिल्कुल कंकाल जैसा संरचना इसमें बन जाता है पौधों में।
10: तो मैम, जो भी कीटों से क्षति होंगे उनके लक्षण को हम पहचान लेंगे, लेकिन उसके बाद कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
9: जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। तिल की जो फसल है उसमें कीट प्रबंधन केवल कीटनाशकों के प्रयोग से ही नहीं होता है बल्कि विभिन्न तकनीकों के संयुक्त प्रयोग से होता है। इसके तहत हम चार विधि अपनाते हैं जिसमें सबसे पहले व्यवहारिक नियंत्रण आता है। इसमें हम क्या करते क्या है कि सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि प्रतिरोधी किस्म का हमें क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए और इसके अलावा जो फसल चक्र है उन्हें किसान बंधु जरूर से जरूर अपनाएं। समय पर बुआई भी बहुत जरूरी है ताकि कीटों का जो चरम प्रकोप है उसे रोका जा सके। लंबे समय तक खेतों में पानी का ठहराव ना होने दें, ये गर्मा तिल के लिए तो बहुत ही नुकसानदेह होता है जो अभी चल रहा है। इसके बाद मैं यांत्रिक विधि की बात करूंगी। इसमें हम करते क्या है कि जो भी संक्रमित पत्तियां हैं, फलियां हैं या फिर कलियां हैं, उन्हें तोड़कर हम नष्ट कर देते हैं। और जो खेतों में, इसके अलावा हमें निराई गुड़ाई ये भी करनी चाहिए। इसके अलावा हम एक सबसे जरूरी बात मैं बताऊंगी, पक्षी आश्रय ये खेतों में जरूर से जरूर प्रयोग करें। इससे होता क्या है कि जो भी पक्षी हैं वो पिल्लुओं को खा लेते हैं, तो आपका इससे भी बचाव हो जाएगा। इसके अलावा पीले चिपचिपे फंदे का प्रयोग अगर किसान मित्र करें तो उससे सफ़ेद मक्खी एवं माहों को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद जैविक नियंत्रण आता है। इसमें है क्या, ये परभक्षी कीट की बात करता है। परभक्षी कीट में टिकुलिया है, मकड़ी है, डाकू मक्खी है, ग्रीन लेसविंग है, ये सारी जो भी मैं कीट का नाम बता रही हूँ वो मित्र कीट हैं। इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा नीम तेल का हम प्रयोग कर सकते हैं, 5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से इनका भी छिड़काव किया जा सकता है। और नीम बीज खली अर्क 5% इनका भी छिड़काव अगर हम करें तो वो भी उपयोगी माना जाएगा। सबसे अंत में हम ब्रह्मास्त्र की बात करेंगे, जिसको रासायनिक विधि भी कहेंगे। ये तुरंत नहीं करना चाहिए, इन सब के बाद ही हम प्रयोग करेंगे इनका। तो ये हम दरअसल तब करते हैं जब कीट आर्थिक क्षति स्तर पर पहुंच जाता है, तो उस समय किसान बंधु स्पाइनोसेट 45% SC 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से, दूसरा जो कीटनाशक है वो है फ्लूबेंडामाइट 480% SC 0.3 मिलीलीटर पर लीटर की दर से, एवं इसके अलावा क्लोरिन ट्रेनिली प्रॉल 18.5% SC 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से इन सब का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। और इनसे क्या होता है, इन कीटों का बचाव संभव हो जाता है। इसके अलावा किसान बंधु जो निगरानी की मैं बात करूंगी, तो सर्वेक्षण करते रहें, निगरानी करते रहें अपने खेतों की समय पे समय, ताकि इन सब कीटों से आप रोकथाम आराम से कर सकते हैं और पैदावार भी फिर उससे अच्छी आएगी।
10: जी मैम, अगर निगरानी करेंगे तो कीटों के बारे में वो पहले पता लगा पाएंगे और जी उनका प्रबंधन आसान हो जाएगा। मैम आपने बहुत उपयोगी बातें बताई और उम्मीद है कि हमारी आज की ये वार्ता उन किसान भाई बहनों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी जिनके खेतों में अभी तिल लगे हुए हैं, और अगर वो कीट प्रबंधन करेंगे तो जैसे कि आपने बताया बहुत आय में वृद्धि होगी उनकी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
9: बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी।
10: किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें खूब प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
11: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
12: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
11: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
13: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
14: जी
13: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
14: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
13: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
15: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
12: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
15: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
16: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण कर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया, अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेना है तेजी से

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: नमस्कार किसान भाइयों, लॉकडाउन का समय है, विगत एक साल से हम इससे जूझ रहे हैं। ऐसे में खेती जो है कभी रुकती नहीं है, तो हमने भी जो सलाह है वो न रुकने का फैसला किया और हर सलाह हम आपको डिजिटल माध्यम से दे रहे हैं। तो ऐसे में अभी जो समय है, समसामयिक समय है, वो है धान की बिजाई के लिए। तो खरीफ मौसम की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जो धान की जो बिजाई है, बहुत सारे किसान भाइयों को अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशन के लिए उनको अलग अलग बीजों की ज़रूरत होती है कि कैसे क्या हम लगाएं, हमारी ज़मीन ऊंची है, हमारी ज़मीन नीची है। साथ ही किसी को महीन धान, किसी को मोटा धान, किसी को सुगंधित धान, इस तरह से ज़रूरत होती है। तो ऐसे में कन्फ्यूज़न रहता है कि हम बिजाई के समय कौन सा किस्मों का चयन करें जिसकी दर हमें अच्छा जाए, जिसका कि हमें आगे चल करके उसकी क्वालिटी अच्छी मिले। तो इसी सब पे बात करने के लिए हम आज हैं हम डॉक्टर सत्येंद्र जी के साथ। डॉक्टर, आपका स्वागत है हमारा FM ग्रीन के इस प्रोग्राम में और साथ ही यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए। साथ ही श्रोताओं को बता दें कि अगर आप हमारा FM ग्रीन का जो प्रोग्राम सुनना चाहते हैं रेगुलर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारा जो एप्लीकेशन है उस लिंक से क्लिक करके आप रेडियो का एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि जो जिसमें कॉमर्शियल वैल्यू जाए, तो किसान करते हैं कि जिसमें दर ज़्यादा जाए, तो ऐसे में एक आइडियल कंडीशन के लिए एक बेहतर जो वैरायटी है वो कौन सा आप सजेस्ट करते हैं?
3: किसान भाइयों नमस्कार। जैसे कि आपने सुना, अभी खरीफ का सीजन स्टार्ट हो गया है। खरीफ में जो हमारी फसलें हम लोग लगाते हैं, बिहार में जो फसलें लगाई जाती हैं, किसान भाई जिन फसलों का उत्पादन करते हैं, उनमें धान सबसे प्रमुख है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार के लिए 90% से ज़्यादा जनसंख्या के लिए धान जो है वो किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है। और जहाँ तक बिहार में खेती योग्य कृषि भूमि की बात है, तो उसके लगभग 60% क्षेत्रफल पे, लगभग 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पे धान की खेती बिहार में की जाती है। और सभी जिलों में लगभग धान की खेती होती है। तो इसमें जहाँ तक किस्मों के चयन की बात है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। बीज को, अगर आपके पास अच्छा बीज है, तो बीज के केस में बीज के लिए कहा गया है कि बीज कृषि का आधार है। तो कृषि, अगर हमारे पास बीज अच्छा होगा तो हमारा उत्पादन वहीं से शुरुआती दौर में ही हमारा, हमें डिसाइड हो जाएगा, कुछ ना कुछ हम ये कर सकते, अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी उपज जो हमें मिलेगी वो कैसी होगी। बाकी उसके बाद जो खेती की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं उन पे, वो भी उसमें शामिल होती हैं। तो किस्मों की अगर हम बात करें, तो बिहार के लिए बहुत सारी किस्में हैं जो संस्तुत हैं, और वो अलग अलग परिस्थितियों के लिए हैं। तो हम अलग अलग परिस्थितियों के लिए किस बात करेंगे। अगर हम देखें तो धान के केस में उनकी पकने की अवधि को लेके और जो जमीन है, जो भूमि है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसके आधार पे हम लोग स्पेशली धान की प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ किस्में ऐसी हैं जो अगात किस्में जिनको हम बोलते हैं, जो कि कम दिन में पक जाती हैं, जो लगभग 100 दिन या 110 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, वो अगात किस्में होती हैं। और इनको, इन किस्मों को किसान भाइयों को चाहिए कि जो ऊपरी ज़मीन है, जो जहाँ पे पानी नहीं जमता है, पानी कम जमता है, ऐसी ज़मीन पे इन किस्मों को लगाएं। इसके साथ साथ कुछ किस्में मध्यम अवधि की होती हैं, जो जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है और जमीन उर्वर है, उस जगह पे मध्यम अवधि की किस्मों को किसान भाई लगाएं। उनमें ये किस्में लगभग 135-40 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और इनकी उपज भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा बहुत सारी कुछ जिले हमारे यहाँ हैं जो जहाँ पे पानी देर तक रहता है, तो वहाँ हम कम अवधि की किस्में वहाँ नहीं लगा सकते। तो वहाँ पे जो लंबी अवधि की किस्में हैं, ज़्यादा देर से पकने वाली, लगभग 150-155 दिन में पकने वाली किस्में हैं, वो लगाई जाती हैं। तो उस जगह पे जहाँ पे आपको देर तक पानी उपलब्ध रहता है, वैसी जगह पे वो लंबी अवधि की किस्में लगानी चाहिए। तो हम अब इनको एक एक करके इनकी बात करेंगे अलग अलग किस्मों की। तो अगात किस्मों में मैं बात करूं तो सबसे पहले एक किस्म है प्रभात। तो प्रभात जो किस्म है वो लगभग 95-100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये अवधि जो फसल की जो अवधि बोली जाती है वो बीज से बीज तक की होती है, यानी जब आप बिजाई करते हैं खेत में उस दिन से लेके जिस दिन आप काट रहे हैं, काट के घर पकने के बाद फसल को काट रहे हैं, उस टाइम तक की ये अवधि दिनों में ये गिनी जाती है। तो ये 95-100 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी 30-35 कुंटल उपज आराम से किसानों को मिल जाती है। तो इसके अलावा अगात किस्म में ऊपरी जमीन के लिए दूसरी किस्म है सहभागी धान। सहभागी धान किस्म में मैं बता दूं, जो प्रभात ये किस्म मैंने बताई, इसका धान थोड़ा मोटा होता है और ये चूड़ा के काम में स्पेशली आता है। इसी तरह से जो सहभागी धान है उसका भी धान थोड़ा मोटा होता है, गहरे सुनहरे रंग का होता है और ये किस्म भी 110 दिन में लगभग पककर तैयार हो जाती है और इसमें इसकी उपज लगभग 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज किसान भाई आसानी से ले सकते हैं। और इसकी एक खास बात है सहभागी धान किस्म की कि इसमें जो सूखा सहन करने की क्षमता के लिए इसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किया गया है, तो वैज्ञानिकों ने इसमें जीन्स डाले हैं जिससे कि वो सूखा सहन करने की क्षमता इसमें ज़्यादा है। तो जहाँ तक सूखे की बात है धान के लिए, तो वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि धान की जो फसल है वो शुरुआती दौर में बाढ़ के लिए और उसके बाद जब पुष्पन का समय आता है, फूल आने का समय आता है, तो उस स्टेज पे सूखे के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम अगर ऐसी हमारी भूमि है जहाँ पे हमें लगता है कि शुरुआत में हमारे यहाँ बाढ़ आ जाएगी या पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें किस्मों का उस हिसाब से चयन करना चाहिए जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा। और अगर ऐसा लगता है कि पुष्पन के समय, फूल आने के समय पे हमारा सूखा पड़ने की संभावना है और हमें पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वैसी जगह पे वैसी किस्मों का चुनाव करें जो कि सूखा सहन करने वाली हो, क्योंकि जो सूखा सहन करने वाली जो किस्में मैं बता रहा हूँ वो पुष्पन के समय ही स्पेशली उनमें ये ताकत होती है कि वो कम पानी की स्थिति में भी खड़ी रह सके। तो इसमें सहभागी धान जैसे मैंने बताया। इसके बाद एक किस्म है शुष्क सम्राट। ये किस्म भी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 35-40 कुंटल इसकी उपज आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा सबोरदीप एक किस्म है जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। इसका दाना लंबा होता है, लंबा पतला दाना है और बहुत ही अच्छा इसका चावल बनता है। इसकी जो अवधि है ये किस्म 110-115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसके अलावा राजेंद्र भगवती एक किस्म है जो मुजफ्फरपुर की तरफ के जो किसान हैं वहाँ ये आसानी से मिल जाएगी, राजेंद्र भगवती। तो किसान भाई इसको लगा सकते हैं, ये भी 110-15 दिन की किस्म है और लगभग 40 कुंटल उपज इसमें आसानी से मिल जाती है। इसका दाना भी लंबा पतला होता है। इसके अलावा मध्यम कुछ किस्में हैं जो मध्यम अगात श्रेणी में आती हैं। तो मध्यम अगात श्रेणी वाली है जो 115 से लेके 125 दिन में जो पक के तैयार हो जाती हैं, ऐसी किस्में हैं। और उसमें एक किस्म बहुत ही अच्छी मैं बताऊं आपको, नई विकसित की है बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, सबोर हर्षित धान। तो मैं किसान भाइयों को विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि सबोर हर्षित धान जो है एक बार आप जरूर लगाएं। ये नई किस्म है, क्योंकि किसान भाइयों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि किसान भाई आप लोग जो नई किस्में हैं उनको जरूर, जो भी आपकी परंपरागत किस्में हैं जो आप लगाते आ रहे हैं उनके अलावा आप नई किस्मों को जरूर अपने यहाँ ट्राई करें। तो ज़्यादा अगर क्षेत्रफल में नहीं लगा रहे हैं तो कम क्षेत्रफल में लगा के देखें, उसी भूमि की जो श्रेणी है, जैसी आपकी प्रकृति है भूमि की खेत की, उस हिसाब से ही यूज करें, लेकिन नई प्रजातियों को जरूर यूज करें। तो इसी क्रम में सबोर हर्षित धान बहुत ही अच्छी एक नई प्रजाति है और ये लगभग 120-125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका दाना मध्यम पतला होता है, जैसे जो कि बहुत ही पसंद किया जाता है और मार्केट में इसकी वैल्यू भी ज़्यादा मिलती है, इसका दाम भी ज़्यादा मिलता है। तो इसके अलावा इसी श्रेणी में, मध्यम अगात श्रेणी में एक किस्म है सबोर अर्धजल, लंबे पतले दाने की ये किस्म है। सबोर अर्धजल भी बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित है और इसका ये भी सूखा सहन करने की भी क्षमता इसमें है। इस किस्म को हम सीधी बुवाई के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसकी उपज 40-45 कुंटल आसानी से मिल जाती है, 125 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है।
2: तो ये थे किसान भाइयों की जो आपने भी जो बताया कि जो 110 से के बराबर जो है दिनों में तैयार हो जाने वाली किस्म है, ये डॉक्टर सत्येंद्र तोमर जी जानकारी दे रहे हैं, ये प्लांट ब्रीडिंग से ही है। तो हम अगले भाग में बात करेंगे कि किसान भाइयों की हम बीजों के चयन में और क्या क्या सतर्कता अपनाएं। इस भाग के लिए हम इतना ही आज के लिए हम रख रहे हैं, अगले भाग में हम फिर से एक बार आपके साथ हाजिर होंगे बीजों के बारे में नई नई जानकारियों के साथ।
4: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: कितने दोस्त है?
7: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
7: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
7: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
7: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी तो इसका हल क्या है?
7: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
5: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या A&M से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और A&M से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
7: जलवायु बदल रहा है, कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ से किसान परेशान हो जाते हैं। फसल को समय पर पोषण नहीं मिल पाता। ग्लोबल वार्मिंग ने जलवायु को भी बदल दिया है, इसलिए किसानों को चाहिए कि वो जलवायु अनुकूल खेती अपनाएं। इसके लिए हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि किसान जलवायु अनुकूल खेती कर सके। अब हम जलवायु अनुकूल खेती क्यों जरूरी है इस पर आधारित एक गीत सुनाने जा रहे हैं।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। दोस्तों आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। हमारे दैनिक कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह के बारे में। जी हाँ, आजकल जैसे हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, हमारा खान पान बिगड़ता जा रहा है, ऐसे में जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज एक तय आयु वर्ग के लोगों को ही हुआ करती थी, आजकल बच्चों से लेकर बूढ़े तक में डायबिटीज का खतरा मंडराता रहता है। बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है। जब एक गर्भवती महिला को डायबिटीज होता है तो ऐसे में सिर्फ उस महिला को ही खतरा नहीं होता है बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी बहुत खतरा रहता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक आंकड़ा जारी किया और उस आंकड़े के अनुसार हर साल 21 मिलियन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो जाता है, यानी कि हर 6 गर्भधारण में से एक को मधुमेह प्रभावित करता है और इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी जानलेवा स्थितियों का खतरा बना रहता है, जैसे कि प्रीक्लेम्सिया, स्टिल बर्थ या प्रसव आघात जैसे जानलेवा स्थितियों का खतरा काफी बढ़ जाता है और इसके काफी सारे दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं, जैसे कि माँ और बच्चे दोनों को टाइप 2 मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों का आजीवन खतरा बना रहता है। अगर गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया जाता है तो बच्चे के विकास पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का विकास रुक सकता है, बच्चा या तो कमजोर पैदा होगा या फिर बहुत ही मोटा। डायबिटीज के दौरान क्या होता है कि गर्भ में बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत सारी परेशानियां आती है और इसी दौरान बच्चे को भी शुगर हो सकता है। कुछ महिलाओं को डायबिटीज पहले से होता है और कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज क्यों होता है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा होता है वो एक हार्मोन पैदा करता है और ये हार्मोन खून में चीनी को बनाता है और खून में जब चीनी बनता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है, यानी कि पैनक्रिया जो चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है वो आमतौर पर पर्याप्त इंसुलिन बनाता है जिससे डायबिटीज का खतरा नहीं रहता है। और अगर पैनक्रिया जितना जरूरी है उतना इंसुलिन बना पाने में कामयाब नहीं रहता है, सफल नहीं रहता है, तो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है जिससे प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाता है। अभी तक तो हमने कारण जान लिया है, आइए अब जानते हैं कि अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उसे पहचाने कैसे। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उनमें कुछ सामान्य से लक्षण दिखते हैं, जैसे कि उन्हें बार बार पेशाब आता है, उनका वजन तेजी से घट जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, इसके साथ ही थकान भी उन्हें बहुत ज्यादा होती है। कुछ महिलाओं में तो आँखों से भी कम दिखने की समस्या हो सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हुई है तो उन्हें समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहना चाहिए और इसके साथ ही कुछ और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को शुगर हो गया है तो उन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उन्हें अपना खान पान, शारीरिक गतिविधि, इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर देना चाहिए, तेल, घी, चावल, आलू, मिठाई और तली हुई चीजों से बचना चाहिए, उन्हें एक्सरसाइज रोज करना चाहिए, उन्हें हर रोज अपना शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए और डॉक्टर ने जो भी बताया है वो तो फॉलो करना ही चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर ये भी सुझाव देते हैं कि समय समय पर अल्ट्रासाउंड करवाते रहना चाहिए। तो हमारे मन में ये सवाल भी आ सकता है कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह से पीड़ित हो गई हैं तो क्या वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो अपना विशेष ध्यान रखे तो माँ भी स्वस्थ रह सकती है और साथ ही उनका आने वाला बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है और जो खतरा होता है उसे भी कम किया जा सकता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पहले से डायबिटीज होता है, तो क्या वो गर्भवती नहीं हो सकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो गर्भवती हो सकती है और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। अगर वो ध्यान नहीं रखती है तो बहुत सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आज के समय में बात करें तो मधुमेह विश्व भर में 8 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करती है और ये बीमारी हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, अंधापन और अंगों के विच्छेदन का एक प्रमुख कारण है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना, खास तौर से जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो विशेष ध्यान रखें ताकि आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे और आपके बच्चे को आपसे मधुमेह ना मिले। और ऐसी ही ढेरों जानकारी के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़े रहें।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कचरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दे लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और BPT 5204 यानी कि BPT 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.5 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टिन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दे। इसके बाद वाह कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं मखाना के बारे में। मखाना के पौष्टिक गुणों के बारे में अब तक देश दुनिया में सबको पता है, इसकी मांग भी देश और दुनिया हर जगह है और बढ़ती मांग यानी कि रोजगार के बढ़ते अवसर। और जब मखाना की बात होती है, मखाना से जुड़े रोजगार की बात होती है, तो हम पाते हैं कि भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा मखाना उत्पादन करने वाला देश है और भारत में बिहार, जी हाँ अकेला बिहार 85-90% मखाना का उत्पादन बिहार में ही होता है। और फिर बिहार में लोगों को मखाना से जुड़े रोजगार के अवसर के बारे में पता तो होना ही चाहिए और इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ है मधुमिता मैम। आप हैं प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमा। तो आज हम बात करेंगे कि मखाना से कैसे आप उद्यम स्थापित कर सकते हैं और इसके क्या अवसर हैं। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मैं हूँ मधुमिता और मैं आज मखाना के गुणों के बारे में, उसके उद्यमिता के अवसर के बारे में आप लोगों से बताने जा रही हूँ। हम जानते हैं जैसा कि इसे मखाना को हम सुपर फूड कहते हैं, ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व मौजूद हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद हैं। आइए हम कुछ इनके इसके मुख्य स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जिससे कि हमारे शरीर के मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को यह हम बचाता है और त्वचा को जवां रखता है। दूसरी चीज है हृदय स्वास्थ्य। इसमें मौजूद पोटेशियम और कम सोडियम के कारण ब्लड प्रेशर को यह नियंत्रित रखने में मदद करता है और यह दिल के लिए अच्छा है। फिर है वजन प्रबंधन। कम कैलोरी, वसा और उच्च फाइबर के कारण यह हमारा पेट भरा रखता है और वजन घटाने में भी सहायक है। पाचन में सहायक, यह हमारे पाचन में भी काफ़ी सहायता करता है। डायबिटीज के लिए, चूँकि इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो कि शुगर लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देता है। यह फाइबर और मैग्नीशियम से युक्त होता है जिससे कि शुगर नियंत्रित रहता है। फिर यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। मखाना में मौजूद कैल्शियम जो है वो हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस जैसे समस्याओं से बचाव के लिए यह काफ़ी लाभदायक है। हमारे त्वचा और बालों के लिए भी यह काफ़ी उपयोगी है। मानसिक विकास के लिए यह बहुत फायदेमंद है क्योंकि यह याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। नींद और तनाव, यह तनाव कम करके बेहतर नींद लाने में भी मदद करता है। तो हम देख सकते हैं कि इसके अनेकों स्वास्थ्य लाभ हैं जिसके चलते यह हर एक वर्ग के लोगों द्वारा मांग किया जाता है, पसंद किया जाता है जिससे कि उद्यमिता के अपार अवसर खुल जाते हैं। खासकर बिहार जैसे राज्य में जहाँ 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहाँ कोई खेती नहीं होती, ऐसी जगहों पर हम मखाना की खेती करके एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर पैदा कर सकते हैं।
0: तो मैम जैसे कि आपने अभी बताया कि मखाना एक तो वजन को नियंत्रित करता है, बहुत सारे फायदे आपने बताए, उनमें से जो आजकल युवाओं की चाहत होती है वजन नियंत्रित हो और उनकी त्वचा जवा दिखे, और ये दोनों ही फायदे मखाना में भरपूर रूप से हैं। और अभी आप जैसे बता रही थी कि अपने बिहार में 90 एकड़ 9.5 लाख
2: हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो कि खेती योग्य नहीं है, उसमें जल जमाव वाली जमीन भी शामिल है, तो हम
0: वहाँ मखाना
2: लगा करके जो है रोजगार के अवसर
0: पैदा कर सकते हैं। तो अभी रोजगार के बारे में आप बात कर रही थी, तो मखाना का उद्यम स्थापित करने के लिए क्या क्या संभावनाएं बिहार में हैं और इसके लिए क्या किया जा सकता है, मैम ये बताइए।
2: जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया है, जिसमें कि रोजगार भी एक मुद्दा है, तो खासकर बिहार के लिए जहाँ पर कि 85 से 90% उत्पादन होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे उद्यम लगा सकते हैं और रोजगार के अवसर खड़े कर सकते हैं। सबसे पहली बात है तो कि कच्चे मखाने के बजाय उसे प्रोसेस या प्रसंस्कृत करके बेचना अधिक लाभदायक होता है। रोस्टिंग और फ्लेवरिंग, सादे मखाने के बजाय हम पेरी पेरी, पुदीना, पनीर टिक्का या चॉकलेट फ्लेवर वाले रोस्टेड मखाना स्नैक्स बना करके बेच सकते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है हमारे युवाओं के बीच में, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गए हैं। और है मखाना पाउडर, मखाना को पीस कर पाउडर बनाया जाता है, जिसका उपयोग शिशु आहार, एनर्जी बार, हेल्थ सप्लीमेंट और बेकरी उत्पादों जैसे कि मखाना कुकीज और विभिन्न स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पादों में किया जाता है। तो फिर है मखाना बेस्ड बहुत प्रोडक्ट्स, जैसे मखाने का आटा, मखाना फ्लैक्स, पास्ता, मैकरोनी जैसे आधुनिक उत्पाद बना करके भी बेचा जा सकता है, यह भी काफ़ी मांग में है। मखाना खीर मिक्स, यह एक रेडी टू कुक जो कि पकाने के लिए तैयार उत्पाद है, जिसमें मखाना पाउडर या छोटे मखाना के टुकड़ों के साथ चीनी, इलायची, ड्राई फ्रूट्स आदि मिश्रित होते हैं, इसका भी उत्पादन किया जा सकता है। बेकरी उत्पाद, मखाना के आटे के का उपयोग ग्लूटेन मुक्त बिस्किट, ब्रेड और कुकीज बनाने में किया जा सकता है। और कुछ अन्य खाद्य उत्पाद हैं जैसे कि मखाने का उपयोग हम अनेक पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों में भी कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीग्रेन पफ्स, मखाना भेल, अचार, कलाकंद एवं अन्य मिठाइयाँ, पास्ता और सलाद के टॉपिंग के रूप में। बहुत सारे ऐसे हमारे पास विकल्प मौजूद हैं जो कि हम मखाना से प्रोसेस करके, प्रसंस्कृत करके बना सकते हैं, और ये हमारे युवा और वयस्क वर्ग में काफ़ी ज़्यादा
0: पॉपुलर है,
2: मांग में है।
0: मतलब लोगों के बीच मखाना की मांग तो है, और साथ ही जब मखाना इतने फ्लेवर में आ रहा हो, मखाना इतनी अलग अलग वैरायटी में आ रहा हो, तो मांग काफ़ी होती है और रोजगार के अवसर भी होते हैं। लेकिन मैम क्या मखाना उत्पादन में, मखाना के उद्यम में क्या सरकार द्वारा भी कोई सहायता प्रदान की जाती है?
2: बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया कि अगर हमें सरकारी सहायता मिल जाती है तो हमारा मनोबल और बढ़ जाता है, और सरकार भी काफ़ी सारी योजनाओं के साथ युवाओं को मदद कर रही है। जैसे कि हम इसमें बताना चाहेंगे कि इसमें एक है PMFME योजना, जिसको कि हम प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से भी जानते हैं। इसके तहत मखाना प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए 35% तक सब्सिडी और ऋण सहायता दी जाती है, PMFME पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, खास करके बिहार में कई जिलों जैसे कि दरभंगा, मधुबनी में इसमें मखाने की इस योजना के तहत चुना गया है, जिसमें कि सरकारी सहायता मिलती है। अब तीसरा है मखाना विकास योजना, ये जो बिहार के कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई है ये योजना, मखाना विकास योजना, ये बिहार के 10 विशिष्ट जिलों में मखाना की खेती और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। यह किसानों को प्रशिक्षण देने और मखाना की खेती और प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक उपकरणों के लिए अनुदान प्रदान करने पर केंद्रित है। फिर यह योजना जो है एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के तहत संचालित होती है, जिसमें मखाना बीज वितरण, भंडारण, गृह निर्माण और प्रोसेसिंग पर सब्सिडी जैसे लाभ मिलते हैं। इसके कुछ मुख्य हम उद्देश्य बता देते हैं मखाना विकास योजना की। इसके तहत जो है किसानों को प्रशिक्षण और कौशल विकास दिया जाता है, फिर अनुशंसित मखाना किस्मों के बीज पर सब्सिडी मिलता है, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन को भी बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात को भी प्रोत्साहन इसमें दिया जाता है और महिला किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी इसका लक्ष्य है। 30% लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक और है मखाना बोर्ड, जो कि भारत सरकार द्वारा बिहार में स्थापित एक सरकारी संस्था है। यह मखाना बोर्ड, जिसका उद्देश्य मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देना होता है, ताकि किसानों की आय बढ़े और यह सुपर फूड मखाना को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। यह मखाना उद्योग की विभिन्न चुनौतियों को हल करने, नवाचार लाने और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद करता है। हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा मखाना को प्रोत्साहित करने के लिए, मखाना के उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती हैं। तो युवा बढ़ चढ़कर आगे आएं और इसका लाभ उठाएं और उद्यम लगाएं।
0: मैम, मखाना उद्यम के बारे में तो हमने बात कर ली और बार बार आप प्रोसेसिंग की भी बात कर रहे हैं और प्रोसेस्ड मखाना की मांग भी ज़्यादा है। मखाना प्रोसेसिंग बिजनेस का बाजार क्या है और किस तरह इस तक पहुँचा जा सकता है?
2: जी हाँ, बिल्कुल, मखाना प्रोसेसिंग का ही बाज़ार है और बहुत ज़्यादा इसकी मांग है। आजकल लोग जो है, चूँकि यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर है और लोग रेडी टू सर्व खाने को पसंद करते हैं, इसीलिए जो है ये हेल्दी स्नैक के रूप में इसकी मांग बढ़ रही है और बाज़ार में इसका पकड़ मजबूत हो रहा है। मखाना के बाज़ार एवं संभावनाएं कुछ इस प्रकार हैं। जैसे अगर हम घरेलू बाजार की बात करें तो मखाना जो है भारत में एक हेल्दी स्नैक के रूप में खासकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में इसकी मांग बढ़ रही है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग, खासकर युवा, जिम जाने वाले लोग और डायबिटीज और हृदय रोगों से ग्रस्त जो लोग हैं वो अपनी डाइट में इसे शामिल कर रहे हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो भारत मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में इसकी भारी मांग है, जिसे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलती है। अब हम उद्योग रिपोर्ट की बात करें तो फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक भारत में हेल्दी स्नैक्स का बाजार 12% की सालाना वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना है, जिसमें कि मखाना प्रोसेसिंग बिजनेस एक अहम हिस्सा हो सकता है। और विविध उत्पादों की मांग भी है, जैसे कि भुना हुआ मखाना, चॉकलेट कोटेड मखाना, पनीर फ्लेवर मखाना, मसाला मखाना और अन्य फ्लेवर के मखाना की भी काफ़ी मांग बढ़ रही है। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि इसका जो प्रोसेसिंग बिजनेस का जो बाज़ार है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, नहीं सिर्फ हमारे घरेलू बाजार में भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी है। तो हम जो है पैकेजिंग करके और ब्रांडिंग करके एक उद्यमी के रूप में आप स्थानीय किसानों से मखाना खरीदकर उसे ब्रांडिंग करके आकर्षक व लुभावने पैकेजिंग करके बेच सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी छोटे उद्यमी वैश्विक व्यापार वैश्विक बाजार में भी अपना सामान बेच सकते हैं। साथ ही साथ आप आधुनिक खेती भी करके जो है अच्छा उद्यम स्थापित कर सकते हैं। पारंपरिक तालाबों के बजाय आप मखाने की खेती को खेत प्रणाली से कर सकते हैं, जिससे कि उद्यमी आधुनिक सिंचाई और कटाई की मशीनों का उपयोग करके ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोसेसिंग बाजार का इसका बहुत ज़्यादा अवसर है, तो लोग युवा को इसमें आगे आना चाहिए।
0: बिल्कुल, अब तक हमने बहुत सारी बातें की, इसकी क्या संभावनाएं हैं और इसके स्वास्थ्य लाभ क्या हैं। तो मैम, मखाना के स्वास्थ्य लाभ के बारे में तो हमने बहुत बातें जान ली, लेकिन मखाना की उद्यमियता से क्या लाभ मिल सकता है किसान को, या फिर जो युवा इसमें आना चाहते हैं, इस उद्यम में आना चाहते हैं, उन्हें क्या लाभ मिल सकता है?
2: मखाना उद्यमिता के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसमें प्रसंस्कृत हम अगर इसे कर लेते हैं तो चूंकि इसकी मांग बहुत ज़्यादा है तो ये रोजगार सृजन में मदद करता है, साथ ही साथ किसानों की आय की में वृद्धि करता है। हम मखाना जो होता है वो धान और गेहूं जैसी फसलों से दोगुना लाभ देता है, जिससे कि छोटे और सीमांत किसान ज़्यादा आर्थिक लाभ ले सकते हैं। स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स की मांग चूँकि ज़्यादा है तो इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा हम अगर इसमें जाते हैं, अगर इसका उद्यम हम स्थापित करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। निर्यात के भी अवसर काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसा बताया हमने कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों में काफ़ी इसकी मांग है, तो निर्यात की भी बहुत संभावनाएं हैं। फिर ग्रामीण विकास में काफ़ी ये मदद करता है, क्योंकि पलायन रोकने, युवाओं का पलायन होता है ग्रामीण क्षेत्रों से, वहाँ से भी रोक लगाने में मखाना उद्यम मदद करता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। और चूंकि सरकारी समर्थन भी इसमें है तो ये बहुत हम इसमें उद्यम लगा सकते हैं बहुत आसानी से। हम आपको एक बीएयू हमारे जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक प्रभेद है मखाना की, उसके बारे में भी एक संक्षेप में देना चाहेंगे जानकारी। ये एक ऐसी किस्म है सबौर मखाना वन, जो मखाना कि एक ऐसी किस्म है, बेहतरीन किस्म है, जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, जिसमें कि पुराने प्रभेदों की तुलना में 50% ज़्यादा उपज मिलता है, साथ ही यह कम समय में ज़्यादा उत्पादन देने में भी सक्षम है। इस प्रकार यह प्रभेद किसानों की आय में वृद्धि और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का एक उत्तम माध्यम है। अंत में हम बताना चाहेंगे कि हम देख सकते हैं कि मखाना जो देवताओं का भोजन माना जाता है, जो कि धार्मिक अनुष्ठानों, उपवास और प्रसाद में इस्तेमाल होता है, उसके बहुमुखी फायदे हैं। यह एक पौष्टिक सुपर फूड है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। मखाना उद्यमिता से हम किसानों की आय बढ़ा सकते हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। इसका उद्यम कृषि मूल्य संवर्धन, नवाचार और निर्यात के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने का प्रबल कारक है। संक्षेप में, मखाना उद्यमिता एक सुपरफूड क्रांति का हिस्सा है जो पोषण, आर्थिक विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। इन कारणों से